0: ने निकलते हैं, गिरफ्तारी देते हैं। तो ये कोई आंदोलन नहीं है, ये केवल देश में लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं।
1: हालांकि कल जिस लंच से इंडिया गठबंधन के बड़े घटक नदारद दिखे थे, आज उन्हें न्योता दिया गया है और सबने कबूल भी किया है। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने अब राजघाट की राह पकड़ी है। अगला रास्ता राष्ट्रपति भवन की ओर का है।
2: बेसिकली वी आस्क फॉर एन अपॉइंटमेंट फॉर 7, 8, 9। टुडे इज 8, वी विल वेट फॉर टुमारो।
3: वहीं पर हम सभी लोग बैठेंगे, धरना करेंगे।
1: उधर आज टीएमसी की ओर से अभिषेक बनर्जी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, वहीं ममता ने भी दिल्ली की ओर कूच कर दिया है।
4: प्रोग्राम के हम डिसाइड कर सकते हैं, हमको जाने के लिए बोला, हम जा रहा है। आप देख लीजिए क्या प्रोग्राम है। वो 8-9 को प्रेसिडेंट का पास, ऑल इंडिया जो इंडियन अलायंस है और सब लीडर को लिए टाइम मांगा।
1: उधर बीजेपी इस पूरे मामले में इंडिया गठबंधन को घेरने की कोशिश कर रही है।
5: इसीलिए अगर भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है तो वो राहुल गांधी की मनमानी अराजकता से है। अगर भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मनमानी गुंडागर्दी से है।
1: सियासी आरोपों से सड़क के आंदोलन तक तमाम उपाय अपनाने के बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का उपाय कामयाब नजर नहीं आ रहा। ऐसे में एक बार फिर अदालत का रुख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में 14 मार्च 2024 को ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के फैसले को चुनौती दी गई है। आरोप है कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति अवैध है क्योंकि इसमें 2023 की नियुक्ति नियमावली अधिनियम की धारा 5, 6 और 8(1) का पालन नहीं किया गया। एक पद के लिए 5 नामों का पैनल बनाने का प्रावधान था, जबकि 2 पदों के लिए 10 की जगह कुल 6 नामों की ही सिफारिश हुई। जबकि 13 मार्च 2024 को नेता विपक्ष को 200 लोगों की सूची भेजी गई थी। धारा 5 के मुताबिक चुनाव प्रबंधन संचालन के तजुर्बे वाले को चुना जाना था, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने 26 पोस्टिंग में कभी चुनाव अधिकारी का काम नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई बाकी है। इससे पहले 2023 के अधिनियम को चुनौती देने वाली एक और अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरा है, जहां अभी वो थमता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
6: राहुल का ऐलान यही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक आर पार की लड़ाई जारी रहेगी। अब इस लड़ाई में आज इंडिया अलायंस का शक्ति प्रदर्शन है। राहुल की अगुवाई में इंडिया अलायंस की पूरी टीम आज फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलेगी।
1: दिल्ली में राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर मोर्चा संभाल रखा है। ऐलान यही है कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं होता, तब तक विपक्षी दलों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता कल दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में राहुल गांधी की अगुवाई में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। तो दूसरी तरफ सीजेपी ने आज बेंगलुरु में इसी मुद्दे पर प्रदर्शन किया और 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर धरना देने के लिए अभिजीत दिपके दिल्ली पहुंचेंगे। मतलब इंडिया गठबंधन और सीजेपी ज्ञानेश कुमार पर चढ़ाई बोलने के लिए आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है।
7: पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह, मोहन भगवत, ज्ञानेश कुमार ने मिलकर वोट खत्म कर दिया। ये देश को बात समझ आ गई। एक प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने देश को हाईजैक कर दिया और हम संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने।

0: तेजस्वी यादव राजभवन मार्च करने के लिए निकल चुके हैं। देखिए इस पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं। ये तस्वीर देखिए, तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी भी है जो बैरिकेडिंग पार कर चुके हैं। और ये तस्वीर देखिए, अब राजभवन की ओर बढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे तेजस्वी यादव। देखिए काले कुर्ते में तेजस्वी यादव है और बैरिकेडिंग को पार करते हुए अब तेजस्वी यादव आगे बढ़ चुके हैं। ये देखिए तस्वीर तेजस्वी यादव की, जो अब आगे बढ़ चुके हैं तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव पुलिस ने रोकने की पूरी कोशिश की।
1: पटना में तेजस्वी यादव ने 9 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन की झांकी दिखा दी है। दावा यही है कि अब विपक्ष रुकने वाला नहीं है।
0: बैरिकेडिंग कर दी गई है, कैसे जाइएगा चारों ओर?
2: सरकार बेईमानों को बचाने में लगी हुई है, जनता जाग चुकी है।

0: कुमार को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए टाइम मांगा है। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल का कहना है कि अभी राष्ट्रपति भवन से कोई संदेश नहीं आया है, लेकिन इसी मुलाकात को लेकर ममता बनर्जी दिल्ली आई हैं।
1: हमको जाने के लिए बोला, हम जा रहा है। तो अगर हमारा नाम भी इनकार में किया, मैंने पहले सोचा था नहीं जाएंगे, अभी सबको भेज देंगे, लेकिन वो लोगों ने मेरे को विनती किया है कि हमको जाना चाहिए, हमारा नाम दिया है, तो इसी के लिए अभी जो मूवमेंट चल रहा है चारिटी का, तो अगर उसका साथ नहीं रहेगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना, तो इसी के लिए बंगाल का जनता भी चाहते।
0: विपक्ष को उम्मीद है कि कल तक मुलाकात का वक्त मिल सकता है, मतलब इंडिया गठबंधन के नेता ज्ञानेश कुमार को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। अगर मुलाकात नहीं हुई तो दिल्ली में बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। विपक्ष राहुल की अगुवाई में इस मुद्दे पर लामबंद है और राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर अड़े हैं।
2: मेरे पास 45 FIR है, मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 FIR लगे, हर FIR मेरे लिए एक मेडल। मेरे पास 45 FIR है, मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 FIR लगे, हर FIR मेरे लिए एक मेडल है।
0: 3 दिन से राहुल गांधी सड़क पर डटे हुए हैं, तो CJP ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में एक्टर प्रकाश राज समेत कई लोग शामिल हुए। दीपके ने जंतर मंतर पहुंचने से पहले साफ कर दिया है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये लड़ाई अभी थमने वाली नहीं है। दरअसल दीपके ने 2 अक्टूबर को ऐलान किया था, अगर ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो देश भर के CJP समर्थक दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेंगे। बड़ी बात यह है कि 10 अक्टूबर के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से CJP को जंतर मंतर जाने की इजाजत नहीं मिली है, लेकिन दीपके का कहना है कि पुलिस ने रोका तो उसी जगह को जंतर मंतर बना देंगे।
3: दिल्ली जा रहे हम ये जानते हुए कि हमें डिटेन या अरेस्ट किया जा सकता है, उसके बाद भी जा रहे हैं। सो वी आर नॉट प्लेइंग सेफ, वी आर रेडी टू रिस्क एवरीथिंग टू सेव द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री।
0: जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर अभिजीत दीपके की 3 मांगे हैं। पहली मांग, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और आपराधिक मुकदमा। दूसरी मांग, देश भर में जारी SIR की प्रक्रिया तुरंत बंद होनी चाहिए। तीसरी मांग, मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति का सिस्टम बदले। दरअसल दीपके ने वोटर लिस्ट की SIR में कथित गड़बड़ियों का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयोग की ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। मतलब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब दीपके मुख्य चुनाव आयोग के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आर पार की लड़ाई लड़ने महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे हैं। दावा यही है कि देश का जेंजी अब चुनावी सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर करके ही दम लेगा।
4: अक्टूबर से देश बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन देखने वाला है देश के युवाओं का, क्योंकि भले ही कांग्रेस जनता पार्टी ने ये कॉल दिया हो, लेकिन ये कॉल प्रोटेस्ट का देश के युवाओं का है, देश के जेंजी का है। देश का युवा 10 अक्टूबर से बाहर निकल रहा है एंड बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। जब तक ज्ञानू का रेजिग्नेशन नहीं हो जाता तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे, जब तक ये सिस्टम नहीं बदल जाए इलेक्टोरल सिस्टम तब तक हम लोग बाहर नहीं जाएंगे वापस।
0: बड़ी बात यह है कि दीपके ने ऐलान किया है कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरते, अगर पुलिस ने जंतर मंतर जाने से रोका और जेल भेजा तो भी ये आंदोलन रुकेगा नहीं।
3: मैं कहना चाहता हूँ कि अरेस्ट करना है तो कर लो यार, यही बैठा हूँ मैं, उठा लो, 3 महीने नहीं 6 महीने रख दो, 1 साल रख दो, NSA लगाना है NSA लगा दो, UAPA लगाना है UAPA लगा दो, जो लगाना है लगा दो। अगर आपको लगता है अरेस्ट की धमकियां देकर या जेल का डर दिखाकर हम चुपचाप बैठेंगे तो ऐसा नहीं है।
5: विपक्ष का विरोध प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, देश भर में चुनाव आयोग और आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन चल रहा है। वहीं CJP ने भी बेंगलुरु में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
0: लखनऊ से लेकर पटना तक, बेंगलुरु से लेकर जम्मू तक चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है, जहां कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल सड़कों पर उतरे और जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। पटना में RJD ने मोर्चा संभाला, तेजस्वी यादव के साथ मीसा भारती ने चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोला। इस दौरान सुरक्षा बलों और RJD के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई।
6: पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं, ये तस्वीर देखिए, तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी भी है जो बैरिकेडिंग पार कर चुके हैं, और ये तस्वीर देखिए अब राजभवन की ओर।

0: करने के लिए आगे बढ़ रहे तेजस्वी यादव। देखिए काले कुर्ते में तेजस्वी यादव हैं और बैरिकेडिंग को पार करते हुए अब तेजस्वी यादव आगे बढ़ चुके हैं।
1: सुरक्षा बलों ने तेजस्वी यादव, मीसा भारती समेत प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। उधर लखनऊ में भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नई प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा की अगुवाई में सड़कों पर उतरे, जहां सुरक्षा कर्मियों ने रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा रखी थी। कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए। इस दौरान सुरक्षा बल और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली।
2: कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों को पुलिस यहां से ले जाते हुए, चूंकि लगातार आप देखिए यहां पर पुलिस जो है वो लगातार प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने की बात कर रही है, और ऐसे में सभी जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं कि उनको पुलिस टांग कर ले जाती हुई, चूंकि सभी को हिरासत में डिटेन किया जा रहा है, और जिसी को लेकर जो कार्यकर्ता यहां पर मौजूद, अब देखिए कि यहां पर पुलिस पूरी तरीके से सभी कार्यकर्ताओं को, आराधना मिश्रा को यहां पर डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया है, और सभी हिरासत में लेने के बाद ले जाया जा रहा है, आगे डिटेन कर लिया गया है पुलिस के द्वारा, जिसको आगे ले जाया जा रहा है। अब ऐसे में यहां पर पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की जो है झड़प भी हो रही है लगातार, चूंकि आप देखिए तस्वीरों में।
1: बहरहाल चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है और ये लड़ाई अभी थमती नजर नहीं आ रही है। आज तक ब्यूरो।
3: अब यूपी की राजनीति की, जहां अखिलेश अयोध्या के दौरे पर थे, अखिलेश ने योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी, तो वहीं बीजेपी अखिलेश के रामलला के दर्शन न करने पर सवाल खड़े कर रही है।
4: राम मंदिर को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच अखिलेश की ये तस्वीर अयोध्या से आई, जहां वो यूपी विधानसभा में एसपी की ओर से घोषित पहले उम्मीदवार पवन पांडे के घर पर आयोजित श्री मद्भागवत ज्ञान यज्ञ में शामिल होने पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी।
5: सुनने में आ रहा है उन्हें अयोध्या में कोई नया प्रत्याशी ही नहीं मिल पा रहा है, और जो बड़े बड़े दावे करते हैं और जो बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही अस्वस्थ हैं, तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़ करके दिखाएं। और दूध का दूध, पानी का पानी करने का झूठा वादा करने वाले का पानी जनता उतार देगी इस बार। इस बार अयोध्या ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता धर्म धन चुराने वालों को बख्शेगी नहीं।
4: अयोध्या से अखिलेश ने मोदी सरकार और ज्ञानेश कुमार को भी सीख दी।
5: आज के सत्ताधीश और चुनाव आयोग को कृष्ण भगवान से सीखना चाहिए कि राज छल से नहीं, प्रेम और जनमत से मिलता है। कृष्ण जी ने कभी छल से हसनापुर की गद्दी दिलवाने का और भी प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो धर्म के पक्ष में खड़े होकर पांडवों को न्याय दिलाने का काम किया था।
4: अखिलेश अयोध्या तो गए, लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं गए, जिसे लेकर विरोधी उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं।
6: ना उनको राम प्यारे हैं, ना कृष्ण प्यारे हैं। कहते तो हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन ना वो मथुरा जाते हैं दर्शन करने, ना अयोध्या भगवान राम का दर्शन करने जाते हैं। इस नाते उनको डर है कि कहीं मुसलमान हमारा साथ छोड़ के चला न जाए।
7: तुष्टिकरण के मास्टरमाइंड अखिलेश यादव प्रभु श्री राम लला के दर्शन के लिए जाते। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों के खून से सरयू को लाल कर दिया था।
8: माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, जाएंगे प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, और प्रभु श्री राम इस बात का आशीर्वाद भी देंगे कि जो चोरी करने वाले हैं मंदिर में, जिन्होंने राम मंदिर की मर्यादा को तार तार किया है, इनकी विदाई उत्तर प्रदेश और देश से हो जाए।
4: अब समाजवादी पार्टी अखिलेश के रामलला में दर्शन न करने की अपनी वजह बता रही है।
9: ये जग जाहिर है, सर्वविदित है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इटावा में बहुत भव्य मंदिर बनवा रहे हैं, बहुत भव्य, और ये करीब करीब बनके तैयार है, इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो माननीय अखिलेश जी, सब परिवार प्रभु श्री राम के मंदिर आएंगे और दर्शन करेंगे।
4: अखिलेश 5 साल बाद अयोध्या के दौरे पर गए हैं। इससे पहले अखिलेश 2021 में अयोध्या गए थे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए थे और संतों का आशीर्वाद भी लिया था। लेकिन राम मंदिर का निर्माण शुरू होने और उसके उद्घाटन के बाद से ये अखिलेश का पहला अयोध्या दौरा था। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
3: अब खबर बाजार की, क्या है शेयर मार्केट का हाल और कहां पहुंचे सोने चांदी के भाव, देखिए।
4: कारोबार के दौरान घरेलू शेयर बाजार आज लगातार दूसरे दिन तेज गिरावट के साथ बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स 1045 अंक टूटकर 71593 और निफ्टी 371 अंक की गिरावट के साथ 22232 पर बंद हुआ। आरबीआई की सख्त पॉलिसी और कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी से बाजार पर दबाव रहा। इसके अलावा विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और ऊंची बॉन्ड यील्ड ने भी बाजार का सेंटिमेंट कमजोर किया। एफआईआई ने बुधवार को 6,121 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की। शेयर बाजार में तेज गिरावट के साथ रुपया भी कमजोर हुआ और डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे कमजोर होकर 96.88 पर बंद हुआ। महंगे कच्चे तेल, मजबूत डॉलर और ग्लोबल बाजारों में रिस्क ऑफ माहौल से रुपए पर दबाव बढ़ा। पश्चिम एशिया में तनाव और कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर चिंता ने भी रुपए की कमजोरी बढ़ाई। वहीं सर्राफा बाजार में सोने चांदी में गिरावट रही और सोना 304 रुपए गिरकर 1,47,463 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 2,821 रुपए गिरकर 2,18,045 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। महंगे कच्चे तेल और मजबूत डॉलर के साथ ऊंची बॉन्ड यील्ड ने सोने चांदी पर दबाव बनाया। ग्लोबल बाजारों में रिस्क ऑफ माहौल ने भी बुलियन की कीमतों को कमजोर किया।
3: 75 वर्ष की उम्र में नाना पाटेकर का निधन हो गया। गोवा में उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और जब तक अस्पताल पहुंचते उनकी मौत हो गई। हिंदी सिनेमा में बहुत कम ऐसे कलाकार हुए हैं जिनके डायलॉग्स पर थिएटर में तालियां और सीटियां गूंजती हैं। नाना ऐसे ही कलाकार थे।
10: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे। जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी।
4: हिंदी सिनेमा का क्रांतिवीर चला गया। नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में गोवा में निधन हुआ। घर पर कार्डियक अरेस्ट हुआ, करीब 45 मिनट तक सीपीआर दी गई लेकिन बचाया नहीं जा सका।
11: 5:20 को डिक्लेयर किया कि
4: यह है नाना पाटेकर का वो आखिरी वीडियो जिसे 4 दिन पहले का बताया जा रहा है। इसमें वो कुछ कलाकारों के साथ दिख रहे हैं। नाना पाटेकर ने अपने 48 साल लंबे करियर में करीब 100 फिल्में की। कोई ये कह सकता है कि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया, लेकिन नाना ने जो भी फिल्में की अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी कि हर कोई उनके अभिनय का कायल हो गया।
12: ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता। चले, बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला।
4: 1994 में आई क्रांतिवीर का प्रताप उस दौर का एक आइकॉनिक रोल था जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। दर्शकों को नाना पाटेकर की एक्टिंग बिल्कुल अलग इसलिए लगी क्योंकि ऐसा लगता था कि जैसे यह किरदार उनकी अपनी कहानी कह रहा हो। उस दौर के हिंदुस्तानी के दिल में दबा ज्वार बड़े पर्दे पर उतार रहा।
12: अगर एक बाप की औलाद है तो एक बार मेरे सामने आकर दिखा। अरे मुझे जलाने की बात छोड़, मैं तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा, ना तो तुझे जमीन नसीब होगी ना आसमां।
13: आप अच्छी तरह जानते हैं कि
14: नाना पाटेकर के अभिनय की खासियत ये थी कि उनके किरदारों का गुस्सा और बेचैनी सिर्फ डायलॉग्स में नहीं दिखती थी, बल्कि वो अपनी आंखों और बॉडी लैंग्वेज से भी एक्टिंग करते दिखते थे। क्रांतिवीर से पहले तिरंगा आई, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले का किरदार उन्हें नई ऊंचाइयों पर लेकर गया।
13: मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून? ये कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है, इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं।
15: टेक हिम आउट ऑफ द कोर्ट।
14: नाना पाटेकर बहुत गरीबी से उठकर आए थे। ये अभिनय ही था जिसकी बदौलत एक सामान्य परिवार का शरारती लड़का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में समंदर जैसी भव्यता हासिल कर पाया। नाना के पिता गजानन पाटेकर मुंबई में कपड़े का कारोबार करते थे, लेकिन कारोबार में उन्हें किसी ने धोखा दिया और सब कुछ हड़प लिया। इसके बाद परिवार गरीबी में चला गया। परिवार का खर्च उठाने के लिए नाना पाटेकर पेंटर का काम करते थे। खुद बताते थे कि 8-8 किलोमीटर पैदल चलकर फिल्मों के पोस्टर पेंट करते थे। ऐसे मुश्किल हालात में नाना पाटेकर का बचपन बीता। बचपन में सेना में जाना चाहते थे, लेकिन परिवार ने जाने नहीं दिया। लेकिन सेना को लेकर नाना पाटेकर का जज्बा उनके फिल्म प्रहार में भी दिखता है।
16: कमांडर,

0: चलो क्या प्रॉब्लम है? चलो
1: सर वो हाइट की प्रॉब्लम है, डर लगता है सर।
0: क्या डर? चलो हाँ क्या प्रॉब्लम है? क्या है? या ऐसे पकड़ो या ऐसे जाओ। क्या है? हाँ
2: नाना के अभिनय की शुरुआत नाटक से हुई और यहीं से स्मिता पाटिल उन्हें फिल्मों में लेकर आईं और एक बार जब वो फिल्मों में आए तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। नाना पाटेकर उस दौर के बाकी अभिनेताओं की तरह चॉकलेटी हीरो नहीं थे, इसीलिए जब वो पर्दे पर आए तो लोगों को भी यह लगा कि उनके ही बीच का कोई शख्स है। परिंदा में डॉन अन्ना बनकर जब वो आग से डरते हैं तो ये सीन आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। नाना पाटेकर की एक्टिंग में बहुत से शेड्स हैं। क्रांतिवीर, परिंदा, प्रहार और तिरंगा में जो शेड है वो 1990 में आई फिल्म थोड़ा सा रुमानी हो जाए में बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये भी नाना है।
3: मैं जानती हूँ कि मैं एक बिल्कुल मामूली साधारण सीधी सादी औरत हूँ।
4: साधारण मामूली सीधी सादी औरत?
3: हाँ।
4: कोई औरत ऐसी होती ही नहीं, हर औरत खूबसूरत होती है, अपने ढंग से होती है, लेकिन हर औरत सिर्फ खूबसूरत होती है।
3: नहीं मैं नहीं।
2: यही नाना पाटेकर इन फिल्मों में बिल्कुल एंग्री यंग मैन दिखते थे। पर्दे पर उन्हें नाचने वाले सीन बहुत कम मिलते थे, लेकिन जो भी गाने मिले उन्होंने उन्हें भी बखूबी निभाया।

0: नंद तू
1: कहाँ है चुनाव
2: 2002 में आई फिल्म शक्ति जिसमें नाना पाटेकर का बिल्कुल अलग किरदार था, अलग शेड था, एकदम बिहार की टोन पकड़े हुए, जो अपने पोते को अपने साथ रखना चाहता है ताकि वो वारिस बन सके।
1: चुनाव लड़ाया हमने, मिनिस्टर बनाया तो फूल के खरबूजा बन गया। गांव में सड़क ना, पानी नहीं, अस्पताल नहीं।
2: नाना पाटेकर का बिल्कुल एक और अलग शेड आया 2007 में आई फिल्म वेलकम में। किसी ने नहीं सोचा था कि अनीस बज्मी नाना पाटेकर से ऐसा कॉमिक किरदार कराएंगे जो अब तक एक कल्ट है। वेलकम में डॉन उदय शेट्टी का किरदार इतना हिट हुआ कि उनका एक एक डायलॉग अमर है।
3: वह सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है।
2: फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज्मी खुद बताते हैं कि नाना पाटेकर ने फिल्म साइन करने से पहले कहा था कि मैं एक कच्ची मिट्टी बनकर आऊंगा, मुझसे जो बनवाना है बनवा लेना, और उन्होंने ऐसा शानदार किरदार निभा दिया। एक आलू भी
1: कहां बैठा हूं, किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, समझ में नहीं।
3: कंट्रोल कंट्रोल उदय।
2: नाना पाटेकर का नाम पहले विश्वनाथ था जो बाद में नाना बन गए और भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर और सम्मानित अभिनेताओं में हमेशा हमेशा के लिए शामिल होकर अमर हो गए।
4: ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना।
3: मैं भी नाचा, मेरे को दो।
4: क्या है?
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

सीसी और ईसीआई के खिलाफ विपक्ष आज भी कर सकता है प्रदर्शन। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के सांसदों को सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होने को कहा गया। गठबंधन ने आज राष्ट्रपति से भी मांगा है मिलने का वक्त। दिल्ली में आकाशवाणी और जंतर मंतर के बाद राजघाट पर विपक्षी दलों ने किया प्रदर्शन। राहुल गांधी बोले, दिल्ली को हाईजैक करने वालों को मिलेगी सजा। बीजेपी ने किया पलटवार। जीएसटी काउंसिल के फैसले से व्यापारियों को बड़ी राहत। टैक्स अधिकारी अब सीधे नहीं कर पाएंगे गिरफ्तारी। मुकदमा चलाने की सीमा भी 1 करोड़ रुपए से 5 करोड़ हुई। भारत की बड़ी आईटी कंपनियों को अमेरिका एक झटका। इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया सस्पेंड। उपराष्ट्रपति वेंस का आरोप, कंपनियां वीजा धोखाधड़ी में शामिल। पंचतत्व में विलीन हुए नाना पाटेकर। पुणे में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। महाराष्ट्र के कई मंत्री भी शामिल। सीएम फडणवीस ने दी श्रद्धांजलि।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। मुंबई के आईआईटी बॉम्बे परिसर से इस वक्त की एक खबर, जहां पर एक निर्माणाधीन साइट के लेबर कैंप में गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से भीषण आग लग गई है। इस हादसे में 5 लोग झुलस गए हैं। घटना रात करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है और घायलों को पहले राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां से 4 लोगों को बेहतर इलाज के लिए कस्तूरबा अस्पताल रेफर भी किया गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल आग लगने के कारणों की अभी जांच की जा रही है। रात तकरीबन 10:30 बजे यह हादसा हुआ और जो लोग घायल हुए उनको अस्पताल में जहां भर्ती कराया गया, 4 घायलों को कस्तूरबा अस्पताल रेफर भी किया गया। अभी फिलहाल किन कारणों की वजह से यह आग लगी है इसकी जांच की जा रही है। अभी तक माना जा रहा है कि सिलेंडर लीक हुआ, जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ। 5 लोग इसमें झुलस गए और लेबर कैंप में चीख पुकार की आवाजें सुनाई दी गई। 10:30 बजे लगभग यह हादसा हुआ है। दरअसल आईआईटी बॉम्बे परिसर से ये खबर आपको बता रहे हैं। निर्माणाधीन साइट के लेबर कैंप में गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से भीषण आग लग गई, जिसमें 5 लोगों के झुलसने की खबर सामने आई।
1: मुंबई के पवई स्थित आईआईटी बॉम्बे के अंदर गैस सिलेंडर में लीकेज के बाद आग लग गई थी। इस हादसे में 5 लोगों के झुलसने की खबर है। इस वक्त हम मौजूद है आईआईटी बॉम्बे के पास, जहां पर देख सकते हैं ये आईआईटी बॉम्बे का अंदर जाने का रास्ता है। जो राजावाड़ी अस्पताल से जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक रात करीब 10:30 के करीब जो है सिलेंडर में लीकेज के बाद आग लगी थी। इस हादसे में कुल जो है 5 लोग जो है झुलस गए थे। सभी लोगों को यहां से राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उन सभी 5 में से 4 को बेहतर इलाज के लिए कस्तूरबा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 1 का इलाज जो है राजावाड़ी अस्पताल में ही चल रहा है।
0: तो वही 4 राज्यों में हुए 5 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव के वोटों की गिनती आज होगी। सुबह 8 बजे से संबंधित जिला मुख्यालयों पर कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी के बीच काउंटिंग शुरू होगी। नतीजे आज ही घोषित किए जाएंगे। तमिलनाडु की 1 और साथ ही पुडुचेरी की भी 1 सीट, वहीं पश्चिम बंगाल की 2 नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों और असम की नौगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम में बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि तमिलनाडु में टीवीके के लिए ये उपचुनाव काफी अहम माना जा रहा है। असम की नौगांव सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और एआईयूडीएफ के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है।

0: सुबह 8 बजे से गिनती की शुरुआत हो जाएगी। देखिए टीवीके के दोनों उम्मीदवारों की आज परीक्षा है। एआईएडीएमके के पूर्व विधायक टीवीके में शामिल हुए, ऐसे में 27 उम्मीदवार मैदान में है और 85.99% मतदान अभी तक हो चुका है। तो 6 सीटों पर आज परिणाम आने वाले हैं। लगभग सुबह 8 बजे से गिनती की प्रक्रिया वहां पर शुरू होने वाली है और अभी हाल ही में ही चुनाव भी हुए थे और अब उसी को लेकर काउंटिंग होगी और माना जा रहा है कि 85.99% मतदान इस बीच हुआ है। तो 27 उम्मीदवार लगभग मैदान में हैं और जिनकी किस्मत का आज फैसला होगा। 6 उपचुनावों की आज मतगणना, सुबह 8 बजे से गिनती की शुरुआत हो जाएगी। कड़ी सुरक्षा के बीच गिनती की जाएगी। मदुरांगतम, धारापुरम और पुडुचेरी की भी 1 सीट इसमें है। वहीं पश्चिम बंगाल की 2, नंदीग्राम और रेजीनगर जो कि एक अहम सीट है, उसके नतीजे आज आने वाले हैं। तो वहीं लगातार तीसरे दिन कांग्रेस और विपक्ष के नेता सड़कों पर उतरे। अब सवाल यह है कि आखिर इस लड़ाई को विपक्ष आगे कैसे लेकर जाएगा।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर अब कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन का डेली डोज देना शुरू कर दिया है।
2: नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने वोट चोरी की है और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी।
1: वैसे पिछले 2 दिनों से कांग्रेस ने इस आंदोलन में जो पैटर्न अख्तियार किया है उसमें पहले विपक्षी सांसदों को लंच के लिए बुलाया जा रहा है, वहीं पर फ्लैश फॉर्मूला बन रहा है और फिर सड़कों पर पुलिस वालों से दो दो हाथ। कल जनपद के आसपास हुआ था, आज कनॉट प्लेस के उत्तर की तरफ संग्राम था।
3: राहुल गांधी जो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी मांग क्या है और वो कितना कंफ्यूज है। 5-स्टार रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें खाने पे पहले बुलाया जाता है, लंच पॉलिटिक्स होती है, फिर वहाँ से खाने के बाद वॉक करने निकलते हैं, गिरफ्तारी देते हैं। तो ये कोई आंदोलन नहीं है, ये केवल देश में लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं।
1: हालांकि कल जिस लंच से इंडिया गठबंधन के बड़े घटक नदारद दिखे थे, आज उन्हें न्योता दिया गया है और सबने कबूल भी किया है। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने अब राजघाट की राह पकड़ी है। अगला रास्ता राष्ट्रपति भवन की ओर का है।
4: बेसिकली वी आस्क फॉर एन अपॉइंटमेंट फॉर 7, 8, 9, टुडे इज 8, वी विल वेट फॉर टुमारो।
5: वहीं पर हम सभी लोग बैठेंगे, धरना करेंगे।
1: उधर आज टीएमसी की ओर से अभिषेक बनर्जी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, वहीं ममता ने भी दिल्ली की ओर कूच कर दिया है।
6: प्रोग्राम क्या हम डिसाइड कर सकते हैं? हमको जाने के लिए बोला, हम जा रहा है, आप देख लीजिए क्या प्रोग्राम है। 8-9 को प्रेसिडेंट का पास, ऑल इंडिया जो इंडियन अलायंस है और सब लीडर को टाइम मांगा।
1: उधर बीजेपी इस पूरे मामले में इंडिया गठबंधन को घेरने की कोशिश कर रही है।
7: इसीलिए अगर भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है तो वो राहुल गांधी की मनमानी अराजकता से है। अगर भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मनमानी गुंडागर्दी से है।
1: सियासी आरोपों से सड़क के आंदोलन तक तमाम उपाय अपनाने के बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का उपाय कामयाब नजर नहीं आ रहा। ऐसे में एक बार फिर अदालत का रुख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में 14 मार्च 2024 को ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के फैसले को चुनौती दी गई है। आरोप है कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति अवैध है क्योंकि इसमें 2023 की नियुक्ति नियमावली अधिनियम की धारा 5, 6 और 8(1) का पालन नहीं किया गया। एक पद के लिए 5 नामों का पैनल बनाने का प्रावधान था, जबकि 2 पदों के लिए 10 की जगह कुल 6 नामों की ही सिफारिश हुई, जबकि 13 मार्च 2024 को नेता विपक्ष को 200 लोगों की सूची भेजी गई थी। धारा 5 के मुताबिक चुनाव प्रबंधन संचालन के तजुर्बे वाले को चुना जाना था, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने 26 पोस्टिंग में कभी चुनाव अधिकारी का काम नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई बाकी है। इससे पहले 2023 के अधिनियम को चुनौती देने वाली एक और अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरा है, जहां अभी वो थमता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
0: 75 साल की उम्र में नाना पाटेकर का निधन हो गया है। गोवा में उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और जब तक अस्पताल उनको पहुंचाया जाता उनकी मौत हो गई थी। हिंदी सिनेमा में बहुत कम कलाकार ऐसे हुए हैं जिनके डायलॉग पर थिएटर में तालियां और सीटियां गूंजती हैं। नाना पाटेकर ऐसे ही कलाकार थे।
8: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी।
1: हिंदी सिनेमा का क्रांतिवीर चला गया। नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में गोवा में निधन हुआ। घर पर कार्डियक अरेस्ट हुआ, करीब 45 मिनट तक सीपीआर दी गई लेकिन बचाया नहीं जा सका।
9: 5:20 को डिक्लेयर किया कि
1: यह है नाना पाटेकर का वो आखिरी वीडियो जिसे 4 दिन पहले का बताया जा रहा है। इसमें वो कुछ कलाकारों के साथ दिख रहे हैं। नाना पाटेकर ने अपने 48 साल लंबे करियर में करीब 100 फिल्में की। कोई ये कह सकता है कि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया, लेकिन नाना ने जो भी फिल्में की अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी कि हर कोई उनके अभिनय का कायल हो गया।
8: ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता साले, बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला।
1: 1994 में आई क्रांतिवीर का प्रताप उस दौर का एक आइकॉनिक रोल था जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। दर्शकों को नाना पाटेकर की एक्टिंग बिल्कुल अलग इसलिए लगी क्योंकि ऐसा लगता था कि जैसे यह किरदार उनकी अपनी कहानी कह रहा हो। उस दौर के हिंदुस्तानी के दिल में दबा ज्वार बड़े पर्दे पर उतार रहा।
8: अगर एक बाप की औलाद है तो एक बार मेरे सामने आकर दिखा। अरे मुझे जलाने की बात छोड़, मैं तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा, ना तो तुझे जमीन नसीब होगी ना आसमां। आप अच्छी तरह जानते हैं कि
1: नाना पाटेकर के अभिनय की खासियत ये थी कि उनके किरदारों का गुस्सा और बेचैनी सिर्फ डायलॉग्स में नहीं दिखती थी बल्कि वो अपनी आंखों और बॉडी लैंग्वेज से भी एक्टिंग करते दिखते थे। क्रांतिवीर से पहले तिरंगा आई जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले का किरदार उन्हें नई ऊंचाइयों पर लेकर गया।
8: मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून, ये कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है। इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं।
10: टेक हिम आउट ऑफ द कोर्ट।
1: नाना पाटेकर बहुत गरीबी से उठकर आए थे। ये अभिनय ही था जिसकी बदौलत एक सामान्य परिवार का शरारती लड़का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में समंदर जैसी भव्यता हासिल कर पाया। नाना के पिता गजानन पाटेकर मुंबई में कपड़े का कारोबार करते थे लेकिन कारोबार में उन्हें किसी ने धोखा दिया और सब कुछ हड़प लिया। इसके बाद परिवार गरीबी में चला गया। परिवार का खर्च उठाने के लिए नाना पाटेकर पेंटर का काम करते थे। खुद बताते थे कि 8-8 किलोमीटर पैदल चलकर फिल्मों के पोस्टर पेंट करते थे। ऐसे मुश्किल हालात में नाना पाटेकर का बचपन बीता। बचपन में सेना में जाना चाहते थे लेकिन परिवार ने जाने नहीं दिया। लेकिन सेना को लेकर नाना पाटेकर का जज्बा उनके फिल्म प्रहार में भी दिखता है।
11: कमांडर,

0: चलो क्या प्रॉब्लम है? चलो
1: सर, वो हाइट की प्रॉब्लम है, डर लग रहा है सर।
0: क्या डर?
1: चलो
0: क्या प्रॉब्लम है? क्या है? या ऐसे पकड़ो या ऐसे जाओ। क्या है?
2: नाना के अभिनय की शुरुआत नाटक से हुई और यहीं से स्मिता पाटिल उन्हें फिल्मों में लेकर आईं, और एक बार जब वो फिल्मों में आए तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। नाना पाटेकर उस दौर के बाकी अभिनेताओं की तरह चॉकलेटी हीरो नहीं थे, इसीलिए जब वो पर्दे पर आए तो लोगों को भी यह लगा कि उनके ही बीच का कोई शख्स है। परिंदा में डॉन अन्ना बनकर जब वो आग से डरते हैं तो ये सीन आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। नाना पाटेकर की एक्टिंग में बहुत से शेड्स हैं। क्रांतिवीर, परिंदा, प्रहार और तिरंगा में जो शेड है वो 1990 में आई फिल्म थोड़ा सा रुमानी हो जाए में बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये भी नाना है।
3: मैं जानती हूँ कि मैं एक बिल्कुल मामूली साधारण सीधी सादी औरत हूँ।
4: साधारण मामूली सीधी सादी औरत?
3: हाँ।
4: कोई औरत ऐसी होती ही नहीं, हर औरत खूबसूरत होती है, अपने ढंग से होती है, लेकिन हर औरत सिर्फ खूबसूरत होती है।
3: नहीं, मैं नहीं।
2: यही नाना पाटेकर इन फिल्मों में बिल्कुल एंग्री यंग मैन दिखते थे। पर्दे पर उन्हें नाचने वाले सीन बहुत कम मिलते थे, लेकिन जो भी गाने मिले उन्होंने उन्हें भी बखूबी निभाया।

0: ചാക്കല്ല.
1: चुनाव
2: 2002 में आई फिल्म शक्ति, जिसमें नाना पाटेकर का बिल्कुल अलग किरदार था, अलग शेड था, एकदम बिहार की टोन पकड़े हुए, जो अपने पोते को अपने साथ रखना चाहता है ताकि वो वारिस बन सके.
1: चुनाव लड़ाया हमने, मिनिस्टर बनाया तो फूल के खरबूजा बन गया. गांव में सड़क नहीं, पानी नहीं, अस्पताल नहीं.
2: नाना पाटेकर का बिल्कुल एक और अलग शेड आया 2007 में आई फिल्म वेलकम में. किसी ने नहीं सोचा था कि अनीस बज्मी नाना पाटेकर से ऐसा कॉमिक किरदार कराएंगे जो अब तक एक कल्ट है. वेलकम में डॉन उदय शेट्टी का किरदार इतना हिट हुआ कि उनका एक एक डायलॉग अमर है.
3: दवा सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है.
2: फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज्मी खुद बताते हैं कि नाना पाटेकर ने फिल्म साइन करने से पहले कहा था कि मैं एक कच्ची मिट्टी बनकर आऊंगा, मुझसे जो बनवाना है बनवा लेना, और उन्होंने ऐसा शानदार किरदार निभा दिया. एक आलू भी
1: का है. कहां बैठा हूं, किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, समझ में नहीं.
3: कंट्रोल कंट्रोल उदय.
2: नाना पाटेकर का नाम पहले विश्वनाथ था, जो बाद में नाना बन गए और भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर और सम्मानित अभिनेताओं में हमेशा हमेशा के लिए शामिल होकर अमर हो गए.
4: ए देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना.
1: मैं भी नाचा, मेरे को दो.
4: क्या है
5: खबरों में, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का. आप देखते रहिए आज तक.
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से.

0: गोमती नदी की बाढ़ में डूबा लखनऊ का फैजुल्लागंज इलाका। पानी लोगों के घरों में अड्डा जमा चुका है, कई लोगों ने छतों पर आसरा ले रखा है। चारों तरफ पानी ही पानी और बाढ़ की आपदा से हैरान परेशान है।
1: राजधानी लखनऊ और फैजुल्लागंज का ये एरिया जहां मैं इस समय मौजूद हूं, वहां पर आप देख सकते हैं पानी अभी इससे ज्यादा भी आगे है। अभी हम शुरुआत में है और वहां पर पानी का स्तर ये है कि हमारे घुटनों तक पानी आ गया है।
0: फैजुल्लागंज के लोग मुश्किल में हैं। जिनके आसपास रिश्तेदार हैं वो वहां शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन घरों की रखवाली के लिए कई लोग अभी भी बस्ती में हैं। नगर निगम और प्रशासन की टीमें इलाके में मुस्तैद नजर आ रही हैं। लोगों को चिकित्सा सहायता देने के लिए एक शिविर बनाया गया है, तो पल पल की जानकारी के लिए एक अस्थायी कॉल सेंटर भी यहां काम कर रहा है।
2: यहां जो कंट्रोल रूम बना हुआ है, यहां पे हमारे अमीनों लगे हुए हैं। 6 नंबर्स हैं जिसपे जिनको भी शिकायतें होती हैं वो उस नंबर पे कॉल करके यहां शिकायतें दर्ज कराते हैं। शिकायतें ये लोग दर्ज करने के पश्चात जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस व्हाट्सएप ग्रुप में इसको डाला जाता है, उनकी लोकेशन, उनकी क्या डिमांड है, उनके नाम पते के साथ। फिर हमारे जो लेखपाल लगे हैं वो उसको ट्रैक करके संबंधित लेखपालों को उस बोर्ड के माध्यम से भेजा जाता है, उनको राहत सामग्री जो भी चाहिए होता है।
1: वैसे में प्रशासन 24/7 काम कर रहा है। इस बाढ़ में कब तक पानी कम होगा ये तो नहीं पता है, लेकिन जिस स्तर पर पानी बढ़ा हुआ ऐसे में लोगों के लिए अभी मुश्किलें थमती नजर नहीं आ रही हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

2000 रुपए से ज्यादा की यूपीआई मर्चेंट पेमेंट पर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 15 अक्टूबर से चुनिंदा 2000 रुपए से ऊपर के P2M यानी परसेंट टू मर्चेंट यूपीआई पेमेंट पर 0.4% MDR लागू होगा। हालांकि ये मर्चेंट से पेमेंट इकोसिस्टम में लिया जाने वाला MDR है और सरकार ने कहा है कि इसे ग्राहक पर नहीं डाला जा सकता, लेकिन अगर किसी मर्चेंट ने ये लागत ग्राहक से वसूलने की कोशिश की तो उसका असर यूपीआई की डिमांड पर पड़ सकता है। लोकल सर्कल्स के सर्वे के मुताबिक इस चार्ज से यूपीआई ट्रांजैक्शन की मंथली वैल्यू में 10% तक गिरावट का अनुमान है। वहीं मंथली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में 4% तक कमी की आशंका है और केवल 14% यूजर्स ही 2000 रुपए से ज्यादा का यूपीआई पेमेंट जारी रखते हुए एक्स्ट्रा रकम देने को तैयार होंगे। अगर मर्चेंट MDR का बोझ ग्राहक पर डालते हैं तो लोकल सर्कल्स के सर्वे में दावा किया गया है कि 27% लोग कैश की तरफ चले जाएंगे, वहीं 26% क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे जबकि 14% डेबिट कार्ड चुनेंगे। इसी तरह 4% लोग बैंक ट्रांसफर NEFT या IMPS का इस्तेमाल करेंगे। कुल मिलाकर 76% यूजर्स बड़े पेमेंट के लिए दूसरे विकल्पों पर जाने की बात कह रहे हैं। यानी खतरा UPI पर चार्ज लगने से ज्यादा इस बात का है कि अगर ये लागत ग्राहक तक पहुंची तो बड़े पेमेंट में लोग UPI से दूरी बना सकते हैं। ऐसे में बड़े पेमेंट को लेकर मर्चेंट की चिंता बरकरार है। सर्वे के मुताबिक 41% मर्चेंट्स 2000 रुपए से ऊपर के UPI पेमेंट पर कोई MDR देने को तैयार नहीं है। वहीं केवल 17% 0.4% MDR वहन करने को तैयार है जबकि 15% अधिकतम 0.04% MDR देने को तैयार है और 9% मर्चेंट्स UPI पेमेंट स्वीकार ही नहीं करते हैं। UPI की ताकत को आंकड़ों के नजरिए से समझें तो अगस्त में UPI पर कुल 24.51 अरब ट्रांजैक्शन हुए जिनकी वैल्यू 29.82 ट्रिलियन रुपए रही। इसमें मर्चेंट पेमेंट्स की वैल्यू 8.95 ट्रिलियन रुपए थी और मर्चेंट ट्रांजैक्शन की कुल वैल्यू में 2000 रुपए से ऊपर के पेमेंट की हिस्सेदारी 67% थी। फिलहाल सरकार की कोशिश है कि MDR का बोझ सीधे ग्राहकों पर ना आए। सरकार और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के बीच ऐसा मैकेनिज्म तैयार करने पर काम हुआ है जिससे मर्चेंट्स की तरफ से ग्राहक से कोई एक्स्ट्रा चार्ज लेने की कोशिश पर नजर रखी जा सके। आदित्य के राणा आज तक।

0: अयोध्या के रसूलाबाद में भगवत भक्ति का मंच सजा है, जहां हजारों हजार की तादाद में भक्त हैं, मंच पर महंत हैं, समाजवादी रंग के गुब्बारों से सजे पंडाल हैं, श्री राधे कृष्ण की भक्ति है, नेता हैं, समर्थक हैं, ये चुनावी सियासत की शक्ति है। अयोध्या में रामलला के मंदिर से महज 10 से 12 किलोमीटर दूर ये भक्ति कथा का पंडाल पिछले हफ्ते भर से सजा है। यहाँ इलाके के समाजवादी पार्टी उम्मीदवार तेज नारायण उर्फ पवन पांडे रोज कथा सुन रहे हैं, आरती भजन पूजन कर रहे हैं, और अब इसी मंच पर अखिलेश यादव का इंतजार है, क्योंकि भक्ति कथा की शुरुआत से पहले ही पवन पांडे ने अखिलेश और डिंपल को इस पुण्य आयोजन का निमंत्रण सार्वजनिक तौर पर दे रखा था।
1: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आगमन हो रहा है, वो कथा का श्रवण करेंगे, व्यास पीठ से आशीर्वाद लेंगे और देवकुल क्षेत्रवासियों का सम्मान भी करेंगे।
0: अखिलेश यादव अयोध्या में जिस जगह पर भागवत कथा सुनने पहुंच रहे हैं, वहां से श्रीराम जन्मभूमि मंदिर बमुश्किल 12 किलोमीटर दूर है, लेकिन खबर है कि अखिलेश रामलला के दर्शन करने नहीं जाएंगे। हालांकि चर्चा है कि अखिलेश यादव अपने अयोध्या दौरे पर राम जन्मभूमि मंदिर तो नहीं, लेकिन हनुमानगढ़ी मंदिर दर्शन करने जा सकते हैं। इससे पहले 2022 के चुनाव के दौरान 25 फरवरी को अखिलेश यादव हनुमानगढ़ी गए थे और गदा हाथ में लेकर संतों का आशीर्वाद भी लिया था। अखिलेश रामलला के दर्शन करने जाएं या ना जाएं, उनकी सहयोगी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय एक दिन पहले ही अयोध्या दौरे से लौटे हैं और उन्होंने रामलला के दर्शन भी किए हैं। अजय राय सलाह देते हैं कि अयोध्या की पावन भूमि पर आने वालों को भगवान राम के दर्शन जरूर कर लेने चाहिए।
2: अब तो उनकी अपनी इच्छा है, पर अयोध्या धार्मिक नगरी है, ये धर्म की नगरी है, सभी के लिए भगवान का आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद मिलता है।
3: चुनाव तो लेकिन राम जी के नाम पे एक बार लड़ रहे हैं, तो राम जी का दर्शन भी नहीं करने जा रहे
2: हैं। भगवान राम तो कणकण में विराजमान है, हम सबके दिल में भगवान राम है और भगवान का स्मरण करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए।
0: दरअसल 2027 के चुनाव करीब आते ही सियासी दलों और नेताओं का धर्म प्रेम सार्वजनिक रूप से दिखने लगा है, और इसके पीछे कहीं न कहीं वोट जोड़ने का लक्ष्य नजर आता है। चाहे वो अयोध्या से 100-125 किलोमीटर दूर रायबरेली के ऊंचा हार में यूपी के मंत्री मनोज पांडे की ओर से कराई गई शिव महापुराण कथा हो, या फिर समाजवादी पार्टी नेता पवन पांडे की ओर से कराई जा रही भागवत कथा। प्रखर हिंदुत्व बनाम सॉफ्ट हिंदुत्व की इस सियासी पेशगी में हर दल की नजर वोटर पर है। दरअसल जिस मनोज पांडे की ओर से आयोजित कथा के मंच पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए थे, वो मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के ही नेता थे, लेकिन पाला बदलने के बाद रायबरेली के इलाके में बीजेपी के पास एक मजबूत ब्राह्मण चेहरा था, जिसके पास समाजवादी पार्टी का पारंपरिक गैर यादव वोट बैंक भी था। अब अखिलेश ने उसी का मुकाबला करते हुए ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पवन पांडे को यूपी चुनाव का सबसे पहला उम्मीदवार अयोध्या सीट से घोषित कर रखा है। मयंक शुक्ला के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।

0: नहीं पड़े
1: नहीं,
0: है।
1: नहीं, नहीं।
2: फ्लाइट में कम से कम सफर करें मेरे हिसाब से भाई, ट्रैवल एजेंट कोई गांजा फूंक के चला रहा है, कोई चाकू लेके घुस रहा है, क्या हो रहा है ये?
3: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदी हैं।
2: तुम्हारा
3: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदी हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं।
0: यार काट देना।

0: सीसी और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ विपक्ष आज भी कर सकता है प्रदर्शन। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के सांसदों को सेंट्रल हॉल में इकट्ठा करने को कहा गया। गठबंधन ने आज राष्ट्रपति से भी मांगा है मिलने का वक्त। दिल्ली में राजघाट पर विपक्षी दलों ने किया प्रदर्शन। राहुल गांधी बोले, देश को हाईजैक करने वालों को मिलेगी सजा। बीजेपी बोली, ये लोग जनता का भरोसा खो चुके। जीएसटी काउंसिल के फैसले से व्यापारियों को बड़ी राहत। टैक्स अधिकारी अब सीधे नहीं कर पाएंगे गिरफ्तारी। मुकदमा चलाने की सीमा भी 1 करोड़ रुपए से 5 करोड़ हुई। भारत की बड़ी आईटी कंपनियों को अमेरिकी झटका। इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया सस्पेंड। उपराष्ट्रपति वेंस का आरोप, कंपनियां वीजा धोखाधड़ी में शामिल। पंचतत्व में विलीन हुए नाना पाटेकर। पुणे में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार और एकनाथ शिंदे मौजूद थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ। 4 राज्यों में हुए 5 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव के वोटों की गिनती आज होगी। सुबह 8 बजे से संबंधित जिला मुख्यालयों पर कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी के बीच काउंटिंग की शुरुआत होने वाली है। नतीजे आज ही घोषित कर दिए जाएंगे। तो वहीं तमिलनाडु की मदुरांगतम और धरापुरम यानी 2 सीटों पर आज नतीजे आने वाले हैं। तो देखिए, 6 सीटों पर आज जारी होगा परिणाम। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में 1 सीट पर। मदुरांगतम की बात करें तो टीवीके के दोनों उम्मीदवारों की परीक्षा है। एआईएडीएमके के पूर्व विधायक टीवीके में शामिल हुए। ऐसे में 27 उम्मीदवार इस बीच मैदान में है इस सीट को लेकर, और 85.99% मतदान इसमें हो भी चुका है। तमिलनाडु की धरापुरम को लेकर बात करें तो टीवीके के लिए यहां पर भी चुनावी परीक्षा अहम है। 30 उम्मीदवार यहां से मैदान में है और 80.31% मतदान यहां हो चुका है। वहीं पुडुचेरी में 1 सीट पर चुनाव हुआ। सीट पूर्व सीएम एन रंगस्वामी के इस्तीफे से खाली हुई थी और 80.81% मतदान यहां हो चुका है और मुकाबले पर यहां पर भी सबकी नजर रहेगी। वहीं पश्चिम बंगाल में 2 सीट जिसमें नंदीग्राम की बात की जाए तो बीजेपी और टीएमसी का सीधा मुकाबला यहां देखने को मिलेगा। मेदिनीपुर में वर्चस्व की लड़ाई है और शुभेंदु अधिकारी के सीट छोड़ने के से ही उपचुनाव यहां पर हुआ। वहीं रेजीनगर की बात करें, यह भी एक अहम सीट है जहां पर टीएमसी और बीजेपी समेत कई दल मैदान में है। हुमायूं कबीर के विवादित बयान से यह सीट काफी ज्यादा चर्चा में आई। पुलिसकर्मियों को कथित धमकी का मामला भी यहां पर सामने आया। असम में नौगांव में लोकसभा चुनाव और उसको लेकर आज रिजल्ट जारी होंगे। बीजेपी और कांग्रेस और साथ ही AIUDF के बीच टक्कर है। कांग्रेस सांसद के बीजेपी में जाने के बाद ही यह सीट खाली हुई और त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। तो 6 सीटों को लेकर आज चुनावी परिणाम आने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों और असम की नौगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था जिसके आज परिणाम घोषित किए जाएंगे। वहीं लगातार 3रे दिन कांग्रेस और विपक्ष के नेता सड़कों पर उतरे। अब सवाल यह है कि आखिर इस लड़ाई को विपक्ष आगे कैसे लेकर जाएगा।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर अब कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन का डेली डोज देना शुरू कर दिया है।
2: नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने वोट चोरी की है और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी। दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी।
1: वैसे पिछले 2 दिनों से कांग्रेस ने इस आंदोलन में जो पैटर्न अख्तियार किया है उसमें पहले विपक्षी सांसदों को लंच के लिए बुलाया जा रहा है, वहीं पर फ्लैश फॉर्मूला बन रहा है और फिर सड़कों पर पुलिस वालों से 2-2 हाथ। कल जनपद के आसपास हुआ था, आज कनॉट प्लेस के उत्तर की तरफ संग्राम था।
3: राहुल गांधी जो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनकी मांग क्या है और वो कितना कंफ्यूज है। 5-स्टार रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें खाने पे पहले बुलाया जाता है, लंच पॉलिटिक्स होती है, फिर वहाँ से खाने के बाद वॉक करने निकलते हैं, गिरफ्तारी देते हैं। तो ये कोई आंदोलन नहीं है, ये केवल देश में लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं।
1: हालांकि कल जिस लंच से इंडिया गठबंधन के बड़े घटक नदारद दिखे थे, आज उन्हें न्योता दिया गया है और सबने कबूल भी किया है। ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने अब राजघाट की राह पकड़ी है। अगला रास्ता राष्ट्रपति भवन की ओर का है।
4: बेसिकली वी आस्क फॉर एन अपॉइंटमेंट फॉर 7, 8, 9 टुडे इज 8th, वी वेट फॉर टुमारो आल्सो।
5: वहीं पर हम सभी लोग बैठेंगे, धरना करेंगे।
1: उधर आज टीएमसी की ओर से अभिषेक बनर्जी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, वहीं ममता ने भी दिल्ली की ओर कूच कर दिया है।
6: प्रोग्राम के हम डिसाइड कर सकते हैं, हमको जाने के लिए बोला, हम जा रहे हैं। आप देख लीजिए क्या प्रोग्राम है, 8/9 को प्रेसिडेंट का पास, ऑल इंडिया जो इंडियन अलायंस है और सब लीडर को लिए टाइम मांगा।
1: उधर बीजेपी इस पूरे मामले में इंडिया गठबंधन को घेरने की कोशिश कर रही है।
7: इसीलिए अगर भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है तो वो राहुल गांधी की मनमानी अराजकता से है। अगर भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मनमानी गुंडागर्दी से है।
1: सियासी आरोपों से सड़क के आंदोलन तक तमाम उपाय अपनाने के बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का उपाय कामयाब नजर नहीं आ रहा। ऐसे में एक बार फिर अदालत का रुख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में 14 मार्च 2024 को ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधु को चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के फैसले को चुनौती दी गई है। आरोप है कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति अवैध है क्योंकि इसमें 2023 की नियुक्ति नियमावली अधिनियम की धारा 5, 6 और 8(1) का पालन नहीं किया गया। एक पद के लिए 5 नामों का पैनल बनाने का प्रावधान था, जबकि 2 पदों के लिए 10 की जगह कुल 6 नामों की ही सिफारिश हुई, जबकि 13 मार्च 2024 को नेता विपक्ष को 200 लोगों की सूची भेजी गई थी। धारा 5 के मुताबिक चुनाव प्रबंधन संचालन के तजुर्बे वाले को चुना जाना था, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने 26 पोस्टिंग में कभी चुनाव अधिकारी का काम नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई बाकी है। इससे पहले 2023 के अधिनियम को चुनौती देने वाली एक और अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरा है, जहां अभी वो थमता नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
0: विपक्ष का विरोध प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, देश भर में चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन जारी है। वहीं सीजेपी ने भी बेंगलुरु में मोर्चा संभाला।
1: लखनऊ से लेकर पटना तक, बेंगलुरु से लेकर जम्मू तक चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है, जहां कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल सड़कों पर उतरे और जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। पटना में आरजेडी ने मोर्चा संभाला। तेजस्वी यादव के साथ मीसा भारती ने चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोला। इस दौरान सुरक्षा बलों और आरजेडी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई।
8: पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तेजस्वी यादव बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं। ये तस्वीर देखिए, तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी भी है जो बैरिकेडिंग पार कर चुके हैं। और ये तस्वीर देखिए, अब राजभवन की ओर बढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे तेजस्वी यादव। देखिए काले कुर्ते में तेजस्वी यादव हैं और बैरिकेडिंग को पार करते हुए अब तेजस्वी यादव आगे बढ़ चुके हैं।
1: सुरक्षा बलों ने तेजस्वी यादव, मीसा भारती समेत प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। उधर लखनऊ में भी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नई प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा की अगुवाई में सड़कों पर उतरे, जहां सुरक्षा कर्मियों ने रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा रखी थी। कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए। इस दौरान सुरक्षा बल और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली।
9: कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों को पुलिस यहां से ले जाते हुए, चूंकि लगातार आप देखिए यहां पर पुलिस जो है वो लगातार प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने की बात कर रही है, और ऐसे में सभी जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं कि उनको पुलिस टांग कर ले जाती हुई, चूंकि सभी को हिरासत में डिटेन किया जा रहा है, और जिसी को लेकर जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद, अब देखिए कि यहाँ पर पुलिस पूरी तरीके से

0: द्वारा जिसको आगे ले जाया जा रहा है। अब ऐसे में यहाँ पर पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की जो है झड़प भी हो रही है लगातार, चूंकि आप देखिए तस्वीरों में।
1: बहरहाल चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है और ये लड़ाई अभी थमती नजर नहीं आ रही है। आज तक ब्यूरो।
2: 75 साल की उम्र में नाना पाटेकर का निधन हो गया है। गोवा में उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और जब तक अस्पताल उनको पहुंचाया जाता उनकी मौत हो गई थी। हिंदी सिनेमा में बहुत कम कलाकार ऐसे हुए हैं जिनके डायलॉग पर थिएटर में तालियां और सीटियां गूंजती हैं। नाना पाटेकर ऐसे ही कलाकार थे।
3: आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी।
4: हिंदी सिनेमा का क्रांतिवीर चला गया। नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में गोवा में निधन हुआ। प्यार दी गई लेकिन बचाया नहीं जा सका।
5: 5:20 को डिक्लेयर किया कि
4: यह है नाना पाटेकर का वो आखिरी वीडियो जिसे 4 दिन पहले का बताया जा रहा है। इसमें वो कुछ कलाकारों के साथ दिख रहे हैं। नाना पाटेकर ने अपने 48 साल लंबे करियर में करीब 100 फिल्में की। कोई ये कह सकता है कि उन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया, लेकिन नाना ने जो भी फिल्में की अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी कि हर कोई उनके अभिनय का कायल हो गया।
3: ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा, बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला।
4: 1994 में आई क्रांतिवीर का प्रताप उस दौर का एक आइकॉनिक रोल था जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। दर्शकों को नाना पाटेकर की एक्टिंग बिल्कुल अलग इसलिए लगी क्योंकि ऐसा लगता था कि जैसे यह किरदार उनकी अपनी कहानी कह रहा हो। उस दौर के हिंदुस्तानी के दिल में दबा ज्वार बड़े पर्दे पर उतार रहा।
3: अगर एक बाप की औलाद है तो एक बार मेरे सामने आकर दिखा। अरे मुझे जलाने की बात छोड़, मैं तो तुझे ऐसी मौत मारूंगा, ना तो तुझे जमीन नसीब होगी ना आसमां।
4: आप अच्छी तरह जानते हैं कि नाना पाटेकर के अभिनय की खासियत ये थी कि उनके किरदारों का गुस्सा और बेचैनी सिर्फ डायलॉग्स में नहीं दिखती थी, बल्कि वो अपनी आंखों और बॉडी लैंग्वेज से भी एक्टिंग करते दिखते थे। क्रांतिवीर से पहले तिरंगा आई जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले का किरदार उन्हें नई ऊंचाइयों पर लेकर गया।
3: मेरा तो विश्वास उठ गया इस कानून से। कौन सा कानून, कैसा कानून, ये कानून तो चंद मुजरिमों की रखेल बन बैठा है। इसलिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय गुंडों की चौखट चूमते हैं।
6: टेक हिम आउट ऑफ द कोर्ट।
4: नाना पाटेकर बहुत गरीबी से उठकर आए थे। ये अभिनय ही था जिसकी बदौलत एक सामान्य परिवार का शरारती लड़का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में समंदर जैसी भव्यता हासिल कर पाया। नाना के पिता गजानन पाटेकर मुंबई में कपड़े का कारोबार करते थे, लेकिन कारोबार में उन्हें किसी ने धोखा दिया और सब कुछ हड़प लिया। इसके बाद परिवार गरीबी में चला गया। परिवार का खर्च उठाने के लिए नाना पाटेकर पेंटर का काम करते थे। खुद बताते थे कि 8-8 किलोमीटर पैदल चलकर फिल्मों के पोस्टर पेंट करते थे। ऐसे मुश्किल हालात में नाना पाटेकर का बचपन बीता। बचपन में सेना में जाना चाहते थे लेकिन परिवार ने जाने नहीं दिया। लेकिन सेना को लेकर नाना पाटेकर का जज्बा उनके फिल्म प्रहार में भी दिखता है।
7: कमांडर,

0: चलो, क्या प्रॉब्लम है? चलो
1: सर, वो हाइट की प्रॉब्लम है, डर लगता है सर।
0: क्या डर? चलो हाँ, क्या प्रॉब्लम है? क्या है? या ऐसे पकड़ो या ऐसे जाओ। क्या है? हाँ?
2: नाना के अभिनय की शुरुआत नाटक से हुई और यहीं से स्मिता पाटिल उन्हें फिल्मों में लेकर आईं, और एक बार जब वो फिल्मों में आए तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा।

0: नाना पाटेकर उस दौर के बाकी अभिनेताओं की तरह चॉकलेटी हीरो नहीं थे, इसीलिए जब वो पर्दे पर आए तो लोगों को भी यह लगा कि उनके ही बीच का कोई शख्स है। परिंदा में डॉन अन्ना बनकर जब वो आग से डरते हैं तो ये सीन आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। नाना पाटेकर की एक्टिंग में बहुत से शेड्स हैं। क्रांतिवीर, परिंदा, प्रहार और तिरंगा में जो शेड है वो 1990 में आई फिल्म थोड़ा सा रुमानी हो जाए में बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये भी नाना है।
1: मैं जानती हूँ कि मैं एक बिल्कुल मामूली साधारण सीधी सादी औरत हूँ।
2: साधारण मामूली सीधी सादी औरत?
1: हाँ।
2: कोई औरत ऐसी होती ही नहीं, हर औरत खूबसूरत होती है, अपने ढंग से होती है, लेकिन हर औरत सिर्फ खूबसूरत होती है।
1: नहीं, मैं नहीं।
0: यही नाना पाटेकर इन फिल्मों में बिल्कुल एंग्री यंग मैन दिखते थे। पर्दे पर उन्हें नाचने वाले सीन बहुत कम मिलते थे, लेकिन जो भी गाने मिले उन्होंने उन्हें भी बखूबी निभाया।

0: ಕಲ್ಲು.
1: ಪ್ರಣಾಂತದ್ದು
2: ಕಹಾ ಹ
3: चुनाव 2002 में आई फिल्म शक्ति, जिसमें नाना पाटेकर का बिल्कुल अलग किरदार था, अलग शेड था, एकदम बिहार की टोन पकड़े हुए, जो अपने पोते को अपने साथ रखना चाहता है ताकि वो वारिस बन सके.
2: चुनाव लड़ाया हमने, मिनिस्टर बनाया तो फूल के खरबूजा बन गया. गाँव में सड़क नहीं, पानी नहीं, अस्पताल नहीं.
3: नाना पाटेकर का बिल्कुल एक और अलग शेड आया 2007 में आई फिल्म वेलकम में. किसी ने नहीं सोचा था कि अनीस बज्मी नाना पाटेकर से ऐसा कॉमिक किरदार कराएंगे जो अब तक एक कल्ट है. वेलकम में डॉन उदय शेट्टी का किरदार इतना हिट हुआ कि उनका एक एक डायलॉग अमर है.
4: सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है.
3: फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज्मी खुद बताते हैं कि नाना पाटेकर ने फिल्म साइन करने से पहले कहा था कि मैं एक कच्ची मिट्टी बनकर आऊंगा, मुझसे जो बनवाना है बनवा लेना, और उन्होंने ऐसा शानदार किरदार निभा दिया. एक आलू भी
5: कहां बैठा हूं, किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, समझ में नहीं.
4: कंट्रोल कंट्रोल उदय.
3: नाना पाटेकर का नाम पहले विश्वनाथ था, जो बाद में नाना बन गए और भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर और सम्मानित अभिनेताओं में हमेशा हमेशा के लिए शामिल होकर अमर हो गए.
6: ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना.
4: मैं भी नाचा, मेरे को दो.
6: क्या है
7: खबरों में, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक.
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.

0: ये कल की बात थी जब जंतर मंतर पर धरना देने निकले थे राहुल और प्रियंका गांधी। ये दो तस्वीरें देखिए, कैसे राहुल गांधी को उठाकर गाड़ी में डाला जाता है और दूसरी तस्वीर में प्रियंका गांधी को देखिए, कैसे सड़क पर लेटी प्रियंका गांधी को उठाने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है और फिर प्रियंका गांधी को सड़क से उठाकर हिरासत में लिया जाता है। सड़क पर तगड़ा संग्राम छिड़ जाता है क्योंकि प्रियंका गांधी सड़क से उठने को तैयार नहीं होती है। राहुल गांधी इन दिनों खास रणनीति से हल्ला बोल कर रहे हैं। कल भी राहुल गांधी ने वही फॉर्मूला आजमाया। पहले सागर रत्ना रेस्टोरेंट में लंच के बहाने विपक्ष के सारे नेता इकट्ठा हुए और फिर अचानक जंतर मंतर की तरफ कूच करने लगे।
1: प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर, वहाँ पे हम जाकर सब आज फिर से बैठे और देश को बताएं कि हमारे लिए ज्ञानेश कुमार जी देश के लेजिटिमेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं है।
0: आज फिर कांग्रेस ने विपक्ष के सांसदों को लंच पर बुलाया। लोकेशन फिर वही कनॉट प्लेस का इलाका। कल दक्षिण भारतीय व्यंजनों वाला रेस्टोरेंट था, आज उत्तरी भारत के डिशेस का खास इंतजाम।
2: साउथ इंडियन खाया था, आज नॉर्थ इंडियन खाएंगे सब बैठ करके। अब खाएंगे पिएंगे तभी तो लड़ेंगे, अब चलेंगे लड़ने के लिए।
3: लेकिन ये कैसे हो रहा सर कि हर दिन आप लोगों का लोकेशन जंतर मंतर के आसपास का ही हो रहा है लंच का?
2: अब ये तो देखिए, अच्छे रेस्टोरेंट्स यहाँ पर हैं, अब एकदम कहीं हो नहीं पा रहा तो एकदम रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं सब लोग, जाकर एक साथ इकट्ठा होकर के बात करते हैं फिर चलते हैं।
0: सवाल ये है कि उत्तरी भारतीय व्यंजनों की टेबल पर आज कहाँ के कूच की तैयारी है? क्या आज फिर कल वाला वाकया दोहराए जाने का प्लान है? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज फिर दिल्ली पुलिस से टकराने वाले हैं? आज आखिर क्या होने वाला है? मौसमी सिंह के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या है पितृ विसर्जन अमावस्या का महत्व? पितृ विसर्जन अमावस्या का क्या है पूजा विधान? पितृ विसर्जन अमावस्या पर पितरों का कैसे मिलेगा वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

0: त्योहारों की खुशियों के बीच आम आदमी की जेब पर महंगा झटका लगा है। इसकी वजह आरबीआई एमपीसी की तरफ से बढ़ाया गया रेपो रेट है, जिससे लोन की ईएमआई बढ़ने की आशंका है। आरबीआई ने करीब 3.5 साल बाद ब्याज दरें बढ़ाकर महंगाई के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% से बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। इसके साथ ही पॉलिसी रुख को न्यूट्रल से बदलकर कैलिब्रेटेड टाइटनिंग कर दिया है, यानी जरूरत पड़ने पर आगे भी ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती हैं। दरअसल महंगाई दर लगातार आरबीआई की 4% के सुरक्षित लक्ष्य से ऊपर बनी हुई थी। यही वजह है कि सेंट्रल बैंक को रेट बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions, developments and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate under the LAF by 25 basis points to 5.5%. Consequently, the STF rate stands adjusted at 5.25% and the marginal SFF and the marginal standing facility rate and the bank rate to 5.75%.
0: इस फैसले का सीधा असर आपकी हर महीने जाने वाली ईएमआई पर पड़ेगा। अगर बैंक भी इसी तरह ब्याज दर बढ़ाएंगे तो 50 लाख के 20 साल के होम लोन पर ब्याज दर 8.5% की जगह 9.25% हो सकती है। इससे ईएमआई करीब 800 रुपए बढ़कर 42,200 रुपए हो जाएगी। हालांकि बैंक एफडी पर भी आगे से ज्यादा ब्याज का फायदा मिलने की संभावना है। इसी के साथ आरबीआई ने महंगाई और ग्रोथ का अनुमान भी बढ़ा दिया है।
1: With headline CPI inflation expected to average almost 5.8% in the next three quarters, including this, and core inflation projected at 4.4% for this financial year. Real GDP growth for this year is projected at 7.1%, with Q2 at 7.2%, Q3 at 6.9%, and Q4 at 6.8%.
0: साफ है कि ब्याज दरों में ये बढ़ोतरी आगे भी जारी रह सकती है, जिससे कर्जदारों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। वहीं फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगाने वालों को बैंकों से ज्यादा रिटर्न का तोहफा मिल सकता है। आदित्य केराड़ा, आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: पड़े
1: नहीं,
0: हैं
1: नहीं, नहीं, नहीं।
0: फ्लाइट में कम से कम सफर करें मेरे हिसाब से भाई, ट्रैवल एंस कोई गांजा फूंक के चला रहा है, कोई चाकू लेके घुस रहा है, क्या हो रहा है ये?
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं।
0: तुम्हारा
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं।
3: यार काट देना ये।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

सीसी और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ विपक्ष आज भी कर सकता है प्रदर्शन। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के सांसदों को सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होने को कहा गया। गठबंधन ने आज राष्ट्रपति से मिलने का मांगा वक्त। दिल्ली में राजघाट पर विपक्षी दलों ने किया प्रदर्शन। राहुल गांधी बोले, देश को हाईजैक करने वालों को मिलेगी सजा। बीजेपी बोली, ये लोग जनता का भरोसा खो चुके। आ जाएंगे 6 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे। असम, बंगाल, तमिलनाडु में हुए थे चुनाव। काउंटिंग सेंटर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। जीएसटी काउंसिल के फैसले से व्यापारियों को बड़ी राहत। टैक्स अधिकारी अब सीधे नहीं कर पाएंगे गिरफ्तारी। मुकदमा चलाने की सीमा भी 1 करोड़ रुपए से 5 करोड़ हुई। भारत की बड़ी आईटी कंपनियों को अमेरिकी झटका। इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया सस्पेंड। उपराष्ट्रपति वेंस का आरोप, कंपनियां वीजा धोखाधड़ी में शामिल।

पात्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे पितृ विसर्जन अमावस्या की, इसके महत्व की और पितरों के विदाई की। आपको बताएंगे कि पितृपक्ष के इस अंतिम दिन का महत्व क्या है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 9 अक्टूबर 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, रात के 9:35 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, रात के 9:19 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, कल पितृपक्ष का समापन होगा और कल है पितृ विसर्जन अमावस्या। हम आपको एक दिन पहले ही इसकी महिमा और विधान के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। पितृ विसर्जन अमावस्या का महत्व क्या है पहले ये जानते हैं। देखिए, आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष का संबंध पितरों से होता है। इस महीने की अमावस्या को आश्विन कृष्ण अमावस्या को पितृ विसर्जन अमावस्या कहा जाता है। इस दिन धरती पर आए हुए पितरों को याद करके उनकी याद में दान पुण्य किया जाता है और पूर्वजों की वापस विदाई की जाती है, जिससे वो वापस सूक्ष्म लोक में चले जाते हैं। अगर पूरे पितृपक्ष में आपने अपने पितरों को याद नहीं किया, तर्पण नहीं किया, श्राद्ध नहीं किया, तो केवल अमावस्या पर उनका श्राद्ध करने से, उनको याद करके दान करने से और निर्धनों को भोजन कराने से पूर्वजों की पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितृ विसर्जन अमावस्या पर अगर आप अन्न वस्त्र भोजन बर्तन इसका दान करें तो इस दान करने का फल अमोघ होता है। और पितरों से संबंध होता है ज्योतिष में राहु का, इसलिए पितृ विसर्जन अमावस्या पर राहु से संबंधित बाधाओं से आप मुक्ति पा सकते हैं। इस बार पितृ विसर्जन अमावस्या का संयोग 10 अक्टूबर को है, यानी कल के दिन पूरे देश दुनिया में पितृ विसर्जन अमावस्या का पालन किया जाएगा। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें
कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा ग्रे। वृषभ राशि, करियर में सुधार होगा, परिवार में खुशहाली आएगी, छोटी यात्रा हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। हाली आएगी, छोटी यात्रा हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

जोखिम ना लें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब ये जानते हैं कि पितृ विसर्जन अमावस्या पर श्राद्ध कैसे करेंगे, पितरों की विदाई कैसे करेंगे। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अपने पितरों की, अपने पूर्वजों के देहांत की तिथि का पता नहीं होता या याद नहीं होती। तब पितरों की शांति के लिए पितृ विसर्जन अमावस्या पर श्राद्ध किया जाता है। आप सब

याद नहीं रख सकते। ऐसी दशा में भी पितृ विसर्जन अमावस्या पर अपने तमाम पूर्वजों का, तमाम पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। इस दिन किसी सात्विक और विद्वान ब्राह्मण को घर पर निमंत्रित करें और उनसे भोजन करने की और आशीर्वाद देने की प्रार्थना करें। स्नान करके शुद्ध मन से भोजन बनाएं। भोजन सात्विक और पवित्र होना चाहिए और भोजन में खीर पूरी का होना आवश्यक है। ब्राह्मण को या निर्धनों को भोजन कराने का और श्राद्ध करने का समय मध्य दोपहर का, मध्यान्ह का होना चाहिए। ब्राह्मण को या निर्धन को भोजन कराने के पहले पंच बलि दें। गाय, कौआ, कुत्ता, चींटी, देवता के लिए भोजन निकालें। थोड़ा सा भोजन का हिस्सा अग्नि में डालें, हवन करें, आहुति दें और इसके बाद श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराएं। उनका तिलक करके उनसे आशीर्वाद लें और दक्षिणा देकर उनको विदा करें। बाद में घर के सभी सदस्य एक साथ भोजन करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। जब आप पितृ विसर्जन अमावस्या पर मध्य दोपहर में दान कर लेते हैं, श्राद्ध कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, तो इसके साथ पितृ विसर्जन के कार्य समाप्त हो जाते हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं।

उद्धार होगा, काम का बोझ बढ़ा रहेगा, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धान।

कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में बदलाव के योग हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न निवेदिता ने हमें गाजियाबाद से लिखा है। 1 जनवरी 2001 का जन्म है, 7:19 प्रातः सिवान बिहार। ये पूछ रही हैं कि किस क्षेत्र में मेरा करियर बनेगा और आगे मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। निवेदिता, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और कुंभ राशि की, महादशा शनि की और अंतर दशा बृहस्पति की चल रही है। अगर आप शिक्षा क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में करियर बनाना चाहें, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहें तो यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज में आपको उच्च शिक्षा क्षेत्र की बेहतर नौकरी मिलेगी, उस दिशा में कोशिश करना चाहिए। खान पान का, डाइजेशन का और कोल्ड कफ का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। एक ओपल बनवा करके पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा। जैसा आपको बताया कि आपके पितरों का संबंध होता है राहु के साथ, तो पितृ विसर्जन अमावस्या पर राहु की समस्या के समाधान के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, पितृ विसर्जन अमावस्या पर उड़द की दाल, उड़द के बड़े, खीर और पूरी बनाइए। मध्य दोपहर में इस आहार को, इस खाद्य पदार्थ को अपने सामने रख करके पितरों से प्रार्थना करिए। इसके बाद राहु के मंत्र का जप करिएगा, ओम रांग राहवे नमः या ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इसके बाद इस भोजन को किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिएगा। कुत्तों को इस दिन कुछ न कुछ जरूर खिलाइए, ब्रेड खिलाइए, बिस्किट खिलाइए, रोटी खिलाइए, कुत्तों की सेवा जरूर करिएगा। अगर पितृ विसर्जन के दिन दोपहर के समय में आप ऐसा करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो राहु की समस्या से आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा। पितृ विसर्जन पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।
तुला राशि, वाद विवाद से बचाव करें, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव के योग हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, रिश्तों की समस्या हल होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। देखिए, जब आप पितरों का श्राद्ध करते हैं तो उसमें आप तरह तरह के भोजन बनवाते हैं, तरह तरह के अन्न का, वस्त्र का, भोजन का दान करते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी ना हो, आप मजबूर हैं, अपने ही खाने को नहीं है तो दान कहाँ से करेंगे, कैसे व्यवस्था करेंगे। तो अगर आपको धन का अभाव है तो पितरों का श्राद्ध कैसे करेंगे, पितृ विसर्जन

गा। दोपहर के समय पितरों का तर्पण कीजिए, पितरों को जल अर्पित करिए और इसके बाद एकांत स्थान में जाइए, छत पर, मैदान में, नदी के किनारे या कमरा बंद करके एकांत में जाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करिए। प्रार्थना में कहिए कि हे मेरे पूर्वजों, हे मेरे पितरों, मैं केवल अपनी भावना और श्रद्धा ही समर्पित कर सकता हूँ, मैं अभाव ग्रस्त हूँ, इसलिए मेरी श्रद्धा को, मेरी भावना को स्वीकार करिए। ये प्रार्थना अगर आप एकांत में जा करके करें तो इससे भी आपका श्राद्ध का कर्म संपूर्ण होगा, और अगर थोड़ा भी कर सकें तो अमावस्या पर गाय को हरा चारा खिलाइएगा। ऐसा करने से आपका श्राद्ध पूरी तरह से संपन्न होगा। देखिए, हिंदू धर्म शास्त्रों में जो श्राद्ध की बात की गई है उसका कोई दबाव नहीं बनाया गया है आपके ऊपर कि आप ब्राह्मण भोज ही करवाइए, आप बहुत सारा कर्जा लेके दान करिए, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। कोई दबाव नहीं है, कोई कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, केवल अपनी मन और भावना भी अगर आप समर्पित कर देंगे तो उससे भी आपका श्राद्ध संपन्न होगा। और पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन हर व्यक्ति को गीता का पाठ अपने पितरों के लिए करना चाहिए। दो चार श्लोक पढ़ लें या गीता के 18वें अध्याय का या 11वें अध्याय का पाठ कर लें तो काफी उत्तम रहेगा। देखिए, पितृ विसर्जन अमावस्या पर आप कुछ कर पाए या ना कर पाए, समय का अभाव हो या बाकी कोई दिक्कत हो, तो पितृ विसर्जन अमावस्या पर अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न का और वस्त्र का दान करना चाहिए। साथ ही साथ गाय को हरा चारा भी जरूर खिलाना चाहिए। गाय के अंदर सारे पशु पक्षी, देवी देवता समाहित होते हैं, तो अगर आप गाय को हरा चारा आदि खिलाएं तो अच्छा रहेगा। और जिसके पास पैसे नहीं हैं, मजबूरी नहीं है, उसे गाय की सेवा करनी चाहिए। थोड़ा सा ही 5 रुपए का 10 रुपए का पालक या हरा चारा खरीद के गाय को खिलाएं और अपने पूर्वजों से कृपा करने की प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।

का धन का लाभ होगा, लेकिन दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, वाहन सावधानी से चलाएं, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि केवल पुरुष ही अपने पूर्वजों का, पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती। क्या ऐसा है? देखिए, सामान्य नियम ये कहता है कि घर का कोई भी वरिष्ठ पुरुष सदस्य या घर का कोई भी पुरुष सदस्य पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करने का अधिकारी होता है। लेकिन अगर आपके घर में कोई पुरुष है ही नहीं, केवल महिलाएं हैं, तो जो घर की वरिष्ठ महिला है वो अपने पूर्वजों का तर्पण और श्राद्ध कर सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि महिलाएं अगर श्राद्ध करेंगी तो उसका फल नहीं मिलेगा। विशेष स्थितियों में महिलाएं भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं।

नंबर दो, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। नंबर तीन, धन लाभ के योग हैं। नंबर चार, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। नंबर पांच, परिवार में विवादों से बचाव करें। नंबर छह, संपत्ति का लाभ हो सकता है। नंबर सात, कोई शुभ सूचना मिल सकती है। नंबर आठ, चोट चपेट से बचाव करें। और नंबर नौ, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा।

शाम को 6 बजे से 7:30 तक इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से धन संबंधी आपकी समस्या समाप्त होगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है आपकी तो दही खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो भी दही खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइए, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो गुलाबी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

कन्या राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा। वृश्चिक वालों के लिए धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा कुंभ राशि वालों को। बेवजह की चिंताएं और तनाव आपको परेशान कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज चतुर्दशी तिथि है, रिक्तता तिथि है। कोई नया और शुभ कार्य आज नहीं करना चाहिए, लेकिन आज माता लक्ष्मी की आरती करें और अगर कर सकें तो खाने पीने की वस्तु का दान करें, आपके लिए शुभ रहेगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

और एसआईआर के खिलाफ इंडिया ब्लॉक का संग्राम तेज। शुक्रवार को दिल्ली में फिर से जुटेंगे 300 सांसद। वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल, राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने का मांगा वक्त। राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले मोदी, शाह, भागवत और ज्ञानेश कुमार ने भारत को हाईजेक किया। सीसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष, आज संसद के सेंट्रल हॉल में जुटेंगे सांसद। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक का सत्याग्रह जारी, राजघाट पहुंचे राहुल, खड़गे समेत विपक्षी सांसद। एसआईआर और फॉर्म 6 पर घमासान, 13 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाने का विपक्ष ने उठाया मुद्दा। विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी का पलटवार, बोली सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा क्यों नहीं करता इंडिया ब्लॉक। प्रमोद तिवारी का बड़ा ऐलान, सीईसी के इस्तीफे और एफआईआर की मांग पूरी होने तक जारी रहेगा संघर्ष। राहुल गांधी पर बीजेपी का तीखा हमला, प्रदीप भंडारी बोले कांग्रेस का आंदोलन जनता के खिलाफ। अभिषेक बनर्जी की दो टूक, सत्याग्रह से पीछे नहीं हटेंगे, जेल और मौत का भी डर नहीं। सीजेपी के 10 अक्टूबर के प्रदर्शन से पहले दिल्ली अलर्ट, पुलिस बोली धारा 163 लागू, जुटने पर होगी कार्रवाई। जंतर मंतर 2.0 प्रदर्शन से पहले दिल्ली की सीमाओं पर सख्ती, यूपी हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर पर बड़ी निगरानी। सीसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर 10 अक्टूबर को प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस ने कहा किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं। सीजेपी के प्रदर्शन से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन प्लान, जुलाई के नीट विरोध में शामिल 2800 लोगों पर नजर। 10 अक्टूबर को दिल्ली में शराब की दुकानें रहेंगी बंद, पुलिस इनपुट के बाद आबकारी विभाग का फैसला। दिल्ली सरकार से फिर से बढ़े प्रशासनिक बदलाव, अश्विनी कुमार को बनाया गया एक्साइज कमिश्नर। हेल्थ सेक्रेटरी रूपेश कुमार ठाकुर को हेल्थ सेक्रेटरी की पोस्ट से हटाकर DUSIB की जिम्मेदारी दी गई है, उनके बदले मेखला चैतन्य प्रसाद को स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ की जिम्मेदारी दी गई। वहीं अयोध्या दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ को अखिलेश की चुनौती, कहा दम है तो यहां से खुद चुनाव लड़े मुख्यमंत्री। अखिलेश की चुनौती पर बीजेपी ने पूछा, यहां आकर भी राम मंदिर क्यों नहीं गए एसपी सुप्रीमो। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर तंज, मगरमच्छ पानी में तैरते हुए शांति का उपदेश दे रहा, युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलने पर दी बधाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एडवाइजरी, फेक न्यूज AI मैनिपुलेटेड कंटेंट पर बड़ी निगरानी, तुरंत प्रभाव से लागू। पंजाब हरियाणा पंचायत आज तक में, बोले सीएम मान, चुनाव आते ही बीजेपी भेजती है CBI। पंजाब हरियाणा पंचायत आज तक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ऐलान, हर अग्निवीर को देंगे नौकरी। मुंबई रोड शो में सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, MP को मिले करीब 90,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 14,375 रोजगार के अवसर, ACME ग्लोबल 47,000 करोड़ करेगा निवेश। GST काउंसिल के फैसले से व्यापारियों को बड़ी राहत, टैक्स अधिकारी अब सीधे नहीं कर पाएंगे गिरफ्तारी, मुकदमा चलाने की सीमा भी 1 करोड़ रुपए से 5 करोड़ हुई। फर्जी MBBS दाखिलों के बीच स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठे, उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की भारी कमी, 840 पदों में 545 खाली, 52,942 मरीज किए गए रेफर। घाटकोपर ROB का 30% काम पूरा होने के बाद बदला डिजाइन, 3 पियर कैप आंशिक रूप से तोड़े जाएंगे, वहीं ट्रैफिक से परेशान स्थानीय लोग। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सचिन वाजी की महंगी कार और ओबरॉय होटल में 100 दिन ठहरने पर जताया आश्चर्य, वसूली के आरोपों का किया जिक्र। भिवंडी में गुलाब जामुन के कंटेनर में मिला जिंदा चूहा, वीडियो वायरल होने पर FDA ने मिठाई की दुकान को नोटिस जारी किया। जालना के धामड़ा बांध पर पानी की रखवाली के लिए पुलिस का पहरा, धामड़ा बांध में सिर्फ 2% पानी बचा, अवैध पानी निकासी रोकने के लिए दिन रात पुलिस की गश्त। आज भारतीय वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस, गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर मुख्य समारोह का आयोजन। वायुसेना दिवस परेड में IAF की ऑपरेशनल क्षमता, अनुशासन और शानदार विरासत का प्रदर्शन, जवानों को किया गया सम्मानित। हिंडन एयरबेस पर भव्य एयर शो, आसमान में वायुसेना में विमानों का दिखा पराक्रम। राजस्थान की धरती पर वायुवीरों का अभ्यास जारी, तरंग शक्ति 2026 के दूसरे चरण का दिखा रोमांच। जोधपुर एयरबेस पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने भरी उड़ान, वहीं आसमान में दिखाए हैरतअंगेज करतब। रामराज कॉटन ने सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को बनाया अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। रामराज कॉटन के संस्थापक और चेयरमैन KR नागराजन ने तेलुगु सुपरस्टार का ब्रांड से जुड़ने पर किया स्वागत। यूपी के भदोही में संपन्न हुआ 4 दिवसीय कारपेट एक्सपो, सस्ते कालीन की रही डिमांड, 500 करोड़ के कारोबार का दावा। कालीनों के महाकुंभ में 65 देशों के 447 फॉरेन बायर्स और उनके प्रतिनिधि हुए शामिल, निर्यात के कई ऑर्डर मिले। झांसी में शारदीय नवरात्र के पावन पर्व की रौनक, आस्था और भक्ति के रंग बिरंगे श्रद्धालु। लेपर्ड की मॉनिटरिंग के लिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व में लगाए जाएंगे साइलेंट डिवाइस और हाईट्रेक सेंसर, बाघ के साथ लेपर्ड की जाएगी मॉनिटरिंग। पटना के फुलवारी शरीफ में सिलेंडर ब्लास्ट में भीषण आग, आग में झुलसकर महिला की मौत हुई, घर का सामान खाक। यूपी के महोबा में 3 साल की मासूम से हैवानियत, झोपड़ी में सो रही बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी युवक हिरासत में लिया गया। मेरठ में शादी के अगले दिन युवक ने फंदा लगाकर दी जान, खेत में पेड़ से लटका मिला शव, परिवार में मचा कोहरा। गुजरात के डांग में छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या, बेरोजगार बड़े भाई को समझाना छोटे को पड़ा भारी, पुलिस ने छोटे भाई को किया गिरफ्तार।
जोधपुर में पुलिस को देखकर 9 किलोमीटर तक भागी स्कॉर्पियो, टायर फटने की वजह से हादसा, जांच में कार सवार निकले निर्दोष। बागपत में बिजली की चिंगारी ने उजाड़ दिया परिवार, धू धू कर जली दुकान, 5 साल के मासूम और मां की मौत। मुरादाबाद में 26वां तेंदुआ पिंजरे में कैद, 46 पिंजरों से रेस्क्यू अभियान जारी, दहशत अभी भी बरकरार। नागपुर में चलती स्कूल बस में लगी अचानक से आग, स्कूली बच्चों को लोगों ने बचाया।

बीच गहरे गड्ढे में गिरी कार OMR के सिंकहोल से कार को निकाला गया बाहर। मुंबई के मुलुंड ईस्ट BMC पैप प्रोजेक्ट में 7 गैस सिलेंडर फटे, वहीं आग से मची अफरातफरी, कोई हताहत नहीं। बागपत में 11 सेकंड का खौफनाक लाइव वीडियो आया सामने, जोरदार धमाके के साथ फटा सिलेंडर, मची भगदड़। वहीं रायसेन में प्रदर्शन के चलते आग में झुलसा प्रदर्शनकारी और वीडियो वायरल हुआ। सोनीपत में एलोवेरा जेल के नाम पर हो रही थी अवैध शराब की तस्करी, चंडीगढ़ से आई थी खेप, बिहार के पटना भेजने की थी तैयारी। गढ़वा में नाबालिग छात्रा को बाइक से ले जा रहे शिक्षक को ग्रामीणों ने पकड़ा, स्कूल में 5 घंटे चला लोगों का हंगामा, बर्खास्त की धीमा। धमतरी में पेट्रोल पंप पर सनकी युवक का नाटक, 2 बाइक में लगाई आग, नोजल जलाने की कोशिश की गई। वहीं खरगोन में पति के साथ टहल रही महिला के गले से बाइक सवार ने 1.5 तोले की सोने की चेन झपटी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मोरबी में मालिया कच्छ हाईवे पर ट्रक ने भेड़ बकरियों के झुंड को कुचला, 25 की मौत हुई, 30 घायल, सीसीटीवी फुटेज वायरल। ग्रेटर नोएडा के जहांगीरपुर में 40 साल के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। गोरखपुर में BRD मेडिकल कॉलेज में मरीज की मौत के बाद हंगामा, पोस्टमार्टम की मांग पर भड़के डॉक्टर, गेट बंद कर तीमारदार का पिटाई की गई, वीडियो वायरल। WMO की चेतावनी, भारत में कम बारिश और ज्यादा गर्मी का खतरा, दिसंबर तक मजबूत होगा अलनीनो। उधम सिंह नगर में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, मंडी में बिकने आया धान, बारिश में बहा। बांदीपुरा में मौसम ने लिया यू टर्न, अचानक से तेज ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित। लखनऊ में बढ़ा गोमती नदी का जलस्तर, प्लासियो मॉल के सामने जलभराव से राहगीर परेशान। आज हिंडन एयरबेस पर दिखी 1960 के दशक की क्रीम रंग की लेफ्ट हैंड ड्राइव फोर्ड सैलोन। एयर चीफ मार्शल AP सिंह पुरानी फोर्ड कार में 94वें एयरफोर्स डे के कार्यक्रम में पहुंचे। 5 नवंबर को रिलीज से पहले फिल्म रामायण का 4 नवंबर को पेड प्रीव्यू रखा जाएगा, दर्शकों को फिल्म रिलीज से एक दिन पहले ही बड़े पर्दे पर देखने को मौका मिलेगा। अजय देवगन की दृश्यम 3 ने बॉक्स ऑफिस पर बनाई शानदार रफ्तार, फिल्म 6 दिनों में भारत में करीब 232 करोड़ और दुनिया भर में 350 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। आलिया भट्ट स्पेन में कर रही वेकेशन एंजॉय, खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर। सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन के बाद मंडाली अब OTT पर दे चुकी है दस्तक, फिल्म आज से नेटफ्लिक्स पर कई भारतीय भाषाओं में होगी स्ट्रीम। हाइप का व्यूअर्स कॉन फेस्टिवल पहली बार होने जा रहा है भारत में, दरअसल दिल्ली में 27 से 28 मार्च 2027 को होने वाले इस फेस्टिवल में के पॉप के साथ भारतीय कलाकार भी करेंगे परफॉर्म। 13 साल की उम्र में पोस्टर पेंट करने वाले, 35 रुपए महीना कमाने वाले नाना पाटेकर ने तय किया करोड़ों तक की कमाई का सफर। मुंबई में 1 BHK में रहने वाले नाना अपने पीछे छोड़ गए करोड़ों की संपत्ति। RBI के रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद PNB, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने बढ़ाए लेंडिंग रेट्स, वहीं 8 अक्टूबर से लोन के लिए चुकानी होगी ज्यादा EMI। होम लोन की लागत बढ़ने से पहली बार घर खरीदने वालों और EWS LIG सेगमेंट पर सबसे ज्यादा असर की आशंका, शुरुआती घरों की डिमांड पर बन सकता है दबाव।

0: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
1: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
0: असली शहद, असली स्वाद।
2: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
3: गैसो फास्ट 27%,
2: इनो 9.2%।
4: गड़बड़ है।
5: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
6: एक तो श्राम।

0: प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस।
1: मेरे पास एक आइडिया है।
0: क्या?
1: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
2: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
3: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
4: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
5: कौन सी बनानी है?
6: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
7: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर, भीम ऐप से करो पे।
8: इट्स अ माय वे।
9: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।
10: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ? पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
11: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने।
12: और वही कहाँ गए थे घूमने?
13: जीके मैक्स।
14: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
13: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी?
15: जेके वॉल मैक्स।
13: बेस्ट पेंट?
16: जेके मैक्स।
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: बीजेपी ने ये वीडियो एक्स पर साझा किया है। वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है महिला पुलिसकर्मी से धक्का मुक्की का। बीजेपी ने लिखा है, राहुल गांधी देश को पितृसत्ता को खत्म करने और महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने का उपदेश देते हैं। यहाँ कैमरे पर वो एक महिला पुलिस अधिकारी को धक्का दे रहे हैं और उन्हें गलत तरीके से छू रहे हैं। राहुल गांधी का दोहरापन अब छिपा नहीं है, ये कैमरे पर साफ दिख रहा है। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लिखा, महिला पुलिसकर्मी के साथ राहुल गांधी जी का व्यवहार, सत्ता के लालच में आदमी कैसी हरकत कर सकता है, खुद समझिए। बीजेपी के आरोपों के बीच दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस मोबाइल फोन से बनाए गए वीडियो की जांच कर रही है। इस वीडियो में महिला पुलिस अफसरों, महिला कांस्टेबलों और अन्य पुलिस कर्मियों के साथ हमले की तस्वीरें हैं। सूत्रों के मुताबिक वीडियो से प्रदर्शनकारियों की पहचान की जा रही है। दिल्ली पुलिस इनके खिलाफ सरकारी कर्मचारियों पर हमले, सरकारी काम में बाधा डालने से जुड़ी भारतीय न्याय संहिता की धारा में FIR दर्ज कर सकती है। इससे पहले आकाशवाणी भवन में धरने को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कई लोगों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की थी, जिसे राहुल गांधी मेडल बता रहे हैं।
3: मेरे पास 45 FIR है। मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 FIR लगे। हर FIR मेरे लिए एक मेडल है।
2: राहुल गांधी के तेवर से साफ है कि वो रुकेंगे नहीं, बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक सड़क पर सीधी लड़ाई जारी रखेंगे। राहुल गांधी के इसी तेवर ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा रखी है, खासकर राहुल गांधी की गुरिल्ला रणनीति से। 6 अक्टूबर के घटनाक्रम पर गौर कीजिए। इंडिया गठबंधन के सांसद संसद भवन से निर्वाचन सदन मार्च कर रहे थे। उन्हें रोकने का पुलिस का भारी बंदोबस्त था, लेकिन राहुल गांधी पुलिस को चकमा देकर आकाशवाणी भवन में जाकर धरने पर बैठ गए। कल भी ऐसा ही हुआ। विपक्ष के सांसदों के साथ जनपद के पास लंच का आयोजन और फिर अचानक जंतर मंतर की तरफ कूच। हालांकि इस बार दिल्ली पुलिस को इसकी भनक लग गई थी और वो तैयार थी।
4: जो लोग सीधे सीधे चलने लग गए उनको आप आराम से ले जाके कोशिश पहली यही होनी है कि आराम से प्यार से बोल के रेस्पेक्टफुली बोल के हम सबको ले जाएं और सबको बैठा लें, ठीक है। नेक्स्ट ये होने वाला है अपना कि क्योंकि सपोर्टर्स भी बहुत सारे होते हैं तो वो भी रेजिस्ट करते हैं, पकड़ लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। मेल को फीमेल्स भी कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं बहुत जोर से, तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और बसेस, बस में बैठा दिया तो बस से निकल ना पाए और बस के आगे की क्लैरिटी देनी पड़ेगी ताकि बस सीधा सीधा निकल जाए।
2: दिल्ली पुलिस की कोशिश है राहुल को धरने पर बैठने से रोकना, लेकिन राहुल मार्च भी निकाल रहे हैं और धरने पर भी बैठ रहे हैं। 21 जुलाई को भी ऐसा ही नजारा सामने आया था, जब नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली पुलिस को चकमा देते हुए राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठ गए थे। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
5: गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
6: गड़बड़ है।
7: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गैसोफा इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
8: एक तो श्राम।

0: सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर, एक बार धोती थमका लगाने बस।
4: मेरे पास एक आइडिया।
3: क्या?
4: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
5: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
6: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
7: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
8: कौन सी बनानी है?
9: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
10: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद। रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं, पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
11: इट्स अ माही वे।
12: और वही कहाँ गए थे घूमने?
13: जीके मैक्स।
14: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
13: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
14: जेके वॉल मैक्स
13: बेस्ट पेंट,
14: जेके मैक्स।
15: बाकी सब सवालों का पता नहीं।

0: ये कल की बात थी जब जंतर मंतर पर धरना देने निकले थे राहुल और प्रियंका गांधी। ये दो तस्वीरें देखिए, कैसे राहुल गांधी को उठाकर गाड़ी में डाला जाता है और दूसरी तस्वीर में प्रियंका गांधी को देखिए, कैसे सड़क पर लेटी प्रियंका गांधी को उठाने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है और फिर प्रियंका गांधी को सड़क से उठाकर हिरासत में लिया जाता है। सड़क पर तगड़ा संग्राम छिड़ जाता है क्योंकि प्रियंका गांधी सड़क से उठने को तैयार नहीं होती है। राहुल गांधी इन दिनों खास रणनीति से हल्ला बोल कर रहे हैं। कल भी राहुल गांधी ने वही फॉर्मूला आजमाया। पहले सागर रत्ना रेस्टोरेंट में लंच के बहाने विपक्ष के सारे नेता इकट्ठा हुए और फिर अचानक जंतर मंतर की तरफ कूच करने लगे।
1: प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर, वहाँ पे हम जाकर सब आज फिर से बैठे और देश को बताएं कि हमारे लिए ज्ञानेश कुमार जी देश के लेजिटिमेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं है।
0: आज फिर कांग्रेस ने विपक्ष के सांसदों को लंच पर बुलाया। लोकेशन फिर वही कनॉट प्लेस का इलाका। कल दक्षिण भारतीय व्यंजनों वाला रेस्टोरेंट था, आज उत्तरी भारत के डिशेस का खास इंतजाम।
2: साउथ इंडियन खाया था, आज नॉर्थ इंडियन खाएंगे सब बैठ करके। अब खाएंगे पिएंगे तभी तो लड़ेंगे, अब चलेंगे लड़ने के लिए।
3: लेकिन ये कैसे हो रहा सर कि हर दिन आप लोगों का लोकेशन जंतर मंतर के आसपास का ही हो रहा है लंच का?
2: अब ये तो देखिए, अच्छे रेस्टोरेंट्स यहाँ पर हैं, अब एकदम कहीं हो नहीं पा रहा तो एकदम रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं सब लोग, जाकर एक साथ इकट्ठा होकर के बात करते हैं फिर चलते हैं।
0: सवाल ये है कि उत्तरी भारतीय व्यंजनों की टेबल पर आज कहाँ के कूच की तैयारी है? क्या आज फिर कल वाला वाकया दोहराए जाने का प्लान है? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज फिर दिल्ली पुलिस से टकराने वाले हैं? आज आखिर क्या होने वाला है? मौसमी सिंह के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।

0: त्योहारों की खुशियों के बीच आम आदमी की जेब पर महंगा झटका लगा है। इसकी वजह आरबीआई एमपीसी की तरफ से बढ़ाया गया रेपो रेट है, जिससे लोन की ईएमआई बढ़ने की आशंका है। आरबीआई ने करीब 3.5 साल बाद ब्याज दरें बढ़ाकर महंगाई के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% से बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। इसके साथ ही पॉलिसी रुख को न्यूट्रल से बदलकर कैलिब्रेटेड टाइटनिंग कर दिया है, यानी जरूरत पड़ने पर आगे भी ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती हैं। दरअसल महंगाई दर लगातार आरबीआई की 4% के सुरक्षित लक्ष्य से ऊपर बनी हुई थी। यही वजह है कि सेंट्रल बैंक को रेट बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions, developments, and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate under the LAF by 25 basis points to 5.5%. Consequently, the STF rate stands adjusted at 5.25%, and the marginal SF and the marginal standing facility rate and the bank rate to 5.75%.
0: इस फैसले का सीधा असर आपकी हर महीने जाने वाली ईएमआई पर पड़ेगा। अगर बैंक भी इसी तरह ब्याज दर बढ़ाएंगे तो 50 लाख के 20 साल के होम लोन पर ब्याज दर 8.5% की जगह 9.25% हो सकती है। इससे ईएमआई करीब 800 रुपए बढ़कर 42,200 रुपए हो जाएगी। हालांकि बैंक एफडी पर भी आगे से ज्यादा ब्याज का फायदा मिलने की संभावना है। इसी के साथ आरबीआई ने महंगाई और ग्रोथ का अनुमान भी बढ़ा दिया है।
1: With headline CPI inflation expected to average almost 5.8% in the next three quarters, including this, and core inflation projected at 4.4% for this financial year. Real GDP growth for this year is projected at 7.1%, with Q2 at 7.2%, Q3 at 6.9%, and Q4 at 6.8%.
0: साफ है कि ब्याज दरों में ये बढ़ोतरी आगे भी जारी रह सकती है, जिससे कर्जदारों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। वहीं फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगाने वालों को बैंकों से ज्यादा रिटर्न का तोहफा मिल सकता है। आदित्य केराड़ा, आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। In association with
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

दिल्ली के सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होंगे इंडिया ब्लॉक के सांसद ममता तेजस्वी समेत कई सहयोगी रहेंगे मौजूद। मांगा राष्ट्रपति से मिलने का वक्त, कल सीजेपी का प्रदर्शन किले में तब्दील हुआ राजधानी। आज आएंगे 6 सीटों पर उपचुनाव के रिजल्ट, नंदीग्राम और रेजीनगर के नतीजों से शुभेंदु सरकार का लिटमस टेस्ट, असम और तमिलनाडु में भी गिनती, काउंटिंग सेंटर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। योगी ने दी पीडीए की नई परिभाषा, कहा प्रदेश डुबाऊ अलायंस की सरकार डालती थी नौकरियों पर डाका, सैफई और सिफारिश के बिना नहीं थी सुनवाई। अखिलेश का चैलेंज, हिम्मत है तो अयोध्या से योगी लड़े चुनाव। जीएसटी काउंसिल के फैसले से व्यापारियों को बड़ी राहत, टैक्स अधिकारी अब सीधे नहीं कर पाएंगे गिरफ्तारी, मुकदमा चलाने की सीमा भी 1 करोड़ रुपए से 5 करोड़ हुई। भारत की बड़ी आईटी कंपनियों को अमेरिकी झटका, इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया सस्पेंड, उपराष्ट्रपति वेंस का आरोप, कंपनियां वीजा धोखाधड़ी में शामिल।

0: आपके साथ पूजा शर्मा और एक बार फिर से इस खास बुलेटिन सुपर 8 में आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। बात करेंगे आज 5 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर होने वाली काउंटिंग की खबर, विपक्ष के प्रदर्शन की भी आगे आपको दिखाएंगे, इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन से कैसे टेंशन बढ़ गई है ये भी बताएंगे आपको, वहीं पीएम मोदी के समर्थन में नारे लगाने पर मारपीट के आरोप, आखिर पूरा मामला क्या है दिखाएंगे आगे, सीएम योगी ने कैसे समाजवादी पार्टी पर फिर से हमला किया ये भी बताएंगे, तो वहीं अयोध्या पहुंचे अखिलेश ने किसे दी है सियासी चुनौती इसका भी होगा जिक्र, खबर लखनऊ की भी दिखाएंगे जहां पर बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, साथ ही बात करेंगे जम्मू कश्मीर में शुरू हुई ताजा बर्फबारी की। सबसे पहले इस बुलेटिन में बात करते हैं 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में 5 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की, आज मतगणना का दिन है, ऐसे में काउंटिंग शुरू हो गई है और उपचुनावों के नतीजों पर सबकी नजर है, 5 विधानसभा 1 लोकसभा सीट के लिए ये गिनती हो रही है, पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा, तमिलनाडु की मदुरांतकम और धरापुरम, वहीं पुडुचेरी की 1 विधानसभा सीट के साथ असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी मतगणना हो रही है, और वहीं नंदीग्राम में बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि तमिलनाडु में टीवीके की परीक्षा है, नौगांव में बीजेपी कांग्रेस और एआईयूडीएफ के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, तो गिनती की शुरुआत अब हो चुकी है। तो 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट की अब काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है, सुबह 8 बजे से इसकी शुरुआत हुई, अभी हाल ही में चुनाव भी हुए और 5 विधानसभा 1 लोकसभा सीट पर मतगणना और फैसले की घड़ी आ चुकी है, पश्चिम बंगाल में 2 सीट नंदीग्राम और रेजीनगर और वहीं तमिलनाडु में मदुरांगतम और धारापुरम सीट को लेकर अभी गिनती की जा रही है, पुडुचेरी में भी 1 सीट को लेकर चुनाव हुआ, वहीं असम में नौगांव लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ, फैसले की घड़ी आ चुकी है और बंगाल से 2 सीटें हैं और ये सीट रेजीनगर काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी रही और बीजेपी की तरफ से शंकरराव सरकार और वहीं गुलाम नबी आजाद आम जनता उन्नयन पार्टी की तरफ से और रबीउल आलम चौधरी ममता टीएमसी की तरफ से कौन बाजी मारेगा ये देखने वाली बात होगी, नंदीग्राम में किसकी जीत होगी, नंदीग्राम से 3 लोग वहीं बीजेपी की तरफ से हसीरानी रथ और मिलन प्रधान कांग्रेस की तरफ से हैं और टीएमसी की तरफ से भी 1 उम्मीदवार, तो किसकी जीत होगी ये तो फैसला आने के बाद ही पता लगेगा, और हमारे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए, इंद्रजीत बंगाल की ये 2 सीट जो कि सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है अभी शुरुआत हो गई है क्या वहां पर काउंटिंग की, तस्वीरें दिखाइएगा।
1: देखिए कुछ ही देर में औपचारिक तौर पे काउंटिंग का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगा, नंदीग्राम और रेजीनगर ये 2 सीट में उपचुनाव हुए थे जहां 1 को नंदीग्राम में मेन जो कॉन्टेस्ट है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, चूंकि ये सीट बीजेपी ने जीता था, राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का ये गढ़ माना जाता है और इसी सीट से शुभेंदु अधिकारी 2026 के विधानसभा चुनाव से जीते थे, लेकिन उन्होंने भवानीपुर सीट को अपने रख दिया था और नंदीग्राम में उन्होंने वो सीट से रिजाइन कर दी क्योंकि दोनों ही सीट से उन्होंने जीत हासिल की थी और इसी कारण अब नंदीग्राम में बाईपोल हुआ 6 तारीख को जिसका मतगणना आज होने वाला है। शुभेंदु अधिकारी के जो पर्सनल असिस्टेंट हुआ करते थे चंद्रनाथ रौत, उनकी हत्या की गई थी कुछ 5 महीने पहले, उनके माता जी हासीरानी रौत को बीजेपी ने यहां पे उम्मीदवार खड़ा किया है, उसके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस का जो उम्मीदवार था ममता बनर्जी के पार्टी का, उन्होंने अहम मौके पर उन्होंने ये जो कॉन्टेस्ट है उससे विदा ले लिया और उसके बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस का जो कैंडिडेट है मिलन प्रधान उनको समर्थन करने का ऐलान कर दिया है, तो ये एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट आप कह सकते हैं जहां पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कॉन्टेस्ट है, उसके साथ साथ जो रेबल और खेमा है तृणमूल कांग्रेस का डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस वो भी इस चुनाव के मैदान में है। वहीं रेजीनगर में अगर आप देखें तो हुमायूं कबीर जो पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान चुनाव से पहले करने के बाद सुर्खियों में आ गए थे, उनका वो सीट था रेजीनगर, वहां से वो जीते थे हुमायूं कबीर, लेकिन उन्होंने वो रिजाइन किया क्योंकि वो नौदा सीट से भी जीते थे विधानसभा में, तो वहां पे कॉन्टेस्ट आप कह सकते हैं मल्टीपोलर कॉन्टेस्ट है क्योंकि वहां पे बीजेपी के सहकारा सरकार है, AUJP हुमायूं कबीर का जो पार्टी है उनमें उनके बेटे वहां पे लड़ रहे हैं, ISF है, कांग्रेस है और वहां पे ममता तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट है रबीउल आलम चौधरी और उसके साथ साथ जो रेबल खेमा है तृणमूल कांग्रेस का, उनका भी कैंडिडेट है। कहीं ना कहीं दोनों ही सीट बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सभी की निगाहें नंदीग्राम पे रहेगी क्योंकि ये शुभेंदु अधिकारी राज्य के मुख्यमंत्री, उनका घर माना जाता है।
0: चलिए ठीक है इंद्रजीत, आप नजर बनाए रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब खबर विपक्षी मोर्चे की। दरअसल दिल्ली में आज भी इंडिया ब्लॉक के सांसद प्रदर्शन कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन दलों के बड़े नेता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। ममता बनर्जी खुद दिल्ली में है। अभिषेक बनर्जी ने आज तक को बताया है कि वो भी आज के प्रदर्शन में शामिल होंगे। आपको ये बता दें कि इंडिया ब्लॉक के सभी सांसदों को आज दोपहर 3 बजे सेंट्रल हॉल में जुटने को कहा गया है। साथ ही विपक्ष का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की कोशिश में है। प्रतिनिधिमंडल में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी समेत कई नेता शामिल हो सकते हैं। विपक्ष ने मुलाकात के लिए वक्त भी मांगा है, लेकिन अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। राष्ट्रपति भवन की ओर से मुलाकात की पुष्टि का अभी इंतजार है। सीसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और एसआईआर को रद्द करने की मांग पर विपक्ष अपने रुख पर कायम है। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर इंडिया ब्लॉक ने देशव्यापी आंदोलन का भी ऐलान किया है। विपक्ष का कहना है कि जब तक उसकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है। ममता बनर्जी आज इस प्रदर्शन में शामिल हो सकती हैं, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा गया है उनकी तरफ से। और वहीं देखिए 3 बजे सेंट्रल हॉल में इंडिया ब्लॉक के सांसद जुटेंगे। 3 बजे का समय तय किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से विपक्षी प्रतिनिधि मंडल मिलना चाहता है। 10 सदस्यीय डेलीगेशन में राहुल खड़गे समेत कई बड़े नेता होंगे। वहीं अखिलेश, तेजस्वी और ममता बनर्जी आज इस प्रदर्शन में शामिल हो सकती हैं। तो एक बड़ा प्लान है विपक्ष की तरफ से। वोट चोरी के मुद्दे पर देशव्यापी अभियान की तैयारी विपक्ष की है। 10 से 20 अक्टूबर ब्लॉक स्तर पर बैठकें लगातार की जा रही हैं और 25 अक्टूबर को 25 नवंबर तक राज्य स्तरीय रैलियां भी निकाली जाएंगी। तो विपक्ष का प्लान आप समझिए। सीसी एसआईआर पर आगे की रणनीति विपक्ष अभी भी बना रहा है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस्तीफे तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान विपक्ष अपनी तरफ से कर चुका है। तो विपक्ष ने सीसी और एसआईआर के मुद्दे पर अपनी मांगें साफ कर दी है। सबसे पहली और बड़ी मांग है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की। विपक्ष सीसी को पद से हटाने की मांग कर रहा है। दूसरी मांग एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को तत्काल रद्द करने की। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, लिहाजा कथित तौर पर हटाए गए वोटर्स की बहाली की मांग भी की जा रही है। इसके साथ ही विपक्ष मॉडिफाइड फॉर्म 6 को वापस लेने की मांग कर रहा है। विपक्ष इन सभी मुद्दों को लेकर सरकार और चुनाव आयोग पर लगातार दबाव बना रहा है और इसी को लेकर प्रदर्शन भी कर रहा है। तो राहुल गांधी और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी समेत विपक्ष के तमाम दिग्गज नेताओं ने एक दिन पहले राजघाट पर जाकर सत्याग्रह किया। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग और सरकार संविधान और लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने विपक्ष के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने पलटवार करते हुए कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, फिर भी ये लोग अराजकता फैलाना चाहते हैं। तो ये इनकी तरफ से कहा गया है। तो देखिए विपक्ष लगातार केंद्र और चुनाव आयोग पर हमलावर है और आज तक संवाददाता मौसमी सिंह ने कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी से भी बातचीत की है इसको लेकर। देखिए
2: राष्ट्रपति, बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति जी से आप लोग ने समय मांगा है और लगभग 15 से 20 नेता राष्ट्रपति से मिलेंगे कल।
3: देखिए मैं साफ बताऊं आपको, कौन मिलता है कौन नहीं मिलता है अलग बात है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं
2: समय मांगा है कि नहीं।
3: लोकतंत्र हम लाए, कांग्रेस लाई है, इंडिया अलायंस में शामिल लोग लाए हैं, तब भी ये अंग्रेजों के साथ थे, आज भी अंग्रेजों के बताए राह पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है।
0: तो देखिए विपक्ष के आरोपों को लेकर कल बीजेपी ने बड़ा पलटवार किया। पार्टी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए,
4: अगर भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की मनमानी गुंडागर्दी से है। अगर भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा है तो लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर बिना तथ्यों के आरोप जो गांधी वाड्रा परिवार लगा रहा है उससे है। रील मेकिंग कंपटीशन ही इस देश के लोकतंत्र की सच्चाई नहीं है। मैं राहुल गांधी को कहना चाहता हूं, ये परिवार का राज नहीं है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान है। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान ये कहता है कि जब मामला कोर्ट सुनती है तो सड़कों की भीड़ के आधार पर कोर्ट फैसला नहीं करती, कोर्ट तथ्यों के आधार पर फैसला करती है।
0: तो 10 अक्टूबर को दिल्ली में सीजेपी के विरोध को लेकर प्रदर्शन की तैयारी है और लखनऊ में आम आदमी पार्टी ने सीसी के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। वहीं पटना में महागठबंधन की राजभवन मार्च है जहां पर पुलिस ने भारी बैरिगेटिंग की है। एसआईआर और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों को लेकर विपक्षी दल लगातार विरोध जता रहा है। राजधानी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। तो 10 अक्टूबर को प्रस्तावित सीजेपी प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। दिल्ली की सीमाओं पर निगरानी बढ़ाई गई और यूपी हरियाणा तथा राजस्थान से लगने वाले बॉर्डर पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस के मुताबिक धारा 163 लागू है जिसके तहत किसी भी तरह के जुटाव को अवैध माना जाएगा। जुलाई के प्रदर्शन में शामिल रहे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। पुलिस ने लोगों से प्रदर्शन में शामिल न होने, कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है और एहतियातन 10 अक्टूबर को दिल्ली में शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। तो सीजेपी की तरफ से इस प्रोटेस्ट को लेकर पुलिस ने किस तरीके से अपनी तैयारी की हुई है, इस प्रोटेस्ट को लेकर पुलिस क्या ध्यान में रख के कर रही है, चलिए वो समझाते हैं। दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सीजेपी प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। धारा 163 लागू कर दी गई है और जुटाव पर भी रोक लगा दी गई है। यूपी हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर भी कड़ी निगरानी पुलिस की तरफ से रखी जा रही है। साथ ही पुराने प्रदर्शनकारियों पर भी पुलिस की नजर रहेगी और एफआरएस से संदिग्धों की ट्रैकिंग भी लगातार की जा रही है। दरअसल जंतर मंतर पर भीड़ जुटाने पर रोक रहेगी। तो देखिए 10 अक्टूबर को शराब की दुकानें भी बंद करने का फैसला किया गया है। साथ ही प्रदर्शन से दूर रहने की लगातार पुलिस की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है। और खबर दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन को लेकर आपको बता रहे हैं सरकार की सतर्कता भी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। सूत्रों के मुताबिक मेटवाई ने प्लेटफॉर्म्स को सार्वजनिक घटनाक्रम से जुड़ी गलत और भ्रामक जानकारी पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा है। पुराने फोटो वीडियो को मौजूदा घटनाओं के तौर पर पेश करने, फर्जी या बदले हुए कंटेंट और सरकारी अधिकारियों की पहचान के गलत इस्तेमाल पर भी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्लेटफॉर्म्स को सिंथेटिक या मैनिपुलेटेड कॉन्टेंट को लेबल करने और अधिकृत सरकारी एजेंसियों की शिकायतों को प्राथमिकता देने को भी कहा गया है। एडवाइजरी तत्काल प्रभाव से लागू होगी। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। भ्रामक कंटेंट पर निगरानी लगातार बढ़ा दी गई है और पुराने फोटो वीडियो को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। साथ ही फर्जी और जो मैनिपुलेटेड कंटेंट है उस पर भी लगातार नजर रहेगी। एआई से बने कंटेंट को लेबल करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो एडवाइजरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर सरकार की तरफ से दी गई है। सरकारी एजेंसियों की शिकायतों को प्राथमिकता पहले दी जाएगी और वहीं कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सहयोग के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही एडवाइजरी तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात भी कही गई है। तो सरकार की तरफ से ये एडवाइजरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर जारी की गई है। दिल्ली में विपक्षी प्रदर्शन के दौरान मारपीट की खबर भी सामने आई है। दरअसल कश्मीर के रहने वाले एक शख्स फहीम नजीर का आरोप है कि खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थक बताने और प्रदर्शन के दौरान अपनी बात रखने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की है। फहीम ने आरोप लगाया है कि उन्हें घसीटा गया, पीटा गया। हालांकि घटना की वजह और आरोपों की पुलिस जांच कर रही है। सामने आए वीडियो में भीड़ के बीच फहीम के साथ धक्का मुक्की और मारपीट होती तो दिख रही है।
5: मैंने प्रधानमंत्री के लिए नारे लगाए, मैंने पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए नारे लगाए, मैंने दिल्ली पुलिस के समर्थन में नारे लगाए, मैंने होम मिनिस्टर के समर्थन में नारे लगाए। उसके बाद मुझे कांग्रेस की तरफ से बुरी तरीके से पीटा गया, कांग्रेस की तरफ से बुरी तरीके से मारा गया और मुझ पे जानलेवा हमला किया गया। क्या ये मेरी खता थी मैं देश के पक्ष में नारे लगा रहा था, या ये मेरी खता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का फैन हूँ?
0: तो देखिए दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करती महिला आईपीएस ऐश्वर्या सिंह का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐश्वर्या सिंह ने कहा है कि पुलिस की पहली जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखना और प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया है कि हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति ने बस से कूदने की कोशिश की थी, लिहाजा उसकी जान बचाना पुलिस के लिए जरूरी था। उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों को निशाना बनाए जाने पर चिंता भी जताई है।
6: Primary responsibility is to ensure that law and order is maintained while ensuring that everybody, our staff and the protectors are protected.
7: हमने रिपीटेडली रिक्वेस्ट की है प्रोटेस्टर्स को कि वे हट जाएं, अपने आप को कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसमें उनको सेल्फ हार्म हो। वही वो केस है जिसमें सॉ द प्रोटेस्टर जंपिंग आउट ऑफ द बस। इन प्रोटेस्ट में जो एक बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड देखा गया वो ये है कि इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज, वल्गर वर्ड्स, इनअप्रोप्रिएट टचेज हैव बीन यूज्ड स्पेशली अगेंस्ट द फीमेल स्टाफ व्हिच हैज बीन डिप्लॉयड।
0: चलिए अब एक खबर फरीदाबाद से, जहां पर इंडिया अलायंस के प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेता आपस में भिड़ गए। बात बात में मामला एक दूसरे को थप्पड़ मारने तक पहुंच गया और फरीदाबाद में दो कांग्रेस नेताओं की मारपीट उस वक्त शुरू हुई जब प्रदर्शन के दौरान एक महिला नेता दूसरी महिला नेता से आगे निकलने लगी। इसी बात पर वहां पर बवाल शुरू हो गया, एक दूसरे को थप्पड़ जड़ने लगे। वहीं योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। युवाओं को नौकरी देने के मुद्दे पर योगी ने अखिलेश पर तंज कसा और कहा कि समाजवादी पार्टी की तुलना मगरमच्छ से हो सकती है। योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी को सीधा तंज, उन्होंने समाजवादी पार्टी की तुलना मगरमच्छ से की है।
8: पानी में बैठकर पानी में तैरता हुआ मगरमच्छ वहां पर शांति का उपदेश दे रहा हो तो ये शांति के उपदेश देने वाले मगरमच्छों से सावधान रहना। और मुझे कभी कभी हंसी आती है इस बात को लेकर के, जब समाजवादी पार्टी युवाओं की नियुक्ति की बात आज करती है तो मुझे लगता है जैसे कोई मगरमच्छ पानी में बैठकर पानी में तैरता हुआ मगरमच्छ वहां पर शांति का उपदेश दे रहा हो तो ये शांति के उपदेश देने वाले मगरमच्छों से सावधान रहना।
0: देखिए, एक तरफ योगी का वार तो दूसरी ओर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी है। इन सब के बीच उनके अयोध्या दौरे पर रामलला के दर्शन नहीं करने को लेकर सियासत भी तेज हो गई है।
9: राम मंदिर को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच अखिलेश की एक तस्वीर अयोध्या से आई, जहां वो यूपी विधानसभा में एसपी की ओर से घोषित पहले उम्मीदवार पवन पांडे के घर पर आयोजित श्री मद्भागवत ज्ञान यज्ञ में शामिल होने पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी।
10: सुनने में आ रहा है उन्हें अयोध्या में कोई नया प्रत्याशी ही नहीं मिल पा रहा है, और जो बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही अस्वस्थ हैं, तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़ करके दिखाएं।
9: अयोध्या से अखिलेश ने मोदी सरकार और ज्ञानेश कुमार को भी सीख दी।
10: आज के सत्ताधीश और चुनाव आयोग को कृष्ण भगवान से सीखना चाहिए कि राज छल से नहीं प्रेम और जनमत से मिलता है।
9: अखिलेश 5 साल बाद अयोध्या के दौरे पर गए हैं। इससे पहले अखिलेश 2021 में अयोध्या गए थे, जहां उन्होंने हनुमान गढ़ी में दर्शन किए थे और संतों का आशीर्वाद भी लिया था। लेकिन राम मंदिर का निर्माण शुरू होने और उसके उद्घाटन के बाद से ये अखिलेश का पहला अयोध्या दौरा था। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
0: चलिए अब खबर यूपी कैबिनेट की आज होने जा रही बैठक की। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ लोकभवन में कैबिनेट बैठक होने वाली है। इस बैठक में दीपावली से पहले 25 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी संभव है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। साथ ही भदोही का नाम बदलकर संत रविदास नगर करने का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मुफ्त साड़ी देने पर भी फैसला हो सकता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार संभव है और 18 शहरों में ऐसी एसी इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर में अचानक से मौसम ने करवट बदली है, इसी खबर पर करते हैं बात, क्योंकि कई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी यहां हुई तो कई जगह तेज ओलावृष्टि ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। वहीं ओलों की मार से सेब के बागानों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। तैयार फसल पर मौसम की दोहरी मार से बागवानों की चिंता बढ़ गई है। अचानक बदले मौसम से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। किसानों को अब फसल के नुकसान के आकलन और मौसम में सुधार का इंतजार है, तो आफत ने सेब उत्पादकों की परेशानी को भी बढ़ा दिया है। यहां वक्त हो गया सुपर 8 में छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: हमारे निबर मिस्टर कुमार बात बात पे कार मांगते रहते हैं।
3: वो इन लॉस को लाना है, कार मिल जाएगी।
4: अरे यार कुमार, अब तो अपनी कार ले लो यार।
2: कैनरा व्हीकल लोन से
3: अप टू 90% फाइनेंसिंग,
4: क्विक प्रोसेसिंग एंड नो प्री क्लोजर पेनल्टी।
5: कैनरा व्हीकल लोन, अपनी वाली गाड़ी के लिए।
6: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
7: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
6: असली शहद, असली स्वाद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
3: गैसो फास्ट 27%,
2: इनो 9.2%।
4: गड़बड़ है।
5: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
6: मैडी, आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
7: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
6: स्मॉल बैंक?
7: स्मॉल privileged savings account, garima savings account, maxima business, edge current account, business maxima, business privilege, rdf, there's nothing small about them.
6: Okay.
7: Ujjivan, nothing small about us.
8: Aage aage.
9: Are udhar
8: udhar yaar,
9: correct correct.
10: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है। कोई विकेटकीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे PNB वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या FD, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
12: PNB वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।
13: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो थमका लगाने बस।
14: मेरे पास एक आइडिया है।
13: क्या?
14: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
15: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
16: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
17: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
15: कौन सी बनानी है?
18: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
19: गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
11: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
20: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
21: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
22: सोच बदलो और बैंक भी।
23: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है,
24: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
23: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपिवा डायफ्री जूस।
25: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
26: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
27: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद। रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
28: इट्स अ माई वे।
29: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन की गीत सुना।

0: YPC.
1: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है, ये है एक लेगेसी।
2: यू नो डिजाइन्स कितने हैं? लाख से भी ज्यादा डोर
3: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
4: एक परिवार अटूट भरोसा।
5: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
6: In association with
7: Signature Finest Cardamom Seeds,
8: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: Canara Bank, together we can.
10: Anmol Biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।

0: पड़े हैं।
1: फ्लाइट में कम से कम सफर करें मेरे हिसाब से भाई। ट्रैवल लायंस कोई गांजा फूक के चला रहा है, कोई चाकू लेके घुस रहा है, क्या हो रहा है ये?
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं।
1: तुम्हारा
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं।
0: यार काट देना।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

दिल्ली के सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होंगे इंडिया ब्लॉक के सांसद ममता तेजस्वी समेत कई सहयोगी रहेंगे मौजूद। मांगा राष्ट्रपति से मिलने का वक्त। कल सीजेपी का प्रदर्शन, किले में तब्दील हुई राजधानी। चार राज्यों की 6 सीटों पर उपचुनाव के वोटों की गिनती शुरू। नंदीग्राम और रेजीनगर के नतीजों से शुभेंदु सरकार का लिटमस टेस्ट। काउंटिंग सेंटर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। योगी ने दी पीटीए की नई परिभाषा। कहा प्रदेश डुबाऊ, अलायंस की सरकार डालती थी नौकरियों पर डाका। सिफई और सिफारिश के बिना नहीं थी सुनवाई। अखिलेश का चैलेंज, हिम्मत है तो अयोध्या से योगी लड़े चुनाव। भारत की बड़ी आईटी कंपनियों को अमेरिकी झटका। इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया सस्पेंड। उपराष्ट्रपति वेन्स का आरोप, कंपनियां वीजा धोखाधड़ी में शामिल। मिडिल ईस्ट में गहराया संकट। रियाद एयरपोर्ट पर हूती विद्रोहियों का मिसाइल हमला। भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने रियाद की सभी उड़ानें की रद्द।

आज काउंटिंग जारी। 6 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीटों पर सबकी नजर। यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की टीवीके का पहला बड़ा चुनावी टेस्ट। मदुरांगतम और धारापुरम सीटों के नतीजों पर टिक्की निगाहें। 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की मतगणना। बंगाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और असम में खुलेगा उम्मीदवारों की किस्मत का पिटारा। पुडुचेरी की 1 सीट पर काउंटिंग को लेकर सुरक्षा कड़ी। मतगणना केंद्र पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। सीसी और एसआईआर के खिलाफ इंडिया ब्लॉक का संग्राम तेज। आज दिल्ली में फिर से जुटेंगे 300 सांसद। वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने का मांगा वक्त। राहुल गांधी का बड़ा हमला बोले। मोदी, शाह, भागवत और ज्ञानेश कुमार ने भारत को हाईजेक किया। सीसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष। आज संसद के सेंट्रल हॉल में जुटेंगे सांसद। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक का सत्याग्रह जारी। राजघाट पहुंचे राहुल, खड़गे समेत विपक्षी सांसद। एसआईआर और फॉर्म 6 पर घमासान। 13 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाने का विपक्ष ने उठाया मुद्दा। विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी का पलटवार बोली। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा क्यों नहीं करता इंडिया ब्लॉक। प्रमोद तिवारी का बड़ा ऐलान। सीसी के इस्तीफे और एफआईआर की मांग पूरी होने तक जारी रहेगा संघर्ष। राहुल गांधी पर बीजेपी का तीखा हमला। प्रदीप भंडारी बोले, कांग्रेस का आंदोलन जनता के खिलाफ। अभिषेक बनर्जी की 2 टूक। सत्याग्रह से पीछे नहीं हटेंगे। जेल और मौत का भी डर नहीं। सीजेपी के 10 अक्टूबर के प्रदर्शन से पहले दिल्ली अलर्ट। पुलिस बोली, धारा 163 लागू, जुटने पर होगी कार्रवाई। जंतर मंतर 2.2 प्रदर्शन से पहले दिल्ली की सीमाओं पर सख्ती। यूपी, हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर पर बढ़ी निगरानी। सीसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर 10 अक्टूबर को प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने कहा, किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं। सीजेपी के प्रदर्शन से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन प्लान। जुलाई के नीट विरोध में शामिल 2800 लोगों पर नजर। 10 अक्टूबर को दिल्ली में शराब की दुकानें रहेंगी बंद। पुलिस इनपुट के बाद आबकारी विभाग का फैसला। दिल्ली सरकार में फिर से बढ़े प्रशासनिक बदलाव। अश्विनी कुमार को बनाया गया एक्साइज कमिश्नर। हेल्थ सेक्रेटरी रूपेश कुमार ठाकुर को हेल्थ सेक्रेटरी की पोस्ट से हटाकर DUSIB की जिम्मेदारी दी गई। उनके बदले मेखला चैतन्य प्रसाद को स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ की जिम्मेदारी दी। अयोध्या दौरे के दौरान सीएम योगी को अखिलेश की चुनौती। कहा, दम है तो यहां पर खुद चुनाव लड़े मुख्यमंत्री। अखिलेश की चुनौती पर बीजेपी ने पूछा, यहां आकर भी राम मंदिर क्यों नहीं गए एसपी सुप्रीमो। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर तंज। मगरमच्छ पानी में तैरते हुए शांति का उपदेश दे रहा। युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलने पर दी बधाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एडवाइजरी। फेक न्यूज, AI मैनिपुलेटेड कंटेंट पर बढ़ी निगरानी, तुरंत प्रभाव से लागू। पंजाब हरियाणा पंचायत आज तक में बोले सीएम मान, चुनाव आते ही बीजेपी भेजती है CBI। पंजाब हरियाणा पंचायत आज तक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ऐलान, हर अग्निवीर को देंगे नौकरी। मुंबई रोड शो में सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। MP को मिले करीब 90,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव। 14,375 रोजगार के अवसर। ACME ग्लोबल 47,000 करोड़ करेगा निवेश। GST काउंसिल के फैसले से व्यापारियों को बड़ी राहत। टैक्स अधिकारी अब सीधे नहीं कर पाएंगे गिरफ्तारी। मुकदमा चलाने की सीमा भी 1 करोड़ रुपए से 5 करोड़ हुई। फर्जी MBBS दाखिलों के बीच स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठे। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की भारी कमी। 840 पदों में 545 खाली। 52,942 मरीज किए गए रेफर। घाटको पर ROB का 30% काम पूरा होने के बाद बदला डिजाइन। 3 पेयर कैप आंशिक रूप से तोड़े जाएंगे। ट्रैफिक से परेशान स्थानीय लोग। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सचिन वाजे की महंगी कार और ओबरॉय होटल में 100 दिन ठहरने पर जताया आश्चर्य। वसूली के आरोपों का जिक्र किया। भिवंडी में गुलाब जामुन के कंटेनर में मिला जिंदा चूहा। वीडियो वायरल होने पर FDA ने मिठाई की दुकान को नोटिस जारी किया। जालना में धामड़ा बांध पर पानी की रखवाली के लिए पुलिस का पहरा। धामड़ा बांध में सिर्फ 2% पानी बचा। अवैध पानी निकासी रोकने के लिए दिन रात पुलिस की गश्त। रामराज कॉटन ने सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को बनाया अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। रामराज कॉटन के संस्थापक और चेयरमैन KR नागराजन के तेलुगु सुपरस्टार का ब्रांड जुटने से स्वागत किया। वहीं यूपी के भदोही में संपन्न हुआ 4 दिवसीय कारपेट एक्सपो। रास्ते बेर कालीन की रही डिमांड। सस्ते कालीन की डिमांड रही 500 करोड़ के कारोबार का दावा। कालीनों के महाकुंभ में 65 देशों के 447 फॉरेन बायर्स और उनके प्रतिनिधि हुए शामिल। निर्यात के कई ऑर्डर मिले। झांसी में शारदीय नवरात्र के पावन पर्व की रौनक। आस्था और भक्ति के रंग में रंगे श्रद्धालु। लेपर्ड की मॉनिटरिंग के लिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व ने लगाए जाएंगे साइलेंट डिवाइस और हाई ट्रैक सेंसर लगाए जाएंगे। बाघ के साथ लेपर्ड की जाएगी मॉनिटरिंग। पटना के फुलवारी शरीफ में सिलेंडर ब्लास्ट में भीषण आग लगी और आग में झुलसकर महिला की मौत। घर का सामान खाक। यूपी के महोबा में 3 साल के मासूम से हैवानियत। झोपड़ी में सो रही बच्ची से दुष्कर्म। आरोपी युवक हिरासत में। मेरठ में शादी के अगले दिन युवक ने फंदा लगाकर दी जान। खेत में पेड़ से लटका मिला शव। परिवार में मचा कोहरा। गुजरात के डांग में छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या। बेरोजगार बड़े भाई को समझाना, छोटे भाई पर पड़ा भारी। पुलिस ने छोटे भाई को गिरफ्तार किया। जोधपुर में पुलिस को देखकर 9 किलोमीटर तक भागी स्कॉर्पियो। टायर फटने से हादसा। जांच में कार सवार निकले निर्देश।
बागपत में बिजली की चिंगारी ने उजाड़ दिया परिवार, धू धू कर जली दुकान, 5 साल की मासूम और मां की मौत। मुरादाबाद में 26वां तेंदुआ पिंजरे में कैद, 46 पिंजरों से रेस्क्यू अभियान जारी, दहशत अभी भी बरकरार। नागपुर में चलती स्कूल बस में लगी अचानक से आग, स्कूली बच्चों को लोगों ने बचाया, बस में थे करीब 40 बच्चे। ग्रेटर नोएडा में बाइक टकराने के विवाद में सेना के जवान पर हमला, नाक का अगला हिस्सा कटा। चेन्नई में सड़क धंसी, 10 फीट गहरे गड्ढे में गिरी कार, ओएमआर के सिंक होल से कार को निकाला गया बाहर। मुंबई के मुलुंड ईस्ट बीएमसी पैप प्रोजेक्ट में 7 गैस सिलेंडर फटे, आग से मची अफरा तफरी, कोई हताहत नहीं। बागपत में 11 सेकंड का खौफनाक लाइव वीडियो आया सामने, जोरदार धमाके के साथ फटा सिलेंडर, मची भगदड़। रायसेन में प्रदर्शन के चलते आग में झुलसा प्रदर्शनकारी, वीडियो हो रहा है वायरल। सोनीपत में एलोवेरा जेल के नाम पर हो रही थी अवैध शराब की तस्करी, चंडीगढ़ से आई थी खेप, बिहार के पटना भेजने की थी तैयारी। गढ़वा में नाबालिग छात्रा को बाइक से ले जा रहे शिक्षक को ग्रामीणों ने पकड़ा, स्कूल में 5 घंटे चला लोगों का हंगामा, बर्खास्तगी की मांग। धमतरी में पेट्रोल पंप पर सनकी युवक का नाटक, 2 बाइक में लगाई गई आग, नोजल जलाने की कोशिश। खरगोन में पति के साथ टहल रही महिला के गले से बाइक सवार ने 1.5 तोले की सोने की चेन झपटी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मोरबी में मालिया कच्छ हाईवे पर ट्रक ने भेड़ बकरियों के झुंड को कुचला, 25 की मौत हुई, 30 घायल, सीसीटीवी फुटेज वायरल। ग्रेटर नोएडा के जहांगीरपुर में 40 साल के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मरीज की मौत के बाद हंगामा, पोस्टमार्टम की मांग पर भड़के डॉक्टर, गेट बंद कर तीमारदार की पिटाई की गई, वीडियो वायरल। डब्ल्यूएमओ की चेतावनी, भारत में कम बारिश और ज्यादा गर्मी का खतरा, दिसंबर तक मजबूत होगा एल नीनो। उधम सिंह नगर में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, मंडी में बिकने आया धान बारिश में बहा। बांदीपुरा में मौसम ने लिया यूटर्न, अचानक से तेज ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित। लखनऊ में बढ़ा गोमती नदी का जलस्तर, प्लासियो मॉल के सामने जलभराव से राहगीर परेशान। आज इन्होंने अबेस पर देखी 1960 के दशक की क्रीम रंग की लेफ्ट हैंड ड्राइव फोर्ड सैलोन, और एयर चीफ मार्शल एपी सिंह पुरानी फोर्ड कार में 94वां एयरफोर्स डे के कार्यक्रम में पहुंचे। 5 नवंबर को रिलीज से पहले फिल्म रामायण का 4 नवंबर को पेड प्रीव्यू रखा जाएगा, दर्शकों को फिल्म रिलीज से पहले एक दिन बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा मौका। अजय देवगन की दृश्यम 3 ने बॉक्स ऑफिस पर बनाई शानदार रफ्तार, फिल्म 6 दिनों में भारत में करीब 232 करोड़ और दुनिया भर में 350 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। आलिया भट्ट स्पेन में कर रही वेकेशन एंजॉय, खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर। सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन के बाद मंडाडी अब ओटीटी पर दे चुकी है दस्तक, फिल्म आज से नेटफ्लिक्स पर, कई भारतीय भाषाओं में होगी स्ट्रीम। हाइप का वीवर्स कॉन फेस्टिवल पहली बार होने जा रहा है भारत में, दिल्ली में 27 से 28 मार्च 2027 को होने वाले इस फेस्टिवल में केपॉप के साथ भारतीय कलाकार भी भरेंगे परफॉर्म। 13 साल की उम्र में पोस्टर पेंट कर 35 रुपए महीना कमाने वाले नाना पाटेकर ने तय किया करोड़ों तक की कमाई का सफर। मुंबई में 1 BHK में रहने वाले नाना अपने पीछे छोड़ गए करोड़ों की संपत्ति। आरबीआई के रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद पीएनबी, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने बढ़ाए हैं लेंडिंग रेट्स, और ऐसे में 8 अक्टूबर से लोन के लिए चुकानी होगी ज्यादा ईएमआई। होम लोन की लागत बढ़ने से पहली बार घर खरीदने वालों और ईडब्ल्यूएस एलआईजी सेगमेंट पर सबसे ज्यादा असर की आशंका, शुरुआती घरों की डिमांड पर बन सकता है दबाव। फ्लोटिंग रेट वाला गोल्ड लोन लेने वाले की ब्याज लागत बढ़ने की आशंका, ऊंची ब्याज दरों से गोल्ड के निवेश अपील के प्रभावित होने की संभावना जताई गई। अर्थव्यवस्था, नौकरी, कीमतों और अपनी आय को लेकर ग्रामीण परिवारों की चिंता में लगातार छठे महीने इजाफा, सितंबर में ग्रामीण परिवारों की महंगाई की धारणा 6.8% रही।

इंद्र पांडे, बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 9 अक्टूबर 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, रात के 9:35 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, रात के 9:19 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा ग्रे। वृषभ राशि, करियर में सुधार होगा, परिवार में खुशहाली आएगी, छोटी यात्रा हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

जोखिम ना लें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कर्क राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं।

वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में बदलाव के योग हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तुला राशि, वाद विवाद से बचाव करें, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव के योग हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, रिश्तों की समस्या हल होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी।

काम का बोझ बढ़ा रहेगा, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं।

में सुधार होगा, धन का लाभ होगा, लेकिन दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, वाहन सावधानी से चलाएं, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो तुम ठुमका लगाने बस।
2: मेरे पास एक आइडिया है।
1: क्या?
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
3: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता पर स्टेज नहीं हिलता
4: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
5: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
3: कौन सी बनानी है?
6: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: जेके मैक्स वाइप इजी, दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।
9: ज्ञानेश कुमार पर सीजेपी का प्लान जंतर मंतर, 10 अक्टूबर को जंतर मंतर से नई लड़ाई, केंद्र सरकार को सीजेपी का सीधा अल्टीमेटम, चुनावी सिस्टम बदलने निकलेगी टीम सीजेपी। अभिजीत दिपके का जंतर मंतर पार्ट 2। पेपर लीक मामले में अभिजीत दिपके की अगुवाई में सीजेपी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जून महीने में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ आंदोलन शुरू किया था। दुनिया ने जेन जी की शक्ति देखी और आखिरकार सरकार को सीजेपी की मांग के आगे झुकना पड़ा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, एक बार फिर अभिजीत दिपके जंतर मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर आ रहे हैं। 10 अक्टूबर को सीजेपी ने जंतर मंतर पर देश भर के जेन जी को जुटने के लिए बुलाया है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर अभिजीत दिपके की 3 मांगे हैं। पहली मांग ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और आपराधिक मुकदमा। दूसरी मांग देश भर में जारी एसआईआर की प्रक्रिया तुरंत बंद होनी चाहिए। तीसरी मांग मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का सिस्टम बदले। दरअसल दिपके ने वोटर लिस्ट की एसआईआर में कथित गड़बड़ियों का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। मतलब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब दिपके मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आर पार की लड़ाई लड़ने महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे हैं। दावा यही है कि देश का जेन जी अब चुनावी सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर करके ही दम लेगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से जंतर मंतर पर किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक है। दिपके का कहना है कि पाबंदियों के पीछे सरकार का डर है। आरोप यही है कि महाराष्ट्र में सीजेपी कार्यकर्ताओं को दिल्ली जाने से पुलिस रोक रही है। सीजेपी अध्यक्ष अभिजीत दिपके का आरोप है चंद्रपुर में उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस की तरफ से नोटिस भेजा गया है। नोटिस में महाराष्ट्र से दिल्ली जाने वाले कार्यकर्ताओं से ट्रेन के टिकट का सोर्स पूछा गया है। पुलिस नोटिस पर भड़के दिपके ने पूछा है कि महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट को लेकर नोटिस कैसे भेज सकती है। बड़ी बात यह है कि दिपके ने ऐलान किया है कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरते। अगर पुलिस ने जंतर मंतर जाने से रोका और जेल भेजा तो भी ये आंदोलन रुकेगा नहीं। दिपके इसी मुद्दे पर मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन कर चुके हैं। पुलिस की मनाही के बावजूद ये प्रदर्शन हुआ। तब दिपके ने कहा था ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हुआ तो वो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जाएंगे। सीजीपी के ऐलान ने दिल्ली पुलिस की नींदें उड़ा रखी हैं क्योंकि दिपके का प्लान जंतर मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन को शुरू करना है। आज तक ब्यूरो।

0: देश के रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट में तेज ग्रोथ का द्वार कुछ थमता हुआ दिख रहा है। नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि 2026 के पहले 9 महीनों में 8 बड़े शहरों में घरों की बिक्री स्थिर रही है, लेकिन मार्केट में इन्वेंट्री का दबाव बढ़ रहा है और NCR में बिक्री में बड़ी गिरावट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी सितंबर में करीब 2.5 लाख घर बिके, जो पिछले साल के बराबर है। वहीं इन 9 महीनों में करीब 2,80,000 नए घर लॉन्च हुए। बिक्री के मुकाबले ज्यादा लॉन्च से मौजूदा घरों को बेचने में 6.1 तिमाही लगेंगी, यानी नए घरों की सप्लाई बिक्री से ज्यादा बनी हुई है और घरों को बिकने में पहले से ज्यादा समय लग रहा है। NCR मार्केट में तेज ग्रोथ के बाद बिक्री में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक NCR में घरों की बिक्री 11% घटी है, जहां जनवरी से सितंबर के बीच करीब 35,500 घर बिके। इस दौरान 5 से 10 करोड़ रुपए वाले प्रीमियम सेगमेंट में घरों की बिक्री 39% घटी है और NCR की अनसोल्ड इन्वेंट्री में गुरुग्राम की हिस्सेदारी 57% हो गई है। दूसरी तरफ मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे बड़े बाजारों में बिक्री बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में बिक्री 1% बढ़ी है, वहीं बेंगलुरु में 5% और कोलकाता में 4% की बढ़ोतरी हुई है। इस पूरी तस्वीर में सबसे बड़ा बदलाव अफोर्डेबल हाउसिंग में दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 50 लाख रुपए से कम कीमत वाले घरों की बिक्री 14% घटी है, वहीं 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के घरों की बिक्री भी 5.9% घटी है, जबकि 1 से 2 करोड़ रुपए के घरों की बिक्री 6.8% और 2 से 5 करोड़ रुपए के घरों की बिक्री 19.4% बढ़ी है। यानी खरीदारों का रुझान सस्ते से हटकर महंगे घरों की तरफ बढ़ रहा है। कीमतों की बात करें तो NCR और बेंगलुरु को छोड़कर ज्यादातर शहरों में सालाना बढ़ोतरी 3 से 6% के बीच रही है। रिपोर्ट के मुताबिक गुरुग्राम में 4%, नोएडा में 7%, ग्रेटर नोएडा में 11% और गाजियाबाद में 14% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी रियल एस्टेट में फिलहाल दाम गिरने की नहीं, बिक्री की रफ्तार थमने और इन्वेंट्री के दबाव बढ़ने की कहानी बन गया है आज तक ब्यूरो।
1: सोमवार और आ गए
2: चकमक चाचा।
1: एक कचौड़ी, दो समोसा, चकमक तेरा क्या भरोसा।
3: चकमक चाचा से सीधे चकमक है।
1: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रही, गूंज रहा नारा।
3: लेकिन भैया नारा, अरे फालतू में सब बेकार, एकदम बेकार। अरे होते थे हमारे टाइम।
1: अच्छा
3: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई
1: छूटेंगे। तो हमारे टाइम वाले सुनिए,
3: अरे जमीन की चकबंदी में, जमीन की चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में,
1: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
3: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
1: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा लेके जाएंगे।
3: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
1: अरे लाल फूल, नीला फूल, जंजी नंगे ब्यूटीफुल।
3: अरे बारी बारी, सबकी बारी, अबकी बारी अटल बिहारी।
1: चाय गरम, दूध गरम, चकमक चाचा भी सरम
3: है।
1: हाँ,
3: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
1: अरे मेरे सिर में दर्द है, जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
4: हम जैसे, इधर आओ।
5: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

संसद के सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होंगे इंडिया ब्लॉक के सांसद ममता तेजस्वी समेत कांग्रेस के कई सहयोगी रहेंगे मौजूद। मांगा राष्ट्रपति से मिलने का वक्त। कल सीजेपी के प्रदर्शन से पहले किले में तब्दील हुई राजधानी। चार राज्यों की 6 सीटों पर उपचुनाव की वोटों की गिनती शुरू। नंदीग्राम और रेजीनगर के नतीजों से शुभेंदु सरकार का लिटमस टेस्ट। काउंटिंग सेंटर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। योगी ने दी पीटीए की नई परिभाषा। कहा प्रदेश डुबाऊ अलायंस की सरकार डालती थी नौकरियों पर डाका। जारी किया वह रूपिया लिखा पोस्टर। अखिलेश का चैलेंज, हिम्मत हो तो अयोध्या से योगी लड़े चुनाव। मिडिल ईस्ट में गहराया संकट। रियाद एयरपोर्ट पर हूती विद्रोहियों का मिसाइल हमला। भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने रियाद की सभी उड़ाने की रद्द। उत्तराखंड से राजस्थान और यूपी तक मौसम ने ली करवट। चमोली में बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां। लखनऊ में शहर पानी पानी। रेगिस्तान के कई इलाकों में बारिश ने बढ़ाई ठंड।

0: के सुपर हिट शो 9 बज गए में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिना ब्रेक के आपके पसंदीदा ब्रेकफास्ट न्यूज शो में देश और दुनिया की बड़ी और जरूरी खबरों के साथ आपको रूबरू कराएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए हमेशा की तरह नजर डालते हैं बुलेटिन में शामिल खबरों की कुछ झलकियों पर। तो आज राहुल गांधी क्या करने वाले हैं, 2 दिन लंच के बाद, प्रदर्शन के बाद आज इंडिया गठबंधन के आज एक्शन पर अटकलें तेज हैं। पूरी खबर थोड़ी देर में डिटेल के साथ आपको बताएंगे। साथ ही 27 की चुनावी लड़ाई से पहले बीजेपी एसपी में जुबानी जंग छिड़ चुकी है जो कि तेज हो गई है। यूपी से क्या है आज की नई खबर बताएंगे थोड़ी देर में पूरी डिटेल के साथ। पंचतत्व में विलीन हो गए हैं नाना पाटेकर। बुलेटिन के आखिर में नाना की अंतिम विदाई की तस्वीरें भी आगे आपको दिखाएंगे। और आधे घंटे बाद यानी सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर जरूर देखिएगा। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी के चुनावी इम्तिहान की खबर के साथ। आज नतीजे का दिन है और इस वक्त पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए वोटों की गिनती हो रही है। मई में पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने के बाद से बीजेपी के लिए पहले ही चुनावी परीक्षा है। दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में काउंटिंग सेंटर पर कड़ी सुरक्षा के बीच गिनती शुरू हो गई है। दोनों सीटों पर गिनती 2 हॉल में हो रही है और इसे 15 राउंड में पूरा किया जाना है। हालांकि नतीजों का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बीजेपी और टीएमसी के बीच की साख की लड़ाई के रूप में इसे देखा जा रहा है। मंगलवार को इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में करीब 80% मतदान हुआ था और आज उपचुनाव की मतगणना चल रही है। नंदीग्राम रेजीनगर में काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इंद्रजीत कुंडू जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। इंद्रजीत, नंदीग्राम एक बहुत अहम सीट है और ऐसे में अभी काउंटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, अब क्या लग रहा है, कौन बाजी मार सकता है, कौन आगे लग रहा है?
1: देखिए, वो तो कुछ महज कुछ घंटों में पता चल जाएगा कि ये जो चुनावी जो दाव है वो कौन जीतने वाला है, नंदीग्राम और रेजीनगर। हालांकि बीजेपी के पास 2/3 बहुमत है पश्चिम बंगाल में। 5 महीने पहले यहाँ पे चुनाव हुआ था विधानसभा का और इस रिजल्ट से, आज बाय इलेक्शन के रिजल्ट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सबकी निगाहें इन दो सीटों पे इसलिए है क्योंकि इससे पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में विपक्ष का भूमिका कौन सा दल, कौन सी पार्टी वो निभाएगा। ये कांग्रेस रहेगा या ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस या वाम दलों को कहीं ना कहीं कुछ फायदा मिल सकता है इस चुनावी प्रक्रिया से, या ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस का ही जो बागी खेमा है वो भी इस चुनावी मैदान में है, उनको कितना जनसमर्थन मिलता है इसका भी एक डिप टेस्ट देख सकते हैं इस चुनावी रणभूमि में जो 2 सीटों में नंदीग्राम और रेजीनगर में होने वाला है। नंदीग्राम का कॉन्टेस्ट इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे बीजेपी को चुनौती दे रही है कांग्रेस। कांग्रेस यहाँ पे मुख्य विपक्षी दल है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का कैंडिडेट चुनावी जो जंग है उससे वो छोड़ के चली गई। तृणमूल का कैंडिडेट ममता बनर्जी ने उसके बाद कांग्रेस को समर्थन दिया। मिलन प्रधान जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उनको चुनाव से पहले गिरफ्तार किया गया था, फिर वो बेल पे वापस आए, बाहर आए और उसके बाद चुनाव लड़े। नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री का गढ़ माना जाता है क्योंकि उन्हीं के जिले पूर्वी मिदनापुर में ये आता है और 2021 और उसके साथ साथ 2026 दोनों ही बार शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में अपना चुनावी चुनाव जीता था और बीजेपी का झंडा लहराया था। भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों ही सीट शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री वो जीते थे, उसके बाद भवानीपुर उन्होंने रख दिया जहां पे उन्होंने ममता बनर्जी को चुनौती देकर हराया था 5 महीने पहले। नंदीग्राम में छोड़ दिया ये सीट, इसलिए आज यहां पे उपचुनाव के जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और उन्हीं के जो साथी थे चंद्रनाथ रॉत, जो उनका पीएस हुआ करते थे, पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनके हत्या के बाद उनकी माता जी खांसी रानी रॉथ, उनको उम्मीदवार बनाया गया बीजेपी की ओर से। और शुभेंदु अधिकारी ने भी जमके यहाँ पे कैंपेन की, सबके निगाह है नंदीग्राम की सीट पे जरूर है और उसके साथ साथ निजी नगर सीट भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
0: बिल्कुल, दोनों ही सीटें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंद्रजीत, आप नजर बनाए रखेगा, बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर लेते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर चल रहे इंडिया गठबंधन के आंदोलन की। आज फिर से दिल्ली में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन हो सकता है, हालांकि आधिकारिक तौर पर आज के प्लान की जानकारी नहीं दी गई है। आज दोपहर 3 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में इंडिया गठबंधन के सांसद इकट्ठा होने वाले हैं। माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के नेता सेंट्रल हॉल में आगे की रणनीति तैयार करेंगे। तो दोपहर 3 बजे सेंट्रल हॉल में बैठक होने वाली है। इंडिया गठबंधन फिर से प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी इसके बारे में नहीं आई।
2: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दो दिन सड़कों पर संग्राम के बाद राहुल गांधी ने कल राजघाट का रुख कर लिया। तस्वीरें देखिए, बापू की समाधि की परिक्रमा करती प्रियंका गांधी वाड्रा और सामने बापू को श्रद्धांजलि देते राहुल गांधी। करीब दो घंटे तक राहुल, प्रियंका, खड़गे और इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद राजघाट पर ध्यान मुद्रा में बैठे रहे। राहुल गांधी के मुताबिक दिल्ली में सरकार विपक्ष को धरना प्रदर्शन करने नहीं दे रही है।
3: राज्यसभा और लोकसभा के 300 MPs पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। दो दिन से हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है, हमारे लोगों को मारा। रियलिटी ये है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी करके हिंदुस्तान को हाईजैक किया है।
2: ये लगातार तीसरा दिन था जब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ सड़कों पर उतरे थे। 6 अक्टूबर को राहुल और प्रियंका ने 8 घंटे आकाशवाणी भवन में धरना दिया, फिर पुलिस ने हिरासत में लेकर उन्हें उठाया। 7 अक्टूबर राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने जनपद पर लंच कर जंतर मंतर पर प्रदर्शन का प्लान बनाया। पुलिस ने रास्ते में बस रोकी तो राहुल और प्रियंका ने सड़क पर ही धरना दे दिया। पुलिस ने फिर राहुल और प्रियंका को हिरासत में लेकर धरने से उठाया। 8 अक्टूबर जब राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के सांसद ने पहले कनॉट प्लेस पर खाना खाया और फिर राजघाट पर गांधीगिरी दिखाई।
4: प्रधानमंत्री की हैसियत से देश की जो भी आवाज है और उनको सुनना चाहिए और ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन को जीतना इस छल को छोड़ देना चाहिए।
2: कल के राजघाट वाले धरने में शिवसेना UBT और NCP शरद पवार गुट का कोई भी नुमाइंदा नहीं था, लेकिन TMC ममता गुट के सांसद राहुल के साथ मौजूद थे।
5: Mahatma Gandhi has always spoken about Satyagraha. Satyagraha teaches us two things, that if you are to follow that path, you have to shed two fears in life. One is the fear of going to prison, two is the fear of dying. So if we are to take that path of Satyagraha, every person needs to understand that these two fears needs to be shed. BJP can only bully you by showing their might with regard to the agencies and all the institutions they have successfully homogenized.
2: Teen din, teen andaz. Atkalein tez hai. कि अब आज क्या करेंगे राहुल गांधी और उनकी अगुवाई में इंडिया गठबंधन के सांसद। आज संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में इंडिया गठबंधन के सांसदों का जुटान होना है। अटकलें तेज हैं कि दिल्ली आज एक बार फिर से और बड़े प्रदर्शन का गवाह बन सकती है। मौसमी सिंह, ऐश्वर्या पालीवाल और सुशांत मेहरा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
0: कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ज्ञानेश कुमार और सरकार पर हमलावर है और उधर बीजेपी सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कांग्रेस पर लगातार पलटवार कर रही है।
6: हिंदुस्तान में कभी सुना था कि आंदोलन करने के लिए रोज जो इंडी गठबंधन के MPs को आज किसी कनॉट प्लेस, जो देश की राजधानी का सबसे पॉश 5-star रेस्टोरेंट है, उसमें खाने पर पहले बुलाया जाता है, लंच पॉलिटिक्स होती है, फिर वहां से खाने के बाद वॉक करने निकलते हैं, गिरफ्तारी देते हैं, तो ये कोई आंदोलन नहीं है। ये केवल देश में लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं और देश में जिस तरह से दिल्ली में खुद कानून व्यवस्था की स्थिति, लोगों को असुविधा, जाम हो रहा है। कल भी किसी दूसरे होटल में इकट्ठा किए गए थे, सागर रत्ना में, तो लगातार MPs को केवल बुला रहे हैं। अगर लोग होते तो कोई साथ आता, कोई जनता साथ नहीं आ रही, क्योंकि SIR कोई मुद्दा नहीं।
0: अमित भारद्वाज जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, एक तरफ ये प्रदर्शन, दूसरी तरफ राष्ट्रपति से वक्त मांगा है, उनसे मुलाकात का, विपक्ष की क्या रणनीति है?
7: चौथा दिन, चौथा प्रदर्शन, विपक्ष की रणनीति साफ थी कि ये पूरा हफ्ता सरकार को परेशान रखना है और CC ज्ञानेश कुमार के ऊपर प्रेशर बढ़ाना है। एक तरह से बीते 3 दिनों में विपक्ष अपने गेम प्लान में सक्सेसफुल रहा, चौथे दिन को लेकर अलग तरह की तैयारी की गई थी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा ये रिक्वेस्ट डाला गया था इंडिया गठबंधन के बिहाफ पे। ये मुझे मेरे सूत्रों ने बताया था कि एक डेलीगेशन मिलना चाहता है राष्ट्रपति से पूरे मामले को लेकर, सीसी ज्ञानेश कुमार के बारे में कंप्लेंट को लेकर, लेकिन अभी तक उस रिक्वेस्ट पर कॉन्फर्मेशन नहीं आया, यानी कि राष्ट्रपति से मिलने का समय फिलहाल राष्ट्रपति भवन से मिला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या आज भी विपक्षी दलों के तमाम सांसद मार्च करेंगे? इस पे एक सवाल, सांसदों को कहा गया है कि आप सेंट्रल हॉल में पहुंचे, पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर सेंट्रल हॉल है, आइकॉनिक सेंट्रल हॉल, और वहीं पे तमाम सांसद आएंगे। लेकिन अगर राष्ट्रपति भवन की तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन आ जाता है, कोई समय दे दिया जाता है, तो संभवतः जो डेलीगेशन, जिस डेलीगेशन के साइज को अप्रूव किया जाएगा, उतने ही नेता राष्ट्रपति भवन जाते हुए दिखेंगे। लेकिन अहम बात यह है पूजा कि आज आपको दिल्ली में राहुल गांधी के साथ मार्च करते हुए एआईटीसी की चीफ।
0: ठीक है अमित, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच इंडिया गठबंधन के सांसद ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शिकायतों को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक 2 और 5 अक्टूबर को राष्ट्रपति भवन को अनुरोध की चिट्ठी भेजी गई थी। चिट्ठी में 7, 8 या 9 अक्टूबर को राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा गया था, लेकिन अभी तक राष्ट्रपति भवन से चिट्ठी का कोई भी जवाब नहीं मिला है।
8: हमारा वोट का अधिकार छीन रहे हैं, हमारे लोगों को जो मिला हुआ है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल जी, ऐसे महान नेताओं ने हमको जो, आपने सब मिलके हमको जो आजादी दिलाई है, हमको जो फ्रीडम मिला है, हमको जो वोट का अधिकार मिला है, उस वोट के अधिकार को ये छीन रहे हैं। इनको सद्बुद्धि दो।
9: 1,000-1,500 लोगों को दिल्ली की सड़कों पे गैदर करो, धरना करो, और धरने के बहाने इस देश के लोकतंत्र को हाईजैक करने का प्रयास करो। जो जो महात्मा गांधी जी में विश्वास रखता है, जो इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है, उसको ये सवाल का जवाब राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के मामले का फैसला क्या सड़क से हो सकता है? जब सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मामले का फैसला सड़क से नहीं हो सकता, तो क्या ये अपराध नहीं है जो राहुल गांधी कर रहे हैं, सड़क पे भीड़ को मोबिलाइज करके अपनी विम्स और फैंसीज के हिसाब से कहीं किसी जगह घुस जाते हैं, कहीं भी धरने पर बैठ जाते हैं? दिस इज समथिंग विच इज अनडेमोक्रेटिक। जो राहुल कर रहे हैं वो अलोकतांत्रिक है और क्रिमिनल है, और इसका जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को देना चाहिए।
0: चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की। 27 की चुनावी लड़ाई से पहले यूपी में जुबानी जंग तेज है। अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है, तो वहीं बीजेपी अखिलेश के रामलला के दर्शन ना करने पर सवाल खड़े कर रही है।

0: अभी दो हफ्ते पहले ही एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले रायबरेली से अपनी पीडीए रथ यात्रा का आगाज कर प्रदेश में बदलाव का नारा बुलंद किया। अब बीजेपी ने कांग्रेस के एक और गढ़ अमेठी से अखिलेश की घेराबंदी का प्लान तैयार कर लिया है। खबर है कि साल 2024 में राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी से बागी हुए तीन विधायक विनोद चतुर्वेदी, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह बीजेपी में शामिल होंगे। 14 अक्टूबर को अमेठी के गौरीगंज में बीजेपी का बड़ा आयोजन तय हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और बीजेपी महामंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी में तीनों विधायक बीजेपी ज्वाइन करेंगे। यानी कि 2024 के राज्यसभा चुनाव में एसपी के खिलाफ मतदान करने वाले बागी विधायक अब 2026 के राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी के साथ होंगे। यूपी के चुनाव समर से पहले इस पूरे घटनाक्रम को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अखिलेश लगातार बीजेपी में अंदर खाने नाराजगी का दावा कर सरकार पर हमलावर है। और इसका सबसे तीखा प्रहार तब हुआ जब गुरुवार को अयोध्या में एक भागवत कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश ने सीधा सीएम योगी को चुनावी चुनौती दे डाली।
1: सुनने में आ रहा है उन्हें अयोध्या में कोई नया प्रत्याशी ही नहीं मिल पा रहा है, और जो बड़े बड़े दावे करते हैं और जो बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही अस्वस्थ हैं, तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़ करके दिखाएं। और दूध का दूध पानी का पानी करने का झूठा वादा करने वाले का पानी जनता उतार देगी इस बार। इस बार अयोध्या ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता धर्म धन चुराने वालों को बख्शेगी नहीं।
0: बड़ी बात यह है कि अखिलेश 5 साल बाद अयोध्या के दौरे पर पहुंचे थे, जहां वो एसपी के घोषित उम्मीदवार पवन पांडे के घर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में शामिल हुए। हालांकि अखिलेश अयोध्या के रामलला के दर्शन के लिए नहीं गए। आयोजन में बोलते हुए अखिलेश ने राम कृष्ण दोनों का जिक्र किया, जिसके बाद बीजेपी की ओर से हमलों का दौर शुरू हो गया।
1: कई बार आपने और हम लोगों ने सुना होगा, हमारे लिए तो प्रभु श्री राम जो है वही प्रभु श्री कृष्ण है, और जो प्रभु श्री कृष्ण है वही हमारे लिए प्रभु श्री राम है।
2: तो जाए कृष्ण जन्मभूमि चले जाए, श्री राम जन्मभूमि चले जाए, काशी विश्वनाथ जी चले जाए, लेकिन उनको वोट बैंक खिसकने का डर लगेगा।
0: दरअसल अयोध्या, रायबरेली और अमेठी तीनों ही अवध क्षेत्र का हिस्सा है। बीते चुनाव में इस क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा साफ दिखा था। अवध क्षेत्र की 118 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने 88 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी, जबकि समाजवादी पार्टी 30 सीटों पर जीत हासिल कर सकी थी। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या अवध की सियासी लड़ाई का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में बीजेपी अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में जमीनी समीकरणों को दुरुस्त कर रही है, साथ ही अखिलेश के राम मंदिर दर्शन न करने को भी मुद्दा बनाकर घेराबंदी में जुटी है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
3: और ईश्वर कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, 27 की चुनावी लड़ाई से पहले अखिलेश के 3 विधायकों के बीजेपी में जाने की खबर है, क्या मायने निकाले जा रहे हैं?
4: देखिए, ये तीनों बागी विधायक रहे हैं पूजा, और इस बार जब राज्यसभा चुनाव हो रहे थे तो इन पर भी दोरे डाले गए थे कि आप वापस आ करके समाजवादी पार्टी को समर्थन दीजिए, लेकिन एक दिन पहले इन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उसके बाद ये तय हो गया कि समाजवादी पार्टी अपना तीसरा उम्मीदवार अब नहीं उतार पाएगी, ना ही जिता पाएगी। उसके बाद अब ये तीनों लोग, जिसमें कि राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और विनोद चतुर्वेदी, तीनों समाजवादी पार्टी से जीते हुए विधायक थे, अब ये तीनों ज्वाइन करने जा रहे हैं अब बीजेपी। और बड़ा कार्यक्रम अमेठी में होगा जिसमें स्मृति ईरानी और दूसरे कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। दरअसल इसमें से 2 विधायक तो पूरे अवध क्षेत्र के आते हैं, राकेश प्रताप सिंह अमेठी से हैं और अभय सिंह खुद अयोध्या से हैं। तो बीजेपी को लगता है कि चूंकि 2024 में अवध का क्षेत्र जो था वो उन के हाथ से निकला था और अवध में बीजेपी पिछड़ी थी, ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने साथ दिया है उनको वापस लिया जाए, और चूंकि अपने अपने इलाके में मजबूत दमदार कैंडिडेट के तौर पर इनकी पहचान है, तो बीजेपी 2024 की गलती नहीं दोहराना चाहती, उसे लगता है कि वो इन लोगों के भरोसे जीतेगी। दूसरी बात एक और बता दूं आपको कि अखिलेश यादव ने कल चैलेंज किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़े। अब बीजेपी ये चैलेंज कर रही है कि अखिलेश यादव खुद आकर के चुनाव लड़े और अयोध्या के बारे में बोलते हैं, लेकिन अयोध्या में अभी तक उन्होंने दर्शन क्यों नहीं किए। तो एक पॉलिटिकल लड़ाई तो है ही है, साथ साथ अयोध्या को लेकर के भी नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश चल रही है।
3: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार अभिषेक जानकारी के लिए। वहीं आईटी कर्मचारियों के लिए अमेरिका में ग्रीन कार्ड मिलने की राह अब काफी मुश्किल हो सकती है। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने बड़ी आईटी कंपनियों को लेकर सख्त कदम उठाया है, जिसके तहत ग्रीन कार्ड से जुड़े परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया गया है। कई सख्ती की जद में इंफोसिस, कॉग्निजेंट और टाटा, विप्रो, एचसीएल और साथ ही कैप जेमिनी जैसी भारतीय आईटी कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, अडोब को भी इस कार्यक्रम से सस्पेंड किया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने इन कंपनियों पर ग्रीन कार्ड प्रोग्राम का दुरुपयोग का आरोप लगाया है। अमेरिकी श्रम मंत्री कीथ ने यह कहा है कि इन बड़ी कंपनियों पर पर्म व्यवस्था के दुरुपयोग के आरोप हैं, जिसे देखते हुए ये कदम उठाया गया है।
5: We have decided to suspend the PERM program for Microsoft, which means they will no longer be able to apply they'll no longer be able to take those H-1Bs and apply for permanent resident status within the United States of America.
3: इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता रोहित शर्मा। रोहित, एक बार डिटेल में बताइएगा कि आखिर क्यों अमेरिका ने इन कंपनियों को सस्पेंड किया है।
6: देखिए, आज जो दो मुख्य कंपनियों का नाम लिए गए उसमें थे अडोबी और माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट का प्राइमरीली नाम लिया जेडी वैंस ने। उन्होंने कहा कि जो पर्म प्रोसेस है जिससे एक परमानेंट ग्रीन कार्ड मिल सकता है किसी भी एम्प्लॉय को, उसके लिए कंपनी उसके लिए स्पॉन्सर करती है उस इंडिविजुअल को, तो उस पर सस्पेंशन होगा। और उन्होंने डिटेल में समझाया कि किस तरह से पर्म प्रोसेस होता है, किस तरह से इसके एडवर्टाइजमेंट की जाती है और बाकी सारी चीजें। भारतीय कंपनियों को लेके जब उन्होंने कहा कि ये विच कंपनियां हैं, विप्रो, इंफोसिस, टीसीएस, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट और एच फॉर एचसीएल, तो ये अपने आप में डेरोगेटरी टर्म है कहीं ना कहीं, और ये उन्होंने कहा कि इनका भी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये भी फ्रॉड कर रहे हैं। तो हम तो जानते हैं कि कॉग्निजेंट पे इस तरह का पहले ही पर्म सस्पेंशन हो चुका है, तो देखना होगा कि बाकी आउटसोर्सिंग कंपनीज जो है उनके ऊपर भी क्या सस्पेंशन लागू होता है और किस हालात में इस सस्पेंशन को लागू किया जाता है।
3: तो देखिए, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार कल रात पुणे में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र के दोनों डिप्टी सीएम के अलावा कई मंत्री भी मौजूद थे।
7: हम सब के बीच अपनी यादों को छोड़कर विदा हो गए नाना पाटेकर। उनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक पुणे जिले के डोंजे स्थित उनके फार्म हाउस में पूरे राजकीय सम्मान के साथ देर रात उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुखाग्नि उनके बेटे मल्हार ने दी। तस्वीरें देखिए, नाना के करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ हजारों चाहने वालों का हुजूम। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार, चंद्रकांत पाटिल और महाराष्ट्र के कई मंत्री नाना पाटेकर को आखिरी विदाई देने पुणे पहुंचे थे। सीएम देवेंद्र फडणवीस नाना के अंतिम संस्कार में तो मौजूद नहीं थे, लेकिन गोवा से जब उनका पार्थिव शरीर पुणे पहुंचा तो हवाई अड्डे पर उन्होंने नाना को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
8: नाना ने कुछ साल पहले यहाँ जमीन खरीदी थी। अक्सर जो स्टार्स होते हैं वो मुंबई में रहना पसंद करते हैं क्योंकि पूरी फिल्म इंडस्ट्री वहां से फंक्शन होती है, लेकिन नाना को अक्सर गांव में रहने की और खेतों में रहने की उन्हें चाहती है, तो इसलिए यहाँ जमीन ली थी। वहां फार्म हाउस उन्होंने कुछ साल पहले बांधा। अक्सर हर साल यहाँ गणपति उत्सव मनाया जाता है, राज्यभर से सब लोग आते हैं, सीएम हो, डीसीएम हो, सब लोग आते हैं। आज भी पुणे में सब आए थे, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पे गए, उन्हें ट्रिब्यूट दिया और फिर वो वापस चले गए। अभी मैं उसी खेत में खड़ा हूं जहां नाना अपनी चप्पल निकाल के वॉक किया करते थे। खेत में कभी उन्होंने चप्पल नहीं पहनी, उनके दोस्त बताते हैं।
7: प्रहार क्रांतिवीर खामोशी, द म्यूजिकल जैसी फिल्मों में अपने यादगार अभिनय से अपनी अलग पहचान बनाने वाले नाना पाटेकर का कल गोवा में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया था। वो 75 साल के थे।
9: उनकी वाणी जितनी तेज थी, उनकी खामोशी भी उतनी ही प्रभावी थी। वो देश विरोधियों पर निरंतर अंकुश के समर्थक थे। मैं नाना पाटेकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों और चाहने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।
7: नाना पाटेकर अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिल्मी पर्दे पर अपनी बुलंद आवाज और मानवीय संवेदना को झकझोर देने वाले अपने अभिनय के लिए हमारे बीच ताउम्र रहेंगे। ओमकार बाबले, पुणे आज तक।
3: बात मौसम की कर लेते हैं। मौसम ने अचानक से करवट ली है। कई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई तो कई जगह तेज ओलावृष्टि ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। उधर लखनऊ में गोमती के उफान से बाढ़ जैसे हालात हो गए। पौश इलाकों के आसपास पानी भर गया है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लखनऊ में किस तरीके से जगह जगह पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। चमोली में ताजा बर्फबारी हुई है। पहाड़ों पर एक तरफ ठंड हो गई है तो मौसम ने करवट ली है, और जो मैदानी इलाके हैं उनमें अभी भी बाढ़ जैसे हालात पैदा होते नजर आ रहे हैं। ये लखनऊ की तस्वीरें आप देखिए, कैसे पूरे शहर में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं चमोली की तस्वीरें आप देखिए, बर्फबारी, ये खूबसूरत नजारा, और इसका लुत्फ उठाने के लिए अब सैलानी भी पहाड़ी राज्यों का रुख कर रहे हैं। मौसम ने जिस तरीके से करवट ली है, मनाली, शिमला, हर जगह पर पहली बर्फबारी हो चुकी है जिसके लिए सैलानी लगातार पहुंच रहे हैं मौसम का आनंद उठाने के लिए। और ये चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बिना ब्रेक की खबरें जारी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: संसद के सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होंगे इंडिया ब्लॉक के सांसद ममता तेजस्वी समेत कांग्रेस के कई सहयोगी रहेंगे मौजूद। मांगा राष्ट्रपति से मिलने का वक्त, कल सीजेपी के प्रदर्शन से पहले किले में तब्दील हुई राजधानी। चार राज्यों की 6 सीटों पर उपचुनाव के वोटों की गिनती शुरू, नंदीग्राम और रेजीनगर के नतीजों से शुभेंदु सरकार का लिटमस टेस्ट, काउंटिंग सेंटर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। योगी ने दी पीटीए की नई परिभाषा, कहा प्रदेश डुबाऊ अलायंस की सरकार डालती थी नौकरियों पर डाका, जारी किया बहरूपिया लिखा पोस्टर। अखिलेश का चैलेंज, हिम्मत है तो अयोध्या से योगी लड़े चुनाव। मिडिल ईस्ट में गहराया संकट, रियाद एयरपोर्ट पर हूती विद्रोहियों का मिसाइल हमला, भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने रियाद की सभी उड़ाने की रद्द। उत्तराखंड से राजस्थान और यूपी तक मौसम ने ली करवट, चमोली में बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां, लखनऊ में शहर पानी पानी, रेगिस्तान के कई इलाकों में बारिश ने बढ़ाई ठंड।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: फरीदाबाद में इंडिया अलायंस के प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं की झड़प, मामूली विवाद को लेकर हुआ झगड़ा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पार्टी के बयान जारी किया, बोले जल्द हो जाएगी दोनों में सुलह। ओडिशा के मयूरभंज में दर्दनाक हादसा, एक एम्बुलेंस में आग लगने की वजह से एक मरीज की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के भिलाई में केमिकल फैक्ट्री में वेल्डिंग की चिंगारी से लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने मिलकर पाया काबू। इटावा में एक शिक्षक को बच्चे के साथ हंसी मजाक करना भारी पड़ा, वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षक को सस्पेंड किया गया। हरिद्वार में हाथी का कहर, खेत में काम कर रहे किसान को पटक पटक कर मार डाला, घटना के विरोध में लोगों का हंगामा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक ने 3 दोपहिया वाहनों को मारी टक्कर, 4 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ब्रेक फेल होने के कारण लगभग 24,000 लीटर डीजल से भरा एक टैंकर सड़क पर पलटा, लोगों में मची लूट की होड़। वहीं उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस का बड़ा एक्शन, आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के आरोपियों के कब्जे में जमीन पर बुलडोजर चलाया, अतिक्रमण से करवाया मुक्त। कौशाम्बी में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत, अस्पताल स्टाफ फरार और सीएमओ ने दिए जांच के बाद कार्रवाई के आदेश। गुजरात के दाहोद से दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने, प्रेमी जोड़े ने इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए किया सुसाइड। कोटा में हॉस्टल में छात्र की मौत के बाद बदलाव प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, 13 मांगों पर सहमति के बाद धरना खत्म। तेलंगाना के विकाराबाद में बिजली कटने से लिफ्ट के बीच में जाकर लिफ्ट रुकी और कई महिलाएं और बच्चे करीब 1 घंटे तक लिफ्ट के अंदर फंसे रहे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में गरबा इवेंट के प्रमोशन के दौरान यातायात नियमों की उड़ी धज्जियां, प्रमोशन के लिए लड़कियों को कार की छत पर बैठाकर घुमाया गया। इटावा में रोडवेज बस की खिड़की से कूदकर बंदी फरार और जिला जेल से ले जाने के दौरान बदमाश ने दिया वारदात को अंजाम। हेमकुंड साहिब में जबरदस्त बर्फबारी, चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के बीच कपाट बंद होने की तैयारी तेज, 10 अक्टूबर को शीतकालीन के लिए बंद होंगे कपाट। चमोली में बारिश का कहर, टंगड़ी के पागल नाले में मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद, लगातार बारिश से बद्रीनाथ हाईवे खोलने में देरी, मौके पर मशीनें नहीं पहुंचने से हजारों यात्री परेशान। कड़ाके की ठंड के बावजूद बद्रीनाथ धाम में लगातार भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना जारी और अब तक 19 लाख से ज्यादा भक्त कर चुके हैं दर्शन। 6 उपचुनावों के नतीजे आज, काउंटिंग जारी, 6 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी। बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीटों पर सबकी नजर, यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की टीवी के का पहला बड़ा चुनावी टेस्ट, मदुरंगतम और धारापुरम सीटों के नतीजों पर टिकी निगाहें। 5 विधानसभा सीट 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की मतगणना, बंगाल पुडुचेरी तमिलनाडु और असम में खुलेगा उम्मीदवारों की किस्मत का पिटारा। पुडुचेरी की 1 सीट पर काउंटिंग को लेकर सुरक्षा कड़ी, मतगणना केंद्र पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। सीईसी और एसआईआर के खिलाफ इंडिया ब्लॉक का संग्राम तेज हुआ,

एसआईआर और फॉर्म 6 पर घमासान, 13 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाने का विपक्ष ने उठाया मुद्दा। विपक्षी प्रदर्शन पर बीजेपी का पलटवार, बोली सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा क्यों नहीं करता इंडिया ब्लॉक। प्रमोद तिवारी का बड़ा ऐलान, सीएसी के इस्तीफे और एफआईआर की मांग पूरी होने तक जारी रहेगा संघर्ष। राहुल गांधी पर बीजेपी का तीखा हमला, प्रदीप भंडारी बोले कांग्रेस का आंदोलन जनता के खिलाफ। अभिषेक बनर्जी की दो टूक, सत्याग्रह से पीछे नहीं हटेंगे, जेल और मौत का भी डर नहीं। सीजेपी के 10 अक्टूबर के प्रदर्शन से पहले दिल्ली अलर्ट, पुलिस बोली धारा 163 लागू, जुटने पर होगी कार्रवाई। जंतर मंतर 2.0, प्रदर्शन से पहले दिल्ली की सीमाओं पर सख्ती, यूपी हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर पर बढ़ी निगरानी। सीसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर 10 अक्टूबर को प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस ने कहा किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं। सीजेपी के प्रदर्शन से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन प्लान, जुलाई के नीट विरोध में शामिल 2800 लोगों पर नजर। 10 अक्टूबर को दिल्ली में शराब की दुकानें रहेंगी बंद, पुलिस इनपुट के बाद आबकारी विभाग का फैसला। दिल्ली सरकार में फिर से बढ़े प्रशासनिक बदलाव, अश्विनी कुमार को बनाया गया एक्साइज कमिश्नर। दरअसल हेल्थ सेक्रेटरी रूपेश कुमार ठाकुर को हेल्थ सेक्रेटरी की पोस्ट से हटकर डीयूएसआईबी की जिम्मेदारी दी गई है, उनके बदले मेखला चैतन्य प्रसाद को स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ की जिम्मेदारी दी। अयोध्या दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव की चुनौती, कहा दम है तो यहां से खुद लड़े चुनाव। अखिलेश की चुनौती पर बीजेपी ने पूछा यहां आकर भी राम मंदिर क्यों नहीं गए एसपी सुप्रीमो। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर तंज, मगरमच्छ पानी में तैरते हुए शांति का उपदेश दे रहा, युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलने पर दी बधाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एडवाइजरी, फेक न्यूज एआई मैनिपुलेटेड कंटेंट पर बढ़ी निगरानी, तुरंत प्रभाव से लागू। पंजाब हरियाणा पंचायत आज तक में बोले सीएम मान, चुनाव आते ही बीजेपी भेजती है सीबीआई। पंजाब हरियाणा पंचायत आज तक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ऐलान, हर अग्निवीर को देंगे नौकरी। मुंबई रोड शो में सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, एमपी को मिले करीबन 90,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 14,375 रोजगार के अवसर। एसीएमई ग्लोबल 47,000 करोड़ करेगा निवेश। जीएसटी काउंसिल के फैसले से व्यापारियों को बड़ी राहत, टैक्स अधिकारी अब सीधे नहीं कर पाएंगे गिरफ्तारी, मुकदमा चलाने की सीमा भी 1 करोड़ रुपए से 5 करोड़ तक हुई। फर्जी एमबीबीएस दाखिलों के बीच स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल, उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की भारी कमी। घाटकोपर आरओबी का 30% काम पूरा होने के बाद बदला डिजाइन, 3 पियर कैप आंशिक रूप से तोड़े जाएंगे। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने सचिन भाजे की महंगी कार और ओबरॉय होटल में 100 दिन ठहरने पर जताया आश्चर्य, वसूली के आरोपों का जिक्र किया। भिवंडी में गुलाब जामुन के कंटेनर में मिला जिंदा चूहा, वीडियो वायरल होने पर एफडीए ने मिठाई की दुकान को नोटिस जारी किया। जालना के धामड़ा बांध पर पानी की रखवाली के लिए पुलिस का पहरा, धामड़ा बांध में सिर्फ 2% पानी बचा, अवैध पानी निकासी रोकने के लिए दिन रात पुलिस की गश्त। रामराज कॉटन ने सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को बनाया अपना नया ब्रांड एम्बेसडर, रामराज कॉटन के संस्थापक और चेयरमैन के आर नागराजन ने तेलुगु सुपरस्टार का ब्रांड से जुड़ने पर किया स्वागत। यूपी के भदोही में संपन्न हुआ 4 दिवसीय कारपेट एक्सपो, सस्ते कालीन की रही डिमांड, 500 करोड़ के कारोबार का दावा। कालीनों के महाकुंभ में 65 देशों के 447 फॉरेन बायर्स और उनके प्रतिनिधि हुए शामिल, निर्यात के कई ऑर्डर्स मिले। वहीं मुंबई में रेल यात्रियों की समस्याओं पर रविंद्र चौहान का एक्शन, डीआरएम के साथ बैठक में सुरक्षा और लोकल देरी पर चर्चा की। लेपर्ड की मॉनिटरिंग के लिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व में लगाए जाएंगे साइलेंट डिवाइस और हाईटेक सेंसर, वहीं बाघ के साथ लेपर्ड की भी की जाएगी मॉनिटरिंग। आज रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेला जाएगा भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टी20 मैच। 5 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बना चुकी है टीम इंडिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अंडर 19 विश्व एशिया कप का शेड्यूल जारी किया, 5 नवंबर को ओमान में शुरू होगा टूर्नामेंट और 14 नवंबर को खेला जाएगा फाइनल। टूर्नामेंट में 8 नवंबर को पाकिस्तान से होगा भारत का मुकाबला, ग्रुप ए में है भारतीय टीम। 50 ओवर के फॉर्मेट में इस टूर्नामेंट के सभी मैच मस्कत के ओमान क्रिकेट अकादमी के ग्राउंड 1 और ग्राउंड 2 पर खेले जाएंगे, टूर्नामेंट में शामिल हो 8 टीमें। 15 अक्टूबर को एशियन गेम्स के मेडलिस्ट से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी, पीएम आवास में होगी मुलाकात। आज ओटीटी पर रिलीज हो रही इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर रिपोर्टिंग लाइव, परिणीति चोपड़ा निभा रही हैं एक महत्वाकांक्षी युवा पत्रकार का कलाकार। वहीं 400 करोड़ रुपए कमाने के बाद अब तेलुगु में हनुमान अंश का दिखेगा जलवा, आज थिएटर्स में आएगी फिल्म। अजय देवगन की दृश्यम 3 के बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई, 6 दिनों में भारत में करीब 232 करोड़ और दुनिया भर में 350 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन। दिवाली से पहले 5 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म रामायण, 4 नवंबर को रखा जाएगा फिल्म का पेड रिव्यू। साउथ सिनेमा के वेटरन एक्टर कमल हासन की अगली फिल्म इंडियन 3 का ऐलान हुआ, वहीं मेकर्स ने सोशल मीडिया पर फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किए। कनाडाई कवियत्री और लेखिका एनी कार्सन को 2026 का साहित्य नोबेल और उन्हें नई साहित्यिक शैलियां गढ़ने और क्लासिकल परंपरा से नए अंदाज में संवाद के लिए मिला सम्मान। एनी कार्सन कविता, गद्य और संवाद और अनुवाद को मिलाकर लिखती हैं और उनकी रचनाओं में प्राचीन यूनानी साहित्य का खास प्रभाव दिखाई देता है। 1998 की उनकी किताब ऑटोबायोग्राफिक ऑफ रेड काफी मशहूर रही और उनका काम ओपेरा से लेकर साहित्यिक आलोचना और कविता तक कई रूपों में फैला। कासन अब एलिस मुनरो और अनसेट जैसे नामों जैसे साथ शामिल हो गई हैं और पिछले साल 2025 में साहित्य का नोबेल हंगरी के लेखक को मिला था।
साहित्य नोबेल के साथ कार्सन को 12 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर मिलेंगे और ये रकम करीब 1.2 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 10 करोड़ रुपए के बराबर। आज से एयरटेल के पोस्टपेड प्लान 50 रुपए तक महंगे होने की वजह से नए प्लान वाले ग्राहकों को साल में 600 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। अमेजॉन में फिर से छटनी करते हुए यूएस, भारत और ब्रिटेन में करीब 1000 व्हाइट कॉलर कर्मचारियों को निकाला गया। कांडला फोरम 2026 में ग्रीन एनर्जी पर ग्लोबल मंथन, ग्रीन हाइड्रोजन, मेथनॉल, बंकरिंग और साथ ही ग्रीन शिपिंग पर चर्चा, 200 से ज्यादा वरिष्ठ लीडर्स जुटे। एलन मस्क ने एक्स पर लिखा है कि कुछ बड़े बिजनेसमैन भारत में स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट की एंट्री रोकने में लगे, कंपनी को अभी भी आखिरी सरकारी मंजूरी का स्थिति। वही अगले 5 साल में क्विक कॉमर्स का बाजार करीब 7 गुना बढ़ने का अनुमान, किराने के सामान के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और बड़े घरेलू सामान भी होंगे इसका हिस्सा। पूर्वी यूक्रेन में रूस का भीषण हमला और बस पर हुए हमले में 30 से अधिक लोगों की मौत हुई, 18 लोग घायल। रूसी सरकार ने नेटो की दी चेतावनी, कहा बाल्टिक देशों में अमेरिका समेत अतिरिक्त नेटो सैनिकों की संभावित तैनाती को रूस मानता है तनाव बढ़ाने वाला कदम। टर्की की सरकार का बड़ा फैसला, टर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि यमन के ईरान समर्थित हुती मलेशिया के हमलों से सऊदी अरब को मदद देने के तरीकों पर टर्की कर रहा है मंथन। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची ने अमेरिका के खिलाफ बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च सर्विस ने माना था कि ईरानी सशस्त्र बलों ने 42 अमेरिकी सैन्य विमान गिराए थे। इसराइल ने यरूशलम में ब्रिटेन ने बंद किया अपना कॉन्सुलेट, इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने दी जानकारी। दक्षिण कोरिया और मिस्र ने अपने द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी में बदला और सोल में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी से मुलाकात कर इसका ऐलान किया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और ब्रिटिश पीएम के बीच बड़ी मुलाकात, बैठक में फैसला, जर्मनी ब्रिटेन इटली और जापान के साथ मिलकर बनाएगा नया लड़ाकू विमान। पोलैंड के एक प्राथमिक स्कूल में 15 वर्षीय पूर्व छात्र ने किया चाकू से हमला, हमले में स्कूल की 37 वर्षीय महिला केयरटेकर की मौत हुई, प्रिंसिपल और एक शिक्षक घायल। फ्रांस में नहीं थम रहा छात्रों का प्रदर्शन, गुरुवार को हुए प्रदर्शन के कारण देशभर में 224 हाई स्कूल बंद रहे, आंशिक रूप से खुले हैं 150 स्कूल। कनाडाई लेखिका एन कार्सन ने जीता साहित्य का नोबेल, नोबेल पुरस्कार देने वाली स्वीडिश अकेडमी के मुताबिक उन्हें यह पुरस्कार उनके बेबाक और नए प्रयोगों के लिए मिला।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ, पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ, पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
2: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेनको गहने।
3: यार लोन भूल गया। मैरी
4: इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना।
5: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
3: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
5: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
6: देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
7: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
8: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
9: मेरे पास एक आइडिया है।
8: क्या?
9: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुमटा टीएमटी बार से जो बना है,
10: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
11: क्योंकि वो मजबूत रुमटा टीएमटी से बना है।
12: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
13: कौन सी बनानी है?
14: गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
15: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
16: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
17: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
16: असली शहद, असली स्वाद।
18: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
19: गड़बड़ है।
20: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
21: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
22: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।
23: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
24: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
23: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
25: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
26: तो स्विच टू भीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
27: इट्स अ माय वे।
28: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: बीजेपी ने ये वीडियो एक्स पर साझा किया है। वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है महिला पुलिसकर्मी से धक्का मुक्की का। बीजेपी ने लिखा है, राहुल गांधी देश को पितृसत्ता को खत्म करने और महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने का उपदेश देते हैं। यहाँ कैमरे पर वो एक महिला पुलिस अधिकारी को धक्का दे रहे हैं और उन्हें गलत तरीके से छू रहे हैं। राहुल गांधी का दोहरापन अब छिपा नहीं है, ये कैमरे पर साफ दिख रहा है। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लिखा, महिला पुलिसकर्मी के साथ राहुल गांधी

0: जी का व्यवहार। सत्ता के लालच में आदमी कैसी हरकत कर सकता है, खुद समझिए। बीजेपी के आरोपों के बीच दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस मोबाइल फोन से बनाए गए वीडियो की जांच कर रही है। इस वीडियो में महिला पुलिस अफसरों, महिला कांस्टेबलों और अन्य पुलिस कर्मियों के साथ हमले की तस्वीरें हैं। सूत्रों के मुताबिक वीडियो से प्रदर्शनकारियों की पहचान की जा रही है। दिल्ली पुलिस इनके खिलाफ सरकारी कर्मचारियों पर हमले, सरकारी काम में बाधा डालने से जुड़ी भारतीय न्याय संहिता की धारा में FIR दर्ज कर सकती है। इससे पहले आकाशवाणी भवन में धरने को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कई लोगों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की थी, जिसे राहुल गांधी मेडल बता रहे हैं।
1: मेरे पास 45 FIR है। मेरा लक्ष्य है कि मुझे 100 चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर 100 FIR लगे। हर FIR मेरे लिए एक मेडल है।
0: राहुल गांधी के तेवर से साफ है कि वो रुकेंगे नहीं, बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक सड़क पर सीधी लड़ाई जारी रखेंगे। राहुल गांधी के इसी तेवर ने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा रखी है, खासकर राहुल गांधी की गुरिल्ला रणनीति से। 6 अक्टूबर के घटनाक्रम पर गौर कीजिए। इंडिया गठबंधन के सांसद संसद भवन से निर्वाचन सदन मार्च कर रहे थे। उन्हें रोकने का पुलिस का भारी बंदोबस्त था, लेकिन राहुल गांधी पुलिस को चकमा देकर आकाशवाणी भवन में जाकर धरने पर बैठ गए। कल भी ऐसा ही हुआ। विपक्ष के सांसदों के साथ जनपद के पास लंच का आयोजन और फिर अचानक जंतर मंतर की तरफ कूच। हालांकि इस बार दिल्ली पुलिस को इसकी भनक लग गई थी और वो तैयार थी।
2: जो लोग सीधे सीधे चलने लग गए उनको आप आराम से ले जाके कोशिश पहली यही होनी है कि आराम से प्यार से बोल के, रेस्पेक्टफुली बोल के हम सबको ले जाएं और सबको बैठा लें, ठीक है। नेक्स्ट ये होने वाला है अपना कि क्योंकि सपोर्टर्स भी बहुत सारे होते हैं तो वो भी रेजिस्ट करते हैं, पकड़ लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। मेल को फीमेल्स भी कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं बहुत जोर से, तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और बसेस, बस में बैठा दिया तो बस से निकल ना पाए और बस के आगे की क्लैरिटी देनी पड़ेगी ताकि बस सीधा सीधा निकल जाए।
0: दिल्ली पुलिस की कोशिश है राहुल को धरने पर बैठने से रोकना, लेकिन राहुल मार्च भी निकाल रहे हैं और धरने पर भी बैठ रहे हैं। 21 जुलाई को भी ऐसा ही नजारा सामने आया था, जब नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली पुलिस को चकमा देते हुए राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठ गए थे। मौसमी सिंह, दिल्ली, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: सो सॉरी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
4: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
4: कौन सी बनानी है?
7: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
8: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
9: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
10: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
9: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
11: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: ये कल की बात थी जब जंतर मंतर पर धरना देने निकले थे राहुल और प्रियंका गांधी। ये दो तस्वीरें देखिए, कैसे राहुल गांधी को उठाकर गाड़ी में डाला जाता है और दूसरी तस्वीर में प्रियंका गांधी को देखिए, कैसे सड़क पर लेटी प्रियंका गांधी को उठाने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है और फिर प्रियंका गांधी को सड़क से उठाकर हिरासत में लिया जाता है। सड़क पर तगड़ा संग्राम छिड़ जाता है क्योंकि प्रियंका गांधी सड़क से उठने को तैयार नहीं होती है। राहुल गांधी इन दिनों खास रणनीति से हल्ला बोल कर रहे हैं। कल भी राहुल गांधी ने वही फॉर्मूला आजमाया। पहले सागर रत्ना रेस्टोरेंट में लंच के बहाने विपक्ष के सारे नेता इकट्ठा हुए और फिर अचानक जंतर मंतर की तरफ कूच करने लगे।
1: प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर, वहाँ पे हम जाकर सब आज फिर से बैठे और देश को बताएं कि हमारे लिए ज्ञानेश कुमार जी देश के लेजिटिमेट इलेक्शन कमिश्नर नहीं है।
0: आज फिर कांग्रेस ने विपक्ष के सांसदों को लंच पर बुलाया। लोकेशन फिर वही कनॉट प्लेस का इलाका। कल दक्षिण भारतीय व्यंजनों वाला रेस्टोरेंट था, आज उत्तरी भारत के डिशेस का खास इंतजाम।
2: साउथ इंडियन खाया था, आज नॉर्थ इंडियन खाएंगे सब बैठ करके। अब खाएंगे पिएंगे तभी तो लड़ेंगे, अब चलेंगे लड़ने के लिए।
3: लेकिन ये कैसे हो रहा सर कि हर दिन आप लोगों का लोकेशन जंतर मंतर के आसपास का ही हो रहा है लंच का?
2: अब ये तो देखिए, अच्छे रेस्टोरेंट्स यहाँ पर हैं, अब एकदम कहीं हो नहीं पा रहा तो एकदम रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं सब लोग, जाकर एक साथ इकट्ठा होकर के बात करते हैं फिर चलते हैं।
0: सवाल ये है कि उत्तरी भारतीय व्यंजनों की टेबल पर आज कहाँ के कूच की तैयारी है? क्या आज फिर कल वाला वाकया दोहराए जाने का प्लान है? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज फिर दिल्ली पुलिस से टकराने वाले हैं? आज आखिर क्या होने वाला है? मौसमी सिंह के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।

0: त्योहारों की खुशियों के बीच आम आदमी की जेब पर महंगा झटका लगा है। इसकी वजह आरबीआई एमपीसी की तरफ से बढ़ाया गया रेपो रेट है, जिससे लोन की ईएमआई बढ़ने की आशंका है। आरबीआई ने करीब 3.5 साल बाद ब्याज दरें बढ़ाकर महंगाई के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% से बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। इसके साथ ही पॉलिसी रुख को न्यूट्रल से बदलकर कैलिब्रेटेड टाइटनिंग कर दिया है, यानी जरूरत पड़ने पर आगे भी ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती हैं। दरअसल महंगाई दर लगातार आरबीआई की 4% के सुरक्षित लक्ष्य से ऊपर बनी हुई थी। यही वजह है कि सेंट्रल बैंक को रेट बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions, developments and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate under the LAF by 25 basis points to 5.5%. Consequently, the STF rate stands adjusted at 5.25%, and the marginal SF and the marginal standing facility rate and the bank rate to 5.75%.
0: इस फैसले का सीधा असर आपकी हर महीने जाने वाली ईएमआई पर पड़ेगा। अगर बैंक भी इसी तरह ब्याज दर बढ़ाएंगे तो 50 लाख के 20 साल के होम लोन पर ब्याज दर 8.5% की जगह 9.25% हो सकती है। इससे ईएमआई करीब 800 रुपए बढ़कर 42,200 रुपए हो जाएगी। हालांकि बैंक एफडी पर भी आगे से ज्यादा ब्याज का फायदा मिलने की संभावना है। इसी के साथ आरबीआई ने महंगाई और ग्रोथ का अनुमान भी बढ़ा दिया है।
1: With headline CPI inflation expected to average almost 5.8% in the next three quarters, including this, and core inflation projected at 4.4% for this financial year. Real GDP growth for this year is projected at 7.1%, with Q2 at 7.2%, Q3 at 6.9%, and Q4 at 6.8%.
0: साफ है कि ब्याज दरों में ये बढ़ोतरी आगे भी जारी रह सकती है, जिससे कर्जदारों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। वहीं फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगाने वालों को बैंकों से ज्यादा रिटर्न का तोहफा मिल सकता है। आदित्य केराड़ा, आज तक।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

संसद के सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होंगे इंडिया ब्लॉक के सांसद ममता बैनर्जी, तेजस्वी समेत कांग्रेस के कई सहयोगी रहेंगे मौजूद। मांगा राष्ट्रपति से मिलने का वक्त, कल सीजेपी के प्रदर्शन से पहले किले में तब्दील हुई राजधानी। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और रेजीनगर उपचुनाव की काउंटिंग में बीजेपी आ गए। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी बीजेपी की लीड, तमिलनाडु की एक सीट पर एआईएडीएमके आगे। योगी ने दी पीडीए की नई परिभाषा, कहा प्रदेश दुबाव अलायंस की सरकार डालती थी नौकरियों पर डाका। जारी किया बहरूपिया लिखा पोस्टर, अखिलेश को चैलेंज, हिम्मत हो तो अयोध्या से योगी लड़े चुनाव। ओमानी को पायलट का अटैक झेलकर फ्लाई दुबई को क्रैश से बचाने वाले भारतीय पायलट कैप्टन मछार को सम्मानित करेगा इसराइल। मिलेगा प्रेसिडेंशियल अवार्ड फॉर सिविलियन हीरोइज्म। उत्तराखंड से राजस्थान और यूपी तक मौसम ने ली करवट। चमोली में बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां, लखनऊ में शहर पानी पानी, रेगिस्तान के कई इलाकों में बारिश ने बढ़ाई ठंड।

0: नमस्कार, मैं हूं अंशति इस्तवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर से हाजिर है। विपक्ष का मिशन अक्टूबर जारी है। अब सीईसी ज्ञानेश कुमार और एसआईआर की लड़ाई राष्ट्रपति तक पहुंच गई है। विपक्षी सांसद आज संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जुटेंगे। ममता तेजस्वी की भी इसमें अब एंट्री हो गई है। फिर 10 बड़े विपक्षी नेता अपनी शिकायतों के साथ राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे, लेकिन अब तक साफ नहीं है कि राष्ट्रपति भवन से उनके मिलने का वक्त तय हुआ है या नहीं हुआ है। बात होगी सीजेपी के जंतर मंतर 2 की। नीट पेपर लीक के बाद सीजेपी ने वोट चोरी के खिलाफ जंतर मंतर पर सत्याग्रह का ऐलान किया है, लेकिन इस बार न तो पुलिस से मंजूरी मिली है और न ही पुलिस किसी दरिया दिली के मूड में दिखाई दे रही है। साथ ही बताएंगे उपचुनाव के रुझान की। खास तौर पर नजर होगी बंगाल की 2 सीट नंदीग्राम और रेजी नगर पर। तो इस सब के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं सीईसी के मुद्दे पर। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष की लड़ाई राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने वाली है। विपक्ष के 10 नेता आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिल सकते हैं। आज इंडिया गठबंधन के सारे सांसद और बड़े नेता संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जुटने वाले हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक 2 और 5 अक्टूबर को राष्ट्रपति भवन को अनुरोध की चिट्ठी भेजी गई थी। चिट्ठी में 7, 8 या 9 अक्टूबर को राष्ट्रपति से मिलने का वक्त भी मांगा गया था, लेकिन अब तक राष्ट्रपति भवन से चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन जो विपक्षी नेता हैं, वो आज जुटने वाले हैं सेंट्रल हॉल में संसद भवन के। तो आइए इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज का। अमित, वक्त मुकर्रर नहीं है मुलाकात का, पता भी नहीं है कि आगे का प्लान क्या है, और अक्सर आजकल विपक्षी पार्टियां बता भी नहीं रही हैं कि वो करने क्या जा रही हैं। तो फिर ये 3 बजे जो मिलेंगे और जुटेंगे, क्या लग रहा है, क्या प्लानिंग होगी?
1: अंजलि, देखिए, इस पूरे हफ्ते में जिस तरह से प्रोटेस्ट की एक लड़ी लगा दी विपक्षी दलों ने, इंडिया गठबंधन ने, आज उसका फाइनल मैच है। 3 बजे के आसपास सभी सांसदों को, राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को कहा गया कि आप सेंट्रल हॉल में मौजूद रहिए। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर सेंट्रल हॉल है, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि समय एक तरह से फ्लूइड है, फ्लेक्सिबल है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति भवन की तरफ से मंजूरी, कॉन्फर्मेशन आखिरी समय में भी आता है तो एक डेलीगेशन यहाँ से जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जाकर अपनी बात रखेगा। सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जो उनके कंसर्न्स हैं उनको सामने रखा जाएगा। मार्च होना तय है, ये मेरे सूत्र बता रहे हैं, चाहे समय मिले या ना मिले। अगर समय मिलता है तो ऐसी स्थिति में पार्लियामेंट से सांसद मार्च करते हुए विजय चौक तक आएंगे, और विजय चौक से जो अप्रूव्ड डेलीगेशन होगा वो राष्ट्रपति से मिलने के लिए जाएगा। और अगर समय नहीं मिलता है तो ये एक तरह से विपक्षी दलों के लिए मुफीद होगा, उनके हक में होगा, क्योंकि वो विजुअल ऑप्टिक्स जो हम बीते 3 दिनों से देख रहे हैं वो आज लगातार जारी रहेगा 4th दिन भी, क्योंकि बिना परमिशन के तो आप राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो विपक्षी सांसद हैं उनको डिटेन करना पड़ेगा दिल्ली पुलिस को। तो 300 के आसपास सांसद तो रहेंगे, लेकिन बड़ी तस्वीर में तब्दीली आज ये है कि तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी इसी मार्च के लिए दिल्ली आई हैं। सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी एम ए बेबी दिल्ली में इसी मार्च के लिए हैं, और कोशिश हो रही है कि बड़े नेताओं का चेहरा आज के इस प्रदर्शन में दिखे। अंजलि
0: जी, अमित, आप हमारे साथ बने रहे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार 3 दिन से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग तक मार्च पर निकले थे, वो रोका गया तो आकाशवाणी भवन में धरने पर बैठ गए। उन्हें उस वक्त हिरासत में लिया गया, फिर रिहाई भी हो गई। 7 अक्टूबर को कनॉट प्लेस वाले लंच के बाद जंतर मंतर कूच करने की कोशिश में पुलिस से उनकी झड़प भी हुई, जिसकी तस्वीरें सामने आई, वायरल हुई, फिर हिरासत और फिर रिहाई। और कल कनॉट प्लेस पर विपक्ष के लंच के बाद गांधी की समाधि पर जाकर उनका विरोध दर्ज करने का सिलसिला देखा गया।
2: राज्यसभा और लोकसभा के 300 MPs पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। 2 दिन से हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। पहले दिन हमें रोका, इलेक्शन कमीशन के सामने रोका, उसके बाद हमने कहा हम जंतर मंतर जाके करना चाहते हैं, और कल आपने देखा जंतर मंतर में हमें रोका, हमारे लोगों को मारा, रियलिटी ये है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी करके हिंदुस्तान को हाईजैक किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को नष्ट किया है, वोट चोरी की है, और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी।
0: तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निशाने पर सीसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार है, सुनिए।
3: देश में आज जो बढ़ती हुई महंगाई है और युद्ध की समस्या है और जो भी समस्याएं उन्होंने खड़ी की है, सब जनता के विरोध में है। इसीलिए हम गांधी जी के स्मारक पर जाकर प्रार्थना करेंगे कि इनको तुम जो आज़ादी हमको दिलाई है, उस आज़ादी को ये लोग छीन ले रहे हैं और इस आज़ादी को ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारा वोट का अधिकार छीन रहे हैं, हमारे लोगों को जो मिला हुआ है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल जी, ऐसे महान नेताओं ने हमको जो, आपने सब मिलके हमको जो आज़ादी दिलाई है, हमको जो फ्रीडम मिला है, हमको जो वोट का अधिकार मिला है, उस वोट के अधिकार को ये छीन रहे हैं, इनको सद्बुद्धि दो।
0: तो बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है और उनके प्रदर्शन को अराजक करार दिया है।
4: हजार डेढ़ हजार लोगों को दिल्ली की सड़कों पे गैदर करो, धरना करो और धरने के बहाने इस देश के लोकतंत्र को हाईजैक करने का प्रयास करो। जो जो महात्मा गांधी जी में विश्वास रखता है, जो इस देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है, उसको ये सवाल का जवाब राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के मामले का फैसला क्या सड़क से हो सकता है? जब सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मामले का फैसला सड़क से नहीं हो सकता, तो क्या ये अपराध नहीं है जो राहुल गांधी कर रहे हैं, सड़क पे भीड़ को मोबिलाइज करके अपनी विम्स और फैंसीज के हिसाब से कहीं किसी जगह घुस जाते हैं, कहीं भी धरने पर बैठ जाते हैं? दिस इज समथिंग विच इज अनडेमोक्रेटिक। जो राहुल कर रहे हैं वो अलोकतांत्रिक है और क्रिमिनल है, और इसका जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को देना चाहिए।
0: तो कांग्रेस और बीजेपी लगातार आमने सामने है और सांसदों के बीच भी जुबानी जंग छिड़ गई है।
5: आम जनता भी चाहती है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग गणेश कुमार जी इस्तीफा दे, और आम जनता का भी विश्वास जो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग पर, निर्वाचन की निष्पक्षता पर, आज आम जनता में भी उनके मन में ये सवाल उठ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जितना दिन गणेश कुमार जी अपने कुर्सी पर अड़े रहेंगे, उतना ही विश्वास आम जनता का केंद्रीय निर्वाचन आयोग में घटता जाएगा।
6: हिंदुस्तान में कभी सुना था कि आंदोलन करने के लिए रोज जो इंडी गठबंधन के एमपीज को आज किसी कनॉट प्लेस, जो देश की राजधानी का सबसे पॉस फाइव स्टार रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें खाने पे पहले बुलाया जाता है, लंच पॉलिटिक्स होती है, फिर वहाँ से खाने के बाद वॉक करने निकलते हैं, गिरफ्तारी देते हैं। तो ये कोई आंदोलन नहीं है, ये केवल देश में लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। और देश में जिस तरह से दिल्ली में खुद कानून व्यवस्था की स्थिति, लोगों को असुविधा, जाम हो रहा है, कल भी किसी दूसरे होटल में इकट्ठा किए गए थे सागर रत्ना में, तो लगातार एमपीज को केवल बुला रहे हैं। अगर लोग होते तो कोई साथ आता, कोई जनता साथ नहीं आ रही, क्योंकि एसआईआर कोई मुद्दा नहीं।
0: तो ममता बैनर्जी ने भी दिल्ली कूच किया है, आज विपक्ष के बड़े नेताओं के साथ राष्ट्रपति से अपनी शिकायतों के साथ मिल सकती हैं। कल प्रदर्शन के हिस्सा रहे उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी ने साफ कर दिया था कि उनका विरोध कहां तक जाने वाला है।
7: महात्मा गांधी has always spoken about satyagraha. Satyagraha teaches us two things, that if you are to follow that path, you have to shed two fears in life. One is the fear of going to prison, two is the fear of dying. So if we are to take that path of satyagraha, every person needs to understand that these two fears needs to be shed. BJP can only bully you by showing their might with regard to the agencies and all the institutions they have successfully homogenized.
0: तो चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज का। अमित, विपक्ष तो अपनी पूरी प्लानिंग कर रहा है और विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन बीजेपी इसको कैसे काउंटर कर रही है, उसके क्या अटैक्स और हमले हैं?
1: देखिए, जो इंडिया गठबंधन है उसने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया कि आप देखेंगे पिछले हफ्ते कैसे लेफ्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस और सिविल सोसाइटी ने अपनी तैयारी की, प्रदर्शन किया, नैरेटिव वहां सेट किया गया। इस हफ्ते उस नैरेटिव को पेश दिया इंडिया गठबंधन ने और कल से सीजेपी का प्रोटेस्ट शुरू होने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य बिंदु है इसको काउंटर करने का, वो नैरेटिव में पीछे ना रहें, अपना नैरेटिव भी सामने रखें, इसको लेकर है। और उसमें है क्या सवाल है, मुख्यतः तीन तरह के सवाल हैं। क्या ज्ञानेश कुमार को हटाया जा सकता है चीफ इलेक्शन ऑफिसर के पद से, सीसी के पद से, तो उसका प्रोसेस क्या है? इम्पीचमेंट विपक्ष के पास नंबर्स नहीं है। लीगल केस अगर आप लेकर जाना चाह रहे हैं तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी और विपक्षी दल क्यों चाहते हैं कि इसका फैसला सड़क पे हो जाए, जबकि आपके पास इम्पीचमेंट का रास्ता है जहां आपके पास आंकड़े नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है, कानूनी रास्ता है, वहां भी आप सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। सबसे तीखा हमला हमने बीते दिनों में देखा है बीजेपी की तरफ से जो रहा है वो ये कि जिन जगहों पे बैलेट पेपर से भी चुनाव हो रहा है वहां आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। तो कांग्रेस की इलेक्टोरल सक्सेस का रिकॉर्ड जो है उसको सामने रखते हुए बीजेपी इस प्रोटेस्ट को काउंटर कर रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन को लगता है कि उनका काम आम जनता तक इस मैसेज को पहुंचाने का था जो इन प्रदर्शनों से हो रहा है।
0: शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अमित। उधर विपक्ष के प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस भी एक्शन में है। कल कांग्रेस के लंच से पहले दिल्ली में वेन्यू के बाहर हंगामा हुआ था। बीजेपी समर्थक की नारेबाजी पर कश्मीरी मुस्लिम युवक की पिटाई हो गई थी, इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। पुलिस ने अब इस मामले में एक केस दर्ज कर लिया है। यह शख्स उसी जगह पहुंचा था जहां कल लंच प्लान किया गया था। हमारे सहयोगी अंशुल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुल, जो मामला दर्ज हुआ है उसकी डिटेल्स बताएं।
8: जी बिल्कुल, दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में जो है एफआईआर दर्ज कर ली है। कल देर शाम फहीम का एमएलसी कराया गया था जिसमें उसके ऊपर कई चोटों के जो निशान थे वो सामने आए थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने जाके इस पूरे मामले में जो है एफआईआर कर ली है। एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ की गई है और मारपीट की धाराओं में जो है ये एफआईआर करवाई गई है। तो अब ये देखना होगा कि दिल्ली पुलिस कितनी जल्दी इन लोगों को आइडेंटिफाई कर सकती है और ये सुनिश्चित कर सकती है कि इनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जा सके। कल जब हमने फहीम से बात भी की थी तो फहीम का यही कहना था कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस जनता पार्टी मिलकर के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और देश प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, इससे वो बिल्कुल सहमत नहीं है और इसी वजह से वो वहां जानबूझकर पहुंचा था और बीजेपी के समर्थन में और प्रधानमंत्री के समर्थन में नारे लगाए थे, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उस पर ताबड़तोड़ हमला किया और उससे कई चोटें भी आई हैं।
0: जी अंशुल, आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नई दिल्ली में 8 दिन से लगातार हंगामा और बवाल जारी है। 2 अक्टूबर से अब तक यानी कि 8 दिनों में दिल्ली पुलिस ने करीब 25 एफआईआर दर्ज की हैं। इन एफआईआर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लेकर लेफ्ट विंग से जुड़े लोगों तक के नाम शामिल हैं। अब आरोप है कि पुलिस के साथ मारपीट की गई है, सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की गई और धारा 163 के प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए हैं। यानी चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच अब कानून व्यवस्था को लेकर भी पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। सवाल यह है कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार अपनी जगह, लेकिन क्या जो दिल्ली पुलिस पूछ रही है कि क्या विरोध के नाम पर कानून तोड़ने की इजाजत दी जा सकती है? और ऐसे में दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो जारी कर दिया है जिसमें पुलिस वालों के साथ बदसलूकी दिखाई जा रही है। दिल्ली पुलिस कह रही है कि पुलिस वालों के साथ भी बदसलूकी की गई है, उनको भी चोटें आई हैं। लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया है कि उनके कितने लोगों को चोट आती रही है इन मामलों में। हमारे सहयोगी अंशुल हमारे साथ जुटे हुए हैं। अंशुल, अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हमने ये भी देखा था कि इस बार जो अलग रहा वो ये था कि दिल्ली पुलिस बॉडी कैम के साथ पहुंची थी। तो अंशुल, ये बताइए कि इस बार की तस्वीरें जो अब सामने आ रही हैं पुलिस की, वो क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश है? दिल्ली पुलिस क्या कहना चाह रही है इन तस्वीरों के जरिए?
8: जी, अगर आप पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया देखें तो सोशल मीडिया पर जो एक कांग्रेस की आईटी सेल या कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से एक नैरेटिव जो बनाया जा रहा है उसमें वो कहीं ना कहीं ये दिखाना चाह रहे हैं कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन हालांकि जो ग्राउंड की असलियत है, जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, लोग हैं जो ग्राउंड पे ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी रहे, उनके खिलाफ किस तरीके से बदसलूकी हो रही है, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की जो इमेज है उस पर सोशल मीडिया की बात करें तो उस पर डेंट पड़ा है, और उसी इमेज को कहीं ना कहीं दिखाने के लिए और असलियत दिखाने के लिए कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस को टारगेट किया जा रहा है, स्पेसिफिकली जो महिला ऑफिसर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, कई सारी महिला कांस्टेबल को गंभीर चोटें भी आई हैं, उनका एमएलसी भी कराया गया है और उनके कंप्लेंट के बेस पर अब ये एफआईआर हो रही है। जैसा आपने बताया ये बॉडी कैम इसलिए जरूरी हो गया था क्योंकि पिछले प्रोटेस्ट में भी ये देखा गया कि किस तरीके से वीडियोज को एडिट कर करके सोशल मीडिया पर डाला गया और एक फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, तो वो नैरेटिव को तोड़ने के लिए इस बार दिल्ली पुलिस ये सुनिश्चित कर रही है कि उनके पास हर मूवमेंट की जो है वीडियो फुटेज हो। कई सारे बाहर से फोटोग्राफर्स भी हायर किए गए हैं जो ऐसे प्रोटेस्ट में जाते हैं और एक एक मिनट को एक एक मूवमेंट को कैप्चर करते हैं ताकि आगे अगर कोई विवाद हो तो दिल्ली पुलिस के पास कम से कम अपना पक्ष रखने के लिए ये सारे सबूत सामने हो।
0: अंशुल, आप हमारे साथ बने रहे, तो दिल्ली पुलिस की लगातार कोशिश है कि वो भी अपना पक्ष सामने लगे, लेकिन उसके सामने चुनौतियां बहुत हैं क्योंकि कल होने वाला है सीजेपी का प्रदर्शन और उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी है और इंडिया गठबंधन भी लगातार सड़कों पर नजर आ रही है। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अलग अलग शहरों की, जहां ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर और उनके खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त यही आ रही है कि सीजेपी प्रदर्शन को लेकर अब दिल्ली पुलिस जो है वो अलर्ट पे आ गई है क्योंकि दिल्ली की सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी गई है और यूपी हरियाणा तक राजस्थान से लगने वाले बॉर्डर पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस के मुताबिक धारा 163 लागू है जिसके तहत किसी भी तरह के जमावड़े को अवैध माना जाएगा। जुलाई के प्रदर्शन में शामिल रहे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों पर भी नजर रखी जा रही है, तो पुलिस ने लोगों से प्रदर्शन में शामिल न होने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। एहतियातन 10 अक्टूबर को दिल्ली में शराब की दुकानों को भी बंद कर दिया गया है।
9: परमिशन फिर से मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, परमिशन जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है इस देश में। जो ब्रिटिशर्स थे जो गुलामी के टाइम पे हमारे अंदर एक दिमाग में डाल दिया कि जो जी हुजूर करके आप उन लोगों से परमिशन ले लीजिए, बताइए कितना एब्सर्ड और स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट है कि बार बार हम लोग को बोला जाता है कि सरकार के खिलाफ विरोध करना है तो सरकार से आप परमिशन ले लीजिए, सरकार जी साहेब 2 घंटे का परमिशन दीजिए हमें प्रोटेस्ट करना है, इस हिसाब से देश नहीं चल सकता। विरोध करना है तो पीसफुल तरीके से विरोध होगा, डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट अगर जंतर मंतर है तो वहां पे हम लोग जाएंगे, वो अधिकार है, संविधान हमें अधिकार देता है राइट टू प्रोटेस्ट का, संविधान हमें अधिकार देता है राइट टू पीसफुल असेंबली का, उसी को एसर्ट करने हम लोग आए हैं।
0: तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
12: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगे, परदेश की गलियों में अपने वतन के गीत सुनो,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एक दो
3: विश्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ
1: एक हिंट तो देते।
2: आगे आगे
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: Maddie, I need to open a savings account.
5: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
4: स्मॉल बैंक?
5: स्मॉल privilege savings account, garima savings account, maxima business edge current account, business maxima business privilege RDF, there's nothing small about them.
4: Okay.
5: Ujjivan, nothing small about us.
6: Tera pyar pyar pyar ulta baar sir ek baar do tum thumka lagane bas.
5: Mere paas ek idea
6: hai. Kya?
5: Ek don ke ghar ko 12 mulkon ki police ne charon taraf se gher liya hai, lekin wo ghar ko tod nahi paaye. Rungta TMT bar se jo bana hai.
7: Ek rockstar hota hai. अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता
8: क्योंकि वो मजबूत रूंगटा टीएमटी से बना है।
9: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बाहर से बना है।
7: कौन सी बनानी है?
10: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
11: गड़बड़ है।
12: गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गैसोफा, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
13: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
14: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
15: सोच बदलो और बैंक भी।
16: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
17: और वही कहाँ गए थे घूमने?
18: जीके मैक्स।
19: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
18: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
19: जेके वॉल मैक्स
18: बेस्ट पेंट,
19: जेके मैक्स।
18: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
20: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
21: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee, lagaye swad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa.
22: In association with
23: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
21: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
22: इन एसोसिएशन विद
23: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
24: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन के गीत सुनो।
25: एक तो विश्राम।

0: हूँ।
1: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
2: एक हिंट तो देते।
3: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार रोटी थमका लगाने पर।
4: मेरे पास एक आइडिया है।
3: क्या?
4: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
5: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
6: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
7: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
5: कौन सी बनानी है?
8: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
9: गड़बड़ है।
10: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
11: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
12: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
13: सोच बदलो और बैंक भी।
14: और वही कहाँ गए थे घूमने?
15: जीके मैक्स।
16: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
15: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
17: जेके वॉल मैक्स
18: बेस्ट पेंट,
19: जेके मैक्स।
20: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints.
21: JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।
22: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है,
23: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
22: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायफ्री जूस।
24: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
25: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद। रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं, पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
26: इट्स अ माय वे।
27: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
28: In association with
29: Signature Finest Cardamom Seeds,
30: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
31: Canara Bank, together we can.
32: Anmol Biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
33: Wait, lifestyle के लिए 10 अलग pages क्यों follow करना? Health, fitness, yoga, mental wellness, सब कुछ एक ही जगह। FitTuck. Simple tips, expert insights, real conversations. Life upgrade karo easy way. Watch only on FitTuck YouTube.
34: Rajya Sabha aur Lok Sabha ke 300 MPs peaceful protest karna cha rahe hain. Do din se hame protest nahi karne diya ja raha hai. Pehle din hame रोका, इलेक्शन कमीशन के सामने रोका, उसके बाद हमने कहा हम जंतर मंतर जाके करना चाहते हैं, और कल आपने देखा जंतर मंतर में हमें रोका, हमारे लोगों को मारा। रियलिटी ये है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी करके हिंदुस्तान को हाईजैक किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को नष्ट किया है, वोट चोरी की है, और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी, यू विल सी दैट दीज फोर पीपल आर ब्रॉट टू जस्टिस।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: संसद के सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होंगे इंडिया ब्लॉक के सांसद, ममता तेजस्वी समेत कांग्रेस के कई सहयोगी रहेंगे मौजूद। मांगा राष्ट्रपति से मिलने का वक्त, कल सीजेपी के प्रदर्शन से पहले किले में तब्दील हुई राजधानी। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और रेजीनगर उपचुनाव की काउंटिंग में बीजेपी आ गए। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी बीजेपी की लीड, तमिलनाडु की एक सीट पर एआईएडीएमके आ गए। योगी ने दी पीडीए की नई परिभाषा, कहा प्रदेश दुबाव अलायंस की सरकार डालती थी नौकरियों पर डाका, जारी किया बहरूपिया लिखा पोस्टर। अखिलेश का चैलेंज, हिम्मत हो तो अयोध्या से योगी लड़े चुनाव। ओमानी को पायलट का अटैक झेलकर फ्लाई दुबई को क्रैश से बचाने वाले भारतीय पायलट कैप्टन मच्छार को सम्मानित करेगा इसराइल, मिलेगा प्रेसिडेंशियल अवार्ड फॉर सिविलियन हीरोइज्म। उत्तराखंड से राजस्थान और यूपी तक मौसम ने ली करवट, चमोली में बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां, लखनऊ में शहर पानी पानी, रेगिस्तान के कई इलाकों में बारिश ने बढ़ाई ठंड।

0: आज सुबह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर का। उपचुनाव के रुझान आने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जादू बरकरार दिख रहा है। नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा दोनों सीटों पर बीजेपी ने शुरुआती बढ़त बना ली है। आपको बता दें कि नंदीग्राम और रेजीनगर में काउंटिंग शुरू हो चुकी थी। 15 राउंड की काउंटिंग वहां होनी है और ऐसे में ये दो अहम सीटें जो हैं जिन पर उपचुनाव चल रहा है उसमें बीजेपी इस वक्त बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो नंदीग्राम के दूसरे राउंड में बीजेपी 19,000 से ज्यादा वोटों से आगे नजर आ रही है इस वक्त और बीजेपी की बढ़त यहां इस वक्त शुरुआती दौर में नजर आ रही है। नंदीग्राम और रेजीनगर दोनों अहम हैं, प्रतिष्ठा की बात है बीजेपी के लिए भी और विपक्षी पार्टियों के लिए भी, और ऐसे में उपचुनाव पर सबकी नजर गड़ी हुई है और बीजेपी इस वक्त आगे रुझानों में नजर आ रही है। तो इधर हम आपको स्क्रीन पर दूसरे राज्यों के उपचुनाव के इस वक्त के आंकड़े भी दिखा रहे हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो या बंगाल हो। और इस वक्त नंदीग्राम से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। इंद्रजीत, अगर इस चुनाव को देखें तो ये सियासी गणित की बात नहीं है, ये सियासी प्रतिष्ठा की बात ज्यादा है, क्यों?
1: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा, ये सियासी प्रतिष्ठा की बात है क्योंकि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उनके लिए एक बड़ी चुनौती है पश्चिम बंगाल की राजनीति में। उनकी साख इस वक्त दांव पे है। हम लोग इस वक्त नंदीग्राम में हैं, मेरे पीछे काउंटिंग सेंटर है और दूसरे राउंड के बाद बीजेपी के कैंडिडेट हांसी रानी रौत वो आगे निकल चुकी है। 19,000 से ज्यादा का लीड उनको मिल चुका है और उसके साथ साथ रेजीनगर जो दूसरा सीट है मुर्शिदाबाद में, वहां पे भी बीजेपी का जो कैंडिडेट है शकरफ सरकार वो भी 16,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। हालांकि सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल की राजनीति जो फॉलो करते हैं, सबकी निगाहें इस चीज पे टिकी रहेंगी कि जो विपक्ष का जो वैक्यूम अभी क्रिएट हुआ है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, वो किस पार्टी को कौन वो हासिल कर सकता है? क्या वो कांग्रेस होगा? क्या वो ममता बनर्जी का तृणमूल कांग्रेस होगा? क्या वो जो बागी खेमा है तृणमूल में डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस होगा या वामपंथी दल होंगे? नंदीग्राम की बात करें तो इस वक्त दूसरे पायदान पे हैं कांग्रेस के कैंडिडेट मिलन प्रधान। आपको याद होगा इस चुनाव से पहले उनको गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद हाईकोर्ट ने उनको बेल पे रिलीज किया था और वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो दूसरे राउंड पे है। लेकिन जो फासला है उनका और बीजेपी कैंडिडेट के बीच में वो बहुत अंतर बहुत ज्यादा इस वक्त दिख रहा है। सिर्फ 2 राउंड हुए हैं और उसी में 19,000 का लीड बीजेपी का कैंडिडेट ले चुका है। कहीं ना कहीं पूर्वी मिदनापुर नंदीग्राम ये मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है, इसीलिए चैलेंज भी बहुत ज्यादा है। रेजीनगर में आप अगर आप देखें तो वहां पे AJUP का लीडर हुमायूं कबीर का ये सीट था, उन्होंने वो छोड़ दिया, अब उसके बाद बाइपोल हो रही है। वहां पे AJUP हुमायूं कबीर की पार्टी वो सेकंड पे चल रहे हैं और बीजेपी इस वक्त सबसे आगे है, 16,000 की लीड उनके पास है।
0: तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे इंद्रजीत, इसके मायने क्या रहेंगे बीजेपी के लिए? ऐसा नहीं कि सरकार और सत्ता को कोई खतरा रहा हो अगर ये सीट हाथ ना आती, लेकिन विपक्ष को इसका क्या नुकसान होगा?
1: बिल्कुल, राजनीतिक तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि कौन ये विपक्ष का जो वैक्यूम पश्चिम बंगाल में इस वक्त है, सत्ता परिवर्तन के बाद कौन बीजेपी को चुनौती दे सकता है पश्चिम बंगाल में, यही सबसे बड़ा सवाल उभर के आएगा। और इस रिजल्ट से कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एक ट्रेंड समझ में आएगा, साफ हो सकता है क्या ममता बनर्जी के पार्टी में अभी भी दम है इस चुनावी राजनीति में लड़ने का, क्योंकि जिस तरह से उनके इतने सारे नेता छोड़ के चले गए, बागी गुट में चले गए, अरेस्ट हो गए, जेल के अंदर है। आज ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ दिल्ली में है, रुकी हुई है। वही दूसरी ओर कांग्रेस जो पिछले कुछ सालों में उनका जो ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिक्स था वो ज्यादा दिख नहीं रहा था, लेकिन वो अब कोशिश कर रही है यहाँ पे वो जगह वो ले ले। दूसरी तरफ जो वामपंथी दल है, CPM हो, बाकी दल है, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ उनकी जो लड़ाई है उसको कैपिटलाइज करके वो चुनावी राजनीति में अपना दाव खेले। तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये 2 बाय इलेक्शन के रिजल्ट्स को देखना कि कौन वो विपक्ष का मेन भूमिका पश्चिम बंगाल में, बीजेपी शासित पश्चिम बंगाल में वो निभाता है। अंजलि,
0: जी बिल्कुल अहम हो जाएगा ये जानना कि क्या इतना बड़ा वैक्यूम हो जाएगा विपक्ष को लेकर के कि बीजेपी के सामने ही इस वक्त कोई खड़ा नहीं नजर आएगा। ऐसे में इंद्रजीत, शुभेंदु अधिकारी के लिए इन रिजल्ट्स के क्या मायने रहेंगे?
1: देखिए, शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में, तो उनके लिए ये एक प्रेस्टीज फाइट है। हालांकि इस उपचुनाव के रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सरकार को, 208 सीटें उनके पास है, दो तिहाई बहुमत उनके पास है, लेकिन ये जो दो सीट है कभी हमने इससे पहले नहीं देखा है कि बाई इलेक्शन में खुद मुख्यमंत्री जाके कैंपेन करे। तो आप समझ सकते हैं, शुभेंदु अधिकारी 5 महीने पहले वो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद ये जो बाइपोलअप हो रहा है इसमें भी दोनों ही जगह रिजनगर और नंदीग्राम में उन्होंने कैंपेन की। नंदीग्राम में 3-4 रैलियां भी उन्होंने निकाल ली और ये नंदीग्राम जो है वो उनके खुद का होम डिस्ट्रिक्ट है, पूर्वी मिदनापुर जिला है, कांथी में उनका घर है और उससे ज्यादा दूर नहीं है नंदीग्राम, यहां से वो चुन के आए हैं। 2021 में उन्होंने ममता बनर्जी को हराया, फिर इस बार उन्होंने फिर से नंदीग्राम सीट जीता। यहां से जो नंदीग्राम आंदोलन हुआ था जिसके साथ ममता बनर्जी का राजनीतिक उत्थान हुआ था उसके साथ साथ शुभेंदु अधिकारी का नाम भी जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए प्रेस्टीज बैटल है। वो चाहते हैं कि उनका ये जो गढ़ है ये सुरक्षित रहे, यहां पे किसी भी तरह से विरोधी जो विपक्ष वो कहीं ना कहीं से बिल्कुल कोई इन्फ्लुएंस वो ना रख पाए, इसकी कोशिश जारी है। और उसके साथ साथ रेजीनगर में शुभेंदु अधिकारी के लिए चैलेंज ये दिखाना है बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को कि ऐसा एक सीट जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी है उसको बीजेपी कैसे जीत सकती है और कैसे बंगाल की राजनीति में एक टेक्टोनिक शिफ्ट आया है वो प्रूव करना चाहेंगे। और यही कारण है कि उन्होंने रेजीनगर को भी एक शायद एक चैलेंज के तौर पर, एक पर्सनल चैलेंज के तौर पर लिया है।
0: जी बिल्कुल, और ऐसे में अहम ये भी हो जाता है जैसे कि आप पहले भी बता रहे थे कि सबके बीच ममता बनर्जी दिल्ली में है और अगर आप नंदीग्राम को देखें तो वहां जो हलचल देखी थी, टीएमसी का तो कैंडिडेट ही नहीं हो पाया, जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उसके ऊपर जो गाज गिरी, ऐसे में जरा समझाए कि दीदी दिल्ली आ गई है, क्या चिंताएं नहीं है, क्या अपनी साख नंदीग्राम की क्या बदल गया है ऐसा कुछ बंगाल में कि ऐसे मौके पर ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच गई हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, बहुत कुछ बदल चुका है पिछले 5 महीने में पश्चिम बंगाल की राजनीति में और ये बयां करता है कि आज ममता बनर्जी दिल्ली में है, अभिषेक बनर्जी दिल्ली में है, तो तृणमूल कांग्रेस का जो टॉप लीडरशिप है वो इस वक्त दिल्ली में है और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से वो समर्थन कांग्रेस पार्टी से, सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, पिछले कुछ दिनों में आपने वो वीडियोस, वो विजुअल्स, वो फोटोज हमने अपने दर्शकों को दिखाया, कल भी राजघाट में जिस तरह से राहुल गांधी और अभिषेक बनर्जी एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में अपने अस्तित्व बचाने के लिए उसी कांग्रेस के ऊपर अब ममता बनर्जी को डिपेंड करना पड़ रहा है, जिस कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व इतने सालों से ये कह रहा था कि कांग्रेस को खत्म करने की बिल्कुल कोशिश हो रही थी तृणमूल कांग्रेस।
0: जी इंद्रजीत, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आइए सीधा उसी का रुख कर लेते हैं। खबर आ रही है लोकसभा उपचुनाव से भी जुड़ी हुई, तो उस पर नजर डाल लेते हैं। बात कर रहे हैं हम असम की नौगांव सीट की, जहां बीजेपी 47,000 वोट से आगे है। तो ये लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी का जो उम्मीदवार है वो इस वक्त 37,000 वोट से आगे चल रहा है, हालांकि गिनती चल रही है। इस वक्त हमारे सहयोगी अनुपम मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, क्या ताजा जानकारी है वहां से?
2: जी देखिए, देवाशीष शर्मा जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं नौगांव से लोकसभा सीट से, वो काफी बड़ी मार्जिन के साथ इस बार आगे चल रहे हैं। अभी जो रुझान आ रहे हैं 47,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और आपको बता दूं कि ये जो सीट है नौगांव सीट पिछले दो बार से 2019-2024 में कांग्रेस के पास थी, लेकिन 2014 में ये सीट बीजेपी के पास थी, लेकिन पिछले दो साल

0: बदलता हुआ सा देख रहे हैं। हालांकि गणना अभी बाकी है, गिनती चल रही है, उसके पीछे वजह क्या हो सकती है?
1: देखिए, इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प और रोचक रहा, क्योंकि बदरुद्दीन अजमल भी यहां से खड़े हुए और काफी बड़ी शख्सियत माने जाते रहे हैं असम में वो, और उन्होंने भी लगातार दावा किया कि वो यहां जीत रहे हैं। बीजेपी ने भी दावा किया कि वो यहां जीत रही है, जबकि ये कांग्रेस की सीट थी। लेकिन अब अगर हम उपचुनाव देखें, जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसको थोड़ी सी बढ़त हासिल होती है जब जब उपचुनाव होते हैं, तो ऐसे में यहां पर हिमंत बिस्व शर्मा भी लगातार गए, उन्होंने चुनाव प्रचार किया। समीकरण अगर हम देखें तो 50% के आसपास हिंदू मुस्लिम का समीकरण यहां पर है। दो बार से कांग्रेस यहां पर जीतती आई है, तो ऐसे में अगर ये सीट बीजेपी को फिलहाल जाती दिख रही है जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से बीजेपी के जो चुनावी रणनीति रही है वो सफल होती नजर आ रही है, अगर ये नतीजे इसी तरह रहे तो।
0: शुक्रिया अनुपम इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध की, जहां हूती के हमलों के बाद सऊदी अरब में इस वक्त हलचल है।

अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल शांति के संकेत हैं, लेकिन सऊदी अरब पर हुतियों के हमले ने क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया है। ड्रोन और मिसाइल से किए गए हमले में 3 लोगों की मौत हुई है और 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को के घायल होने की खबरें हैं। वहीं इस हमले में पाकिस्तान का एंगल सामने आने का भी दावा किया जा रहा है। ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच सुरक्षा हालात को देखते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 10 अक्टूबर तक रियाद आने जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। उन्होंने प्रभावित यात्रियों को टिकट रीशेड्यूल करने या पूरा रिफंड ले लेने का विकल्प दिया है और भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। सऊदी अरब में रह रहे जो नागरिक हैं उनके लिए भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। नागरिकों को सतर्क रहने, जरूरत पड़ने पर घरों के अंदर रहने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। साथ ही मौजूदा हालात से जुड़े वीडियो और खबरें साझा करने से बचने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है।

0: ईरान पर अमेरिकी हमले की बड़ी तैयारी। मिड टर्म से पहले ईरान पर होगा हमला। नए हमले के प्लान पर पेंटागन की मोहर। हमले से पहले सऊदी पर हूती का अटैक। सऊदी एयरपोर्ट पर हूतियों का हाहाकार। ईरान के प्लान हूती ने उड़ाई ट्रंप की नींद।
1: सही, दरअसल अगर इन खबरों को देखें, न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर दी गई है जिसमें कहा गया है कि पहली बार जो है वो सऊदी ने पाकिस्तान की एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान की एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए नहीं, ये दरअसल डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए किया गया, यानी जो बैलिस्टिक मिसाइलें जो लगातार ड्रोन हूतियों की तरफ से टारगेट किए जा रहे थे सऊदी को, उनको रोकने के लिए ये इस्तेमाल पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट का किया गया है। लेकिन आपको बताऊं, पिछले एक सालों से, क्योंकि मक्का पैक्ट भले ही अभी हाल ही में किया होगा, लेकिन एक सालों से लगातार सऊदी की तरफ जो पाकिस्तान की फोर्सेज है उनकी डिप्लॉयमेंट करीबन 30 से 40 हजार के करीब हो चुकी है। कई फाइटर एयरक्राफ्ट लगातार वहां पे तैनात किए जा रहे हैं, और इसीलिए अगर आप देखें कि जो मक्का पैक्ट था वो भी इसको ब्रीफली बताता है कि अगर एक देश पे किसी भी तरीके का कोई हमला होता है तो तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। शायद उसी के लिए ये माना

0: जा रहा है कि इस्तेमाल किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर ने यह भी बताया कि सिर्फ अभी तक सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए ही ये इस्तेमाल किए गए। लेकिन अगर आप इस खबर को और ज्यादा आगे देखें, आपको याद होगा कि ईरान की तरफ से कहा गया था कि अब हमारा जो दायरा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या गल्फ ऑफ ओमान तक नहीं, हमारा दायरा इंडियन ओशन तक फैलेगा अगर हम पर नए अटैक किए गए या हमारे किसी भी समर्थित प्रॉक्सीज पर अटैक किए गए। तो ऐसे परिस्थितियों के अंदर पाकिस्तान की तरफ से ये कदम या फिर ये खबरें आने के बाद पाकिस्तान के लिए दिक्कत बढ़ेगी, क्योंकि हूती के पास अभी जो कैपेबिलिटीज हैं या फिर उनके पास ड्रोन्स हैं, जो मिसाइल है उनकी रेंज करीबन 2 से 2500 किलोमीटर की, समत 4 जो है उसकी रेंज है 2500 किलोमीटर की, यानी भले ही वो रेड सी से इन इलाकों से सीधे तौर पर कराची तक या दूसरी जगहों पर पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सके, लेकिन छोटी बोट्स के जरिए या फिर आप कह सकते हैं बाबल मंदेब में छोटी बोट्स के जरिए वो लगातार डिस्टेंस को कवर कर ये टारगेट कर सकते हैं। यानी ये खतरा पाकिस्तान के लिए बना हुआ है कि अगर उन्होंने हूतियों को छेड़ा या फिर हूतियों के खिलाफ उनके एयरक्राफ्ट का उनके मिलिट्री पॉइंट ऑफ मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया तो निश्चित तौर पर हूती भी रिटेलिएट करेंगे और शायद ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा चिंता वाली खबर होगी।
1: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगे और देश की गलियों में अपने वतन की गीत सुनो।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है,
9: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
8: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायफ्री जूस।
2: इन एसोसिएशन विद
10: सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स
11: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन।
13: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।

0: नहीं पड़े
1: नहीं,
0: है।
1: नहीं, नहीं, नहीं।
2: फ्लाइट में कम से कम सफर करें मेरे हिसाब से भाई, ट्रैवल एजेंट कोई गांजा फूंक के चला रहा है, कोई चाकू लेके घुस रहा है, क्या हो रहा है ये?
3: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं।
2: तुम्हारा
3: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं।
0: यार काट देना।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

ज्ञानेश कुमार पर सीजेपी का प्लान जंतर मंतर। 10 अक्टूबर को जंतर मंतर से नई लड़ाई। केंद्र सरकार को सीजेपी का सीधा अल्टीमेटम। चुनावी सिस्टम बदलने निकलेगी टीम सीजेपी। अभिजीत दिपके का जंतर मंतर पार्ट 2। पेपर लीक मामले में अभिजीत दिपके की अगुवाई में सीजेपी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जून महीने में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ आंदोलन शुरू किया था। दुनिया ने जेन जी की शक्ति देखी और आखिरकार सरकार को सीजेपी की मांग के आगे झुकना पड़ा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। एक बार फिर अभिजीत दिपके जंतर मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर आ रहे हैं। 10 अक्टूबर को सीजेपी ने जंतर मंतर पर देश भर के जेन जी को जुटने के लिए बुलाया है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर अभिजीत दिपके की 3 मांगे हैं। पहली मांग, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और आपराधिक मुकदमा। दूसरी मांग, देश भर में जारी SIR की प्रक्रिया तुरंत बंद होनी चाहिए। तीसरी मांग, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का सिस्टम बदले। दरअसल दिपके ने वोटर लिस्ट की SIR में कथित गड़बड़ियों का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। मतलब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब दिपके मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आर पार की लड़ाई लड़ने महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे हैं। दावा यही है कि देश का जेन जी अब चुनावी सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर करके ही दम लेगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से जंतर मंतर पर किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक है। दिपके का कहना है कि पाबंदियों के पीछे सरकार का डर है। आरोप यही है कि महाराष्ट्र में सीजेपी कार्यकर्ताओं को दिल्ली जाने से पुलिस रोक रही है। सीजेपी अध्यक्ष अभिजीत दिपके का आरोप है चंद्रपुर में उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस की तरफ से नोटिस भेजा गया है। नोटिस में महाराष्ट्र से दिल्ली जाने वाले कार्यकर्ताओं से ट्रेन के टिकट का सोर्स पूछा गया है। पुलिस नोटिस पर भड़के दिपके ने पूछा है कि महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट को लेकर नोटिस कैसे भेज सकती है। बड़ी बात यह है कि दिपके ने ऐलान किया है कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरते। अगर पुलिस ने जंतर मंतर जाने से रोका और जेल भेजा तो भी ये आंदोलन रुकेगा नहीं। दिपके इसी मुद्दे पर मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन कर चुके हैं। पुलिस की मनाही के बावजूद ये प्रदर्शन हुआ। तब दिपके ने कहा था ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हुआ तो वो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जाएंगे। सीजेपी के ऐलान ने दिल्ली पुलिस की नींदें उड़ा रखी हैं, क्योंकि दिपके का प्लान जंतर मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन को शुरू करना है। आज तक ब्यूरो।

देश के रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट में तेज ग्रोथ का द्वार कुछ थमता हुआ दिख रहा है। नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि 2026 के पहले 9 महीनों में 8 बड़े शहरों में घरों की बिक्री स्थिर रही है, लेकिन मार्केट में इन्वेंट्री का दबाव बढ़ रहा है और NCR में बिक्री में बड़ी गिरावट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी सितंबर में करीब 2.5 लाख घर बिके, जो पिछले साल के बराबर है। वहीं इन 9 महीनों में करीब 2,80,000 नए घर लॉन्च हुए। बिक्री के मुकाबले ज्यादा लॉन्च से मौजूदा घरों को बेचने में 6.1 तिमाही लगेंगी, यानी नए घरों की सप्लाई बिक्री से ज्यादा बनी हुई है और घरों को बिकने में पहले से ज्यादा समय लग रहा है। NCR मार्केट में तेज ग्रोथ के बाद बिक्री में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक NCR में घरों की बिक्री 11% घटी है, जहां जनवरी से सितंबर के बीच करीब 35,500 घर बिके। इस दौरान 5 से 10 करोड़ रुपए वाले प्रीमियम सेगमेंट में घरों की बिक्री 39% घटी है और NCR की अनसोल्ड इन्वेंट्री में गुरुग्राम की हिस्सेदारी 57% हो गई है। दूसरी तरफ मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे बड़े बाजारों में बिक्री बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में बिक्री 1% बढ़ी है, वहीं बेंगलुरु में 5% और कोलकाता में 4% की बढ़ोतरी हुई है। इस पूरी तस्वीर में सबसे बड़ा बदलाव अफोर्डेबल हाउसिंग में दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 50 लाख रुपए से कम कीमत वाले घरों की बिक्री 14% घटी है, वहीं 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के घरों की बिक्री भी 5.9% घटी है, जबकि 1 से 2 करोड़ रुपए के घरों की बिक्री 6.8% और 2 से 5 करोड़ रुपए के घरों की बिक्री 19.4% बढ़ी है। यानी खरीदारों का रुझान सस्ते से हटकर महंगे घरों की तरफ बढ़ रहा है। कीमतों की बात करें तो NCR और बेंगलुरु को छोड़कर ज्यादातर शहरों में सालाना बढ़ोतरी 3 से 6% के बीच रही है। रिपोर्ट के मुताबिक गुरुग्राम में 4%, नोएडा में 7%, ग्रेटर नोएडा में 11% और गाजियाबाद में 14% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी रियल एस्टेट में फिलहाल दाम गिरने की नहीं, बिक्री की रफ्तार थमने और इन्वेंट्री के दबाव बढ़ने की कहानी बन गया है। आज तक ब्यूरो।

0: पड़े
1: नहीं।
2: फ्लाइट में कम से कम सफर करें मेरे हिसाब से भाई। ट्रैवल लायंस कोई गांजा फूक के चला रहा है, कोई चाकू लेके घुस रहा है, क्या हो रहा है ये?
3: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं।
2: तुम्हारा
3: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं।
0: यार काट दे भाई।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: संसद के सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होंगे इंडिया ब्लॉक के सांसद। ममता तेजस्वी समेत कांग्रेस के कई सहयोगी रहेंगे मौजूद। मांगे राष्ट्रपति से मिलने का वक्त। कल सीजेपी के प्रदर्शन से पहले किले में तब्दील हुई राजधानी।
1: पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और रेजीनगर उपचुनाव की काउंटिंग में बीजेपी आगे। असम की नागांव लोकसभा सीट बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है बीजेपी। तमिलनाडु की दोनों सीट पर विजय की पार्टी को बढ़त।
0: सीएम योगी ने दी पीडीए की नई परिभाषा। कहा प्रदेश डुबाऊ अलायंस की सरकार डालती थी नौकरियों पर डाका। जारी किया बहुरूपिया लिखा पोस्टर। अखिलेश का चैलेंज, हिम्मत हो तो अयोध्या से योगी लड़े चुनाव।
1: ओमानी को पायलट का अटैक झेलकर फ्लाई दुबई को क्रैश से बचाने वाले भारतीय पायलट कैप्टन मच्छार को सम्मानित करेगा इसराइल। मिलेगा प्रेसिडेंशियल अवार्ड फॉर सिविलियन हीरोइज्म।
0: और उत्तराखंड से राजस्थान और यूपी तक मौसम ने ली करवट। चमोली में बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां। लखनऊ में शहर पानी पानी। रेगिस्तान के कई इलाकों में बारिश ने बढ़ाई ठंड।

0: चार राज्यों और पुडुचेरी की 6 सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीट सहित असम की लोकसभा सीट पर बीजेपी को लीड। दूसरे राउंड में नंदीग्राम में बीजेपी 19,000 से ज्यादा वोटों से आगे। रेजीनगर में भी बीजेपी को बढ़त। रुझानों में तमिलनाडु की 1 सीट पर सीएम विजय की पार्टी टीवीके तो दूसरी पर एआईएडीएमके आगे चल रही है। असम की नागाम लोकसभा सीट पर बीजेपी के देवाशीष शर्मा सबसे आगे। दूसरे नंबर पे एआईयूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल। पुडुचेरी की थट्टाचावड़ी सीट पर काउंटिंग को लेकर सुरक्षा कड़ी। मतगणना केंद्र पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। दिल्ली पुलिस ने वीडियो जारी कर प्रदर्शनकारियों से कानून व्यवस्था का पालन करने की अपील की। पुलिसकर्मी के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और महिला पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी आपत्तिजनक भाषा और अनुचित व्यवहार का प्रयोग। सोशल मीडिया के पत्रकारों से भी पुलिस ने की अपील। कहा, पत्रकार अपनी जिम्मेदारी निभाएं लेकिन पुलिस की कार्रवाई में बाधा न डालें। 2 अक्टूबर से जारी प्रदर्शन मामले में पुलिस ने अब तक 25 एफआईआर दर्ज किए हैं। अलग अलग दर्ज एफआईआर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, लेफ्ट विंग के लोगों का नाम शामिल। एक कश्मीरी को पीटने के मामले में दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया। कल कश्मीर के रहने वाले फहीम नजीर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पीटे जाने का आरोप।
1: सीसी और एसआईआर के खिलाफ इंडिया ब्लॉक का संग्राम तेज। आज दिल्ली में फिर जुटेंगे 300 सांसद। वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल, राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने का मांगा वक्त। राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले मोदी, शाह, भागवत और ज्ञानेश कुमार ने भारत को हाईजैक किया। सीसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष, आज संसद के सेंट्रल हॉल में जुटेंगे सांसद। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक का सत्याग्रह जारी, राजघाट पहुंच राहुल, खड़गे समेत विपक्षी सांसद। एसआईआर और फॉर्म 6 पर घमासान, 13.5 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाने का विपक्ष ने मुद्दा उठाया है। विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी का पलटवार, बोली सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा क्यों नहीं करता इंडिया ब्लॉक। प्रमोद तिवारी का बड़ा ऐलान, सीईसी के इस्तीफे और एफआईआर की मांग पूरी होने तक जारी रहेगा संघर्ष। राहुल गांधी पर बीजेपी का तीखा हमला, प्रदीप भंडारी बोले कांग्रेस का आंदोलन जनता के खिलाफ है। अभिषेक बनर्जी की 2 टूट, सत्याग्रह से पीछे नहीं हटेंगे, जेल और मौत का भी डर नहीं है।
0: सीजेपी के 10 अक्टूबर के प्रदर्शन से पहले दिल्ली अलर्ट पर, पुलिस बोली धारा 163 लागू, जुटने पर होगी कार्रवाई। जंतर मंतर 2.0, प्रदर्शन से पहले दिल्ली की सीमाओं पर सख्ती। यूपी हरियाणा और राजस्थान बॉर्डर पर बड़ी निगरानी। सीसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर 10 अक्टूबर को प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने कहा किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं। सीजेपी के प्रदर्शन से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन प्लान। जुलाई में नीट विरोध में शामिल 2,800 लोगों पर नजर। 10 अक्टूबर को दिल्ली में शराब की दुकानें रहेंगी बंद। पुलिस इनपुट के बाद आबकारी विभाग का फैसला। दिल्ली सरकार में फिर बड़े प्रशासनिक बदलाव। अश्विनी कुमार को बनाया गया एक्साइज कमिश्नर। हेल्थ सेक्रेटरी रूपेश कुमार ठाकुर को हेल्थ सेक्रेटरी की पोस्ट से हटाकर DUSIB की जिम्मेदारी दी गई। उनके बदले मेखला चैतन्य प्रसाद को स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ की जिम्मेदारी दी गई। अयोध्या दौरे के दौरान सीएम योगी को अखिलेश की चुनौती, कहा दम है तो यहां से खुद चुनाव लड़े मुख्यमंत्री। अखिलेश की चुनौती पर बीजेपी ने पूछा यहां आकर भी राम मंदिर क्यों नहीं गए SP सुप्रीमो। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर तंज, मगरमच्छ पानी में तैरते हुए शांति का उपदेश दे रहा। युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलने पर दी बधाई।
1: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एडवाइजरी, फेक न्यूज AI मैनिपुलेटेड कंटेंट पर बड़ी निगरानी, तुरंत प्रभाव से लागू। पंजाब हरियाणा पंचायत आज तक में, बोले सीएम मान, चुनाव आते ही बीजेपी भेजती है CBI। पंजाब हरियाणा पंचायत आज तक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ऐलान, हर अग्निवीर को देंगे नौकरी। मुंबई रोड शो में सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, MP को मिले करीब 90,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 14,375 रोजगार के अवसर। ACME ग्लोबल 47,000 करोड़ करेगा निवेश। GST काउंसिल के फैसले से व्यापारियों को बड़ी राहत, टैक्स अधिकारी अब सीधे नहीं कर पाएंगे गिरफ्तारी, मुकदमा चलाने की सीमा भी 1 करोड़ रुपए से 5 करोड़ हुई। फर्जी MBBS दाखिलों के बीच स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल, उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी। घाटकों पर आरओबी का 30% काम पूरा होने के बाद बदला डिजाइन, 3 पियर कैप आंशिक रूप से तोड़े जाएंगे, ट्रैफिक से परेशान स्थानीय लोग। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सचिन वाजे की महंगी कारों और ओबेरॉय होटल की में 100 दिन ठहरने पर जताया आश्चर्य, वसूली के आरोपों का किया जिक्र। भिवंडी में गुलाब जामुन के कंटेनर में मिला जिंदा चूहा, वीडियो वायरल होने पर FDA ने मिठाई की दुकान को नोटिस जारी किया। जालना के धामड़ा बांध पर पानी की रखवाली के लिए पुलिस का पैरा, धामड़ा बांध में सिर्फ 2% पानी बचा, अवैध पानी निकासी रोकने के लिए दिन रात पुलिस की गश्त।
0: फरीदाबाद में इंडिया एयरलाइंस के प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं की झड़प, मामूली विवाद को लेकर हुआ झगड़ा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पार्टी ने बयान जारी किया, बोले जल्द हो जाएगी दोनों में सुलह। ओडिशा के मयूरभंज में दर्दनाक हादसा, एक एम्बुलेंस में आग लगने से एक मरीज की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक केमिकल फैक्ट्री में वेल्डिंग की चिरंगारी से भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने मिलकर पाया काबू। इटावा में एक शिक्षक को बच्चे के साथ हंसी मजाक करना पड़ा, भारी वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षक सस्पेंड। हरिद्वार में हाथी का कहर, खेत में काम कर रहे किसान को पटक पटक कर मार डाला, घटना के विरोध में लोगों का हंगामा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक ने 3 दुपहिया वाहनों को मारी टक्कर, 4 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ब्रेक फेल होने की वजह से लगभग 24,000 लीटर डीजल से भरा एक टैंकर सड़क पर पलटा, लोगों में मची लूटने की होड़। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस का बड़ा एक्शन, RSS कार्यकर्ता की हत्या के आरोपियों के कब्जे वाली जमीन पर बुलडोजर चलाया, अतिक्रमण से करवाया मुक्त। कौशाम्बी में झोलाछाप डॉक्टरों की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत, अस्पताल स्टाफ फरार, CMC ने दिए जांच के बाद कार्रवाई के आदेश।
1: गुजरात के दाहोद में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, प्रेमी जोड़े ने इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए सुसाइड किया। कोटा में हॉस्टल में छात्र की मौत के बाद बवाल, प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, 13 मांगों पर सहमति के बाद धरना खत्म हुआ। तेलंगाना के विकाराबाद में बिजली कटने से लिफ्ट बीच में रुकी, कई महिलाएं और बच्चे करीब 1 घंटे तक लिफ्ट के अंदर फंसे रहे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में गरबा इवेंट के प्रमोशन के दौरान यातायात नियमों की उड़ी धज्जियां, प्रमोशन के लिए लड़कियों को कार की छत पर बैठाकर घुमाया। इटावा में रोडवेज बस की खिड़की से कूदकर बंदी फरार हो गया, जिला जेल ले जाने के दौरान बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया। हेमकुंड साहिब में जबरदस्त बर्फबारी हुई, चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी है। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के बीच कपाट बंद होने की तैयारी तेज, 10 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे कपाट। चमोली में बारिश का कहर, टंगड़ी के पागल नाले में मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। लगातार बारिश से बद्रीनाथ हाईवे खोलने में देरी, मौके पर मशीनें नहीं पहुंचने से हजारों यात्री परेशान हो रहे हैं। कड़ाके की ठंडी के बावजूद बद्रीनाथ धाम में लगातार भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जारी है, अब तक 19 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन कर चुके हैं।
0: आज रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 मैच, 5 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बना चुकी है टीम इंडिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अंडर 19 एशिया कप का शेड्यूल किया जारी, 5 नवंबर से ओमान में शुरू होगा टूर्नामेंट, 14 नवंबर को खेला जाएगा फाइनल। टूर्नामेंट में 8 नवंबर को पाकिस्तान से होगा भारत का मुकाबला, ग्रुप ए में है भारतीय टीम। 50 ओवर के फॉर्मेट में इस टूर्नामेंट के सभी मैच मस्कट के ओमान क्रिकेट अकादमी के ग्राउंड 1 और ग्राउंड 2 पर खेले जाएंगे, टूर्नामेंट में शामिल हैं 8 टीम। 15 अक्टूबर को एशियन गेम्स के मेडलिस्ट से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी, PM आवास में होगी मुलाकात। आज OTT पर रिलीज हो रही है इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर रिपोर्टिंग लाइव, पर नीति चोपड़ा निभा रही है एक महत्वाकांक्षी युवा पत्रकार का किरदार। 400 करोड़ रुपए कमाने के बाद अब तेलुगु में हनुमान अंश का दिखेगा जलवा, आज थिएटर्स में आएगी फिल्म। अजय देवगन की दृश्यम 3 की बॉक्स ऑफिस पर शानदार रफ्तार, 6 दिन में भारत में करीब 232 करोड़ और दुनिया में 350 करोड़ से ज्यादा का किया कलेक्शन। दिवाली से पहले 5 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म रामायण, 4 नवंबर को रखा जाएगा फिल्म का पेड प्रीव्यू। साउथ सिनेमा के वेटरन एक्टर कमल हासन की अगली फिल्म इंडियन 3 का ऐलान, मेकर्स ने सोशल मीडिया पर फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर किए साझा।
1: कन्नड़ कवियत्री और लेखिका एनी कार्सन को 2026 का साहित्य नोबेल, उन्हें नई साहित्यिक शैलियां गढ़ने और क्लासिकल परंपरा से नए अंदाज में संवाद के लिए सम्मान मिला। अनिकासन कविता गद्य संवाद और अनुवाद को मिलाकर लिखती हैं। उनकी रचनाओं में प्राचीन यूनानी साहित्य का खास प्रभाव दिखाई देता है। 1998 की उनकी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ रेड काफी मशहूर रही। उनका काम ओपेरा से लेकर साहित्यिक आलोचना और कविता तक कई रूपों में फैला है। कार्सन अब एलिस मुनरो और अर्नेस्ट हेमिंग्वे जैसे नामों के साथ शामिल हो गई हैं। पिछले साल 2025 में साहित्य के नोबेल हंगरी के लेखक लास्लो क्रोस्ना होराकोई को मिला था। साहित्य नोबेल के साथ कार्सन को 12 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मिलेंगे। ये रकम करीब 1.2 मिलियन डॉलर यानी लगभग 10 करोड़ रुपए के बराबर है। पूर्वी यूक्रेन में रूस का भीषण हमला। बस पर हुए हमले में 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई, 18 लोग घायल हुए। साथ ही राजधानी कीव पर हमले में 2 लोगों की जान गई। रूसी सरकार ने नेटो को दी चेतावनी। कहा बाल्टिक देशों में अमेरिकी समेत अतिरिक्त नेटो सैनिकों की संभावित तैनाती को रूस मानता है तनाव बढ़ाने वाला कदम। तुर्की की सरकार का बड़ा फैसला। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा यमन के ईरान समर्थित हूती मिलिशिया के हमलों से सऊदी अरब को मदद देने के तरीकों पर तुर्की कर रहा है मंथन। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची ने अमेरिका के खिलाफ किया बड़ा दावा। अराग्ची ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मई में अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च सर्विस ने माना था कि ईरानी सशस्त्र बलों ने 42 अमेरिकी सैन्य विमान गिराए थे। इसराइल के यरूशलम में ब्रिटेन ने बंद किया अपना कॉन्सुलेट। इजरायली विदेश मंत्री गिदौन सार ने दी जानकारी। पुराना कॉन्सुलेट सीमित स्तर पर काम करता रहेगा। दक्षिण कोरिया और मिस्र ने अपने द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी में बदला। सोल में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी से मुलाकात कर इसका ऐलान किया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और ब्रिटिश पीएम के बीच बड़ी मुलाकात हुई। बैठक में फैसला। जर्मनी ब्रिटेन इटली और जापान के साथ मिलकर बनाएगा नया लड़ाकू विमान। पोलैंड के एक प्राथमिक स्कूल में 15 वर्षीय पूर्व छात्र ने किया चाकू से हमला। हमले में स्कूल की 37 वर्षीय महिला केयर टेकर की मौत। प्रिंसिपल और एक शिक्षक घायल। पोलिश सरकार के मुताबिक हमलावर की मंशा अभी साफ नहीं। फ्रांस में नहीं थमरा छात्रों का प्रदर्शन। गुरुवार को हुए प्रदर्शन के कारण देश भर में 224 हाई स्कूल बंद। आंशिक रूप से खुले हैं 150 स्कूल। कनाडाई लेखिका एन कार्सन ने जीता साहित्य का नोबेल।

0: और आइए अब रुक करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। उपचुनाव के रुझान आने लगे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जादू बरकरार दिख रहा है। नंदीग्राम और रेजी नगर विधानसभा दोनों सीटों पर इस वक्त बीजेपी ने शुरुआती बढ़त बना ली है।
1: और वहीं असम के नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी बीजेपी उम्मीदवार आगे है। बीजेपी उम्मीदवार देवाशीष करीब 47,000 वोटों से आगे हैं, जो कि एक बड़ी बढ़त मानी जा रही है। बात तमिलनाडु की करें तो मदुरांतकम में टीवी के उम्मीदवार 3,161 वोटों से आगे हैं। वहीं धारापुरम में टीवी के उम्मीदवार 13,213 वोट से आगे हैं। तो बंगाल से लेकर तमिलनाडु और असम में भी मतगणना अभी भी जारी है और नतीजों का इंतजार है। इंद्रजीत कुंडू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए बंगाल से। इंद्रजीत, नंदीग्राम और रेड्डीनगर ये वो दो सीट है जहां पर काफी कोहराम देखने को मिला था, उम्मीदवार बदल रहे थे, बहुत कुछ हुआ था, लेकिन अब जब धीरे धीरे मतगणना आगे बढ़ रही है, क्या किस ओर आगे बढ़ रही है, अभी तक क्या सामने आया?
2: देखिए, दो राउंड के मतगणना जो काउंटिंग है वो खत्म हो चुका है और बीजेपी के जो उम्मीदवार है हासी रानी रथ वो 19,600 की लीड ले चुकी है। तो आप समझ सकते हैं सिर्फ महज दो राउंड हुए हैं उसमें ही 19,000 का लीड, और बीजेपी के जो समर्थक है वो अभी रास्ते पे उतर के अपना जो सेलिब्रेशन है वो शुरू कर चुके हैं। ये लोग वो लोग रुक नहीं चाहते क्योंकि कल महालय है पश्चिम बंगाल में और उसके बाद देवी पक्ष का शुरुआत हो जाएगा, दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी के जो समर्थक है वो रास्ते पे उतर के किस तरह से सेलिब्रेशन कर रहे हैं। गाना भी सुनाई दे रहा है, इस वक्त सुन लेते हैं थोड़ा सा।
3: के चौके पोरे ना पीछी जाबो अमीशी घोरे चूरी कोरा शंबल सीलो या मार दो।
2: तो बीजेपी के समर्थक में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है नंदीग्राम में। जैसा कि मैं कह रहा था, दो ही राउंड हुए हैं, 19,000 का लीड बीजेपी की कैंडिडेट, और ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री खुद उनका प्रेस्टीज का सवाल भी था। और बीजेपी के जो समर्थक है वो ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड वो लोग तोड़ना चाहते हैं, 1,00,000 से ज्यादा का लीड यहां से लेना चाहते, जो नंदीग्राम के लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन सकता है। पिछले दो चुनावों में 2021 के विधानसभा, 2026 के विधानसभा में शुभेंदु अधिकारी खुद नंदीग्राम से चुन के आए थे, वो जीते थे। 2021 में ममता बनर्जी को उन्होंने हराया था, इस बार उन्होंने ममता बनर्जी को अपने ही भवानीपुर सीट में कोलकाता में हराया है, इसीलिए वो भवानीपुर का सीट उन्होंने रिटेन किया और नंदीग्राम उन्होंने छोड़ दिया, तब जाके यहां पे बाय इलेक्शन हुआ है। और इस बाय इलेक्शन में बीजेपी को बहुत बड़ी लीड मिल चुकी है, बढ़त मिल चुकी है, और इसलिए बीजेपी के जो समर्थक है उनमें काफी उत्साह है क्योंकि वो जानते हैं कि वो जीतने वाले, यही उनका दावा है।
0: जी, चलिए अब रुक करते हैं हमारे दूसरे सहयोगी का भी। हमारे साथ चेन्नई से अपूर्वा जयचंद्रन है और सुनील बोरा हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ रहे हैं। सुनील, आपके पास आते हैं क्योंकि नौगांव जो है लोकसभा सीट उस पर भी काउंटिंग चल रही है, वो भी अहम हो जाती है, वहां पर भी लगता है बीजेपी काफी ज्यादा अंतर लेके आगे आ रही है।
4: वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि नौगांव जो लोकसभा है वो आफ्टर डिलिमिटेशन के बाद वो एक मुस्लिम सीट में कन्वर्ट हो गया था, लेकिन अभी जो रिजल्ट आ रहा है, दूसरे राउंड खत्म हुआ है, तीसरे राउंड चल रहा है, बड़ी बढ़त बीजेपी उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने ले लिया है, लगभग 70,000 प्लस लीड ले लिया है। उसका दूसरे स्थान पर एआईडीएफ का प्रेसिडेंट मौलाना बदरुद्दीन आजमल है, लगभग वो 76,000 से ज्यादा वोट उसको मिला है। लेकिन सिग्निफिकेंट ये है, ये सीट कांग्रेस का था, कांग्रेस का जो उम्मीदवार शिवाबोनी बोरा वो तीसरे स्थान पर है,
1: वो तीसरे स्थान पर। अच्छा, चेन्नई का भी रुख कर लेते, जल्दी से जान लेते हैं चेन्नई में क्या हो रहा है। अपूर्वा हमारे साथ जुड़ी हुई चेन्नई से, अपूर्वा क्या खबर आ रही है मतगणना से जुड़ी हुई?
5: जी, ऐसा आप देख सकते हैं दोनों धारापुरम और मदुरांतकम, इन दोनों जगहों पे जो बाय इलेक्शंस हो रहे हैं इन पे अभी फिलहाल के लिए जो तमिलनाडु विक्ट्री कड़गम है, टीवी के जो अभी सत्ता में आए हैं वो अभी लीडिंग में है। लगभग धारापुरम में 21,000 से अधिक वोटों से टीवी के यहां पे लीडिंग में है, और मदुरांतकम में भी बहुत 11,000 से अधिक से ये लोग लीडिंग में है यहाँ मधुरांतकम में भी। पर अगर आप देखा जाएंगे तो दोनों जगहों पे अभी ये बाय इलेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि अभी जो सत्ता में तमिलनाडु की वेट्री कड़गम आई थी उनमें ये दोनों जो
0: टीवीके के हमारी नजर रहेगी इस सब पर। अपूर्वा, आप सबका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जेके मैक्स वाइट इजी, दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइट पीसी।
2: यार लोन भूल गया मैरी।
3: इट्स
2: जस्ट अ गुड बैंक ना,
4: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
2: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
4: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
5: देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
6: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
7: सर कैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
8: कैसो फास्ट 27%,
7: इनो 9.2%।
9: गड़बड़ है।
10: कैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गैसोफा, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
11: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
12: लव एंड केयर, द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट रेंज ऑफ रबर पेट टॉयज।
13: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
14: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
13: अब मैं चैन की नींद सो पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
15: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
16: वक्त के साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले।
17: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड,
18: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
19: एक परिवार, अटूट भरोसा।
20: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
21: एयू,
22: सोच बदलो और बैंक भी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: जेके मैक्स वाइप इजी,
4: दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।
5: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
6: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
7: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
6: अब मैं चैन की नींद सो पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
8: वक्त के साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले।
9: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड,
10: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
11: एक परिवार, अटूट भरोसा।
12: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
13: AU
14: सोच बदलो और बैंक भी।

0: गोमती नदी की बाढ़ में डूबा लखनऊ का फैजुल्लागंज इलाका। पानी लोगों के घरों में अड्डा जमा चुका है, कई लोगों ने छतों पर आसरा ले रखा है। चारों तरफ पानी ही पानी और बाढ़ की आपदा से हैरान परेशान हैं।
1: राजधानी लखनऊ और फैजुल्लागंज का ये एरिया जहां मैं इस समय मौजूद हूं, वहां पर आप देख सकते हैं पानी अभी इससे ज्यादा भी आगे है। अभी हम शुरुआत में है और वहां पर पानी का स्तर ये है कि हमारे घुटनों तक पानी आ गया है।
0: फैजुल्लागंज के लोग मुश्किल में हैं। जिनके आसपास रिश्तेदार हैं वो वहां शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन घरों की रखवाली के लिए कई लोग अभी भी बस्ती में हैं। नगर निगम और प्रशासन की टीमें इलाके में मुस्तैद नजर आ रही हैं। लोगों को चिकित्सा सहायता देने के लिए एक शिविर बनाया गया है, तो पल पल की जानकारी के लिए एक अस्थायी कॉल सेंटर भी यहाँ काम कर रहा है।
2: यहाँ जो कंट्रोल रूम बना हुआ है, यहाँ पे हमारे अमीलो लगे हुए हैं। 6 नंबर्स हैं जिसपे जिनको भी शिकायतें होती हैं वो उस नंबर पे कॉल करके यहाँ शिकायतें दर्ज कराते हैं। शिकायतें ये लोग दर्ज करने के पश्चात जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में इसको डाला जाता है, उनके लोकेशन, उनके क्या डिमांड है, उनके नाम पते के साथ। फिर हमारे जो लेखपाल लगे हैं वो उसको ट्रैक करके संबंधित लेखपालों को उस बोर्ड के माध्यम से भेजा जाता है, उनको राहत सामग्री जो भी चाहिए होता है।
1: वैसे में प्रशासन 24/7 काम कर रहा है। इस बाढ़ में कब तक पानी कम होगा ये तो नहीं पता है, लेकिन जिस स्तर पर ये पानी बढ़ा हुआ, ऐसे में लोगों के लिए अभी मुश्किलें थमती नजर नहीं आ रही हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: देखिए एक बार फिर से आपको एक बड़ी खबर बता दें, दिल्ली में कल होने वाले प्रदर्शन को लेकर पुलिस अभी अलर्ट मोड में नजर आ रही है और कुछ ही देर बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ, और ऐसे में कल सीजेपी की तरफ से भी प्रदर्शन करने की तैयारी है, तो कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है।
4: तो 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। वहीं प्रदर्शन को लेकर दिल्ली और निजामुद्दीन आने वाली कई ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। साथ ही दिल्ली में पुलिस बल की भारी तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें कि सभी सीमाओं पर भी नजर लगातार बनाई हुई है दिल्ली पुलिस ने। इसके अलावा कुछ खबरें ऐसी भी सामने आई हैं, कई अखबारों में छपा है कि दिल्ली पुलिस गेस्ट हाउसेज में जाकर के रुके हुए लोगों से पूछताछ भी कर रही है। नजर उन लोगों पर भी है जो पिछले बार के प्रदर्शन में शामिल हुए थे, 2000 से भी ज्यादा लोग जिन पर दिल्ली पुलिस नजर बनाए हुए, और खास नजर उन लोगों पर जिनकी क्रिमिनल पृष्ठभूमि है, जिनके आपराधिक मामले हैं, उन पर नजर है कि कहीं वो इस प्रदर्शन का हिस्सा न बन जाए।
3: देखिए जून में आपने कई तस्वीरें देखी होंगी जहां पर जमकर हंगामा हुआ था और उसके बाद पूरे देश में वो मुद्दा गूंजा था, तो उससे सीख लेते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से अब व्यापक पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं जिससे हालात बेकाबू ना हो, और इसलिए देखिए भारी डिप्लॉयमेंट किया गया है, सभी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कल शराब की सारी दुकानें बंद रहेंगी दिल्ली में। आने जाने वाली जो ट्रेनें हैं, कई ट्रेनें ऐसी हैं जो दिल्ली आने वाली कई ट्रेन रद्द की गई हैं। सीजेपी के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए ये एहतियाती कदम उठाए गए हैं। अब कुछ ही देर बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी जिसमें आम लोगों को परेशानी ना हो, रूट को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, क्या डायवर्जन किए गए हैं, हो सकता है इस बारे में डिटेल में जानकारी दी जाए, या फिर कुछ नियम कायदे कानून जो दिल्ली पुलिस की तरफ से लागू किए गए हैं आने वाले कुछ दिनों के लिए उसके बारे में जानकारी दी जा सकती है। अंशुल जुड़े हुए हमारे सहयोगी हमारे साथ। अंशुल, क्या उम्मीद की जाए दिल्ली पुलिस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से? अंशुल, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो क्या उम्मीद की जाए दिल्ली पुलिस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो कुछ ही देर में होने वाली है? चलिए दोबारा जुड़ेंगे, दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे जरूर कि दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है। बहुत सारे इंतजाम दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी से किए जा रहे हैं कल के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए।
4: तो दिल्ली पुलिस चाहती है कि लोगों का जमावड़ा न हो। कुछ इलाकों में धारा 163 लागू है, यानी कि 4 से ज्यादा लोग नहीं जुट सकते हैं, उसे अवैध माना जाएगा। इसे रोकने के लिए दिल्ली पुलिस सब पहले से ही इंतजाम कर रही है। वो कोशिश करे कि दिल्ली तक ही लोग ना पहुंचे, और ऐसा करने के लिए ट्रेनों को रोका गया है, कुछ उनको रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा जो सीमाएं हैं अलग अलग राज्यों से लगी हुई, उन पर निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा कोशिशें की जा रही है कि जो लोग आ चुके हैं उनसे पता लगाया जाए कि आखिर वो किस मंशा से आए हैं। तो नजर दिल्ली पुलिस की लगातार इसी पर है कि कल का जो प्रोटेस्ट हो उसमें किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। और अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शन की। 3 दिन से राहुल गांधी सड़क पर हैं। चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। सवाल है कि राहुल गांधी आज क्या करने वाले हैं, दिल्ली में आज वो कहां कूच करने वाले हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष की लड़ाई राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने वाली है।
3: विपक्ष के 10 नेता आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिल सकते हैं। आज इंडिया गठबंधन के सारे सांसद और बड़े नेता संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जुटेंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक 2 और 5 अक्टूबर को राष्ट्रपति भवन को अनुरोध की चिट्ठी भेजी गई थी। चिट्ठी में 7, 8 या 9 अक्टूबर को राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा गया था, लेकिन अब तक राष्ट्रपति भवन से चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया है।
4: तो सवाल यह है, क्या आज विपक्ष का मोर्चा राष्ट्रपति भवन या उसके इर्द गिर्द जमने वाला है?

0: राहुल गांधी का अगला प्लान क्या? आज क्या करने वाले हैं राहुल गांधी? क्या राष्ट्रपति भवन पर मोर्चाबंदी होगी? आज फिर राहुल की गांधीगिरी होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि 3 दिनों से राहुल गांधी गुरिल्ला युद्ध करने में लगे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 2 दिन सड़कों पर संग्राम के बाद राहुल गांधी ने कल राजघाट का रुख किया था। तस्वीरें देखिए, बापू की समाधि की परिक्रमा करती प्रियंका गांधी वाड्रा और सामने बापू को श्रद्धांजलि देते राहुल गांधी। करीब 2 घंटे तक राहुल, प्रियंका, खरगे और इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद राजघाट पर ध्यान मुद्रा में बैठे रहे।
1: राज्यसभा और लोकसभा के 300 MPs पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। 2 दिन से हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है, हमारे लोगों को मारा। रियलिटी ये है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी करके हिंदुस्तान को हाईजैक किया है।
0: ये लगातार 3रा दिन था जब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ सड़कों पर थे। 6 अक्टूबर को राहुल और प्रियंका ने 8 घंटे आकाशवाणी भवन में धरना दिया, फिर पुलिस ने हिरासत में लेकर उन्हें उठाया। 7 अक्टूबर को राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने जनपथ पर लंच करके जंतर मंतर पर प्रदर्शन का प्लान बनाया। पुलिस ने रास्ते में बस रोकी तो राहुल और प्रियंका ने सड़क पर ही धरना दे दिया। पुलिस ने फिर राहुल और प्रियंका को हिरासत में लेकर धरने से उठाया। 8 अक्टूबर को अब राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के सांसद ने पहले कनॉट प्लेस पर खाना खाया और फिर राजघाट पर गांधीगिरी दिखाई।
2: प्रधानमंत्री की हैसियत से देश की जो भी आवाज है और उनको सुनना चाहिए और ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन को जीतना, इस छल को छोड़ देना चाहिए।
0: 3 दिन, 3 अंदाज, अटकलें तेज हैं कि अब आज क्या करेंगे राहुल गांधी और उनकी अगुवाई में इंडिया गठबंधन के सांसद। आज संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में इंडिया गठबंधन के सांसदों का जुटान होना है। अटकलें तेज हैं कि दिल्ली आज फिर एक और बड़े प्रदर्शन का गवाह बन सकती है। इस प्रदर्शन में ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव के भी शामिल होने की संभावना है।
3: Gandhi has always spoken about Satyagraha. Satyagraha teaches us 2 things, that if you are to follow that path, you have to shed 2 fears in life. One is the fear of going to prison, 2 is the fear of dying. So if we are to take that path of Satyagraha, every person needs to understand that these 2 fears needs to be shed. BJP can only bully you by showing their might with regard to the agencies and all the institutions they have successfully homogenized.
0: 3 दिनों से राहुल गांधी दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अचानक धरने पर बैठकर हैरान करते रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी को इस आक्रामक रणनीति का दूरगामी फायदा होगा? मौसमी सिंह, ऐश्वर्या पालीवाल और सुशांत मेहरा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
4: तो नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार 3 दिन से एक्शन मोड में है। 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग पर मार्च पर निकले, रोका गया तो आकाशवाणी भवन में धरने पर बैठ गए, उन्हें हिरासत में लिया गया, फिर रिहाई हुई। 7 अक्टूबर को कनॉट प्लेस वाले लंच के बाद जंतर मंतर कूच करने की उन्होंने कोशिश की, जिसमें पुलिस से झड़प हो गई, फिर हिरासत और फिर रिहाई। और कल कनॉट प्लेस पर विपक्ष के लंच के बाद गांधी की समाधि पर जाकर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया।
5: अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिछले 3 दिन से जो भी कुछ हो रहा है, जो राहुल गांधी ने हैट्रिक लगाई है उसको बखूबी कवर भी कर रहे हैं। हैट्रिक के बाद अब आगे क्या रणनीति राहुल गांधी की तरफ से अपनाई जा रही है, क्या खबर आप तक पहुंची अमित?
6: मानशु, देखिये इस हफ्ते के ये T20 प्रोटेस्ट सीरीज का आखिरी मैच होने वाला है। राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन के सभी सांसद आज 3 बजे सेंट्रल हॉल में, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर जो आइकॉनिक सेंट्रल हॉल है, वहां पर मौजूद रहेंगे। उसके बाद वो इस इंतजार में होंगे कि क्या राष्ट्रपति भवन से जो रिक्वेस्ट रखा गया है एलओपी राहुल गांधी द्वारा कि विपक्षी नेता मिलना चाहते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, अगर वो टाइम अलॉट होता है तो मार्च करते हुए विजय चौक तक ये सांसद आएंगे और फिर जो निर्धारित डेलीगेशन है वो राष्ट्रपति भवन जाएगा। लेकिन अगर समय नहीं मिलता है तो वैसी स्थिति में भी मार्च होगा ये बात तय है और फिर दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी।
5: बीच एक बड़ी, अमित मैं आऊंगा आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, और ये बहुत बड़ी खबर इसलिए क्योंकि दिल्ली में कल 57 मेट्रो स्टेशन बंद किए जा सकते हैं। देखिए कई ट्रेनें नहीं चलेंगी जो दिल्ली और निजामुद्दीन के लिए हैं। अब दिल्ली पुलिस का GMRC से अनुरोध भी सामने आया और ये सब हो रहा है कल की तैयारी के लिए कि आज रात 9 बजे से ही बंद हो सकते हैं मेट्रो स्टेशन। अब ये जो लोग सफर करते हैं, कल जिनको दफ्तर जाना होगा, जो मेट्रो पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं, कल उनके लिए बहुत मुसीबत भरा दिन रहने वाला है। तो हो सकता है या कल छुट्टी ले लें ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 57 मेट्रो स्टेशन ये बड़ी बात है और वो बंद रहने वाले हैं।
4: तो ये अनुरोध इस वक्त दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया है DMRC को कि 57 मेट्रो स्टेशन को बंद किया जाए। अब DMRC अगर इसको मंजूर कर देती है तो ये मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। कौन कौन से हैं इनकी जानकारी भी आगे आपको देंगे, लेकिन आज रात 9 बजे से ही इन्हें बंद करने की का अनुरोध किया गया है। तो जो लोग कल और आज ट्रैवल करना चाहते हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा। हमारे सहयोगी अंशुल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंशुल, 57 मेट्रो स्टेशन को बंद करने का अनुरोध, अब तक DMRC की तरफ से क्या रिस्पॉन्स, क्या जवाब, और साथ ही 57 में कौन से ऐसे हैं जो हैवी ट्रैफिक वाले मेट्रो स्टेशन हैं?
7: जी देखिए, कल सैटरडे का दिन है तो जो जनरल ऑफिस ट्रैफिक होता है वो तो कम होगा ही, सड़कों पर और मेट्रो से

0: बाद अगर आपको मेट्रो में ट्रैवल करना है और सेंट्रल दिल्ली या नई दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर आना है तो यहाँ आने से पहले आप एक बार पूरी एडवाइजरी को ढंग से पढ़ लें और डीएमआरसी के अधिकारियों से चेक करके ही आए, क्योंकि कई मेट्रो स्टेशन ऐसे हो सकते हैं जिनपे जिनके एंट्री और एग्जिट पे पाबंदी लगी हो, और कल जब सुबह से अगर लोग यहाँ आने लगते हैं और दिल्ली पुलिस को ऐसा लगता है कि इन मेट्रो स्टेशन की वजह से जो इन्फ्लक्स है लोगों का, जो भीड़ है वो बढ़ रही है, तो इन सारी मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो रुकना बंद हो जाएंगी और इनके सारे एंट्री और एग्जिट गेट्स भी बंद रहेंगे। तो एक कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ये कोशिश कर रही है कि इस बार नई दिल्ली को पूरी तरीके से एक किले में तब्दील कर दिया जाए और जो प्रदर्शनकारी हैं वो किसी भी तरीके से नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर या सेंट्रल दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना पहुंच पाए और यहाँ किसी तरह की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है और या अराजकता है वो ना फैले।
1: अच्छा अंशुल, ये बताइए कि देखिए जो दिल्ली और निजामुद्दीन को लेकर कई ट्रेनें हैं वो भी यहाँ पर रद्द हो सकती हैं, मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पर बंद रहेंगे, और बाकी जो लॉन्च है या फिर जो होटल्स हैं उनको लेकर भी कुछ खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं क्या?
0: जी, दिशा निर्देश ऐसा जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है एक अवेयरनेस कैंपेन चला रही है और इसके तहत एक चेकिंग कैंपेन भी आप कह सकते हैं चल रहा है, जहां दिल्ली पुलिस जा रही है, लॉज में जा रही है, होटल्स में जा रही है, और अगर कोई ऐसा प्रतीत होता है, कोई ऐसा शख्स है जो यहाँ प्रोटेस्ट करने की मंशा से आया है तो उसे जाकर समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये प्रोटेस्ट जो है इसको परमिशन नहीं मिली है, और दिल्ली पुलिस अगर आप और ये लोग अगर नई दिल्ली पहुंचते हैं, इस मंशा से पहुंचते हैं कि प्रदर्शन करना है, तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो ये जो एक अवेयरनेस कैंपेन है ये दिल्ली पुलिस चला रही है और ये भी पिन पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रही है कि आखिर कहां कहां जो लोग हैं वो रुके हुए हैं और किस मंशा से वो दिल्ली में आए हैं। इसके अलावा होटल स्टाफ को भी ये एक स्टैंडिंग ऑर्डर दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा शख्स है जो आपके होटल में रुका है और जो प्रदर्शन में जा सकता है तो उसकी जानकारी जो है दिल्ली पुलिस को दी जाए, ताकि दिल्ली पुलिस जाके उनसे बात कर पाए और उन्हें कन्विंस कर पाए कि ये जो प्रोटेस्ट है इसकी परमिशन बिल्कुल भी नहीं दी गई है और अगर वो प्रदर्शन करने पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो कानूनी कार्रवाई है वो।
1: मतलब अंशुल, प्रॉपर होमवर्क करके इस बार दिल्ली पुलिस तैयार है कल के प्रोटेस्ट के लिए। लेकिन देखिए, जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े उनको बता दें, बहुत बड़ी खबर है, मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे, ये आप मान के चलिए, क्योंकि अभी चिट्ठी लिखी गई है जॉइंट कमिश्नर की तरफ से, डीएमआरसी को ये चिट्ठी लिखी गई है, और हो सकता है कि आज रात 9 बजे से ही मेट्रो के गेट आपके लिए बंद हो जाएं और ये कल पूरे दिन लागू रहे। और 57 मेट्रो स्टेशन हैं, लिस्ट सामने अभी नहीं आई है, लेकिन हो सकता है जैसे अंजलि बता रही थी कुछ ऐसे मेट्रो स्टेशन होंगे जहां बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक हो सकता है, जहां लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत हो, वो भी बंद रह सकते हैं, ट्रेनें भी बंद रहेंगी, कई रूट डाइवर्ट कल किए जाएंगे। तो कल अगर बहुत जरूरी काम आप लोगों को ना हो तो घर से ना निकलिए, और ऐसा पुलिस की तरफ से भी अब यही बताने की कोशिश की जा रही है।
2: तो वैसे कल दूसरा शनिवार है महीने का, तो कई जगह दफ्तर बंद रहते हैं, तो हो सकता है ट्रैफिक पहले से कम हो, लेकिन अहम फिर भी है कि आवाजाही पर किसी तरीके से अंकुश लगाने की कोशिश यहां पर हम पुलिस की तरफ से देख रहे हैं, चाहे सीमाएं हो उन्हें भी रोका गया, निजामुद्दीन और नई दिल्ली आने वाली ट्रेन बंद करने की रद्द करने की बात कही गई है।
1: कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है अंशुल, अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो कितना? चलिए, पीसी यानी शुरू होने वाली है और कुछ ही देर में बहुत जल्द पता चलेगा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया है।
2: तो फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: जेके मैक्स वाइप इजी, दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।
6: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
7: EU सोच बदलो और बैंक भी।
8: आ गया सोमवार और आ गए
9: चकमक चाचा।
8: एक कचौड़ी, दो समोसा, चकमक तेरा क्या भरोसा?
10: चकमक चाचा से सीधे चकमक है?
8: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रहे, बुझ रहा ना।
10: लेकिन भैया नारे, अरे फालतू में सब बेकार, एकदम बेकार, नारे होते थे हमारे टाइम।
8: अच्छा
10: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
8: अच्छा, तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी, इन नेताओं की खत्म कहानी।

0: अरे जमीन की चकबंदी में, जमीन की चकबंदी में क्या पहने उस बंदी में?
1: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
0: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
1: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा लेके जाएंगे।
0: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
1: अरे लाल फूल नीला फूल जंजी नंगे ब्यूटीफुल।
0: अरे बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी।
1: चाय गरम दूध गरम चकमक चाचा भी सरम
0: है।
1: हाँ,
0: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
1: अरे मेरे सिर में दर्द है जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
2: हम जैसे? इधर आओ।
3: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
1: चाचा, खेल रहा।

0: त्योहारों की खुशियों के बीच आम आदमी की जेब पर महंगा झटका लगा है। इसकी वजह RBI MPC की तरफ से बढ़ाया गया रेपो रेट है, जिससे लोन की EMI बढ़ने की आशंका है। RBI ने करीब 3.5 साल बाद ब्याज दरें बढ़ाकर महंगाई के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। RBI ने रेपो रेट को 5.25% से बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। इसके साथ ही पॉलिसी रुख को न्यूट्रल से बदलकर कैलिब्रेटेड टाइटनिंग कर दिया है, यानी जरूरत पड़ने पर आगे भी ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती हैं। दरअसल महंगाई दर लगातार RBI की 4% के सुरक्षित लक्ष्य से ऊपर बनी हुई थी। यही वजह है कि सेंट्रल बैंक को रेट बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions, developments and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate under the LAF by 25 basis points to 5.5%. Consequently, the STF rate stands adjusted at 5.25%, and the marginal SFR and the marginal standing facility rate and the bank rate to 5.75%.
0: इस फैसले का सीधा असर आपकी हर महीने जाने वाली EMI पर पड़ेगा। अगर बैंक भी इसी तरह ब्याज दर बढ़ाएंगे तो 50 लाख के 20 साल के होम लोन पर ब्याज दर 8.5%।
2: इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और पाया गया कि उक्त सूचना अत्यंत ही अल्प समय में प्राप्त हुई है, जबकि वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार जंतर मंतर पर कार्यक्रम आयोजित करने हेतु आवेदन कार्यक्रम की निर्धारित तिथि से कम से कम 10 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ये उल्लेख करना भी इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस जनता पार्टी के पूर्व आचरण के अनुसार एक अलग अवसर पर पूर्व में दिए गए उनके द्वारा अंडरटेकिंग्स तथा लॉफुल डायरेक्शंस को भी नहीं फॉलो किया गया था। निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किए जाने पर पूर्व में दिए गए कानूनी दिशा निर्देशों को नहीं पालन करने तथा वर्तमान में पब्लिक सेफ्टी लॉ एंड ऑर्डर एवं ट्रैफिक रेगुलेशन की स्थिति को देखते हुए जंतर मंतर पर प्रस्तावित धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि न्यू दिल्ली इलाके में 163 BNSS 163 BNSS की धारा लागू है, जिसके तहत पब्लिक ऑर्डर और सेफ्टी मेंटेन करने के लिए रीजनेबल प्रिवेंटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। यह भी सूचित किया जाता है कि 163 BNSS के उल्लंघन करने या किसी तरह का वैंडलिज्म या पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन करने पर इस संबंध में माननीय न्यायालयों द्वारा पूर्व में जजमेंट्स के तत्वाधान में उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। We have received an application from Sarov Das, co-convener of Kokro Janata Party. The application is regarding an intimation for protest on 10th of October at Jantar Mantar. The protest was regarding accountability of CEC. This intimation was considered and it was found that the intimation was given in a very short span of time, whereas as per the prescribed guideline, the intimation has to be received 10 days prior to its protest which is planned. Further, it is also important to mention that in the earlier occasion when Kokro Janata Party was given the permission to hold protest there, they did not follow the lawful directions and they did not follow the own undertakings given at that point of time. So therefore, because of not following the legal directions and their own undertaking and the prevalent law and order situation and to maintain public safety and law and order and traffic regulation, this time the permission is rejected, it is not given. It is important to mention that in New Delhi area, 163 BNSS is in operation, and under which maintain public order and safety, reasonable preventive restriction is at place. It is further important to mention that if anybody violates the 163 BNSS provisions, then proper legal action will be taken against them. Thank you.
3: How many times has the CJP violated the previous terms and conditions? You know, 17 FIs are there, which hasn't caused by the court. So how many instances was there because of when the CJP violated norms and which led to cancellation of the...
2: We will provide it later because it is an earlier requirement, it happened on earlier occasion. We will provide All the information, if you want any more information, we'll provide it later. Thank you.
3: Now, request to the metro stations.
4: ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि परमिशन नहीं है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन की मंजूरी नहीं। और इसके पीछे की वजह क्या बताई गई कि पिछली बार जो निर्धारित किए गए थे दिशा कानून, उनको उनका पालन नहीं हुआ, तो ऐसे में अब वो परमिशन नहीं दी गई है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, व्यवस्था बढ़ा दी गई है और दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर अब कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन का डेली डोज देना शुरू कर दिया।
1: नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने वोट चोरी की है और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, दिस इज आवर गारंटी।
0: वैसे पिछले दो दिनों से कांग्रेस ने इस आंदोलन में जो पैटर्न अख्तियार किया है, इसमें पहले विपक्षी सांसदों को लंच के लिए बुलाया जा रहा है, वहीं पर फ्लैश फॉर्मूला बन रहा है और फिर सड़कों पर पुलिस वालों से दो दुहार। कल जनपद के आसपास हुआ था, आज कनॉट प्लेस के उत्तर की तरफ संग्राम। हालांकि कल जिस लंच से इंडिया गठबंधन के बड़े घटक दल नदारद दिखे थे, आज उन्हें न्योता दिया गया है और सबने कबूल भी किया है।
2: वहीं पर हम सभी लोग बैठेंगे, धरना करेंगे।
0: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने अब राजघाट की राह पकड़ी है। अगला रास्ता राष्ट्रपति भवन की ओर का है। ममता बनर्जी तो कोलकाता से रवाना भी हो चुकी है, कहती हैं अभिषेक वही हैं, लेकिन उन्हें खास तौर पर बुलाया गया है। प्रदर्शन की इस जोर आजमाइश धक्का मुक्की में चोटें दोनों तरफ के लोगों को लग रही हैं। अब पुलिस वाले, खास करके महिला पुलिसकर्मी भी इसका शिकार हो रही है। प्रदर्शन में हिंसा की एक तस्वीर और दिखी है। कश्मीर से आए इस युवक की पहले तो प्लेकार्ड छीनकर फेंकी गई, फिर जवाबी नारेबाजी के साथ कांग्रेसियों ने इसकी पिटाई कर दी। दिल्ली के बाहर लखनऊ में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अलग अलग प्रदर्शन किया। पटना में तेजस्वी यादव, मीसा भारती प्रदर्शन कर रही थी। जम्मू में कांग्रेस का प्रदर्शन था तो बेंगलुरु में सीजेपी 10 अक्टूबर के दिल्ली प्रदर्शन से पहले वार्म अप कर रही थी। सियासी आरोपों से सड़क के आंदोलन तक तमाम उपाय अपनाने के बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का उपाय कामयाब नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में एक बार फिर अदालत का रुख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में 14 मार्च 2024 को ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधु को चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के फैसले को चुनौती दी गई है। आरोप है कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति अवैध है, क्योंकि इसमें 2023 की नियुक्ति नियमावली अधिनियम की धारा 5, 6 और 8(1) का पालन नहीं किया गया। एक पद के लिए 5 नामों का पैनल बनाने का प्रावधान था, जबकि 2 पदों के लिए 10 की जगह कुल 6 नामों की ही सिफारिश हुई, जबकि 13 मार्च 2024 को नेता विपक्ष को 200 लोगों की सूची भेजी गई थी। धारा 5 के मुताबिक चुनाव प्रबंधन संचालन के तजुर्बे वाले को चुना जाना था, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने 26 पोस्टिंग में कभी चुनाव अधिकारी का काम नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई बाकी है। इससे पहले 2023 के अधिनियम को चुनौती देने वाली एक और अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। आज तक ब्यूरो।

0: लेनी पड़े
1: फ्लाइट में कम से कम सफर करें मेरे हिसाब से भाई। ट्रैवल एजेंट कोई गांजा फूंक के चला रहा है, कोई चाकू लेके घुस रहा है, क्या हो रहा है ये?
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं।
1: तुम्हारा
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं।
0: यार काट देना।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

कल दिल्ली में प्रदर्शन के लिए सीजेपी को नहीं मिली इजाजत। पुलिस ने कहा देरी से दी गई सूचना। सभी मेट्रो स्टेशनों को बंद करने का प्रस्ताव। नई दिल्ली और निजामुद्दीन पहुंचने वाली कई ट्रेनें रद्द। शराब की दुकानें भी बंद। संसद के सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होंगे इंडिया ब्लॉक के सांसद। ममता तेजस्वी समेत कांग्रेस के कई सहयोगी रहेंगे मौजूद। मांगे राष्ट्रपति से मिलने का वक्त 2 से 8 अक्टूबर तक। 25 FIR। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और रेड्डीनगर उपचुनाव की काउंटिंग में बीजेपी आगे। असम की नगांव लोकसभा सीट बड़ी जीत की ओर बीजेपी। तमिलनाडु की दोनों सीटों पर विजय की पार्टी को बढ़त। पंजाब के तरनतारन में सनसनीखेज वारदात। दिन दहाड़े सरपंच पर ताबड़तोड़ अटैक। बाइक सवार ने गोलियों से भून डाला। 6 अक्टूबर को मर्डर का सीसीटीवी सामने आया। ओमानी को पायलट का अटैक झेलकर फ्लाई दुबई को क्रैश से बचाने वाले भारतीय पायलट कैप्टन मचार को सम्मानित करेगा इसराइल। मिलेगा प्रेसिडेंशियल अवार्ड फॉर सिविलियन हीरोइज़्म।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 12 बजे 12 रिपोर्टर की शुरुआत दिल्ली से आ रही एक बड़ी खबर से। दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी को कल जंतर मंतर में प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 7 अक्टूबर को सीजेपी का प्रदर्शन को लेकर लेटर पुलिस को मिला था, जिसमें 10 तारीख को प्रदर्शन की मंजूरी मांगी गई थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ऐसे प्रदर्शन के लिए कम से कम 10 दिन पहले मंजूरी मांगी जाती है।
1: कांग्रेस जनता पार्टी के पूर्व आचरण के अनुसार एक अलग अवसर पर पूर्व में दिए गए उनके द्वारा अंडरटेकिंग्स तथा लॉफुल डायरेक्शंस को भी नहीं फॉलो किया गया था। निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किए जाने पर पूर्व में दिए गए कानूनी दिशा निर्देशों को नहीं पालन करने तथा वर्तमान में पब्लिक सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर एवं ट्रैफिक रेगुलेशन की स्थिति को देखते हुए जंतर मंतर पर प्रस्तावित धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है।
0: हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु, एक तो परमिशन सीजेपी की तरफ से लेट मांगी गई और पुराने दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया, क्या यही दो बड़ी वजह है परमिशन नहीं मिलने की?
2: हाँ, फिलहाल तो पुलिस यही बता रही है, क्योंकि देखिए किसी भी तरीके की अगर प्रोटेस्ट का अगर आपको कॉल करना है और जंतर मंतर पर अगर प्रोटेस्ट का कॉल करना है, क्योंकि इस इलाके में अक्सर अमूमन धारा 163 लागू रहती है, तो यहाँ पे जो नियम बनाए गए हैं कि आप कम से कम 10 दिन पहले आप प्रोटेस्ट की अनुमति मांगेंगे, जाएंगे, कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं, किस दिशा में लोग आ रहे हैं, उनके पास किस तरीके के सामान रहेंगे, डंडे रहेंगे, झंडे रहेंगे, क्या कुछ है, सब कुछ आपको लिस्ट बना करके देनी होती है। अब जब आप 3 दिन पहले 7 तारीख को सौरभ दास आए थे और 7 तारीख को वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में गए थे और वहां पर उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, तो पुलिस ने साफ कहा कि एक तो समय कम दिया गया, सिर्फ 3 दिन का समय दिया गया, 7 तारीख को एप्लीकेशन दिया गया और 10 तारीख को प्रोटेस्ट की मांग की गई, तो नंबर एक तो यहीं पर नियम टूटा। और दूसरा, जो पहले इन्होंने परमिशन की जब मांग की थी और जो आचरण रहा था उसको देखते हुए भी परमिशन डिनाई की जाती है, तो ये पुलिस का एक वो रहा कि सीजेपी को जो कल प्रस्तावित प्रोटेस्ट है उसकी कोई भी परमिशन पुलिस की तरफ से नहीं दी गई। अब पुलिस ने इसको आगे बढ़ाते हुए कहा हिमांशु कि अगर चूंकि 163 लागू है बीएनएसएस की, अब अगर कोई वहां पर जुटता है, कोई वहां पर भीड़ जुटाता है, तो ऐसी दोनों परिस्थितियों में लीगल एक्शन दिल्ली पुलिस की तरफ से लिया जाएगा, जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो लोग पहुंचते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी एक बात और आगे बढ़ के यहां पर पुलिस ने कही, अब आगे लोग यहां पर ना पहुंचे इसके लिए भी पुलिस देखिए तैयारी कर रही। हिमांशु, सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो ज्वाइंट सीपी ट्रांसपोर्ट है उनको डीएमआरसी की तरफ से
0: मतलब सावधानियां बरती गई है, स्पष्ट देखा जा सकता है। बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपसे जुड़ेंगे। और इसी बीच जंतर मंतर में प्रस्तावित सीजेपी के कल के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है और 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर 57 मेट्रो स्टेशन्स की एंट्री और एग्जिट गेट बंद करने का डीएमआरसी से अनुरोध किया। वहीं प्रदर्शन को लेकर दिल्ली और निजामुद्दीन आने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, साथ ही दिल्ली में पुलिस बल की भारी तैनाती कर दी गई है। जुड़े हुए हमारे सहयोगी हमारे साथ हिमांशु मिश्रा। हिमांशु, कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और 57 मेट्रो स्टेशन, कौन कौन से वो अहम मेट्रो स्टेशन है जिनको बंद रखा जाएगा?
2: देखिए, हमने आमतौर पे देखा है कि दिल्ली पुलिस 12 से 13 मेट्रो स्टेशन बंद करती है, खासतौर से वो मेट्रो स्टेशन जो जनपद के आसपास के जंतर मंतर पे, पार्लियामेंट स्ट्रीट के आसपास के जो मेट्रो स्टेशन है, जैसे पटेल चौक, राजीव चौक और मंडी हाउस तक, ज्यादा से ज्यादा मंडी हाउस से लेकर झंडे वालान तक हमने देखा है कि मेट्रो स्टेशन बंद रहती है। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस, चूंकि पिछले समय दिल्ली पुलिस ने देखा था कि कैसे लोगों का हुजूम पहुंचा था, लोग इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन पहुंचे और वहां से उतर करके पैदल चले आए, तो इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने 57 मेट्रो स्टेशन, या आप कह सकते हैं कि कम से कम 8 से 10 किलोमीटर का पूरा जो रेडियस है उसमें जो मेट्रो स्टेशन आते हैं हिमांशु, उन सभी मेट्रो स्टेशनों की एंट्री एग्जिट को बंद करा दिया गया है ताकि लोग वहां न चढ़ सके न उतर सके। हालांकि इंटरचेंज की बाकी अंदर जो स्टेशन के फैसिलिटीज है वो चालू रहेगी, मेट्रो चलती रहेगी, इंटरचेंज आप कर पाएंगे, लेकिन ना आप बाहर जा पाएंगे ना उस स्टेशन से आपको अंदर एंट्री मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ कहीं बड़ी संख्या में लोग ट्रेन का इस्तेमाल करके मोबिलाइज ना हो, भीड़ मोबिलाइज ना हो, इसलिए नई दिल्ली और निजामुद्दीन, चूंकि ये रेंज में देखिए ज्यादा दूरी नहीं है, करीबन 6 किलोमीटर की दूरी है जंतर मंतर से, अगर हम देखें निजामुद्दीन की, तो वहां पे लोग ना पहुंच के भीड़ जुट जाए, और इस तरीके से सिस्टमैटिक बैरिकेडिंग की जा रही है
0: और यही कोशिश है कि भीड़ को रोका जा सके, और इसी के लिए ये इंतजाम किए गए हैं। शुक्रिया जुड़ने के लिए आपका। अब बात मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर चल रहे इंडिया गठबंधन के आंदोलन की। आज फिर दिल्ली में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन हो सकता है, हालांकि आधिकारिक तौर पर आज के प्लान की जानकारी नहीं दी गई। आज दोपहर 3 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में इंडिया गठबंधन के सांसद इकट्ठा होने वाले हैं। माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के नेता सेंट्रल हॉल में आगे की रणनीति तैयार करेंगे, और हो सकता है जो पिछले हम 3 दिनों से देख रहे हैं वो आगे भी देख लें।
3: राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन द्वारा सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ छेड़ा गया दंगल आज लगातार 4th दिन भी दिल्ली में जारी रहेगा। इंडिया गठबंधन के सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को कहा गया है कि वो ओल्ड पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में 3 बजे इकट्ठा हो। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि राहुल गांधी यानी कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ने राष्ट्रपति भवन के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए समय मांगा था, हालांकि राष्ट्रपति भवन से अभी तक इस रिक्वेस्ट पर कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, यानी कि मिलने का समय नहीं दिया गया है विपक्षी दलों को। ऐसे में संभावनाएं ये हैं कि अगर समय मिलता है तो सभी सांसद मार्च करते हुए पार्लियामेंट से विजय चौक तक आएंगे, और फिर वहां से निर्धारित डेलीगेशन राष्ट्रपति भवन के अंदर जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपनी बात को लेकर। और अगर समय नहीं मिलता है तो विपक्षी दलों के सांसद मार्च निकालेंगे पार्लियामेंट से, और ऐसी स्थिति में दिल्ली पुलिस को इन सांसदों को रोकना पड़ेगा। वीडियो सहयोगी लोकेंद्र पांडे के साथ मोहम्मद भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
0: तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन और लगातार हो रहे धरने प्रदर्शन को लेकर व्यापारियों की चिंता बढ़ गई। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी सीटीआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नवरात्रि से दिवाली तक प्रमुख व्यवसायिक इलाकों में बड़े प्रदर्शनों पर रोक लगाने की मांग की। सीटीआई का दावा है कि पिछले 3 दिनों में बाजारों में कारोबार घटकर महज 30% रह गया है। संगठन ने प्रदर्शनकारियों की संख्या सीमित करने, बाहरी दिल्ली में स्थायी प्रोटेस्ट जोन बनाने का भी प्रस्ताव दिया।
4: पिछले कुछ दिनों में लगातार हो रहे इंडिया ब्लॉक के सांसदों के द्वारा प्रदर्शन की वजह से आम लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे सूत्रों के अनुसार कल हुए प्रदर्शन की वजह से लगभग 5,000 लोगों की ट्रेनें छूट गई, कई लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। इसी के साथ साथ चैंबर्स ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने एक पत्र लिखा है पीएम नरेंद्र मोदी को, और उनसे मांग की है कि दिवाली तक सभी प्रदर्शनों पर दिल्ली में रोक लगाई जाए, क्योंकि प्रदर्शन होने की वजह से जाम लग रहा है और जाम की वजह से लोग बाजारों में नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से 70% फुटफॉल में गिरावट दर्ज की गई है। अब इस जो दिक्कत लोगों को हो रही है उसमें किस तरह से आगे कदम सरकार उठाने जा रही है और क्या रुख रहेगा इंडिया ब्लॉक के सांसदों का, वो देखना होगा। लेकिन लगातार हो रहे प्रदर्शनों ने कहीं ना कहीं आम लोगों की जिंदगी पर जरूर असर डाला है।
0: वहीं कल के कांग्रेस के प्रदर्शन की वजह से करीब 5,000 रेलवे यात्रियों की ट्रेन छूट गई। कुछ मुसाफिरों का दर्द आपको दिखाते हैं।
5: मेरी ट्रेन आज दिल्ली से बेंगलोर की थी, बट ट्रैफिक की वजह से मेरी ट्रेन मिस हो गई है। अभी मुझे पूरी रात यहाँ पे स्टे करना होगा और नेक्स्ट ट्रेन का वेट करना होगा।
6: जी पार्क से बस पकड़ के आया, यहाँ इतना जाम, इतना अत्याचार हो रहा, तो मेरी ट्रेन भी मिस हो गई। बनारस जा रहा था मुझे, अब 4 घंटे से बैठा हूँ, मुझे वापसी लौटना पड़ा।
7: मेरा नाम श्याम सुंदर है, मैं बस से आ रहा था कन्नट प्लस से, मेरी बस ट्रैफिक में फंस गई और मेरी लखनऊ जा रहा था, मगर ट्रेन छूट गई, मैं पूरी रात यहीं रुकूंगा।
8: हेलो, माय नेम इज़ मोहम्मद हादिक जस्सा, आई एम फ्रॉम केरला। बिकॉज ऑफ द ट्रेन ट्रैफिक आई मिस माय ट्रेन, नाउ व्हाट आई कैन डू।
9: Hello, my name is Muhammad Sahel and I am from Chennai. Because of traffic, I missed my train. I don't know what to do now.
0: चलिए बात बंगाल उपचुनाव की करते हैं, जहां 2 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है। नंदीग्राम रेजीनगर की सीट पर बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और बहुत ज्यादा आगे चल रहे हैं। दोनों सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। दो राउंड की वोटिंग में भी अगर काउंटिंग हुई है तो दो राउंड की वोटिंग की काउंटिंग के बाद बताया जा रहा है कि 16 से 19 हजार वोटों से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहा है। बीजेपी का तो दावा है कि रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करनी है, 1 लाख के अंतर से जीतना है। यहां से नंदीग्राम और रेड्डी नगर में जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी जब प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ था, बहुत से ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने पार्टी छोड़ दी थी या मना कर दिया था लड़ने से। इंद्रजीत कुंडू जुड़ गए हमारे सहयोगी हमारे साथ। इंद्रजीत, कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और क्या रिजल्ट है अभी, क्या अभी तक सामने आया है?
10: देखिए, नंदीग्राम में बीजेपी का जो बढ़त है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। इस वक्त 5 राउंड का गन्ना खत्म हो चुका है, जिसके बाद 40,000 से भी ज्यादा वोटों के साथ बीजेपी कैंडिडेट जो है उम्मीदवार हांसीरानी रथ वो आगे निकल चुकी है। कुछ देर पहले मेरी उनसे बात हुई थी और वो ये कह रहे थे कि रिकॉर्ड मार्जिन से नंदीग्राम में इस बार बीजेपी जीतने वाली है। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री ने खुद टारगेट दिया था 1 लाख से ज्यादा मार्जिन का और वो एक रिकॉर्ड बन सकता है नंदीग्राम में, जिस तरह से 5 राउंड के बाद 40,000 से ज्यादा का लीड बीजेपी को मिल चुकी है और 15 राउंड मतलब अभी भी 10 राउंड बाकी है, तो ये कुछ नामुमकिन नहीं है। और दूसरी ओर अगर रेजी नगर की बात करें, मुर्शिदाबाद में, वहां पे भी बीजेपी के उम्मीदवार वो आगे चल रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि रेजी नगर सीट में मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिम मेजोरिटी एक सीट है, वहां पे भी 5 राउंड के बाद बीजेपी का जो कैंडिडेट है साकार सरकार वो 34,000 से भी ज्यादा का लीड वो ले चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि दोनों ही सीट में दिख रहा है इस वक्त बीजेपी का क्लीन स्वीप है। लेकिन उसके साथ साथ बंगाल की राजनीति में जो बहुत महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि दूसरे पायदान पे कौन सी पार्टी रहती है, क्योंकि जो विपक्ष का वैक्यूम बना हुआ है, 5 महीने पहले जो चुनाव हुआ था उसमें रिजीम चेंज हुआ पश्चिम बंगाल में, सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद विपक्ष का भूमिका कौन सी पार्टी अदा कर।
0: लेकिन निर्णायक बढ़त इसे कहा जा सकता है। इंद्रजीत कुंडू, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 12 बजे 12 रिपोर्टर में यूपी की अगली रिपोर्ट आपको बताते हैं। यूपी की 27 की विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़े झटके की खबर है। समाजवादी पार्टी से बागी हुए 3 विधायक विनोद चतुर्वेदी, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। अब खबरों के मुताबिक 14 अक्टूबर को अमेठी के गौरीगंज में बीजेपी बड़ा आयोजन तय हो चुका है बीजेपी का। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और बीजेपी महामंत्री स्मृति ईरानी, उनकी मौजूदगी में तीनों विधायक बीजेपी ज्वाइन करेंगे। अब पूरी खबर बता रहे हैं समर्थ श्रीवास्तव।
11: उत्तर प्रदेश की सियासत में एक दफा फिर हलचल पैदा होने वाली है। मामला है समाजवादी पार्टी के 3 बागी विधायकों का, राकेश प्रताप, अभय सिंह और विनोद चतुर्वेदी अब आधिकारिक तौर पर कमल थामने जा रहे हैं। घोषणा हो चुकी है, अमेठी का मैदान तैयार है। तारीख है 14 अक्टूबर की, जब मुकम्मल होगी इन तीनों बागी विधायकों की ख्वाहिश, जिन्होंने 2024 के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी और समाजवादी पार्टी के सामने जा खड़े हुए थे। 14 अक्टूबर के इस कार्यक्रम को बड़ा स्वरूप दिया जा रहा है। स्मृति ईरानी और पंकज चौधरी के मौजूदगी में ये तीनों विधायक कमल थामने जा रहे हैं। बड़ी बात यह भी है, राज्यसभा चुनाव के तीसरे कैंडिडेट उतारने की चर्चा के बीच लगातार सेंधमारी की चर्चा में इन तीनों के नामों की भी बात सामने आई थी और दावे किए गए थे कि समाजवादी पार्टी के संपर्क में हो सकते हैं। तो वहीं उस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इन विधायकों की मुलाकात ने तस्वीर साफ की और अब आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऐलान और सेंधमारी की कोशिश।
0: बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जुबानी जंग अब तेज हो गई है। कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित 470 खेल प्रतिभाओं को नियुक्ति पत्र वितरित कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने पीडीए की नई परिभाषा बताई। देखिए सीएम योगी का बयान।
12: पहले प्रदेश डुबाऊ एलायंस था, तो प्रदेश डुबाऊ एलायंस प्रदेश के अंदर प्रदेश के नौजवानों के सामने भी पहचान का संकट खड़ा करता था और आपकी इस नौकरी पे भी डकैती डालता था। ये नौकरी कभी नहीं मिलती है आपको, क्योंकि उसमें तो दो ही एस थे, या तो सिपाही या सिफारिश। और स्वाभाविक रूप से आपके पास मैदान से फुर्सत नहीं मिलती तो आप वो काम कर नहीं सकते थे, इसलिए नौकरी कभी नहीं मिलती।
0: अगली खबर भी यूपी से। अखिलेश के अयोध्या दौरे पर बीजेपी ने हमला बोला। यूपी बीजेपी ने एक्स पर लिखा, बहुरूपिया भेष बदल कर फिर आया है। पूरी खबर बता रहे आशीष श्रीवास्तव।

0: उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव है। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव अयोध्या पहुंचते हैं और वहां से मैसेज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ दूसरी तरफ साफ कहते हैं कि ये मगरमच्छ की तरह हैं, बहरूपी हैं, इनसे सावधान रहना होगा क्योंकि चोला ओढ़ लिया है। राम मंदिर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ अयोध्या जा रहे हैं। ये बड़ा सवाल है एक भी, क्योंकि बीजेपी साफ तौर से कह रही है कि जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये बहरूपियों की तरह लोग को आएंगे, भाएंगे और फिर चले जाएंगे। और यही बात क्योंकि अखिलेश यादव दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाएं, यानी कि ये एक चैलेंज है समाजवादी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को। लेकिन ये तो जरूर है कि एक दूसरे को कहीं बहरूपिया तो कहीं चैलेंज समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर लगातार ये वाद विवाद जारी है।
1: अब 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट पंजाब के चुनाव से जुड़ी हुई है। पंजाब में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच फिर से गठबंधन हो सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी के भीतर गठबंधन की संभावनाओं पर गंभीर मंथन चल रहा है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर पार्टी सभी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रही है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी के आंतरिक सर्वे में दावा किया गया है कि अगर बीजेपी और अकाली दल साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो दोनों 117 में से 80 से ज्यादा सीटें जीत सकते हैं।
2: पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के बीच में गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दोनों ही पार्टियों के नेताओं के बीच में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर बातचीत जारी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 45 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा सरकार के अंदर मंत्री पद को भी चाहती है।
1: 12 रिपोर्टर में अब आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर। घाटी में सर्दियों की आहट शुरू हो गई। कल उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले में कुछ हिस्सों में जबरदस्त ओलावृष्टि हुई, जैसा आप देख रहे हैं। अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ गया।
3: घाटी में मौसम हर पल अपने बदले मिजाज दिखा रहा है। ऑटम जो कि पतझड़ का सीजन है और ज्यादातर जो मौसम है वेदर स्टेबल रहता है, इस बार एकदम अलग चीज हुई है, जहां खासकर बांडीपुरा और उत्तरी कश्मीर के अलग इलाकों में जबरदस्त ओले गिरे हैं और इससे जो फसलें हैं खासकर सेब की फसल को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। बांडीपुरा में ओले किस इस तरीके से गिरे कि सबको लगा कि नीचे एकदम बर्फ जो है बिछ गई है, सफेद चादर सब जगह देखी गई। और उसके बाद जब देखा गया कि नुकसान कितना हुआ है तो फसलें खासकर इसे मैंने कहा सेब को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा, ऐसी खबरें।
1: वक्त तो चला है, छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
7: आगे आगे, अरे उधर उधर, करेक्ट करेक्ट,
8: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार, सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
10: मेरे पास एक आइडिया।
9: क्या?
10: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
11: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया है, पर स्टेज नहीं हिलता
12: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
13: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
14: कौन सी बनानी है?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
3: गड़बड़ है।
4: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: और वही कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
10: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट,
10: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
11: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
12: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
13: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
12: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
14: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेस की गलियों में अपने वतन की गीत सुना।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
16: इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
16: इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
18: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
19: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार। सर एक बार दो तीन थमका लगाने बस।
20: मेरे पास एक आइडिया है।
19: क्या?
20: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
21: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया है, पर स्टेज नहीं हिलता,
22: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
23: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
21: कौन सी बनानी है?
8: और वही कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
10: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट,
10: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
12: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
13: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
12: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
24: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ? पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
25: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेंको गहने।
16: इन एसोसिएशन विद
26: सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
27: Canara Bank, together we can.
28: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal anmol.
29: चिराग जी, आपने सभी दलों को यानी कि समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी सभी को बुला रहे हैं और 2027 में चुनाव भी है, क्या कुछ कनेक्शन?
0: मैं कतई आज के दिन को या आज के इस मंच को, आज के इस कार्यक्रम को राजनीतिक दृष्टि से जोड़ के नहीं दे सकता।
29: अगर इन केस एनडीए के साथ आप हैं यहाँ या 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हालांकि ये समय नहीं पूछने का, लेकिन फिर भी क्योंकि बड़ा उत्तर प्रदेश के लिहाज से है ये सवाल।
0: देखिए, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस कि अलायंस का क्या रूप होगा, क्या स्वरूप होगा, होगा कि भी नहीं होगा। गठबंधन की राजनीति में मैं, मेरी पार्टी लंबे समय से हम लोग रहे हैं। वीपी सिंह जी की सरकार में भी गठबंधन की सरकार थी, वो देवेगौड़ा जी की सरकार हो, गुजराल साहब की हो, अटल जी की सरकार हो, मनमोहन जी की सरकार हो, या मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार हो, गठबंधन राजनीति का हिस्सा लंबे समय से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास रही है। ऐसे में हम लोग की सोच हमेशा रही है कि जहाँ पे गठबंधन हो अच्छी बात है, बट जहाँ पे गठबंधन अगर नहीं भी होता है तो पार्टी की तैयारी हर सीट पर हम लोग की रहनी चाहिए, ताकि पार्टी का विस्तार उस दृष्टि से हम लोग कर सकें। ऐसे में मुझे नहीं पता गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, नहीं होगा, बट 403 सीटों पे हमारी पार्टी तैयारी जरूर कर रही है, ये तय है, और चुनाव हम लोग जरूर लड़ेंगे।
29: दूसरे दलों के साथ भी जा सकते हैं जहाँ पर यूपी में?
0: देखिए, हमारा केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एनडीए के साथ गठबंधन है। कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि अगर लोकसभा के चुनाव हो तो गठबंधन के बारे में कोई वैकल्पिक सोच रखी जाए। झारखंड में हम लोगों ने गठबंधन में लड़ा, दिल्ली में हम लोगों ने लड़ा, बट नागालैंड में मैंने अकेले चुनाव लड़ा, मेरे दो विधायक आज की तारीख में नागालैंड में भी हैं। तो ऐसे में जहां पे गठबंधन का स्वरूप, उत्तर प्रदेश में जैसे ये स्वरूप अभी तक तैयार नहीं हुआ है, तो ऐसे में जरूर हम लोग विकल्प पे भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं।
29: लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

कल दिल्ली में प्रदर्शन के लिए सीजेपी को नहीं मिली इजाजत। पुलिस ने कहा देरी से दी गई सूचना। सभी मेट्रो स्टेशनों को बंद करने का प्रस्ताव। नई दिल्ली और निजामुद्दीन पहुंचने वाली कई ट्रेनें रद्द। शराब की दुकानें बंद। संसद के सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होंगे इंडिया ब्लॉक के सांसद। ममता तेजस्वी समेत कांग्रेस के कई सहयोगी रहेंगे मौजूद। मांगा राष्ट्रपति से मिलने का वक्त। 2 से 8 अक्टूबर तक 25 FIR। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और रेडीनगर उपचुनाव की काउंटिंग में बीजेपी आगे। असम की नगांव लोकसभा सीट से बड़ी जीत की ओर बीजेपी। तमिलनाडु की दोनों सीटों पर विजय की पार्टी को बढ़त। पंजाब के तरन तारण में सनसनीखेज वारदात। दिन दहाड़े सरपंच पर ताबड़तोड़ अटैक। बाइक सवार ने गोलियों से भून डाला। 6 अक्टूबर को मर्डर का सीसीटीवी अब सामने आया। और रोमानी को पायलट का अटैक झेलकर फ्लाई दुबई को क्रैश से बचाने वाले भारतीय पायलट कैप्टन मच्छार को सम्मानित करेगा इसराइल। मिलेगा प्रेसिडेंशियल अवार्ड फॉर सिविलियन हीरोइज्म।

सीएम योगी की अध्यक्षता में लोकभवन में आज बड़ी कैबिनेट बैठक, 25 से ज्यादा प्रस्तावों पर हुई चर्चा। मीटिंग में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने के प्रस्ताव पर मोहर, भदोही का नाम बदलकर संत रविदास नगर करने का प्रस्ताव एजेंडे में शामिल। आज शाम 7 बजे दुर्गा पूजा, दशहरा और कानून व्यवस्था को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक होगी। सीएम योगी तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर स्वस्थ सक्षम उत्तर प्रदेश की कहानी साझा की, जिसमें उपचार की विवशता से स्वास्थ्य सुरक्षा के विश्वास तक के सफर को बताया। सीएम योगी ने कहा, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया से वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज तक पहुंची यूपी मेडिकल कॉलेजों की संख्या, 36 से बढ़कर 85 होने की दी खबर। अयोध्या दौरे के दौरान सीएम योगी को अखिलेश की चुनौती का दम है तो यहां से खुद चुनाव लड़े सीएम। अखिलेश की चुनौती पर बीजेपी ने पूछा, यहां आकर श्री राम मंदिर क्यों नहीं गए एसपी सुप्रीमो। राम मंदिर दर्शन नहीं करने पर बीजेपी के सवाल, सुदर्शन चक्र और त्रिशूल धारण करने पर बताया बहुरूपिया। राम मंदिर दर्शन पर बीजेपी के सवाल तो चढ़ावा चोरी मामले पर अखिलेश का पलटवार, अयोध्या को लेकर यूपी में सियासी घमासान। काशीराम को भारत रत्न देने की मायावती ने उठाई मांग, महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दी। मायावती का संकल्प, बहुजन आंदोलन को परिवारवाद से रखेंगे मुक्त, बहुजन समाज को शासक वर्ग बनाना लक्ष्य। बेरोजगारी महंगाई पर मायावती का सरकारों को संदेश, बोली युवाओं को रोजगार और विकास के ठोस अवसर देना जरूरी है। उत्तर मध्य रेलवे की 3 बड़ी उपलब्धियां, माल लदान में 8.1% की बढ़ोतरी, 6 महीने में 286.79 करोड़ का स्क्रैप निस्तारण और 1.11 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का रिकॉर्ड। इटावा में एक शिक्षक को बच्चे के साथ हंसी मजाक करना भारी पड़ गया, वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ब्रेक फेल होने के कारण लगभग 24,000 लीटर डीजल से भरा एक टैंकर सड़क पर पलट गया, लोगों में मची लूटने की होड़। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस का बड़ा एक्शन, आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोपियों के कब्जे वाली जमीन पर बुलडोजर चलाया, अतिक्रमण मुक्त। कौशाम्बी में झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत, अस्पताल स्टाफ फरार, सीएमसी ने दिए जांच के आदेश। इटावा में रोडवेज बस की खिड़की से कूदकर बंदी फरार, जिला जेल से ले जाने के बाद बदमाश ने मौके से भाग गया।

0: उत्तर प्रदेश के चुनावी खबरों में अयोध्या एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा इसलिए है क्योंकि अखिलेश यादव कल अयोध्या गए थे लेकिन राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए। ऊपर से भागवत कथा के मंच पर अखिलेश ने सुदर्शन चक्र और त्रिशूल धारण करके चुनावी संग्राम में अपने रुख का इजहार कर दिया। अब बीजेपी अखिलेश को बहुरूपिया बता रही है।
1: अक्टूबर को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का अयोध्या दौरा क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में अयोध्या के नाम की राजनीति में इतने रंग बिखर गए कि सियासत में उसमें कहीं भक्ति दिखी तो किसी ने आशीर्वाद देखा, किसी ने चुनौती फेंकी तो किसी ने प्रसाद पर चर्चा छेड़ दी। पहले आपको दिखाते हैं अखिलेश का वो अवतार जो वो अपने अयोध्या दौरे के हासिल के तौर पर पेश करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, मंच पर फूल मालाओं से लदे अखिलेश यादव खड़े हैं, बाएं हाथ में डमरू त्रिशूल धारण किए हैं और मेजबान पवन पांडे अखिलेश के दाएं हाथ की उंगली में सुदर्शन चक्र फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। फोटो हुई, पवन पांडे ने अपनी भी फोटो खिंचवाई और अयोध्या से वापसी के दूसरे दिन अखिलेश ने सोशल मीडिया पर यही तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि जब सत्ता करे वंचितों पर अत्याचार भारी तो तू उठा त्रिशूल और बन सुदर्शन धारी। वैसे अयोध्या में भागवत कथा के मंच पर अखिलेश की मौजूदगी के वक्त बड़ी संख्या में धर्मपरायण लोग मौजूद थे। इनमें रोजाना धार्मिक कथा में आने वाले लोगों के साथ साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक भी शामिल थे। इन धर्मपरायण मतदाताओं की विशाल भीड़ में अखिलेश की मौजूदगी से समाजवादी पार्टी को वोट का कितना फायदा होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी बार बार कह रही है कि अखिलेश का ये दौरा धार्मिक नहीं सियासी था। चुनावी सीजन में एक दूसरे पर चल रही सियासी छींटाकशी में अब बीजेपी ने अखिलेश के अयोध्या दौरे पर तंज करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट किया है। इसमें अखिलेश यादव को बहुरूपिया बताने की कोशिश की गई है। दरअसल अखिलेश के अयोध्या दौरे पर जाने और राम मंदिर के दर्शन नहीं करने को लेकर बीजेपी कल से ही सवाल उठा रही है। अब आजमगढ़ से चुनाव हार चुके बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने कहा है कि दरअसल अखिलेश तो पूजा पाठ ही नहीं करते।
2: मैं क्या कह सकता हूँ, हर किसी की अपनी आस्था है। हम लोग तो जाते हैं, हम तो
3: किसी की आस्था तो अखिलेश जी की आस्था है कि नहीं?
2: अब वो तो खुद ही कहीं मैंने देखा था कि वो पूजा पाठ में उनकी आस्था नहीं है, ऐसा वो बोले थे। कहीं मैंने देखा था कि किसी ने पूछा था कि आप पूजा पाठ करते हैं, तो बोले हम तो नहीं करते हैं। तो किसी ने पूछा कि डिंपल जी करती हैं, तो बोले हमको लगता है वो भी नहीं करती हैं। तो अब वो उनका देखिए, वो हर किसी का व्यक्तिगत चीज है कि आप किसी आस्था में माने ना माने।
3: हाँ, अयोध्या तक जाता है दर्शन करना चाहिए आपकी राय में?
2: मुझे लगता है कि एक बार 27 में फिर जब बुरी तरह हारेंगे तब जाएंगे। एक जो विधायकी का कोई एक चुनाव जो जीते थे तो वो भी इस बार जो उन्होंने किया है तो ये दिखाएगी अयोध्या की जनता कि भाई आप जब रामलला का दर्शन ही नहीं कर रहे तो चलिए आपको यहाँ से भी हटा देते हैं।
1: अखिलेश का अयोध्या जाना और रामलला के दर्शन नहीं करना यूपी सरकार में मंत्री और अखिलेश यादव के पुराने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर को भी बुरा लगा है। राजभर ने तो दो तस्वीरें जारी कर दी हैं। इनमें एक तस्वीर अयोध्या दौरे पर भागवत कथा का प्रसाद पाते हुए साधु संतों के बीच बैठे हुए है और दूसरी तस्वीर रमजान में इफ्तारी खाते हुए है। ओम प्रकाश राजभर इन दोनों तस्वीरों में अखिलेश के चेहरे के हाव भाव का सियासी नजरिए से विश्लेषण कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि इफ्तार पार्टी में चहकते अखिलेश के चेहरे के हाव भाव साधु संतों के बीच असहज दिख रहे हैं। राजभर ने लिखा है कि इफ्तारी टोपी में चहकते अखिलेश भोजन प्रसाद पाते हुए असहज कैसे बैठे हैं। राजभर ने तंज किया है कि इफ्तार वाली मुस्कान भोजन प्रसाद में दिख जाती तो मौलाना नाराज हो जाते।
4: तो ये दोहरा चरित्र सनातन बनने का और मौलानाओं के साथ जो उनकी खुशी है वो सनातन के साथ उनको उनके चेहरे बता रहे हैं कि हम दुखी हैं यहाँ आकर के अयोध्या में, उसी पर हमने ट्वीट किया। निश्चित है वो अगर अयोध्या जाते गए थे तो राम मंदिर या हनुमानगढ़ी गए होते दर्शन करने, तो मुसलमान इनका बाजा बजा देगा।
5: दरअसल 2024 में संविधान के मुद्दे पर बड़ी संख्या में दलित वोट पा चुकी समाजवादी पार्टी ने इस बार चुनावी रणनीति में सॉफ्ट हिंदुत्व का फॉर्मूला भी आजमाया है। भागवत कथा के मंच पर अखिलेश की मौजूदगी उसी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन यूपी में मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले अखिलेश के इस प्लान पर भी सवाल उठ रहे हैं।
6: बड़ा सवाल है वो 94% का वोट जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की झोली भर दी थी। ये दोधारी तलवार जो समाजवादी पार्टी लेकर चल रही है, कहीं ये अल्पसंख्यक वोट का नुकसान तो नहीं कर देगी? अब देखना यह है 27 का जनादेश समाजवादी पार्टी को किस ओर ले जाता है, इसे दिखावा समझता है या धरातल की सच्चाई, ये वक्त बताएगा। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: और देखिए, बीजेपी जहां अखिलेश के राम मंदिर दर्शन करने नहीं जाने को लेकर सवाल उठा रही है, वही समाजवादी पार्टी सांसद चढ़ावा चोरी के मामले पर निशाना साध रहे हैं।
7: उधर से सर सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि जब सपा अध्यक्ष वहां गए तो राम मंदिर में दर्शन क्यों नहीं किया?
8: पहली बात, चढ़ावा चोरों से धर्म पर और अंग्रेजों के दलालों से राष्ट्रभक्ति पर कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी केदारेश्वर का बहुत बड़ा मंदिर बना रहे हैं और उन्होंने पहले भी कहा है कि मंदिर का अपना उद्घाटन करके भगवान राम के पास जाऊंगा। शायद उनकी श्रद्धा रही हो कि मैं एक मंदिर बनाकर आपके प्रेरणा से मैं आपके पास आऊंगा।
7: ठीक है,
8: जब जाना चाहे तब जाएंगे, उसे इनसे वीजा परमिट लेना पड़ेगा। हम उनको चढ़ावा चोरी करने जाना है कि चले जाएं चढ़ावा चोरी करके जल्दी से आ जाएं चोरों की तरह, कि जमीन चोरी करना है?
0: एक तरफ अयोध्या मंदिर में दर्शन को लेकर सवाल, दूसरी ओर अखिलेश की सीएम योगी को चुनौती। अखिलेश यादव ने कल अयोध्या में कहा कि अगर सीएम योगी ने अयोध्या के चढ़ावा चोरी कांड का 15 दिन में दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है तो अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखा दें।
9: अयोध्या पहुंचे अखिलेश कल अलग ही अंदाज में नजर आए। गले में फूलों की मालाएं थी, हाथ में गदा था और जुबां पर भगवत कथा की महिमा का बखान था।
10: मैं कह सकता हूं कि भगवत कथा का महत्व और प्रासंगिकता बढ़ा देता है।
9: अखिलेश लंबे अरसे के बाद अयोध्या पहुंचे थे। यूं तो कार्यक्रम धार्मिक था, लेकिन धर्म की बातें करते करते वो राजनीति की तरफ मुड़ ही गए। उन्होंने पहला निशाना चुनाव आयोग पर साधा, कहा कि चुनाव आयोग को श्री कृष्ण से प्रेरणा लेनी चाहिए, ना इंसाफी नहीं करनी चाहिए। भगवत पुराण, धर्म, न्याय और नीति की बात करते करते अखिलेश ने सीएम योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती भी दे दी।
10: सुनने में आ रहा है उन्हें

0: और जो बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही अस्वस्थ हैं तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़ करके दिखाएं।
1: बड़ी बात यह है कि अखिलेश 5 साल बाद अयोध्या के दौरे पर पहुंचे थे, जहां वो एसपी के घोषित उम्मीदवार पवन पांडे के घर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में शामिल हुए। हालांकि अखिलेश इस बार भी रामलला के दर्शन के लिए नहीं गए, लेकिन उन्होंने इशारों इशारों में बड़ी बात कह दी।
0: मैं उनसे भी कहूंगा पवन पांडे से, एक तारीख निकलवाइए, हम सब लोग दर्शन पर पहुंचेंगे।
2: जो राम अयोध्या जाकर के रामलला के मंदिर में नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब उनको उनकी राम भक्ति संदेह के घेरे में है, क्योंकि जो अयोध्या जाता है देश नहीं दुनिया के कोने कोने से लोग आकर के राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।
1: दरअसल अयोध्या अवध क्षेत्र का हिस्सा है। बीते चुनाव में इस क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा साफ दिखा था। अवध क्षेत्र की 118 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने 88 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी, जबकि समाजवादी पार्टी 30 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी थी। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या अवध की सियासी लड़ाई का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में बीजेपी अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में जमीनी समीकरणों को दुरुस्त कर रही है, तो अखिलेश भी तमाम पेचों को सुलझाने में लगे हुए हैं। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
3: उत्तर प्रदेश में चुनाव का मौसम आते ही असंतुष्टों के आर पार होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब कुछ नाराज नेता बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, कुछ उम्मीद लगाए समाजवादी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसमें अब नया झटका समाजवादी पार्टी को अमेठी इलाके में लगा है।
4: कहां तो रायबरेली से रथ यात्रा की शुरुआत करके अखिलेश यादव ने कांग्रेस के गढ़ में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के दावे किए थे, और महीने भर के अंदर फुर्सतगंज चौराहे से पार करके सियासत अब पड़ोस के अमेठी जिले में पहुंच गई। और वहां इंडिया गठबंधन को कुछ ऐसा झटका लगा कि समाजवादी पार्टी के 3 विधायक बीजेपी की ओर खिसक लिए। खबर है कि 2024 में राज्यसभा चुनाव के दौरान से ही समाजवादी पार्टी से बगावत चल रहे 3 विधायक विनोद चतुर्वेदी, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह बीजेपी में शामिल होंगे। इसके लिए अमेठी के गौरीगंज में 14 अक्टूबर को बीजेपी बड़ा आयोजन कर रही है। खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और बीजेपी महामंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी में तीनों विधायक बीजेपी ज्वाइन करेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी से यह ताजा बगावत सिर्फ अमेठी जिले तक सीमित नहीं है। इसमें जालौन, अमेठी और अयोध्या 3 जिलों के 3 एसपी विधायक बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। ऐसे में अगर सिर्फ रायबरेली अमेठी के शक्ति संतुलन की बात की जाए तो दोनों जिले मिलाकर कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। दल बदल से पहले यहां समाजवादी पार्टी के 6 और बीजेपी के 4 विधायक थे। इसमें ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे तो मंत्री बन चुके हैं। अब गौरीगंज के राकेश सिंह के आने के बाद 10 में से 6 सीट पर बीजेपी हो जाएगी, 4 सीट पर समाजवादी पार्टी बचेगी, जिसमें अमेठी में 1 और रायबरेली में 3 विधायक बचेंगे। यानी 2022 से 2027 के बीच अमेठी और रायबरेली दोनों जिलों से एक एक समाजवादी भाजपाई बन गए हैं। यूपी के चुनावी समर से पहले ये दल बदल असरकारी माना जा रहा है, क्योंकि अखिलेश इसी संख्या के आधार पर कांग्रेस के ऊपर भी अमेठी रायबरेली का दबाव बना रहे थे। वैसे अखिलेश लगातार बीजेपी में अंदर खाने नाराजगी का दावा करते रहे हैं, चाहे वो कौशल किशोर के बेटे और यूपी प्रदेश बीजेपी अनुसूचित जाति के मोर्चा उपाध्यक्ष विकास किशोर की नाराजगी की बात हो या आंवला के पूर्व बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप की बात। अखिलेश दावा करते रहे हैं कि बीजेपी के कई विधायक नेता उनके संपर्क में हैं। समर श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
3: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: आ गया सोमवार और आ गए
8: चकमक चाचा।
7: एक कचौड़ी, 2 समोसा, चकमक तेरा क्या भरोसा।
9: चकमक चाचा से सीधे चकमक है।
7: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रही, बुझ रहा ना।
9: लेकिन भैया नारे, अरे फालतू में सब बेकार, एकदम बेकार। अरे होते थे हमारे टाइम।
7: अच्छा
9: सुना है,

0: जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
1: शायद तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी, इन नेताओं की खत्म कहानी।
0: अरे जमीन के चकबंदी में, जमीन के चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में,
1: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा शर्म करो।
0: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
1: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा देके जाएंगे।
0: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
1: अरे लाल फूल नीला फूल जंजी नंगे ब्यूटीफुल।
0: अरे बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी।
1: चाय गरम दूध गरम चकमक चाचा भी सरम
0: है।
1: हाँ,
0: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
1: अरे मेरे सिर में दर्द है जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
2: हम जैसे, इधर आओ। हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
1: आई चाचा।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दो दिन सड़कों पर संग्राम के बाद राहुल गांधी ने कल राजघाट का रुख कर लिया। तस्वीरें देखिए, बापू की समाधि की परिक्रमा करती प्रियंका गांधी वाड्रा और सामने बापू को श्रद्धांजलि देते राहुल गांधी। करीब दो घंटे तक राहुल, प्रियंका, खड़गे और इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद राजघाट पर ध्यान मुद्रा में बैठे रहे। राहुल गांधी के मुताबिक दिल्ली में सरकार विपक्ष को धरना प्रदर्शन करने नहीं दे रही है।
5: राज्यसभा और लोकसभा के 300 एमपी पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। दो दिन से हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है, हमारे लोगों को मारा। रियलिटी ये है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी करके हिंदुस्तान को हाईजैक किया है।
4: ये लगातार तीसरा दिन था जब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ सड़कों पर उतरे थे। 6 अक्टूबर को राहुल और प्रियंका ने 8 घंटे आकाशवाणी भवन में धरना दिया, फिर पुलिस ने हिरासत में लेकर उन्हें उठाया। 7 अक्टूबर राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने जनपथ पर लंच कर जंतर मंतर पर प्रदर्शन का प्लान बनाया। पुलिस ने रास्ते में बस रोकी तो राहुल और प्रियंका ने सड़क पर ही धरना दे दिया। पुलिस ने फिर राहुल और प्रियंका को हिरासत में लेकर धरने से उठाया। 8 अक्टूबर जब राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के सांसद ने पहले कनॉट प्लेस पर खाना खाया और फिर राजघाट पर गांधीगिरी दिखाई। कल के राजघाट वाले धरने में शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट का कोई भी नुमाइंदा नहीं था, लेकिन टीएमसी ममता गुट के सांसद राहुल के साथ मौजूद थे।
6: महात्मा गांधी हैज ऑलवेज स्पोकन अबाउट सत्याग्रह। सत्याग्रह टीचेस अस टू थिंग्स, दैट इफ यू हैव टू फॉलो दैट पाथ यू हैव टू शेड टू फियर्स इन लाइफ। वन इज द फियर ऑफ गोइंग टू प्रिजन, टू इज द फियर ऑफ डाइंग। सो इफ यू हैव टू टेक दैट पाथ ऑफ सत्याग्रह, एवरी पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट दिस टू फियर्स नीड्स टू बी शेड। BJP can only bully you by showing their might with regard to the agencies and all the institutions they have successfully homogenized.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: राम मंदिर को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच अखिलेश की एक तस्वीर अयोध्या से आई, जहां वो यूपी विधानसभा में एसपी की ओर से घोषित पहले उम्मीदवार पवन पांडे के घर पर आयोजित श्री मद्भागवत ज्ञान यज्ञ में शामिल होने पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी।
2: सुनने में आ रहा है उन्हें अयोध्या में कोई नया प्रत्याशी ही नहीं मिल पा रहा है, और जो बड़े बड़े दावे करते हैं और जो बड़े बड़े दावे करने वाले मुख्यमंत्री अगर इतना ही अस्वस्थ हैं तो खुद अयोध्या से चुनाव लड़ करके दिखाएं। और दूध का दूध पानी का पानी करने का झूठा वादा करने वाले का पानी जनता उतार देगी इस बार अयोध्या ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता धर्म धन चुराने वालों को बख्शेगी नहीं।
1: अखिलेश अयोध्या तो गए लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं गए, जिसे लेकर विरोधी उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं।
3: ना उनको राम प्यारे हैं ना कृष्ण प्यारे हैं। कहते तो हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन ना वो मथुरा जाते हैं दर्शन करने ना अयोध्या भगवान राम का दर्शन करने जाते हैं। इस नाते उनको डर है कि कहीं मुसलमान हमारा साथ छोड़ के चला न जाए।
1: अब समाजवादी पार्टी अखिलेश के रामलला में दर्शन ना करने की अपनी वजह बता रही है।
4: ये जग जाहिर है, सर्वविदित है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इटावा में बहुत भव्य मंदिर बनवा रहे, बहुत भव्य, और ये करीब करीब बनके तैयार है। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो माननीय अखिलेश जी सब परिवार प्रभु श्री राम के मंदिर आएंगे और दर्शन करेंगे।
1: अखिलेश 5 साल बाद अयोध्या के दौरे पर गए हैं। इससे पहले अखिलेश 2021 में अयोध्या गए थे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन किए थे और संतों का आशीर्वाद भी लिया था, लेकिन राम मंदिर का निर्माण शुरू होने और उसके उद्घाटन के बाद से ये अखिलेश का पहला अयोध्या दौरा था। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: दिल्ली में प्रदर्शन के लिए सीजेपी को नहीं मिली इजाजत। पुलिस ने कहा देरी से दी गई सूचना, सभी मेट्रो स्टेशंस को बंद करने का प्रस्ताव। तेजस, मगध, संपूर्ण क्रांति समेत नई दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें रद्द। इंडिया ब्लॉक के सांसदों को राष्ट्रपति ने दिया मिलने का वक्त, रात 8 बजे हो सकती है मुलाकात। पहले संसद के सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होंगे कांग्रेस के कई सहयोगी, इसके बाद बनेगी रणनीति। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और रेजी नगर उपचुनाव की काउंटिंग में बीजेपी आगे। असम की नागांव लोकसभा सीट बड़ी जीत की ओर बीजेपी, तमिलनाडु की दोनों सीट पर विजय की पार्टी को बढ़त। पंजाब के तरन तारण में सनसनीखेज वारदात, दिन दहाड़े सरपंच पर ताबड़तोड़ अटैक, बाइक सवारों ने गोलियों से भून डाला। 6 अक्टूबर को मर्डर का सीसीटीवी सामने आया। ओमानी को पायलट का अटैक झेलकर फ्लाई दुबई को क्रैश से बचाने वाले भारतीय पायलट कैप्टन मछार को सम्मानित करेगा इसराइल, मिलेगा प्रेसिडेंशियल अवार्ड फॉर सिविलियन हीरोइज्म। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल, आज तक में आपका स्वागत है। नॉनस्टॉप 100 से पहले इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर, उसी का रुख करते हैं। विपक्षी दलों के नेता रात 8 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकेंगे। राष्ट्रपति ने रात 8 बजे का वक्त उनको दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी ज्ञानेश कुमार के मुद्दे पर यह मुलाकात होनी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज का। अमित, क्या पता चल रहा है?
1: अंजलि, देखिए अभी अभी इंडिया गठबंधन के सूत्रों से मुझे बताया गया है कि 8 बजे का समय तय कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गठबंधन के डेलीगेशन को 8 बजे का समय, शाम के 8 बजे का समय अलॉट किया गया है, यानी कि 3 बजे जो विपक्षी दलों के तमाम सांसद, राज्यसभा लोकसभा के सांसद सेंट्रल हॉल में मिल रहे थे, अब हो सकता है कि वहां रिकैलिब्रेट करना पड़े। लेकिन यह स्पष्ट था कि विपक्षी दलों के सांसद, इंडिया गठबंधन के सांसद पार्लियामेंट से लेकर विजय चौक और राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च करने वाले थे, चाहे परमिशन मिले या ना मिले। लेकिन अब ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन एक तरह से आप कह सकते हैं उन लोगों को मिल गया है, अपॉइंटमेंट मिल गया है। ये कम्युनिकेशन राहुल गांधी के ऑफिस की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ऑफिस को किया गया था कि विपक्षी दल के सांसद एक डेलीगेशन मिलना चाहता है सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, जो उनके कंसर्न्स हैं उस बात को लेकर। और अब सूत्रों ने कंफर्म किया है कि 8 बजे शाम का समय अलॉट किया गया है राष्ट्रपति भवन द्वारा। तो यानी कि आज देर शाम हम देखेंगे कि कैसे विपक्षी दलों के तमाम सांसद एक तरह से मार्च करते हुए विजय चौक तक आएंगे, और विजय चौक से फिर जो निर्धारित डेलीगेशन होगा सेलेक्ट लीडर्स का, वो लोग राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ेंगे। क्या अब इस डेलीगेशन में ममता बनर्जी का नाम भी होगा? राहुल गांधी तो निश्चित रूप से उन नेताओं में शामिल रहेंगे जो मिलने के लिए जाएंगे द्रौपदी मुर्मू से, राष्ट्रपति से। लेकिन सवाल यह है कि कौन कौन और नेता होंगे? क्या जो फ्लोर लीडर्स हैं वो लोग होंगे, या जो बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन का, जैसा सूत्र इंडिकेट कर रहे हैं, चाहे वो सीपीएम के एमएलए भी हो?
0: जी अमित, शुक्रिया, इस पर हमारी नजर रहेगी। और अब इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, यूपी कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम योगी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
2: सुशासन, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के अनुकूल वातावरण उत्तर प्रदेश की पहचान बन करके आज उभरे हैं। कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नए आत्मविश्वास के साथ चतुर्मुखी प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद इस बात के लिए सदैव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आभारी रहेगी कि उन्होंने राज्य के विकास को निरंतर अपनी प्राथमिकताओं में रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच से आज उत्तर प्रदेश विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी का नया मॉडल बनकर उभरा है। प्रदेश में करीब 60,000 करोड़ रुपए की लागत से 2,483 किलोमीटर लंबे 42 राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ है। इसी दौरान दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण भी पूरा हुआ है। रेल, मेट्रो और रीजनल रैपिड ट्रांजिट में 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित देश की पहली उच्च गति वाली दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत ट्रेन RRTS का सफल संचालन शुरू हुआ है। इसके साथ ही लखनऊ कानपुर आगरा मेरठ गाजियाबाद तथा नोएडा ग्रेटर नोएडा में मेट्रो रेल नेटवर्क का अभूतपूर्व विस्तार भी हुआ है। नोएडा में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रदेश अब एयर कनेक्टिविटी की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से लॉजिस्टिक और आत्मनिर्भर भारत के प्रमुख केंद्र के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान स्थापित हुई है। दादरी में ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का प्रमुख जंक्शन स्थापित हुआ है, जिसका 1050 किलोमीटर से अधिक हिस्सा प्रदेश से गुजरता है। वाराणसी में राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 पर भारत का पहला मल्टी मॉडल इनलैंड पोर्ट टर्मिनल और 100 एकड़ में फैला देश का पहला फ्रेट विलेज विकसित हुआ है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल असेंबली यूनिट के साथ उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तथा 1000 एकड़ में विकसित हो रहा पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क औद्योगिक क्रांति को भी नेतृत्व दे रहा है। उत्तर प्रदेश सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र जमीनी धरातल पर पूरी प्रामाणिकता के साथ साकार किया है। प्रदेश के गरीब वंचित पिछड़ा युवा महिला किसान सहित सर्व समाज के उत्थान के लिए पवित्र और प्रेरणानुमुखी प्रयास सरकार के द्वारा किए गए हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं की आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी को बल मिला है। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा प्राप्त हुआ है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर EWS को 10% आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय भी इसी नेतृत्व द्वारा लिया गया है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण समाज के अंतिम पायदान पर खड़े वंचित शोषित और गरीब को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने के बहुआयामी कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री जी की गरीबी से मुक्त कर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की इस प्रतिबद्धता ने सर्वसमावेशी सर्वस्पर्शी विकास का एक नया मापदंड भी स्थापित किया है। कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी की सर्वांगीण सोच से आज देश के अन्नदाता को गरिमा व सुरक्षा प्राप्त हुई है। हमारे किसानों के कल्याण हेतु पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 3 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में अब तक 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधा हस्तांतरित हुई है। 86,00,000 किसानों की लघु और सीमांत किसानों की कर्ज माफी का कार्य यूपी के अंदर हुआ है। 5,50,00,000 किसान क्रेडिट कार्ड से 13,42,978 करोड़ रुपए का फसल ऋण वितरण हुआ है। 79,51,000 किसानों को फसल क्षतिपूर्ति का भुगतान तथा गन्ना किसानों को 3,30,000 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड भुगतान भी सुनिश्चित किया गया है। गरीब कल्याण की भावना और जन जन के जीवन को सुगम बनाने की प्रतिबद्धता ही आज उत्तर प्रदेश के बड़े बदलाव की मुख्य धुरी बनी है। जन कल्याणकारी योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन से 65,00,000 से अधिक गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास, 3,67,00,000 राशन कार्ड धारक परिवारों के लगभग 15 करोड़ नागरिकों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2,46,00,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल के कनेक्शन दिए गए हैं। जिससे प्रदेश के बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र में घर घर तक पेयजल की पहुंच संभव हुई है। व्यापक बैंकिंग और बैंक मित्र नेटवर्क के सहयोग से करोड़ों जनधन खाते खोलकर वित्तीय समावेशन से प्रदेश अग्रणी बना हुआ है। स्वस्थ उत्तर प्रदेश के संकल्प के साथ हर नागरिक को सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराना माननीय प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में 6,08,000 आयुष्मान कार्ड जारी कर 9,90,00,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षा कवच मिला है, जिसमें 1,09,52,000 गंभीर रोगियों को 18,798 करोड़ रुपए का मुफ्त इलाज भी प्रदान किया गया है। आरोग्य मेलों में 14,67,00,000 नागरिकों को उपचार हुआ है। गोरखपुर और रायबरेली में 2 एम्स भी संचालित हो चुके हैं। ईमानदार सुशासन और संवेदनशील प्रशासनिक सोच का ही परिणाम है क्या स्वस्थ यानी स्वच्छता, ईंधन और पर्यावरण संरक्षण प्रदेश के एक जन आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 3,37,00,000 से अधिक शौचालयों और 59,183 सामुदायिक शौचालयों का भी निर्माण किया गया है। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 1,86,00,000 मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए। साथ ही राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष होली व दीपावली पर मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। नमामि गंगे अभियान के माध्यम से गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए व्यापक स्तर पर भी कार्य हुआ है। श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन का प्रभाव आज काशी से लेकर गंगा तट के अनेक क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। महिलाओं के सम्मान, उनके स्वावलंबन से लेकर श्रम योगियों के कल्याण तक हर वर्ग का विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। महिला नेतृत्व वाले विकास के संकल्प के तहत लखपति दीदी योजना के माध्यम से 10,00,000 स्वयं सहायता समूह की 1,00,00,000 से अधिक महिलाओं को जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। श्रम योगियों के सम्मान हेतु पीएम स्वनिधि योजना से 15,00,000 से अधिक रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को वित्तीय सहायता तथा पीएम स्वामित्व योजना के तहत 91,000 से अधिक गांवों के 1,10,00,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को घरों में संपत्ति प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में स्थानीय हुनर, पारंपरिक शिल्प और स्वदेशी सामर्थ्य को भी एक नई पहचान मिली है। लोकल से ग्लोबल और एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से प्रदेश के हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति को काशी की गुलाब मीनाकारी, जापान के प्रधानमंत्री को निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी, फ्रांसीसी राष्ट्रपति को कन्नौज का इत्र तथा लखनऊ की जरी जरदोजी उपहार स्वरूप भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्य के हस्तशिल्पियों और सर्व साधकों का मान बढ़ाया है। कृषि क्षेत्र में राज्य खाद्यान्न, दुग्ध, गन्ना, आम, आंवला और मिलेट उत्पादन में देश में शीर्ष स्थान पर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में डबल इंजन सरकार के निरंतर प्रयासों से आज प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं को एक नया बल मिला है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 62,00,000 से अधिक युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट प्रदान कर उन्हें डिजिटल क्रांति से जोड़ा गया है। युवाओं को सरकारी नौकरियों में 9,50,000 से अधिक नौकरियां देने के साथ ही निजी क्षेत्र में 65,00,000 नियुक्तियों रोजगार मेलों, आईटीआई और कौशल विकास मिशन से 31,11,000 से अधिक युवाओं के प्रशिक्षण के माध्यम से पारदर्शी और व्यापक अवसर प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाया गया है। इसके साथ ही मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, काशी में आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के निर्माण से युवाओं, खेल प्रतिभाओं को भी आज एक नया मंच मिला है। आस्था, अध्यात्म और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी का योगदान सदियों तक अविस्मरणीय रहेगा। उनके प्रयासों से 500 वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा का सपना साकार हुआ। मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराना न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए गौरवान्वित करने वाला सुखद क्षण बना। श्री काशी विश्वनाथ धाम की भव्यता की परिकल्पना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसे महान सेवा साधक की दूरदर्शी सोच का ही प्रतिफल है। फलतः मंदिर परिसर का भूतपूर्व विस्तार हुआ और गंगा तट से सीधा दिव्य पथ निर्मित हुआ। 100 वर्ष पूर्व चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को विदेश से लाकर काशी विश्वनाथ मंदिर में पुनर्स्थापित किया गया। तब भगवान बुद्ध की पवित्र पिपरावा अवशेषों की 127 वर्षों बाद भारत वापसी संभव हो पाई। प्रयागराज महाकुंभ में रिकॉर्ड 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन हुआ, जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में स्थान मिला है। सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में संगीत हेतु वाराणसी, बौद्धी व्यंजनों हेतु लखनऊ को यूनेस्को गेस्ट्रोनॉमी शहर का दर्जा प्राप्त हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत काशी तमिल संगमम, भगवान बुद्ध की महाप्रनिर्वाण स्थली पर अभिधम्म दिवस, बौद्ध सर्किट का विकास, सीर गोवर्धन में संत गुरु रविदास जन्मस्थली विकास परियोजना, नया संग्रहालय व प्रतिमा अनावरण, गोरखपुर में चौरी चौरा शताब्दी समारोह तथा लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में राष्ट्र प्रेरणा स्थल की स्थापना ने उत्तर प्रदेश के गौरव को अभूतपूर्व विस्तार दिया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के महान सपूतों महामना पंडित मदन मोहन मालवीय तथा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित कर राष्ट्र ने उनके योगदान को नमन किया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री जी की आभारी है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर की सौगात दी, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट एवं भविष्य में देश का सबसे बड़ा एविएशन हब बनने जा रहा है। अतः यह मंत्रिपरिषद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा जेवर रखने का प्रस्ताव भी पास करती है। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व, प्रेरणादायी मार्गदर्शन और राज्य के प्रति अटूट व निरंतर समर्पण हेतु मुक्त कंठ से अभिनंदन व्यक्त करती है। मंत्रिपरिषद विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने के लिए पूर्ण निष्ठा, ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य करने का अपना दृढ़ संकल्प दोहराती है। अंत में एक बार पुनः मंत्रिपरिषद मुक्त कंठ से अपने सुशील नेतृत्व का अभिनंदन करती है।
0: फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: यार लोन भूल गया मैरी।
3: इट्स
2: जस्ट अ गुड बैंक ना।
4: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
2: स्मॉल फाइनेंस बैंक
4: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन,
5: होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन कार लोन, टू व्हीलर लोन।
6: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
7: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
8: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो ठुमका लगाने पर।
9: मेरे पास एक आइडिया है।
8: क्या?
9: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
10: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
11: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
12: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
10: कौन सी बनानी है?
13: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
14: ये है एक लेगेसी।
15: यू नो डिजाइन्स कितने हैं? लाख से भी ज्यादा डोज
16: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
17: एक परिवार अटूट भरोसा।
18: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
19: सोच बदलो और बैंक भी।
20: सर कैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
21: कैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
22: गड़बड़ है।
23: आहा, कैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गैसोफा, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
24: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
25: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।

0: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
0: अब मैं चैन की नींद सो पाता हूँ कपीवा डायबिटीज जूस।
2: जेके मैक्स वाइप इजी, दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: क्या कहती है आपकी राशि? कैसा बीतेगा आपका दिन? किस दिन क्या करें क्या ना करें? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके दिन को बनाएगा बेहतर? देखिए राशि चक्र सिर्फ एस्ट्रो तक पर।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बाल सर एक बार दो तीन थमका लगाने बस।
5: मेरे पास एक आइडिया है।
4: क्या?
5: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
6: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
7: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
8: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
6: कौन सी बनानी है?

0: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं चैन की नींद सो पाता हूँ कपीवा डायबिटीज जूस।
2: जेके मैक्स वाइप इजी, दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
4: जद प्यार से पिलावे मेरे यार, पीनी पड़े
5: फ्लाइट में कम से कम सफर करें मेरे हिसाब से भाई। ट्रैवल एजेंट कोई गांजा फूंक के चला रहा है, कोई चाकू लेके घुस रहा है, क्या हो रहा है ये?
6: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं।
5: तुम्हारा
6: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं।
7: यार काट देना ये।
8: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

कल दिल्ली में प्रदर्शन के लिए सीजेपी को नहीं मिली इजाजत। पुलिस ने कहा देरी से की दी गई सूचना। सभी मेट्रो स्टेशंस को बंद करने का प्रस्ताव। तेजस, मगध, संपूर्ण क्रांति समेत नई दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें रद्द। इंडिया ब्लॉक के सांसदों को राष्ट्रपति ने दिया मिलने का वक्त। रात 8 बजे हो सकती है मुलाकात। पहले संसद के सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होंगे कांग्रेस के कई सहयोगी। इसके बाद बनेगी रणनीति। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और रेजी नगर उपचुनाव की काउंटिंग में बीजेपी आ गए। असम के नागांव लोकसभा सीट में बड़ी जीत की ओर बीजेपी। तमिलनाडु की दोनों सीट पर विजय की पार्टी को बढ़त। अब नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल हवाई अड्डा होगा नोएडा का जेवर एयरपोर्ट का नाम। यूपी कैबिनेट के फैसले पर मुहर। पंजाब के तरन तारण में सनसनीखेज वारदात। दिन दहाड़े सरपंच पर ताबड़तोड़ अटैक। बाइक सवारों ने गोलियों से भून डाला। 6 अक्टूबर को मर्डर का सीसीटीवी सामने आया।

0: आज तक के इस बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त आ रही बड़ी खबर का रुख करते हैं। गौतम बुद्ध नगर के जेवर एयरपोर्ट का नाम अब नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। आज इस फैसले पर योगी कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। कुछ ही देर पहले योगी आदित्यनाथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हाल ही में खुला है, उसका नाम अब नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट होगा। प्रधानमंत्री के नाम पर इसे रखा गया है। योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि ये प्रधानमंत्री की ही सोच और विजन के बाद किया जा रहा है।
1: उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद प्रधानमंत्री जी की आभारी है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर की सौगात दी, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट एवं भविष्य में देश का सबसे बड़ा एविएशन हब बनने जा रहा है। अतः यह मंत्री परिषद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा जेवर रखने का प्रस्ताव भी पास करती है।
0: तो आपको बता दें कि जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसका हाल ही में संचालन शुरू हुआ था, जहां अब फ्लाइट्स भी लैंड करने लगी हैं, ऐसे में उसका नाम अब बदला जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी कैबिनेट की बैठक के बाद हुई। तो इस कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लिए गए, उनके बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जेवर एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट अब होगा। उनका कहना था कि ये प्रधानमंत्री मोदी की ही सोच और विजन का नतीजा है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। तो जेवर एयरपोर्ट, जिसका ऑपरेशन और संचालन हाल ही में शुरू हुआ था, जेवर एयरपोर्ट में कई शहरों के साथ दिल्ली, नोएडा, एनसीआर के इलाके को कनेक्ट करने वाली फ्लाइट्स शुरू हो चुकी हैं। और आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश, पुलिस पर प्रहार, अब तक 25 FIR।

0: दिल्ली में 8 दिनों का प्रदर्शन और इस प्रदर्शन को लेकर उठ रहे सवाल। चुनाव आयोग पर सियासी हल्ला बोल के दौरान कुछ मामलों को लेकर बात FIR तक पहुंच गई है। कहीं पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया है तो कहीं महिला पुलिस से धक्का मुक्की हुई है और पुलिस कहती है कि उसके साथ बदसलूकी की गई है। बीते 8 दिनों में दिल्ली टकराव का अखाड़ा बनी हुई है और तमाम मामलों को लेकर पुलिस ने अब कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 2 अक्टूबर से अब तक के प्रदर्शन में कुल 25 FIR पुलिस ने दर्ज की है। उधर जारी तनाव के बीच दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि CJP को 10 अक्टूबर वाले प्रदर्शन की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। तो आपको बता दें कि 10 अक्टूबर को CJP के प्रस्तावित प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस ने अहम बयान दिया है। ये कह दिया है कि प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। दिल्ली पुलिस की जॉइंट CP नूपुर प्रसाद ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि धारा 163 लागू है, लिहाजा उन्हें प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक 7 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास ने विरोध प्रदर्शन के लिए एप्लीकेशन दी थी। पुलिस की माने तो ऐसे प्रदर्शन के लिए वर्तमान दिशा निर्देश के अनुसार 10 दिन पहले अनुमति मांगनी पड़ती है। पुलिस ने यह भी कहा है कि अगर BNSS की धारा 163 का पालन नहीं किया गया तो कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
1: जॉइंट CP नूपुर प्रसाद जी हमारे साथ हैं। मैम, क्या परमिशन मांगी गई, कब मांगी गई?
2: 7 तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी ने एक परमिशन एप्लीकेशन दी थी, इंटीमेशन करके, जिसमें ये बताया गया कि वो CEC की अकाउंटेबिलिटी के रिगार्डिंग 10 तारीख को जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन जो इंटीमेशन की है उस पर गौर किया गया और ये पाया गया कि ये एप्लीकेशन इस्टेब्लिश्ड जो गाइडलाइन है उसके तहत हमारे पास नहीं आई है, बहुत ही कम समय में आई है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने उनका जो प्रीवियस कंडक्ट था, उन्होंने जो हमारी लॉफुल डायरेक्शंस को नहीं फॉलो किया या उनकी जो अंडरटेकिंग दी गई थी उनके द्वारा उसको भी नहीं कंप्लाई किया। और प्रेजेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और पब्लिक सेफ्टी के मद्देनज़र इस एप्लीकेशन जो थी उसको रिजेक्ट किया जाता है।
1: सर, कौन लोग आए, मैम कौन लोग मांगने आए थे और किस बिना पर? जैसे कि एक तो पिछला कंडक्ट और दूसरा देरी, यही दो वजह है
2: और प्रेजेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड पब्लिक सेफ्टी।
1: अगर लोग जुटते हैं तो क्या कार्रवाई हो?
2: 163 BNSS की धारा लागू है नई दिल्ली में, जिसके तहत किसी भी तरह के जमावड़े को नहीं परमिशन दी जा रही है।
1: और इसके अलावा अगर हम बात करें मैम कि CCTV क्या एक्स्ट्रा लगाए जा रहे हैं इलाकों में, क्या लोगों पे नजर रखी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे मेट्रो स्टेशन बनते, तो क्या अनुमान है ज्यादा लोग जुट सकते हैं?
2: लॉ एंड ऑर्डर की ब्रीफिंग आपको DCP नई दिल्ली कर देंगे।
0: तो दिल्ली से मध्य प्रदेश तक CJP कार्यकर्ताओं पर शिकंजा कसा हुआ है। एक तरफ प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली तो मध्य प्रदेश के इटारसी में ट्रेन से दिल्ली आ रहे CJP कार्यकर्ताओं को पुलिस ने उतार लिया और उन्हें डिटेन कर लिया। सभी CJP कार्यकर्ता 10 अक्टूबर को दिल्ली में जंतर मंतर में हो रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल होने के लिए आ रहे थे। पुलिस ने गोवा एक्सप्रेस के जनरल कोच से 15 कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती उतार लिया।
3: पंडित जी, ये एक एक एक एक के साथ एक एक रवाना करो। अरे
0: चुनाव आयोग में अंदरूनी कलह की खबरों के बीच जब विपक्ष ने इस मामले को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोला तो सियासी संग्राम तेज हो गया। उन्हीं विरोधों के बीच हुए हमलों में कई पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस ने अब 2 अक्टूबर से आज तक 25 FIR दर्ज कर जांच तेज कर दी है। दर्ज हुई अलग अलग FIR में कांग्रेस कार्यकर्ता और लेफ्ट विंग से जुड़े लोगों के नाम शामिल हैं।
4: लड़ाई SIR पर शुरू हुई, हल्ला बोल चुनाव आयोग के खिलाफ था, नाराजगी मुख्य चुनाव आयुक्त से था और अब तक प्रदर्शन का वो दौर नॉनस्टॉप जारी है। विपक्ष एकजुट होकर दिल्ली की सड़कों पर चुनाव आयोग को घेर रहा है, सरकार पर सवाल उठा रहा है, लेकिन अब सियासत का मुद्दा उस प्रदर्शन के बीच से आई कुछ तस्वीरें हैं। ऐसी तस्वीरें जिसे देखकर BJP विपक्ष पर हमलावर है, पूछ रही है कि आखिर ऐसा अराजक माहौल क्यों बनाया जा रहा है। विपक्ष के अक्टूबर आंदोलन से आई ये तस्वीरें पहले देखिए, जिसमें पुलिस वालों पर हमला किया जा रहा है, उनसे हाथापाई की जा रही है। दूसरी तस्वीर ये देखिए, कैसे कांस्टेबल पर हमला करके उसे जख्मी किया गया।
5: मर्दी को फाड़ दिया गया, पीछे से इस तरीके से खींचा गया, नाखून मारे गए। एक आदमी ने मेरे हाथ को काट लिया और मेरा मांस निकाल लिया। मुझे कहता रहा, भाई मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो तो प्रार्थना थी या भगवान का शुक्र था कि मेरे स्टाफ ने आके थोड़ी सी मदद करी और मेरे को उनसे बचा लिया, नहीं तो शायद मैं आज यहाँ बैठा नहीं होता। बस मेरी सेफ्टी नहीं, मेरे परिवार की सेफ्टी मुझे चाहिए कि मेरे परिवार को कुछ ना हो, क्योंकि ये लोग टारगेट करते हैं, ये लोग टारगेट करते हैं, ये लोग टारगेट करते हैं।
4: प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर भी पुलिस पर हमले के आरोप लगे हैं। ये 7 अक्टूबर की तस्वीर है। आयसा अध्यक्ष नेहा बोरा की भी एक तस्वीर वायरल है, जिसका हवाला देकर उन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने के कई मामलों में भी FIR के जरिए शिकंजा कसा है। दिल्ली में बीते दिनों हुए प्रदर्शन के दौरान की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं और विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है। ऐसे ही कई मामलों को लेकर पुलिस ने अब अपना एक्शन प्लान बनाया है। इस कड़ी में पुलिस की सख्ती बढ़ी है। दिल्ली पुलिस ने 2 अक्टूबर से अब तक 25 FIR दर्ज की है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने ये वीडियो भी जारी किया है। पुलिस के मुताबिक ये सभी वीडियो दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान की है, जिसमें प्रदर्शनकारियों के ऐसे बर्ताव के बाद भी पुलिस वाले अपनी ड्यूटी की दुहाई दे रहे हैं।
6: भी नोटिस किया है कि काफी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। फीमेल पुलिस पर्सनल के खिलाफ भी इनडिसेंट लैंग्वेज और एक्शन का यूज हो रहा है। ये पुलिस को इंस्टिगेट करने के लिए, उनकी इमेज टार्निश करने के लिए किया जा रहा है, पर दिल्ली पुलिस फिर भी प्रोफेशनली लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए अपनी ड्यूटी निभा रही है ग्राउंड पे, और हम लोग प्रोफेशनली सिटीजन की सेफ्टी के लिए आगे भी काम करते रहे।
4: ऐसे तमाम मामलों को लेकर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। आपको बताते हैं कि आखिर वो FIR किन किन मामलों से जुड़ी है। एक FIR है आकाशवाणी केंद्र में प्रदर्शन को लेकर राहुल प्रियंका समेत अन्य कार्यकर्ताओं पर। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अंकित पर हमला मामले में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ है। तीसरा मामला 7 अक्टूबर को 2 पुलिस वालों पर हमला से जुड़ा है। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने और हमले के आरोप में FIR दर्ज की है। इसके साथ धारा 163 के उल्लंघन के आरोप में भी FIR दर्ज हुई है। ऐसे अलग अलग मामलों में अब तक दिल्ली पुलिस की फाइल में 25 FIR दर्ज हो चुकी है। दिल्ली पुलिस कह रही है कि जानबूझकर महिला कांस्टेबल को टारगेट किया जा रहा है।
7: विमेन पुलिस ऑफिसर्स को, कांस्टेबल्स को एंड ऑफिसर्स को जो ब्लू कैप और ब्लू लेनियार्ड पहनते हैं, इनको डेलिब्रेटली टारगेट किया जा रहा है। इनके खिलाफ डेफेमेशन की चीजें चलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे, विच इज वेरी क्लियरली सीन इन द वीडियोज। हाउएवर दिल्ली पुलिस इज अ वेरी प्रोफेशनल फोर्स एंड वी आर, हमारा मोराल बहुत आए, हम बहुत ही मोटिवेटेड हैं, एंड जिस प्रकार से पास्ट में हम सोसाइटी को सर्व करते हुए आए हैं, इस सिचुएशन से भी हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से डील करेंगे और फ्यूचर में सोसाइटी को सर्व करते रहेंगे।
4: पुलिस को आशंका है कि युवाओं को उकसाया जा रहा है, उन्हें हमले के लिए भड़काया जा रहा है।
7: देखिए, ये तो क्लियरली देखा जा रहा है कि किसी प्रकार का रॉन्गफुल इन्फ्लुएंस है जो ये यंग जनरेशन को एक गलत दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस वर्दी पहनी हुई पुलिस को जो लॉफुल ड्यूटी कर रही है, यदि आप अब्यूज करें, आप उनके ऊपर हाथ उठाएं, उनको मारने की कोशिश करें, बाइट करने की, स्क्रैच करने की कोशिश करें, ये सोसाइटी के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है।
4: विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन में पुलिस वालों से मारपीट के आरोपों को लेकर सवाल उठे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भी दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
0: तो दिल्ली पुलिस जो है वो ये दावा कर रही है कि पुलिस वालों पर कई अलग अलग लोकेशंस पर प्रदर्शनकारियों ने हमले कर दिए। हमलों में कई पुलिस वाले जख्मी भी हुए हैं, उनका दावा है। वो अपनी आबीती बता रहे हैं और अपने जख्मों के निशान दिखा रहे हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल भी सवाल उठा रहे हैं कि विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बदसलूकी का क्या, खासकर 7 अक्टूबर को प्रियंका गांधी से धक्का मुक्की के आरोपों को लेकर कांग्रेस गुस्से में है।

0: प्रदर्शन कर रहे थे, एसआईआर और ज्ञानेश कुमार को लेकर सवाल उठा रहे थे। उन्हीं प्रदर्शन के बीच से एक तस्वीर ये भी आई, कुछ प्रदर्शनकारी हेड कांस्टेबल भूपेंद्र और कांस्टेबल देवेंद्र को घेर कर मारपीट करते दिखे। आरोप है कि इन दोनों पर हमला करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता थे। देखिए कैसे इस वीडियो में एक प्रदर्शनकारी दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल को लात मारता हुआ देखा जा सकता है। आज तक से बातचीत में दोनों पुलिसकर्मियों ने बताया कि उन्हें प्रदर्शन कर रहे लोग जानबूझकर टारगेट कर रहे थे।
1: आप भी गिरे हुए थे? गिरे हुए थे देखा?
2: हम जहाँ जाकर खड़े होते हैं ना, हम लोगों को डिटेन कर रहे थे तो पीछे से एक लड़का, एक आदमी आया था जो व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी, वो सर पे व्हाइट रंग का व्हाइट मतलब कपड़ा बांधा हुआ था। उसने ऐसे कंधे से हमें पीछे खींचा तो गिरा दिया तुम दोनों को। फिर उन्होंने पड़े हुए लात मारी, फिर सर को लात मारी है, फिर वो बीट में अंदर किसी ने वहाँ पर प्रोटेस्ट करे तो उन्होंने अंदर भगा दिया उसको बीट से।
1: जो ड्यूटी आप कर रहे हैं प्रोटेस्ट के दौरान, किस तरह की दिक्कतें आ रही है, क्या सबके साथ मारपीट?
3: सबके साथ तो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जैसे कि कोई पर्सनली खुंदस निकाल रहे हैं हमारे साथ में और जबरदस्ती टारगेट करके नखून मार दे रहे हैं या लेडीजों को दांतों से काट दे रहे हैं या जबरदस्ती हमारे को इस तरीके से हिट करके हमारी जैसे कि लाइन यार्ड पकड़ लेते हैं या हमारी कैप उतार के फेंक देते हैं। मतलब एक तरह से पर्सनल अटैक कर रहे हैं बिल्कुल हमारे ऊपर, जैसे कि हमारी कोई पर्सनल खुंदस हो उनसे।
0: हाल के प्रदर्शन के दौरान की एक और तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें नेहा बोरा नीतू नाम की एक महिला कांस्टेबल की वर्दी पकड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि नई दिल्ली इलाके में प्रोटेस्ट के दौरान ड्यूटी के लिए नीतू को तैनात किया गया था। आरोपों के मुताबिक तभी इस महिला कांस्टेबल पर हमला हुआ जिसमें उसे गंभीर चोट आई।
4: तो मैं ऊपर जाके उनको रोकने की जस्ट कोशिश कर रही थी, उन्होंने मेरा यहाँ से कंधा भी खींचा था, फिर मैंने जस्ट उनका कंधा हटाया तो वो मीडिया में गलत तरीके से पोस्ट करिया कि मतलब कुछ लोग गलत कमेंट भी कर रहे हैं। और उसके बाद वहाँ जो उनके साथ के लोग थे उन्होंने मेरा हाथ भी मोड़ा, पैर में चोट है, हाथ में चोट है और मेरी वर्दी भी फाड़ दी गई वहाँ पे। और फिर उसके बाद मैंने अपने आप को बचाते हुए वहाँ से बैरिकेड से नीचे कूद गई।
0: दिल्ली पुलिस कर्मियों पर हमले को लेकर उठे सवालों के बीच बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो जारी कर पार्टी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। बीजेपी का आरोप है कि राहुल ने महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी की है। हालांकि कांग्रेस की दलील है कि राहुल अपनी कार्यकर्ता को बचा रहे थे।
5: दूसरे एंगल से भी देखिए ना, नीचे एक महिला कार्यकर्ता के साथ किस तरह से बदसलूकी की जा रही है। अपने साथियों को बचाने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं।
0: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया। बीजेपी ने इस वीडियो को लेकर प्रियंका गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने महिला पुलिसकर्मी को कोहनी मारी। लेकिन सियासी वार पलटवार के बीच कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाए। 7 अक्टूबर को प्रदर्शन कर रही प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया था कि सांसदों पर हमला किया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।
6: This is how they treat members of parliament who are asking simply to meet the election commissioner. This is how they treat us. They are beating members of parliament. Their police members have scratched me all over. They have thrown us to the ground. And now we are not going to move from here. Let them call their forces back. I will not move from here.
0: कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी नेताओं के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा को धक्का मार गिराया।
7: वह मौजूद थे, प्रियंका गांधी जी के साथ क्या हुआ था वो बड़े गंभीर आरोप।
8: मैं बता रहा हूँ कि पुलिस लोगों ने, महिला पुलिस नहीं, पुलिस ने उनको धक्के मारे। एक मैं पहचान करता हूँ, कोई IPS ऑफिसर थे, नहीं IPS नहीं थे, लेकिन कंधे पे छेर लगा हुआ है, आई थिंक कोई SP कैटेगरी के। उसके बाद उन्होंने धक्के मारे मैडम को और उन्होंने धक्के मार के मैडम को गिराया।
0: 7 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन को लेकर भी दिल्ली पुलिस ने 3 अलग अलग FIR दर्ज की है। जानकारी के मुताबिक उन FIR में आरोपियों के कॉलम खाली हैं, लेकिन उसकी डिटेल्स में राहुल और प्रियंका गांधी के नाम शामिल हैं। अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
9: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
13: सोच बदलो और बैंक भी।
14: आ गया सोमवार और आ गए चकमक चचा।

0: कचौड़ी दो समोसा चकमक तेरा क्या भरोसा।
1: चकमक चाचा से सीधे चकमक है।
0: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रही, बुझ रहा ना।
1: लेकिन भैया नारे अरे फालतू सब बेकार, एकदम बेकार। नारे होते थे हमारे टाइम।
0: अच्छा
1: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
0: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी, इन नेताओं की खत्म कहानी।
1: अरे जमीन के चकबंदी में, जमीन के चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में,
0: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा शर्म करो।
1: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
0: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा दे के जाएंगे।
1: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
0: अरे लाल फूल नीला फूल जंजी नन्हे ब्यूटीफुल।
1: अरे बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी।
0: चाय गरम दूध गरम चकमक चाचा भी शरम
1: है।
0: हाँ
1: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
0: अरे मेरे सिर में दर्द है जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
2: हम जैसे इधर आओ।
3: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
0: आई चाचा।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: त्योहारों की खुशियों के बीच आम आदमी की जेब पर महंगा झटका लगा है। इसकी वजह आरबीआई एमपीसी की तरफ से बढ़ाया गया रेपो रेट है, जिससे लोन की ईएमआई बढ़ने की आशंका है। आरबीआई ने करीब 3.5 साल बाद ब्याज दरें बढ़ाकर महंगाई के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। आरबीआई ने रेपो रेट को 5.25% से बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। इसके साथ ही पॉलिसी रुख को न्यूट्रल से बदलकर कैलिब्रेटेड टाइटनिंग कर दिया है, यानी जरूरत पड़ने पर आगे भी ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती हैं। दरअसल महंगाई दर लगातार आरबीआई की 4% के सुरक्षित लक्ष्य से ऊपर बनी हुई थी। यही वजह है कि सेंट्रल बैंक को रेट बढ़ाने का फैसला लेना पड़ा।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions, developments and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate under the LAF by 25 basis points to 5.5%. Consequently, the STF rate stands adjusted at 5.25% and the marginal SF and the marginal standing facility rate and the bank rate to 5.75%.
0: इस फैसले का सीधा असर आपकी हर महीने जाने वाली ईएमआई पर पड़ेगा। अगर बैंक भी इसी तरह ब्याज दर बढ़ाएंगे तो 50 लाख के 20 साल के होम लोन पर ब्याज दर 8.5% की जगह 9.25% हो सकती है। इससे ईएमआई करीब 800 रुपए बढ़कर 42,200 रुपए हो जाएगी। हालांकि बैंक एफडी पर भी आगे से ज्यादा ब्याज का फायदा मिलने की संभावना है। इसी के साथ आरबीआई ने महंगाई और ग्रोथ का अनुमान भी बढ़ा दिया है।
1: With headline CPI inflation expected to average almost 5.8% in the next three quarters, including this, and core inflation projected at 4.4% for this financial year. Real GDP growth for this year is projected at 7.1%, with Q2 at 7.2%, Q3 at 6.9%, and Q4 at 6.8%.
0: साफ है कि ब्याज दरों में ये बढ़ोतरी आगे भी जारी रह सकती है, जिससे कर्जदारों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। वहीं फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगाने वालों को बैंकों से ज्यादा रिटर्न का तोहफा मिल सकता है। आदित्य केराड़ा, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोको।

0: पेट्रोल और डीजल के दाम घटने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए फिलहाल अच्छी खबर नहीं है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल लगातार महंगा हो रहा है, जबकि देश में पेट्रोल और डीजल के दाम अब तक नहीं बढ़ाए गए हैं। ऐसे में सरकारी तेल कंपनियों पर दबाव तेजी से बढ़ रहा है। रेटिंग एजेंसी ICRA की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी तेल कंपनियां रोजाना सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान झेल रही हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि OMCs को पेट्रोल पर करीब 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर करीब 9 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है, जिससे तेल मार्केटिंग को रोजाना करीब 530 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आमतौर पर जब कच्चा तेल महंगा होता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी दबाव बढ़ता है, लेकिन इस बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी के बावजूद घरेलू दामों में बदलाव नहीं हुआ है और इसका पूरा बोझ सरकारी तेल कंपनियों पर पड़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक घरेलू LPG सिलेंडर पर करीब 300 रुपए की अंडर रिकवरी हो रही है और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से लागत बढ़ती जा रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और सप्लाई को लेकर बनी चिंताओं ने कच्चे तेल के बाजार को गर्म कर दिया है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है। ICRA के मुताबिक भारतीय क्रूड बास्केट पिछले साल के औसत से काफी ऊपर जा चुकी है और फिलहाल भारतीय क्रूड बास्केट $117 प्रति बैरल के पार जा चुकी है। इसकी वजह पश्चिम एशिया तनाव से बढ़ी कीमतें हैं। हालांकि घरेलू बाजार में अभी तक ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यही वजह है कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल सस्ता होने की उम्मीद कमजोर नजर आ रही है। तेल कंपनियां पहले से घाटा झेल रही हैं और अगर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रही तो उन पर दबाव और बढ़ सकता है। डेटा के मुताबिक $105 प्रति बैरल से ऊपर कीमतें बनी रहने पर OMCs का घाटा बढ़ सकता है, जिससे पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव बरकरार रहने की आशंका बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा होता कच्चा तेल और सरकारी तेल कंपनियों पर बढ़ते घाटे का संकेत दे रहा है कि फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम घटने की संभावना कम दिख रही है। ऐसे में आम आदमी की नज़र अब इस बात पर रहेगी कि आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतें किस दिशा में जाती हैं। आज तक ब्यूरो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: दिल्ली में प्रदर्शन की परमिशन न मिलने पर बोले सीजेपी के अभिजीत दीप के, चाहे जितने बैरिकेडिंग लगा ले मैं अरेस्ट होने जा रहा हूं। पुलिस ने कहा देरी से मांगी गई अनुमति इसलिए प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं। आज रात से ही बंद हो सकते हैं दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशन। नई दिल्ली और निजामुद्दीन तक आने वाली कई ट्रेनें रद्द। किलेबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। राजधानी को जोड़ने वाले हर रास्ते पर नाकेबंदी। इंडिया ब्लॉक के सांसदों को राष्ट्रपति ने दिया मिलने का वक्त। रात 8 बजे हो सकती है मुलाकात। पहले संसद के सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होंगे कांग्रेस के कई सहयोगी। इसके बाद बनेगी रणनीति। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और रेजी नगर उपचुनाव की बीजेपी काफी आगे। असम की नगांव लोकसभा सीट बड़ी जीत की ओर बीजेपी। तमिलनाडु की दोनों सीटों पर टीवीके को बढ़त। पुडुचेरी में एनडीए की जीत। अब नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल हवाई अड्डा होगा नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का नाम। यूपी कैबिनेट में फैसले पर मोहर। दिवाली से पहले पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद भारत।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ मानशु दीक्षित। 2 बज चुके हैं और न्यूज रूम लाइव में एक बार फिर हम आप सभी के सामने हाजिर हैं। तो जैसे होता है वैसे बता देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं न्यूज रूम लाइव में कौन सी खबरें आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले जिस खबर के बारे में बात होगी, जंतर मंतर 2। अब सीजेपी को परमिशन नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है, क्या तैयारी दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है, डिटेल में हम आपको बताएंगे कि क्या होने वाला है कल। इसके साथ ही दूसरी बड़ी खबर की बात करेंगे और दूसरी जो बड़ी खबर होगी आज की वो होगी राष्ट्रपति का बुलावा आया है। रात कितने बजे मुलाकात होगी विपक्षी सांसदों की, उससे पहले सेंट्रल हॉल में क्या होगा, सारे विपक्षी सांसद एकजुट होंगे, रणनीति बनाएंगे, इसके बारे में डिटेल में हम आपको बताएंगे। तीसरी जो बड़ी खबर होगी वो तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तोहफा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जेवर एयरपोर्ट का नाम अब नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने जा रहा है। ये तीसरी बड़ी खबर होगी। और जो चौथी बड़ी खबर है वो भी हम आपको बता दें। आगे हम आपको बताएंगे कि उपचुनाव में बीजेपी कैसे बल्ले बल्ले बीजेपी की हो रही है बहुत बड़ी जीत की ओर। बंगाल में तो आगे बढ़ी रही है, बाकी राज्यों का भी हाल हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जिस बड़ी खबर के बारे में बात कर रहे हैं वो बड़ी खबर आपको बता देता हूं। बड़ी खबर ये है कि सीजेपी को जो कह रहे हैं कि कल वो जंतर मंतर पर 2.2 प्रोटेस्ट करेंगे, परमिशन दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं दी गई। दिल्ली पुलिस ने कह दिया कि हम परमिशन नहीं दे सकते। उसकी दो बड़ी वजह बताई गई है। पहली वजह तो ये है कि बहुत लेट इन्फॉर्म किया गया है, 10 तारीख को इनको प्रदर्शन करना है, 7 तारीख को जानकारी दी गई। दूसरी बड़ी वजह यह है कि पहले के वक्त पर जो नियम कायदे कानून थे उनका पालन नहीं हुआ है, सबकी धज्जियां उड़ा दी गई थी। यह भी एक बहुत बड़ी वजह यहां बताई जा रही है। हालांकि अभी आपको यह बता दे कि कल प्रदर्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में कल प्रदर्शन की अनुमति दिल्ली पुलिस की तरफ से तो नहीं दी गई है, लेकिन अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वहीं दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल शराब की दुकानें भी दिल्ली में बंद रहेंगी। 57 मेट्रो स्टेशन बंद हो सकते हैं। यह अनुरोध जॉइंट कमिश्नर की तरफ से किया गया है डीएमआरसी को कि बंद रखें। इसके साथ ही दिल्ली और निजामुद्दीन को आने वाली कई ट्रेनों को रद्द यहां पर किया गया है। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंच चुका है, तो वो और बेहतर तरीके से बता सकते हैं इस मामले में क्या है। संजय, दिल्ली पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं दी गई है, दो वजह यहां पर बताई गई, उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंच गया, क्या जानकारी आपके पास?
2: पिटिशन को मेंशन किया है सुप्रीम कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो इस मामले में सुनवाई करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट 2 बजे इस मामले में सुनवाई करेगा। मामला ये रखा गया है जिसमें कहा गया है कि ट्रेनें बंद की जा रही हैं, मेट्रो स्टेशन बंद किए जा रहे हैं, लाखों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, लिहाजा इसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए।
0: ये पिटीशन यहां पर डाली गई है, लेकिन इस मामले में आपको क्या लगता है कि अगर सुनवाई होगी, क्योंकि कल तो प्रदर्शन है ही, तो इसमें क्या कुछ फौरी तौर पर राहत मिलने की उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कदम उठाया जा सकता है?
2: जी हाँ बिल्कुल, जब सुबह इस मामले को मेंशन किया गया तब तो कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट इस मामले में, हाईकोर्ट में ऑलरेडी पिटीशन डली हुई है तो हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा, लेकिन कोर्ट को यह बताया गया कि कल तो प्रदर्शन है, लिहाजा आपको इस मामले में दखल देना चाहिए और कोर्ट ने 2 बजे सुनवाई का समय तय किया है। तो बस अब यहां से आपसे बात करने के बाद, अपने दर्शकों से मुखातिब होने के बाद, मुझे सुप्रीम कोर्ट में अंदर ही जाना है और ये देखना है कि सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है।
0: शुक्रिया संजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2 बजे, देखिए 2 बजे सुनवाई शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट जाना क्यों पड़ा? क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से इजाजत यहां पर नहीं दी गई है। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से, जॉइंट कमिश्नर की तरफ से क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या बयान आया, वो सुनवाते हैं आपको।
3: दिनांक 7/10/2026 को श्री सौरभ दास, को कन्वीनर कांग्रेस जनता पार्टी का एक एप्लीकेशन न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में रिसीव हुआ, जिसके अनुसार ये इंटीमेशन दी गई कि 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट करेंगे रिगार्डिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और पाया गया कि उक्त सूचना अत्यंत ही अल्प समय में प्राप्त हुई है, जबकि वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार जंतर मंतर पर कार्यक्रम आयोजित करने हेतु आवेदन कार्यक्रम की निर्धारित तिथि से कम 10 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यह उल्लेख करना भी इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस जनता पार्टी के पूर्व आचरण के अनुसार एक अलग अवसर पर पूर्व में दिए गए उनके द्वारा अंडरटेकिंग्स तथा लॉफुल डायरेक्शंस को भी नहीं फॉलो किया गया था। निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किए जाने पर, पूर्व में दिए गए कानूनी दिशा निर्देशों को नहीं पालन करने तथा वर्तमान में पब्लिक सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर एवं ट्रैफिक रेगुलेशन की स्थिति को देखते हुए जंतर मंतर पर प्रस्तावित धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है।
0: नुपुर प्रसाद, जॉइंट सीपी दिल्ली, उनको आपने सुना, लेकिन आप यहां पर ऐसे समझिए कि उनकी तरफ से कहा गया पहले तो लेट इन्फॉर्मेशन दी गई और पहले दिशा निर्देशों का पालन नहीं हुआ। जो जुलाई में हुआ था हंगामा वो आपने देखा था, लेकिन अभिजीत दीप के सीजेपी की तरफ से क्या कह रहे हैं कि हम तो आके रहेंगे, उन्होंने क्या दिया है? दिल्ली पुलिस की मनाही के बाद भी दिल्ली आने का ऐलान किया है, हमारा आंदोलन होकर रहेगा, ये अभिजीत दीपके की तरफ से कहा गया है कि हमारा आंदोलन होगा। और ये एक वीडियो संदेश भी जगह जगह जारी किए गए हैं, उसमें सौरभ दास भी, आशुतोष रांका भी हैं, अभिजीत दीपके भी हैं, ये वीडियो जारी कर रहे हैं। अभिजीत दीपके को सुनिए।
4: नहीं, हमारा तो आंदोलन होकर रहेगा, क्योंकि जंतर मंतर इज अ डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट, आर्टिकल 90 हमें प्रोटेस्ट का पूरा फंडामेंटल राइट देता है, तो परमिशन की क्या जरूरत है? 13 करोड़ वोट डिलीट करने से पहले का इन्होंने परमिशन ली थी जनता की। कल मैं बेंगलुरु से आ रहा हूँ, जहाँ पर जिंदा लोगों को डेट डिक्लेयर कर दिया था, उनके वोट काटे गए थे, वो लोग जिंदा है। क्या उनसे पूछा था आपने वोट काटने से पहले? और आप चाहते हो कि जो लोग इलेक्शन रिग कर रहे हैं उनके खिलाफ आंदोलन ना करें हम? ऐसे तो नहीं चल सकता। देश के लोकतंत्र बचाने के लिए, देश का लोकतंत्र बचाने के लिए हम आगे।
0: तो अभिजीत दीपके को आपने सुना। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जरा बताइए क्या तैयारियां दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई हैं, क्योंकि अभिजीत दीपके ने कह दिया है कि हम तो आके रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंच चुका है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से तैयारियों को बताइए।
5: देखिए, दिल्ली पुलिस को भी इस बारे में पूरी इनपुट मिल रहे हैं कि परमिशन तो डिनाई की गई है, और शायद ये बात उनको परमिशन देते वक्त भी पता थी, क्योंकि पिछली बार भी जब परमिशन लिया था तो ये बात क्लियर थी कि 10 दिन पहले परमिशन मांगनी ये नियम है, ताकि इतना वक्त पुलिस के पास भी हो कि उस तरीके की तैयारियां की जा सके, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ बैठ कर बात की जा सके कि जो भीड़ आएगी वो किस तरफ से आएगी, कहाँ रुकेगी, कहाँ किस तरफ मूवमेंट करेगी, या फिर वो सिर्फ जंतर मंतर पे बैठेगी। तो ये बात तो काफी हद तक क्लियर थी, और 7 तारीख को जब सौरभ दास आए थे यहाँ पर देने, तो उन्होंने क्लियर कर दिया था कि 10 को प्रोटेस्ट होगा। तो पुलिस ये बात अच्छे से जानती है कि परमिशन डिनाई होने के बावजूद भी प्रोटेस्ट के लिए लोग आएंगे, और उसकी तैयारी हो रही है। आप देखिए, कम से कम जो जंतर मंतर का 8-10 किलोमीटर का पूरा रेडियस है, इस पूरे रेडियस में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स जगह जगह करने शुरू कर दिए हैं। इस पूरे इलाके में एक साथ मूवमेंट ना हो, एक साथ लोग कहीं जुटे नहीं, इसके लिए मेट्रो स्टेशन, 57 मेट्रो स्टेशन के एंट्री एग्जिट बंद हो, इसके लिए पुलिस ने डीएमआरसी को लेटर लिखा है, ताकि 57 मेट्रो स्टेशन, जो पूरा इलाका है आसपास, लोग एक साथ ना आ पाए। जब इतनी दूर से जब आप आएंगे तो आपको पहुंचने में लंबा दूरी एक तो तय करना पड़ेगा, और दूसरे पास पुलिस के पास वक्त होगा आपको वो ग्राउंड जीरो यानी जंतर मंतर या फिर पार्लियामेंट स्ट्रीट के आसपास ना पहुंचने दें। दूसरी चीज, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, वहां पर भी कुछ ट्रेनों को प्रभावित किया गया है, ताकि लोगों की भीड़ न जुटे। होटल्स हैं बहुत, जो जहां पर भी जमावड़ा हो सकता है, चाहे होटल हो, चाहे किसी का फ्लैट हो, उन सभी जगहों पर हिमांशु इश्यू, दिल्ली पुलिस की लगातार नजर है, दिल्ली पुलिस का इंटेलिजेंस विंग काम कर रहा है कि किस तरफ से लोग आएंगे, कैसे लोग जुट सकते हैं, क्योंकि पुलिस के पास कंटिन्यू इनपुट
0: आ रहा है। एक और जो बड़ी खबर आ रही है वो बड़ी खबर और आपको बता दे कि दिल्ली में सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर जितने भी बॉर्डर है, मतलब जो दिल्ली में एंट्री पॉइंट है, वहां पर सब जगह सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं। और ये क्यों हो रहा है? कल सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर हो रहा है। और अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो बड़ी खबर ये है कि चिल्ला बॉर्डर पर तो बीएसएफ की तैनाती कर दी गई है। जंतर मंतर से लेकर दिल्ली बॉर्डर तक कड़ी सुरक्षा। ये देखिए, ये चिल्ला बॉर्डर की तस्वीरें हैं, यहां पर बीएसएफ की तैनाती कर दी गई है। भारी डिप्लॉयमेंट यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, आरएएफ भी यहां पर मौजूद है। हिमांशु मिश्रा जुड़े हुए हमारे साथ। हिमांशु, मतलब जितने भी बॉर्डर हैं उन सभी बॉर्डर्स पर हम देख रहे हैं कि बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है और बीएसएफ की तैनाती कर दी गई है।
5: देखिए, ऐसे में जब दिल्ली पुलिस ने जो मेन कोर एरिया है वहां पर दिल्ली पुलिस की तैनाती है, लेकिन हमने कई बार देखा है कि जब बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट का वो होता है तो पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद लेती है ताकि खास तौर से जो चेक पॉइंट्स है वहां पर किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो। अब जो बॉर्डर का पूरा इलाका है वहां पर पुलिस ने बीएसएफ या फिर जो दूसरे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है उनकी तैनाती इसलिए कराई है कि लगातार नजर रखी जा सके कि बाहर से जो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स हैं वो एक साथ मोबिलाइज ना हो, वो एक साथ न और लीग में पहुंचकर वो एक मावड़ा ना करे, अगर कहीं से वो एंट्री कर,
0: मतलब सारे इंतजाम यहां पर किए गए हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बॉर्डर को ब्लॉक किया गया है, बीएसएफ वहां पर तैनात की गई है। 57 मेट्रो स्टेशन को बंद करने की यहां पर तैयारी है। ज्वाइंट कमिश्नर की तरफ से यानी दिल्ली पुलिस की तरफ से डीएमआरसी को अनुरोध किया गया है कि 57 मेट्रो स्टेशन को बंद किया जाए, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा था जुलाई में सीजेपी का प्रदर्शन हुआ था तो मेट्रो स्टेशन का सहारा लेते हुए कई जगह गए थे, हालांकि जंतर मंतर आसपास के मेट्रो स्टेशन तब भी बंद थे। अब देखिए कौन कौन से, दिल्ली गेट, खान मार्केट, आरके आश्रम मार्ग, झंडेवाला, सुप्रीम कोर्ट, इंद्रप्रस्थ, लाजपत नगर, सराय कालेखा, जंगपुरा, जामा मस्जिद, करोल बाग, राजेंद्र प्लेस, विश्वविद्यालय, विधानसभा, चावड़ी बाजार, ओखला, कश्मीरी गेट, जीट, बहुत सारे। अब आप खुद सोचिए कि 57 मेट्रो स्टेशन अगर बंद है, एंट्री और एग्जिट गेट बंद करने का, तो आप समझिए कि कितनी परेशानी हो सकती है। हालांकि कल सेकेंड सैटरडे है तो सेकेंड सैटरडे में कई जगह पर ऑफ भी होता है, कई जगह नहीं होता है, कई लोग वर्किंग होते हैं, कई लोग दफ्तर जाते हैं, तो लोगों के लिए परेशानी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो इसीलिए ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो छुट्टी ले लीजिए और घर पर रहिए, क्योंकि मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। एक तो इतना हैवी डिप्लॉयमेंट, इतनी पुलिस व्यवस्था, उसके ऊपर से जगह जगह जाम की दिक्कत, उसके बाद रूट डायवर्शन और दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद, तो ऐसे में परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। तो एक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के नागरिकों से पुलिस की अपील है, जैसे हमने आपसे अभी अपील की कि सावधानी रखिए, ध्यान रखिए, तो दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि आपकी सुरक्षा हमारा फर्ज है। ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। वर्दी के पीछे एक इंसान है जिसका परिवार है, क्योंकि ये कई तस्वीरें देखी हमने, कई तस्वीरें, कई वीडियो हमने ऐसे देखे हैं जिसमें जो प्रदर्शनकारी आते हैं वो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को लात भी मारते हैं, मारपीट उनके साथ में कर रहे हैं, उनकी वर्दी फाड़ी जा रही है, उनको नोचा जा रहा है, इस तरह के कई वीडियो सामने आए हैं, वायरल हुए हैं। तो एक ओपन लेटर, एक खुली चिट्ठी, खुला खत लिखा है दिल्ली पुलिस ने, और ये दिल्ली के नागरिकों से पुलिस ने अपील की है और ये बात कही है कि हम लोग आपकी सुरक्षा के लिए हैं, और जो वर्दी पहनते हैं वो भी इंसान होते हैं, उनका भी परिवार होता है, जिनको प्रदर्शनकारी कुछ नहीं समझते हैं, जिनके साथ मारपीट की जाती है, बर्बरता की जाती है, जिनके नोचा जाता है, जिनको कोहनी मारी जाती है, इस तरह की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, वीडियो सामने आई हैं। लेकिन आप समझिए, दिल्ली की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से ये चिट्ठी जारी की गई है, खुला खत है आम लोगों के लिए कि आपकी आवाज, आपका हक है, आपकी सुरक्षा हमारा फर्ज है, और जो वर्दी पहने हुए हैं, जो आपकी सुरक्षा के लिए वहां पर, जो व्यवस्था के लिए वहां पर, क्योंकि भीड़ अगर अराजक हो, भीड़ अगर बढ़ जाती है तो दिक्कत और हो सकती है, तो ऐसे में जो आपकी सुरक्षा के लिए हैं उनका भी परिवार है, वो भी इंसान। अब ये देखिए, डियर सिटीजन, आपकी आवाज आपका हक है और आपकी सुरक्षा हमारा फर्ज है। यूनिफॉर्म के पीछे भी एक इंसान है, और उस इंसान जिसका अपना परिवार है, अपने लोग हैं, फर्क सिर्फ यूनिफॉर्म का है, इंसानियत का नहीं। विद केयर दिल्ली पुलिस, और एक हार्ट बनाया हुआ है। ये दिल्ली पुलिस की तरफ से एक खुला खत जारी किया गया है सोशल मीडिया के जरिए। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो दिल्ली पुलिस भी इसी तरह से एक खत जारी किया गया। और देखिए, ये बताने का उद्देश्य उनका यही है कि वर्दी जो पहने हुए वो इंसान है और उसका भी परिवार है। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जैसा बताया गया था बहुत सी ट्रेनों को रोका गया है। अब इटारसी से ट्रेन आ रही थी, उसमें सीजेपी के कार्यकर्ता थे और जनरल डब्बे में थे, अब उनको उतार दिया गया है। अब ये अलग अलग जगह से कुछ इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है। अब ये भी आपको बता दें, ये बिहार यूपीएम जयपुर में दिल्ली आने वाली ट्रेनें खैर वो कैंसिल हुई हैं, लेकिन अभी ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये इटारसी वाली देख रहे हैं। रवीश पाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवीश, इटारसी में ट्रेन से सीजेपी कार्यकर्ता उतारे गए, जनरल डब्बे में एक साथ आ रहे थे, क्या खबर है?
6: देखिए, ये कल शाम का मामला है। बताया जा रहा है कि बेंगलोर से रवाना हो करके सीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं ये दिल्ली जा रहे थे। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, रेलवे जो स्टाफ है उन्हें जैसे ही सूचना मिलती है, तो फिर इटारसी में ट्रेन को रोका जाता है। वहां पे काफी देर तक विवाद होता है यात्रियों के बीच और जो जीआरपी है आरपीएफ है उनके बीच में, लेकिन अंततः बलपूर्वक इन सभी यात्रियों को, जो कि एक झुंड में थे और सभी बेंगलोर से दिल्ली की ओर यात्रा कर रहे थे और सीजेपी के कार्यकर्ता खुद को बता रहे थे, इन्हें कल इटारसी रेलवे स्टेशन पर उतार लिया गया है। और सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि तीन जो प्रमुख मंडल आते हैं मध्य प्रदेश में, डीआरएम रतलाम हो, भोपाल मंडल हो या जबलपुर मंडल हो, तीनों ही मंडलों में इस वक्त सघन अभियान चल रहा है। ट्रेनों में बैठ करके अगर कोई दक्षिण भारत
0: लोगों के मन में एक सवाल है, आम लोगों के मन में एक सवाल है, क्योंकि हमने देखा इस देश में जो ट्रेनें होती हैं उनके जनरल बोगियों में बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है, कैसे पहचान कर पा रहे हैं कि ये सीजेपी कार्यकर्ता हैं, ये प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं दिल्ली?
6: देखिए, इनकी पहचान कल जब हुई है इटारसी में, इनसे पूछा गया था, उन्होंने खुद को अपने आप को सीजेपी कार्यकर्ता बताया, उन्होंने अपनी पहचान छुपाई नहीं थी, वो बता रहे थे कि वो प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली जा रहे हैं और वहां पे काफी देर तक इसको लेकर के विवाद हुआ, जिसके बाद फिलहाल कार्यकर्ताओं को वहां से इटारसी स्टेशन पे उतार लिया गया। अब उन्हें दूसरी ट्रेन से वापस रवाना करने की तैयारी है। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये जो जंक्शन पड़ता है मध्य प्रदेश, यहां से भारत के दक्षिण राज्यों से जाने वाली हर ट्रेन गुजरती है। तीन प्रमुख रास्ते हैं, भोपाल से होकर गुजरती है, रतलाम से होकर गुजरती है और जबलपुर से होकर गुजरती है। तो तीनों स्टेशनों से चलने वाली या गुजरने वाली जो आज ट्रेनें हैं, जो राजधानी की तरफ जा रही है, भले ही वो नई दिल्ली जा रही हो, निजामुद्दीन स्टेशन।
0: अच्छा, रमेश, इस दौरान एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर भी बता दो। बड़ी खबर ये है कि अब एक आंकड़ा सामने आया, वो आंकड़ा है कि 38 ट्रेनें, 38 ये रद्द की गई हैं कल के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर कल प्रदर्शन को लेकर 38 ट्रेनों को रद्द किया गया। अब ये वो ट्रेन है जो दिल्ली निजामुद्दीन आने वाली थी, अब इनको रद्द किया गया है। ये देखिए, कई ट्रेनें हो सकती हैं इसमें, अब वो और डिटेल में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी ट्रेनें जिनको रद्द किया गया है। बहुत से यात्रियों को, मुसाफिरों को परेशानी होगी, परेशानी पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही है। कई लोगों की ट्रेन तो छूट चुकी है क्योंकि जाम बहुत ज्यादा था, इस वजह से बहुत कड़ी व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन कल भी परेशानी हो सकती है। 57 मेट्रो स्टेशन बंद और 38 ट्रेनें रद्द जो दिल्ली निजामुद्दीन आने वाली थी। तो वहीं आपको यह भी बता दें, विपक्ष तो अपनी पूरी तैयारी में है और सीईसी का लगातार घिराव कर रहा है, सरकार का घिराव कर रहा है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक के जो सांसद हैं वो आज रात 8 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे। वक्त मांगा था, वक्त दिया गया है राष्ट्रपति की तरफ से और रात 8 बजे मुलाकात होगी राष्ट्रपति भवन में। उससे पहले जो कार्यक्रम 3 बजे होना था सेंट्रल हॉल में, वो हो रहा है 5 बजे। वो अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमित, बताइए क्या जानकारी है, पहले ये 3 तारीख को 3 बजे सेंट्रल हॉल में मुलाकात होनी थी सबकी, लेकिन फिर ये 5 बजे कर दिया गया और रात 8 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात। अमित, आपका माइक ऑन कीजिए प्लीज।
7: जो हम आप सुबह से हम ये बात बोली, रहे बोली, हाँ। जो टाइम फिक्स किया गया था 3 बजे का, वो फ्लूड है इस वजह से, क्योंकि राष्ट्रपति भवन से अभी तक मैसेज मिला नहीं है इंडिया गठबंधन को कि क्या टाइम होगा जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन विपक्षी सांसदों से मिलने का समय देंगी। तो जैसे ही समय आया कि रात 8 बजे का समय दे दिया गया है राष्ट्रपति द्वारा इस डेलीगेशन से मिलने का, तो वैसे ही 3 बजे का की जो मीटिंग थी उसको रिकैलिब्रेट करके 5 बजे का कर दिया गया। अब इसमें 2 अहम बातें, 6 नाम तो तय कर लिए गए, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बनर्जी और इसके साथ साथ तेजस्वी यादव, और साथ में सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी एम ए बेबी और राजीव राय समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करेंगे, वहां पर रिप्रेजेंटेशन करेंगे, माफ कीजिएगा, क्योंकि अखिलेश यादव दिल्ली में है नहीं, उनका निजी कारण है जिसकी वजह से वो यूपी में रुक रहे हैं, कल एक अहम कार्यक्रम है। तो ये 6 नाम लॉक कर लिए गए हैं, बाकी 6 से 7 नाम और तय किए जाने हैं। तो 5 बजे वाली बैठक में नाम तय करके राष्ट्रपति भवन को अपडेट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ सभी सांसदों को कहा गया है कि 5 बजे से लेकर 8 बजे तक आप वहीं बने रहेंगे, यानी कि रणनीति जो तय होगी वो सेंट्रल हॉल में तय होगी और इन सभी सांसदों की मौजूदगी 3 घंटे तक पार्लियामेंट के अंदर ही रखी जाएगी और फिर संभवतः 7:45 के आसपास हम वो तस्वीर देखना शुरू करेंगे जहां से मकर द्वार से मोबिलाइजेशन शुरू होगा, मार्च बाहर आएगा, विजय चौक तक ये तमाम सांसद मार्च करेंगे और जो तय डेलीगेशन है वो राष्ट्रपति भवन के लिए चला जाएगा।
0: सेंट्रल हॉल में बैठ के तय होगा कि कितने लोग मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर 5 से 8 बजे तक वहां सेंट्रल हॉल में उनकी मौजूदगी रहेगी पार्लियामेंट में और 8 बजे मुलाकात होगी। शुक्रिया फिलहाल अभी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखिए इस पर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, सिद्धार्थ यादव तो समाजवादी पार्टी के सांसद है राजीव राय, क्या कह रहे हैं सुनते हैं।
8: देश की जनता आज आपसे प्रश्न पूछ रही है, गरीब घर से आने वाले देश के पुलिसकर्मी, सामान्य परिवारों की हमारे माताएं बहनें बच्चियां जो पुलिस में सेवा कर रही हैं, उनके अधिकारों को भुला करके ऐसा कृत्य आप उन पर कैसे करने लगे? क्या यह है लोकतंत्र? संविधान की दुहाई देने वाले संवैधानिक मूल्यों को कब जाकर के पढ़ेंगे? आज देश की जनता यह बात पूछना चाहती है।
7: चौथा दिन क्या इंडिया गठबंधन का चौथा प्रदर्शन भी होने वाला है? इस सवाल का जवाब लेने के लिए हम राजीव राय जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उनके पास आए हैं। सर आप लोग 3 बजे इकट्ठा तो हो रहे हैं लेकिन क्या सरप्राइज एलिमेंट के साथ हैं या राष्ट्रपति भवन से कम्युनिकेशन हो गया है मिलने को लेकर?
9: अभी वो मेरे जानकारी में नहीं है, सुबह तक तो नहीं हुआ था, आया होगा तो गठबंधन के सेक्रेटरिएट में आया होगा, अभी हम लोग वहाँ इकट्ठा होंगे और जैसे मैंने पहले भी बोला था रणभूमि में जैसे स्थिति पैदा होती है उसे रणनीति तय होती है, तो उसमें जो रणनीति तय किया जाएगा उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे।
7: मुझे बताया जा रहा है कि अपॉइंटमेंट मिले ना मिले इंडिया गठबंधन के सांसद और बड़े नेता आज मार्च तो करने वाले हैं।
9: वो तो निकलेंगे, हम बैठ थोड़े जाएंगे, परमिशन तो कहीं नहीं दिया, कल देखा राजघाट पर पुलिस खड़ी थी और पूरी कोशिश थी कि हम लोग भीतर न जाएं, तो आगे तो बढ़ेंगे हम।
7: ममता बनर्जी भी होंगी
9: आज? हाँ, मेरी जानकारी में है।
7: सर आप लोग एक तरह से जिस तरह से एक रिले होता है, रिले रन होता है, वो खत्म कर रहे हैं, कल से सीजेपी का प्रोटेस्ट शुरू होने वाला है लेकिन उसके पहले दिल्ली में 57 मेट्रो स्टेशंस को बंद करने की गुजारिश दिल्ली पुलिस ने डीएमआरसी से की है।
9: मुझे लग रहा है कि इनको अपनी दुकान बंद करने के बारे में सोचना चाहिए, इनका पाप का घड़ा भर गया है, तानाशाही चरम सीमा पर पहुंच गए हैं, इनके कायरता के लोकतांत्रिक देश में, देश का सबसे बड़े लोक, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अगर ये प्रदर्शन विरोध का अगर इजाजत नहीं देते हैं तो कहां कहां रुकेंगे? पूरे देश में प्रदर्शन होगा तो झोला लेकर भागेंगे कहां? वो नहीं, कम से कम उतनी जगह तक छोड़ दे जहां झोला लेकर भाग पाए।
0: तो फिलहाल यहां रखेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर किधर
2: करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
6: मैडी, I need to open a savings account.
7: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
6: स्मॉल बैंक?
7: स्मॉल privilege savings account, garima savings account, maxima business edge current account, business maxima business privilege RDF, there's nothing small about them.
6: Okay.
7: Ujjivan, nothing small about us.
8: Sir, Gaso Fast ki growth to check kijiye. Gaso Fast 27%, Eno 9.2%.
9: Gadbad hai.
10: Aha, Gaso Fast wale jeere ka jadoo chala rahe. Isliye inke chahne wale दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसोफा, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
11: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार। सर एक बार दो तीन थमका लगाने बस।
12: मेरे पास एक आइडिया है।
11: क्या?
12: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
13: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
14: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
15: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
13: कौन सी बनानी है?
16: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
17: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन के गीत सुनो।
18: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है,
19: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
18: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायफ्री जूस।
20: जेके मैक्स वाइप इजी, दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सो

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
2: गड़बड़ है।
3: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbar Group.
5: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है,
6: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
5: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायफ्री जूस।
7: In association with
8: Signature Finest Cardamom Seeds, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: Canara Bank, together we can.
10: Anmol Biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
11: राज्यसभा और लोकसभा के 300 MPs पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। दो दिन से हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। पहले दिन हमें रोका, इलेक्शन कमीशन के सामने रोका, उसके बाद हमने कहा हम जंतर मंतर जाके करना चाहते हैं, और कल आपने देखा जंतर मंतर में हमें रोका, हमारे लोगों को मारा। रियलिटी ये है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी करके हिंदुस्तान को हाईजैक किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को नष्ट किया है, वोट चोरी की है, और हम ऑपोजिशन आपको कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। दिस इज आवर गारंटी, यू विल सी दैट दीज फोर पीपल आर ब्रॉट टू जस्टिस।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: दिल्ली में प्रदर्शन की परमिशन न मिलने पर बोले सीजेपी के अभिजीत दीपके, चाहे जितनी बैरिकेटिंग लगा ले मैं अरेस्ट होने जा रहा हूँ। पुलिस ने कहा देरी से मांगी गई अनुमति, इसलिए प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं। आज रात से ही बंद हो सकते दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशन। नई दिल्ली और निजामुद्दीन तक आने वाली कई ट्रेनें रद्द, किलेबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। राजधानी को जोड़ने वाले हर रास्ते पर नाकेबंदी। इंडिया ब्लॉक के सांसदों को राष्ट्रपति ने दिया मिलने का वक्त, रात 8 बजे हो सकती है मुलाकात। पहले संसद के सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होंगे कांग्रेस के कई सहयोगी, इसके बाद बनेगी रणनीति। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और रेड्डीनगर उपचुनाव की बीजेपी काफी आगे इन सीटों पर। असम की नौगांव लोकसभा सीट बड़ी जीत की ओर बीजेपी। तमिलनाडु की दोनों सीटों पर टीवीके को बढ़त, पुडुचेरी में एनडीए को जीत। और अब नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल हवाई अड्डा होगा नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का नाम। यूपी कैबिनेट में फैसले पर मोहर, दिवाली से पहले पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर।

0: दिल्ली में कल क्या होगा, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा, लेकिन पुलिस ने पर्याप्त इंतजाम किए हुए हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। अब देखिए, चुनाव सुधारों को लेकर, रिफॉर्म्स को लेकर सीजेपी की तरफ से कह दिया गया है कि वो प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के लिए उन्होंने इजाजत मांगी। दिल्ली पुलिस ने कहा इजाजत हमें देर से मिली, इसलिए परमिशन आपको नहीं दे सकते हैं, और अगर कोई वहां पर आएगा तो वो खुद जिम्मेदार यहां होगा। सीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, अभिजीत दीपके की तरफ से, कि वो तो आके रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कह दिया है कि कोई परमिशन नहीं है। अब इस दौरान व्यवस्था क्या की गई है, जल्दी से आपको ये बता देते हैं। 57 मेट्रो स्टेशन बंद, 38 ट्रेनें जो दिल्ली और जाबुद्दीन को आने वाली थी कल वो रद्द कर दी गई हैं। अब दिल्ली पुलिस ने सीजेपी को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है, तो ऐसे में दिल्ली के जितने भी एंट्री पॉइंट हैं वहां पर भी हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है, और ये बताया गया है कि बीएसएफ को भी चिल्ला बॉर्डर पर डिप्लॉय किया गया है। भारी भीड़ देखी जा रही है।
1: No, I'm going to replace the Donald neck. Arrest us as well. Arrest every single citizen of this country.
2: दिल्ली में प्रदर्शन से पहले अभिजीत दीपके के ये तेवर साफ बता रहे हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी का इरादा आखिर क्या है। सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान सीजेपी ने क्या प्लान ऑफ एक्शन बना रखा है, शनिवार को जंतर मंतर पर सीजेपी बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। 1000 से ज्यादा लोगों के जुटान का अनुमान है। पुलिस से इजाजत अब तक नहीं मिली है, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी विरोध के अपने ऐलान पर अड़ी हुई है। पुलिस का एक्शन होने पर सीधे गिरफ्तार करने की चुनौती दे रही है।
1: If more than 1,000 people are being detained just for asking the resignation of the election commissioner who has rigged elections, there is a report out on it that he is not working according to the constitution, because even the Supreme Court has said they have not approved any modifications in Form 6. And if we are protesting against there, and the government's response is to detain more than 1,000 people, how are we democracy?
2: ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर पहले से ही दिल्ली में विपक्षी दलों की मोर्चाबंदी जारी है, हर रोज नई तनातनी, नई जंग दिख रही है, तो क्या ऐसे में सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर ये लड़ाई और ज्यादा तेज होगी? क्या फिर से दिल्ली की सड़कों पर नई तनातनी दिखेगी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जुलाई महीने में जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी ने मोर्चा संभाला था, उस दौरान 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान भारी हंगामा दिखा था। विरोध प्रदर्शन के बीच हिंसा और झड़प की तस्वीरें सामने आई थी। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था। जांच के दौरान ये भी बात सामने आई थी कि कई हिस्ट्री शीटर भी हंगामे के दौरान मौके पर मौजूद थे। यही वजह है कि पुलिस इस बार सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए काफी एहतियात बरत रही है।
3: कांग्रेस जनता पार्टी के पूर्व आचरण के अनुसार एक अलग अवसर पर पूर्व में दिए गए उनके द्वारा अंडरटेकिंग्स तथा लॉफुल डायरेक्शंस को भी नहीं फॉलो किया गया था। निर्धारित प्रक्रिया का पालन ना किए जाने पर, पूर्व में दिए गए कानूनी दिशा निर्देशों को नहीं पालन करने तथा वर्तमान में पब्लिक सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर एवं ट्रैफिक रेगुलेशन की स्थिति को देखते हुए जंतर मंतर पर प्रस्तावित धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है।
2: किसी भी सूरत में हालात बेकाबू ना हो, इसे लेकर पहले से तैयारियां की गई हैं। जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में काफी सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन सीजेपी के आक्रामक रुख को देखते हुए दिल्ली में तनाव की स्थिति बनी हुई है। सवाल उठ रहा है कि अगर सीजेपी के प्रदर्शन को रोका गया तो किस तरह का हंगामा होगा? क्या राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर उबाल, भारी बवाल दिखेगा? आज तक ब्यूरो,
0: देखिए तैयारियां तो बहुत सारी की हुई हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? जॉइंट कमिश्नर नुपुर प्रसाद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो सुनवा देते हैं आपको।
4: इस वक्त जॉइंट सीपी नुपुर प्रसाद जी हमारे साथ हैं। मैम, क्या परमिशन मांगी गई, कब मांगी गई?
5: सात तारीख को कांग्रेस जनता पार्टी ने एक परमिशन एप्लीकेशन दी थी इंटीमेशन करके, जिसमें यह बताया गया कि वो सीईसी की अकाउंटेबिलिटी के रिगार्डिंग 10 तारीख को जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन जो इंटीमेशन की है उस पर गौर किया गया और ये पाया गया कि ये एप्लीकेशन इस्टेब्लिश्ड जो गाइडलाइन है उसके तहत हमारे पास नहीं आई है, बहुत ही कम समय में आई है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने उनका जो प्रीवियस कंडक्ट था, उन्होंने जो हमारी लॉफुल डायरेक्शंस को नहीं फॉलो किया या उनकी जो अंडरटेकिंग दी गई थी उनके द्वारा उसको भी नहीं कंप्लाई किया, और प्रेजेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और पब्लिक सेफ्टी के मद्देनज़र इस एप्लीकेशन जो थी उसको रिजेक्ट किया जाता है।
6: सर कौन लोग आए, मैम कौन लोग मांगने आए थे और किस बिना पर, जैसे कि एक तो पिछला कंडक्ट और दूसरा देरी, यही दो वजह है
5: और प्रेजेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड पब्लिक सेफ्टी।
6: अगर लोग जुटते हैं तो क्या कार्रवाई हो?
5: 163 BNSS की धारा लागू है नई दिल्ली में, जिसके तहत किसी भी तरह के जमावड़े को नहीं परमिशन दी जा रही है।
6: और इसके अलावा अगर हम बात करें मैम कि CCTV क्या एक्स्ट्रा लगाए जा रहे हैं इलाकों में, क्या लोगों पे नजर रखी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे मेट्रो स्टेशन बने, तो क्या अनुमान है ज्यादा लोग जुट सकते हैं?
5: लॉ एंड ऑर्डर की ब्रीफिंग आपको DCP नई दिल्ली कर देंगे।
0: तो देखिए वहीं अभिजीत दीप के जो सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं लोगों को यहां पर आने के लिए कह रहे हैं, अभिजीत दीप के एक बार फिर कह रहे हैं कि हम तो वहां पर आ रहे हैं, गिरफ्तार अगर करना है तो गिरफ्तार कर लीजिएगा लेकिन हम आएंगे जरूर। दिल्ली में CJP के प्रदर्शन पर अभिजीत दीप के की तरफ से ये कहा गया है कि हम पहुंचने वाले हैं। और दिल्ली पुलिस अगर गिरफ्तारी करेगी तो कर सकती है। दिल्ली पुलिस की मनाही के बाद भी दिल्ली आने का ऐलान अभिजीत दीप की तरफ से किया गया है।
7: नहीं, हमारा तो आंदोलन होकर रहेगा क्योंकि जंतर मंतर इज अ डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट, आर्टिकल 90 हमें प्रोटेस्ट का पूरा फंडामेंटल राइट देता है, तो परमिशन की क्या जरूरत है? 13 करोड़ वोट डिलीट करने से पहले का इन्होंने परमिशन ली थी जनता की। कल मैं बेंगलुरु से आ रहा हूँ जहाँ पर जिंदा लोगों को डेट डिक्लेयर कर दिया था, उनके वोट काटे गए थे, वो लोग जिंदा है। क्या उनसे पूछा था आपने वोट काटने से पहले? और आप चाहते हो कि जो लोग इलेक्शन रिग कर रहे हैं उनके खिलाफ आंदोलन न करें हम? ऐसे तो नहीं सोचा। देश के
0: अब देखिए यहाँ पर बहुत स्पष्ट है कि परमिशन नहीं दी दिल्ली पुलिस ने, कह दिया कि हम परमिशन नहीं देंगे। और क्यों? क्योंकि पिछली बार लेट परमिशन एक तो लेट मांगी गई, 10 तारीख को प्रोटेस्ट, 7 तारीख को आपने परमिशन मांगी, तैयारियों के लिए वक्त लगता है। दूसरी बात यह कि जब पहले जुलाई में हुआ था तो दिशा निर्देशों का पालन नहीं हुआ था, कानूनों की धज्जियां उड़ गई थी, तो एक वजह वो भी है। अब प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली CJP की तरफ से, इतना जब कहा गया है तो आप क्या कैसे हो सकता है, उसके लिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
5: जंतर मंतर पर प्रस्तावित धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है।
2: तो अब जब साफ है कि CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ CJP के प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस की इजाजत नहीं है, कानून व्यवस्था का हवाला देकर पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है, तो ऐसे में सवाल है कि जब कांग्रेस जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन पर अड़ी हुई है तो क्या दिल्ली की सड़कों पर शनिवार को एक बार फिर संग्राम दिखेगा? क्या एक बार फिर CJP कार्यकर्ताओं और दिल्ली पुलिस के बीच टकराव दिखेगा?
8: परमिशन फिर से मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, परमिशन जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इस देश में जो ब्रिटिशर्स थे, जो गुलामी के टाइम पे हमारे अंदर एक दिमाग में डाल दिया कि जो जी हुजूर करके आप उन लोगों से परमिशन ले लीजिए, बताइए कितना एब्सर्ड और स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट है कि बार बार हम लोग को बोला जाता है कि सरकार के खिलाफ विरोध करना है तो सरकार से आप परमिशन ले लीजिए, सरकार जी साहेब 2 घंटे का परमिशन दीजिए हमें प्रोटेस्ट करना है, इस हिसाब से देश नहीं चल सकता। विरोध करना है तो पीसफुल तरीके से विरोध होगा, डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट अगर जंतर मंतर है तो वहां पे हम लोग जाएंगे, वो अधिकार है, संविधान हमें अधिकार देता है राइट टू प्रोटेस्ट का, संविधान हमें अधिकार देता है राइट टू पीसफुल असेंबली का, उसी को एसर्ट करने हम लोग आए हैं।
2: दरअसल दिल्ली पुलिस पहले ही साफ कर चुकी है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए कम से कम 10 दिन पहले अनुमति लेना अनिवार्य है, साथ

0: तरीके से विरोध होगा। डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट अगर जंतर मंतर है तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे, वो अधिकार है, संविधान हमें अधिकार देता है राइट टू प्रोटेस्ट का, संविधान हमें अधिकार देता है राइट टू पीसफुल असेंबली का, उसी को एसर्ट करने हम लोग आए हैं।
1: दरअसल दिल्ली पुलिस पहले ही साफ कर चुकी है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए कम से कम 10 दिन पहले अनुमति लेना अनिवार्य है। साथ ही यहां 1000 से ज्यादा लोगों के प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है।
2: दिनांक 7/10/2026 को श्री सौरभ दास को कन्वीनर कांग्रेस जनता पार्टी का एक
0: देता राइट टू प्रोटेस्ट का, संविधान हमें अधिकार देता है राइट टू पीसफुल असेंबली का, उसी को एसर्ट करने हम लोग आए हैं।
1: दरअसल दिल्ली पुलिस पहले ही साफ कर चुकी है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए कम से कम 10 दिन पहले अनुमति लेना अनिवार्य है। साथ ही यहां 1000 से ज्यादा लोगों के प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है।
2: दिनांक 7/10/2026 को श्री सौरभ दास को कन्वीनर कांग्रेस जनता पार्टी का एक 63 BNSS की धारा लागू है, जिसके तहत पब्लिक ऑर्डर और सेफ्टी मेंटेन करने के लिए रीजनेबल प्रिवेंटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। ये भी सूचित किया जाता है कि 163 BNSS के उल्लंघन करने या किसी तरह का वैंडलिज्म या पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन करने पर इस संबंध में माननीय न्यायालयों द्वारा पूर्व में जजमेंट्स के तत्वाधान में उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
1: दरअसल जुलाई महीने में हुए प्रदर्शन और बवाल से भी दिल्ली पुलिस ने सबक लिया है। पुलिस ने लोगों से

0: और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है। एहतियातन 10 अक्टूबर को दिल्ली में शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। ये तस्वीरें पुरानी दिल्ली की एक मस्जिद की हैं, जहां पुलिसकर्मी लोगों से अपील करता नजर आ रहा है कि किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन में शामिल ना हो।
1: किसी भी भड़काऊ संदेश या उकसावे में नहीं आए, जिम्मेदार नागरिक बने और कानून का पालन करें। अपने क्षेत्र की सुरक्षा में पुलिस और प्रशासन का साथ दें और अपने परिवार वाले और अपने बच्चों को इस बारे में समझाएं कि इस तरह की अननेसेसरी भीड़ में या ऐसे कोई प्रोटेस्ट में किसी में हिस्सा न लें।
2: इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी मस्जिद के बाहर है। अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो ये चांदनी चौक में स्थित शाही मस्जिद है, जिसके अंदर का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। यहीं पर दिल्ली पुलिस आई और यहां पर आकर के दिल्ली पुलिस ने अनाउंसमेंट की है और लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है उसके लिए परमिशन नहीं मिली है, और अपने बच्चों को भी वो समझाएं कि वो आगे जाकर के इस प्रोटेस्ट का हिस्सा ना बने, क्योंकि लीगल एक्शन हो सकता है। इसके अलावा ही ऐसी कई और जगह हैं जहां दिल्ली पुलिस पहुंची है और ऐसी कम्युनिटी अनाउंसमेंट्स कर रही है ताकि एक ये अवेयरनेस फैल सके कि किस तरीके से जो ये प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट की परमिशन अभी तक नहीं दी गई है, और अगर वहां लोग पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन भी जो है लिया जा सकता है।
0: दिल्ली पुलिस की कोशिश यही है कि CJP के आंदोलन के ऐलान के बीच किसी भी तरह का टकराव ना हो, दिल्ली में हालात बिगड़ ना सके, एक बार फिर सड़कों पर हिंसा जैसे हालात ना हो। दिल्ली से अंशुल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: सोमवार और आ गए
7: चकमक चाचा।
6: एक कचौड़ी, दो समोसा, चकमक तेरा क्या भरोसा।
8: चकमक चाचा से सीधे चकमक है।
6: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रही, गूंज रहा नारा।
8: लेकिन भैया नारा अरे फालतू में सब बेकार, एकदम बेकार। अरे होते थे हमारे टाइम।
6: अच्छा
8: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, JP भाई
6: छूटेंगे। तो खत्म कहानी।
8: अरे जमीन के चकबंदी में, जमीन के चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में।
6: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
8: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
6: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा लेके जाएंगे।
8: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
6: अरे लाल फूल, नीला फूल, जंजी नंगे ब्यूटीफुल।
8: अरे बारी बारी, सबकी बारी, अबकी बारी अनिल बिहारी।
6: चाय गरम, दूध गरम, चकमक चाचा भी सरम
8: है।
6: हाँ,
8: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
6: अरे मेरे सिर में दर्द है जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
9: हम जैसे, इधर आओ।
10: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
6: आई चाचा, खेल रहा है।

0: नहीं पड़े हैं
1: फ्लाइट में कम से कम सफर करें मेरे हिसाब से भाई। ट्रैवल एजेंट कोई गांजा फूंक के चला रहा है, कोई चाकू लेके घुस रहा है, क्या हो रहा है ये?
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं।
1: तुम्हारा
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं।
0: यार काट देना।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: जम्मू कश्मीर उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिल्कुल बदल गया है और ये बताया जा रहा है कि चमोली जिले में जो स्थित सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब है, वहां पर जबरदस्त बर्फबारी इस वक्त की जा रही है। बर्फ की सफेद चादर से ये पूरा क्षेत्र ढक चुका है और रेस्क्यू टीमें भी वहां पर बनी हुई हैं। प्रशासन की तरफ से भी सावधानी बरतने के लिए कहा गया है, लेकिन इस बीच यात्रियों की तरफ से भी वहां पहुंचा जा रहा है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या ही नहीं हिंदुस्तान के किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़े तो जीत सकते हैं। अखिलेश जी अपने सफाई छोड़ करके कहीं और आकर के लड़ करके दिखाएं। योगी जी हिंदुस्तान के किसी भी विधानसभा से, उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के किसी भी विधानसभा से जा करके चुनाव लड़ करके जीत सकते हैं। जनता इतना प्यार करती है, देश तो छोड़िए छोड़िए दुनिया में आज योगी जी का नाम डंका बज रहा है, तो इसलिए ये उनकी चुनौती। वो यदि लड़ना चाहते तो वो आकर अयोध्या से लड़ लें। यदि उनको इतना है, जिस भगवान श्री राम का उन्होंने अपमान किया उसी अयोध्या में जा करके उनको जो है दर्शन नहीं किए, भगवान श्री राम के भक्तों पर उन लोगों ने जो गोली चलाई और माँ सरजू लाल हो गई खून से, और वो जो है अयोध्या की बात करते हैं। आज
4: आप कह रहे हैं अयोध्या से अखिलेश यादव भी चुनाव लड़के दिखाएं
3: दिखाएं
4: सामने कौन लड़ेगा आपके पास?
3: अरे कोई एक कार्यकर्ता लड़ जाएगा, एक सामान्य कार्यकर्ता भी लड़ जाएगा भारतीय जनता पार्टी का लड़े।
4: अच्छा कल जो है
3: वो इटावा मैनपुरी छोड़ करके कहीं जाते हैं लोग आके लड़े।
4: कुल मिलाकर आप सुन रहे थे यूपी सरकार मंत्री जयशंकर सिंह को, कहीं ना कहीं अब बीजेपी की तरफ से भी अखिलेश यादव को चुनौती दी गई है कि वो भी मैनपुरी के बजाय अयोध्या से चुनाव लड़कर दिखाएं। तो एक तरफ अखिलेश यादव की चुनौती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, तो दूसरी तरफ बीजेपी की चुनौती अब समाजवादी पार्टी को। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: नहीं पड़े
1: नहीं,
0: हैं
1: नहीं, नहीं, नहीं।
2: फ्लाइट में कम से कम सफर करें मेरे हिसाब से भाई, ट्रैवल एंस, कोई गांजा फूंक के चला रहा है, कोई चाकू लेके घुस रहा है, क्या हो रहा है ये?
3: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं।
2: तुम्हारा
3: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं।
0: यार काट देना।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

ज्ञानेश कुमार पर सीजेपी का प्लान जंतर मंतर। 10 अक्टूबर को जंतर मंतर से नई लड़ाई। केंद्र सरकार को सीजेपी का सीधा अल्टीमेटम। चुनावी सिस्टम बदलने निकलेगी टीम सीजेपी। अभिजीत दिपके का जंतर मंतर पार्ट टू। पेपर लीक मामले में अभिजीत दिपके की अगुवाई में सीजेपी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जून महीने में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ आंदोलन शुरू किया था। दुनिया ने जेन जी की शक्ति देखी और आखिरकार सरकार को सीजेपी की मांग के आगे झुकना पड़ा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। एक बार फिर अभिजीत दिपके जंतर मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर आ रहे हैं। 10 अक्टूबर को सीजेपी ने जंतर मंतर पर देश भर के जेन जी को जुटने के लिए बुलाया है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर अभिजीत दिपके की तीन मांगे हैं। पहली मांग, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और आपराधिक मुकदमा। दूसरी मांग, देश भर में जारी एसआईआर की प्रक्रिया तुरंत बंद होनी चाहिए। तीसरी मांग, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का सिस्टम बदले। दरअसल दिपके ने वोटर लिस्ट की एसआईआर में कथित गड़बड़ियों का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। मतलब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब दिपके मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आर पार की लड़ाई लड़ने महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे हैं। दावा यही है कि देश का जेन जी अब चुनावी सिस्टम में मौजूद खामियों को दूर करके ही दम लेगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से जंतर मंतर पर किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक है। दिपके का कहना है कि पाबंदियों के पीछे सरकार का डर है। आरोप यही है कि महाराष्ट्र में सीजेपी कार्यकर्ताओं को दिल्ली जाने से पुलिस रोक रही है। सीजेपी अध्यक्ष अभिजीत दिपके का आरोप है, चंद्रपुर में उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस की तरफ से नोटिस भेजा गया है। नोटिस में महाराष्ट्र से दिल्ली जाने वाले कार्यकर्ताओं से ट्रेन के टिकट का सोर्स पूछा गया है। पुलिस नोटिस पर भड़के दिपके ने पूछा है कि महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट को लेकर नोटिस कैसे भेज सकती है। बड़ी बात यह है कि दिपके ने ऐलान किया है कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरते। अगर पुलिस ने जंतर मंतर जाने से रोका और जेल भेजा तो भी ये आंदोलन रुकेगा नहीं। दिपके इसी मुद्दे पर मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन कर चुके हैं। पुलिस की मनाही के बावजूद ये प्रदर्शन हुआ। तब दिपके ने कहा था, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हुआ तो वो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जाएंगे। सीजेपी के ऐलान ने दिल्ली पुलिस की नींदें उड़ा रखी हैं, क्योंकि दिपके का प्लान जंतर मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन को शुरू करना है। आज तक ब्यूरो।

के चाहे जितना बैरिकेटिंग लगा ले मैं अरेस्ट होने जा रहा हूं। पुलिस ने कहा देरी से मांगी गई अनुमति इसलिए प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं। आज रात से बंद हो सकते हैं दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशन। नई दिल्ली और निजामुद्दीन तक आने वाली कई ट्रेनें रद्द। किलेबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। राजधानी को जोड़ने वाले हर रास्ते पर नाकेबंदी। इंडिया ब्लॉक के सांसदों को राष्ट्रपति ने दिया मिलने का वक्त। रात 8 बजे हो सकती है मुलाकात। पहले संसद के सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होंगे कांग्रेस के कई सहयोगी। इसके बाद बनेगी रणनीति। अब नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल हवाई अड्डा होगा नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का नाम। यूपी कैबिनेट में फैसले पर लगी मोहर। दिवाली से पहले पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त में सिलेंडर। भारतीय मूल के नावी पल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय कानून और शांति को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए किया गया सम्मानित।

0: जंतर मंतर पर कल होने वाले प्रदर्शन से पहले कांग्रेस जनता पार्टी के अभिजीत दिपके का बड़ा बयान, कहा कि मैं तो अरेस्ट होने के लिए जा रहा हूं, कर लो अरेस्ट। अभिजीत दिपके ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार सरकार ने माहौल बनाया, ट्रेन रद्द करने और दिल्ली में रास्ते बंद करने का भी आरोप लगाया। प्रदर्शन से पहले खुली चुनौती देने के अंदाज में अभिजीत दिपके कहा कि जितने बैरिकेडिंग लगा ले युवाओं को रोक नहीं पाएंगे। दिल्ली पुलिस ने लोगों के नाम लिखी चिट्ठी, कहा कि फर्क सिर्फ यूनिफॉर्म का है, इंसानियत का नहीं। प्रदर्शन के को सख्त सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई। चिल्ला बॉर्डर पर नोएडा पुलिस, दिल्ली पुलिस के साथ बीएसएफ के जवानों की भी तैनाती की गई। संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है। सीसीबी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने किया बड़ा ऐलान, पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत देने से साफ मना कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार 10 दिन पहले अनुमति मांगनी पड़ती है, जबकि सौरभ बरदास ने 7 अक्टूबर को दिया था अनुमति का पत्र। दिल्ली पुलिस ने कहा कि पहले भी सीसीबी ने प्रदर्शन की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया, बीएनएसएस की धारा का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। दिल्ली पुलिस ने 10 अक्टूबर को कांग्रेस जनता पार्टी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए, राजधानी में हर तरफ नाकेबंदी की गई है। बीती रात से ही दिल्ली पुलिस ने पूरी दिल्ली में नेताओं और उनके एक्टिव समर्थकों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल बंद रहेंगे, आज रात 9 बजे से ही बंद लागू होगा। विरोध प्रदर्शन के बीच रेलवे का भी बड़ा फैसला, 10 अक्टूबर को नई दिल्ली और निजामुद्दीन स्टेशन पर आने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने बताया कि दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशन चलाने वाली और 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली या हजरत निजामुद्दीन पहुंचने वाली ट्रेनों को रद्द किया जाए। दिल्ली में आज और कल बंद रहेंगी शराब की दुकानें, प्रदर्शन के बीच सरकार का बड़ा फैसला। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, शराब की दुकानों को बंद रखने का फैसला दिल्ली पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर किया गया है। दिल्ली पुलिस ने वीडियो के जरिए प्रदर्शनकारियों की कानून व्यवस्था का पालन करने की अपील की है। पुलिसकर्मियों के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, महिला पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी आपत्तिजनक भाषा और अनुचित व्यवहार का प्रयोग किया गया है। सोशल मीडिया में पत्रकारों से भी पुलिस ने अपील की है कि अपना पत्रकार अपनी जिम्मेदारी निभाए लेकिन पुलिस की कार्रवाई में बाधा ना डाले। 2 अक्टूबर से जारी प्रदर्शन मामले पर पुलिस ने अब तक 25 FIR दर्ज किए, अलग अलग दर्ज FIR में कांग्रेस कार्यकर्ता लेफ्ट विंग के लोगों का नाम भी शामिल है। कश्मीरी युवक को पीटने के मामले पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कल कश्मीर के रहने वाले फहीम नजीर की कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पीटे जाने का आरोप लगाया गया था। नर्मदापुर में पुलिस का बड़ा एक्शन, 10 अक्टूबर को कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन में शामिल होने जा रहे 15 सदस्यों को ट्रेन से उतारा गया। सभी कांग्रेस पार्टी के सदस्य महाराष्ट्र से गोवा एक्सप्रेस में सवार होकर दिल्ली के लिए जा रहे थे, सभी को पुलिस ने गोपनीय स्थान पर हिरासत में ले रखा है। हर्षविहार मस्जिद में मौलाना का ऐलान, जंतर मंतर पर कल सीजेपी के प्रदर्शन को अवैध बताते हुए लोगों से ना जाने की अपील की। पुरानी दिल्ली की एक मस्जिद में पुलिसकर्मियों ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी तरह के प्रदर्शन में शामिल होने की अपील नहीं की है, अपने संघ संबंधियों को पर भी समझाने की अपील की गई है। कच्छ में बड़ा हादसा, ट्रक और डंपर के बीच भीषण टक्कर हो गई, हादसे में 7 श्रमिकों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा जेवर एयरपोर्ट का नाम, योगी कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में आज बड़ी बैठक की गई है, 25 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा की गई है। मीटिंग में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगा दी गई, भदोही का नाम संत रविदास नगर करने का प्रस्ताव एजेंडे में शामिल है। आज शाम 7 बजे दुर्गा पूजा, दशहरा और कानून व्यवस्था को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक होगी, सीएम योगी लेंगे तैयारियों का जायजा। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर स्वस्थ सक्षम और उत्तर प्रदेश की कहानी की साझा किया, जिसमें उपचार की विश्वसनीयता से स्वास्थ्य सुरक्षाओं में विश्वास तक में सफर को बताया। अयोध्या दौरे के दौरान सीएम योगी ने अखिलेश यादव को चुनौती दी, कहा कि दम है तो यहां से चुनाव लड़कर दिखाए। अखिलेश की चुनौती पर बीजेपी ने पूछा कि यहां आकर भी राम मंदिर क्यों नहीं गए एसपी सुप्रीमो। राम मंदिर दर्शन नहीं करने पर बीजेपी के सवाल, सुदर्शन चक्र और त्रिशूल धारण करने को बताया बहरूपिया। राम मंदिर दर्शन पर बीजेपी के सवाल तो छड़ावा चोरी मामले पर अखिलेश का पलटवार, अयोध्या को लेकर यूपी में सियासी घमासान। नोएडा में काशीराम परिनिर्माण दिवस पर ट्रैफिक डायवर्जन, दिल्ली जाने वाले वाहन चालकों के लिए बदले गए रूट। काशीराम को भारत रत्न देने की मायावती ने उठाई मांग, महापरिनिर्माण दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई। मायावती का संकल्प, बहुजन आंदोलन को परिवारवाद से रखेंगे मुक्त, बहुजन समाज को शासन वर्ग बनाना लक्ष्य है। बेरोजगारी महंगाई पर मायावती का सरकारों को संदेश, बोली युवाओं को रोजगार विकास के ठोस अवसर देना जरूरी है। उत्तर मध्य रेलवे की 3 बड़ी उपलब्धियां, माल लदान में 8.1% की बढ़ोतरी, 6 महीनों में 286.79 करोड़ रुपए के स्क्रैप निस्तारण और 1.11 करोड़ के ज्यादा पौधे लगाने का रिकॉर्ड भी बना। नोएडा के राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल को कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक प्लान जारी किया गया, एक्सप्रेसवे और कालिंदी कुंज से दिल्ली जाने को वैकल्पिक रास्ते में से गुजरना होगा। चार राज्यों और पौंडेचेरी में 6 सीटों पर उपचुनावों की मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर सहित असम की लोकसभा सीट पर भी बीजेपी को लीड है। दूसरे राउंड में नंदीग्राम में बीजेपी को 19,000 से ज्यादा वोटों से आगे है और रेजीनगर में भी बीजेपी को बढ़त मिल रही है। तेलंगाना में तमिलनाडु की 1 सीट पर सीएम विजय की पार्टी टीवीके के तो दूसरी पर एआईडीएमके आगे चल रही है। असम में नौगांव में लोकसभा सीट पर बीजेपी के देवाशीष शर्मा सबसे आगे हैं, दूसरे नंबर पे एआईयूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल है। पांडिचेरी की थट्टा चावड़ी सीट पर काउंटिंग को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई, मतगणना केंद्र पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। एसआईआर फॉर्म 6 पर घमासान, 13.5 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाने पर विपक्ष ने उठाया मुद्दा। विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी का पलटवार, बोली कि सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा क्यों नहीं करता इंडिया ब्लॉक। प्रमोद तिवारी का बड़ा ऐलान, सीसी के इस्तीफे और एफआईआर की मांग, पूरी होने तक जारी रहेगा संघर्ष। राहुल गांधी पर बीजेपी का तीखा हमला, प्रदीप भंडारी बोले हैं कि कांग्रेस का आंदोलन जनता के खिलाफ है। अभिषेक बैनर्जी की 2 टूक, सत्याग्रह से पीछे नहीं हटेंगे, जेल और मौत का भी डर नहीं है। फरीदाबाद में 7 पढ़ने वाली लड़की के घर फंदे से लटका मिला हुआ शव, 10वीं की छात्रा का शव, परिजनों ने छात्रा के घर पर जाकर किया हंगामा, लगाया हत्या के आरोप। ओडिशा के जगत सिंहपुर में घर में पटाखे बनाते समय जबरदस्त ब्लास्ट हो गया, हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई। उधम सिंह नगर में ओवरटेक के दौरान भिड़े डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली, हाईवे पे दूसरी ओर कार की चपेट में आई, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बस्ती में रास्ते में विवाद में 2 पक्षों में पथराव हो गया, छत से पत्थरों की बरसात का वीडियो वायरल हो रहा, 1 आरोपी गिरफ्तार किया गया। पूरे मारपीट और पथराव की चपेट में आने के कुल 4 लोग घायल हुए, भारी पथराव पत्थर लगने से 1 छोटी बच्ची की गंभीर रूप से घायल हुई है। फरीदाबाद में इंडियन अलायंस के प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं की झड़प, मामूली विवाद को लेकर हुआ यह झगड़ा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पार्टी के बयान जारी किया, बोले कि जल्द ही हो जाएगी दोनों में सुलह। ओडिशा के मयूरभंज में दर्दनाक हादसा, 1 एम्बुलेंस में आग लगने से 1 मरीज की मौत हो गई है और 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के बेलाई में एक केमिकल फैक्ट्री में वेल्डिंग की चिरंगारी से भड़की है आग, फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने मिलकर आग पर पाया काबू। इटावा में एक शिक्षक को बच्चे के साथ हंसी मजाक करना पड़ा भारी, वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षक सस्पेंड कर दिया गया। हरिद्वार में हाथी का कहर, खेत में काम कर रहे किसानों को पटक पटक कर मार डाला, घटना के विरोध में लोगों का हंगामा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तेज रफ्तार कंटेनर ने ट्रक ने 3 दोपहिया वाहनों को मारी है टक्कर, 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ब्रेक फेल होने के कारण लगभग 24,000 लीटर डीजल में भरा टैंकर सड़क पर पलट गया, लोगों में मची लूटने की होड़। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस का बड़ा एक्शन, आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या के आरोपी के कब्जे वाली जमीन पर बुलडोजर चलाया गया, अतिक्रमण से कराया गया मुक्त। कौशाम्बी में झोलाझाप डॉक्टरों की लापरवाही से जच्चा बच्चा की मौत हो गई, अस्पताल स्टाफ फरार है, सीएमएस ने दिए हैं जांच के बाद कार्रवाई के आदेश। गुजरात के दाहौड़ में दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, प्रेमी जोड़े ने इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए सुसाइड किया है। कोटा में हॉस्टल में छात्र की मौत के बाद बवाल हो गया, प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, 13 मांगों पर सहमति के बाद धरना खत्म किया गया है। तेलंगाना के विकाराबाद में बिजली कटने से लिफ्ट बीच में ही रुक गई, कई महिलाओं और बच्चों के करीब 1 घंटे तक लिफ्ट में अंदर फंसे रहे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में गरबा इवेंट में प्रमोशन के दौरान यातायात नियमों की उड़ी है धज्जियां, प्रमोशन के लिए लड़कियों को कार की छत पर बैठाकर घुमाया गया। इटावा में रोडवेज बस की खिड़की से कूदकर बंदी फरार हो गया, जिला जेल से ले जाने के दौरान बदमाश ने दिया वारदात को अंजाम। हेमकुंड साहिब में जबरदस्त बर्फबारी, चारों ओर बिछी सफेद चादर। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के बीच कपाट बंद होने की भी तेज तैयारियां हो गई हैं, 10 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद होगा कपाट। चमोली में बारिश का कहर, टंगनी के पागल नाले में मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद कर दिया गया है। लगातार बारिश से बद्रीनाथ हाईवे खोलने में देरी हो रही है, मौके पर मशीनों नहीं पहुंचने से हजारों यात्री परेशान हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद बद्रीनाथ धाम में लगातार भारी संख्या में श्रद्धालु का आना अब भी जारी है, 19,00,000 से ज्यादा भक्त यहां पर आ चुके हैं। दुबई के कैप्टन स्मिथ मशाल को प्रेसिडेंशियल अवार्ड से सम्मानित करेगा इजराइल, राष्ट्रपति ने किया ऐलान। नागरिक मरीजा के लिए दिया जा रहा है राष्ट्रपति पुरस्कार, स्मिथ मशाल ने को पायलट के मंसूबों को किया था नाकाम, 174 यात्रियों और मेंबर्स की बचाई थी जान। लद्दाख में शुरू हुई देश की पहली हाई ऑल्टीट्यूड सफारी, स्नो लेपर्ड के दीदार का भी मौका, 6 गाड़ियों को एलजी ने दिखाई हरी झंडी। 11 अक्टूबर से शुरू हो रहे नवरात्र पर पश्चिम बंगाल में जोरों से दुर्गा पूजा की तैयारियां, दुर्गा पूजा में अमेरिका के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर सज रहा है पंडाल। बिहार में बांका में दुर्गा पूजा को लेकर विशेष तैयारियों में जुटा है प्रशासन और पुलिस, पूजा स्थल पर भीड़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। आज रांची में JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 मैच, 5 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बना चुकी है टीम इंडिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंडर-19 एशिया कप का शेड्यूल जारी कर दिया गया, 5 नवंबर से ओमान में शुरू होगा ये टूर्नामेंट, 14 नवंबर को खेला जाएगा फाइनल। टूर्नामेंट में 8 नवंबर को पाकिस्तान से होगा भारत का मुकाबला, ग्रुप ए में ही भारतीय टीम है। 50 ओवर के फॉर्मेट में इस टूर्नामेंट के सभी मैच मस्कट के ओमान क्रिकेट अकादमी में ग्राउंड 1 और ग्राउंड 2 पे खेले जाएंगे, टूर्नामेंट में शामिल है 8 टीमें। 15 अक्टूबर को एशियन गेम्स में मेडलिस्ट से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी, पीएम आवास में होगी मुलाकात। आज OTT पर रिलीज हो रही है इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर रिपोर्टिंग लाइफ, परिणीति चोपड़ा निभा रही है इसमें अहम महत्वाकांक्षी युवा पत्रकार का किरदार। 400 करोड़ रुपए कमाने के बाद अब तेलुगु में हनुमान अंश का दिखेगा जलवा, आज थिएटर में आएगी फिल्म। अजय देवगन की दुष्यंती की बॉक्स ऑफिस पर शानदार रफ्तार, 6 दिनों में भारत में करीब 232 करोड़ रुपए और दुनिया भर में 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की कलेक्शन की गई है। दिवाली से पहले 5 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म रामायण, 4 नवंबर को रखा जाएगा फिल्म का पेड प्रीव्यू। साउथ के सिनेमा में वेटरन एक्टर कमल हसन की अगली फिल्म इंडियन 3 का ऐलान किया गया, मेकर्स ने सोशल मीडिया पर फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर को भी साझा किया है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
0: और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, दिल्ली में मेट्रो के 57 स्टेशन बंद करने और ट्रेन रद्द करने को लेकर सुनवाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह सुनिश्चित करे कि आम जनता की आवाजाही ठप ना हो। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा है कि प्रदर्शनकारियों के लिए बड़ी जगह दी जा सकती है। सीजीआई ने कहा है कि हमारी चिंता उन यात्री, छात्रों और कामगारों को पर पड़ने वाले असर को लेकर है जो मेट्रो और ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं। आपको रेगुलेटरी उपाय करने का अधिकार है, लेकिन आप सारा ट्रांसपोर्ट बंद नहीं कर सकते जिससे लोगों के पास यात्रा करने का कोई जरिया ना बचे। और देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए। संजय, अभी तक ये हेयरिंग चल रही है, क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया, क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की भी बात भी चल रही है?
2: सुप्रीम कोर्ट ने में अभी सुनवाई चल रही है और चीफ जस्टिस खुद और उनके साथ जस्टिस जयमाले बागची और जस्टिस भीम होना पीठ में है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट टिप्पणी की है, उन्होंने कहा है कि एक खुली जगह, एक यहां से अलग जगह शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए तय की जानी चाहिए, चूंकि समय की जरूरत यही कहती है। इस पर कपिल सिब्बल जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से थे, उनका ये कहना था कि वहां पर पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए, पीने का पानी होना चाहिए, खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए, लेकिन ये तय रखा जाए कि उसे ज्यादा दूर नहीं भेजा जाए, उसे ऐसी जगह भेजा जाए जहां से सरकार तक आवाज पहुंचाई जा सके। और फिलहाल इसमें एक मामला ये भी फंसा जब कोर्ट में ये कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि वो आयोजकों को लेकर आएंगे, लेकिन आयोजकों को लेकर नहीं आए हैं। और कपिल सिब्बल ने भी ये कहा कि वो आयोजकों की तरफ से की पैरवी नहीं कर रहे हैं। और साथ ही कोर्ट में भी मामला चल रहा है जिसमें ये तय होगा, कोर्ट ने ये जरूर टिप्पणी की है कि आम लोगों की कंप्लीट बैन नहीं होना चाहिए, कंप्लीट रोक नहीं होनी चाहिए ट्रांसपोर्ट सिस्टमों पर, क्योंकि कई चीफ जस्टिस ने खुद कहा कि कई ऐसे छात्र हैं आसपास के, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद से छात्र और लोग कामकाज के लिए दिल्ली आते हैं और जाते हैं, इसलिए उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, ट्रेनें पूरी तरह से बंद नहीं की जानी चाहिए। तो सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि स्थिति की लगातार समीक्षा की जाती है समय समय पर, और ये देखा जाएगा कि स्थिति जैसे नियंत्रण में होगी सब कुछ सही होगा तो बंद नहीं होगा, और स्थिति अगर तनावपूर्ण होगी या ऐसी कोई आशंका होगी एहतियाती तौर पर ये बंद किए गए हैं।
0: बिल्कुल, देखिए हमारे साथ संजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, बता रहे थे कि देखिए कोर्ट ने यह भी पूछा है कि प्रदर्शनकारियों को कोई बड़ी जगह, अलग जगह नहीं दी जा सकती। तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लगातार इस पूरी आप कह सकते हैं याचिका को लेकर जरा जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय शर्मा आपका वक्त, एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो तुम ठुमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
4: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
7: कौन सी बनानी है?
8: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसो फास्ट 27% इनो 9.2%
9: गड़बड़ है।
10: आहा गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
11: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट वो भी हर महीने।
12: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
13: सोच बदलो और बैंक भी।
14: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
15: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
16: Senco se mera nata saalon purana hai. Ye mere liye bas ek brand nahi hai.
17: Ye hai ek legacy.
18: You know, designs kitne hain? Lakh se bhi zyada dude.
19: Aur sare hai BIS Hallmark certified. Khoobsurat karigari bhi, high quality bhi.
20: Ek parivar, atoot bharosa.
21: Aur bhai kahan gaye the ghumne?
22: GK Max.
23: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
22: जेके मैक्स बेस्ट पुट्टी
23: जेके वॉल मैक्स
22: बेस्ट पेंट
23: जेके मैक्स।
22: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: मैं मायावती सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ।
5: मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ।
6: मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ।
7: ये भूमि उत्तर प्रदेश है, ये भूमि उत्तर प्रदेश है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
9: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
10: सोच बदलो और बैंक भी।
11: और वही कहाँ गए थे घूमने?
12: जीके मैक्स।
13: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
12: जेके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
13: जेके वॉल मैक्स।
12: बेस्ट पेंट
13: जेके मैक्स।
12: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: हम सब के बीच अपनी यादों को छोड़कर विदा हो गए नाना पाटेकर। उनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक पुणे जिले के डोंजे स्थित उनके फार्म हाउस में पूरे राजकीय सम्मान के साथ देर रात उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुखाग्नि उनके बेटे मल्हार ने दी। तस्वीरें देखिए, नाना के करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ हजारों चाहने वालों का हुजूम। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार, चंद्रकांत पाटिल और महाराष्ट्र के कई मंत्री नाना पाटेकर को आखिरी विदाई देने पुणे पहुंचे थे। सीएम देवेंद्र फडणवीस नाना के अंतिम संस्कार में तो मौजूद नहीं थे, लेकिन गोवा से जब उनका पार्थिव शरीर पुणे पहुंचा तो हवाई अड्डे पर उन्होंने नाना को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रहार, क्रांतिवीर, खामोशी, द म्यूजिकल जैसी फिल्मों में अपने यादगार अभिनय से अपनी अलग पहचान बनाने वाले नाना पाटेकर का कल गोवा में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया था। वो 75 साल के थे।
3: उनकी वाणी जितनी तेज थी, उनकी खामोशी भी उतनी ही प्रभावी थी। वो देश विरोधियों पर निरंतर अंकुश के समर्थक थे। मैं नाना पाटेकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों और चाहने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।
2: नाना पाटेकर अब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन फिल्मी पर्दे पर अपनी बुलंद आवाज और मानवीय संवेदना को झकझोर देने वाले अपने अभिनय के लिए हमारे बीच ताउम्र रहेंगे। ओमकार बाबले, पुणे आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

बीजेपी को प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिलने और दिल्ली की किलेबंदी पर चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या कोई बड़ी जगह दी जा सकती है? ध्यान रखें कि आम लोगों की आवाजाही प्रभावित ना हो, प्रदर्शन पर अड़ी है सीजेपी। आज रात से ही बंद हो सकते हैं दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशन। नई दिल्ली और निजामुद्दीन तक आने वाली कई ट्रेनें भी रद्द। राजधानी को जोड़ने वाले हर रास्ते पर किलेबंदी। इंडिया ब्लॉक के सांसदों को राष्ट्रपति ने दिया मिलने का वक्त। रात 8 बजे हो सकती है मुलाकात। पहले संसद के सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होंगे कांग्रेस के कई सहयोगी। इसके बाद बनेगी रणनीति। अब नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल हवाई अड्डा होगा नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का नाम। यूपी कैबिनेट में फैसले पर मुहर। दिवाली से पहले पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर। और फिर टूटा ट्रंप का नोबेल सम्मान मिलने का सपना। भारतीय मूल की नवी पिल्लई को मिला शांति का नोबेल। अंतर्राष्ट्रीय कानून और शांति को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए मिला सम्मान।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ मानशु दीक्षित। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन पर घमासान मचा हुआ है और अब सुप्रीम कोर्ट तक ही मामला पहुंच गया है। सुनवाई अभी चल रही है और चीफ जस्टिस ने पूछा है कि क्या प्रदर्शन के लिए कोई और बड़ी जगह दी जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि दिल्ली में मेट्रो ट्रेनें रोकने और नाकेबंदी की वजह से आम लोगों को दिक्कत ना हो, यह ध्यान रखना होगा। जंतर मंतर पर 10 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन की पुलिस से अनुमति नहीं मिली है। पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया और इसके बाद दिल्ली की सड़कों से लेकर मेट्रो तक सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं जिन पर अब अदालत भी सवाल उठा रही है। एक तरफ सीजेपी और छात्र संगठनों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए इसकी इजाजत देने से इनकार कर दिया है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के लिए तय समय सीमा के मुताबिक आवेदन नहीं किया गया। 10 अक्टूबर को प्रदर्शन करना है, 7 तारीख को परमिशन मांगी गई। साथ ही नई दिल्ली इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से परमिशन नहीं मिली और उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी चल रही है। संजय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजय जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी क्या इस मुद्दे पर कहा गया है, क्योंकि दोनों पक्षों से दलीलें रखी गई होंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया आम लोगों को ध्यान में रखते हुए?
1: इस मामले में अपना आदेश लिखा दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाए, सरकार इस पर पुनर्विचार करे कि मेट्रो और ट्रेन और इन सबके कंप्लीट बैन उचित नहीं है, कंप्लीट रूप से बंद करना उचित नहीं है। लिहाजा उस पर पुनर्विचार करे और देखे कि यात्रियों को कैसे सुविधाएं दी जा सकती हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि परमिशन देना नहीं देना ये पुलिस का मामला है, इसमें कोर्ट दखल नहीं देगा। और इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा कि आयोजक हैं क्या, आयोजक अगर रहते तो वो शायद ये बताते कि कितने लोगों को क्या आने की उम्मीद है, कितने लोग उसमें शामिल होंगे, सुरक्षा के क्या इंतजाम है। तो वो सब कोर्ट ने बीच में ये भी कहा कि क्या इनको एक ओपन जगह, खुली जगह दी जा सकती है जहां सुविधाएं हों, लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सके। लिहाजा कोर्ट ने अपने आदेश को अगर हम बिल्कुल कंक्रीट लें तो उसमें यही है कि सरकार को इंतजाम करने चाहिए कि लोगों को दिक्कत ना हो। मेट्रो ट्रेन और रेल के इतने सारे स्टेशनों को बंद करने के बजाय ये देखा जाए कि लोगों की मुश्किलें कैसे कम की जा सकती हैं, कैसे इसे देखा जा सकता है और सुरक्षा इंतजाम कैसे तगड़े कर सकते हैं।
0: तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आम लोगों के लिए चिंता जताई गई है, क्या इसके बाद कुछ रियायत दिल्ली पुलिस की तरफ से दी जा सकती है, ऐसी संभावना है?
1: नहीं कर सकते इसको, चूंकि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा नहीं है इजाजत को लेकर। तो इजाजत दिल्ली पुलिस अपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए तय करेगी कि उनको इजाजत दी जाए या नहीं। फिलहाल ये मामला अटका हुआ है। हो सकता है कि इस मामले में देर रात गए या कल भी कोर्ट इस मामले में सुनवाई करे या देखे कि आखिर क्या किया जा सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ता पूरी तरह से, हालांकि उन्होंने ऑर्डर लिखाने के बाद आखिर में जो परंपरा है उसके मुताबिक हाईली ऑब्लाइज तो कहा है, लेकिन उसे कितने संतुष्ट दिखते हैं ये देखना दिलचस्प होगा।
0: शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े थे, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उससे जुड़ी जानकारी दे रहे थे। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि सीजेपी की तरफ से कह दिया गया है कि हम प्रदर्शन करके रहेंगे। अभिजीत दिपके की तरफ से भी कह दिया है कि भले ही जेल में जाना पड़े लेकिन हम आएंगे। युवाओं से भी कह रहे हैं कि आइए। दिल्ली पुलिस ने कह दिया है कि परमिशन के लिए बहुत कम वक्त दिया गया, 7 तारीख को परमिशन मांगी गई, 10 तारीख को प्रदर्शन था, तो ऐसे में नहीं दिया जा सकता वक्त। और पुराने वक्त पर जो धाराएं तोड़ी गई या फिर जो नियम कायदे कानूनों को तोड़ा गया है उसकी वजह से भी परमिशन नहीं दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, दोनों अपनी तरफ से अड़े हुए हैं, तो ऐसे में क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं कल के प्रदर्शन को लेकर, एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
2: दिल्ली में प्रदर्शन से पहले अभिजीत दिपके के ये तेवर साफ बता रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का इरादा आखिर क्या है। सीसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान सीजेपी ने क्या प्लान ऑफ एक्शन बना रखा है? शनिवार को जंतर मंतर पर सीजेपी बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। 1000 से ज्यादा लोगों के जुटान का अनुमान है। पुलिस से इजाजत अब तक नहीं मिली है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी विरोध के अपने ऐलान पर अड़ी हुई है। पुलिस का एक्शन होने पर सीधे गिरफ्तार करने की चुनौती दे रही है।
3: नहीं, हमारा तो आंदोलन होकर रहेगा क्योंकि जंतर मंतर इज डेजिग्नेटेड टू डिसाइड, आर्टिकल 90 हमें प्रोटेस्ट का पूरा फंडामेंटल राइट देता है, तो परमिशन की क्या जरूरत है। 13 करोड़ वोट डिलीट करने से पहले क्या इन्होंने परमिशन ली थी जनता की? कल मैं बेंगलुरु से आ रहा हूँ जहाँ पर जिंदा लोगों को डेट डिक्लेयर कर दिया था क्योंकि वोट काटे गए थे, वो लोग जिंदा है। क्या उनसे पूछा था आपने वोट काटने से पहले? और आप चाहते हो कि जो लोग इलेक्शन रिग कर रहे हैं उनके खिलाफ आंदोलन ना करें हम? ऐसे तो नहीं चल सकता। देश के लोकतंत्र बचाने के लिए, देश का लोकतंत्र बचाने के लिए हम,
2: ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर पहले से ही दिल्ली में विपक्षी दलों की मोर्चाबंदी जारी है, हर रोज नई तनातनी, नई जंग दिख रही है, तो क्या ऐसे में सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर ये लड़ाई और ज्यादा तेज होगी? क्या फिर से दिल्ली की सड़कों पर नई तनातनी दिखेगी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जुलाई महीने में जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी ने मोर्चा संभाला था, उस दौरान 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान भारी हंगामा दिखा था। विरोध प्रदर्शन के बीच हिंसा और झड़प की तस्वीरें सामने आई थी। स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था। जांच के दौरान ये भी बात सामने आई थी कि कई हिस्ट्री शीटर भी हंगामे के दौरान मौके पर मौजूद थे। यही वजह है कि पुलिस इस बार सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए काफी एहतियात बरत रही है।
4: कांग्रेस जनता पार्टी के पूर्व आचरण के अनुसार एक अलग अवसर पर पूर्व में दिए गए उनके द्वारा अंडरटेकिंग्स तथा लॉफुल डायरेक्शंस को भी नहीं फॉलो किया गया था। निर्धारित प्रक्रिया का पालन ना किए जाने पर पूर्व में दिए गए कानूनी दिशा निर्देशों को नहीं पालन करने तथा वर्तमान में पब्लिक सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर एवं ट्रैफिक रेगुलेशन की स्थिति को देखते हुए जंतर मंतर पर प्रस्तावित धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है।
2: किसी भी सूरत में हालात बेकाबू ना हो, इसे लेकर पहले से तैयारियां की गई हैं। जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में काफी सतर्कता बरती जा रही है, लेकिन सीजेपी के आक्रामक रुख को देखते हुए दिल्ली में तनाव की स्थिति बनी हुई है। सवाल उठ रहा है कि अगर सीजेपी के प्रदर्शन को रोका गया तो किस तरह का हंगामा होगा? क्या राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर उबाल, भारी बवाल दिखेगा?
0: देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजह भी बताई गई कि आखिर क्यों परमिशन नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर नुपुर प्रसाद से बात की हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा ने।
5: इस वक्त ज्वाइंट सीपी नुपुर प्रसाद जी हमारे साथ हैं। मैम, क्या परमिशन मांगी गई, कब मांगी?
6: 7 तारीख को कांग्रेस जनता पार्टी ने एक परमिशन एप्लीकेशन दी थी, इंटीमेशन करके, जिसमें ये बताया गया कि वो सीईसी की अकाउंटेबिलिटी के रिगार्डिंग 10 तारीख को जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन जो इंटीमेशन की है उस पर गौर किया गया और ये पाया गया कि ये एप्लीकेशन इस्टेब्लिश्ड जो गाइडलाइन है उसके तहत हमारे पास नहीं आई है, बहुत ही कम समय में आई है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने उनका जो प्रीवियस कंडक्ट था, उन्होंने जो हमारे लॉफुल डायरेक्शंस को नहीं फॉलो किया या उनकी जो अंडरटेकिंग दी गई थी उनके द्वारा उसको भी नहीं कंप्लाई किया, और प्रेजेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और पब्लिक सेफ्टी के मद्देनज़र इस एप्लीकेशन जो थी उसको रिजेक्ट किया जाता है।
5: सर, कौन लोग आए, मैम कौन लोग मांगने आए थे और किस बिना पर? जैसे कि एक तो पिछला कंडक्ट और दूसरा देरी, यही दो वजह है
6: और प्रेजेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड पब्लिक सेफ्टी।
5: अगर लोग जुटते हैं तो क्या कार्रवाई हो?
6: 163 BNSS की धारा लागू है नई दिल्ली में, जिसके तहत किसी भी तरह के जमावड़े को नहीं परमिशन दी जा रही है।
5: और इसके अलावा अगर हम बात करें मैम कि CCTV क्या एक्स्ट्रा लगाए जा रहे हैं इलाकों में, क्या लोगों पे नजर रखी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे मेट्रो स्टेशन बन, तो क्या अनुमान है ज्यादा लोग जुट सकते हैं?
6: लॉ एंड ऑर्डर की ब्रीफिंग आपको DCP नई दिल्ली कर देंगे।
0: दिल्ली पुलिस की ओर से कॉकरोच जनता पार्टी को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली। हालांकि एक दिन पहले बेंगलुरु में जुटे सीजेपी के पदाधिकारी साफ कर चुके हैं कि वो प्रदर्शन के ऐलान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में कल के प्रदर्शन से पहले नई दिल्ली में तनाव बढ़ा हुआ है, चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा है।
6: जंतर मंतर पर प्रस्तावित धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है।
2: तो अब जब साफ है कि सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीजेपी के प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस की इजाजत नहीं है, कानून व्यवस्था का हवाला देकर पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है, तो ऐसे में सवाल है कि जब कांग्रेस जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन पर अड़ी हुई है तो क्या दिल्ली की सड़कों पर शनिवार को एक बार फिर संग्राम दिखेगा? क्या एक बार फिर सीजेपी कार्यकर्ताओं और दिल्ली पुलिस के बीच टकराव दिखेगा?
7: परमिशन फिर से मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, परमिशन जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है इस देश में। जो ब्रिटिशर्स थे, जो गुलामी के टाइम पे हमारे अंदर एक दिमाग में डाल दिया कि जो जी हुजूर करके आप उन लोगों से परमिशन ले लीजिए, बताइए कितना एब्सर्ड और स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट है कि बार बार हम लोग को बोला जाता है कि सरकार के खिलाफ विरोध करना है तो सरकार से आप परमिशन ले लीजिए, सरकार जी साहेब 2 घंटे का परमिशन दीजिए हमें प्रोटेस्ट करना है। इस हिसाब से देश नहीं चल सकता। विरोध करना है तो पीसफुल तरीके से विरोध होगा। डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट अगर जंतर मंतर है तो वहां पे हम लोग जाएंगे, वो अधिकार है। संविधान हमें अधिकार देता है राइट टू प्रोटेस्ट का, संविधान हमें अधिकार देता है राइट टू पीसफुल असेंबली का, उसी को एसर्ट करने हम लोग आए हैं।
2: दरअसल दिल्ली पुलिस पहले ही साफ कर चुकी है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए कम से कम 10 दिन पहले अनुमति लेना अनिवार्य है। साथ ही यहाँ 1000 से ज्यादा लोगों के प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है।
4: दिनांक 7/10/2026 को श्री सौरभ दास, को कन्वीनर कांग्रेस जनता पार्टी का एक एप्लीकेशन न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में रिसीव हुआ, जिसके अनुसार यह इंटीमेशन दी गई कि 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट करेंगे रिगार्डिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और पाया गया कि उक्त सूचना अत्यंत ही अल्प समय में प्राप्त हुई है, जबकि वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार जंतर मंतर पर कार्यक्रम आयोजित करने हेतु आवेदन कार्यक्रम की निर्धारित तिथि से कम 10 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2: लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी दिल्ली पुलिस की इन दलीलों को मानने को तैयार नहीं दिख रही है। यही वजह है कि सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में किलेबंदी की गई है।
8: कल यानी 10 अक्टूबर को कांग्रेस जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट का आह्वान दिया है। इसको लेकर के दिल्ली पुलिस की तैयारियां अब पूरी होते हुए दिख रही हैं। हालांकि अभी तक किसी भी तरह की परमिशन जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन उसके बावजूद जो सिक्योरिटी और लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जितनी तैनाती जरूरी है वो इस वक्त कर दी गई है। इस वक्त मैं जनपथ रोड पर हूं और मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये जो सड़क है ये सीधा जंतर मंतर की तरफ जाती है। यहां से करीब 500 मीटर आगे ही वो धरना स्थल है जहां अमूमन लोग जाके बैठते हैं और धरना देते हैं। अगर आप यहां तैयारियां देखें तो इस पूरी सड़क को ट्रैफिक के लिए और पैदल मूवमेंट के लिए भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात भी कर दिया गया है।
2: सीजेपी के 10 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त है। दिल्ली की सीमाओं पर निगरानी बढ़ाई गई है। यूपी, हरियाणा और राजस्थान से लगने वाले बॉर्डर पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस के मुताबिक इलाके में धारा 163 लागू है, जिसके तहत किसी भी तरह के जुटाव को अवैध माना जाएगा।
4: साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि न्यू दिल्ली इलाके में 163 BNSS 163 BNSS की धारा लागू है, जिसके तहत पब्लिक ऑर्डर और सेफ्टी मेंटेन करने के लिए रीजनेबल प्रिवेंटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। ये भी सूचित किया जाता है कि 163 BNSS के उल्लंघन करने या किसी तरह का वैंडलिज्म या पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन करने पर

0: जुलाई महीने में हुए प्रदर्शन और बवाल से भी दिल्ली पुलिस ने सबक लिया है। पुलिस ने लोगों से प्रदर्शन में शामिल न होने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है। एहतियातन 10 अक्टूबर को दिल्ली में शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। ये तस्वीरें पुरानी दिल्ली की एक मस्जिद की हैं, जहां पुलिसकर्मी लोगों से अपील करता नजर आ रहा है कि किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन में शामिल न हो,
1: किसी भी भड़काऊ संदेश या उकसावे में नहीं आए, जिम्मेदार नागरिक बने और कानून का पालन करें। अपने क्षेत्र की सुरक्षा में पुलिस और प्रशासन का साथ दें और अपने परिवार वाले और अपने बच्चों को इस बारे में समझाएं कि इस तरह की अननेसेसरी भीड़ में या ऐसे कोई प्रोटेस्ट में किसी में हिस्सा ना लें।
2: इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी मस्जिद के बाहर है। अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो ये चांदनी चौक में स्थित शाही मस्जिद है, जिसके अंदर का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। यहीं पर दिल्ली पुलिस आई और यहां पर आकर के दिल्ली पुलिस ने अनाउंसमेंट की है और लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है उसके लिए परमिशन नहीं मिली है, और अपने बच्चों को भी वो समझाएं कि वो आगे जाकर के इस प्रोटेस्ट का हिस्सा ना बने, क्योंकि लीगल एक्शन हो सकता है। इसके अलावा ही ऐसी कई और जगह हैं जहां दिल्ली पुलिस पहुंची है और ऐसी कम्युनिटी अनाउंसमेंट्स कर रही है ताकि एक ये अवेयरनेस फैल सके कि किस तरीके से जो ये प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट की परमिशन अभी तक नहीं दी गई है, और अगर वहां लोग पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन भी जो है लिया जा सकता है।
0: दिल्ली पुलिस की कोशिश यही है कि CJP के आंदोलन के ऐलान के बीच किसी भी तरह का टकराव ना हो, दिल्ली में हालात बिगड़ ना सके, एक बार फिर सड़कों पर हिंसा जैसे हालात ना हो। दिल्ली से अंशुल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में संग्राम जारी है और लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब इसका असर आम लोगों पर भी पड़ रहा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल होने वाले CJP के प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने DMRC से 57 मेट्रो पर एंट्री एग्जिट बंद करने की मांग की। ऐसे में लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं।

0: आरोप चुनावी गड़बड़ी का है, मांग सीईसी के इस्तीफे की है, जिसे लेकर लगातार दिल्ली की सड़कों पर सियासी रण छिड़ा है। विपक्ष ने चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा संभाल रखा है। चुनाव आयोग के खिलाफ जारी संग्राम और अब तेज होने का अनुमान है, क्योंकि शनिवार को कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंत्र पर जुटान का ऐलान किया है। सीजेपी के प्रदर्शन को पुलिस की इजाजत नहीं है, लिहाजा राजधानी की सड़कों पर फिर टकराव का संकट पैदा हो सकता है। इस बीच वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के ऐलान के बीच मेट्रो को लेकर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने डीएमआरसी से शनिवार को प्रस्तावित सीजेपी के प्रोटेस्ट को देखते हुए 57 मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट गेट बंद करने का अनुरोध किया है। अगर इस पर अमल हुआ तो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त की है, बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती गई है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन के चलते आम लोगों को काफी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। कई लोगों की ट्रेन छूट रही है, यात्रा कर रहे लोगों को काफी मुश्किल हो रही है। विरोध प्रदर्शन का असर सीधा आम लोगों पर पड़ रहा है। रेलवे के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन के चलते 5,000 से ज्यादा यात्रियों की ट्रेन छूटी। दिल्ली में हो रहे प्रदर्शन की वजह से ट्रैफिक जाम लगने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तमाम यात्री समय पर स्टेशन नहीं पहुंच सके, जिससे उनकी ट्रेन छूट गई।
1: पिछले कुछ दिनों में लगातार हो रहे इंडिया ब्लॉक के सांसदों के द्वारा प्रदर्शन की वजह से आम लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे सूत्रों के अनुसार कल हुए प्रदर्शन की वजह से लगभग 5,000 लोगों की ट्रेनें छूट गई, कई लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे।
0: दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग पर संग्राम अभी थमा नहीं है, और शनिवार को भी सीजेपी ने जंतर मंत्र पर मोर्चाबंदी की तैयारी है, लिहाजा यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे ने पहले ही कदम उठाना शुरू कर दिया है। सीजेपी के 10 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन को देखते हुए नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली कई ट्रेनों को उनके शुरुआती स्टेशनों से ही रद्द कर दिया गया है। उधर प्रदर्शन और जाम के बीच सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए ट्रैफिक इंतजाम को सुचारू रखने का प्लान तैयार किया गया है।

0: बेंगलोर की थी बट ट्रैफिक की वजह से मेरी ट्रेन मिस हो गई है। अभी मुझे पूरी रात यहाँ पे स्टे करना होगा और नेक्स्ट ट्रेन का वेट करना होगा।
1: पार्क से बस पकड़ के आया, यहाँ इतना जाम, इतना अत्याचार हो रहा तो मेरी ट्रेन भी मिस हो गई। बनारस जा रहा था मुझे, अब 4 घंटे से बैठा हूँ, मुझे वापसी लौटना पड़ा।
2: मैं बस से आ रहा था कन्नड़ प्लस से, मेरी बस ट्रैफिक में फंस गई और मेरी लखनऊ जा रहा था, मैं ट्रेन छूट गई, मैं पूरी रात यहीं रुकूंगा।
3: जुलाई महीने में कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान जिस तरह का बवाल हुआ उसे देखते हुए दिल्ली पुलिस इस बार बेहद सतर्क है। साथ ही ये कोशिश की जा रही है कि विरोध प्रदर्शन के बीच आम लोगों को मुश्किलें ना उठानी पड़े। दिल्ली से पीयूष मिश्रा, अंशुल सिंह के साथ अरविंद ओझा, आज तक।
4: रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
8: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
9: सोच बदलो और बैंक भी।
10: आ गया सोमवार और आ गए
11: चकमक चाचा।
10: एक कचौड़ी, दो समोसा, चकमक तेरा क्या भरोसा।
12: चकमक चाचा से सीधे चकमक है।
10: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रही, बुझ रहा ना।
12: लेकिन भैया नारे अरे फालतू सब बेकार, एकदम बेकार। अरे होते थे हमारे टाइम।
10: अच्छा
12: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
10: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी, इन नेताओं की खत्म कहानी।
12: अरे जमीन के चकबंदी में, जमीन के चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में,
10: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
12: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
10: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा दे के जाएंगे।
12: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
10: अरे लाल फूल, नीला फूल, जंजी नंग है ब्यूटीफुल।
12: अरे बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी।
10: चाय गरम, दूध गरम, चकमक चाचा भी शर्म।
12: हाँ। जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
10: अरे मेरे सिर में दर्द है जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
13: हम जैसे, इधर आओ।
14: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
10: आई चचा।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: मैं मायावती 47 से प्रतिज्ञा करती हूँ।
3: मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ।
4: मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ।
5: ये भूमि उत्तर प्रदेश है, ये भूमि उत्तर प्रदेश है।
0: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: दिनांक 7/10/2026 को श्री सौरभ दास को कन्वीनर कांग्रेस जनता पार्टी का एक एप्लीकेशन न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में रिसीव हुआ, जिसके अनुसार ये इंटीमेशन दी गई कि 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट करेंगे रिगार्डिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और पाया गया कि उक्त सूचना अत्यंत ही अल्प समय में प्राप्त हुई है, जबकि वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार जंतर मंतर पर कार्यक्रम आयोजित करने हेतु आवेदन कार्यक्रम की निर्धारित तिथि से कम 10 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ये उल्लेख करना भी इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस जनता पार्टी के पूर्व आचरण के अनुसार एक अलग अवसर पर पूर्व में दिए गए उनके द्वारा अंडरटेकिंग्स तथा लॉफुल डायरेक्शंस को भी नहीं फॉलो किया गया था। निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किए जाने पर पूर्व में दिए गए कानूनी दिशा निर्देशों को नहीं पालन करने तथा वर्तमान में पब्लिक सेफ्टी लॉ एंड ऑर्डर एवं ट्रैफिक रेगुलेशन की स्थिति को देखते हुए जंतर मंतर पर प्रस्तावित धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है।
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, आम लोगों को ना दिक्कत हो पूछा कोई बड़ी जगह दी जा सकती है। आज रात से बंद हो सकते हैं दिल्ली मेट्रो के 57 रेलवे स्टेशन। नई दिल्ली और निजामुद्दीन तक आने वाली कई ट्रेनें भी रद्द। राजधानी को जोड़ने वाले हर रास्ते पर नाकेबंदी। इंडिया ब्लॉक के सांसदों से रात 8 बजे मिल सकती हैं राष्ट्रपति। पहले संसद के सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होंगे कांग्रेस के कई अहम सहयोगी। तय होगी रणनीति। अब नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल हवाई अड्डा होगा नोएडा के जेवर एयरपोर्ट का नाम। यूपी कैबिनेट में फैसले पर लगी मुहर। दिवाली से पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर। और फिर टूटा ट्रंप का नोबेल पुरस्कार मिलने का सपना। भारतीय मूल की नावी पिल्लई को मिला शांति का नोबेल। अंतर्राष्ट्रीय कानून और शांति को बढ़ावा देने के लिए मिला है सम्मान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोको।
0: नमस्कार, रणभूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और रणभूमि में बात करेंगे इस वक्त एक नोबेल की बड़ी खबरें आ रही है। आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार की दुनिया से एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। साल 2026 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान हो गया है और इस बार शांति का नोबेल मिला है भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नावी पिल्लई। दुनिया भर में मानवाधिकार की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मजबूत करने के लिए नावी पिल्लई को यह प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुना गया है। नावी पिल्लई का नाम ऐसे वक्त में नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है जब दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध जारी है। अंतर्राष्ट्रीय कानून युद्ध अपराधों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे माहौल में नावी पिल्लई का नाम संघर्ष और न्याय के लिए उनकी आवाज एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बनी हुई है। लेकिन कौन है नावी पिल्लई, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल कैसे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के दौर में निकलकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्याय की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई और भारत से उनका रिश्ता क्या है, तो आपको बता दें कि नावी पिल्लई का पूरा नाम नवनीतम पिल्लई है। उनका जन्म 23 सितंबर 1981 के अंदर दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुआ था। उनका परिवार भारतीय मूल का है और उनके पूर्वज तमिलनाडु से दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। रंगभेद के दौरान पली बड़ी नावी पिल्लई ने कानून को अपने संघर्ष का हथियार बनाया। 1967 में वो नेटाल में वकालत करने वाली पहली अश्वेत महिला बनी थी। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ लड़ने वाले कार्यकर्ताओं का बचाव किया और 1995 में दक्षिणी अफ्रीका की पहली श्वेत महिला हाईकोर्ट की जज भी बनी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान तब मजबूत हुई जब उन्होंने रवांडा में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायपालिकाकरण में अहम भूमिका निभाई। बाद में 2008-2014 तक वो संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार की प्रमुख भी रही। नावी पिल्लई का सफर इस बात की मिसाल है कि न्याय और मानवाधिकारों की लड़ाई सीमाओं के परे जाती है। उनकी कहानी रंगभेद से लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्याय तक के लिए लंबे संघर्षों तक उनकी कहानी उनके बारे में कहती है। और चलिए अब बात करते हैं रणभूमि में सीएजी के 10 अक्टूबर के प्रस्तावित प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबरों को लेकर।
3: सीजेपी के प्रदर्शन से पहले दिल्ली एनसीआर में हाई अलर्ट, राजधानी में सुरक्षा का बड़ा घेरा। दस अक्टूबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान, दिल्ली पुलिस का इजाजत देने से इनकार। दिल्ली पुलिस की तैयारी के तहत अर्ध सैनिक बलों की भारी तैनाती, सुरक्षा व्यवस्था और सख्त। दिल्ली में 37 जगहों पर नाकेबंदी की तैयारी, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए व्यापक इंतजाम। दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशनों के गेट बंद करने की तैयारी, यात्रियों के आने जाने पर असर। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन पहुंचने वाली कई ट्रेनें रद्द, रेलवे ने जाम की आशंका जताई। होटलों और गेस्ट हाउस में पुलिस की जांच, दिल्ली पहुंच रहे लोगों से पूछताछ। प्रदर्शन पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वरिष्ठ वकील, नागरिकों के अधिकारों पर बहस। सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़ा सवाल, प्रदर्शन का अधिकार या सुरक्षा के नाम पर पाबंदियां जायज।
0: दिल्ली में कल होने वाले प्रदर्शन से पहले राजधानी में विरोध और पाबंदियों को लेकर बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां वरिष्ठ वकीलों ने सवाल उठाया कि क्या किसी प्रदर्शन को रोकने के लिए पूरी दिल्ली की आवाजाही को इतना व्यापक पाबंदियां लगाई जा सकती है। जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पूरी तरीके से रोक नहीं लगाई जा रही है, बल्कि नियंत्रण किया जा रहा है। दरअसल सीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जवाबदेही की मांग को लेकर 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने आयोजकों की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन की सूचना 10 दिन पहले दी जानी चाहिए थी, लेकिन ये जानकारी 7 अक्टूबर को दी गई, जिससे मौजूदा सुरक्षा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी जा सकती। इस बीच रेलवे ने भी बड़ा कदम उठाया। रेलवे ने के मुताबिक 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को उनके शुरुआती स्टेशनों में भी रद्द कर दिया गया। रेलवे ने इसके पीछे प्रदर्शन के दौरान भारी ट्रैफिक जाम और यात्रियों को होने वाली परेशानी का कारण बताया, लेकिन इन पाबंदियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गंभीर सवाल उठाए गए। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और दूसरे वकीलों ने मेट्रो सेवा, ट्रेन और आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने की खबरों का हवाला देते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन के अधिकार के नाम पर ही नहीं, बल्कि उसे रोकने के नाम पर भी आम नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन के अधिकार और आम लोगों की बुनियाद सुविधाओं के बीच संतुलन जरूरी है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता हितेंद्र गांधी ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कथित हिरासतों, पुलिस कार्रवाई और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर पाबंदियों के मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई। सारी बातों को देखने और सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब अधिकारियों पर ये बात छोड़ दी है कि वो जरूरत के हिसाब से पाबंदियां लगाएं और उनकी पूरी जानकारी लोगों तक भी पहुंचाएं। और यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता रहे हैं कि कैसे दिल्ली में कल होने वाले सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो रेल सुविधाओं और सेवाओं पर बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मेट्रो ट्रेनों की आवाजाही पर पूरी तरीके से रोक नहीं लगाई जा सकती। अदालत ने कहा कि मेट्रो और दूसरी रेल सेवाओं को पूरी तरीके से बंद करने और नियंत्रित करने के से चलाने में फर्क है। सुप्रीम कोर्ट के सुझावों पर सॉलिसिटर जनरल ने अधिकारियों से पाबंदियों पर दोबारा विचार करने और मेट्रो के साथ ही ट्रेनों पर जरूरत के हिसाब से चलने की बात कही है। अदालत के निर्देश दिया है कि इस संबंध में प्रशासन जो फैसला ले उसका व्यापक प्रचार किया जाए, ताकि दिल्ली के लोगों और यात्रियों को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि मेट्रो सुविधाओं को और सेवाओं को आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं होगा। अब नजर इस बात पर होगी कि प्रशासन अदालत के निर्देश के बाद मेट्रो और दूसरी रेलों की सेवाओं को लेकर क्या नई व्यवस्था लागू करता है, या कोई नई पाबंदी लगाता है या फिर हटाता है। और देखिए, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, एक और बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बताएं कि दिल्ली में आज रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। सीजेपी प्रदर्शन को देखते हुए डीएमआरसी का एक बड़ा फैसला लिया गया है। अगले आदेश तक ये पाबंदियां जारी रहेंगी। रेड लाइन के 9 स्टेशन होंगे, येलो लाइन के 20 स्टेशन बंद रहेंगे, ब्लू लाइन के 8 और वॉलेंट लाइन के 7 स्टेशन बंद कर दिए गए। इसके अलावा पिंक लाइन के 8, मेजेंटा लाइन के 4 स्टेशन भी बंद रहेंगे, शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन भी बंद रहेगा। और एक तरफ सीजेपी और छात्र संगठनों ने मुख्य निर्वाचन आयोग ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए इसकी इजाजत देने से इनकार कर दिया। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के लिए तय समय सीमा के मुताबिक आवेदन नहीं किया गया था, साथ ही नई दिल्ली इलाके में BNSS की धारा 163 लागू की गई है। आइए सुनाते हैं दिल्ली पुलिस की ओर से क्या कुछ कहा गया इस बारे में।
4: दिनांक 7/10/2026 को श्री सौरभ दास को कन्वीनर कांग्रेस जनता पार्टी का एक एप्लीकेशन न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में रिसीव हुआ, जिसके अनुसार यह इंटीमेशन दी गई कि 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट करेंगे रिगार्डिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और पाया गया कि उक्त सूचना अत्यंत ही अल्प समय में प्राप्त हुई है, जबकि वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार जंतर मंतर पर कार्यक्रम आयोजित करने हेतु आवेदन कार्यक्रम की निर्धारित तिथि से कम 10 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ये उल्लेख करना भी इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस जनता पार्टी के पूर्व आचरण के अनुसार एक अलग अवसर पर पूर्व में दिए गए उनके द्वारा अंडरटेकिंग्स तथा लॉफुल डायरेक्शंस को भी नहीं फॉलो किया गया था। निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किए जाने पर पूर्व में दिए गए कानूनी दिशा निर्देशों को नहीं पालन करने तथा वर्तमान में पब्लिक सेफ्टी लॉ एंड ऑर्डर एवं ट्रैफिक रेगुलेशन की स्थिति को देखते हुए जंतर मंतर पर प्रस्तावित धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है।
0: नूपुर प्रसाद जॉइंट CP को आप सुन रहे थे। देखिए लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से, मेट्रो की तरफ से, रेलवे की तरफ से इन पाबंदियों का ऐलान किया गया है और सुविधाओं असुविधाओं के बारे में जानकारी भी दी गई है, लेकिन CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दिल्ली पुलिस की मनाही के बाद भी दिल्ली आने का ऐलान किया है। अभिजीत दिपके ने कहा कि मैं तो अरेस्ट होने के लिए जा रहा हूं, कर लो अरेस्ट। प्रदर्शन से पहले खुली चुनौती देते हुए कहा कि इस बार सरकार ने माहौल बनाया है, लेकिन वो जितने चाहे बैरिकेडिंग लगा ले, युवाओं को रोक नहीं पाएंगे। दिपके ने आंदोलन का जारी रखने का ऐलान भी किया है।
5: नहीं, हमारा तो आंदोलन होकर रहेगा, क्योंकि जंतर मंतर इज अ डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट, आर्टिकल 90 हमें प्रोटेस्ट का पूरा फंडामेंटल राइट देता है, तो परमिशन की क्या जरूरत है। 13 करोड़ वोट डिलीट करने से पहले क्या इन्होंने परमिशन ली थी जनता की? कल मैं बेंगलुरु से आ रहा हूँ, जहाँ पर जिंदा लोगों को डेट डिक्लेयर कर दिया था, उनके वोट काटे गए थे, वो लोग जिंदा है। क्या उनसे पूछा था आपने वोट काटने से पहले? और आप चाहते हो कि जो लोग इलेक्शन रिग कर रहे हैं उनके खिलाफ आंदोलन ना करें हम? ऐसे तो नहीं चल सकता। देश के लोकतंत्र बचाने के लिए, देश का लोकतंत्र बचाने के लिए,
0: यानी एक बार फिर से दिल्ली में आंदोलन प्रदर्शन का घमासान जारी रहेगा। लेकिन आइए आपको बड़ी स्क्रीन पर ले चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली में कल CJP के प्रोटेस्ट को लेकर क्या क्या पाबंदियां लगाई गई। आइए मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं कि इस समय क्या क्या पाबंदियां इस समय लगी हुई हैं और खासतौर पर यह भी कि इन पाबंदियों का असर आम लोगों पर कैसा पड़ने वाला। चलिए मैं सबसे पहले आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखा के समझाने की कोशिश करता हूं कि ये पाबंदियां कैसी रहने वाली और इन पाबंदियों के बाद ये पाबंदियों से लोगों को दिक्कत क्या होने वाली, क्योंकि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अगर आप देखें, रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद करने की तैयारी है। देखिए 57 गेट्स मेट्रो स्टेशन्स के बंद रहेंगे और ये इसलिए क्योंकि लोग लगातार मेट्रो के का इस्तेमाल कर ही प्रदर्शन की जगहों पर पहुंचेंगे। इसी वजह से DMRC की तरफ से, मेट्रो की तरफ से 57 मेट्रो स्टेशन के गेट बंद करने का ऐलान किया और ये आज रात 9 बजे से हो जाएगा। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन पहुंचने वाली 165 ट्रेनों में से 38 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। ये वो ट्रेनें थी जो सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक यहां पर पहुंचने वाली थी और इसी वजह से इन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, ताकि जो लोग यात्री उससे आएंगे उनको असुविधा ना हो। कल सुबह जिस तरीके से मैंने आपको बताया, 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक के बीच पहुंचने वाली ट्रेनों के सोर्स स्टेशन भी से रद्द उन्हें कर दिया गया, यानी सोर्स स्टेशन जहां से वो चलने वाली है वहीं से लगातार उनको रद्द कर दिया गया है। और इसके अलावा तमाम चीजें जो थी मैं आपको बता रहा हूं, एक एक करके दिखा रहा हूं। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, अब गाजीपुर, चिल्ला, टीकरी, सिंधु बॉर्डर, इसके अलावा गुरुग्राम, बदरपुर बॉर्डर पर भी निगरानी रहेगी। यहां पर भी लगातार पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। कई रिपोर्ट ऐसी आई है कि चिल्ला बॉर्डर के पास BSF की तैनाती भी की गई। अब दिल्ली पुलिस की योजनाओं में 37 नाकेबंदी पॉइंट्स है, यानी 37 पॉइंट्स वो है जो दिल्ली के आसपास के इलाके एंट्री और एग्जिट पॉइंट जिन्हें दिल्ली का माना जाता है उन्हीं सब के ऊपर सर्विलेंस के साथ साथ पहरेदारी ज्यादा मजबूत रखी जाएगी। दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती की जा रही है। होटलों, रेलवे स्टेशनों और दूसरे आने जाने वाले रास्तों पर भी जांच की जाएगी, यानी लगातार जो रेलवे स्टेशन पर लोग हैं वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, कहां से पहुंच रहे हैं, होटल्स हो, तमाम चीजों पर सर्विलेंस रखा जाएगा। कल खुदरा शराब यानी आप कह सकते हैं शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है ताकि कोई असामाजिक तत्व वहां पर भी कोई बड़ी वारदात ना करे, इसके लिए भी दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया। अब नई दिल्ली जिले में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है, प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, यानी नई दिल्ली के पूरे इलाके के अंदर कहीं पर भी लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते और ऐसे में दिल्ली पुलिस को प्रिवेंटिव एक्शन लेने पड़ेंगे, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है। 163 का मतलब ये होता है कि आप 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते और इसी वजह से लगातार ये बड़े कदम अभी से उठाने शुरू कर दिए। अब दिल्ली के जंतर मंतर पर कर होने वाले सीजेपी प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। गुरुग्राम दिल्ली से सटे और बॉर्डर इलाकों में रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर, मेट्रो स्टेशनों पर भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। NH-48 के सहरौल बॉर्डर पर, पालम विहार, द्वारका, कलियाबास बॉर्डर पर और नाकेबंदी और वाहनों की जांच और ज्यादा पुख्ता की जा रही। दिल्ली पुलिस के मुताबिक करीब 12 से 13 संदिग्ध उपद्रवियों की पहचान कर उन पर नजर भी रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी और लगातार इसके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन भी लिए जाएंगे।
6: दिल्ली में सीजेपी के प्रोटेस्ट के ऐलान के बाद से साइबर सिटी गुरुग्राम में भी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। मैं इस वक्त गुरुग्राम के MG Road मेट्रो स्टेशन पर हूँ जहाँ पे गुरुग्राम पुलिस की तैनाती है और आने जाने वाले युवाओं से पूछताछ भी की जा रही है। आप देख सकते हैं तमाम पुलिस के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है और एक चेतावनी भी चस्पा की गई है, जो कि चेतावनी आप साफ तौर से देखते हैं। आप थोड़ा सा साइड में हटिए प्लीज। आप सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि दिल्ली में प्रोटेस्ट से संबंधित किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, सभा या भीड़ एकत्रित करना प्रतिबंधित है। दिल्ली में धारा 163 BNS के तहत प्रतिबंधित आदेश लागू हैं। कृपया दिल्ली की ओर प्रोटेस्ट में शामिल न हो। लागू आदेशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। शांति को एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। किसी भी अपुष्ट सूचना या अफवाह पर विश्वास न करें। कृपया कानून का पालन करें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। इस तरह के जो बोर्ड चस्पा किए गए हैं वो न केवल मेट्रो स्टेशन पर किए गए हैं बल्कि गुड़गांव के रेलवे स्टेशन पर भी किए गए हैं। ऐसे ही बोर्ड गुड़गांव के बस अड्डे पर भी चस्पा किए गए हैं।
0: हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट आप दिल्ली और गुरुग्राम के बॉर्डर से देख रहे थे। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में कल होने वाले सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए नोएडा के चीला बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। बॉर्डर पर नोएडा पुलिस, दिल्ली पुलिस के साथ साथ BSF के जवानों को भी तैनात किया गया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दिल्ली आने जाने वाले संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है, साथ ही संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए बॉर्डर पर RCC के बैरिकेड्स भी लगाए गए। जानकारी के मुताबिक आज रात 9 बजे से ही चेला बॉर्डर पर निगरानी और सख्त कर दी जाएगी। पुलिस की कोशिश है कि प्रदर्शन के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनी रहे और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति में निपटा जा सके। फिलहाल बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए साथ साथ आने जाने वाले वाहनों को पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है, उनकी भी गहन जांच की जा रही है। और वहीं दिल्ली की मस्जिदों से भी एक्शन जारी है। ना सिर्फ पुलिस बल्कि मौलाना भी अनाउंस कर रहे हैं कि कल के प्रोटेस्ट में ना जाएं, इसकी मनाही की जा रही, इसलिए कोई भी जंतर मंतर ना जाए, ये लगातार अनाउंस मस्जिदों से किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि आप इस प्रदर्शन में शामिल ना हो।
7: इस ऐलान को गौर समाज फरमाए कि जो जंतर मंतर पर 8-9-10 तारीख को जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो इल्लीगल है, वहाँ पर कोई व्यक्ति ना जाए, इसलिए कि सरकार ने वहाँ पर धारा 163 लगाई हुई है। कृपया आप असरात प्रशासन का साथ दें, कोई वहां ना जाए।
8: किसी भी भड़काऊ संदेश या उकसावे में नहीं आए, जिम्मेदार नागरिक बने और कानून का पालन करें। अपने क्षेत्र की सुरक्षा में पुलिस और प्रशासन बच्चों को इस बारे में समझाएं कि इस तरह की अननेसेसरी भीड़ में या ऐसे कोई प्रोटेस्ट में किसी में हिस्सा ना लें।
9: पुलिस अफसर जो यहाँ के बीट अफसर है ना, वो आए थे शाम के 5 बजे और उन्होंने ऐलान किया था कि प्रोटेक्शन जो हो रहा है जंतर मंतर पे, उसमें आदमी को नहीं जाना चाहिए और नहीं अपने बच्चों को जाने देना चाहिए। जी हाँ, यही उन्होंने ऐलान किया था। बस बात पे अमल करना चाहिए हर आदमी को, बस इतनी सी बात।
10: आप लोग भी, क्योंकि जिस तरह से मस्जिद से ऐलान हुआ है, आप भी किस तरह से लोगों से अपील करना चाहेंगे इस चीज को?
9: सही है भाई, वहाँ भीड़ भाड़ बढ़ेगा, मामला और बिगड़ सकता है।
0: और ऐसा नहीं है सिर्फ दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में निगरानी रखी जा रही। दरअसल दिल्ली में 10 अक्टूबर को होने वाले सीजेपी के प्रदर्शन से पहले मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली जा रहे छात्र कार्यकर्ताओं को इटारसी में ट्रेन से उतारकर हिरासत में लिया गया। इसमें ऑल इंडियन स्टूडेंट फेडरेशन यानी आईएसएफ AISF की 14 महिला कार्यकर्ता भी शामिल थी जो पुणे से दिल्ली जा रही थी। हिरासत में ले जाने के बाद इन महिलाओं को रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में रखा गया और सीजेपी और छात्र संगठनों ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने दिल्ली जा रहे युवाओं को रास्ते में ही रोका जा रहा है। वहीं दिल्ली में प्रदर्शन के लिए पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी बात कही है। यानी कल के प्रदर्शन से पहले ही लगातार तैयारियां की जा रही है। चाक चौबंद कड़ी सुरक्षा की तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: आगे आगे, अरे उधर उधर गया। करेक्ट करेक्ट,
12: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है,
2: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
1: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायबिटीज जूस।
3: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
4: मेरे पास एक आइडिया।
3: क्या?
4: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
5: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
6: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
7: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
8: कौन सी बनानी है?
9: सर
10: गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
11: गड़बड़ है।
12: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
13: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
14: माँ के पैरों की धूल माथे पर ही है, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।

0: OIPC.
1: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
2: वक्त के साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले।
3: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड
4: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
5: एक परिवार अटूट भरोसा।
6: In association with
7: Signature Finest Cardamom Seeds,
8: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: Canara Bank, together we can.
10: Anmol Biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: मैं मायावती सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ।
4: मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ।
5: मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ।

0: वक्त के साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले।
1: जिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड
2: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
3: एक परिवार अटूट भरोसा।
4: सबसे ज्यादा विवादों के केंद्र में है 7 अक्टूबर का प्रदर्शन। उस दिन राजधानी में आकाशवाणी भवन के पास कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य विपक्षी दलों के नेता सड़कों पर उतरे थे। वो चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, SIR और ज्ञानेश कुमार को लेकर सवाल उठा रहे थे। उन्हीं प्रदर्शन के बीच से एक तस्वीर ये भी आई, कुछ प्रदर्शनकारी हेड कांस्टेबल भूपेंद्र और कांस्टेबल देवेंद्र को घेर कर मारपीट करते दिखे। आरोप है कि इन दोनों पर हमला करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता थे। देखिए कैसे इस वीडियो में एक प्रदर्शनकारी दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल को लात मारता हुआ देखा जा सकता है। आज तक से बातचीत में दोनों पुलिस कर्मियों ने बताया कि उन्हें प्रदर्शन कर रहे लोग जानबूझकर टारगेट कर रहे थे। हाल के प्रदर्शन के दौरान की एक और तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें नेहा बोरा नीतू नाम की एक महिला कांस्टेबल की वर्दी पकड़ी हुई। बताया जा रहा है कि नई दिल्ली इलाके में प्रोटेस्ट के दौरान ड्यूटी के लिए नीतू को तैनात किया गया था। आरोपों के मुताबिक तभी इस महिला कांस्टेबल पर हमला हुआ, जिसमें उसे गंभीर चोट आई। दिल्ली पुलिस कर्मियों पर हमले को लेकर उठे सवालों के बीच बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो जारी कर पार्टी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। बीजेपी का आरोप है कि राहुल ने महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी की है। हालांकि कांग्रेस की दलील है कि राहुल अपनी कार्यकर्ता को बचा रहे थे।
5: दूसरे एंगल से भी देखिए ना, नीचे एक महिला कार्यकर्ता के साथ किस तरह से बदसलूकी की जा रही है। अपने साथियों को बचाने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं।
4: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया। बीजेपी ने इस वीडियो को लेकर प्रियंका गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने महिला पुलिसकर्मी को कोहनी मारी, लेकिन सियासी वार पलटवार के बीच कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाए। 7 अक्टूबर को प्रदर्शन कर रही प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया था कि सांसदों पर हमला किया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी नेताओं के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा को धक्का मार गिराया।
6: वो मौजूद थे, प्रियंका गांधी जी के साथ क्या हुआ था, वो बड़े गंभीर आरोप।
7: मैं बता रहा हूँ कि पुलिस लोगों ने, महिला पुलिस नहीं, पुलिस ने उनको धक्के मारे। एक मैं पहचान करता हूँ, कोई IPS ऑफिसर थे, नहीं IPS नहीं थे, लेकिन कंधे पे छेर लगा हुआ है, आई थिंक कोई SP कैटेगरी के। उसके बाद उन्होंने धक्के मारे मैडम को, और उन्होंने धक्के मार के मैडम को गिराया।
4: 7 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन को लेकर भी दिल्ली पुलिस ने 3 अलग अलग FIR दर्ज की है। जानकारी के मुताबिक उन FIR में आरोपियों के कॉलम खाली हैं, लेकिन उसकी डिटेल्स में राहुल और प्रियंका गांधी के नाम शामिल हैं। अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।

0: नहीं पड़े
1: नहीं, नहीं, नहीं।
0: फ्लाइट में कम से कम सफर करें मेरे हिसाब से भाई, ट्रैवल एजेंट कोई गांजा फूंक के चला रहा है, कोई चाकू लेके घुस रहा है, क्या हो रहा है ये?
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं।
0: तुम्हारा
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं।
0: यार काट देना।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

कुछ नहीं कर सकते ठप, आम लोगों को ना हो दिक्कत, पूछा प्रदर्शन के लिए क्या कोई बड़ी जगह दी जा सकती है। आज रात से बंद हो सकते हैं दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशन, नई दिल्ली निजामुद्दीन तक आने वाली कई ट्रेनें भी रद्द, राजधानी को जोड़ने वाले हर रास्ते पर नाकेबंदी। इंडिया ब्लॉक के सांसदों से रात 8 बजे मिल सकती हैं राष्ट्रपति, पहले संसद के सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होंगे कांग्रेस के कई सहयोगी, तय होगी आगे की रणनीति।

0: पहले संसद से चुनाव आयोग तक मार्च। फिर जंतर मंतर और राजघाट तक मार्च। चुनाव आयोग पर संग्राम जारी, सियासी घमासान। इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन, किसकी बढ़ी टेंशन। चुनाव आयोग की लड़ाई राष्ट्रपति भवन तक आई। थोड़ी देर में विपक्षी नेताओं की मुलाकात, एजेंडे पर होगी बात। बीजेपी विपक्ष पर लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का आरोप लगा रही है, तो विपक्ष कई मोर्चों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। तो सियासत के गलियारों में बढ़ेगा घमासान या किसी फॉर्मूले से शांत होगा यह संग्राम।
1: और छोटे से ब्रेक के बाद रणभूमि में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष की लड़ाई राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई। विपक्षी नेता आज रात 8 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात से पहले इंडिया गठबंधन के सारे सांसद और बड़े नेता शाम 5 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में जुटेंगे। आपको बता दें कि 5 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में मीटिंग होगी, मुलाकात होगी, और उसके बाद कहा जा रहा है कि 8 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात भी होगी। और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर, लगातार एसआईआर को लेकर, कई अहम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता एक बार फिर से जुटेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल गौतम हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, एक बात बताइए, पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रहता है कि एकाएक लगातार इकट्ठा होते हैं नेता, फिर कहीं पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन आज राष्ट्रपति से 8 बजे मिलना है, तो 5 बजे ये मीटिंग रखी गई है। क्या इस दौरान कुछ बड़ा प्रदर्शन किया जा सकता है, क्या कुछ प्लानिंग की जा सकती है विपक्ष द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा?
2: देखिए, एक संभावना है सुमित कि जो तमाम जो सांसद हैं वो पार्लियामेंट से निकलकर विजय चौक की तरफ आएं और फिर राष्ट्रपति भवन की तरफ जाएं, लेकिन जाहिर है आप ये मान के चलिए क्योंकि जो अल्टीमेट लोकेशन है वो इस बार वो राष्ट्रपति का घर है, जो कि हेड ऑफ द स्टेट है, महिला है, तो इस बात का खासा ध्यान रखा जाएगा कि किसी प्रकार की कोई नारेबाजी ना हो उनके खिलाफ, या फिर किसी प्रकार जो पूरी तरह डेकोरम है वो मेंटेन रखा जाए। 10 लोगों का को मिलने की जो परमिशन है वो ऑलरेडी दी जा चुकी है राष्ट्रपति भवन के द्वारा। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जो कि दोनों लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनके साथ ही साथ ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, राजीव राय, अलग अलग जो बड़े बड़े नेता है इंडिया ब्लॉक के, वो तमाम लोग जाकर मिलेंगे राष्ट्रपति से और उनको एक ज्ञापन सौंपेंगे। उस ज्ञापन के अंदर जो मुख्य तौर पर जो ये मांगे रही है विपक्ष की कि किस प्रकार से ज्ञानेश कुमार को लेकर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसका ब्यौरा होगा। इसके अलावा जो एसआईआर की जो क्रिया चल रही है उसको रोकने की बात होगी, तो तमाम अपने जो ग्रीवांसेस हैं वो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को बताया जाएगा और उनका इंटरवेंशन की मांग की जाएगी कि आप इसमें हस्तक्षेप करिए। अब होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं जो मोमेंटम बना हुआ है पिछले 3 दिनों से, 4 रोजों से, हमने देखा कि किस प्रकार से विपक्ष सड़क पर है, लगातार वो तस्वीरें आती हैं जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम जो नेता है वो डिटेन होते हैं, कभी बैरिकेड पर चढ़ जाते हैं, तो एक हाई वोल्टेज प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसको मोमेंटम को बनाए रखने की कोशिश है।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है राहुल ये इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि देखिए सड़क की लड़ाई को कैसे आप एक सिस्टम की लड़ाई बनाए, यानी वो औपचारिकता शुरू की जाए जिसमें उनके इम्प्रीचमेंट या फिर उनको हटाने की मांग कांग्रेस पार्टी कर सकती है, और शायद यही वजह है कि अब वो सड़क की लड़ाई के साथ साथ वो इन कानूनी पहलुओं या फिर आप कह सकते हैं इन पहलुओं को भी देख रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा राहुल हमारे साथ, लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें कि चिराग पासवान की तरफ से इस पूरे प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है ये भी आपको सुनाते हैं।
3: भारत जैसे लोकतंत्र में प्रदर्शन की पूरी संभावनाएं हैं और आप जरूर करें प्रदर्शन, बट ऑल आई वांट टू नो एंड अंडरस्टैंड कि इसे प्रदर्शन करना ही अगर आपका मकसद है तब तो फिर आप करें, फिर तो आप आज भी करें, 10 दिन के बाद भी करेंगे, बट प्रदर्शन से समाधान नहीं निकलेगा, समाधान संवाद से निकलेगा। आपको अगर एक पॉइंट प्रूव करना, आपने डे 1 कर दिया था, बट बार बार दिल्ली की सड़कों को ऐसे जाम करना, दिल्ली के नागरिकों को इतना परेशान करना, ये किस हद तक जायज़ है? आप अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं, चुनाव आप नहीं जीत पा रहे उसके लिए आप आम नागरिकों को परेशान कर रहे हैं, मंथन आपको नहीं करना है उसके लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपको सही में अगर चिंताएं हैं आप जाइए चुनाव आयोग, एंड मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि सीईसी खुद वहां पे बैठेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए. बट दिस इज नॉट हाउ यू गो एंड वॉक इन टू एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. आप प्रदर्शन करते हुए नहीं जा सकते हैं.
1: हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल गौतम जुड़े हैं. राहुल, एक बात बताइए, कल राहुल गांधी जब जिक्र कर रहे थे, जब मीडिया से प्रदर्शन से पहले बात कर रहे थे, उन्होंने बताया था कि 300 से ज्यादा सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा के जो इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं. क्या वो 300 के 300 सांसद आज फिर से जुटेंगे? क्या कुछ और बड़े चेहरे भी हैं जो आज सेंट्रल हॉल में दिख सकते हैं? क्योंकि देखिए, हम बार बार बात कर रहे हैं कि देखिए विपक्ष तो इकट्ठा हो रहा है, उनके रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष के दूसरी पार्टियों के बड़े चेहरे, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो आप अखिलेश यादव हो, वो लगातार इन प्रदर्शनों से, आप कह सकते हैं इस मोर्चाबंदी से दूर नजर आ रहे हैं.
2: देखिए, ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुकी हैं और बताया जा रहा है कि वो भी मिलने के लिए जाएंगे जब राष्ट्रपति से समय क्योंकि मिल चुका है 8 बजे की उस औपचारिक बैठक के अंदर वो भी मौजूद रहेंगी. तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, कोशिश यही है कि वो तमाम जो चेहरे हैं, जो चिर परिचित चेहरे हैं या जिनकी आवाज़ दूर तक जाती है, वो तमाम लोग पहुंचे. और देखिए, 300 से ज़्यादा सांसदों की जो बात होती है, तकरीबन 240 के आसपास लोकसभा में सांसद हैं, इसके अलावा 60 से ज़्यादा सांसद हैं राज्यसभा के अंदर. उन तमाम लोगों को कॉल तो दिया गया है कि आप यहाँ पर पहुंचिए, लेकिन जाहिर है उसमें से कुछ लोग अपने अपने कामों के अंदर बिजी होंगे. तो जाहिर है 300 का आंकड़ा शायद ना हो, लेकिन कोशिश होगी कि एक बड़े नंबर के साथ वो यहाँ वहां पर जुटे और एक बड़ी फोटो अपॉर्चुनिटी या बड़ी विपक्षी एकता की जो तस्वीर है वो लोगों के सामने प्रस्तुत की जाए. और जब बाहर भी निकले, अगर ये फैसला भी किया जाता है कि हम राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे, तो भी कम से कम भीड़ नजर आए कि देखिए कि जो समूचा विपक्ष है वो ना सिर्फ एक है बल्कि सड़क पर भी एकजुटता दिखा रहा है. तो इन तमाम चीजों का ख्याल रखने की कोशिश बिल्कुल करेंगे जो विपक्ष के फ्लोर लीडर हैं. और देखिए, राजनीति के अंदर जो ऑप्टिक्स होते हैं वो बेहद जरूरी होते हैं सुमित. तो ऐसे में इन तमाम चीजों का ध्यान बिल्कुल रखा गया है कि बड़े बड़े नेता शामिल हों, दिखे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में, ना सिर्फ दिखे बल्कि ये मैसेज भी जाए कि देखिए जो भी इख्तिलाफ हो सकते हैं राज्य में, जो पोलिटिकल कंपल्शन है वो है जरूर, लेकिन इस मुद्दे पर तमाम लोग एक हैं. SIR का मुद्दा, CAC का मुद्दा, इस पर समूचा विपक्ष एक है. कोशिश बिल्कुल करी जाएगी कि ऐसा पोलिटिकल मैसेज दिया जाए कि देखिए हमारे अपने अपने इख्तिलाफ हो सकते हैं, अपने अपने डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन कम से कम इस मुद्दे पर समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा है.
1: और शायद राहुल ये भी कोशिश की जाएगी, कंसोलिडेट दिखाया जाए विपक्ष को, और ये दिखाया जाए, मैसेज देशभर में दिया जाए कि देखिए विपक्ष इन मुद्दों के ऊपर एकजुट है. ये तमाम बातें जो कही जा रही है, ये एक तरीके से आप इसको दरकिनार किया जाए. लेकिन आप हमारे साथ बने रही राहुल, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान कल जब कश्मीरी युवक फहीम की पिटाई के खिलाफ श्रीनगर में कश्मीरी युवाओं ने प्रदर्शन किया. दिल्ली में फहीम नजीर की साथ हुई कथित मारपीट और बदसलूकी के खिलाफ युवाओं ने विरोध जताया. प्रदर्शनकारियों ने इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है. दरअसल कल दिल्ली के कनॉट प्लेस में कश्मीरी युवक फहीम नाजिर की के साथ मारपीट का मामला सामने आया था. फहीम की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने FIR भी दर्ज की है. फहीम ने अपनी शिकायत में राहुल गांधी का नाम भी दिया था, लेकिन पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के नाम में से मामला दर्ज किया. इस घटना को लेकर श्रीनगर में भी नाराजगी है. तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए. देखिए, दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं. श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और कल दिल्ली में इस कश्मीरी युवक की पिटाई की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जब इसको किस तरीके से इस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, इस पर इसकी पिटाई करनी शुरू कर दी, जिसके बाद इस मामले के ऊपर FIR भी दर्ज की गई. हालांकि दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के नाम से यह FIR दर्ज की है. देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज राष्ट्रपति से मुलाकात होगी, लेकिन कल के प्रदर्शन को लेकर भी दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की एक बड़ी मीटिंग चल रही है. कहा जा रहा है कि एक मैराथन मीटिंग या फिर एक लंबी मीटिंग CJP के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी कर रहे हैं. कल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, बैरिकेडिंग और इन तमाम चीजों को लेकर समीक्षा की जा रही है. आपको याद होगा, इससे पहले जब हुआ था तब दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल भी खड़े हुए थे कि आखिरकार जब ये पहले से इनपुट था तो फिर इन मामलों पर कदम पहले से क्यों नहीं उठाए गए. और 10 अक्टूबर के यानी कल के इस प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसर फिर से बैठक कर रहे हैं. इससे पहले आज सुबह एक दिल्ली पुलिस की जॉइंट CP की तरफ से लगातार इसको लेकर एक ब्रीफिंग दी गई. बताया गया कि हमने CJP को इस मामले पर या फिर इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है, लेकिन अब उसके बाद जब CJP की तरफ से कहा गया उसके बाद दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की एक और बड़ी मीटिंग चल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु का रुख करते हैं, हिमांशु ये मीटिंग कितनी देर से चल रही है और कौन कौन से अधिकारी इस मीटिंग में शामिल और इसमें क्या समीक्षा की जा रही है कल के नतीजों कल के आप कह सकते हैं कि व्यवस्थाओं को लेकर?
4: बिल्कुल, देखिए जो सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं, जो अब तक व्यवस्था की गई है उसको ले
1: जी मानशु का कनेक्टिविटी हमसे कट गई है। मैं आपको बता दें कि लगातार हमारे सहयोगी बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस की एक बड़ी मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग के अंदर आला अधिकारी मौजूद है। सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से ये मीटिंग चल रही है जिसमें कल की व्यवस्थाओं को लेकर कल की तैयारियों को लेकर समीक्षा की जा रही है। इसमें दिल्ली पुलिस के कई आला अधिकारी मौजूद हैं और इससे पहले भी आपको बताया कि दिल्ली पुलिस ने कई ऐसे पॉइंट्स को चिन्हित किया था। 37 से ऐसे ज्यादा पॉइंट हैं जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं जिन पर नाकेबंदी की जा रही है, जिन पर सर्विलेंस की जा रही है, जहां पर पैरामिलिट्री की फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के आप कह सकते हैं दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसर और उनके जो सैनिक हैं उनकी तैनाती भी की जाएगी। हमारे साथ एक बार फिर से हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु का रुख करते हैं, हिमांशु प्लीज कंटिन्यू।
4: हाँ देखिए, तो पुलिस ने अब तक जो भी व्यवस्था की है, आप देखिए मैं इस वक्त पुलिस मुख्यालय में मौजूद हूँ और यहाँ पे चंद कदमों की दूरी पर सुमित जंतर मंतर है। तो इस पूरे एरिया से अगर हम कहें तो तकरीबन 8 किलोमीटर का जो पूरा रेडियस है तो पुलिस ने पूरी तरीके से सुरक्षित करने की तमाम जो तैयारियां है वो पूरी की है और करीबन 5,000 से 6,000 फोर्स इस इलाके में तैनात होगी क्योंकि सामने पुलिस हेडक्वार्टर है, ठीक सामने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस है, तो इसलिए ये जगह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और इसको सिक्योर करना पुलिस के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि यहाँ से आग पास के तमाम जो मेट्रो स्टेशन थे उनको बंद किया गया था, यहाँ तक पहुंचने के जो भी रास्ते हैं उन तमाम रास्तों पर बैरिकेड किया गया है और एक सिस्टम बनाया गया है कि एक साथ एक जगह ज्यादा लोग इकट्ठा न होने पाए, यानी अगर कोई आता भी है तो एक जगह पर एक साथ बड़ी संख्या न हो और अगर टुकड़ों में लोग आते हैं तो उनको तुरंत डिस्पर्स करके उनको जो बसे हैं एक बार हमने देखा
1: था। अगर देखिए जी जी बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु हमारे सहयोगी, देखिए आपका फ्रेम एक बार फिर से फ्रीज हो गया लेकिन आपका दोबारा से रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद ओझा का अरविंद देखिए हिमांशु जिस तरीके से बता रहे थे कि देखिए एक बड़ी मीटिंग

पुर था तो फिर व्यवस्थाएं या फिर ये सारी चीजें पहले से मुस्तैद क्यों नहीं की गई, क्या उसको लेकर भी तैयारियां ज्यादा की जा रही हैं इस बार? और देखिए हमारे दोनों सहयोग अगर रुख दोबारा से करेंगे इस तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

लड़ाई SIR पर शुरू हुई, हल्ला बोल चुनाव आयुक्त के खिलाफ था, नाराजगी मुख्य चुनाव आयुक्त से था और अब तक प्रदर्शन का वो दौर नॉनस्टॉप जारी है। विपक्ष एकजुट होकर दिल्ली की सड़कों पर चुनाव आयोग को घेर रहा है, सरकार पर सवाल उठा रहा है, लेकिन अब सियासत का मुद्दा उस प्रदर्शन के बीच से आई कुछ तस्वीरें हैं। ऐसी तस्वीरें जिसे देखकर बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है, पूछ रही है कि आखिर ऐसा अराजक माहौल क्यों बनाया जा रहा है। विपक्ष के अक्टूबर आंदोलन से आई ये तस्वीरें पहले देखिए, जिसमें पुलिस वालों पर हमला किया जा रहा है, उनसे हाथापाई की जा रही है। दूसरी तस्वीर ये देखिए, कैसे एक कांस्टेबल पर हमला करके उसे जख्मी किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर भी पुलिस पर हमले के आरोप लगे हैं। ये 7 अक्टूबर की तस्वीर है। ऐसा अध्यक्ष नेहा बोरा की भी एक तस्वीर वायरल है, जिसका हवाला देकर उन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने के कई मामलों में भी FIR के जरिए शिकंजा कसा है। दिल्ली में बीते दिनों हुए प्रदर्शन के दौरान की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं और विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है। ऐसे ही कई मामलों को लेकर पुलिस ने अब अपना एक्शन प्लान बनाया है। इस कड़ी में पुलिस की सख्ती बढ़ी है। दिल्ली पुलिस ने 2 अक्टूबर से अब तक 25 FIR दर्ज की है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने ये वीडियो भी जारी किया है। पुलिस के मुताबिक ये सभी वीडियो दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान की है, जिसमें प्रदर्शनकारियों के ऐसे बर्ताव के बाद भी पुलिस वाले अपनी ड्यूटी की गुहाई दे रहे हैं। ऐसे तमाम मामलों को लेकर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। आपको बताते हैं कि आखिर वो FIR किन किन मामलों से जुड़ी है। एक FIR है आकाशवाणी केंद्र में प्रदर्शन को लेकर राहुल प्रियंका समेत अन्य कार्यकर्ताओं पर। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अंकित पर हमला मामले में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ है। तीसरा मामला 7 अक्टूबर को 2 पुलिस वालों पर हमला से जुड़ा है। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने और हमले के आरोप में FIR दर्ज की है। इसके साथ धारा 163 के उल्लंघन के आरोप में भी FIR दर्ज हुई है। ऐसे अलग अलग मामलों में अब तक दिल्ली पुलिस की फाइल में 25 FIR दर्ज हो चुकी है। दिल्ली पुलिस कह रही है कि जानबूझकर महिला कांस्टेबल को टारगेट किया जा रहा है। पुलिस को आशंका है कि युवाओं को उकसाया जा रहा है, उन्हें हमले के लिए भड़काया जा रहा है। विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन में पुलिस वालों से मारपीट के आरोपों को लेकर सवाल उठे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने भी दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।

0: एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: आ गया सोमवार और आ गए
5: चकमक चाचा।
4: एक कचौड़ी, दो समोसा, चकमक तेरा क्या भरोसा।
6: चकमक चाचा से सीधे चकमक है।
4: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रही, बुझ रहा ना।
6: लेकिन भैया नारा, अरे फालतू में सब बेकार, एकदम बेकार। अरे होते थे हमारे टाइम।
4: अच्छा
6: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
4: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी, इन नेताओं की खत्म कहानी।
6: अरे जमीन की चकबंदी में, जमीन की चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में।
4: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
6: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
4: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा दे के जाएंगे।
6: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
4: अरे लाल फूल, नीला फूल, जंजी नन्हे ब्यूटीफुल।
6: अरे बारी बारी, सबकी बारी, अब की बारी, अटल बिहारी।
4: चाय गरम, दूध गरम, चकमक चाचा भी शर्म
6: है।
4: हाँ।
6: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
4: अरे मेरे सिर में दर्द है जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
7: हम जैसे, इधर आओ।
8: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
4: आई चाचा।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक।

0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दो दिन सड़कों पर संग्राम के बाद राहुल गांधी ने कल राजघाट का रुख कर लिया। तस्वीरें देखिए, बापू की समाधि की परिक्रमा करती प्रियंका गांधी वाड्रा और सामने बापू को श्रद्धांजलि देते राहुल गांधी। करीब दो घंटे तक राहुल, प्रियंका, खड़गे और इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद राजघाट पर ध्यान मुद्रा में बैठे रहे। राहुल गांधी के मुताबिक दिल्ली में सरकार विपक्ष को धरना प्रदर्शन करने नहीं दे रही है।
1: राज्यसभा और लोकसभा के 300 MPs पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। दो दिन से हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है, हमारे लोगों को मारा। रियलिटी ये है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी करके हिंदुस्तान को हाईजैक किया है।
0: ये लगातार तीसरा दिन था जब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ सड़कों पर उतरे थे। 6 अक्टूबर को राहुल और प्रियंका ने 8 घंटे आकाशवाणी भवन में धरना दिया, फिर पुलिस ने हिरासत में लेकर उन्हें उठाया। 7 अक्टूबर राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने जनपथ पर लंच कर जंतर मंतर पर प्रदर्शन का प्लान बनाया। पुलिस ने रास्ते में बस रोकी तो राहुल और प्रियंका ने सड़क पर ही धरना दे दिया। पुलिस ने फिर राहुल और प्रियंका को हिरासत में लेकर धरने से उठाया। 8 अक्टूबर जब राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के सांसद ने पहले कनॉट प्लेस पर खाना खाया और फिर राजघाट पर गांधीगिरी दिखाई। कल के राजघाट वाले धरने में शिवसेना UBT और NCP शरद पवार गुट का कोई भी नुमाइंदा नहीं था, लेकिन TMC ममता गुट के सांसद राहुल के साथ मौजूद थे।
2: महात्मा गांधी हैज ऑलवेज स्पोकन अबाउट सत्याग्रह। सत्याग्रह टीचेस अस टू थिंग्स, दैट इफ यू हैव टू फॉलो दैट पाथ यू हैव टू शेड टू फियर्स इन लाइफ। वन इज द फियर ऑफ गोइंग टू प्रिजन, टू इज द फियर ऑफ डाइंग। सो इफ वी हैव टू टेक दैट पाथ ऑफ सत्याग्रह, एवरी पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट दिस टू फियर्स नीड्स टू बी शेड। BJP can only bully you by showing their might with regard to the agencies and all the institutions they have successfully homogenized.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: दिल्ली के किलेबंदी पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत सब कुछ नहीं कर सकते ठप, आम लोगों को ना हो दिक्कत, पूछा प्रदर्शन के लिए क्या कोई बड़ी जगह दी जा सकती है। आज रात से बंद हो सकते हैं दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशन। नई दिल्ली और निजामुद्दीन तक आने वाली कई ट्रेनें भी रद्द, राजधानी को जोड़ने वाले हर रास्ते पर नाकेबंदी। इंडिया ब्लॉक के सांसदों से रात 8 बजे मिल सकती है राष्ट्रपति, पहले संसद के सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होंगे कांग्रेस के कई सहयोगी, तय होगी रणनीति। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर निर्विरोध नतीजे, बीजेपी के 8 और एसपी के 2 प्रत्याशी निर्वाचित, 2 निर्दलीय उम्मीदवारों का नामांकन रद्द होने के बाद स्थिति साफ। फिर टूटा ट्रंप का नोबेल पुरस्कार मिलने का सपना, भारतीय मूल की नावी पिल्लई को मिला शांति का नोबेल, अंतर्राष्ट्रीय कानून और शांति को बढ़ावा देने के लिए सम्मान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है और आज का दंगल हम दिल्ली और देश में होने वाले सबसे बड़े प्रदर्शन को लेकर करेंगे। एक तरफ सीजेपी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस्तीफे को लेकर आंदोलन करना तय कर लिया है, जंतर मंतर पर आंदोलन करने की उनकी तैयारी है, तो दूसरी तरफ सरकार ने तय किया है कि किसी भी हालत में यह आंदोलन नहीं होने देंगे। दिल्ली की पूरी तरीके से नाकाबंदी कर दी गई है, 57 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की तैयारी की जा रही है, कई रास्ते बंद किए जा रहे हैं, यहां तक कि बाहर से आने वाली ट्रेन भी बंद करने की तैयारी की जा रही है। उधर सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले को लेकर याचिका दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा कि क्या कोई बड़ी जगह आंदोलन के लिए दी जा सकती है क्या, लेकिन सीजेपी के कार्यकर्ता रोके जा रहे हैं। दिल्ली में शराब की दुकानें बंद की गई है, 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी दिल्ली में तैनात किए गए हैं, फेशियल रिकॉग्निशन वाले सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, पुलिस ने प्रदर्शन को अवैध करार देकर नौजवानों को उससे दूर रहने के लिए कहा गया है, मस्जिदों तक पुलिस ने अपील की है, लेकिन सीजेपी का कहना है कि प्रदर्शन तो वो करके रहेंगे। इस बीच अब से थोड़ी ही देर में कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन के नेता संसद के सेंट्रल हॉल में मिलेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने की गुजारिश की थी और उसके बाद रात को 8 बजे राष्ट्रपति के पास जाने वाली शिकायत की रूपरेखा भी उसमें तैयार की जाएगी और उसके बाद रायसेना हिल का मार्च भी किया जाएगा, ये भी माना जा रहा है। एसआईआर के विरोध के रास्ते यहां पर दिल्ली की सड़कों पर एक तरीके से अटक गए हैं। कांग्रेस जनता पार्टी कह रही है कि दरअसल संविधान का यह अपमान है, उनका यह संवैधानिक अधिकार है कि वो इस मांग को लेकर प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि इससे कानून व्यवस्था की सवाल खड़े हो सकते हैं और इसीलिए इस आंदोलन को ना हो, इसके लिए दिल्ली की एक तरीके से नाकाबंदी की गई है। तो क्या यह आंदोलन संविधान सम्मत है? क्या इस आंदोलन के जरिए एक बार फिर दिल्ली में वही माहौल देखने मिलेगा जो जंतर मंतर के आंदोलन के वक्त देखने यहां पर मिला था? इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। आगे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि विपक्षी सांसद राष्ट्रपति से मिलकर आखिरकार क्या उनके सामने अपनी भूमिका रखेंगे। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे, हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इससे जुड़ी यह रिपोर्ट देख लेते हैं।

0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष के आंदोलन की दो तस्वीरें हैं। एक तरफ विपक्षी सांसद राष्ट्रपति से शिकायत करने वाले हैं, दूसरी ओर कांग्रेस जनता पार्टी दिल्ली में प्रदर्शन के लिए तैयार है। जुलाई में दूध की जली पुलिस अक्टूबर में छाछ फूंक कर पी रही है। दिल्ली पुलिस बार बार कह रही है कि 10 अक्टूबर वाले इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है। कारण तीन गिनाए हैं। पहली ये कि परमिशन 10 दिन पहले मांगनी होती है, जबकि सीजेपी ने 7 अक्टूबर को सिर्फ इंटीमेशन यानी सूचना दी है। दूसरी वजह ये है कि पिछली बार परमिशन लेकर सीजेपी ने वादा खिलाफी की, और तीसरी ये कि मौजूदा लॉ एंड ऑर्डर के हालात को देखते हुए परमिशन नहीं दी गई है।
1: 7 तारीख को कांग्रेस जनता पार्टी ने एक परमिशन एप्लीकेशन दी थी इंटीमेशन करके, जिसमें यह बताया गया कि वो सीईसी की अकाउंटेबिलिटी के रिगार्डिंग 10 तारीख को जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन जो इंटीमेशन की है उस पर गौर किया गया और ये पाया गया कि ये एप्लीकेशन एस्टैब्लिश्ड जो गाइडलाइन है उसके तहत हमारे पास नहीं आई है, बहुत ही कम समय में आई है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने उनका जो प्रीवियस कंडक्ट था, उन्होंने जो हमारे लॉफुल डायरेक्शंस को नहीं फॉलो किया या उनकी जो अंडरटेकिंग दी गई थी उनके द्वारा उसको भी नहीं कंप्लाई किया, और प्रेजेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और पब्लिक सेफ्टी के मद्देनजर इस एप्लीकेशन जो थी उसको रिजेक्ट किया जाता है।
2: ज्ञानेश कुमार ने परमिशन लिया था 13 करोड़ वोट डिलीट करने से पहले ज्ञानेश कुमार ने परमिशन लिया था।
0: मतलब सीजेपी प्रदर्शन करेगी चाहे वो वैध हो या अवैध, तो उसी हिसाब से दिल्ली पुलिस ने भी दुरुस्त तैयारी की है। जंतर मंतर के आसपास जबरदस्त सुरक्षा है, कई स्तर की बैरिकेडिंग है, संसद मार्ग को भी किले में तब्दील कर दिया गया है, वज्र वाहन तैनात है, दंगा विरोधी वाहन खड़े हैं, 300 नए सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जगह जगह माइक लगाई गई है, 57 मेट्रो स्टेशन बंद है, दिल्ली निजामुद्दीन की 165 में 38 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। पुरानी दिल्ली से लेकर हर्ष विहार की मस्जिद तक पुलिस मस्जिदों में भी अनाउंसमेंट करा रही है।
3: वहाँ पर कोई व्यक्ति न जाए, इसलिए कि सरकार ने वहाँ पर धारा 173 लगाई हुई है। कृपया आप प्रशासन का साथ दें, कोई वहाँ न जाए।
4: हमने मस्जिदों में ये रिक्वेस्ट किया है, वो आगाह करे लोगों को, प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है।
0: वैसे बिना मंजूरी प्रदर्शन के दौरान हुई अवैध हरकतों और हिंसा की घटनाओं को लेकर 8 दिन के अंदर 25 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस कभी वीडियो जारी करके प्रदर्शन में पुलिस वालों पर हो रही हिंसा की तस्वीरें दिखा रही है, तो कभी खुली चिट्ठी लिखकर वर्दी के पीछे इंसान, परिवार और कर्तव्य जिम्मेदारी की बातें कह रही है। प्रदर्शनकारी देश के दूसरे हिस्सों से दिल्ली ना पहुंच पाए, इसके लिए जगह जगह सीजेपी कार्यकर्ता धरे पकड़े गए हैं। अलवर में पुलिस ने सीजेपी नेता को रोका, तो महाराष्ट्र से दिल्ली जा रहे सीजेपी के 15 कार्यकर्ता इटारसी में उतारे गए। दिल्ली जा रहे सीजेपी कार्यकर्ताओं को बताया गया कि दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। दिल्ली में सीजेपी के अवैध प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस की तैयारी तो है ही, कई निषेधात्मक कदम उठाए गए हैं, जिसके खिलाफ वकीलों की फौज सबसे बड़ी अदालत में खड़ी है। चीफ जस्टिस की बेंच में कपिल सिब्बल ने कहा कि दिल्ली में ट्रेनें रद्द, मेट्रो बंद, होटल बंद हैं। प्रशांत भूषण ने कहा पूरी दिल्ली बंद कर दी है। गोपाल शंकर नारायणन ने कहा कि 57 मेट्रो स्टेशन भी बंद किए हैं। सीजीआई ने कहा कि सुबह तो कुछ ऐसा नहीं था। जस्टिस बागची ने कहा कि प्रदर्शन का हक है, लेकिन कानून के हिसाब से इजाजत मांगिए, नहीं देते हैं तो कोर्ट आइए। गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि इसमें समय लगेगा, कल प्रोटेस्ट है। अदालत ने आयोजकों को बुलाया, सिब्बल आयोजकों को नहीं ला सके। अदालत में पुलिस प्रशासन ने एहतियाती कदमों को लेकर भी चर्चा की, और सरकार ने आनुपातिक तैयारियों का वादा किया, और कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की बात कही। एहतियातन दिल्ली पुलिस अब भी दिल्ली में आने जाने वालों पर नजर रख रही है। दिल्ली के बॉर्डर पर वाहनों की तलाशी शुरू हो चुकी है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
5: तो दिल्ली में एक बार फिर बड़ा प्रदर्शन क्या होगा, और ये प्रदर्शन नहीं हो इसके लिए क्या सरकार पुरजोर कोशिश करेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लोगों की परेशानी ना हो, पूरी तरीके से मेट्रो ना हो बंद, इसकी पूरी तैयारी सरकार को करनी चाहिए। ये भी सरकार को उन्होंने कहने की कोशिश की है कि बाहर से आने वाली गाड़ियां भी पूरी तरीके से रद्द ना की जाए, और सड़कों पर भी आवाजाही रहनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद 57 मेट्रो स्टेशन क्या दिल्ली में बंद होंगे? क्या इसी तरीके से यह आंदोलन नहीं होने दिया जाएगा? तमाम सवाल है, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, सुधीर सांगवान कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में रहेंगे, अग्नि बंसल कांग्रेस की तरफ से चर्चा में आ रही है। आखिरकार विपक्षी पार्टियों को राष्ट्रपति ने वक्त दिया है रात को 8 बजे का, उनके सामने जाकर वो अपनी भूमिका रख सकते हैं। अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी से और धीरेन्द्र कुमार लोक जनशक्ति पार्टी से भी चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवाल इस पैनल के सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला सवाल, क्या दिल्ली में बिना पुलिस परमिशन या बिना पुलिस इजाजत जो सीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है, क्या वो जायज है? क्योंकि उसे पुलिस गैर कानूनी ठहरा रही है, क्या ये प्रदर्शन करना जायज है? दूसरा सवाल, क्या दिल्ली में बड़े पैमाने पर मेट्रो रोड बंद करना आम लोगों पर ज्यादती है? क्योंकि मानो सरकार ने पूरी घेराबंदी कर दी है, बीएसएफ की टुकड़ियां लगा दी गई है, सीएपीएफ वहां पर तैनात की कर दी है, सारी सड़कें बंद कर दी गई है, 57 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं और बाहर से आने वाली गाड़ियां भी बंद कर दी गई है, क्या ये जायज है? लोगों पर ज्यादती तो नहीं है? और तीसरा सवाल, क्या राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद विपक्ष का सीईसी विरोधी प्रदर्शन थम जाएगा? राष्ट्रपति से मुलाकात की मांग की है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, क्या ये जरूरी था? कॉकरोच राहुल गौतम भी हमारे साथ में, सबसे पहले उनसे ही पूछेंगे। राहुल, 8 बजे का समय दिया गया है और क्या मेमोरेंडम रखा जाएगा, उसकी कोई बातचीत हो रही है क्या, या आखिरकार ये इस मीटिंग में तय होगा या सेंट्रल हॉल में इस मीटिंग के बाद, जैसे आमतौर पर हम लोग पिछले 2 दिन से देख रहे हैं, वहां से निकलकर चलते हुए राइजिंग हिल की तरफ जाया जाएगा? क्या हो क्या रहा है सेंट्रल हॉल में?
6: देखिए, सेंट्रल हॉल के अंदर तमाम जो सांसद हैं विपक्षी दलों के वो जुटना शुरू हो गए हैं। जाहिर है इसमें दोनों एलओपी भी मौजूद रहेंगे, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे। 10 लोगों को अलाउ किया गया है जो कि जाकर 8 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से जाकर मिलेंगे, उनको एक ज्ञापन सौंपेंगे ऐसा बताया जा रहा है। और साथ ही साथ उसमें मुख्य तौर पर जो अपनी ग्रीवांसिस हैं, यानी जो जिस प्रकार की कथित गड़बड़ियां की बात लगातार विपक्ष रख रहा है, उन तमाम चीज़ों को रखकर वो इन्फॉर्म करेंगे प्रेसिडेंट को। इसके अलावा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसको इमीडिएटली सस्पेंशन किया जाए, इसको लेकर भी अपनी बात रखेंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से 13 करोड़ लोगों को जो डिलीट कर दिया गया है, उनको भी वापस रिवोक किया जाए, उनको वापस सूची में डाला जाए, इन तमाम चीजों को लेकर यह डेलीगेशन मुलाकात करेगा। मार्च की जहां तक बात है, अभी तक उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन कोशिश होगी कि कुछ विजुअल मिले अपने सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि पिछले 3-4 रोजों से आप देख रहे हैं एक मोमेंटम किया हुआ है विपक्ष ने, कम से कम उनको तो वैसा ही लगता है। उस विपक्ष को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, बनाए रखने के लिए वो कोशिश करेंगे कि समूची विपक्षी एकता
5: प्रतिक्रिया जमीन पर दिखाई दे। सेंट्रल हॉल में क्या विपक्ष का मन किस तरीके से बन रहा है, जिस तरीके से दिल्ली को पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया है, उन्होंने भी देखा कि उनको जंतर मंतर जाने नहीं दिया गया था, लेकिन आज की स्थिति में मेट्रो स्टेशन बंद हो गए हैं, बाहर से रेलवे आना बंद करवा दिया है, बाकी सारी जो चीजें ठप पड़ी हुई है, उस बात को लेकर भी विपक्षी पार्टियां क्या कह रही है, क्या इसमें सरकार पर कुछ दबाव बनाने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी?
6: देखिए, विपक्ष तो साफ तौर पर यह कह रहा है कि आप हमको जाने अगर देते उस दिन चुनाव आयोग के दफ्तर तक, तो ये नौबत नहीं आती कि आपको पूरी दिल्ली को दिल्ली के दरवाजे बंद करने पड़ते, ऐसा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। और जाहिर है उनका साफ तौर पर यह आरोप है। देखिए, कल तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर नहीं होगी क्योंकि राहुल गांधी छात्रों की गूंज के लिए चेन्नई जाएंगे, लेकिन 12 तारीख को साहिल बताया जा रहा है कि बड़ा प्रदर्शन होगा, यानी 12 तारीख को अगर किसी प्रकार से कल सीजेपी दिल्ली के अंदर धरना स्थल अपना बना लेता है, अपना कोई स्पॉट बना लेता है, तो 12 तारीख को आप ये कह सकते हैं पुख्ता तौर पर कि 2 एपिसेंटर होंगे। एक एपिसेंटर तो होगा सीजेपी का, जिसको आप कह सकते हैं कि नॉन पॉलिटिकल फ्रंट जहां पर मौजूद होंगे, और एक होगा इंडिया ब्लॉक का, जिसमें तमाम जो इंडिया ब्लॉक
5: के बहरहाल पिछली बार भी हमने देखा बैठी आपको कि नजर दो सेंटर बन गए थे, एक जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था, दूसरा मोर्चा राहुल गांधी ने खोल दिया था, प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाके उन्होंने प्रदर्शन किया था, बड़ा मार्च उन्होंने निकालने की बात की थी, तो 2 फ्रंट तो उस वक्त भी खोले गए थे, हालांकि अब तक परमिशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई बड़ी जगह दी जा सकती है, क्या दी जाएगी नहीं दी जाएगी, उन सारे सवालों पर बातचीत होगी। प्रेम शुक्ला जी, आखिरकार पूरी दिल्ली ठप करने के बाद ही आंदोलन रोका जा सकता है क्या, या सुप्रीम कोर्ट जो पूछ रहा है कोई बड़ी जगह दे दीजिएगा, वो वहां पर जाकर आंदोलन करेंगे? आखिरकार वो मांग क्या रहे कि हमें एक जगह दीजिए, हम आंदोलन करना चाहते हैं, कोई गलत है इसमें?
7: पहले इजाजत जो है उन्होंने मांगनी थी, पहले उन्होंने जो है जो फॉर्मेट है उसमें जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, जैसा जो है पुलिस अधिकारियों ने बताया उस फॉर्मेट के तहत प्रदर्शन करने की इजाजत मांगनी चाहिए, तो फॉर्मेट के तहत इजाजत ही नहीं मांग रहे हैं वो, और जो है 10 दिन पहले इजाजत मांगनी चाहिए, 3 दिन पहले सूचना दे रहे हैं। तो साफ तौर पर यह बताता है कि एक प्रदर्शन के नाम पर अवैध जमाव करने का एक कार्यक्रम कुछ लोगों ने कर रखा है। तो संवैधानिक व्यवस्था यही है कि कानून एवं प्रशासन की स्थिति को बहाल रखने के लिए जो विधिक एजेंसियां हैं वो कानूनी कार्रवाई करेंगी, तो कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब इस कानूनी कार्रवाई पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा है कि अगर आपको इजाजत नहीं मिलती तो आप कोर्ट आइए, कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, तो फिर आप कोर्ट में सोमवार को सुनवाई तो सोमवार पर कोर्ट में जाइए ना, फिर आप अवैध प्रदर्शन करने के लिए आमादा क्यों है? तो जो लोग अवैध प्रदर्शन पर आमादा है वो संविधान में आस्था नहीं रखते, ये स्पष्ट है, वो भारत की कानून व्यवस्था को नहीं मानते, स्पष्ट है, वो अराजकता फैलाना चाहते हैं, स्पष्ट है। तो साफ तौर पर सर्वोच्च न्यायालय की आज की सुनवाई से भी संकेत तो यही जा रहा है।
5: नहीं तो इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि अगर वो आपने क्या एप्लीकेशन का फॉर्मेट बताया, उस एप्लीकेशन के फॉर्मेट में एप्लीकेशन करेंगे तो आपकी सरकार तुरंत मान जाएगी और उन्हें कह देगी कि ठीक है आप जंतर मंतर जाके आंदोलन कर सकते हैं, मतलब तब तो कोई दिक्कत नहीं।
7: प्रशासन उसका इवैल्यूएशन करेगा,
5: 10 दिन
7: प्रशासन मूल्यांकन करेगा, प्रशासन मूल्यांकन करेगा,
5: इवैल्यूएशन करेगा,
7: प्रशासन समुचित मूल्यांकन करने के बाद निर्णय लेगा।
5: ठीक है,
7: ये प्रशासन का अपना अधिकार,
5: आप अवैध काम क्यों कर रहे हैं? देखिए वो कह रहे हैं कि अगर आप बाकायदा एप्लीकेशन करिए, 10 दिन पहले जाके आप एप्लीकेशन दीजिएगा और उसके बाद ही आप प्रदर्शन करिएगा, इस तरीके से अगर आप उतरेंगे तो वो अवैध होगा, असंवैधानिक होगा, और असंवैधानिक होगा तो दिल्ली बंद कर दिया जाएगा, प्रदर्शन से नहीं तो सरकार ही बंद कर देगी, मतलब मेट्रो बंद कर दिया जाएगा, रोड्स बंद कर दिए जाएंगे, वहां पर किसी को बाहर से आने नहीं दिया जाएगा और पूरी तरीके से छावनी बना दी जाएगी। तो आप बाकायदा 10 दिन रुकिए, एप्लीकेशन करिए, अगर आपको सहूलियत मिलती है, ओके किया जाता है, तभी प्रदर्शन करिएगा, क्या दिक्कत है आपको?
8: साहिल भाई, प्रेम जी सरासर झूठ बोल रहे हैं और मैं आपको बता देता हूं कैसे झूठ बोल रहे हैं। सिविल सोसाइटी के लोगों ने 2 तारीख को एप्लीकेशन दी, क्या सुनवाई हुई है मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता। दूसरी बात, हम बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास है, अभी अभी जंतर मंतर पे हमने एक आंदोलन किया, बहुत पीसफुल था, उसमें सारे रिमार्क्स हैं, इवन दो सिविल सोसाइटी के भी और उसमें रिमार्क्स हैं सुप्रीम कोर्ट के भी कि हमने बहुत पीसफुल आंदोलन किया था। तीसरी बात, अगर आप इस बात से बिल्कुल मुखर हैं कि आंदोलन होगा और बहुत सारी संख्या आएगी, 50,000 तो आपके पास पुलिस के जवान हैं, आपने 26,000 के आसपास मिलिट्री और सेमी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को दिल्ली में डिप्लॉय कर दिया है, उसके बाद यूपी से भी आपने कुछ गार्ड मंगा लिया है, इतना सब करने के बाद भी अगर आप मेट्रो स्टेशन को चालू नहीं करवा सकते, बसेज को चालू नहीं करवा सकते, एक तरह से आपने आपने दिल्ली बंद का आह्वान भी कर दिया है, आप पीजीज को सर्च कर रहे हो, आप कॉलेज हॉस्टल को सर्च कर रहे हो, आप हर किसी के मकान को, पूरी पूरी कॉलोनी को सर्च कर रहे हो, आप अनाउंसमेंट करवा रहे हो मदरसों में, मंदिरों में जाके, उसके बावजूद भी आप पूरे हिंदुस्तान में छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी जाके डिटेन कर रहे हो। मैं अभी यहां बैठ के आपके चैनल पे बता रहा हूं, मेरे पास 8 फोन आ चुके हैं यहां बैठे बैठे कि हम कहीं भी आपकी लोकेशन के नजदीक हैं, बताइए आप कहां हो। भाई क्यों बताऊं मैं कहां पे हूं, क्या जरूरत है आपको? आपके पास कोई लीगल डिटेंशन ऑर्डर्स नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है।
5: वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए तो। उन्होंने क्या कहा कि दिल्ली पुलिस का एक फॉर्मेट होता है, मुझे नहीं पता क्या फॉर्मेट है, लेकिन कोई एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट में आपको अर्जी देनी पड़ती है कि हम जाके ये कारण के लिए प्रदर्शन करेंगे जंतर मंतर पर, ऐसा ही कोई फॉर्मेट होगा, उसके बाद प्रशासन तय करेगा कि उस फॉर्मेट के तहत आप प्रदर्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने कहा कि नहीं आपको परमिशन की इजाजत नहीं है तो आप नहीं कर सकते, और फिर वो अवैध ठहरा जाएगा और उसके बाद फिर उन्हें ये सब करना पड़ेगा, मजबूरी है उनकी, 57 आप मेट्रो स्टेशन बंद करना ये सब मजबूरी है, वरना आप सड़क पर उतर आएंगे, पूरी दिल्ली को आप मतलब इसीलिए करना पड़ रहा है उनको, आप परमिशन ले लीजिए ना, दिक्कत क्या
8: सर? एक फॉर्मेट से क्या आंदोलन का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना सर, हमने वही बताया है दिल्ली पुलिस को जाके जो हम करना चाहते हैं, हम पीसफुली प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, ये हमारा संविधानिक अधिकार है, इसको आप छीन नहीं सकते हमसे। और देश में एक अघोषित इमरजेंसी की तरह घोषित कर दिया है, सारी इतनी सारी ट्रेनें रोक दी गई है, कैसे आपने ये कर दिया है?
5: सुप्रीम कोर्ट कह रही है
8: सर, अभी मैंने बताया भी आपको
5: प्रेम शुक्ला जी, सुप्रीम कोर्ट ये भी कह रहा है कि आप हथौड़े से मक्खी मार रहे हो।
8: सिविल सोसाइटी ने 2 अक्टूबर को
5: आपने सुना कि नहीं, हथौड़े से मक्खी मार रहे
8: मांगा तो क्या?
5: और मैं आपको याद दिला दूं, इससे पहले भी
7: मक्खी अगर गंदगी फैलाई तो बाबा रामदेव का प्रदर्शन
5: याद होगा,
7: मक्खी अगर गंदगी फैला रही है
5: हथौड़े से
7: तो मक्खी मार रहा है,
5: हथौड़े से मक्खी मार रहा
8: है। भाई मैं वही
5: हाँ, ये आपका हथौड़ा अवैध प्रदर्शनकारियों पर चलना चाहिए, लेकिन दिल्लीवासी को आपने घर में बंद कर दिया,
7: प्रशासन का जवाब बाकी है।
5: हाँ बोलिए
8: साहिल भाई।
7: नहीं, दिल्ली वासियों को घर में बैठने का बैठाने का षड्यंत्र जो है वो तिलचट्टों का है, तिलचट्टों ने बंद कर दिया, तिलचट्टों ने अवैध आंदोलन करके दिल्ली को पूरी तरह से असुविधा का शिकार बनाया है, ये तिलचट्टों का दुष्कर्म है।
5: अच्छा चलिए, एक बात का जवाब और, यहां पर हमारे साथ बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से, हमारे साथ में हमारे साथ में अनुराग ढांडा है। अनुराग, आपको याद होगा पहले जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था आपने परमिशन लेके आंदोलन किया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने कि आपको करने दिया था, और तब आपको याद होगा अन्ना हजारे की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद फिर आरोप लगाया गया था कि देखिए प्रदर्शन करने वालों पर सरकारी लाठी कैसे चलती है, कैसे गिरफ्तारी की जाती है, याद होगा ना आपको ये सब चीज?
9: नहीं देखिए साहिल जी, बिल्कुल याद है मुझे, बिल्कुल याद है। और साहिल जी देखिए कितनी अजब स्थिति आज के दिन देश की हो गई है कि हर चीज की परमिशन लेनी पड़ रही है। तो प्रेम शुक्ला जी, मेरा अभी शाम को डोसा खाने का मन है, परमिशन है कि डिनाइड है ये भी आप बता दो, मतलब किस बात की परमिशन?
7: आंदोलन और डोसा खाने कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी,
9: कह रहे हैं पुलिस की परमिशन लो।
7: आंदोलन करना और डोसा खाना बहुत अंतर
9: नहीं, दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है मेरे, दोनों मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्रेम शुक्ला जी,
7: और आंदोलन करना,
9: एक फ्रीडम टू ईट है, एक फ्रीडम टू प्रोटेस्ट
7: के आधार पर है,
9: दोनों मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है,
7: वो सांविधिक प्रक्रिया है,
9: दोनों मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है,
7: मांगना विधिक प्रक्रिया है,
9: परमिशन देने वाले
7: और विधिक प्रक्रिया का पालन करना
9: परमिशन देने वाले
7: है,
9: आप कौन है परमिशन देने वाले?
7: प्रशासन
9: मोदी जी के चार पिट्ठू वर्दी पहन के अगर बैठे हुए हैं वो तय करेंगे कि मैं प्रोटेस्ट करूंगा कि नहीं करूंगा,
7: कर लेंगे।
9: बाबा साहब के संविधान में हमें परमिशन मिली हुई है,
7: प्रशासन का अधिकार है,
9: बाबा साहब के संविधान में हमें परमिशन मिली हुई है,
7: संविधान ने अधिकार दिया,
9: कोई नहीं होते हमें परमिशन देने वाले,
7: संविधान ने ही अधिकार दिया,
9: पीसफुल प्रोटेस्ट का मेरा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है,
7: बाबा साहब
9: हु आर यू टू स्टॉप दैट? अरे मैं गलत नहीं कोट कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई सरकार अपने खिलाफ परमिशन क्यों देगी भाई?
7: मैं सही कोट कर रहा हूँ।
9: अच्छा सुनिए, हम दूसरी बात सुनिए प्रेम जी, प्रेम जी छोटी सी बात सुनिए, सुनिए
7: करने का,
9: अरे सुन लीजिए एक बार प्रेम शुक्ला जी, सुन लीजिए एक बार प्रेम शुक्ला जी, आप मुझे ये बताइए, ये प्रदर्शन जो शांतिपूर्ण करना चाह रहे हैं युवा, वो तो अवैध हो गया, वो तो अवैध हो गया, ये जो 57 मेट्रो स्टेशन आपने बंद कर दिए ये अवैध नहीं है, बसें बंद कर दी, ट्रेन बंद कर दी, सबकी टिकट कैंसिल हो गई, वो अवैध नहीं है बिल्कुल भी किसी भी हालत में, पूरी दिल्ली चक्का जाम कर दी आपने, वो अवैध नहीं है,
7: कानून एवं व्यवस्था।
9: और ये ज्ञानेश कुमार जिसने करोड़ों वोट काट दिए, फॉर्म 6 में बदलाव कर दिया, वो अवैध नहीं है, वो सब वैध है, जो आप कहोगे वही कानून है, ऐसे देश चलेगा क्या?
7: लापता लोग
9: ऐसे देश चलेगा? अच्छा चलो रोक लो, आप पे जितनी हिम्मत है, जो कानून लगाना आपको लगा लो,
7: संविधान से चलेगा देश,
9: आप कल रोक के दिखा दो प्रेम शुक्ला जी,
7: चलेगा देश,
9: जितनी पुलिस जितनी फोर्स जितनी ताकत, जो कानून आपके दम हो जो, आप रोक के दिखा दो कल इस आंदोलन को,
7: है ना?
9: आप रोक के दिखाओ कल इस आंदोलन को,
7: हाँ ठीक है ना, देखा जाएगा ना,
9: आपकी पुलिस डंडे बरसाए वो अवैध नहीं है, आपकी पुलिस महिला पत्रकारों से छेड़छाड़ करे वो अवैध नहीं है,
7: अगर
9: आप करोड़ों वोट काट दो वो अवैध नहीं है, ज्ञानेश कुमार बिना बहुमत के फैसले ले ले चुनाव आयोग में वो अवैध नहीं है,
7: उपद्रव करेगा तो डंडा,
9: बाकी सब कुछ अवैध है,
7: ये विधिक कार्रवाई है,
9: परमिशन भी आप ही दोगे,
7: भगवंत सिंह मान की सरकार डंडा नहीं,
9: प्रोटेस्ट भी आपके खिलाफ,
7: भगवंत सिंह मान
9: परमिशन भी आप ही दोगे,
7: अवैध है वो, गजब है,
9: नहीं तो आप ही निर्णय करोगे,
7: भगवंत
9: नहीं आप ही निर्णय करोगे,
7: सरकार ने किसानों
9: प्रोटेस्ट
7: को
9: अगर कोई करेगा
7: तो अवैध है वो,
9: तो उसको परमिशन भी आप दोगे,
7: अवैध काम कर रहे हैं, स्वीकारिए कि भगवंत सिंह मान,
9: अरे वहां पे आजादी है प्रोटेस्ट करने की, यहाँ पे आप हमारा गला घोट रहे हो, क्या बात कर रहे हैं, गला घोट रहे हो किसानों की, 750 किसानों की शहादत आपने ली।
10: कितने ठीक है,
9: 750 किसानों की शहादत।
4: जरा एक मिनट होल्ड करिए जरा एक मिनट। सुधीर सांगवाल, आप कह रहे थे कि भाई आपका प्रोफेशनल, आपका राइट है, आपका एक संवैधानिक अधिकार है कि आपको ये प्रोटेस्ट करना चाहिए। चलिए मैं मानता हूं इस बात को, हर इस देश में हर नागरिक का अधिकार है कि अगर उसे किसी बात पर आपत्ति है तो उसे प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। लेकिन उसकी भी एक प्रशासन जब से आया हुआ है तब से, संविधान सम्मत प्रशासन जब से आया हुआ है तब से उन्होंने रखा हुआ है कि उसका एक फॉर्मेट होता है। जून महीने में सांगवान आपको याद होगा कि सीजेपी ने जो प्रोटेस्ट किया था जंतर मंतर पर, बाकायदा उसी फॉर्मेट में एप्लीकेशन देके उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, तब पुलिस ने आपको इजाजत दी थी, आपको याद होगा। इस बार भी पुलिस अलग क्या मांग रही है, वो कह रही है कि भाई उसी फॉर्मेट में
9: आपने इजाजत दी थी,
4: इजाजत मांगी, हम आपको परमिशन शायद दे दें।
8: साहिल जी, हम
4: फिर उस वक्त आपने इजाजत मांगी थी, इस बार आपको इजाजत मांगने से क्या दिक्कत है?
8: जी मैं आपको वही बता रहा हूं साहिल जी, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं, देश में ना इतना बड़ा मुद्दा है, हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को छीना जा रहा है, क्या हम फॉर्मेट की बात करें कि उसी फॉर्मेट में दे? और उसी का जवाब मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिया कि सिविल सोसाइटी के मेंबर ने 2 अक्टूबर को दिया, नहीं उन्होंने परमिशन दिया, हमें पता है वो परमिशन नहीं देंगे। और ये कितना अब्सर्ड कॉन्सेप्ट है कि जिस रिजीम, जिस सत्ता के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं उन्हीं को कह रहे हैं कि जी आप हमें परमिशन दीजिए, वो कहेंगे हाँ जी 2 घंटे बैठो आपको देंगे, फिर आपके 10 दिन बैठो वेट करो हम देंगे। उनको पता है कि उनका ये जो झोला जो उठने वाला है, जब ऐसा होता है ना, आप देखो कि ज्ञानू बाबा कितने बड़े हो गए हैं इस देश के लिए, इस देश के प्रधानमंत्री जी के लिए, इस देश की सरकार के लिए कितने बड़े हो गए हैं कि उनके लिए उन्होंने पूरी दिल्ली को छावनी बना दिया है, तो पूरे देश में घोषित इमरजेंसी लेके आ गए हैं वो
4: ये कितना बड़े। लेकिन आज कपिल सिब्बल, आज जब कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुधीर कपिल सिब्बल आज जब सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्हें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा था कि भाई आयोजक कहां है जो परमिशन मांग रहे हैं। ये ठीक है कि फॉर्मेट पर हम बहस नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस देश में अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे, ये सवाल तो हालांकि प्रेम शुक्ला जी को भी जाएगा कि जब भी कभी प्रोटेस्ट या कभी किसी चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है, हर बार क्या परमिशन लेके ही सड़क पर उतरा जाता है क्या? ऐसे कई उदाहरण में उनके सामने भी रख सकता हूं, क्या तब भी इसी तरीके से पूरी पाबंदी लगा दी गई?
10: ली जाती तो FIR होता है,
4: हर बार ली जाती है, ऐसे कई उदाहरण में रख सकते हैं हम।
8: FIR
4: होता है ना,
10: FIR होता है, सवाल कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है।
8: हाँ मैं बताता हूँ ना, प्रेम जी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही कहा था कि हमारा संविधानिक अधिकार है, राजघाट पर, राजघाट पे वो गए थे, आपको बता दूंगा, आपके ही नेता थे, और उन्हें कहा था कि हम इस बारे में हम क्या परमिशन लेंगे जब हम राजघाट में जाएंगे, तो प्रेम क्या कमाल करते हो, हम भी वही चीज बोल रहे हैं कि हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं।
10: सर
8: प्रेम जी आपको भी सपोर्ट करना चाहिए,
4: ये बड़ी दिलचस्प बात है
10: चलनी पड़ेगी
4: कि इससे पहले अन्ना आंदोलन जब हुआ था तब भी बाकायदा 2011 में इजाजत ली गई थी, रामलीला मैदान पर यह इजाजत दी गई थी और वहां पर फिर आंदोलन किया गया था। इससे पहले सीएजीपी ने जब भी आंदोलन किया था बाकायदा इजाजत मांगी गई थी और उसके बाद वहां पर आंदोलन किया गया था। लेकिन
8: अभी जी
4: ये बड़ी दिलचस्प बात है कि एक तरफ कांग्रेस कहेंगे आज भी आपने मांग किया, ठीक है ठीक है, हम प्रोटेस्ट पर दोबारा लौटते हैं, लेकिन वहां पर कांग्रेस पार्टी का भी कुछ चल रहा है। कांग्रेस पार्टी आज राष्ट्रपति से मिलने जा रही है, कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। क्या राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद ये जो रोज का सिलसिला है आंदोलन का, क्या वो थम जाएगा या उसके बावजूद भी आपका भी 12 तारीख को आंदोलन होगा, क्या उसके लिए आपने इजाजत मांगी है या इसी तरीके की स्थिति देखने मिलेगी?
11: मिशन हम यूज कर रहे हैं, इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पोजीशन क्या है, एक मिनट पहले मैं आपके माध्यम से इस बात को लोगों तक पहुंचाना चाहती हूं। देखिए सुप्रीम कोर्ट का सन 2018 का एक जजमेंट है, MKSS मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके पैराग्राफ 54 में कहा गया है कि राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुली प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट। उसके आगे पैराग्राफ 61 में ये कहा गया है कि टोटल एक्सटेंशन इज नॉट बैलेंसिंग, मतलब यदि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में क्यों ना हो, वो लोगों के पीसफुल प्रोटेस्ट करने के अधिकार को कंप्लीट तरीके से खत्म नहीं कर सकती। और आगे जाके कहा गया है कि दिल्ली पुलिस को या देशभर की सारी पुलिस को बैलेंसिंग करने की जरूरत है। अब पहला सवाल तो ये कि जो बीजेपी के प्रवक्ता लगातार ये बात बोल रहे हैं कि फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट किसने तय किया और इसकी संवैधानिकता कौन तय करेगा? ये कौन निर्धारित करेगा कि यदि इस देश के नागरिकों को जमीन पर प्रोटेस्ट करना है तो उनको आप नहीं तो मेरी बात खत्म करने दीजिए, मैंने आपको नहीं टोका, आप मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। ये किसने तय करा कि 10 दिन की परमिशन का परमिशन चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि इस देश के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है क्या वो टेररिस्ट हैं? यदि वो इलेक्शन कमीशन पीसफुल मार्च करना चाहते हैं तो उनको क्यों परमिशन नहीं दी जा रही है? तीसरी बात, दिल्ली पुलिस के कानून के हिसाब से ही जंतर मंतर जो है वो डेसिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है। पर आप मुझे अकल मत दीजिए, आप मेरी बात खत्म होने दीजिए, मैं शांति से सुना, 15 मिनट मैंने एक शब्द नहीं बोला। जंतर मंतर डेसिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है या नहीं है? यदि जंतर मंतर डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है कानून के हिसाब से, तो फिर आपने पूरी कांग्रेस पार्टी को
10: सारी अनुमति लेनी पड़ती है,
11: जंतर मंतर जाने से क्यों
10: रोका? नहीं है,
11: देखिए आप सीजेपी और कांग्रेस की प्रोटेस्ट को मिक्स मत कीजिए। कांग्रेस ने, यूथ कांग्रेस ने अलग से आपसे परमिशन मांगी, आपके फॉर्मेट के हिसाब से मांगी। पहला सवाल तो ये कि फॉर्मेट आप तय कर रहे हैं, दूसरी बात ये कि आपके फॉर्मेट के हिसाब से ही परमिशन मांगी, और यदि आप परमिशन डिनाई कर देते हैं तो क्या दिल्ली पुलिस के पास ऐसी कोई अपेलेट मैकेनिज्म है कि यदि किसी नागरिक को इलीगल तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आप प्रोटेस्ट करने की परमिशन डिनाई करते हैं तो फिर इंसान कहां पर जाएगा? आपने इस देश में पीसफुल प्रोटेस्ट करने के अधिकार को कंप्लीट तरीके से तबाह कर दिया है।
4: अवनी जी,
11: आप सिर्फ और सिर्फ ज्ञानेश कुमार को बचा रहे हैं, आप
4: राजनीतिक कारण आपको लगता है अवनी जी,
11: इस डर के चक्कर में आपने पूरी दिल्ली को छावनी में परिवर्तित कर दिया है। इस देश के नागरिक जानते हैं
4: किससे डर है, प्रेम शुक्ला जी, राजनीतिक तौर पर किससे डर है,
11: और वो करेंगे।
4: आप चुनाव दर चुनाव जीत रहे हैं, आज जो बाइपोल हुए हैं रेजीनगर और नंदीग्राम में, वहां पर भी आपकी भारी जीत हुई है। आप त्रिपुरा में जो लोकल बॉडी के इलेक्शन हुआ है वहां पर भी आपकी जीत हुई है। तो ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाई प्रोटेस्ट करने कोई उतरता है तो आपको डर क्यों लगता है? ऐसा क्या कारण है कि अगर सीजेपी के कोई समर्थन नहीं आ वैसा आप मानते हैं?
10: बिल्कुल डर नहीं,
4: हमको बड़ी छावनी वहां पर लगा दी है। क्या कारण है कि मस्जिदों में जाकर पुलिस कह रही है कि भाई प्रोटेस्ट में मत जाइए? क्यों आपको लगता है कि मस्जिदों में जाके ये बात कहने की जरूरत है?
10: अवैध प्रोटेस्ट में मत जाइएगा, अवैध प्रोटेस्ट में मत जाइए, ये कहना अधिकार है। अवैध प्रोटेस्ट में, अवैध कार्य करने से जनता बचे, ये तो कहेंगे ही ना, अवैध काम करने से जनता बचे, ये कहना प्रशासन का दायित्व है।
4: सब एक साथ में प्लीज,
10: अवैध चीजों से आगाह करना है प्रशासन का दायित्व है, अवैध कार्य नहीं करना चाहिए।
11: शील्ड बनाकर इस देश के नागरिकों का फंडामेंटल,
10: मुझे उत्तर देना है ना साहिल जी,
11: क्यों कांग्रेस ने परमिशन के लिए मांगा?
10: आपका प्रश्न मुझसे है साहिल जी,
11: उसके बाद उसकी क्या,
10: आपका प्रश्न मुझसे है साहिल जी,
4: ठीक है। अवनी बंसल जवाब सुन लेते हैं ना, आपने सवाल सवाल खड़ा किया। अवनी जी एक मिनट, अवनी जी एक मिनट, ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए।
10: आज कृपा करके मुझे बताइए, अवैध कोई प्रदर्शन कर रहा है, उस अवैध कार्य में कोई संलिप्त ना हो, ये कहना जो है ये प्रशासन का दायित्व है, तो प्रशासन अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा है। अब किसी को लगता है उनको परमिशन नहीं मिली? आज ही सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्टता से कहा कि अगर प्रशासन आपको जो है अनुमति नहीं देता तो आप अदालत आ सकते हैं। आपको अदालत जाने से किसने रोका?
4: लेकिन
10: आप तो भारत की संवैधानिक व्यवस्था को मानते ही नहीं है।
11: आपने इंडियन यूथ कांग्रेस को परमिशन क्यों नहीं दी दिल्ली पुलिस ने?
10: अरे काय की तानाशाही, तानाशाही कहीं से रट के चली आई और कह रही तानाशाही चल रही है? तानाशाही इंदिरा गांधी ने किया था, तानाशाही इंदिरा गांधी ने किया, तानाशाही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था, जब रामदेव जी के अनुमति प्राप्त कार्यक्रम।
4: ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही,
10: तानाशाह डॉक्टर मनमोहन सिंह,
4: ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर रखी गई है। एक मिनट अवनी बंसल, मैं आपको बता रहा हूं, प्रेम शुक्ला जी इंदिरा गांधी को तानाशाह क्यों कह रहे हैं? उस वक्त जो विपक्ष था, विपक्ष ने उस वक्त जो प्रदर्शन किए सड़क पर उतर के रामलीला मैदान पे, और उसके बाद में जो मशहूर रेलवे स्ट्राइक पूरे देश भर में किया गया था, सड़क पर जिस तरीके से जनता उतरी थी, उस जनता को पर लाठी चलाई गई, उस जनता को गिरफ्तार किया गया, और इसीलिए प्रेम शुक्ला जी आज इंदिरा गांधी के शासन को तानाशाही कहने की कोशिश कर रहे
10: हैं।
4: क्या जो दिल्ली में हो रहा है उससे कंपेयर किया जा सकता है? नहीं, तो अभी जो पाबंदी लगाई जा रही है, अभी जो पाबंदी लगाई जा रही है उससे कंपैरिजन कर सकते हैं क्या?
10: जेल में डाला गया।
4: नहीं, अभी जो पाबंदी लगाई जा रही है उससे कंपैरिजन कर सकते हैं क्या?
10: 1 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को,
4: वही की बात कर रहा हूँ मैं, अभी आज जो हो रहा है क्या वो रिपीट नहीं हो रहा है?
10: सारे विपक्ष,
4: नहीं तो अभी जो हो रहा है वो रिपीट नहीं हो रहा है
10: कहीं दूर दूर तक, रिपीट नहीं है।
4: चलिए, तस्वीरें आ रही है सेंट्रल हॉल से, सेंट्रल हॉल में मीटिंग शुरू हो चुकी है, तमाम सांसद वहां पर पहुंचना शुरू हो गया है,
5: सभी विपक्षी पार्टियों के सांसद एक एक करके यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। सेंट्रल हॉल की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर पहले मीटिंग होगी, यह तय होगा कि राष्ट्रपति के सामने क्या भूमिका विपक्षी पार्टियों की तरफ से रखी जाए और उसके बाद यह भी तय होगा कि आगे की दिशा क्या होगी, क्योंकि 12 तारीख को विपक्ष ने एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में एक बार फिर रखा है इसी मांग को लेकर कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा होना चाहिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रियंका गांधी इस मीटिंग के लिए पहुंची, उनके साथ में कांग्रेस के कुछ सांसद भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार, जो सवाल मैं पूछ रहा हूं, चूंकि बात पुरानी निकली है, जो आरोप उस वक्त सरकार पर लगे थे कि आंदोलन नहीं करने दे रही है सरकार, आज यही आरोप सरकार पर एक बार फिर लगाए जा रहे हैं। इजाजत मांग रहे हैं लेकिन परमिशन नहीं मिल पा रही है, परमिशन नहीं दे रहे तो अवैध करार दिया जा रहा है, अवैध करार दिया जा रहा है तो दिल्ली को बंद किया जा रहा है, दिल्ली के मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए जा रहे हैं, दिल्ली को छावनी में तब्दील किया जा रहा है, ये क्या दिखाता है? धीरेन्द्र कुमार।
12: साहिल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि दिल्ली के नागरिकों को कोई असुविधा न हो यह अधिकार ये सोचना पक्ष को भी है और विपक्ष को भी है। आप प्रदर्शन करिए, कौन मना करता है, लोकतंत्र में यही तो खूबसूरती है। लेकिन उसके तरीके
5: है धीरेन्द्र जी, मना किया है, मना करता है।
12: मैंने कहा
5: वही तो वो कह रहे, परमिशन नहीं दे रही है, मना किया हुआ है।
12: सुनिए तो सही, एक मिनट में बोल लूं तब आप सवाल ले लीजिएगा दूसरा। दिल्ली के लोगों की सुविधा असुविधा का ख्याल रखना भी काम है। सरकार जो वहां पे है, प्रशासन के लोग होंगे, यदि उनकी चिंता है कि लोगों को कठिनाइयां नहीं हो, दिल्ली सबका है, सभी लोगों की, किसी के नौकरी है, किसी को अस्पताल जाना है, आपको अपने स्टूडियो आना है, तो उन उन उन सुविधाओं का भी ख्याल रखना यह सरकार का कर्तव्य है और लोकतंत्र भी चले यह भी हम लोगों को देखना है। ऐसे में मैं कह रहा हूं कि आप प्रदर्शन तो तब करेंगे ना जब आपकी बातें नहीं सुनी जाए। आपने कब सांसदों ने चुनाव आयोग से समय मांगा है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं? आप तो मांगते नहीं है, आपकी बातें नहीं मानी जाए। अगर चुनाव आयोग आपसे सहमत असहमत होते हैं, आप अगर उससे सहमत नहीं होते तो आप कोर्ट चले जाएं। आप कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं तो सड़कों पर इवेंट करके और जिंदगी वहां के सामान्य लोगों की आप क्यों परेशान करना चाहते हैं? आपको पूरा अधिकार है कि आप इस बात को करें। आप वोट चोरी को लेकर के करते हैं तो मैं
5: मुझे धीरेन्द्र जी सुनिए ना
12: जी।
5: आपने कहा ना एक मिनट के बाद सवाल पूछता हूँ, जल्दी से मुझे जवाब दीजिए, फिर मुझे अनुराग ढांडा के पास भी जाना है। ये मेट्रो बंद करने के बाद, बाहर से आने वाली ट्रेन बंद करने के बाद, सड़कें बंद करने के बाद, दिल्ली के लोगों को परेशानी नहीं होगी?
12: बिल्कुल होगी, बिल्कुल परेशानी होगी, लेकिन कम से कम परेशानियों का आकलन जरूर कर रहे होंगे वहां पर जो लोग होंगे। मैं उधर का प्रवक्ता नहीं हूं, क्योंकि वो तो प्रशासन के लोग बता पाएंगे। लेकिन जो अवैध करार देना, वोट चोरी करना, तो क्या बिहार के लोग, हम लोगों ने मतदान किया तो वोट चोरी हुआ था क्या? मतदाताओं को चोर कह रहे हैं आप? बंगाल में चुनाव हुआ तो क्या सुप्रीम कोर्ट को क्या लगा था कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, इसमें मैं नहीं दखल दूंगा? आप सुप्रीम कोर्ट भी कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं क्या? मैं सवाल करना चाहता हूँ विपक्षी लोगों से कि आप इतने लोगों के जो मतदान में हिस्सा लेते हैं, आप उनको कहीं ना कहीं अपमानित कर रहे हैं। आप उनके वोटों के अधिकार को आप कह रहे हैं कि चोरी हो रहा है।
5: ठीक है, इसका मतलब ये धीरेन्द्र कुमार, विपक्ष को ये मान लेना चाहिए, विपक्ष या कांग्रेस जनता पार्टी जो आंदोलन करना चाह रही है, कि भाई एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सब कुछ ठीक है तो मान लीजिए आप, फिर आपको अगर जो भी लगे आप आंदोलन मत करिएगा। अगर आपको परमिशन नहीं मिलती है तो आंदोलन नहीं होना चाहिए, सही यही कहना चाह रहे हैं ना आप?
12: नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं कि आंदोलन करिए, लेकिन जन आंदोलन मनाइए उसको, धन आंदोलन मत बनाइए, इवेंट मत बनाइए। जनता को किसी को कहीं आप देश में घूम जाइए, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के विपक्ष के लोगों का अगर आंदोलन होगा तो इसको कुर्सी की लड़ाई
5: नहीं कहा जा सकता है। जन आंदोलन नहीं धन आंदोलन है
9: साहिल,
5: जन आंदोलन नहीं धन आंदोलन है। अब ये व्याख्या कैसे तय होगी, कैसे नापा जाएगा नहीं पता मुझे, लेकिन जन आंदोलन मत करिएगा, धन आंदोलन।
9: नहीं, मैं बता देता हूं, सारा धन तो बीजेपी के पास है तो हम तो जन आंदोलन ही कर सकते हैं, धन आंदोलन तो सारा उन्हीं के पास है। दूसरी बात कि आप ये समझिए कि जितना इन्होंने कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की, मैं दो तीन लाइन में क्लियर करूंगा।
10: सीबीआई ने,
9: इन्होंने कहा परमिशन नहीं लेते। आप प्रेम शुक्ला जी बीच में मत बोलिए, मैं नहीं बोला था आपके बीच में मत बोलिए। इन्होंने कहा परमिशन नहीं लेते। साहिल जी, 14 संगठनों ने 14 14 संगठनों ने 2 अक्टूबर को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की परमिशन मांगी थी, इन्होंने एक को भी नहीं दी। अरे कोई एक तो नियम फॉलो कर रहा होगा। देश के अलग अलग 14 संगठनों ने परमिशन मांगी, जिसमें पॉलिटिकल पार्टियां भी थी, जिसमें सिविल सोसाइटी भी थी, इन्होंने एक को भी परमिशन नहीं दी, तो आप दे देंगे क्या? और ये कह रहे हैं कि दिल्ली के लोग परेशान ना हो, तो ये जो प्रोटेस्ट में आते हैं ये दिल्ली के लोग नहीं है, जो हजारों लाखों लोग प्रोटेस्ट में आएंगे ये दिल्ली के लोग नहीं है, ये लंदन से आएंगे, ये होनोलुलु से आएंगे, कहीं बाहर से आएंगे। मतलब कुछ तो तार्किक बात कीजिए। और जो लोग ये कहते हैं कि सड़क पे उतरना गलत है, तो गांधी जी के इतने सारे आंदोलन जिनसे आजादी हमने हासिल की उनको गाली दे रहे हैं क्या? शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए कि सड़क पे उतरना गलत है? जितना हमें अधिकार सुप्रीम कोर्ट में जाने का है उतना ही अधिकार हमें सड़क पे उतरने का है।
5: मैं इस बात को मान लेता हूं, सुनिए ना अनुराग जी, ये बात मैं मान लेता हूं कि आंदोलन करना ये हर नागरिक का अधिकार है। और इस पैनल में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, सीजेपी तो चलिए नहीं है, लेकिन प्रेम शुक्ला की पार्टी हो, आपकी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या एलजेपी हो, उनकी पार्टी की जिंदगी में कभी ना कभी उन्होंने आंदोलन किया हुआ है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अवैध आंदोलन भी किया हुआ है, और वो शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज इस आंदोलन को अवैध करार दिया जा रहा है। तो इन सभी पार्टियों ने उनके राजनीतिक जीवन में अवैध, वैध सभी तरीके के आंदोलन किए हुए हैं। लेकिन क्या यह बात सही नहीं है, क्योंकि आप पंजाब में सरकार भी चला रहे हो और दिल्ली जैसी बात नहीं है, पंजाब में पुलिस भी आपके हाथ में है, आपके सरकार के समय पे भी जब किसी तरीके का आंदोलन हुआ है तो आपने भी कहा है ना कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं होनी चाहिए, आप भी तो वहां पर कानून व्यवस्था रखने के लिए लाठी चार्ज या बाकी सारी चीजें तो करते ही रहते हैं ना वहां पर। तो अगर आपके पास वो अधिकार है सरकार चलाते वक्त, उसी तरीके का अधिकार अगर दिल्ली में, खास करके जून महीने में जो आंदोलन हुआ उसके बाद जो चीजें हमने दिल्ली में देखी, पार्लियामेंट की तरफ मार्च करते हुए लोग दिखाई दिए, ये सब देखते हुए अगर पुलिस कहती है कि भाई हमें तो डर लगता है कि आंदोलन के नाम पर ये सारी चीजें हो सकती है, तो बेहतर है कि हम एहतियातन कदम उठा ले।
9: पुलिस को डर लगता है तो वर्दी उतार दें, जिस पुलिस को डर लगता है वर्दी उतार दें, और जिस सरकार को डर लगता है वो कुर्सी छोड़ दे।
5: ये तो डबल ये हो गया ना,
9: ड्यूटी है भाई,
5: ये तो दोहरा वार हो जाएगा ना। पुलिस अगर गलत तरीके से आंदोलन होगा लाठीचार्ज करेगी तो गाली खाएगी, पुलिस अगर वहां पर टियर गैस छोड़ेगी तो गाली खाएगी, पुलिस अगर परमिशन नहीं देगी तब भी गाली, यही बात होगी ना उसमें।
9: उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। आपने पंजाब की बात की, मैं खुली चुनौती देता हूं पूरे पैनल को, एक पंजाब का प्रोटेस्ट बता दीजिए जिसके लिए परमिशन डिनाई कर दियो,
13: आपकी पुलिस ने
9: जिसके लिए परमिशन डिनाई कर दियो। प्रेम शुक्ला जी हिम्मत हो तो एक एग्जांपल बता दो जिसके लिए परमिशन डिनाई हुई हो। अरे प्रोटेस्ट परमिशन डिनाई कौन कर सकता है?
10: वो इंटीमेशन बना दिया किसानों के सिर फोड़े,
9: अरे वो इंटीमेशन होता है, क्या बात कर रहे हैं? आपने उसको परमिशन बना दिया
10: किसानों के सिर फोड़े हैं पंजाब में।
9: अरे मैं कह रहा हूँ प्रेम शुक्ला, सुनिए लाठीचार्ज आपको हिम्मत बताइए, दिल्ली में सबने देखा था आपने क्या किया था,
10: मैं आपको फोटो
9: दिल्ली में सबने देखा था आपने क्या किया,
5: यहाँ पर आंदोलन में
9: दूसरी बात
5: पर ठीक
9: जो साहिल जी सुनिए, अरे यही आपके पास यही रही है,
5: अनुराग एक मिनट,
9: मैं
5: अनुराग
9: कह रहा हूँ इंटीमेशन होता है साहिल जी,
5: दो मिनट है मेरे पास, ठीक है अवनी जी अभी आपको तो इजाजत मिल गई है, क्या राष्ट्रपति से मिलने के बाद विपक्षी पार्टी अपना आंदोलन वापस लेगी? क्योंकि आपको राष्ट्रपति से मिलना था, आपका काम हो गया, क्या ऐसा होगा कि आंदोलन अंत तक चलता रहेगा? कब तक ये आंदोलन इस तरीके से चलता रहेगा?
11: साहिल जी डिमांड बहुत क्लियर है,
9: ज्ञानेश जब तक नहीं,
11: ज्ञानेश हैज टू गो, जब तक ज्ञानेश कुमार अपने पोजीशन से इस्तीफा नहीं देते तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और दूसरी बात साहिल जी, दूसरी बात जो कानून है
5: प्रेम शुक्ला जी अंत में
11: बैलेंसिंग करना
5: अंत
11: जरूरी
5: चलेगा
11: है। और
5: ये आंदोलन एक दिन पुलिस आप एक दिन इस तरीके से सिक्योरिटी लगा
10: राहुल विंची
5: क्या हर रोज इसी तरीके से चीजें रहेगी?
10: संविधान नहीं चलेगा, राहुल विंची के सनक के हिसाब से इस देश की संवैधानिक संस्थाओं की व्यवस्था को परिवर्तित करने का कार्य नहीं किया जा सकता। राहुल विंची जो है उसको सनक चढ़ जाए कि कल ये कर दो और वो हो जाए, ये इस संवैधानिक लोकतंत्र में संभव नहीं है। राहुल विंची को समझना पड़ेगा, इस देश को संविधान से चलाएगा,
5: किलेबंदी से चलेगा,
10: उसकी सनक से नहीं।
5: कोई बात नहीं प्रेम शुक्ला जी, सवाल ये भी पूछा जाएगा,
10: क्या किलेबंदी
5: से संविधान का संरक्षण किया जाएगा?
10: जरूरत पड़ने पे किलाबंदी भी,
5: अगर किलाबंदी की जाएगी तो उसका जवाब भी देना होगा कभी ना कभी।
10: संविधान जो है किलाबंदी,
5: उम्मीद यही करते हैं कि दिल्ली में इस किलाबंदी की नौबत ना आए, संविधान का पालन दोनों तरफ से किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ सवाल उठाए हुए हैं, उसके भी जवाब ढूंढेंगे। और उसके साथ साथ सेंट्रल हॉल में मीटिंग शुरू हो रही है, राष्ट्रपति की मुलाकात भी होगी विपक्षी दलों की, वहां पर क्या मांग रखी जाएगी और उसके बाद कल सीजेपी के आंदोलन में क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल, इस पर भी जवाब ढूंढा जाएगा, नजर रखी जाएगी। फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जेके मैक्स वाइप इजी, दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।
2: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए। गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
3: गड़बड़ है।
4: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
5: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbar Group.
6: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
7: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो ठुमका लगाने बस।
8: मेरे पास एक आइडिया है।
7: क्या?
8: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
9: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
10: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
11: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
12: कौन सी बनानी है?
13: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
14: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
13: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
15: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ? पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
16: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेंको गहने।
17: मैडी, I need to open a savings account.
18: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
17: स्मॉल बैंक?
18: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज RD, देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम।
17: ओके
18: उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट एक हिंट तो देते,
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: My dad was actually very rich and he became so poor that factory नीलाम हो गई, घर नीलाम हो गए, किराए देने के पैसे नहीं, घर के बाहर नहीं निकल सकते थे। इतना अनाड़ी था। पहले दो साल की मेरी मिस्टेक है, सुन जाओगे ना रजत सर, मुझे यहाँ पॉडकास्ट पे बिठाओगे। उड़ने के लिए आपको ग्लास सीलिंग तोड़नी पड़ती है। बहुत पॉपुलर मिस्टेक है। जो अच्छा चलेगा, आपका दिमाग ये कहता है कि वो अच्छा चलता जाएगा, जो बुरा चल रहा है वो बुरा चलता जाएगा। This is called recency bias.
3: एक ऐसी चीज जो पैसा खरीद नहीं सकती।
2: वक्त आपके पेरेंट्स के साथ। So this is what money will not be able to buy. You might become a billionaire, but you will regret this eternally till your last breath.

सबसे ज्यादा विवादों के केंद्र में है 7 अक्टूबर का प्रदर्शन। उस दिन राजधानी में आकाशवाणी भवन के पास कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य विपक्षी दलों के नेता सड़कों पर उतरे थे। वो चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, SIR और ज्ञानेश कुमार को लेकर सवाल उठा रहे थे। उन्हीं प्रदर्शन के बीच से एक तस्वीर ये भी आई, कुछ प्रदर्शनकारी हेड

0: पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर, मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
1: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक दो तुम थमका लगाने बस।
2: मेरे पास एक आइडिया है।
1: क्या?
2: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
3: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
4: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
5: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
3: कौन सी बनानी है?
6: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
7: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
6: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
8: हर बार वही गोल्ड ज्वेलरी कैसे पहन सकती हूँ? पर इस जमाने में नई नई गोल्ड ज्वेलरी खरीदना भी तो इम्प्रैक्टिकल है, तो फिर सेनको का ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज।
9: एंजॉय करें 0% डिडक्शन किसी भी ज्वेलर के गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज पर और खरीदें अपने पसंदीदा सेंको गहने।
10: मैडी, I need to open a savings account.
11: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
10: स्मॉल बैंक?
11: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट, गरिमा सेविंग्स अकाउंट, मैक्सिमा बिजनेस, एज करंट अकाउंट, बिजनेस मैक्सिमा, बिजनेस प्रिविलेज, आरडी, एवरीथिंग, देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम।
10: ओके
11: उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: My dad was actually very rich and he became so poor that factory nilam ho gayi, ghar nilam ho gaye. किराया देने के पैसे नहीं, घर के बाहर नहीं निकल सकते थे। इतना अनाड़ी था। पहले दो साल की मेरी मिस्टेक है, सुन जाओगे ना रजत सर, मुझे यहाँ पॉडकास्ट पे बिठाओगे। उड़ने के लिए आपको ग्लास सीलिंग तोड़नी पड़ती है। बहुत पॉपुलर मिस्टेक है। जो अच्छा चलेगा, आपका दिमाग ये कहता है कि वो अच्छा चलता जाएगा, जो बुरा चल रहा है वो बुरा चलता जाएगा। दिस इज कॉल्ड रीसेंसी बायस।
3: एक ऐसी चीज जो पैसा खरीद नहीं सकती,
2: वक्त आपके पेरेंट्स के साथ। This is what money will not be able to buy. You might become a billionaire, but you will regret this eternally till your last breath.

0: सबसे ज्यादा विवादों के केंद्र में है 7 अक्टूबर का प्रदर्शन। उस दिन राजधानी में आकाशवाणी भवन के पास कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य विपक्षी दलों के नेता सड़कों पर उतरे थे। वो चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, SIR और ज्ञानेश कुमार को लेकर सवाल उठा रहे थे। उन्हीं प्रदर्शन के बीच से एक तस्वीर ये भी आई, कुछ प्रदर्शनकारी हेड कांस्टेबल भूपेंद्र और कांस्टेबल देवेंद्र को घेर कर मारपीट करते दिखे। आरोप है कि इन दोनों पर हमला करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता थे। देखिए कैसे इस वीडियो में एक प्रदर्शनकारी दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल को लात मारता हुआ देखा जा सकता है। आज तक से बातचीत में दोनों पुलिसकर्मियों ने बताया कि उन्हें प्रदर्शन कर रहे लोग जानबूझकर टारगेट कर रहे थे। हाल के प्रदर्शन के दौरान की एक और तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें नेहा बोरा नीतू नाम की एक महिला कांस्टेबल की वर्दी पकड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि नई दिल्ली इलाके में प्रोटेस्ट के दौरान ड्यूटी के लिए नीतू को तैनात किया गया था। आरोपों के मुताबिक तभी इस महिला कांस्टेबल पर हमला हुआ, जिसमें उसे गंभीर चोट आई। दिल्ली पुलिस कर्मियों पर हमले को लेकर उठे सवालों के बीच बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो जारी कर पार्टी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। बीजेपी का आरोप है कि राहुल ने महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी की है। हालांकि कांग्रेस की दलील है कि राहुल अपनी कार्यकर्ता को बचा रहे थे।
1: दूसरे एंगल से भी देखिए ना, नीचे एक महिला कार्यकर्ता के साथ किस तरह से बदसलूकी की जा रही है, अपने साथियों को बचाने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं।
0: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया। बीजेपी ने इस वीडियो को लेकर प्रियंका गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने महिला पुलिसकर्मी को कोहनी मारी, लेकिन सियासी वार पलटवार

0: के बीच कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस के एक्शन पर सवाल उठाए। 7 अक्टूबर को प्रदर्शन कर रही प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया था कि सांसदों पर हमला किया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी नेताओं के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा को धक्का मार गिराया।
1: वो मौजूद थे, प्रियंका गांधी जी के साथ क्या हुआ था, वो बड़े गंभीर आरोप।
2: मैं बता रहा हूँ कि पुलिस लोगों ने, महिला पुलिस नहीं, पुलिस ने उनको धक्के मारे। एक मैं पहचान करता हूँ, कोई IPS ऑफिसर थे, नहीं IPS नहीं थे, लेकिन कंधे पे छेर लगा हुआ है, आई थिंक कोई SP कैटेगरी के। उसके बाद उन्होंने धक्के मारे मैडम को, और उन्होंने धक्के मार के मैडम को गिराया।
0: 7 अक्टूबर को हुए प्रदर्शन को लेकर भी दिल्ली पुलिस ने 3 अलग अलग FIR दर्ज की। जानकारी के मुताबिक उन FIR में आरोपियों के कॉलम खाली है, लेकिन उसकी डिटेल्स में राहुल और प्रियंका गांधी के नाम शामिल है। अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: दंगल में मेरे साथ बस इतना ही. खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे अल्लाह बोल के साथ. देखते रहिए आज तक.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.

0: गया सोमवार और आ गए
1: चकमक चाचा।
0: एक कचौड़ी, दो समोसा, चकमक तेरा क्या भरोसा।
2: चकमक चाचा से सीधे चकमक है।
0: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रही, बुझ रहा ना।
2: लेकिन भैया नारा फालतू में सब बेकार, एकदम बेकार। नारे होते थे हमारे टाइम।
0: अच्छा
2: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
0: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी, इन नेताओं की खत्म कहानी।
2: अरे जमीन के चकबंदी में, जमीन के चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में।
0: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
2: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
0: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा देके जाएंगे।
2: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
0: अरे लाल फूल, नीला फूल, जंजी नंगे ब्यूटीफुल।
2: अरे बारी बारी सबकी बारी, अबकी बारी अटल बिहारी।
0: चाय गरम, दूध गरम, चकमक चाचा भी सरम।
2: है?
0: हाँ।
2: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
0: अरे मेरे सिर में दर्द है जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
3: हम जैसे, इधर आओ।
4: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
0: आई चाचा।

0: जंतर मंतर पर प्रस्तावित धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है।
1: तो अब जब साफ है कि सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीजेपी के प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस की इजाजत नहीं है, कानून व्यवस्था का हवाला देकर पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है, तो ऐसे में सवाल है कि जब कांग्रेस जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन पर अड़ी हुई है तो क्या दिल्ली की सड़कों पर शनिवार को एक बार फिर संग्राम दिखेगा? क्या एक बार फिर सीजेपी कार्यकर्ताओं और दिल्ली पुलिस के बीच टकराव दिखेगा? दरअसल दिल्ली पुलिस पहले ही साफ कर चुकी है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए कम से कम 10 दिन पहले अनुमति लेना अनिवार्य है। साथ ही यहां 1000 से ज्यादा लोगों के प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी दिल्ली पुलिस की इन दलीलों को मानने को तैयार नहीं दिख रही है। यही वजह है कि सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में किलेबंदी की गई है। सीजेपी के 10 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त है। दिल्ली की सीमाओं पर निगरानी बढ़ाई गई है। यूपी, हरियाणा और राजस्थान से लगने वाले बॉर्डर पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस के मुताबिक इलाके में धारा 163 लागू है, जिसके तहत किसी भी तरह के जुटाव को अवैध माना जाएगा। दरअसल जुलाई महीने में हुए प्रदर्शन और बवाल से भी दिल्ली पुलिस ने सबक लिया है। पुलिस ने लोगों से प्रदर्शन में शामिल न होने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है। एहतियातन 10 अक्टूबर को दिल्ली में शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। ये तस्वीरें पुरानी दिल्ली की एक मस्जिद की हैं, जहां पुलिसकर्मी लोगों से अपील करता नजर आ रहा है कि किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन में शामिल ना हो। दिल्ली पुलिस की कोशिश यही है कि सीजेपी के आंदोलन के ऐलान के बीच किसी भी तरह का टकराव ना हो, दिल्ली में हालात बिगड़ ना सके, एक बार फिर सड़कों पर हिंसा जैसे हालात ना हो। दिल्ली से अंशुल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: दिनांक 7/10/2026 को श्री सौरभ दास को कन्वीनर कांग्रेस जनता पार्टी का एक एप्लीकेशन न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में रिसीव हुआ, जिसके अनुसार यह इंटीमेशन दी गई कि 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट करेंगे रिगार्डिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और पाया गया कि उक्त सूचना अत्यंत ही अल्प समय में प्राप्त हुई है, जबकि वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार जंतर मंतर पर कार्यक्रम आयोजित करने हेतु आवेदन कार्यक्रम की निर्धारित तिथि से कम 10 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ये उल्लेख करना भी इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस जनता पार्टी के पूर्व आचरण के अनुसार एक अलग अवसर पर पूर्व में दिए गए उनके द्वारा अंडरटेकिंग्स तथा लॉफुल डायरेक्शंस को भी नहीं फॉलो किया गया था। निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किए जाने पर पूर्व में दिए गए कानूनी दिशा निर्देशों को नहीं पालन करने तथा वर्तमान में पब्लिक सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर एवं ट्रैफिक रेगुलेशन की स्थिति को देखते हुए जंतर मंतर पर प्रस्तावित धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: दिल्ली की किलेबंदी पर सुप्रीम सरकार को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, कहा मक्खी मारने के लिए हथौड़ा नहीं चला सकते, सब कुछ ठप होने से आम लोगों को दिक्कत ना हो। आज रात 9 बजे से बंद होंगे दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशन। नई दिल्ली निजामुद्दीन तक आने वाली कई ट्रेनें भी रद्द, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अफसरों की हाई लेवल बैठक। राष्ट्रपति से मिलने से पहले संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस और सहयोगी दल के नेताओं की बैठक, रणनीति पर मंथन, रात 8 बजे महामहिम से मुलाकात। चुनाव में एनडीए के शानदार प्रदर्शन पर बीजेपी ने विपक्ष को घेरा, स्मृति ईरानी का तंज, भीड़ तंत्र को लोकतंत्र ने दिया जवाब। मध्यप्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण नहीं होगा लागू, हाईकोर्ट में याचिका खारिज, 14% ही मिलेगा रिजर्वेशन, कमलनाथ बोले बीजेपी का ओबीसी विरोधी चेहरा बेनकाब।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

था यह मंत्रिपरिषद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा जेवर रखने का प्रस्ताव भी पास कर दिया।

नमस्कार, हल्ला बोल में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ज्ञानेश कुमार को हटाने की विपक्ष की लड़ाई बहुत गंभीर हो गई है। इंडिया गठबंधन के दलों का प्रतिनिधिमंडल अब से 2 घंटे बाद यानी रात 8 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिल सकता है। इधर कल के लिए पूरी तैयारी है सीजेपी की, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की भी जबरदस्त तैयारी है। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी की अगुवाई में लगातार 3 दिनों से आप देख रहे हैं लगभग प्रदर्शन का प्राइम टाइम चल रहा है, क्योंकि हर दिन लगभग शाम में इसी दौरान आप देखते हैं सुबुगाहट तेज होती है। और आज एक बार फिर माना जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में जो ये विरोध प्रदर्शन है वो आगे बढ़ेगा और आज तो राष्ट्रपति मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर सांसद देने वाले हैं अपना विरोध इस पूरे मामले पर। राहुल गांधी की अगुवाई में लगातार 3 दिनों का प्रदर्शन चल रहा है। इंडिया अलायंस के नेता दिल्ली में सड़कों पर तो नहीं उतरे, लेकिन उनकी रणनीति उस लड़ाई को लगातार जारी रखने की है। दिल्ली में कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किए जाने के मद्देनजर बहुत कड़ी सुरक्षा तैनात कर दी गई है। कुछ ही देर पहले दिल्ली पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना कि भाई हम इजाजत नहीं दे रहे हैं इस विरोध प्रदर्शन के लिए, तो अभी से ही इस पर बयानों के टकराव शुरू हो गए हैं। दिल्ली मेट्रो के जानते हैं 57 स्टेशन आज रात 9 बजे से ही बंद कर दिए जाएंगे। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है और तैयारी पूरी की है। सवाल है कि क्या दिल्ली पुलिस इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बीच ज्ञानेश कुमार के बहाने पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष की राजनीतिक लड़ाई के बाद बीजेपी भी पलटवार कर रही है। उधर यूपी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर करने का प्रस्ताव भी पास किया है। सवाल है कि ब्रांड मोदी के आगे टिकेगा विपक्ष का संग्राम। सीसी पर तकरार, राहुल गांधी आज राष्ट्रपति के द्वार, ज्ञानेश पर आर पार, दिल्ली पुलिस तैयार। हल्ला बोल में हम चर्चा करें, उससे पहले ये रिपोर्ट देखें।

0: राजघाट और सड़क पर संग्राम के बाद इंडिया गठबंधन आज राष्ट्रपति के द्वार पहुंचेगा। 30 सितंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक में बनी रणनीति के तहत 2 अक्टूबर से कोई दिन ऐसा नहीं गया है जब ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त पद से हटाने की मांग पर हंगामा न हुआ हो। विपक्ष के दलों के तेवरों के बीच ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोल दिया है। 10 अक्टूबर के ऐलान को देखते हुए न सिर्फ दिल्ली बल्कि आसपास भी सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं।
1: नई दिल्ली इलाके के अंदर अगर बात की जाए तो बीएनएस की धारा 163 जो है वो लागू की गई है, यानी कि नई दिल्ली इलाके में 5 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। जंतर मंतर और उसके आसपास के तमाम हिस्सों में हर जगह अगर आप देखेंगे तो भारी पुलिस बल और इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है ताकि प्रदर्शनकारी जो है वो जंतर मंतर की तरफ ना जा सके। इसके अलावा अगर बात की जाए तो दिल्ली पुलिस की तरफ से इनपुट भी जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट को दिया गया, जिसमें कि एक्साइज से रिलेटेड दिल्ली में 9 और 10 यानी आज और कल शराब की दुकानें पूरी तरीके से बंद की गई हैं। नई दिल्ली इलाके में भी अगर खासतौर पर बात की जाए तो जहां पर भी जो रास्ते जनपद और उसके अलावा जंतर मंतर की तरफ जाते हैं उन इलाकों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर ना पहुंच सके।
0: दिल्ली यूपी के चिल्ला बॉर्डर पर दोनों राज्यों की पुलिस के साथ बीएसएफ की तैनाती की गई है। रात 9 बजे बॉर्डर को पूरी तरह सील किया जा सकता है। शुक्रवार रात 9 बजे से दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशन बंद किए जाने का ऐलान हुआ है। 9 स्टेशन मेट्रो की रेड लाइन पर है, 20 येलो लाइन पर, 8 ब्लू लाइन पर, 7 वायलेट लाइन पर, 8 पिंक लाइन पर, 4 मजेंटा लाइन पर और शिवाजी स्टेडियम बंद किया जा रहा है। नई दिल्ली और दिल्ली के निजामुद्दीन आने वाली भारतीय रेलवे की 165 में से 38 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। इस बीच इस रोकथाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि दिल्ली की ट्रेन सेवा और दिल्ली मेट्रो के स्टेशन पूरी तरह बंद न हो, आम लोगों को दिक्कत ना हो, इसका ख्याल रखा जाए। उधर दिल्ली पुलिस पिछले अनुभवों से सीखकर बेहद सतर्क है।
2: उनका जो प्रीवियस कंडक्ट था, उन्होंने जो हमारे लॉफुल डायरेक्शंस को नहीं फॉलो किया या उनकी जो अंडरटेकिंग दी गई थी उनके द्वारा उसको भी नहीं कंप्लाई किया, और प्रेजेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और पब्लिक सेफ्टी के मद्देनज़र इस एप्लीकेशन जो थी उसको रिजेक्ट किया जाता है। 163 बीएनएसएस की धारा लागू है नई दिल्ली में, जिसके तहत किसी भी तरह के जमावड़े को नहीं परमिशन दी जा रही है।
0: पुरानी दिल्ली की शाही बाग मस्जिद में एक पुलिस अफसर का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो लोगों से प्रदर्शन से दूर रहने की अपील कर रहा है।
3: पुलिस और प्रशासन का साथ दे और अपने परिवार वाले और अपने बच्चों को इस बारे में समझाएं।
0: दिल्ली के हर्ष विहार की मस्जिद में भी ऐसा ऐलान हुआ है।
4: 8-9-10 तारीख को जो प्रोटेस्ट चल रहा है पर कोई जाए।
0: इस बीच दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक ओपन लेटर पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है, यूनिफॉर्म के पीछे भी एक इंसान है जिसका अपना परिवार है, अपने लोग हैं। पुलिस की इस चिट्ठी के बाद इंडिया अलायंस के प्रोटेस्ट में पुलिस वालों के साथ बदसलूकी का आरोप गहरा गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी महिला पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता का आरोप लगाया है। इस बीच जब ज्ञानेश कुमार और उनके बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष हमलावर है, तब बीजेपी ब्रांड नरेंद्र मोदी पर और ज्यादा दांव लगा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर करने का प्रस्ताव पास किया है।
5: उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री जी की आभारी है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर की सौगात दी, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट एवं भविष्य में देश का सबसे बड़ा एविएशन हब बनने जा रहा है। अतः यह मंत्रिपरिषद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा जेवर रखने का प्रस्ताव भी पास करती है।
0: नरेंद्र मोदी का नाम बीजेपी के लिए लगातार सबसे बड़ा त्रुप का पत्ता साबित होता रहा है। तो उधर अब ज्ञानेश कुमार के नाम पर संग्राम कर मोदी से सियासत की जंग छेड़ी गई है। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद और राष्ट्र प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में अतुल लौंडे पाटिल जी आज चर्चा के लिए आए हैं। अरुण भारती जी सांसद एलजेपीआर के, वीरेंद्र सिंह सांसद समाजवादी पार्टी के, और इसी के साथ साथ राजन भगत, पूर्व अफसर दिल्ली पुलिस के, हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आज मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं सुधांशु जी, क्योंकि अब क्यों रोकना क्यों है भाई? लंबे वक्त तक रामलीला मैदान में अन्ना का आंदोलन चला, लेकिन उससे पहले जैसा हमने आपको बताया था कि कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि मक्खी मारने के लिए हथौड़े का ये टिप्पणी है। सबसे पहले तो आपको ये स्पष्ट कर दे कि ये टिप्पणी की गई है, क्योंकि आज जो ये मेट्रो स्टेशन बंद, रेल बंद किया जा रहा था, तो उस पर कहा है वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट वी फॉलो फॉर एवरी सिटीजन इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी किस अनुपात में आप कदम उठाएंगे। आपको कुछ चीजें रोकनी है, यू हैव टू प्रिवेंट सर्टन थिंग्स, द मेजर्स ओनली टू द एक्सटेंट नेसेसरी, टेक मेजर्स ओनली टू द एक्सटेंट नेसेसरी, यानी जितना वाजिब हो वैसा ही कदम उठाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक मक्खी को मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करेंगे, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। दैट प्रिंसिपल मस्ट बी केप्ट इन माइंड, ये सीजीआई ने कहा है। सुधांशु जी,
6: देखिए जो भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट स्वयं निर्णय दे चुका है। 2004 में कर्नाटक स्टेट के साथ डिसीजन में उसने कहा कि अगर प्रीवियस में कोई ऐसी चीज आई है तो उसे नहीं किया सकता। मद्रास हाई कोर्ट में डीजीपी ऑफ तमिलनाडु वर्सेस पीएफआई केस में 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने यही जजमेंट दिया हुआ है। एक नहीं, अनेक मौकों पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया हुआ है कि यदि पूर्व में किसी संगठन का ऐसा विचार, ऐसी रिकॉर्ड रहा है जिसमें शांति भंग की आशंका है, उसमें निर्णय लिया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है,
0: बोलिए बोलिए सुधांशु जी,
6: और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय है। और मैं अंजना जी बहुत ही विनम्रता के साथ और पूरी शालीनता के साथ सर्वोच्च न्यायालय से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जैसे वो लोग संवैधानिक दृष्टि से सोचते हैं, हम लोग पॉलिटिकली भी सोच के बयान में सावधानी रखते हैं। पिछली बार उन्होंने कॉकरोच बोल दिया था, कॉकरोच पार्टी खड़ी हो गई। अब ऐसा ना हो आज मक्खी बोल दिया, कल कोई मक्खी पार्टी खड़ी हो जाए। तो यह भी मैं इस विषय के ऊपर बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि जरा टिप्पणियों के विषय में भी उसके दूरगामी प्रभाव ध्यान में रखना चाहिए।
0: बिल्कुल,
6: अब मैं आता हूं इस विषय के ऊपर। जो कुछ पिछली बार हुआ था उसमें कानून व्यवस्था के साथ साथ जिस प्रकार की अभद्रता, अश्लीलता वो सब दिखाई पड़ी, मतलब जो कानून के साथ साथ समाज और संस्कृति के लिए भी बहुत ही घातक था, मुझे लगता है उसको ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार का कोई रिस्क लेना उचित नहीं है। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं जो आज का विषय है। जना जी, अतुल जी बैठे हैं, हमारे अन्य विपक्षी लोग बैठे हैं, कह रहे हैं चुनाव आयोग में ये हो गया वो हो गया। भाई साहब, ये आज बाई इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, जब इस समय इसके इलेक्टोरल रोल्स बन रहे थे तो आपने सब चेक कर लिया था ना, आपके इलेक्शन एजेंटों ने सारी चेकिंग कर ली थी ना, कुछ गलत नहीं पाया था ना। अच्छा, कल जो पोलिंग हुई, पोलिंग एजेंट में भी सब कुछ ठीक था ना। और दूसरी बात भैया, अतुल पाटिल साहब जरा गौर से सुनिए, अभी 45 दिन का आप हल्ला मचाते हैं, अभी 45 दिन का समय है, सीसीटीवी मांगेंगे ना बाय इलेक्शन में, धड़ाम से गिरे हैं बाय इलेक्शन में सब तरफ। मतलब पश्चिम बंगाल की रेजीनगर सीट जो मुस्लिम बाहुल्य है, जो हुमायूं कबीर की सीट थी, वहां बीजेपी अच्छी स्थिति में है। आसाम के नौगांव में जो जबरदस्त मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, वहां बदरुद्दीन अजमल दूसरे नंबर पे और कांग्रेस तीसरे नंबर पे, और भारतीय जनता पार्टी 160,000 से ऊपर की बढ़त बनाए हुए और उम्मीद है कि हम पूरी तरीके से जीत जाएंगे। और पाटिल साहब, अभी आसाम में सिलचर का नगर पालिका का चुनाव हुआ, वो तो बैलेट से हुआ, और बैलेट ने 42 में 34 सीटें हमने जीती, आप दुठैया या चारठैया जीत पाए, दो जो है असम गण परिषद ने भी जीती। तो मैं पूछना चाहता हूं भाई साहब, और एक और मैं पूछना चाहता हूं अंजना जी, मैं आपके लाखों दर्शकों के सामने ये बात कहना चाहता हूं, यही कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती थी 2 साल पहले, ईवीएम हैक है, ईवीएम हैक है, कोई भी बटन दबाओ वोट तो बीजेपी को जाता है। आज इन्होंने ईवीएम की बात छोड़ दी है, तो मैं पूछना चाहता हूं अब ईवीएम ठीक है ना? और अगर आपका वो काल्पनिक आरोप सही था, मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं, जरा आप सोचिए कि ये लोग कैसी बुद्धि रखते हैं। अगर कोई ये कहे कि साहब ईवीएम हैक थी, तो फिर इलेक्टोरल रोल में कुछ करने की क्या आवश्यकता थी? आप ही तो कहते थे बटन दबाएंगे वोट तो बीजेपी को जाएगा, तो कहे चुनाव सूची में वो करेंगे। इसका अर्थ है कि एक साथ दोनों आरोप लगाने वाला व्यक्ति, अब मैं फिर कहना चाहता हूं उसकी बुद्धिमत्ता कितनी हो सकती, उसको मूर्खता कहा जाए या धूर्तता कहा जाए, यह मुझे लगता है देश के दर्शक तय करें, अन्यथा कांग्रेस पार्टी को आज स्पष्ट करके जाना चाहिए कि दोनों में से कौन से आरोप पे कायम है। दोनों आरोप एक साथ कायम नहीं रह सकते।
0: चलिए ठीक है, आप जवाब इसका दीजिए और एक इस मुद्दे पर भी आते हैं क्योंकि इसके बाद मैं राजन भगत जी से एक उस पर वो लूंगी, प्रतिक्रिया लूंगी। ये जो पुलिस के साथ हो रहा है, आपको लगता है मतलब सभी के परिवारों से, कोई महिला कांस्टेबल सुबह बेचारी अपना यूनिफॉर्म पहन के वहां जा रही है, वो तो ड्यूटी कर रही है, उसको अगर हिट किया जाता है उनके लिए क्या चैलेंज है? भाई देखिए, प्रोटेस्ट हमेशा होते रहे, कांग्रेस पार्टी भी कर रही है ना, लेकिन पुलिस पर हमला तो नहीं होना चाहिए ना? वैसे ही पुलिस की भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए, मैं ये भी बार बार कह रही हूँ।
7: देखिए, पुलिस जिस तरह की जातियां कर रही है, मैं आज दिल्ली में आया सुबह तो सारे महिला सांसदों से भी मैं मिल रहा था, तो सबने ये कहा कि पीछे से चूटी निकालना, बैज को हाथ में रख के फिर उसको रब करना पीछे से। मैंने जख्म देखे अंजना जी, जख्म दिखाए मैंने, है सब हमारी जख्म दिखाए। और अभी खबर आई है कि दीपेंद्र हुड्डा जी से लेकर हरियाणा के सारे सांसदों को जो है उन्होंने हाउस अरेस्ट कर लिया है। तो सारी चीजें जो जातियां जो है ना वो हो रही है, पूरे दिल्ली को बंद हमने गिराना चाहिए ना, हम अपोजिशन है, हमने अपने मुद्दों के लिए बंद करना चाहिए, तो खुद रूलिंग में रहकर इन्होंने खुद ही जो है बंद कर दिया है। सुधांशु जी, आप बाकी प्रवक्ता अगर कुछ कहे तो ठीक, मैं उसको ज्यादा बुरा नहीं मानता, आप पढ़े लिखे हो लेकिन आप बुद्धिमत्ता ये वगैरह निकालते हो, मेरे पास कई चीजें हैं। अभद्रता तो इस देश के प्रधानमंत्री ने जितनी अभद्रता की होगी दुनिया के किसी हेड ऑफ स्टेट ने नहीं की होगी, जितनी अभद्रता नरेंद्र मोदी जी ने की थी। जब घर का मुखिया जैसा बर्ताव करता है ना, उसका वातावरण में असर होता है। 2014 के पहले, मैं तो 2012 में राजनीति में आया, 2012 के बाद आपने जिस तरह के अनर्गल आरोप किए, गलत सलत आरोप किए, जो बाद में सिद्ध भी हुआ कोर्ट में, उसके बावजूद किसी के भी तरफ से ना मनमोहन सिंह साहब की तरफ से, ना राहुल जी की तरफ से, ना सोनिया जी की तरफ से अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ। अभद्र भाषा का इस्तेमाल पहले से इस देश के प्रधानमंत्री जो है अभी नरेंद्र मोदी जी करते आए हैं। अभद्र भाषा नहीं करनी चाहिए, इस पे तो सभी सहमत होंगे। पुलिस को नहीं मानना चाहिए, इस पे सभी सहमत होंगे, लेकिन पुलिस को किसने अधिकार दिया है ये मुझे बात बताइए? किल लगा के मारते हैं, बैज लेकर नहीं आते हैं, सांसदों को जाने नहीं देते हैं, तो सत्ता तो आती जाती रहेगी ना। सत्ता तो कोई ऐसा है नहीं कि आप लेके बैठे हो और बैठे ही रहोगे, तो सत्ता तो आती जाती रहेगी, लेकिन जो स्टैंडर्ड सेट कर रहे थे कितने गलत है। सुधांशु जी, आप सांसद होकर नहीं मानते होंगे तो ठीक है, आप अपने पार्टी का पक्ष रख सकते हो, लेकिन उसे सच्चाई नहीं बदल जाती है। आपने मुझे कहा कि हम यहां जीत रहे वहां जीत रहे, पूरा इलेक्शनरी करते हो आप। गुजरात में लोकल बॉडीज के इलेक्शंस में आप अपोजिशन को जाने नहीं देते, फॉर्म तक नहीं भरने देते हो। आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा क्या करता है किसी को बताने की जरूरत नहीं है।
0: अच्छा, प्रोटेस्ट पे आ जाएं हम लोग एक बार, प्रोटेस्ट
7: जिस तरह का जेरीमेंडरिंग किया, कुछ उदाहरण दिया उन्होंने जिस तरह का जेरीमेंडरिंग किया, जिस तरह के कॉन्स्टिट्यूएंसीज को उन्होंने रिड्राफ्ट किया है, ऐसा तो दुनिया में कहीं हुआ नहीं है। और इस देश के गृहमंत्री 2015 का इलेक्शन, 20 का इलेक्शन, 25 का इलेक्शन, घुसपैठिए, हिंदू मुसलमान, जो पार्टी 12 साल के बाद भी अगर हिंदू मुसलमान और विभेद पे और द्वेष पे चुनाव लड़ती है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं, उसने कुछ किया नहीं, सारी योजनाएं बंद हो गई है, किसी भी योजना में इनको सक्सेस मिला नहीं, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, चाहे वो स्मार्ट सिटी हो, चाहे वो स्मार्ट गांव हो, उनके खुद के वाराणसी में नहीं दिखा पाएंगे वो, अगर पूछने जाओ तो। नहीं तो मैं चलता हूं सुधांशु जी के साथ, मुझे दिखा दीजिए वाराणसी में उन्होंने क्या क्या किया।
0: छोटा सा एकदम सुधांशु जी, एकदम छोटा सा, मुझे आज पर जाना है और कल की स्थिति पर जाना है।
8: मैं दोनों बात कह रहा हूं। मैं अतुल पाटिल साहब, आपसे भी विनम्रता से कहता हूं, मैं आपको भागने नहीं दूंगा। आज का बाय इलेक्शन हुआ, आपने कहा रिग्ड हुआ। आपके बीएलए ने साइन किया है कि नहीं, बताइए इलेक्टोरल रोल पे, हाँ या ना? आपके पोलिंग एजेंट ने साइन किया है कि नहीं, बोलिए हाँ या ना? आपके काउंटिंग एजेंट ने साइन किया है कि नहीं, बोलिए हाँ या ना? फिर क्यों सर आप झूठ बोलते हो भाई? आपका इलेक्शन एजेंट वहां साइन कर रहा है, पोलिंग एजेंट वहां साइन कर रहा है, सीसीटीवी की नजर में पूरी चीज हो रही है, और यहां आके कह रहे हो फिर भागने नहीं दूंगा भाई। ईवीएम हैक थी या इलेक्टोरल रोल गड़बड़ है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। जवाब दे के जाइए, दोनों में से क्या सच है?
7: बराबर देता हूं, जवाब देता हूं। इलेक्शन रिग करते हो और ऊपर से
0: बीएलए ने साइन किया कि नहीं किया?
7: इलेक्शन रिग करते हो और इलेक्शन रिग करने के बाद बड़े जोर से पूछते हो भागने नहीं दूंगा? भागने तो मैं
8: साइन किया बीएलए ने।
7: आपने हमारे डिमांड नहीं सुने। मैं बीच में बोला नहीं। इलेक्शन रिग करते हो,
0: और ये तस्वीरें एक बार दिखा दे अपने दर्शकों को, ये राहुल गांधी और जो तमाम सांसद उनके साथ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सभी इमरान मसूद भी दिखाई दे रहे हैं, ये सभी सांसद सेंट्रल हॉल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति से आज इन सांसदों को मिलना है और अपनी तरफ से उनको चिट्ठी सौंपनी है। राजन भगत जी, देखिए ये रोज वाली बहस
7: मैं
0: तंग आ चुकी
7: हूं। आज की बात बता रहा हूं। आज बंगाल के बाई इलेक्शन में इनका विधायक जो है जहां वोट नहीं उसका वहां जाकर वोट करता है, रंगेहाथ पकड़ा गया, लेकिन आज प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है जिसको अधिकार है वहीं के वहीं अरेस्ट करने का, अरेस्ट नहीं किया।
0: भगत
7: ये सामने आए, बुद्धिमत्ता कहा, इन्होंने हमारे डिमांड नहीं देखे। हमारे डिमांड में ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर लाने की बात है, तो बुद्धिमत्ता की बात मत कीजिए।
0: राजन भगत जी, ये जो जो मेट्रो स्टेशंस बंद कर रहे हैं, ट्रेन स्टेशंस बंद कर रहे हैं, अब ये प्रोटेस्टर्स जो हैं सीजेपी वाले, वो कह रहे हैं कि डर गई है पुलिस, डर गई है सरकार, इसलिए ये हो रहा है। पुलिस का पक्ष क्या है इस पर?
9: नमस्कार जी, मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो पास्ट कंडक्ट को देखते हुए पुलिस के पास मैं समझता हूं कि कुछ इंटेलिजेंस इनपुट होंगे जिसके मद्देनजर उन्होंने ये स्टेप्स लिए हैं। इससे आम जनता को तकलीफ हो रही है, और ये कहना कि पुलिस डर गई है या पुलिस का ये काम है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना और जान माल की रक्षा करना। लेकिन अगर जो परमिशन लास्ट टाइम दी गई थी उसकी सारी वायलेशंस हुई, उसके बाद पुलिस और आम जनता में जो प्रदर्शनकारी थे उनके बीच में भड़ंत हुई, तो मैं आपको ये पूरी तरह से दावे से कह सकता हूं कि पुलिस कभी भी मारपीट पे शुरुआत नहीं करती। जब आप अगर लॉफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि 1000 आदमी तक जंतर मंतर में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसकी अंडरटेकिंग दी होगी उन्होंने प्रोटेस्ट करने से पहले, उसको क्यों नहीं माने? जो टाइम दिया गया उठने का उस पर क्यों नहीं उठे और अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं? तो जब ऐसी बातें होंगी, जब उनको कहा जाएगा और वो जवाब पे अगर पुलिस से भिड़ेंगे तो हाथापाई में दोनों पक्षों का नुकसान है। जबकि पुलिस कभी भी जाती नहीं करेगी, अगर पुलिस पे अटैक होगा तो वो सेल्फ डिफेंस में जो काम कर रही है उसमें चोट लगती है, वो भी इंसान है, दर्द उनको भी होता है। तो इसलिए ये कह देना खाली पुलिस डर गई या पुलिस को लड़ने के लिए थोड़ी आई है, पुलिस को मार खाने के लिए थोड़ी आई है या पुलिस को मारने के लिए थोड़ी आई है, पुलिस का काम है शांति व्यवस्था और कानून का पालन कराना। लेकिन अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसको जब कहा जाएगा कि कानून और व्यवस्था के तहत आप इसके बाद मत आइए, तो कानूनी जो डायरेक्शन है उसको क्यों नहीं मानते? 163 DNSS लागू किया गया है, उसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कानून कोई देश में है ही नहीं, संविधान है तो कानून है, तो उसके ऊपर जिम्मेवारी भी है आम नागरिक की, प्रदर्शनकारी की भी, जहां उनको ये हक देता है प्रदर्शन करे वहां उनको ये भी जिम्मेदारी भी देता है कि कम से कम प्रदर्शनकारी जो है वो अपनी हद में रहे।
0: राजन जी, हाँ ठीक है, पूरा कीजिए, पूरा कीजिए।
9: नंबर टू, प्रदर्शन मार्च और जो आपका जो धरना है, तीनों में अंतर होता है। इन्होंने जंतर मंतर पे धरने की परमिशन देके मार्च शुरू कर दिया, मार्च करते करते आगे जाने लगे तो उनको रोका नहीं जाएगा तो क्या किया जाएगा? जब रोका जाएगा तो ये बैरिकेड उछलेंगे करेंगे तो लाठीचार्ज नहीं होगा तो क्या होगा? आप बताइए ना, पुलिस के पास क्या विकल्प है? पुलिस को अपनी ड्यूटी करनी है, नहीं करेगी तो आप कहेंगे पुलिस ड्यूटी नहीं कर रही। अब आप पुलिस व्यवस्था कर रही है,
0: एक सेकंड होल्ड योर थॉट्स, होल्ड योर थॉट्स राजन जी होल्ड योर थॉट्स, एक सेकंड मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, एक बार सुना देते हैं।
10: जब से हमारे राहुल गांधी जी खुद बोले कि बहुत से गलतियां इसमें वोट चोरी का है, और उसी के साथ EVM भी उसमें भी बहुत बड़े गलतियां हो रहे हैं, और ये आज नहीं, सालों से हम लोग ये समस्या को सरकार के सामने CEC के सामने रख रहे हैं, लेकिन उसका कोई उनके तरफ से ठीक से जवाब भी नहीं, और इसके बारे में कोई चिंता भी उन्होंने व्यक्त नहीं किया। इसीलिए हम चाहते हैं कि देश में हित में और खासकर जो आज़ादी के बाद हमको जो संविधान मिला और संविधान के वजह से जो अडल्ट फ्रेंचाइज मिला और अडल्ट फ्रेंचाइज के वजह से एक गरीब लोगों को एक ताकत आ गई और हुकूमत करने की एक सबको, चाहे वो युवा हो, गरीब हो, महिला हो।
0: नहीं, लेकिन आप राजन जी अपनी बात पूरी कीजिए दो लाइन में, उसके बाद से अतुल जी भी दो तीन सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, सुधांशु जी भी हैं, वीरेन जी इसके बाद मैं आपके पास भी आ रही हूँ जल्दी से। वो कह रहे हैं कि भाई आप, मैं आपसे सीधा टिप्पणी पूछना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की टिप्पणी पर। वो कह रहे हैं कि अनुपात की बात वो कर रहे हैं, सेंस ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी उनका ये कहना है, हालांकि इससे ज्यादातर लोग असहमत होंगे कि कभी कॉकरोच कभी फ्लाई पर चर्चा लानी चाहिए नहीं लानी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि मक्खी मारने के लिए आप हथौड़ा चला रहे हैं। उस अनुपात वाले उनकी टिप्पणी पर आपका क्या रिएक्शन है?
9: मेरा रिएक्शन सीधा सीधा है। हाँ। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जन जंतर मंतर पे 1000 आदमी धरने पे बैठ सकते हैं। क्या ये जो इनकी एप्लीकेशन, क्या ये अंडरटेकिंग ले रहे हैं कि 1000 आदमी ही आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे? आम जनता को, लाखों लोगों को बुला रहे हैं सर, पूरे देश से बुला रहे हैं, और वो जंतर मंतर पे कैसे आ जाएंगे? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के वायलेशन नहीं? अगर 1000 आदमी की ये अंडरटेकिंग दे दें तो मैं पूरी तरह से मानता हूं कि दिल्ली पुलिस इनको इजाजत दे देगी, इनको बैठा देगी। और अगर ये भी मान ले कि जब तक इजाजत दी है उसके बाद ये अपने आप उठेंगे।
7: युवक कांग्रेस ने 25 सितंबर को एप्लीकेशन दी थी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को और कहा था कि 100 से 150 लोग युवा कांग्रेस के वहां बैठना चाहते हैं 1 से 25 तारीख तक अक्टूबर के, उनकी परमिशन जो है वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी, पहली बात। दूसरी बात, आप अगर ऑब्जेक्शन उठाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता कि 23,000 पुलिस आर्मी छोड़ के ITBP से BSF SRPF CRPF सारे 23,000 लोग देश के जनता के खिलाफ इस कैपिटल में जो है वो उतारे गए हैं। अब मुझे बताओ, स्वतंत्र भारद्वाज कहता है कि मेरे पास पुलिस की लाठी भी है, मेरे पास जूता भी है, पकड़ना पड़ा क्योंकि उसने आम सामने बोल दिया लेकिन उसने लाठी चलाई वहां पर, सर फोड़ा, ये सारी बात। मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, कील की लाठी लेके पुलिस आए उसके ऊपर आपने कुछ नहीं बोला। अभी मुझे बताओ, पैलेट गन चलाया, AK-47 टेररिस्ट के खिलाफ यूज करने का वेपन है, वो वेपन चला पटना में, सब झूठ बोला गया, सब पकड़ा गया। इस देश की पुलिस जिस तरह से बर्ताव करती, सामने जनता नहीं है, सामने सामने कोई गुनहगार है, टेररिस्ट है, इस तरह से बच्चों को ट्रीट करे और आप उसका साइड ले रहे हैं।
0: पुलिस का व्यवहार, ये इस पर बहुत सवाल लगे ना, कई वीडियोस आए राजन जी उस वक्त
7: एक बच्ची को मोलेस्ट किया,
0: उस पर जवाब दीजिए।
9: मैं इसका जवाब दे चुका हूं और दोबारा कह रहा हूं, जो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये इसकी जो इंक्वायरी है वो सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी कर रही है, इसलिए मैं इस पे इस जगह पे टिप्पणी बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि ये अभी विचाराधीन है कोर्ट की कमेटी के। नंबर दो, मैंने पहले बोला है कि जब आप उसकी कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगे, पुलिस की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे और जो आपने अंडरटेकिंग दी है परमिशन लेते समय उनको फॉलो नहीं करेंगे, तभी पुलिस आपको रोकेगी। और रोकने पे अगर आप पुलिस से धक्का मुक्की करेंगे, उनको घेरेंगे मारेंगे, तो जवाब में अपने सेल्फ डिफेंस भी नहीं करेगी पुलिस क्या? और अगर किसी ने
7: इनके घर पे बच्ची नहीं आई, बच्चियां नहीं है,
9: क्यों 1000
7: से ज्यादा आपने लाठीचार्ज किया? कोई हर्ज नहीं, आपने लाठीचार्ज किया, कोई हर्ज नहीं।
0: उनको जवाब भी देने दीजिए ऐसे, अतुल जी स्टूडियो का फायदा मत उठाइए। ऐसा भी है ना कि वो पुलिस वाले भी इंसान ही है ना, है उनके साथ जो व्यवहार होता है, गाली गलौज की जाती है, अपमानित शब्द,
7: सुनिए
0: अतुल जी, नहीं देखे आपने
7: ऐसे पुलिस वाले नहीं।
0: अच्छा, रामदेव के आंदोलन में क्या किया था पुलिस ने?
7: पुलिस ने उठाया रामदेव जी को
0: आधी रात में,
7: सुनो
0: उससे अशांति हो रही थी,
7: उठाया किसी बच्ची किसी महिला के,
0: ये देखिए महिला कॉन्स्टेबल्स के साथ क्या क्या हो रहा है,
7: आप दिखाइए ना, स्वतंत्र भारद्वाज ने क्या क्या वो दिखाई,
0: वो भी दिखाया हमने,
7: वो पुलिस ने जो डंडा डाला वो दिखाइए।
0: ये लोग नहीं है,
7: इसका समर्थन नहीं करता मैं,
0: नहीं
7: इसका समर्थन नहीं करता।
0: यू कांट एस्केप इट, इस सिचुएशन को कौन रोकेगा फिर अतुल जी?
7: नहीं, मुझे एक बात बताइए,
0: ये टकराव की स्थिति को कौन रोकेगा?
7: सिचुएशन बच्चों पे जब जो नियत लोग है, जो अहिंसक लोग है, उनके ऊपर जब लाठियां चलती है, बेरहमी से लाठी चार्ज होता है, तो लोग रिएक्ट करते हैं, जिसका समर्थन नहीं करता
0: सुधांशु जी,
7: रिएक्ट जो लोग हैं, इंसक रहना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए,
0: स्टूडियो का फायदा नहीं, वो कह रहे रिएक्ट करते हैं। इसके बाद वीरेन जी और अरुण जी के पास।
6: देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस को या विपक्षी दलों को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, आए बाएं साएं नहीं बोलना चाहिए। इसी दिल्ली में 7 नवंबर 1966 को गोरक्षक संतों पर निशाना साध साध के गोलियां मारी गई थी, मुलतई में किसानों के ऊपर निशाना साध साध के गोली 1998 मारी गई थी, देश की संसद में खड़े होकर मुलायम सिंह यादव ने बोला है कि जो ऊपर चढ़ गए थे कार सेवक, वो नीचे उतर नहीं पाए, वहीं चिपक गए। पुलिस का काम होता ऊपर चढ़ गए नीचे उतारना, ठीक। और रामगोपाल यादव जी ने क्या बोला, जो ऊपर चढ़े वही टांग दिए गए, ठीक है। कोठारी ब्रदर्स के सर पे सटाक गोली मारी गई थी, इसलिए वो सब मत बोलिए। जहां पे जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो साफ दिखाई पड़ रहा है। मगर अतुल पाटिल साहब बताइए, ईवीएम हैक थी कि नहीं? अब दूसरी बात बताइए, पेगासस था ना राहुल गांधी के फोन में? तो अगर पेगासस होता तो राहुल गांधी का हर मूव हमें पता होता, बकौल आपके। और अभी मीडिया दिखाता था कि भाई लोग तो सरप्राइज रह जाते थे, पता ही नहीं लग रहा था राहुल गांधी कल क्या करेंगे। अगर पेगासस होता तो राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं, सारी बात पता होती ना। फिर मैं दर्शकों के सामने कह रहा हूं, बहुत गंभीरता से इन सारी बातों को देखिए। और देखिए कल जो प्रोटेस्ट की बात हो रही है, आम आदमी पार्टी को कुछ समय लगा था अपनी असली नकाब आने में, आज तो नकाब बहुत जल्दी उतर गया। पहले यही लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम छात्रों की परीक्षा के मुद्दे पर केवल केंद्रित हैं, यानी जो टेस्ट का सिस्टम है केवल हम उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। केवल दो महीने में सीधे चुनावी राजनीति के ऊपर प्रोटेस्ट पे आ गए। मुझे लगता है इतने कम समय में अपना स्टैंड चेंज करके, गैर राजनीतिक नकाब हटा के और राजनीतिक सामने आने का कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता। और मैं आपसे कहूंगा अंजना जी, आपके कैमरामैन से कहूंगा जरा फोकस करिए, आपको बता रहा हूं ये सारा बवाल क्यों हो रहा है। ये जो कह रहे हैं ना इलेक्टोरल रोल में लोग बढ़ गए, इन सारी चीजों के ऊपर मैं बताना चाहता
0: हूं। एक सेकंड लौटूंगी तो दिखा दीजिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में कल सीपी में दुकानें दफ्तर बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ बताया जा रहा है चांदनी चौक का बिजली मार्केट भी कल बंद रहेगा, भागीरथ पैलेस बंद रहेगा, और बताया जा रहा है कुछ स्कूल्स को लेकर भी, एग्जाम्स को लेकर भी, दिल्ली के कई स्कूल कॉलेज में कल ऑनलाइन पढ़ाई की बात की गई है। फिर अनुपात वाली बात सुधांशु जी आ जाती है, इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। परीक्षाएं टाली गई हैं कुछ कॉलेजेस में।
6: हाँ, मैं रिस्पॉन्ड करता हूं। पहली बात पूरी विनम्रता से कहता हूं, यह अनुपात कौन तय करता है? जैसा कि अभी हमारे पुलिस के अधिकारी महोदय कह रहे थे, हजार की छोड़िए, उन्होंने तो कोई अंडरटेकिंग ही नहीं दी है। और यहां पर इस षड्यंत्र की संभावना से इनकार नहीं हो सकता कि वहां कुछ लोग स्वयं प्रायोजित होकर आ जाएं जो आपसी में हिंसा कर दें।
0: सुधांशु जी,
6: क्योंकि इन लोगों का लक्ष्य है अराजकता पैदा करना विपक्षी दलों का, तो
0: सर एक सेकंड आपको टोक रही हूं, ये सब जो कदम उठाए जा रहे हैं उस पर जो प्रतिक्रिया आ रही है सीजेपी और प्रोटेस्टर्स की तरफ से, वो जानते हैं क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा माहौल बनाया जा रहा है। वो इसको कह रहे हैं कि हमारे लिए माहौल बनाया जा रहा है।
6: नहीं, ये माहौल कहां से बना है वो भी मैं जरा बताना चाहता हूं। आपके कैमरामैन से कहूंगा जरा फोकस करिए।
11: $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Well, $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Well, $21 million.
6: आप बताइए, क्या भारत में किसी को अपना वोट ऐड कराना तो पैसे की जरूरत तो होती नहीं थी? यह अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है 9 फरवरी 2025 को कि यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने $21 मिलियन यानी 200 करोड़ रुपए से अधिक भारत में वोटरों की संख्या बढ़ाने के लिए खर्च किए, और उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि अमेरिका के एनजीओ को भारत में वोटरों की संख्या बढ़े इसमें क्या इंटरेस्ट और इसमें पैसे का क्या रोल है? भाई साहब जरा आप बताएंगे, बस यही समस्या है। ये 2 फरवरी 25 का है, यानी अमेरिका में सरकार बदलने से पहले 24 का। अब उसके बाद एसआईआर में जो छटपटाहट है, जरा दोनों डॉट्स को कनेक्ट किया जाए तो बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है कि वो सैकड़ों करोड़ रुपए कहां खर्च हुए होंगे और किस कारण से आज ये सारी चीजें, यहां का प्रोटेस्ट, उसके बाद जिस प्रकार की पूरा वातावरण बनना, और ईवीएम भी हैक थी, वो भी पेगासस भी था, इलेक्टोरल रोल भी चेंज हो रहे थे, और यूएसएड से सैकड़ों करोड़ रुपए भी आ रहे थे। मुझे लगता है सारे दर्शक अपने आप इन डॉट्स को कनेक्ट करें तो पिक्चर बहुत साफ हो जाएगी। और माननीय अतुल पाटिल साहब अगर इस पे प्रकाश डाल सके, वैसे वो डालने की जरूरत ही नहीं है, प्रकाश पूरी तरीके से प्रकाशमान सत्य है। अब इसके ऊपर जो अंधकार डाल सके जरा बताइएगा।
0: ठीक है, छोटा सा रिस्पांस फिर बाकी।
7: छोटा सा नहीं, इन्होंने 4-5 सवाल खड़े किए तो मैं जरूर उसके बारे में बात करूंगा। पेगासस की कमेटी के चेयरमैन जो है वो है शशि थरूर जी, इन्होंने उसका कोरम ही पूरा नहीं होने दिया पेगासस के ऊपर, और उसकी कमेटी की मीटिंग जो है मीटिंग नहीं होने दी। इन्वेस्टिगेशन कितना करते सारे देश को पता है। मैं चाहूंगा कि इस देश के जनजे जो है ना गूगल में जाके ये सारी चीजें देखी। अभी इन्होंने कहा राम भगवान का इस्तेमाल करते हैं, चोरी करते हैं मंदिर में जाके, मंदिरों में चोरी, कोई ऐसा मंदिर इन्होंने छोड़ा नहीं जिनके हाथ में है, सब जगह चोरी करते, भगवान का इस्तेमाल करते। गोमाता की इन्होंने बात की, देश के प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में जाके कहते हैं कि हम बीफ एक्सपोर्ट में सेकंड नंबर पर पहुंचे हैं। गोमाता है, प्लास्टिक खाती हुई जहां वहां देखी जाती है, नागपुर में भी देखी जाती है, और जाओ जो हमारे वक्त गो रक्षा के लिए जो जगह दी थी ना, वो जगह नितिन गडकरी के बेटे को दी गई है। मैं बीच में बोला नहीं सुधांशु जी, सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। वो गोरक्षण की जगह है ना धंतोली में, जो हमारे नागपुर में दी गई है, वो सारंग गडकरी को दी गई है। उसके बारे में पूछना आप कितने गो माता के बारे में बात करते हो, हमने देखा है राष्ट्रमाता डिक्लेयर करते हैं वो भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ईवीएम हैक की बात करिए, ये तो सीधा सीधा दिखता ही है ना, रिक करके इलेक्शन जीतते हैं, ये सीधा है। आज बंगाल में इनका विधायक बोगस शूटिंग करता है, उसको पकड़ते नहीं है, बोगस शूटिंग रोकते नहीं है, तो ये जो है एसआईआर से वोटर को बाहर करके, 27 लाख वोटर को बाहर करके, जिसमें जितने भी नपे गए उसमें से 93% जो है सही पाए गए, लेकिन घुसपैठिए कह दे नितिन नवीन जिसको उठाए, जो जिस देश में जिनका वोटर वोट का अधिकार निकल गया वो सारों को नितिन नवीन ने घुसपैठिया कह दिया है। और फिर इलेक्शन कमीशन क्या कहता है, फिर से एसआईआर लगाता है स्पेशल, और जाओ सबको लेकर आओ, अनमैप जो है, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो है उनको फिर से जो है एक भी कागज दे दे तो उनको फिर से वोटर लिस्ट में जोड़ो। तो हर जगह चोरी पकड़ी गई है, सबूत के साथ जो है वो चोरी पकड़ी गई है। तो ये सेल्फ गोल जो आप कर रहे हो ना, तो आप समझ लीजिए, आपने माय डियर डोनाल्ड जिसके लिए आपने 1 लाख करोड़ खर्चा करके जो कार्यक्रम किया था ना, गरीबों के यहाँ सफेद कपड़ा लगाया था, वही अगर $21 मिलियन पहुंचाता है तो सोए थे क्या आप? सरकार आपकी है और आपके नाक के नीचे सारी चीजें होती है, और आप कह रहे हैं आपका माय डियर डोनाल्ड जिसके एपस्टीन के कहने पर इजराइल में नाचे थे, ऐसा डीओजी कह रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने डांस किया था इजराइल में फेवर में लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को, ये एपस्टीन का डीओजी का ईमेल है, उसके ऊपर आपने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठे रहे। 70 बार उन्होंने कहा, 70 बार, एक बार नहीं है उसको कह नहीं पाए, वही दोस्त को आज आप उल्टा कह के सेल्फ गोल कर रहे हो और आप चुप बैठे हो, कैसी गवर्नमेंट है?
12: अब जवाब दीजिए, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है आप दोनों का ही मैच रह जाएगा, अभी तक बोल भी नहीं पाए हैं।
8: मुझे लगता है देखिए, हम दोनों के मैच में कौन टू दी पॉइंट बॉलिंग कर रहा है और कौन वाइड पर वाइड फेंके जा रहा है, दर्शक तय कर रहे हैं। अब मैं बता रहा हूं भाई साहब, आप क्या बोल रहे हैं, वो आपका सो कॉल्ड माई डियर डोनाल्ड 20 जनवरी 2025 को चार्ज लेता और 9 फरवरी 2025 को कह रहा है मैंने रोक दिया क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अमेरिका के एनजीओ सैकड़ों करोड़ रुपए भारत में क्यों दे रहा। भैया अच्छा पेगासस अगर था, सुनो भाई, ए शशि थरूर की कोई जरूरत नहीं थी, और शशि थरूर का याद दिलाया बहुत अच्छा। मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं जाके वीडियो देखिए, शशि थरूर जी का वीडियो है कि केरल में एसआईआर से कांग्रेस को फायदा हुआ, जो बोगस वोट कम्युनिस्ट पार्टी ने बनाए थे वो कट गए। भाई साहब ये ध्यान है कि नहीं? अच्छा चलिए, और अगर पेगासस था तो राहुल गांधी इतना विदेश जाते हैं, वो कहीं जाके किसी ऑथेंटिक कंपनी से उसको सर्टिफाई करवा के ले आते कि मेरे फोन में पेगासस पाया गया। बताओ मैं काहे नहीं करवाया भाई, काहे? क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते, कभी वो पेगासस पे खड़ा होता, कभी ईवीएम पे, कभी इलेक्टोरल रोल पे, कभी
7: पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग क्यों नहीं होने दी?
8: मगर जमीन पे
12: राहुल गांधी के प्रोटेस्ट पे
8: जमीन पे दिखता नहीं, जैसे आप
7: जवाब देते हैं सुधांशु जी,
12: मैंने आपसे जवाब पूछा मीटिंग पे आते हैं राहुल जी, बीते दिन भी एक दिन आकाशवाणी भवन में बैठे थे,
8: पॉइंट पूछा था,
12: ठीक है राजन भगत जी, लोग प्रोटेस्ट पे आ ही नहीं रहे, फिर वही जो रोज की बहस हो रही है चुनाव आयोग पर वो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ बैठ के तो तय नहीं हो सकता है, आपको इस्तीफा चाहिए, वो इस्तीफा दे नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, कब तक चलेगा वो सिलसिला? राजन जी, कांग्रेस को ये भी उनका कहना था, इस बीच एक खबर आ रही है, उपचुनाव में बीजेपी एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट है, सुशासन के साथ जनता का विश्वास फिर से दिखा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में, असम के नगांव लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है नगांव में। राजन भगत जी, कांग्रेस पार्टी की यह भी शिकायत है कि राहुल गांधी जाते हैं आकाशवाणी भवन में बैठे थे, कह रहे थे कहां बैठूं आप बिठा दो कहीं, प्रोटेस्ट की जगह ही नहीं दे रहे आप लोग। छोटा सा
9: मैं इस बात में साफ साफ कहना चाहता हूं कि जो प्रोटेस्ट करने का एक तरीका पुलिस का था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार मोहर लगाई है और सुप्रीम कोर्ट की अप्रूव्ड गाइडलाइंस है, अगर उसके हिसाब से प्रोटेस्ट होता है तो पुलिस कभी भी इस पे एतराज नहीं करती और कभी भी इंटरफियर नहीं करती, परमिशन देती है। पिछली बार परमिशन देने के बाद अब भी जो कॉल है, यही नहीं पता उनको कितने लोग आने हैं, कहां से आने हैं, एक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लाखों लोग इकट्ठे करके अराजकता तो नहीं फैलाने की इजाजत दे सकते, कल को यही अगर नहीं, अगर वो पूरे स्टेप्स लेते, पूरा प्रिवेंशन नहीं करते
12: तो ठीक है, ठीक है आपकी बात। जो जो राजन भगत जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अराजकता तो नहीं फैलाने दे सकते ना, भाई पुलिस का भी लेवल्स होता है, पहला बैरिकेड होता है, दूसरा है, तीसरा को जब आप क्रॉस करते हैं उसके बाद उनको भी तो इंश्योर करना है ना, लॉ एंड ऑर्डर उनकी जिम्मेदारी है, अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तो कौन नेता आगे जिम्मेदारी लेगा? बोलिए वीरेन जी,
13: 2014 से पहले क्या यही पुलिस थी या ये पुलिस बदल गई है? क्योंकि 2014 से पहले जब महंगाई का मुद्दा उठता था तो सिलेंडर लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क पे आते थे, दो रुपए अगर 1 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते थे तो बैलगाड़ी लेकर के दिल्ली के सड़कों पे चलते थे। तो क्या वही पुलिस है या एक नई पुलिस है जो अमित शाह जी के नेतृत्व में देश में इस तरीके का माहौल पैदा कर रही है कि जैसे चाइना बॉर्डर से कोई जो है दुश्मन देश आ रहा है और दिल्ली को इस तरीके से सुरक्षित रखो नहीं तो दिल्ली लूट ली जाएगी। क्या हमारे बच्चों का की तुलना आप विदेशी सैनिकों से करेंगे? क्या लोकतांत्रिक तरीके से किए जा रहे प्रदर्शन और अपनी बात को रखने की जो कोशिश कर रही है चाहे वो सीजेपी हो या विपक्षी दल के लोग हो उनके साथ इस तरीके से व्यवहार होगा? क्या यही लोकतंत्र है? क्या इतने आजादी से के बाद हम लोगों ने यही सीखा है कि अभिव्यक्ति का भी अधिकार छीन लिया जाए? ये नई तरीके की राजनीति है इंदिरा जी, जिसको इस देश के लोग बखूबी समझ रहे हैं। अभी सुधांशु जी और आप लोग बधाई दे रहे थे बंगाल के चुनाव में, नितिन नवीन के जो की विधानसभा में जब करारी हार हुई तब किसको बधाई देंगे? तब तो किसी के मुंह से बोल नहीं फूटा। जीत हार चुनाव में होता है और जीत हार के कारण कई होते हैं। एक कारण वोट चोरी भी है, एक कारण जो है कि
12: बांकीपुर में ठीक से हुआ था सांसद जी चुनाव
13: नहीं है,
12: बांकीपुर में ठीक से हुआ था सांसद जी चुनाव, बांकीपुर जहां हारी थी बीजेपी नितिन नवीन की सीट,
13: उनकी सरकार, उन्हीं की सरकार थी, जनाक्रोश था वहां, जनाक्रोश था
12: तो चुनाव ठीक से हुआ ना।
13: जनता पार्टी के अंदरूनी कला थी, ठीक है, अंदरूनी कला थी अपने राष्ट्राध्यक्ष जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। बहुत से कारण होते हैं जीत हार के,
12: ठीक है
13: इसलिए कोई एक कारण आप गिना करके अपनी जिम्मेदारियों से कोई बच नहीं सकता
12: लोकतंत्र में। बिल्कुल, एक बार चिराग पासवान ने क्या कहा है, अरुण भारती जी सुनिए आपका, मैं इस पर प्रतिक्रिया लूंगी, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा वो क्या कह रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जाने भी देना चाहिए मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने के लिए, फिर वो कह रहे हैं अराजकता भी। सुनाइए चिराग जी ने क्या कहा है।
14: भारत जैसे लोकतंत्र में प्रदर्शन की पूरी संभावनाएं हैं और आप जरूर करें प्रदर्शन, बट ऑल आई वांट टू नो एंड अंडरस्टैंड कि इसे प्रदर्शन करना ही अगर आपका मकसद है तब तो फिर आप करें, फिर तो आप आज भी करें, 10 दिन के बाद भी करेंगे, बट प्रदर्शन से समाधान नहीं निकलेगा, समाधान संवाद से निकलेगा। आपको अगर एक पॉइंट प्रूव करना, आपने डे वन कर दिया था, बट बार बार दिल्ली की सड़कों को ऐसे जाम करना, दिल्ली के नागरिकों को इतना परेशान करना, ये किस हद तक जायज़ है? आप अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं, चुनाव आप नहीं जीत पा रहे उसके लिए आप आम नागरिकों को परेशान कर रहे हैं, मंथन आपको नहीं करना है उसके लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपको सही में अगर चिंताएँ हैं आप जाइए चुनाव आयोग, और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि सीईसी खुद वहां पे बैठेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए, पर दिस इज नॉट हाउ यू गो एंड वॉक इन टू एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आप प्रदर्शन करते हुए नहीं जा सकते हैं।
12: सांसद जी बताइए, अरुण भारती जी क्या कह रहे हैं, वो जाने देना चाहिए राहुल जी को मिलने के लिए ना सीईसी से?
15: चाहिए इसके लिए उनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा ना अंजनी जी, कि ये कभी भी चले जब भी चाहेंगे चले जाएंगे, और चुनाव आयोग कितने फ्री बैठे हुए हैं कि राहुल गांधी से तुरंत मिल लेंगे। कोई तो प्रक्रिया होगी चुनाव आयोग से मिलने के लिए। अभी जब बिहार में चुनाव से पहले एसआईआर हो रहे थे तो हम लोग गए थे चुनाव आयोग से मिलने के लिए, हमारी भी चिंताएं थी एसआईआर को लेकर के, उन्होंने हम लोगों से बात की, हमारी चिंताओं का निराकरण किया। एसआईआर ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में एसआईआर हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सही है। अंजना जी ये जो दिल्ली में हो रहा है, ये सड़कों पे जो हो रहा है, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई नहीं है, ये हार छिपाने की लड़ाई है। पहले इन्होंने ईवीएम का नैरेटिव चलाया, उसमें हार गए, अलग जगह सरकारें चला रहे हैं ना, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर के अपने नैरेटिव को चलाना चाहा, वहां भी इनका तर्क हार गया। अब ये चाहते हैं कि फैसला सड़क पर हो, मगर समस्या इनकी यह है कि जनता भी इनको भाव नहीं दे रही है। आखिर अगर इनका अधिकार है प्रदर्शन करने का तो दिल्ली में भी 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, उनके भी कुछ अधिकार है ना, वो भी यहां पर दिल्ली में चाहेंगे ना कि भाई हम भी चले तो सड़क हमारे लिए खाली हो, जहां पर डेजिग्नेटेड जगह है वहां प्रदर्शन करें। अनुमति आप लेंगे नहीं, कोई भी परमिशन आप लेंगे नहीं और चाहेंगे जहां चाहे हमारे हमारी भीड़ वहां इकट्ठी हो जाएगी।
12: सिर्फ एक एक लाइन आप दोनों से मैं रिएक्शन लूंगी, टाइम खत्म हो गया अतुल जी। दो ही अदालत लोकतंत्र में चलती है, एक अदालत है जनता की जो वोट से तय होती है और एक अदालत है कानून की। ये सड़क पर क्या फैसला होगा?
7: ऐसा है कि जब वोट चोरी होकर सरकार रहे तो फैसला तो सड़क पे होगा। फॉर्म नंबर सिक्स उन्होंने छोड़ दिया, फॉर्म नंबर सिक्स उन्होंने छोड़ दिया,
12: टाइम हो गया सर, टाइम खत्म हो गया। सिर्फ एक लाइन सुधांशु जी,
6: एक लाइन सर,
12: एक लाइन।
6: देखिए ये कांग्रेस परिवार की फुटेज की लड़ाई है, वो 100 घंटे का फुटेज खा चुके हैं, मगर समाजवादी पार्टी उन्हें उतनी सीटें नहीं देने को तैयार है जितने घंटे का वो मीडियम फुटेज खा।
12: इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
1: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
0: असली शहद, असली स्वाद।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: आगे आगे,
6: उधर उधर,
5: करेक्ट करेक्ट।
7: मिल गया, आपके पास दो

0: यार लोन भूल गया मैरी
1: इट्स
0: जस्ट अ गुड बैंक ना
2: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
2: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन्ड कार लोन टू व्हीलर लोन
3: देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
4: अस उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस
5: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस
6: मेरे पास एक आइडिया है
5: क्या
6: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है
7: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
8: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है
9: मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है
10: कौन सी बनानी है

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
3: गैसो फास्ट 27%,
2: इनो 9.2%।
4: गड़बड़ है।
5: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
6: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
7: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
9: जेके वॉल मैक्स
8: बेस्ट पेंट।
9: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट। जेके मैक्स पेंट, खुशियों के रंग।
10: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
11: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
10: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
12: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
13: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
14: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद। रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
15: इट्स अ माही वे।
16: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है, ये है एक लेगेसी।
17: यू नो डिजाइन कितने हैं? लाख से भी ज्यादा डोर्स,
18: और सारे हैं BIS हॉलमार्क सर्टिफाइड। खूबसूरत कारीगरी भी, हाई क्वालिटी भी।
19: एक परिवार अटूट भरोसा।
20: माँ के पैरों की धूल माथे पर ले, मैं परिंदा खुले आसमान जहाँ जीत रू सारा।

0: in association with
1: Signature Finest Cardamom Seeds.
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
3: Canara Bank, together we can.
4: Anmol Biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल.
5: दिनांक 7/10/2026 को श्री सौरभ दास को कन्वीनर कांग्रेस जनता पार्टी का एक एप्लीकेशन न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में रिसीव हुआ, जिसके अनुसार यह इंटीमेशन दी गई कि 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट करेंगे रिगार्डिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी. इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और पाया गया कि उक्त सूचना अत्यंत ही अल्प समय में प्राप्त हुई है, जबकि वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार जंतर मंतर पर कार्यक्रम आयोजित करने हेतु आवेदन कार्यक्रम की निर्धारित तिथि से कम 10 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है. ये उल्लेख करना भी इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस जनता पार्टी के पूर्व आचरण के अनुसार एक अलग अवसर पर पूर्व में दिए गए उनके द्वारा अंडरटेकिंग्स तथा लॉफुल डायरेक्शंस को भी नहीं फॉलो किया गया था. निर्धारित प्रक्रिया

पालन न किए जाने पर पूर्व में दिए गए कानूनी दिशा निर्देशों को नहीं पालन करने तथा वर्तमान में पब्लिक सेफ्टी लॉ एंड ऑर्डर एवं ट्रैफिक रेगुलेशन की स्थिति को देखते हुए जंतर मंतर पर प्रस्तावित धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: तेरा प्यार प्यार प्यार उल्टा बार सर, एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस।
5: मेरे पास एक आइडिया है।
4: क्या?
5: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है,
6: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
7: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
8: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
6: कौन सी बनानी है?

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
4: जेके वॉल मैक्स
2: बेस्ट पेंट,
5: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
7: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
6: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
8: आ गया सोमवार और आ गए
9: चकमक चचा।
8: एक कचौड़ी दो समोसा चकमक, तेरा क्या भरोसा?
10: चकमक चाचा से सीधे चकमक है?
8: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रही, बुझ रहा ना।
10: लेकिन भैया नारे, अरे फालतू सब बेकार, एकदम बेकार। नारे होते थे हमारे टाइम।
8: अच्छा
10: हाँ, सुनाए। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
8: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी, इन नेताओं की खत्म कहानी।
10: अरे जमीन के चकबंदी में, जमीन के चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में?
8: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
10: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
8: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा देके जाएंगे।
10: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
8: अरे लाल फूल नीला फूल, जंजी नंगे ब्यूटीफुल।
10: अरे बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी।
8: चाय गरम दूध गरम चकमक चाचा भी शरम
10: है।
8: हाँ,
10: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
8: अरे मेरे सिर में दर्द है जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
6: हम जैसे? इधर आओ।
11: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
12: जंतर मंतर पर प्रस्तावित धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है।
13: तो अब जब साफ है कि सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीजेपी के प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस की इजाजत नहीं है, कानून व्यवस्था का हवाला देकर पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है, तो ऐसे में सवाल है कि जब कॉकरोच जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन पर अड़ी हुई है, तो क्या दिल्ली की सड़कों पर शनिवार को एक बार फिर संग्राम दिखेगा? क्या एक बार फिर सीजेपी कार्यकर्ताओं और दिल्ली पुलिस के बीच टकराव दिखेगा? दरअसल दिल्ली पुलिस पहले ही साफ कर चुकी है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए कम से कम 10 दिन पहले अनुमति लेना अनिवार्य है। साथ ही यहां 1000 से ज्यादा लोगों के प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली पुलिस की इन दलीलों को मानने को तैयार नहीं दिख रही है। यही वजह है कि सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में किलेबंदी की गई है। सीजेपी के 10 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त है। दिल्ली की सीमाओं पर निगरानी बढ़ाई गई है। यूपी हरियाणा और राजस्थान से लगने वाले बॉर्डर पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस के मुताबिक इलाके में धारा 163 लागू है, जिसके तहत किसी भी तरह के जुटाव को अवैध माना जाएगा। दरअसल जुलाई महीने में हुए प्रदर्शन और बवाल से भी दिल्ली पुलिस ने सबक लिया है। पुलिस ने लोगों से प्रदर्शन में शामिल न होने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है। एहतियातन 10 अक्टूबर को दिल्ली में शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। ये तस्वीरें पुरानी दिल्ली की एक मस्जिद की हैं, जहां पुलिसकर्मी लोगों से अपील करता नजर आ रहा है कि किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन में शामिल ना हो। दिल्ली पुलिस की कोशिश यही है कि सीजेपी के आंदोलन के ऐलान के बीच किसी भी तरह का टकराव ना हो, दिल्ली में हालात बिगड़ ना सके, एक बार फिर सड़कों पर हिंसा जैसे हालात ना हो। दिल्ली से अंशुल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।

0: पड़े हैं
1: फ्लाइट में कम से कम सफर करें मेरे हिसाब से भाई। ट्रैवलेंस कोई गांजा फूक के चला रहा है, कोई चाकू लेके घुस रहा है, क्या हो रहा है ये?
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं।
0: तुम्हारा
2: लेकिन हम तो हर कीमत पर समझौते के आदि हैं, गाल पे चाटा खाते रहने वाले गांधीवादी हैं।
0: यार काट देना ये।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
5: इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। शाम के 7 बजने वाले हैं। चुनाव आयोग को लेकर घमासान जारी है। एक और इंडिया गठबंधन के दल आगे की रणनीति को लेकर बैठक कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कल सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली में प्रशासन अलर्ट पर है। पूरी खबर तफसील से आपको बताएंगे, मगर उसके पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली की किलेबंदी पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, कहा मक्खी मारने के लिए हथौड़ा नहीं चला सकते, सीजेपी के प्रदर्शन को नहीं मिली इजाजत। आज रात 9 बजे से बंद होंगे दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशन। नई दिल्ली और निजामुद्दीन तक आने वाली कई ट्रेनें भी रद्द। कनॉट प्लेस में कल सभी दफ्तर और दुकानें बंद। आज राष्ट्रपति से मुलाकात से पहले संसद में कांग्रेस और सहयोगी दल के नेताओं की बैठक, आगे की रणनीति पर मंथन, सरकार पर खड़गे का तंज, ये डरे हुए लोग। उपचुनाव में बीजेपी एनडीए के शानदार प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट, जनता का जताया आभार, कहा इस जनादेश से मिलेगी मजबूती। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण नहीं होगा लागू, हाईकोर्ट में याचिका खारिज, 14% ही मिलेगा रिजर्वेशन। कमलनाथ बोले बीजेपी का ओबीसी विरोधी चेहरा बेनकाब। नमस्कार, आज की खबरों की शुरुआत करते हैं। कल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, वहीं मेट्रो को लेकर भी पाबंदियां लगा दी गई हैं। दिल्ली से सटी सीमाओं पर सुरक्षा बल मुस्तैद है, तो वहीं जंतर मंतर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आपको बताएंगे कल सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ चल रहा है दिल्ली में। लेकिन शो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के सेंट्रल हॉल में चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष की बैठक जारी है। बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा ममता बनर्जी विपक्ष के कई नेता हैं। इसके बाद विपक्ष के नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात रात 8 बजे होने वाली है। इस मुलाकात में विपक्षी सांसद भारतीय चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर अपनी जो चिंताएं हैं वो राष्ट्रपति के सामने रखेंगे।
1: जिस तरीके से प्रदर्शन की उम्मीद है, पूरे मेट्रो स्टेशन दिल्ली के बंद कर दिए गए हैं, रेल कैंसिल कर दी गई है, किस तरीके से देखते हैं वो बोल
2: डरे हुए हैं। और जो आदमी डरता है आज नहीं कल मरता है।
3: डरी हुई सरकार है ये, तानाशाही के अंत पर खड़ी हुई सरकार है ये। मेट्रो स्टेशन बंद करे, एयरपोर्ट का नाम बदल दे, या रेलवे को रद्द कर दे, या लोगों को डिटेन कर ले, ये सब कुछ करके भी आप अपना डर दूर नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री ने किसी इंटरव्यू में कहा था कौन राहुल, प्रधानमंत्री को दिल्ली के विजुअल देखने चाहिए, उनको समझ में आ जाएगा कि कौन राहुल। हाँ, वही राहुल जो आकाशवाणी में जाकर के मन की नहीं बल्कि जन की बात कर रहा है।
4: ऑनरेबल राष्ट्रपति जी क्या कहेंगे, हमें क्या सलाह देंगे, क्या दिशा दिखाएंगे? हम उम्मीद रखते हैं कि मैडम विल ग्रेस अस।
5: इससे प्रदर्शन करना ही अगर आपका मकसद है तब तो फिर आप करें, फिर तो आप आज भी करें, 10 दिन के बाद भी करेंगे, बट प्रदर्शन से समाधान नहीं निकलेगा, समाधान संवाद से निकलेगा। आपको अगर एक पॉइंट प्रूव करना है, आपने डे 1 कर दिया था, बट बार बार दिल्ली की सड़कों को ऐसे जाम करना, दिल्ली के नागरिकों को इतना परेशान करना, ये किस हद तक जायज है? आप अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं, चुनाव आप नहीं जीत पा रहे उसके लिए आप आम नागरिकों को परेशान कर रहे हैं। मंथन आपको नहीं करना है उसके लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपको सही में अगर चिंताएं हैं आप जाइए चुनाव आयोग, एंड मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि सीईसी खुद वहां पे बैठेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए।
0: राहुल गौतम हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, क्या इस वक्त की जानकारी है? विपक्षी जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो ये बैठक कर रहे हैं और उसके बाद से राष्ट्रपति भवन के लिए कूच करेंगे, आगे की रणनीति बन रही है क्या आज?
6: बिल्कुल, देखिए आगे की रणनीति बन रही है और जो मीटिंग है विपक्ष के तमाम सांसदों की वो चल रही है। मेरे पीछे ही वो गेट है, मेरे सहयोगी से मैं चाहूंगा वो आपको दिखाएं कि जिस गेट से तमाम सांसद अभी निकलेंगे और उसके बाद जिन 10 सांसदों को या 10 नेताओं को परमिशन ग्रांट की गई है कि वो राष्ट्रपति से मिले, वो तमाम लोग जाएंगे। देखिए विपक्ष की खेमे का ये साफ तौर पर कहना है कि हमने चुनाव आयोग से मुलाकात करने की कोशिश करी, हमें नहीं करने दी गई, हमें जंतर मंतर जाने की कोशिश करी, हमें वहां पर अलाउ नहीं किया गया। अब हमारे पास कुछ चारा नहीं, नहीं है सिवाय इसके कि जो हम जो हेड ऑफ द स्टेट हैं यानी जो जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उनके पास जाएं और उनको अपनी ग्रीवांसेस बताएं। लेकिन इस मुलाकात से पहले का क्या हाल है, क्या हाल है मैं आपको दिखाऊं। देखिए यहां पर भी पुलिस का भारी जमावड़ा है और बताया जा रहा है कि इसी बैरिकेड पर तमाम सांसदों को रोक दिया जाएगा और मात्र उन 10 लोगों को जिसमें दोनों लीडर ऑफ ऑपोजिशन शामिल है उन्हीं लोगों को आगे अलाउ किया जाएगा जो कि ऊपर रायसीना रोड से राष्ट्रपति भवन के अंदर जाकर मुलाकात करेंगे। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जिस तरीके का मोमेंटम पिछले 3-4 दिनों से विपक्ष ने बनाया हुआ है उसी को कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश है ये माहौल बना के रखा जाए कि देखिए विपक्ष जो है वो सड़कों पर है, तमाम वो कोशिशें कर रहा है ताकि वो अपनी बात सुनवा सके और जिन कथित तौर पर गड़बड़ियों की वो बात करता है उसको लेकर यह भी बताया जा रहा है कि एक मेमोरेंडम भी सौंपा जा सकता है राष्ट्रपति को जिसमें तमाम चीजें होंगी जो कथित गड़बड़ियों की बात कर रहा है ऑपोजिशन। इसके अलावा SIR को लेकर बात की जाएगी कि आप इसको इमीडिएटली सस्पेंड करिए और 13 करोड़ 30 लाख का जो आंकड़ा बार बार विपक्ष बोलता है जिनको डिलीट कर दिया गया है उनको वापस आप रीइंस्टेट करिए। तो इन तमाम चीजों को लेकर अब थोड़ी ही देर बाद यानी 8 बजे का जो वक्त है वो मुकम्मल किया गया है जब जाकर तमाम लोग मिलेंगे और अपनी बात राष्ट्रपति के सामने रखेंगे क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो आप जानते हैं कि वो कस्टोडियन होते हैं संविधान के, ऐसे में कोई नारेबाजी नहीं होगी। जो मार्च की बात बार आ रही थी उसको भी फिलहाल तौर पर ऐसा लगता नहीं कि कोई मार्च निकाला जाएगा राष्ट्रपति भवन तक, मात्र 10 लोगों को अलाउ किया जाएगा जो कि जाकर मिलकर अपनी बात रखकर आएंगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि इंटरवल है या पॉज है। 12 तारीख को फिर कहा जा रहा है कि फिर विपक्ष जुटेगा जिसमें तमाम लोग शामिल होंगे, तमाम बड़े बड़े नेता जो है वो शामिल होंगे। कल राहुल गांधी चेन्नई में होंगे और आप कह सकते हैं कि 1 या 2 दिन के रेस्ट के बाद या पॉज के बाद दोबारा विपक्ष आपको सड़क पर नजर आएगा जिसमें तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं उनको भी कोशिश होगी कि उनको भी लेकर आया जाए और एक बड़ी तस्वीर खींची जाए कि देखिए हमारे अपने अपने राजनीतिक हित हो सकते हैं हमारे राज्यों में यानी यूपी में, बंगाल में, अलग अलग राज्यों में, लेकिन कम से कम SIR का मुद्दा और चुनाव आयोग का जो मुद्दा है उस पर हम तमाम लोग एक हैं और एक ही भाषा में बात कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक मोमेंटम को सस्टेन करने की कोशिश है। उसी कड़ी में आज आप जो इंडिया ब्लॉक है उसके 10 बड़े नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात करेंगे।
0: मौसमी आपके पास क्या क्या जानकारी है क्योंकि अब क्या हम ये भी माने कि आज जो ये बैठक हो रही है तो उसमें ये भी तय किया जा रहा होगा कि जब CJP दिल्ली में प्रोटेस्ट करने के लिए आती है तो फिर क्या स्ट्रैटेजी हमें अपनानी है। राहुल गांधी कल चेन्नई जा रहे हैं, जब वो प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं ट्विटर पे हमने देखा कि बड़ी नोकझोंक चल रही थी कांग्रेस के कुछ नेताओं और CJP के नेताओं में। किस तरह से ये पूरा पैन आउट होता हुआ दिख रहा है, एक सिलसिला है। राहुल गांधी लगातार मोर्चा कई दिनों से संभाले हुए थे, अब CJP कर रहा, फिर 12 तारीख से राहुल गांधी।
7: देखिए अंजना, आपको भीतर की खबर बताते हैं। अभी ममता बनर्जी जो है उन्होंने एड्रेस किया है, संबोधित किया है और उन्होंने 3 बड़ी बातें कही हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि इस ज्ञानेश कुमार को रिजाइन करना है, उसको हटाना होगा, रिमूव एंड ज्ञानेश कुमार हैज टू रिजाइन। दूसरा उन्होंने कहा है कि इनको अरेस्ट किया जाए, ज्ञानेश कुमार को, CEC को अरेस्ट किया जाए। और तीसरी बड़ी बात उन्होंने कहा है कि BJP को देश से हटाना है। तो ये 3 बड़ी बातें उन्होंने कही हैं बारी बारी करके। अभी इस वक्त जो है तमाम नेता हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी लगभग 6 बजे आए हैं और तैयारी हो रही है मार्च की। लगभग 7:15, 7:20 पर ये लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। और एक तरीके से अगर आप देखें तो ये वो वक्त है जब इंडिया ब्लॉक एक मुद्दे पर एकजुट नजर आ रहा है। तमाम ऐसे पहले खेमेबंदी हो गई थी 2024 के चुनाव के बाद, लेकिन सेशन नहीं चल रहा है उसके बावजूद भी इस तरह से इन लोग का सेंट्रल हॉल में मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है कि क्या कुछ एक पूरी तैयारी है जमीन पर लड़ाई लड़ने की। ये वो वक्त है जब 5 राज्यों में चुनाव है और इसको लेके एक पूरा खाका तैयार किया गया अगले 2 महीने तक। तो ये जानते हैं कि राहुल गांधी, हालांकि छात्रों की गूंज में जो सवाल आप कर रही थी, ये जानते ही है कांग्रेस की CJP का आंदोलन है, जेंजी CJP से जुड़ा है, हजारों लाखों की तादाद में लोग, हजारों की तादाद में छात्र आएंगे। कल छात्रों की गूंज में राहुल गांधी होंगे, पर कन्फ्रंटेशन CJP से जमीन पर या कोई बड़े नेता बयानबाजी करें उस तरीके का कन्फ्रंटेशन अवॉइड करेगी कांग्रेस जाहिर तौर पर। क्योंकि
0: जी आप बने रहिए मौसमी, एक दो सवाल और मेरे मन में है क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही है, क्या इस बैठक में CJP का प्रोटेस्ट भी चर्चा में आया, क्या जो रेलवे, मेट्रो, स्कूल, अभी तो खबर ये आ रही है कि इंटरनेट भी कई जगहों पर बंद किया जा रहा है, तो इस पर भी क्या अंदर चर्चा हुई। लेकिन उससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने CJP के इस्तीफे की मांग को लेकर 10 अक्टूबर यानी कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। लेकिन प्रशासन इस बार पूरी तरह से मुस्तैद है। दिल्ली पुलिस ने साफ कह दिया है प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है। देखिए,
8: दिल्ली में कल क्या होगा, कैसे दफ्तर जाएंगे दिल्ली वाले, दिल्ली में कल कर्फ्यू जैसे हालात। कल दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन का ऐलान किया है और उससे पहले दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ी हुई है। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर प्रदर्शन करने की सीजेपी को इजाजत नहीं दी और साथ ही ये भी कह दिया कि पाबंदी का उल्लंघन करने वाले नतीजों के वो खुद जिम्मेदार होंगे।
9: अगर लोग जुटते हैं तो क्या कार्रवाई होगी?
10: 163 BNSS की धारा लागू है नई दिल्ली में, जिसके तहत किसी भी तरह के जमावड़े को नहीं परमिशन दी जा रही है।
8: दिल्ली पुलिस कल के प्रदर्शन को देखते हुए पूरी तैयारी में है। पिछली बार सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हालात पूरी तरह बिगड़ गए थे, इसलिए दिल्ली पुलिस इस बार फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। दिल्ली पुलिस ने 57 मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन की आवाजाही बंद करने का अनुरोध किया है। दिल्ली में कल शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी, यानी शराब की बिक्री नहीं होगी। रेलवे ने भी नई दिल्ली और निजामुद्दीन स्टेशन की तरफ आने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है।
11: किया जाता है 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है। नई दिल्ली में और सभी जगह धारा 163 BNSS लागू है, जो कि कोई भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा। आप सभी को सूचित कर दें, बता दें, अपने बच्चे जो भी आस पड़ोसी उन सबको बता करके ब्रीफ कर दें कि वहां पर कोई भी परमिशन नहीं है और कोई भी काम करने से पहले सोच समझ के निर्णय लें।
8: कल की सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। जंतर मंतर पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं।
12: इस वक्त हम संसद मार्ग पर मौजूद है, जहां पर सीजेपी की प्रस्तावित प्रोटेस्ट से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। और ये आप देखिए, ये जो बैरिकेड रखे गए हैं, यहां इन बैरिकेड में ये चेन्स लगाई जा रही है मोटी मोटी। इन चेन्स को पेच के जरिए अगर आप देखेंगे तो इनको पेच के जरिए इससे जोड़ दिया गया है बैरिकेड से, और नीचे की तरफ ऐसे लॉक सिस्टम लगाए गए हैं ताकि इस लॉक को दूसरा जो ये लॉक सिस्टम है, जो इस अगर हम कहें दूसरा बैरिकेड है, इस बैरिकेड में जो लॉक सिस्टम है इस चेन को इससे जोड़ा जा सके। यानी कि इन बैरिकेड को हटाना इतना आसान नहीं होगा। आप
8: उधर दिल्ली की सीमाओं पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है
13: कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस आने जाने वाले हर वाहन को जो है वो चेक कर रही है। जो भी वाहन यूपी से दिल्ली की तरफ आ रहा है, आप देख सकते हैं कि उसको पुलिस वाले रोकते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है और डिक्की खुलवाई जाती है। डिक्की के अंदर आखिर कुछ कोई ऐसा सामान तो नहीं है कि जो सामान कुछ ऐसा तत्व तो नहीं लेके जा रहे कि जिससे कि कल जो प्रोटेस्ट के अंदर है उसके अंदर कोई बाधा जो है वो आ सके।
14: जो यूपी गेट हमारा है जो कि गाजियाबाद का महत्वपूर्ण है, ज्यादातर यूपी गेट को लोग जाने के लिए चिन्हित करते हैं, इसको दृष्टिगत रखते हुए यूपी गेट पर 24 आवर ड्यूटी लगाई गई है।
8: तो दिल्ली वालों के लिए कल का दिन परेशानी भरा हो सकता है, क्योंकि पुलिस की सख्ती का असर आवाजाही की सुविधाओं पर पड़ना तय है।
15: जंतर मंतर पर 8-9-10 तारीख को जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो इलीगल है, वहां पर कोई व्यक्ति ना जाए, इसलिए कि सरकार ने वहां पर धारा 173 लगाई हुई है।
8: हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: खबर आ रही है कि नई दिल्ली के कुछ इलाकों में इंटरनेट बंद रहेगा। जनपद के 4 किलोमीटर के दायरे में अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक इंटरनेट बंद करने की जानकारी दी गई है। आज रात 10 बजे से इंटरनेट बंद रहेगा, यानी कोई भी रिस्क इस वक्त मोल लेने को तैयार नहीं दिख रही है सरकार और दिल्ली पुलिस। पीयूष, क्या जानकारी है पूरा बताएं।
6: जी बिल्कुल अंजना, आज रात 10 बजे से इंटरनेट की सेवाएं
16: सेंट्रल दिल्ली में बंद हो जाएगी। लगभग 5 से 6 किलोमीटर का पूरा ये इलाका आता है। अगर हम जंतर मंतर की बात करें तो अगर आपको नेट की सर्विसेज चाहिए तो आपको आईटीयू तक जाना पड़ेगा और जंतर मंतर से आईटीयू तक का रास्ता लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर का होता है और जंतर मंतर से आप सेंट्रल दिल्ली क्रॉस करना होगा तो शांति पथ पूरा पार करना होगा जो काफी लंबा 7-8 किलोमीटर का हो जाता है। यानी एक लंबा इलाका पूरा सेंट्रल दिल्ली का, वहां पर इंटरनेट की सर्विसेज नहीं रहेंगी और ये सर्विसेज आज रात 10 बजे से ही बंद कर दी जाएंगी और अभी तक के हिसाब से कल रात 10 बजे तक ये सर्विसेज बंद रहेंगी। यानी लगभग 24 घंटे तक ये सर्विसेज उपलब्ध नहीं होंगी और ये फैसला इससे लिया गया है ताकि जमावड़ा ना हो सके, भारी संख्या में जो सीजेपी के कार्यकर्ता है वो सेंट्रल दिल्ली ना पहुंच सके और साथ साथ इसी के साथ साथ मेट्रो स्टेशन 57 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया। इस वक्त मेरी मौजूदगी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन पर है। फिलहाल तो उसके दरवाजे खुले हुए हैं, लोग आ जा रहे हैं लेकिन अगले 1 से 1.5 घंटे के बाद यानी 9 बजे के आसपास तक आप समझ सकते हैं कि ये दरवाजे बंद हो जाएंगे, शटर डाउन हो जाएगा और 9 बजे के बाद से कल तक यानी 10 तारीख तक ये मेट्रो स्टेशन के गेट बंद रहेंगे। एंट्री एग्जिट पूरी तरह से बंद है और अभी तक ये क्लियर नहीं है कि मेट्रो स्टेशन के गेट कब तक बंद रहेंगे। कल तक समय दिया गया है, उसके में जो डीएमआरसी की तरफ से मैसेज आया है उसमें लिखा है टिल फर्दर नोटिस, यानी कि जब तक आदेश नहीं आते हैं अथॉरिटीज की तरफ से तब तक ये मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे और ये सारी तैयारी इसलिए की जा रही है ताकि किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था उत्पन्न ना हो सके और भारी संख्या में जंतर मंतर के आसपास जो सीजेपी के कार्यकर्ता वो इकट्ठे ना हो सके। मैं एक तस्वीर और आपको दिखा देता हूँ। ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का मेट्रो स्टेशन है, उसके ठीक बाहर वज्र वाहन को भी लगा दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली। मेरे सहयोगी कुंज विहारी मेरे साथ, अगर थोड़ा और आगे आएंगे तो हम आपको और बेहतर तस्वीरें यहाँ पर दिखा पाएंगे। ये जो रास्ता है ये इसके ठीक मेट्रो स्टेशन के ठीक साथ में रेल भवन है, रेल भवन के सामने कृषि भवन है और कृषि भवन के सामने गोल चक्कर है जो पूरा गोल चक्कर जंतर मंतर की तरफ जाता है और उस पूरे इलाके को फिलहाल तो यहाँ पे गाड़ियां आप चलती हुई देख सकते हैं लेकिन इस पूरे इलाके के आसपास बैरिकेड्स लगा दिए गए। अगर कुंज फोकस करके और आपको दिखा सकते हैं तो देखिए एक लेयर बैरिकेड ऑलरेडी यहाँ पर लगा दिया गया है, यानी कि दिल्ली को खास तौर पर सेंट्रल दिल्ली को पूरी तरह से छावनी में तब्दील करने की पूरी तैयारी दिल्ली पुलिस ने कर ली है और इसलिए किया गया है ताकि जिस तरह की गैदरिंग का आह्वान किया गया है वो कल खासतौर पर दिल्ली और जंतर मंतर के आसपास ना हो सके।
0: बिल्कुल पीयूष, बहुत धन्यवाद आपका। पीयूष मिश्रा हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे जिस तरह के हालात हैं और उन सब के बीच दिल्ली पुलिस क्या तैयारी कर रही है और पुलिस किस तरह से अब देखिए अगर इस पूरे इलाके में 4 किलोमीटर के रेडियस में जनपद के इंटरनेट भी रात 10 बजे से बंद किया जा रहा है तो इसका आप समझ सकते हैं। देखिए सरकार की तैयारियों पर सियासत तेज है, कांग्रेस जनता पार्टी प्रदर्शन पर अड़ी है, विपक्ष भी सरकार की पाबंदियों पर सवाल खड़े कर रहा है।
17: No, I'm going to request the donor neck arrest us as well. Arrest every single citizen of this country.
18: दिल्ली में प्रदर्शन से पहले अभिजीत दिपके के ये तेवर साफ बता रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का इरादा आखिर क्या है। सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान सीजेपी ने क्या प्लान ऑफ एक्शन बना रखा है?
19: बचा तो रही है, पूरा दिल्ली बंद का ऐलान कर दिया उन लोगों ने। हमने तो इस बार माहौल ही नहीं बनाया, इस बार सरकार ने माहौल बनाया है। तो सरकार डरी हुई है और सरकार को भय है कि ज्ञानेश गया, ज्ञानू गया तो सब गए।
18: शनिवार को जंतर मंतर पर सीजेपी बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। 1000 से ज्यादा लोगों के जुटान का अनुमान है। पुलिस से इजाजत अब तक नहीं मिली है लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी विरोध के अपने ऐलान पर अड़ी हुई है।
20: नहीं, हमारा तो आंदोलन होकर रहेगा क्योंकि जंतर मंतर इज डेडिकेटेड टू दिस साइट, आर्टिकल 90 हमें इसको पूरा फंडामेंटल राइट देता है, तो परमिशन की क्या जरूरत है। 13 करोड़ वोट डिलीट करने से पहले इन्होंने परमिशन ली थी जनता की। कल मैं बेंगलुरु से आ रहा हूँ जहाँ पर जिंदा लोगों को डेट डिक्लेयर कर दिया था, उनके वोट काटे गए थे, वो लोग जिंदा है। तो उनसे पूछा था आपने वोट काटने से पहले, और आप चाहते हो कि जो लोग इलेक्शन रिग कर रहे हैं उनके खिलाफ आंदोलन न करें हम, ऐसे नहीं चल सकते।
18: कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर में प्रदर्शन के लिए एप्लीकेशन दी थी जिसकी मंजूरी प्रशासन की ओर से नहीं मिली।
21: पूर्व में दिए गए कानूनी दिशा निर्देशों को नहीं पालन करने तथा वर्तमान में पब्लिक सेफ्टी लॉ एंड ऑर्डर एवं ट्रैफिक रेगुलेशन की स्थिति को देखते हुए जंतर मंतर पर प्रस्तावित धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है।
18: ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब मुख्य चुनाव आयोग के इस्तीफे की मांग पर पहले से ही दिल्ली में विपक्षी दलों की मोर्चाबंदी जारी है, ऐसे में सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर सरकार की तैयारियों पर विपक्ष निशाना साध रहा है।
1: इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, आई केम टू नो इवन कलकत्ता ऑल द ट्रेन इज बीन कैंसिल्ड इंक्लूडिंग राजधानी एंड ऑल द रियली द स्टूडेंट्स एंड यूथ आर इन ए क्राइसिस।
2: सरकार कह रही है कि लोगों को परेशानी ना हो, इस वजह से हमने ये कदम उठाया, बंद किया।
1: कल क्या है, सैटरडे है, कल छुट्टी होता है सरकारी ऑफिस, हमको मत सिखाओ।
4: सेक्शन 163 इम्पोज करने के भी कुछ कानूनी दौर होते हैं, अपनी मनमानी और मर्जी से नहीं इम्पोज करते हैं। सेक्शन 144 का भी ऐसे ही कानून है। कौन कौन टेररिस्ट घूम रहा है सड़कों पर, दिल्ली पुलिस से मैं ये सवाल कर रही हूँ।
22: मुझे लग रहा है कि इनको अपनी दुकान बंद करने के बारे में सोचना चाहिए। इनका पाप का घड़ा भर गया है, तानाशाही चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। इनकी कायरता के लोकतांत्रिक देश में, देश का सबसे बड़े लोक, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में, अगर ये प्रदर्शन विरोध का अगर इजाजत नहीं देते हैं तो कहां कहां रुकेंगे, पूरे देश में प्रदर्शन होगा।
18: हर रोज नई तनातनी, नई जंग दिख रही है, तो क्या ऐसे में सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर ये लड़ाई और ज्यादा तेज होगी? क्या फिर से दिल्ली की सड़कों पर नई तनातनी दिखेगी?
23: आज जब पूरे देश भर में लार्ज स्केल हाउस अरेस्ट्स हो रहे हैं, हमें ढूंढने के लिए चप्पे चप्पे पे पुलिस घूम रही है, दिल्ली आने वाली ट्रेनों को रोका जा रहा है, 57 मेट्रो स्टेशन बंद हो गए हैं, सेना, फौज, तमाम सिक्योरिटी पर्सनल, पैरामिलिट्री फोर्सेस को दिल्ली में उतारा जा रहा है, तो दिस इज नथिंग बट अ स्टेट ऑफ ओपन इमरजेंसी इन दिस कंट्री।
24: देखिए, हमारे ऑपोजिशन के पास फेस नहीं है क्योंकि जनता इनको जान चुकी है। अब ममता बनर्जी जाके वोट चोरी की बात करेंगे तो 18 का वीडियो निकल जाएगा, 24 के इलेक्शन का वीडियो निकल गया, कैसे हमारे कैंडिडेट के ऊपर सेलोटेप डाल दिया था, वोट ना दे पाए। तो क्या करते हैं लोग, सामने शिखंडी खड़ा कर रहे हैं, शिखंडी सीजेपी है।
18: सवाल उठ रहा है कि अगर सीजेपी के प्रदर्शन को रोका गया तो किस तरह का हंगामा होगा? क्या राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर उबाल, भारी बवाल दिखेगा? आज तक ब्यूरो।
0: और इसी के साथ 7 तक में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, खबरें जारी है, देखते रहिए आज।
25: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
26: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
27: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
28: तो स्विच टू बीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर, भीम ऐप से करो पे।
29: इट्स अ माय वे।
30: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
31: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी,
30: असली शहद, असली स्वाद।
32: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
33: गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
34: गड़बड़ है।
35: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मैडी आई नीड टू ओपन अ सेविंग्स अकाउंट।
3: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो।
2: स्मॉल बैंक
3: स्मॉल Privilege savings account, Garima savings account, Maxima business, Edge current account, business, Maxima business, Privilege, RDF, there's nothing small about them.
2: Okay.
3: Ujjivan, nothing small about us.
4: Aage, aage.
5: Arre, udar!
4: Udar ki yaar.
5: Correct, correct.
6: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: तेरा प्यार प्यार प्यार सर एक बार दो तुम थमका लगाने बस।
8: मेरे पास एक आइडिया है।
7: क्या?
8: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
9: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला, पर स्टेज नहीं हिलता,
10: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
11: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
12: कौन सी बनानी है?
13: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
14: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
15: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
16: सोच बदलो और बैंक भी।
17: डायबिटीज की वजह से मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ता है,
18: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
17: अब मैं चैन की नींद सो पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
19: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
20: Love and Care, the world's finest range of rubber pet toys.
21: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
22: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन की गीत सुना।
23: जेके मैक्स वाइप इजी,
24: दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।
25: एक दो एक
26: श्राम।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: जहां खबर वहां न्यूज तक, ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर एक्सक्लूसिव कवरेज तक, खबरों का सच तथ्यों के साथ, जनता के सवालों से लेकर सत्ता के जवाबों तक, देश दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ न्यूज तक पर।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ये जगह जहां पर मैं खड़ा हूं, ये जगह है शहीद पथ से जुड़ी हुई और इसको प्लासियो मॉल के सामने की, जहां पर देख सकते हैं कि जो पानी है उसका स्तर बढ़ गया है लगातार। और वजह ये है कि यहां पर पास में ही गोमती नदी है, यानी जो इकाना स्टेडियम, ये जो प्लासियो मॉल आप देख रहे होंगे, इस प्लासियो मॉल के पास में ही इकाना स्टेडियम है और उसके पास गोमती नदी है, जहां पर जलस्तर बढ़ा चुकी। गोमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे पहले भी हमने देखा गोमती का जलस्तर बढ़ने के बाद फैजुल्लागंज एरिए में भी बाढ़ जैसे हालात बने। और अब इसके बाद ये जो एरिया है जहां पर प्लासियो मॉल है, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो सड़कों पर है वो पानी आ गया है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतें भी निकलने में हो रही हैं। आप देखेंगे दूर तक जो गाड़ियां जा रही हैं, ये सभी भी इसी पानी से होकर जा रही हैं। हालांकि इसके जो दूसरी तरफ है, अगर वो हम आपको एरिया दिखाएंगे, इस तरीके से जो गाड़ियां निकल रही हैं वो भी आप देखेंगे, तो इसी बारिश यानी कि जो पानी है नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद यहां से निकल कर गुजर कर जा रही हैं। और ये ठीक प्लासियो मॉल के सामने की स्थिति है।

0: गोमती नदी की बाढ़ में डूबा लखनऊ का फैजुल्लागंज इलाका। पानी लोगों के घरों में अड्डा जमा चुका है, कई लोगों ने छतों पर आसरा ले रखा है। चारों तरफ पानी ही पानी और बाढ़ की आपदा से हैरान परेशान है।
1: राजधानी लखनऊ और फैजुल्लागंज का ये एरिया जहां मैं इस समय मौजूद हूं, वहां पर आप देख सकते हैं पानी अभी इससे ज्यादा भी आगे है। अभी हम शुरुआत में है और वहां पर पानी का स्तर ये है कि हमारे घुटनों तक पानी आ गया है।
0: फैजुल्लागंज के लोग मुश्किल में हैं। जिनके आसपास रिश्तेदार हैं वो वहां शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन घरों की रखवाली के लिए कई लोग अभी भी बस्ती में हैं। नगर निगम और प्रशासन की टीमें इलाके में मुस्तैद नजर आ रही हैं। लोगों को चिकित्सा सहायता देने के लिए एक शिविर बनाया गया है, तो पल पल की जानकारी के लिए एक अस्थायी कॉल सेंटर भी यहां काम कर रहा है।
2: यहां जो कंट्रोल रूम बना हुआ है, यहां पे हमारे अमीनों लगे हुए हैं। 6 नंबर्स हैं जिसपे जिनको भी शिकायतें होती है वो उस नंबर पे कॉल करके यहाँ शिकायतें दर्ज कराते हैं। शिकायतें ये लोग दर्ज करने के पश्चात जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस व्हाट्सएप ग्रुप में इसको डाला जाता है, उनके लोकेशन, उनके क्या डिमांड है, उनके नाम पते के साथ। फिर हमारे जो लेखपाल लगे हैं वो उसको ट्रैक करके संबंधित लेखपालों को उस बोर्ड के माध्यम से भेजा जाता है, उनको राहत सामग्री जो भी चाहिए होता है।
1: वैसे में प्रशासन 24/7 काम कर रहा है। इस बाढ़ में कब तक पानी कम होगा ये तो नहीं पता है, लेकिन जिस स्तर पर ये पानी बढ़ा हुआ ऐसे में लोगों के लिए अभी मुश्किलें थमती नजर नहीं आ रही हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: नमस्कार, विशेष में आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप। इस वक्त राहुल गांधी अपने इंडिया ब्लॉक के सांसदों के साथ क्या बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसकी जानकारी धीरे धीरे अब आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक के नेताओं के साथ जो बैठक है उसमें इस वक्त बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि यह सिर्फ ज्ञानेश कुमार की बात नहीं है बल्कि सरकार को बर्खास्त करना होगा। ये भी कहा है कि देश के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में आए गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र के नतीजों पर वो अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया।

0: तो दिलचस्प बात है क्योंकि आज राहुल गांधी ने जो ये कुछ राज्यों की चर्चा की है, उन्होंने गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र कहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल का जिक्र उन्होंने नहीं किया है। दिलचस्प है, टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी भी वहां पर रही होंगी, लेकिन सरकार की बर्खास्तगी तक इस लड़ाई को ले जाना है, राहुल गांधी कह रहे हैं। अंदर मौसमी, मौसमी हमारे साथ जुड़ गई। मौसमी, बताइए क्या चल रहा है।
1: बिल्कुल अंजना, इस वक्त जो है सारे नेता बाहर की तरफ, संसद संविधान सदन से बाहर गेट की तरफ, विजय चौक की तरफ आ रहे हैं, संसद परिसर से राहुल गांधी समेत सारे नेता बाहर निकल रहे हैं। और राहुल गांधी ने बड़ी बात कही है कि उन्होंने कहा है कि सिर्फ ज्ञानेश कुमार के इस्तीफा से काम नहीं चलेगा, सरकार को बर्खास्त करना होगा। दूसरा, ज्ञानेश कुमार जिस तरह से अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि ज्ञानेश कुमार खुद को क्या समझते हैं, हम लोग सांसद हैं तो हमारे हमसे उनको मिलना ही पड़ेगा। और इस वक्त आपको मैं बता सकती हूँ कि मकर द्वार के आगे जो विजय चौक का गेट है उससे पहले ये सारे नेता आ गए हैं। और बाहर की तरफ मनोज झा साहब, व्यापक झा साहब, क्या प्लान है मार्च करने का कि नहीं? मार्च कर रहे सर, ये बंद ये भी कह रहे हैं कि भाई इसे इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, अभी मुलाकात का टाइम।
2: इस कुकृत्य के बाद आपका तो इंटरनेट भी नहीं करेगा एक डेढ़ घंटा के बाद। आप ही सोचिए ना, पत्रकारों को भी इस्तीफा कर देना चाहिए।
1: तो यहाँ पे मनोज झा साहब बात कर रहे हैं और इस पर जो है रणनीति तैयार हो रही है। अब देखिए अंजना, यहाँ पे घेरा बना के तमाम नेता खड़े हुए हैं और राहुल गांधी समेत तमाम इंडिया ब्लॉक के नेता हम देख रहे हैं संसद परिसर के भीतर ही यहाँ पे खड़े हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मनोज झा साहब ने हम लोग से बात की और वो कह रहे थे कि इंटरनेट भी नहीं चलेगा, जो स्थिति है इसमें पूरी पाबंदी है। उमर अब्दुल्ला साहब यहाँ पे मौजूद है जो कि आए हुए हैं और इस पूरे उसमें माहौल में आप देखिए, अभी हम देख रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी भीतर से बाहर आ गए हैं और कुल मिला के बेहद आक्रामक तेवर इख्तियार करते हुए यहाँ पे इंडिया ब्लॉक नजर आ रहा है, जहाँ पे ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला, लेफ्ट के तमाम नेता यहाँ पे मौजूद हैं और राहुल गांधी और तमाम समाजवादी पार्टी के भी सांसद जो है वो यहाँ पे मौजूद है। केसी वेणुगोपाल इस वक्त कुछ ज्ञापन तैयार करने के लिए प्रियंका गांधी कांग्रेस के दफ्तर भागते हुए नजर आई, एक ज्ञापन जो राष्ट्रपति को देना। और देखिए, अब मुझे लगता है कि टाइम बहुत कम है।
0: बिल्कुल, आप बने रहिए, जैसे ही तस्वीरें आती हैं हम दिखाएंगे। राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं और राहुल गांधी का जो बयान है जो वो हम आपको बता ही रहे हैं। राहुल गांधी ने वहां पर ये साफ साफ कहा है कि जो राहुल, क्या अपडेट है वहां? जुड़ गए राहुल, बताइए। राहुल गौतम,
3: देखिए यहाँ पर गहमा गहमी शुरू हो गई है, यानी अभी से थोड़ी ही देर बाद जो सांसद हैं वो यहाँ से सामने जो गेट है वहां से निकलकर दूसरी तरफ जाएंगे, यानी राष्ट्रपति भवन रायसीना रोड की तरफ जाएंगे। आप देख सकते हैं जो जवान है पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, पूरे इस आप कह सकते हैं हिस्से को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है ताकि लोग ना आए। और आप देखिए सामने एक बैरिकेड भी लगा हुआ है जिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि यहां पर अनलॉफुल असेंबली या प्रदर्शन करना फिलहाल अपराध है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो 10 जो नेता हैं इंडिया ब्लॉक के वो ऊपर जाएंगे और एक मेमोरेंडम सौंपेंगे, जैसे कि बताया गया है, जिसमें तमाम जो ग्रीवान हैं, जो कंसर्न्स हैं इंडिया ब्लॉक के ज्ञानेश कुमार को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर, उन तमाम चीजों को रखेंगे। और जाहिर है जिस तरीके से अंदर से खबर छनकर बाहर आई कि तमाम जो नेता जो उन्होंने वहां पर अपने वक्तव्य दिया, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये प्रॉब्लम जो है, ये जो कथित प्रॉब्लम है, ये ज्ञानेश कुमार ये मात्र चुनाव आयोग की नहीं है, एक डीपर एक प्रॉब्लम है और इस सरकार को बर्खास्त करना पड़ेगा। साफ तौर गिरफ्तारी की मांग भी हुई ज्ञानेश कुमार की। तो कुल मिलाकर तापमान को बढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे, पिछले 3 रोज के बाद अब राष्ट्रपति के दरवाजे पर पूरा विपक्ष और उसके आगे की भी एक पूरा कैलेंडर है विपक्ष के पास कि हम किस तरीके से जिलेवार गांव तक इस पूरे प्रदर्शन को लेकर जाएं और सरकार के ऊपर दबाव बनाएं। आप देखिए, इसीलिए ममता बनर्जी स्पेशली फ्लाई कर दिल्ली आई ताकि वो इस बैठक के अंदर मौजूद रह सके, राष्ट्रपति से जो बैठक है उसमें मौजूद रह सके। उससे पहले अखिलेश यादव भी जब मार्च निकाला गया था इलेक्शन कमीशन तक, उसके लिए खासतौर पर यहाँ पर पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर कोशिश है विपक्ष की कि हम एक हैं, हमारी आवाज एक है, हमारे मुद्दे एक हैं, इसको लेकर एक मैसेज दिया जाए। अब से थोड़ी देर के अंदर जो नेता बताए गए हैं इस बैठक में शामिल होंगे राष्ट्रपति मुर्मू जी के साथ में, उसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों LOP हैं वो मौजूद होंगे, ममता बनर्जी होंगी, इसके अलावा मनोज झा होंगी RJD से, सुप्रिया सुले होंगी NCP से, राजीव राय होंगे समाजवादी पार्टी से, तो अच्छी खासी लिस्ट, MA बेबी होंगे CPM से, तो एक अच्छी खासी लिस्ट आप कह सकते हैं जो बड़े नेता कोटा है इंडिया ब्लॉक के, वो तमाम लोग जाएंगे और अपना एक मेमोरेंडम, अपनी आप कह सकते हैं अपनी ग्रीवांसेस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो कि संविधान की कस्टोडियन भी हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनको ये बताएंगे। लेकिन इसके बाद भी आप ये कह सकते हैं कि जो सड़क पे जो संग्राम है या जो लड़ाई है संसद से निकल कर जो सड़क पर आई है वो लगातार चलती रहेगी।
0: गौतम, हम आपके पास लौटेंगे। इसी बीच खबर आ रही है, आज ही हमने आपको कुछ देर पहले भी बताया था, आज ही उपचुनाव के नतीजे भी आए और इन नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली। इस पर कुछ देर पहले गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया है, दुष्प्रचार के बावजूद भी एनडीए जीता, मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जीत रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर बधाई संदेश देश के लिए दिया था। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं। अमित शाह का कहना है कि राहुल गांधी और इंडी अलायंस के झूठ, भ्रम व दुष्प्रचार के बावजूद मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी एक के बाद एक चुनाव जीत रही है। पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी के उपचुनाव और हाल ही में हुए राजस्थान और त्रिपुरा के निकाय चुनाव में एनडीए को मिली जीत बताती है कि जनता ने इंडी अलायंस को पूरी तरह नकार दिया है। जनाधार खो चुके ये दल हर हार के बाद संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, पर जनता इनका यह चरित्र पहचान चुकी है, इसीलिए एक बार फिर प्रचंड जनादेश देकर भाजपा पर अपना अटूट विश्वास जनता ने व्यक्त किया, ऐसा अमित शाह ने लिखा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के डीजीपी को पत्र लिखा है, कानून व्यवस्था बनाए रखने, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर सुरक्षा के जरूरी इंतजाम करने के लिए कहा गया है, एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के बीच लगातार जानकारी साझा करने को कहा गया है। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। अरविंद, कोई भी रिस्क जो है इस वक्त, कोई भी रिस्क ना दिल्ली पुलिस लेना चाहती है ना सरकार लेना चाहती है। दिल्ली में तो बहुत ज्यादा सख्तियां की ही जा रही हैं, अन्य जगहों के लिए भी अब चिट्ठी लिखी गई है।
4: बिल्कुल देखिए, और दिल्ली में ये प्रोटेस्ट होना है और 20 जुलाई को आपको याद होगा जो नई दिल्ली में हिंसा हुई थी उसमें दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी कि दूसरे राज्यों से लोग भी आए थे। इस वजह से जो केंद्रीय गृह सचिव हैं उन्होंने सभी राज्यों को लेटर लिखा है और कहा है कि दिल्ली पुलिस के साथ हर खुफिया जानकारी वो साझा करे, कानून व्यवस्था को मेंटेन। और साथ ही साथ इस लेटर में जो गृह सचिव है उन्होंने ये भी बताया है कि जो सीजेपी का प्रोटेस्ट है नई दिल्ली में उसको परमिशन नहीं मिली है, क्यों परमिशन नहीं है उसके बारे में जानकारी दी है, पिछली घटना का भी जिक्र किया है और ये कहा है कि सभी राज्यों के डीजीपी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाएं, खासतौर से जो बॉर्डर एरिया के स्टेट है वो अपने सीमा से कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसकी जानकारी दिल्ली पुलिस से और हर इंटेलिजेंस जो इनपुट है वो दिल्ली पुलिस से साझा करें।
0: मैं आपको टोक रही हूँ, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बैठक खत्म हो गई है और अब इंडिया ब्लॉक के जो तमाम नेता इस बैठक से निकल रहे हैं वो यहाँ से मार्च करेंगे आगे की तरफ। ये राहुल गांधी ने अंदर में कहा है कि सरकार को जाना ही होगा और ये बैठक अब खत्म हुई है, तस्वीरें आनी शुरू हो गई है। राहुल गौतम हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। राहुल, कौन कौन से नेता निकल रहे हैं, आप वहां पर मौजूद हैं, बताइए।
3: देखिए आप, मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी आपको दिखाएं, तमाम जो सांसद हैं वो अब बाहर निकल चुके हैं। मैं नासिर हुसैन को देख पा रहा हूं, मल्लू रवि को देख पा रहा हूं, इसके अलावा मानिकम टैगोर हैं, तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं, इसके अलावा आप देख सकते हैं अन्य विपक्षी दलों के जो सांसद हैं, राजीव राय यहां पर मौजूद हैं, एमए बेबी हैं, तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अब ये आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। ये रायसीना रोड की तरफ दरअसल जा रहे हैं, इनकी कोशिश होगी आगे जाने की। हालांकि जैसे मैंने पहले भी बैरिकेड लगा हुआ है और बैरिकेड के आगे नहीं जाने दिया जाएगा। इन तमाम लोगों के हाथ में प्ले कार्ड्स भी हैं जिन पर एक बैनर भी है जिस पर लिखा हुआ है रिजाइन ज्ञानेश कुमार, यानी वही एक मुख्य मांग जो पिछले कई दिनों से गूंज रही है सत्ता के गलियारों में विपक्ष के द्वारा, वो उसको फिर दोहराते हुए। और कई लोगों ने आप अगर देखें तो अपनी फ्लैश लाइट्स ऑन करी हुई हैं ये दर्शाने के लिए कि देखिए हम बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, हर एक व्यक्ति को काउंट किया जाए। आप देख सकते हैं आप अपनी तस्वीरों के अंदर तमाम जो लोग हैं, आपको लाल टोपियां नजर आ रही होंगी, यानी समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो भी यहाँ पर हैं। अब मैं आपको आगे की तस्वीरें दिखाता हूँ, आप देखिए यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर वोट चोर गद्दी छोर के नारे भी लग रहे हैं। तमाम जो नेता हैं वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर डीके शिव कुमार को आप देख सकते हैं, राजीव राय को आप देख सकते हैं, वर्षा गायकवाड़ हैं, इसके अलावा राजीव राय के अलावा एम ए बेबी हैं, राजा वड़िंग हैं, तमाम जो नेता हैं, कांग्रेस के नेता हों चाहे विपक्ष के नेता हों, इंडिया ब्लॉक के वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। रंचारी जी
5: तो पूरे आप की जो मांग
3: है, कहाँ तक जाएंगे
5: कि पूरा जो संरचना है बेईमानी का उसको खत्म किया जाए।
3: रवि जी,
5: ज्ञानेश जी प्रति
3: रवि जी कहाँ तक जाएंगे,
5: जो शील्ड बन के खड़े हैं मोदी जी और अमित शाह जी, वो चले जाए।
6: शुक्रिया। मांग है क्या चाहते हैं?
7: देखिए, मुझे लगता है कि जो सारे देशभक्त हैं वो देश में लोकतंत्र को बचाने में लगे हैं।
0: गौरव गोगोई को आप सुन रहे थे, मौसमी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मौसमी, आप बताइए क्या इस वक्त वहां पर तस्वीरें हैं, और इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी से लेकर एक तरफ मनोज झा हैं, राजीव राय दिखाई दे रहे हैं, इमरान मसूद, महुआ मोइत्रा,
3: प्रियंका गांधी भी है,
0: प्रियंका गांधी,
3: और
0: बताइए मौसमी
8: जी। देखिए अभी अंजना, देखिए अभी विजय चौक, हाँ ये देखिए पूरा जो मजमा है ये विजय चौक पहुंच गया है। विजय चौक से आगे मार्च करने की अनुमति नहीं है, तो सारे लोग विजय चौक के पास ही जो बैरिकेड लगा है, ये देखिए आप बैरिकेड लगा है 1 2 3 4, अब अनाउंसमेंट के लिए ये स्पीकर आ गया है, पुलिस अनाउंसमेंट करने लगी है कि बीएनएफ की धारा लगी है 163, आप इससे आगे, ये लक्ष्मण रेखा है, इससे आगे आप नहीं जा सकते। और यहाँ पे तमाम नेता हैं जो मौजूद है, ममता बनर्जी दिखाइए, प्रदीप कौन कौन से नेता है ये दिखाइए, और ये आप काफिला, आप देखना होगा कि यहाँ पे भी क्या राहुल गांधी बैरिकेड चढ़ते हैं, लेकिन ये आप देखिए कि इस तरफ आपको ममता बनर्जी दिख रही है, उमर अब्दुल्ला दिख रहे हैं, तमाम नेता यहाँ पे दिख रहे हैं जो एक तरीके से बैरिकेड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीर विजय चौक की लगातार हमने देखा है, ये चौथे दिन ये तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ से जो संसद परिसर से लोग बाहर निकले हैं, बैनर क्या है, ज्ञानेश इज डन ब्रो टाइम टू रिजाइन, और सब राहुल गांधी के
9: अपॉइंटमेंट है 8 बजे, पहले 8 बजे राष्ट्रपति तक पहुंचने दीजिए। प्लीज जाने दीजिए, मैम को जाने दीजिए प्लीज।
3: हाँ हाँ हाँ,
9: पहले उनको
10: दस सांसद अंदर जाएंगे
11: 10 लोगों का डेलीगेशन। देखिए, इमरान मसूद बता रहे हैं कि बैठक के अंदर राहुल गांधी ने कहा है कि बैठक के अंदर ये कहा है उन्होंने, प्रमोद तिवारी भी हैं सर, आज ममता बनर्जी गिरफ्तारी की मांग कर रही थी, सीसी ज्ञानेश

0: said also they feel that Allah Gullah is being going on.
1: डीके शिव कुमार को आप सुन रहे थे. ऐसे ही तमाम नेता जो वहां से निकल रहे हैं वो सभी ये कह रहे हैं कि वो सख्त कदम चाहते हैं, वो सरकार का इस्तीफे की बात. हालांकि क्या कुछ है, अब राहुल गांधी दिख रहे हैं. मौसमी, राहुल गांधी और उनके साथ कौन कौन से नेता हैं जो इस वक्त जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन?
2: देखिए, जाहिर तौर पर राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला, ममता बनर्जी, लेफ्ट के एम ए बेबी और जो भी घटक दल के जो नुमाइंदे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो सारे नेता, लगभग 10 नेता साथ में जा रहे हैं. ऑफकोर्स मल्लिकार्जुन खड़गे साहब साथ में जाएंगे. सुखदेव जी से पूछते हैं कि 10 लोगों का पूरा एक टीम बनी है जो जा रही है प्रतिनिधित्व करने, क्या मांग है आप लोग की? क्या आप लोग, सरकार इलीगल है ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं, तो क्या ये बात भी कहेंगे?
3: देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ये जो जितने लीडर के ऑपोजिशन के जितने लीडर्स हैं वो देश के 65% हम लोगों पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि हमारी बातों को सुने. हम जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन अपने कि वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं. और सबसे बड़ी बात है, ज्ञानेश कुमार जी, ये बहुत छोटी मछली है. कहीं न कहीं मोदी सरकार का इसको संरक्षण प्राप्त है और पूरे व्यवस्था को, संवैधानिक व्यवस्था को दीमक की तरह वो खोखला कर रहे. हम महामहिम पास जा रहे हैं कि हमारी बातें सुनी जाए. हम इस देश के नागरिक हैं, क्या हमारी बातें भी नहीं सुनी जाएंगी? प्रतिनिधियों की बातें नहीं सुनी जाएगी? वो 65% अगर लोग को जो हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनकी बातें भी नहीं सुनी जाए तो लोग जाएंगे कहां?
2: ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पे कांग्रेस के तमाम सांसद हैं, इंडिया ब्लॉक के भी सांसद हैं. और यहाँ पे अब राहुल गांधी, क्योंकि टाइम बहुत कम है अंजना, 15 मिनट का टाइम है राष्ट्रपति साहिबा के पास पहुंचना है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है. आइए देखते, खोजते हैं कोई नेता हमको पता है तो बताते हैं. पर देखिए, जो बड़े नेता हैं वो यहाँ से निकल गए हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है. और रंजीत रंजन यहाँ पे, रंजीत जी ये बताइए कि प्रियंका गांधी, हमने देखा कि कुछ भाग के जा रही थी, तैयार शायद हो रहा था, ये क्या कह रहा है आपका पोस्टर?
4: देखिए, सारे विपक्षी पार्टियां आज सेंट्रल हॉल में सर्वसम्मति से पास हुआ, जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं होता है, एफआईआर रद्द नहीं होती है, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता है और इलेक्टोरल रिफॉर्म पे जब तक बात नहीं होती है, प्रक्रिया बन के नहीं रहती है, सर्वसम्मति से पूरे विपक्ष ने पास किया और तब लगातार ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा.
2: कितने दिन हो गए इजाजत देते हुए? कितने दिन हो गए इजाजत देते हुए?
4: देखिए, चाहे ये 365 दिन साल के हमें ये कंटिन्यू हिरासत में रखे, एफआईआर करे या मेट्रो स्टेशन बंद करे, जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती है, जब तक इस लोकतंत्र की रक्षा नहीं होती है, पूरा विपक्ष सर्वसम्मति से प्रोटेस्ट करता है.
2: ठीक है, आइए दिखाते हैं आपको यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं, कौन कौन गाड़ी को अनुमति दी जा रही है ये देखते हैं. आधे लोग तो जा चुके हैं. यहाँ पे आइए देखिए कि ये गाड़ियाँ यहाँ पे फंसी, ये सब सांसदों की गाड़ियाँ, जिनको जाना था उनको ऑलरेडी भेज दिया गया है. और ये वो दौर है जब आप देखिए कि ऐसा प्रोटेस्ट पहले भी हमने देखा था विजय चौक पे, जब ईडी की कार्रवाई हुई थी सोनिया गांधी पर, उस वक्त हमने ये प्रोटेस्ट देखा था. और यहाँ पे आप देखिए कि दोबारा वो दोहराते हुए कांग्रेस मार्च भी कर रही है और ज्ञापन भी देने जा रही है, यानी दोनों, एक तरफ बातचीत करेगी, राष्ट्रपति साहिबा से मिलेगी और दूसरी तरफ सरकार के खिलाफ विरोध भी दर्ज करेगी. भूपेश बघेल यहाँ पे, आइए उनसे बात करते हैं. अंजना, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
1: बिल्कुल मिल रही है, लाइव है. मौसमी,
2: बताइए कि आगे की रणनीति क्या रहेगी और अंदर भीतर राहुल गांधी ने क्या आह्वान किया?
5: सीधी बात है, ये जनता की आवाज है, जनता की मांग की लड़ाई हो रही है, जनता के वोटों की है. और आम जनता जो है ये वोट के माध्यम से कितने अधिकार प्राप्त करते हैं उसे छीना जा रहा है, उसकी लड़ाई है. और ये लड़ाई राजधानी से लेकर पूरे गांव-गांव तक पहुंचने वाली है. और आज चाहे वो मेट्रो बंद कर दे, ट्रेन बंद कर दे, सब कुछ बंद कर दे, लेकिन जनता रुकने वाली नहीं है.
2: जनता रुकने वाली नहीं है. अब देखना ये है कि जनता क्या वाकई में कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आती है. लेकिन यहाँ पे घेरा है, अब दिल्ली पुलिस यहाँ पे हटाने का सिलसिला नेताओं को बहुत जल्द शुरू करने वाली है. ये एक टाइम पे यहाँ पे विजय चौक पर नेता खड़े हैं, सांसद खड़े हैं, दूसरी तरफ एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति भवन इसी रायसेना रोड से के रास्ते से आप देखिए बाहर निकलता हुआ राष्ट्रपति भवन जाता हुआ.

0: अंजना
1: बिल्कुल अमित के पास चलते हैं। अमित भारद्वाज भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, हम राहुल गांधी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, राहुल गांधी राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ते हुए, राजीव राय दिख रहे हैं उनके साथ।
2: रेणुका मैम, रेणुका मैम, देखिए अंजना, इस वक्त जो विपक्षी सांसदों का डेलीगेशन है वो प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जा चुका है, नेता एक एक करके जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जहां खड़े हैं वहां पे प्रियंका गांधी वाड्रा, के सी वेणुगोपाल, अभिषेक बैनर्जी, डीके शिव कुमार, सब कोई यहां पर बैठे हुए हैं और विजय चौक पे ही उन्होंने अपना, एक तरह से आप कह सकते हैं, धरना शुरू किया है और नारेबाजी यहीं पे हो रही है। एक एक करके सांसदों की तरफ से भी बात रखी जा रही है कि कैसे बैठक के अंदर जो है, चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर राहुल गांधी हो, उनकी तरफ से सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बात रखी गई और ये बात कही जा रही है कि मेमोरेंडम दिया जाएगा इंडिया गठबंधन द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, उनके जो कंसर्न्स हैं खास तौर पे सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, वो कंसर्न्स चुनावी प्रक्रिया को खिलाफ, वो कंसर्न्स रेस किए जाएंगे उसी मेमोरेंडम में। रेणुका चौधरी है, रेणुका मैम, अभी क्या मेमोरेंडम के अंदर क्या बातें रखी गई है?
3: हमने कहा हम मेंबर पार्लियामेंट, हमें लोग चुन के यहाँ भिजवाए, हम स्टेट्स का रिप्रेजेंटेटिव है, तो क्या है, कौन से ऐसे कसूर है?
2: एक बार मैं तस्वीरें भी दिखाऊंगा, जो नारेबाजी हो रही है वो तस्वीरें भी आप देखिए। सारे सांसद और जो नेता है विपक्षी दलों के नेता वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा इस जमघट में आपको दिखाई देंगी, अभिषेक बैनर्जी तृणमूल कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, सांसद हैं, वो भी बैठे हुए हैं। साथ में डीके शिवकुमार, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, वो बैठे हुए हैं और लगातार वोट चोरी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। दीपेंदर हुड्डा हैं, अभी आए हैं सर, मेमोरेंडम जी जी, तो ये मैनेजमेंट भी चल रहा है, तमाम सांसदों की तरफ से मैनेजमेंट चल रहा है कि जो यहाँ इकट्ठा सांसद है उनका एक तरह से धरना प्रदर्शन बेरोक टोक चलता रहे, इसको लेकर भी एक कोऑर्डिनेशन चल रहा है। दीपेंदर हुड्डा भी वो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, केसी वेणुगोपाल और प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहाँ पे कमान संभाल रखी है। राहुल गांधी अंदर गए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए डेलीगेशन लेके, तो यहाँ बाहर जो नेताओं की का धरना प्रदर्शन है उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा लीड लेते हुए हमें दिखाई दे रही है। और ये तस्वीरें इस वक्त राष्ट्रपति भवन से रायसीना हिल्स के ठीक सामने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विजय चौक पे सारे विपक्षी सांसद धरने पे बैठे हुए हैं, नारेबाजी हो रही है, वोट चोरी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी हो रही है। मैं देख पा रहा हूं कैसे जो विपक्षी दलों के सांसद हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा दाहिनी तरफ है, जैसे ही कैमरा आपको पैन होता हुआ दिखेगा तो आपको प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पे दिखेंगे, अभिषेक बैनर्जी भी इसी नेताओं के गुट में है, प्रनीति शिंदे को मैं देख पा रहा हूँ बैठे हुए हैं
4: लोगों का सिग्नेचर लेके। अरे अलाउड हम वहाँ पर लेके नहीं जाते उनके पास, देखो इनको वहाँ प्रेसिडेंट के पास नहीं ले जाते, वहाँ पर साइन लेकर दरवाजे पे रहेंगे, दरवाजे पे रहेंगे। क्यों उठे लाइन जब नाम ही नहीं है,
5: नाम है फिर भी अलाउ नहीं कर रहे क्या सर?
4: मुझे मालूम नहीं है वो बात। People are thinking of supporting the people who are fighting for restoration of democracy. People will come. This is like second freedom struggle. Otherwise, country will go to dictators. This will not happen in India.
6: कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है और मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते जो वोट चोरी की गई है वो जनता की अदालत में उतारने का उद्देश्य भी कांग्रेस पार्टी और उसके अलायंस पार्टनर का है। हजारों साल की के बाद अगर इस देश को कोई सबसे बड़ा अधिकार मिला है तो वोट का अधिकार है, उस वोट के अधिकार की चोरी करके सत्ता की जाती है तो ये गलत है। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ।
0: हमला बोला, आपके नेता पे हमला बोला।
7: मौजूद है इकरा हसन, सांसद है समाजवादी पार्टी से। आप तमाम लोग जो हैं आज पहुंचे, बार बार कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी जो है वो दूरी बना के रखी हुई है समाज पूरे इंडिया ब्लॉक से, लेकिन आज आप तमाम लोग पहुंचे हैं, ये भी एक मैसेज है विपक्षी एकता का?
8: बिल्कुल, देखिए हम लोग रोजाना पहुंच रहे हैं, जितने भी लोग दिल्ली में मौजूद होते हैं वो लोग पहुंच रहे हैं प्रोटेस्ट में, आज हम लोग मौजूद हैं, हम हैं, हमें यही आदेश है कि जो भी लोग दिल्ली में हैं वो पहुंचे, और क्योंकि हमारे प्रदेश में चुनाव है, वहां की भी जिम्मेदारियां हैं, तो जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं वो उस मजबूरी के तहत नहीं पहुंच पा रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहती हूं, जो इतनी अटकलें और सवाल पूछे जा रहे हैं, कल स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि है और उस व्यस्तता के कारण अखिलेश यादव जी यहां पर नहीं है, लेकिन हम सब लोग, हम लगभग 10 से ज्यादा सांसद यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हीं के निर्देश पर हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी पहले दिन से इंडिया ब्लॉक के साथ है और इस लड़ाई में मजबूती तक हम आगे तक लड़ाई।
7: मेमोरेंडम साइन किया गया अंदर तमाम लोग जो राष्ट्रपति जी के लिए, क्या आपने मुख्य मांगे उसमें रखी है, क्या आपने ग्रीवांसेस शेयर किए हैं आपने?
8: देखिये, जो सारे फैक्ट्स हैं, एक साल पहले भी ऑपोजिशन ने एक मार्च किया था SIR के अगेंस्ट, तब माहौल ये नहीं था, लेकिन अब क्योंकि
1: तो ग्यारेश कुमार पर विपक्ष का हल्ला बोल आप देख रहे थे। आगे की खबरों के लिए चलते हैं अपनी सहयोगी श्वेता के पास। श्वेता,
9: शुक्रिया अंजना। और जो खबरें हम आपको दिखा रहे हैं वो लगातार राष्ट्रपति भवन में किस तरीके से विपक्ष के नेताओं के पहुंचने का क्रम आप देख रहे हैं। विपक्षी सांसदों का विजय चौक पर, बाकी जो विपक्षी सांसद है उनका विजय चौक पर धरना है और 10 सांसद राष्ट्रपति से मिलने के लिए आगे की तरफ बढ़े हैं। बाकी विपक्षी सांसद विजय चौक तक पहुंचे हैं और वहां पर वो मौजूद हैं जब तक बाकी 10 सांसद वापस आएंगे। अब क्या है उस क्या राष्ट्रपति से मुलाकात में कहते हैं सभी सांसद, क्योंकि अभी तक जो बैठक की बात सामने आई है जिसमें सरकार को बर्खास्त करने तक की मांग विपक्ष की तरफ से बताया जा रहा है कि की जा रही है, तो उन सारी चीजों के बीच क्या निकलेगा। यहां पर आप विजय चौक की एक तरफ तस्वीरें, दूसरी तरफ जो 10 सांसद आगे की तरफ राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए बढ़ रहे हैं उनको आप देख सकते हैं। बैठक एक लंबी चौड़ी चली है इंडिया ब्लॉक के सभी सांसदों के बीच, जिसमें रणनीति तय हुई है। कल कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है दिल्ली के भीतर। राहुल गौतम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और लगातार वहां की जानकारियां हमें दे रहे हैं। राहुल, यहां पर सभी सांसदों को हम विजय चौक पर देख रहे हैं, 10 सांसदों को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, कुल मिलाकर क्या समझ में आ रहा है कि जब राष्ट्रपति जी से बातचीत होगी उनके सामने मुख्य रूप से कौन सी बातें, क्या केवल ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध या फिर सरकार के?
7: देखिए, एक डेकोरम मेंटेन किया गया है क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उनके घर तक प्रोटेस्ट मार्च नहीं करना था, इसलिए ये फैसला किया गया कि दिन 10 लोगों को बुलाया गया है, वो 10 लोग जाएंगे पूरे डेकोरम के साथ में और जाकर उनको मेमोरेंडम सौंप देंगे। लेकिन बाकी सांसद क्या करेंगे? बाकी सांसद यहाँ पर सड़क पर बैठकर नारेबाजी करेंगे, धरना देंगे। ये कभी मंशा नहीं थी कि राष्ट्रपति के घर तक जाया जाए क्योंकि वो संविधान के कस्टोडियन होते हैं, उससे गलत मैसेज जाता है। लेकिन उसके इतर क्या किया जा सकता है, वो तमाम चीजें एम्प्लॉय की जा रही हैं, इस्तेमाल की जा रही हैं। आप देखिए, यहां पर सांसद जो हैं वो जमीन पर बैठे हुए हैं, ये विजय चौक का इलाका है, अब अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसी के बराबर में रायसीना रोड है जहां पे राष्ट्रपति भवन है और वहां पर ही तमाम जो सांसद हैं वो सड़क पर बैठे हुए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, दीपेंद्र हुड्डा यहां पर मौजूद है, राजा अमिंदर सिंह वड़िंग यहां पर मौजूद है, इसके अलावा विपक्ष के जो अन्य सांसद है यानी महुआ मोहित्रा यहां पर मौजूद है, डोला सेन यहां पर है, तमाम जो सांसद हैं विपक्ष के, आप कह सकते पूरा कुनबा जो है वो ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि देखिए हम तमाम लोग एक हैं। और जो मुद्दा है, जो रैलिंग पॉइंट है, वो रैलिंग पॉइंट है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, उनको हटाने को लेकर हम तमाम लोग एक साथ आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इकरा हसन से बात करी जो कि समाजवादी पार्टी की सांसद है, उन्होंने कहा कि आप बार बार उन्होंने मीडिया का जिक्र करके अपने विरोधियों का जिक्र करते हुए कहा कि बार बार हमारे लिए कहा जाता है कि हमने क्या कोई दूरी बना रखी है, लेकिन आज भी हमको स्पष्ट निर्देश थे कि जो जो सांसद दिल्ली में है वो तमाम लोग इस मार्च में शामिल होंगे, तो 10 से ज्यादा सांसद इस मार्च में शामिल हैं, इस आप कह सकते हैं कि इस पूरी कवायद में शामिल हुए। इसी के साथ साथ क्योंकि कल मुलायम सिंह यादव जी की पुण्य
9: जी जी, उनकी पुण्यतिथि होने के नाते व्यस्तता की बात भी इकरा हसन की तरफ से की गई थी। मौसमी सिंह हमारे साथ है, मौसमी के साथ पवन खेड़ा इस समय है। जी मौसमी
10: जी, सर थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत थी। तो ये देखिए श्वेता, हम लोग विजय चौक पे हैं, पीछे हमारे बिल्कुल आप देख रहे हैं कि यहाँ तमाम सांसद धरने पे कुछ इस तरीके से बैठे हुए हैं। डबल रणनीति के तहत ये पॉलिटिक्स हो रही है, एक तरफ प्रतिनिधि मंडल जा रहा है ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर, दूसरी तरफ यहाँ पे ग्राउंड पे इस तरीके की पॉलिटिक्स। डीके शिव कुमार उनके साथ बैठे हैं, तमाम चीफ मिनिस्टर्स आए हैं, तमाम सांसद यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम चीफ एक्चुअली पवन खेरा हमसे पहले भी बात कर रहे थे श्वेता, तो वो नेटवर्क नहीं लग पाया था। खेरा साहब, राहुल गांधी ने बेहद आक्रामक स्पीच दी है, अभी ये डुअल पॉलिटिक्स की स्ट्रेटेजी क्या है कि एक तरफ धरना दूसरी तरफ राष्ट्रपति से मुलाकात?
11: देखिए पूरा सरकार यहाँ बहरी हो चुकी है, उनको सुनाने के लिए शोर मचाना जरूरी है। राष्ट्रपति महोदया से हमें उम्मीद है जो अंतिम प्रहरी है संविधान की, वो जरूर रक्षा करने आएंगी क्योंकि संविधान वाकई खतरे में है।
10: पर एक कदम आप लोग आगे चले गए, राहुल गांधी ने की सरकार ही बर्खास्त हो,
11: जिस सरकार की ये हालत हो गई कि वो एक कठपुतली के सहारे जिंदा हो, सारे चुनाव जो 24 के बाद हुए हैं वो अगर इस तरीके से चोरी करके हुए हैं तो जाहिर सी बात है इस सरकार का कोई नैतिक बल बचा नहीं अब रहने के लिए।
10: अच्छा, यहाँ पे जो तस्वीर देख रहे हैं खेरा साहब, इस तस्वीर के क्या मायने हैं?
11: इस तस्वीर के मायने हैं कि 65% देश के प्रतिनिधि आज सड़क पर बैठे हैं।
10: ये धरना पॉलिटिक्स कल CJP का भी आंदोलन है, क्या आप लोग उसमें भी हिस्सा लेंगे? लगातार ये सवाल किया जा रहा है।
11: हम अहिंसक तरीके से जो भी आंदोलन कर रहे हैं हम उनके साथ।
10: यहाँ पे अगर कहें तो ज्ञानेश कुमार आप को मुलाकात का टाइम दे, ये भी राहुल गांधी ने कहा कि वो अपने आप को क्या समझते हैं। ज्ञानेश कुमार अपने आप को
11: घमंड कैसे आ सकता है, जनता का नौकर है, जनता के पैसे की तनख्वाह पर पलता है और इतना घमंड की जनता के प्रतिनिधियों से नहीं मिलेगा?
10: चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना,
11: मतलब ये औकात है कि MPs से नहीं मिलेंगे? क्यों भाई,
10: वो ये कह रहे ना फॉर्मल आपने कुछ दिया नहीं है।
11: फॉर्मल देंगे साहब, पलक पावड़े बिछा के बैठे उनके दरवाजे के बाहर कि साहब आ जाइए मिल लीजिए।
10: खेरा साहब आज तक
11: भी मिलते थे, माफ कीजिएगा, सॉरी ये गलत कह रहे हैं आप, हम पहले भी मिलते थे।
10: चुनाव आयोग ये कह रहे हैं, दर्शकों को बता दीजिए एक बार जानकारी किस तरह का।
11: मैं बताता हूँ, महीना भर पहले उत्तराखंड की डेलीगेशन थी, हफ्ते भर इंतजार किया नहीं मिला अपॉइंटमेंट, और फिर हम दरवाजे पे गए तो दरवाजा नहीं खुला, बाहर एक LDC को भेज के हमसे ज्ञापन लिया। ये तो मैं था उस
10: इस बार की बात पूछ रही हूँ मैं कि आप लोग ने
11: हर बार बैठे आकाशवाणी में, पुलिस वालों के माध्यम से बातचीत हुई उनसे, पुलिस वालों को उन्होंने कहा कि हाँ मिलूंगा लेकिन इतने ही लोग होने चाहिए, यहाँ आने चाहिए, वहाँ आने चाहिए, क्या खाक ये चुनाव आयोग है।
10: तो यहाँ पे जो कंडीशंस रखी गई थी उसको लेके यहाँ पे कहा गया कि लगातार जिस तरह से सर एक मिनट साइड हो जाइए, सर इस साइड हो जाइए, यहाँ पे श्वेता कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग कह रहे हैं कि यहाँ नहीं मिलेंगे वहाँ नहीं मिलेंगे और इसको लेके विपक्ष तैयार नहीं है। पार्लियामेंट एनेक्सी में चुनाव आयोग से मिलने की मांग की गई थी। बहरहाल यहाँ पे वोट चोर गद्दी चोर के नारे आप सुन रही है और ये लगातार चौथा दिन है जो ये तस्वीर हम लोग देख रहे हैं, कभी सुबह कभी शाम, कभी सुबह से शाम। ये तस्वीर इंडिया ब्लॉक की तरफ से एक तरीके से कहते हैं कि कल बड़ा आंदोलन CJP की तरफ से, उससे पहले शाम को इंडिया ब्लॉक विजय चौक पे कुछ इस तरीके से बैठे हुआ है। ओवर टू यू
9: मौसमी, बने रही है हमारे साथ, अमित भारद्वाज भी हमारे साथ हैं और इस सब के मध्य में एक जो CEC है जिनके लिए बार बार कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सभी सांसदों की तरफ से कहा जाता है कि वो मिल नहीं रहे हैं, मिलने का अवसर नहीं दे रहे हैं, प्रेस रिलीजेस जरूर उस तरफ से आ रही हैं अमित, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं। क्या आपको लग रहा है कि गतिरोध को तोड़ने के लिए कुछ उनकी तरफ से भी कोई पहल हो सकता है या फिर ये विरोध प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा? अमित को अभी हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। अमित भारद्वाज, अगर आपको आवाज आए तो आप अपना हाथ उठाएं, लेकिन फिलहाल जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं ये राष्ट्रपति भवन की तरफ जो 10 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है जिसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं, साथ में समाजवादी पार्टी की तरफ से राजीव राय को आप देख रहे हैं, यानी कि टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, इंडिया गठबंधन के सभी जो सहयोगी दल हो, उन सबको एक साथ अपने अपने प्रतिनिधियों के साथ आप आगे की तरफ बढ़ते हुए देख सकते हैं। वाम पार्टियों की तरफ से एमए बेबी है, तो ये सभी चेहरे राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। 15 मिनट का समय बताया गया है कि आवंटित है, और उसमें उनको अपनी बात वहां पर रखनी है। मौसमी, ऐसा नहीं है कि इस मुलाकात के साथ हम सोचेंगे कि विरोध प्रदर्शन, जो धरना है और जो मांगे हैं, उनका दौर खत्म होगा, क्योंकि जो मांगे हैं वो राष्ट्रपति के साथ बात करके ये भी शायद संकेत देना चाह रहे हैं विपक्षी दल कि वो हर एक रास्ता अख्तियार करेंगे, चाहे वो कोर्ट का हो, चाहे संवैधानिक रास्ता हो, या फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया।
10: बिल्कुल, देखिए मैं ये कह रही थी श्वेता कि कभी 8-10 घंटे प्रोटेस्ट, कभी फ्लैश प्रोटेस्ट, कभी लंच के बाद प्रोटेस्ट, और आज लंच नहीं था, शाम को एक सभा कराई गई संविधान सदन में और उसके बाद प्रोटेस्ट। ये वो दौर है जब लगातार जिस तरीके से आप देख रहे हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कैमरे बैठी है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं होता है, दिल्ली की सड़कें, देश की सड़कें भरी रहेंगी। भ्रष्टाचारी ज्ञानेश कुमार को जाना होगा। ज्ञानेश कुमार ने गद्दारी की है, ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी की है, ये असलियत है। ज्ञानेश कुमार ने वोट चोरी की है और ज्ञानेश कुमार को अपने कुकर्मों की सजा मिलेगी। ज्ञानेश कुमार को जाना होगा, जिसने चोरी कराई है ज्ञानेश कुमार से, वो भी जाएंगे।
12: ताना साहो को हम लोग कबार के फेंक देंगे। आप देखिए, 100 ट्रेन से ज्यादा इन्होंने रोक दिया, 100 ट्रेन रोक दिया बिना किसी नोटिस का। लाखों लोगों को इसने बर्बाद किया है। बिहार से मैं आता हूँ, बिहार से प्रत्येक दिन दवा कराने के लिए लोग दिल्ली आते हैं, और ट्रेन को रोक करके से बदसाहत किया, हिटलर साहब।
13: देखिए जिस तरह से देशवासियों के ऊपर जुल्म जा रहा है, ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। आजादी के बाद पहली बार कोई ऐसी तानाशाही सरकार आई है जिसने लोगों के हकों को पामाल कर दिया। स्टूडेंट्स और किसानों और देश की जनता के लिए जो सरकार मुसीबत है, आज कहा जा रहा है कि सरकार को जो वोट चोरी के जरिए से आई है, उसको क्या होगा।
9: मौसमी सिंह, जो विपक्ष के सभी सांसद धरने पर इस समय बैठे हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं। दूसरी तरफ जो प्रतिनिधि मंडल आगे जा रहा है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर तृणमूल कांग्रेस, सुप्रिया सुले को भी आप देख रहे हैं, उमर अब्दुल्ला को देख रहे हैं, ये सब आगे मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। मनोज झा इसमें शामिल हैं। तो सभी इंडिया दल के जो भी घटक हैं, वो सब एक साथ आगे बढ़कर एकजुटता का एक मार्च भी राष्ट्रपति भवन के भीतर आप देख रहे हैं, जो 10 सांसद आगे उनसे मुलाकात करेंगे। ममता बनर्जी भी हैं। अब ऐश्वर्या पालीवाल हमारे साथ हैं, और ऐश्वर्या, एक ऐसी स्थिति है जिसको देखकर न तो चुनाव आयोग मुंह मोड़ सकता है कि स्थिति सब कुछ सामान्य है और सब ठीक हो जाएगा, न सरकार अपनी तरफ से उस प्रकार में मुंह मोड़ सकती है, लेकिन जो सवाल इस समय सबके मन में हो रहा है कि जब भी किसी चीज को लेकर विरोध प्रदर्शन होता है, उस गतिरोध को तोड़ने की कोशिश भी होती है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त बार बार अपनी तरफ से यही कह रहे हैं कि उनसे अपॉइंटमेंट नहीं लिया जा रहा है, लेकिन दूसरा रास्ता क्या है? कोई तो रास्ता निकलेगा ना गतिरोध तोड़ने का।
14: बिल्कुल श्वेता, बिल्कुल ठीक कह रही है, और उसमें से एक चीज जो हम आज देख रहे हैं वो है राष्ट्रपति भवन, और चल कर देखिए गाड़ियों को इजाजत थी, लेकिन क्योंकि विपक्षी पार्टियां भी एक मैसेज देना चाहती है, वो वहां से लेके यहां तक चल कर गए। आपको पुलिसकर्मी भी बहुत भारी तादाद में यहां पर नजर आ रहे हैं, ये कर्तव्य पथ है। ठीक मेरे पीछे राष्ट्रपति भवन है, और सबसे तेज चलते हुए जो नजर आए थे और सबसे पहले जो पहुंचे वो थे राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी से राजीव राय। एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं कोशिश ये भी है कि क्या मुख्य चुनाव चुनाव आयुक्त से अब समय मांगा जाएगा। अभी की अगर हम बात करें तो अभी तक दिल्ली पुलिस ने जरूर चुनाव आयोग को यह कहा है कि विपक्षी पार्टियां आपसे मिलना चाहती हैं, लेकिन देखिए राष्ट्रपति भवन के अंदर भी 10 ही लीडर्स को अलाउ किया गया, तो चुनाव आयोग भी 10-20-30 हो सकता है 50 लोगों को अलाउ कर दे। लेकिन जो रिक्वेस्ट गई थी विपक्ष की तरफ से वो थी कि लगभग 240 एमपीज मिलना चाहते हैं, और दूसरी बात मिलने की जो जगह थी वो एमपीज का कहना था कि आप आइए और संसद के अंदर हमसे मुलाकात कीजिए। ये अनप्रेसिडेंटेड है, हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है, इसीलिए चुनाव आयोग ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है। अगर आप बात करना चाहते हैं तो फिर दूसरा तरीका निकालिए, और अगर आपको मिलना है, बात करनी है, तो उसके लिए ठीक जगह होगी चुनाव आयोग। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इंतजार करना होगा कि क्या कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट कम लोग जो हैं वो देंगे चुनाव आयोग को, और अगर देते हैं तो क्या चुनाव आयोग जल्द से जल्द इन लोगों से मिलने की जो तैयारी है वो चालू इस समय करेगा या नहीं। लेकिन इस समय महत्वपूर्ण बैठक, बड़े 10 विपक्षी नेता जो हैं वो राष्ट्रपति भवन के अंदर पहुंच चुके हैं और अब अपना अनुरोध राष्ट्रपति जी के सामने रख रहे हैं। श्वेता,
9: इस सबके बीच 10 जो सांसद हैं वो आगे की तरफ और जो विजय चौक है वहां पर बाकी सांसद दिख रहे हैं, लेकिन शायद ऐश्वर्या ये जो राजनीतिक विरोध है उसके बीच ज्यादा बड़ा सरदर्द कांग्रेस जनता पार्टी का वो विरोध है, क्योंकि पहली बार जब उनका विरोध हुआ शिक्षा के मुद्दों को लेकर तब वहां पर आम जनता जुड़ती दिखी। अब क्या जो कल की चिंताएं हैं जिसमें ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, मेट्रो स्टेशनों को लेकर अंकुश है, उसमें एक तरीके से तैयारियां सारी दुरुस्त हैं कि पिछली बार की तरह परिस्थितियां न बने?
14: नहीं देखिए श्वेता, मैं आपको बता दूं, तैयारी जरूरत से ज्यादा दुरुस्त की गई है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से चेतावनियां दी गई हैं, हम देश की राजधानी दिल्ली है और उसका दिल है कैन नॉट प्लेस, तो वहां पर भी दुकानों को कहा गया है और शॉपकीपर्स ने खुद ही सामने से आके, कई शॉपकीपर्स ने कहा कि हम अपनी दुकानें बंद रखेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। देखिए इंटरनेट आज रात को 10 बजे से लेकर जंतर मंतर के आसपास के इलाके में लगभग 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर इंटरनेट को बंद कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने ऑफिशियल ऑर्डर्स टेलीकॉम कंपनीज को दे दिए हैं और कहा है कि जब तक हम नहीं बोलेंगे, लगभग अभी 24 घंटे का इंटरनेट का बैन जो है वो यहाँ पे किया जाएगा, लेकिन अगर सरकार को लगता है कि जरूरत पड़ी तो इस इलाके के अंदर वो
9: ठीक है ऐश्वर्या कुछ
14: किया जा सकता है,
15: रास्ता नहीं दिखा दिया जा रहा
16: प्रोटेस्ट को कैसे समझा जाए? वक्त मिला, 10 लोगों को समय दिया गया, 10 लोग अंदर जा रहे हैं, ज्ञापन लेकर जा रहे हैं।
17: यू हैव सीन लास्ट 4 डेज वी आर एजिटेटिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस दैट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। We wanted to meet the election commissioner, but he is not meeting us, 300 plus MPs. Today we have come forward, 300 plus MPs, to meet the president of our country. But such a sad state of affairs, we are not even able to cross the entry point. The police is stopping us. Police is doing lathi charge on MPs. The people of our country, 60 crore people have voted for the opposition. Please don't forget that. Today we are the voice of the opposition, but today police with brute force is attacking and trying to suppress our voice. We will not stand back. We will fight back and we will keep up the democracy in this country.
18: Telugu briefly.
17: Ee roju prajaswamyam lekunda vyavaristunaru. Mem prajaswamyam kosam poratam chestane untamu. 300 paiga MPs ee roju president ni galvani koste mammalni baitiki gentestunaru. Idi prajaswamyam gaadu. Kaani
9: मौसमी सिंह और अमित भारद्वाज दोनों हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, अगर आपको आवाज आ रही है तो हम ये तस्वीरों के बीच अहम वो 10 नेताओं को देखना भी है जिनमें से सांसद भी हैं और विपक्षी पार्टियों का नेतृत्व भी है, ममता बनर्जी के रूप में, उमर अब्दुल्ला के रूप में, जो आगे बढ़ रहे हैं मुलाकात करने के लिए। पर जिस तरीके से यहां पर एक छोटा प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति जी से मुलाकात कर रहा है, क्या वैसा प्रतिनिधिमंडल कोई गठित किया जा सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने के लिए, या फिर अपनी बात पर कायम है विपक्ष कि जो 300 प्लस सांसद हैं उन सब से मिले सीसी?
2: श्वेता, देखिए स्थिति ऐसी हो गई है कि जिसके खिलाफ आपके मन में गिला है, शिकवा है, उसी के पास क्या फरियाद लेके जानी है, ये विपक्षी दलों का मानना है। और यही वजह है कि सीसी ज्ञानेश कुमार से मिलने को विपक्ष पहले दिन 6 तारीख को भी तैयार नहीं था, विरोध प्रदर्शन था और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक पहुंचने के लिए हर संभव तरीका अपनाया गया था। यही वजह है कि वो चिट्ठी भेजी गई थी और कहा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आप डेलीगेशन लेके आइए पार्लियामेंट एनेक्स में, हम आपको वहां मिलेंगे। होंगे, 300 सांसदों को एक साथ मिलना होगा। और आज जो डेलीगेशन आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन में रायसीना हिल होते हुए जो विपक्षी दलों का डेलीगेशन गया है, उसको आप ऐसे समझिए कि कोई सांसद नहीं है, वो सारे अपने अपने दलों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला ही ऐसे तय किया गया था। सुबह तक मनोज झा के जगह उसमें तेजस्वी यादव का नाम था राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, लेकिन क्योंकि संभवतः तेजस्वी यादव यहां नहीं पहुंच पाए, इस वजह से मनोज झा का नाम रखा गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी एलओपी हैं लोकसभा में, ममता बनर्जी अपनी पार्टी की अध्यक्ष हैं, सुप्रिया सुले एक तरह से आप कह सकते हैं कि एनसीपी एसपी को डे टू डे हैंडलिंग उनके हाथ में है, तो वो वहां प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अखिलेश यादव पारिवारिक कारणों की वजह से यहां नहीं आ सकते थे, इस वजह से क्योंकि कल बड़ा एक उनके परिवार से जुड़ा हुआ एक घटनाक्रम है, तो उसमें व्यस्त रहेंगे। मुझे ये बताया गया है, ये अंडरस्टैंडिंग दी गई है, इस वजह से राजीव राय को सीनियर सांसद को उस डेलीगेशन में डाला गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। एमए बेबी जनरल सेक्रेटरी हैं सीपीएम के, वो डेलीगेशन में है। और मांगे क्या है, मैंने अभी नेताओं से बात की है तो दो टूक शब्दों में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भी ये मांग की जाएगी, क्योंकि वो कस्टोडियन है, सीसी ज्ञानेश कुमार को हटाया जाए उनके पद से। और जब ये मांग रखी जा रही है तो विपक्षी दल ये भी कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, पैरेलली हमारा ये
3: हम उम्मीद रखते हैं कि हमें दिशा दिखाएगी राष्ट्रपति हमारे, कम से कम वो तो हमारे बात सुने, क्योंकि आज के दिन बच्चों के आवाज दबा दिए है, लोकतंत्र की गला घोट रहे हैं, तो हम यही उनके नजरों में हम ले आए।
18: पूरे लोकतंत्र को बचाना है, और जैसे कि राहुल गांधी जी ने पहले भी कहा है कि वे सब लोग जो इस देशद्रोही के काम में जुटे हुए हैं सब पर कार्रवाई होनी चाहिए।
19: अंतिम सांसें गिन रहा है लोकतंत्र और संविधान, इसको बचाने की जिम्मेदारी अब राष्ट्रपति महोदय की।
20: उसके बाद इन्हें रोक दिया गया,
21: जिस तरह से आगे के लिए जिस प्रदर्शन होने वाला है, प्रोटेस्ट होने वाला है, उसके लेकर तमाम रेस्ट्रिक्शन।
19: देखिए ये जब तानाशाह डरता है ऐसी वाहियात हरकतें करता है, लेकिन जब भी ऐसी वाहियात हरकतें करता है तानाशाह, उसके दिन गिनती के होते हैं, फिर उसको जाना पड़ता है, जनता धक्का मार के निकालती है।
20: शोभना हमारे साथ पवन खेड़ा
22: जा रहे हैं, तमाम इंडिया ब्लॉक।
9: मौसमी क्या कितना समय आवंटित है जो सभी विपक्ष के नेता पहुंचे हैं राष्ट्रपति से मिलने के लिए उनकी मुलाकात का, और क्या बाहर निकलेंगे तो हम उम्मीद करें कि संबोधित भी करेंगे, क्या बातचीत हुई उन सारी चीजों को लेकर?
10: बिल्कुल, देखिए अभी आपको अपडेट बता देते हैं कि श्वेता पूरे विजय चौक से ये धरना अभी उठ गया है, प्रियंका गांधी और सारे नेता अब जा रहे हैं, और यहाँ पे जो विजय चौक पे एक तरीके से धरना पॉलिटिक्स हो रही थी, देखना होगा कि क्या राष्ट्रपति भवन की ओर जा रहे हैं, आइए देखते हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी बैरिकेड से इस तरफ आ गई, और जरा जल्दी चलेगा भैया, और ये देखिए अब ये आगे की तरफ बढ़ी तो गाड़ी में अपने बैठने जा रही, क्योंकि सारी गाड़ियां यहाँ पे है, लेकिन ये विजय चौक है श्वेता, और जिस तरीके की पॉलिटिक्स अभी हम लोग ने देखी है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की कभी आकाशवाणी भवन से, कहाँ जा रहे हैं राजा साहब?
23: अभी विजय चौक, विजय चौक, विजय चौक जाएंगे मौसमी जी,
10: तो विजय चौक
23: और जहाँ जाना पड़ा वहाँ जाएंगे, जनेश शर्मा को इस्तीफा देना होगा, छोड़ेंगे
10: नहीं। अभी पैदल चले जा रहे हैं आप लोग बैरिकेड के आगे?
23: हमारा जब बैरिकेडिंग जाने नहीं कोई दे रहा तो हम पैदल जाएंगे, लड़ेंगे, हर लड़ाई लड़ेंगे, ये करो और मरो की लड़ाई है।
10: यहाँ पे ये नहीं है कि गाड़ियों से आप लोग वापस घर जा रहे हैं?
23: नहीं, घर नहीं जा रहे थे, हम विजय चौक की तरफ बढ़ रहे थे।
10: तो श्वेता ये अपडेट है कि अब विजय चौक जो बैरिकेड लगी थी उसके इतर यहाँ पे आ गए हैं तमाम सांसद, विजय चौक पे खड़े हो गए हैं। क्या कैमरा पर्सन प्रदीप आपको लॉन्ग शॉट में वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ प्रियंका गांधी ये देखिए यही खड़ी हुई हैं, और यहीं से नारेबाजी विजय चौक से अब शुरू हो गई है, और ये पूरा पैरामिलिट्री फोर्स दिल्ली पुलिस का पूरा बैरिकेडिंग है, और कहाँ जा रहे हैं?
24: आनंदू
10: मीडिया से मुखातिब यहाँ पे नेता होंगे।
9: अच्छा, इंडिया गठबंधन के जो सभी सांसद हैं जो बाहर बैठे, जो भीतर नहीं गए प्रतिनिधिमंडल के साथ, वो सब अब मीडिया को यहां पर संबोधित करने वाले हैं। जाहिर है लगातार जब से चुनाव आयोग के भीतर की खबरें एक मीडिया रिपोर्ट के साथ सामने आई, उसके बाद से आक्रामक है विपक्ष, आक्रामक है विपक्ष, और अपनी मांगे आज सामने रखने के लिए राष्ट्रपति भवन इन तमाम नेताओं को जाते हुए आप देख रहे हैं। मुलाकात का वक्त मुमकिन है अब कुछ देर में पूरा भी होगा ऐश्वर्या, जिसके बाद ये देखा जाएगा। हालांकि जो इंडिया ब्लॉक के सभी नेता हैं वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि कम से कम राष्ट्रपति जी हमारी बात सुनेंगे, इसीलिए उनके समक्ष हम अपने कंसर्न्स को रखना चाह रहे हैं।
0: बोलो।
14: देखिए श्वेता, ये भी आप देखिए कि स्ट्रैटेजी क्या है। जिन 10 लोगों को परमिशन मिली वो लोग अंदर जा चुके हैं, लेकिन लगातार विपक्ष अपनी बात रख रहा है और बाकी जो बड़े नेता हैं विपक्ष के वो वहां पे अपनी बात रख रहे हैं, और जो प्रतिनिधि मंडल है वो अंदर जाके राष्ट्रपति को अपनी बात बता रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि एक नहीं बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनका सामना वो कर रहे हैं, और डेमोक्रेसी पे इस समय खतरा आ रहा है, उस खतरे को किस तरीके से रोका जाए। और वो ये भी जो हमें समझ आता है, एक अपील या एक रिक्वेस्ट जो की जाएगी वो ये है कि प्रेसिडेंट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करें और कहीं ना कहीं हस्तक्षेप दें, तो ये बड़ी बात होगी। लेकिन अभी भी वो एक बड़ी मीटिंग पेंडिंग है, बड़ी मीटिंग जो सारे विपक्षी दलों को करनी है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ। ऑफिशियली लेटर अभी तक नहीं लिखा गया है, ज्ञानेश कुमार और पूरा इलेक्शन कमीशन भी इंतजार कर रहा है अगर ऑफिशियल लेटर आता है तो। लेकिन ये सब चीजें हो रही हैं, कुछ ही घंटों के अंदर सीजेपी का भी एक बड़ा प्रोटेस्ट इसकी राजधानी दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा। श्वेता, काफी भारी तादाद के अंदर एजेंसीज एक्सपेक्ट कर रही हैं कि लोग अलग अलग जगहों से आएंगे, धरना प्रदर्शन किया जाएगा और एक प्रेशर बनाने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहली मांग, चाहे विपक्षी पार्टियों की अगर हम बात करें या आप सीजेपी की बात करें, तो उनकी मांग है कि सीईसी ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना होगा। राहुल गांधी अंदर जाते जाते ये बोल के गए हैं कि उनकी दूसरी मांग है कि सरकार को ही इस्तीफा देना होगा और अब समय आ चुका है सरकार को बदलने का। थोड़ी देर के अंदर श्वेता हम यहीं से देखेंगे जहां पे मैं खड़ी हूं, ये जो बैरिकेड्स हैं ये खुलेंगे और कई सारी गाड़ियां भी अब जा चुकी हैं अंदर। तो जो नेता हमें चलते हुए नजर आए थे श्वेता, हो सकता है कि जब वो वापस जाएं तो वो अपनी अपनी गाड़ियों के साथ।
9: एक बड़ा लंबा वॉक होता है अगर हम उस गेट से राष्ट्रपति भवन तक, उसके मुख्य उस जगह पर जहां पर राष्ट्रपति जी से मुलाकात होगी वहां तक का रास्ता देखें। लेकिन राहुल गांधी सबसे तेजी से आगे बढ़ते हुए, सबसे तेज चलते भी हैं, सबसे तेजी से आगे बढ़ते हुए वहां पर पहुंचे। उन 10 नेताओं के नाम भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, सुप्रिया सुले, उमर अब्दुल्ला, मनोज झा, थोल तिरुमरलम, एम ए बेबी, इसके साथ ही ममता बनर्जी, डी राजा और राजीव राय, यानी कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं का पूर्ण प्रतिनिधित्व आप वहां पर देख रहे हैं। इससे पहले पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में सांसदों ने मीटिंग की थी। राहुल गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का 14 अगस्त 1947 का दिया भाषण पढ़ा, कहा कि एक नई उम्मीद जन्म ले रही है और लंबे समय से संजोया गया सपना साकार हो रहा है। उम्मीद है कि ये सितारा कभी अस्त न हो और ये उम्मीद कभी निराश न हो।
4: जवाहरलाल नेहरू के It is a grateful moment for us in India, for all Asia and for the world. A new star rises, the star of freedom in the East. A new hope comes into being, a vision long cherished materializes. May this star never set, and that hope never be.
9: आज ही कई उपचुनावों के नतीजे भी आए हैं और इन नतीजों में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है, और इसी पर कुछ देर पहले पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया है। अमित शाह ने अपने एक्स पोस्ट पर निशाना साधा राहुल गांधी पर और इंडिया अलायंस पर। उनके झूठ, भ्रम और दुष्प्रचार के बावजूद पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की एक के बाद एक चुनावी जीत का जिक्र किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी के उपचुनावों और हाल ही में हुए राजस्थान और त्रिपुरा के निकाय चुनावों में एनडीए को मिली जीत का जिक्र करते हुए कहा कि जनता ने विपक्षी गठबंधन को पूरी तरीके से नकारा। अमित शाह ने आगे लिखा कि जनाधार खो चुके दल हर हार के बाद संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता इनका चरित्र पहचान चुकी है, इसीलिए फिर प्रचंड जनादेश देकर बीजेपी पर विश्वास व्यक्त किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर हो रहे प्रदर्शन पर बड़ी खबर, केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के डीजीपी को पत्र लिखा है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर सुरक्षा के जरूरी इंतजाम करने को कहा है। एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के बीच लगातार जानकारी साझा करने को कहा गया है। इंडिया गठबंधन के नेता एक तरफ राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं तो दिल्ली में कल सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार डर गई है। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सीजेपी को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है।
0: उनका जो प्रीवियस कंडक्ट था, उन्होंने जो हमारे लॉफुल डायरेक्शंस को नहीं फॉलो किया या उनकी जो अंडरटेकिंग दी गई थी उनके द्वारा उसको भी नहीं कंप्लाई किया, और प्रेजेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और पब्लिक सेफ्टी के मद्देनजर इस एप्लीकेशन जो थी उसको रिजेक्ट किया जाता है।
5: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने इजाजत देने से ही इनकार किया। खबरदार भी किया कि अगर कानून तोड़ा तो फिर कड़ी कार्रवाई होगी।
6: लोग जुटते हैं तो क्या कार्रवाई होगी?
0: 163 BNSS की धारा लागू है नई दिल्ली में, जिसके तहत किसी भी तरह के जमावड़े को नहीं परमिशन दी जा रही है।
5: जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी को प्रदर्शन करने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस की तैयारी और सख्ती को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ही काफी है। CGI सूर्यकांत ने कहा, आपको कुछ चीजों को रोकना ही होगा, उन्हें रोकने के लिए सिर्फ उतनी ही कार्रवाई करें जितनी जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करें। इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी दिल्ली पुलिस की तैयारी को लेकर है, जिसने 26,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए हैं। ये 2020 के दिल्ली दंगों के बाद सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी तैनाती बताई जा रही है। इनमें पैरामिलिट्री फोर्स के करीब 15,000 जवान शामिल हैं। नई दिल्ली में 300 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जो ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्ड करेंगे। जंतर मंतर की तरफ जाने वाले रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जगह जगह CCTV देखे जा सकते हैं। इसके अलावा लाउड स्पीकर भी लगाए गए हैं, जिससे लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है।
8: इस वक्त मैं जनपथ रोड पर हूं और मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये जो सड़क है ये सीधा जंतर मंतर की तरफ जाती है। यहां से करीब 500 मीटर आगे ही वो धरना स्थल है जहां अमूमन लोग जाके बैठते हैं और धरना देते हैं। अगर आप यहां तैयारियां देखें तो इस पूरी सड़क को ट्रैफिक के लिए और पैदल मूवमेंट के लिए भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात भी कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, अगर आप देखें यहां आसपास करीब हर खंभे पर कैमरे लगा दिए गए हैं और ऐसे बड़े लाउड स्पीकर लगा दिए गए हैं। इन लाउड स्पीकर्स का ये काम है कि ये लगातार अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा होना इस वक्त गैरकानूनी है। इस पूरे इलाके में 163 BNSS की धारा लगी हुई है जो किसी भी तरह के प्रदर्शन को वर्जित करती है, और अगर यहाँ पर कोई पहुंचता है या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोशिश करता है, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करता है या पुलिस वालों पर हमला करने की कोशिश करता है तो उनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
5: दिल्ली पुलिस ने DMRC से 57 मेट्रो स्टेशन की एंट्री और एग्जिट गेट बंद करने को कहा है, जिसे लेकर ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेट्रो की आवाजाही पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती।
24: दिल्ली में पिछले कई दिनों से चल रहे धरने प्रदर्शन और होने वाले प्रोटेस्ट को लेकर के यातायात पर अच्छा खासा असर जो है वो पड़ सकता है, खासतौर पर नई दिल्ली इलाके में जहां पर ये तमाम धरने प्रदर्शन जो है वो पिछले कई दिनों से चल रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस और DMRC की तरफ से पिछले दिनों जिस तरीके से कई दिनों तक प्रदर्शन जो है वो चल रहे थे, उसके चलते कई मेट्रो स्टेशन को जो है वो बंद किया गया। नई दिल्ली इलाके में भी अगर खासतौर पर बात की जाए तो कल CJP ने प्रदर्शन का जिस तरीके से कॉल किया है तो हो सकता है कि नई दिल्ली और आसपास के तमाम हिस्से जो जनपथ और जंतर मंतर की तरफ जाते हैं उन हिस्सों के मेट्रो स्टेशन को जो है वो फिलहाल बंद किया जाए। इसके अलावा जो हैवी ट्रैफिक है उसकी भी एडवाइजरी जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी हो सकती है, जिसमें नई दिल्ली इलाके में जो बड़े ट्रक है, बड़ी बसेज हैं, उनको परमिशन ना दी जाए। ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना भी जो है वो करना पड़ सकता है।
5: दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रदर्शन की इजाजत देने से इनकार के बावजूद अभिजीत दिपके प्रदर्शन पर अड़े हुए।
1: अगर हम मुंबई में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अगर हम बेंगलोर में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो हम दिल्ली में क्यों नहीं कर सकते? क्या दिल्ली किसी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर चल रही है? मुंबई में पुलिस ने पूरा कोऑपरेट किया, बेंगलुरु में पूरा कोऑपरेट किया।
5: दिपके कह रहे हैं कि आंदोलन होकर रहेगा, वही दिल्ली पुलिस कह रही है कि न जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन होगा और न कहीं और।
7: दिनांक 7/10/2026 को श्री सौरभ दास को कन्वीनर कांग्रेस जनता पार्टी का एक एप्लीकेशन न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में रिसीव हुआ, जिसके अनुसार ये इंटीमेशन दी गई कि 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट करेंगे रिगार्डिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ सीईसी। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और पाया गया कि उक्त सूचना अत्यंत ही अल्प समय में प्राप्त हुई है, जबकि वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार जंतर मंतर पर कार्यक्रम आयोजित करने हेतु आवेदन कार्यक्रम की निर्धारित तिथि से कम 10 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
5: दिल्ली पुलिस कह रही है कि प्रदर्शन के लिए 10 दिन पहले बताना पड़ता है, जो सीजेपी ने नहीं किया, इसलिए अगर नियमों का पालन नहीं हुआ तो फिर कार्रवाई हो। मतलब दिल्ली पुलिस और सीजेपी में प्रदर्शन से पहले ही ठन गई है। आज तक ब्यूरो।
9: दिल्ली पुलिस ने जनपथ, कनॉट प्लेस और जंतर मंतर की ओर जाने वाले रास्तों समेत सेंट्रल दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बड़ी संख्या में बैरिकेड्स लगाए गए।
5: दिल्ली के लोनी बॉर्डर पर गाड़ी रोककर चेकिंग, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बलों की ड्रिल, नोएडा के दिल्ली बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान तैनात, बैरिकेडिंग की तैयारी, संदिग्ध वाहनों की चेकिंग। गाजियाबाद का दिल्ली से सटा यूपी गेट और गाजीपुर बॉर्डर जहां यूपी पुलिस अलर्ट पर दिखी। दिल्ली के आया नगर में भी पुलिस एक्शन में नजर आई। दिल्ली को दूसरे राज्यों से जोड़ने वाले रास्तों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली को यूपी और हरियाणा की सीमाएं घेरती हैं। दिल्ली के तीन तरफ हरियाणा और एक तरफ यूपी है, जिसके हर बॉर्डर पर सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है ताकि बिना इजाजत धरने की कोशिश विफल कर दी जाए।
24: ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर के सीजेपी ने 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन का कॉल किया है, लेकिन जुलाई में जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया था दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने इस बार सुरक्षा के कई पुख्ता इंतजाम जो है वो किए हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस की इस बार तैयारी ये है कि सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर के अब तक दिल्ली पुलिस ने किसी प्रकार की कोई परमिशन जो है वो फिलहाल नहीं दी है। इसके अलावा नई दिल्ली इलाके के अंदर अगर बात की जाए तो बीएनएस की धारा 163 जो है वो लागू की गई है, यानी कि नई दिल्ली इलाके में 5 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। जंतर मंतर और उसके आसपास के तमाम हिस्सों में हर जगह अगर आप देखेंगे तो भारी पुलिस बल और इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है ताकि प्रदर्शनकारी जो है वो जंतर मंतर की तरफ ना जा सके।
5: जंतर मंतर के पास सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा है। जंतर मंतर के पास आपको सुरक्षा बल दिखेंगे। सुरक्षा बलों के अलावा सीसीटीवी कैमरों से भी कड़ी नजर रखी जा रही है। बड़ी संख्या में लाउडस्पीकर भी लगाए गए हैं, जिनसे लगातार खबरदार किया जा रहा है।
11: यातायात और आम लोगों को रास्ता ना रोके तथा पुलिस के काम में किसी प्रकार की बाधा ना डाले। 163 के आदेश का उल्लंघन करने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
5: होटलों के रिकॉर्ड की चेकिंग से लेकर संदिग्धों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। बस ऑपरेटरों और उनकी बुकिंग पर नजर रखी जा रही है। इस सख्ती की वजह से कनॉट प्लेस में लोगों की आवाजाही कम हो गई है, जिससे वीकेंड में कारोबार पर बुरा असर पड़ने की आशंका है। इसलिए कारोबारियों की संस्था ने त्योहार से पहले कारोबार को नुकसान पहुंचने के डर से इस प्रदर्शन को रोकने की मांग की है।
24: दिल्ली में पिछले कई दिनों से हो रहे प्रदर्शनों को लेकर के सीटीआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर के तमाम प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है। सीटीआई ने दावा किया है कि पिछले दिनों जिस तरीके से लगातार दिल्ली में प्रदर्शन चल रहे हैं उससे दिल्ली के बाजारों पर अच्छा खासा असर जो है वो देखने को मिला है। लगभग 70% तक व्यापार पर असर जो है वो देखा गया है। सीटीआई के चेयरमैन बृजेश गोयल के मुताबिक दिल्ली के अंदर जिस तरीके से प्रदर्शन के लिए लगातार कॉल किए जा रहे हैं, इन प्रदर्शनकारियों को दिल्ली से बाहर जो है वो जगह अलॉट की जाए जहां पर ये अपना प्रदर्शन जो है वो कर सके, और इसके अलावा नवरात्र और दिवाली यानी फेस्टिवल सीजन के चलते इन प्रदर्शन पर फिलहाल जो है वो रोक लगाई जानी चाहिए।
5: जुलाई महीने में जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी के प्रदर्शन में भारी हंगामा और हिंसा देखने को मिली थी, इस बार ऐसा ना हो इसके लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लाउडस्पीकर से लोगों को खबरदार किया जा रहा है।
12: 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है। नई दिल्ली में और सभी जगह धारा 163 BNSS लागू है, जो कि कोई भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा। आप सभी को सूचित कर दें, बता दें, अपने बच्चे जो भी आस पड़ोसी उन सबको बता करके ब्रीफ कर दें कि वहाँ पर कोई भी परमिशन नहीं है और कोई भी काम करने से पहले सोच समझ के निर्णय लें।
5: पुरानी दिल्ली की एक मस्जिद में भी पुलिसकर्मी लोगों से इसी तरह के किसी भी प्रदर्शन में शामिल ना होने की अपील करता देखा गया।
13: किसी भी भड़काऊ संदेश या उकसावे में नहीं आए, जिम्मेदार नागरिक बने और कानून का पालन करें। अपने क्षेत्र की सुरक्षा में पुलिस और प्रशासन का साथ दें और अपने परिवार वाले और अपने बच्चों को इस बारे में समझाएं कि इस तरह की अननेसेसरी भीड़ में या ऐसे कोई प्रोटेस्ट में किसी में हिस्सा न लें।
5: दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भी पुलिस जांच करती दिखी। दिल्ली की तरह गुरुग्राम में भी मेट्रो स्टेशन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। यहाँ पर बाकायदा पोस्टर लगाकर बताया जा रहा है कि दिल्ली में किसी भी तरह का प्रदर्शन गैर कानूनी है।
15: सीजेपी के प्रोटेस्ट के ऐलान के बाद से साइबर सिटी गुरुग्राम में भी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। मैं इस वक्त गुरुग्राम के MG रोड मेट्रो स्टेशन पर हूँ, जहाँ पे गुड़गांव पुलिस की तैनाती है और आने जाने वाले युवाओं से पूछताछ भी की जा रही है। आप देख सकते हैं तमाम पुलिस के जवानों को यहां पर तैनात किया गया है।
16: जो भी सस्पेक्टेड कोई लगता है या इस प्रकार का कोई पता लगता है तो हम उससे पूछताछ करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं।
15: धारा 163 लगी है और इस धारा के तहत अगर आपने वहां पे किसी भी तरह का उपद्रव किया तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ वीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम आज तक।
9: तो इस प्रोटेस्ट से अलग भी आपके सरोकार की खबरों से हम आपको खबरदार करते हैं। क्या 9000 रुपए में कोई अपने परिवार का पेट पाल सकता है? जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स 311 रुपए प्रतिदिन में काम करते हैं। 30-35 सालों से उन्हें पक्की नौकरी का आश्वासन दिया जाता रहा है, लेकिन हर बार उनकी किस्मत में मायूसी आई। बार बार ठगे गए जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स एक बार फिर सड़कों पर हैं और सरकार को खबरदार कर रहे हैं।
5: जम्मू कश्मीर विधानसभा में घेराव की तस्वीरें 28 सितंबर की, लेकिन असेंबली के सामने नारेबाजी करते डेली वेजर्स की मांग 30-35 साल पुरानी। सरकार को अपने हक के लिए खबरदार कर रहे इन डेली वेजर्स में से कोई जम्मू कश्मीर में आंधी तूफान बारिश बर्फबारी में बिजली की सप्लाई चालू करने के लिए फील्ड में डटा रहता है, तो कोई लीक हो रही पाइपलाइन को ठीक करने से लेकर पहाड़ों और दुर्गम इलाकों में पानी के पंपों और टैंकों का संचालन करता है। कड़ाके की ठंड में सड़क से बर्फ हटाने का काम भी जम्मू कश्मीर के इन्हीं डेली वेजर्स के हिस्से में आता है, जिसके बदले में मिलते हैं सिर्फ 311 रुपए प्रतिदिन। आज के जमाने में 9000 रुपए में घर चलाने की बात सोची भी नहीं जा सकती, लेकिन सरकारी वादा खिलाफी की वजह से जम्मू कश्मीर के 60,000 डेली वेजर्स मुफलिसी में जिंदगी जीने को मजबूर हैं।
17: की हालत आप देख सकते हैं। मुश्ताक अहमद पिछले 20 साल से अपनी बीवी और दो छोटे बच्चों के साथ इस छोटे से कमरे में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, लेकिन कोई भी सरकार इनको सीरियसली नहीं ले रही है। सिर्फ इनके साथ वो वादे किए गए हैं जो कभी पूरे नहीं हुए हैं अभी तक।
2: जिस वक्त वादा किया हमारे साथ, बोला आप काम करो, आप 7 साल के बाद रेगुलर हो जाएगी, कमिटमेंट करा, बहुत बातें किए, आप ये बैठो काम करो, मेहनत करो, आप हमको आप रेगुलर करेंगे। हमने सोचा 7 साल निकल जाएगा तो हो जाएगा, उस वक्त जब
17: फंस गए आप।
2: हाँ, बहुत फंस गए।
17: आपके तरह कितने लोग हैं? 60,000 पूरे जम्मू कश्मीर,
2: लगभग 30 साल लड़के, जो 30 साल हो गए काम करते हुए। मुझे 99 में मैं लग गया और 27 साल हो गए। हाँ, मुझे भी 27 साल।
17: तो अपना तनख्वाह का ये बताइए कि आप लोग लड़ते रहे लगातार, हर सरकार से आपने बात की, हर एक ने वादे किए, तो आज इस वक्त आप कितनी सैलरी आपकी महीने की और वक्त पे मिलती है?
2: हाँ, तनख्वाह जब सजाद साहब ने हमको लड़ा, उस वक्त लड़ा 2009 में, तो फिर उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत शायद किसके साथ, पीडीपी के साथ है, मुझे पूरा।
17: अभी कितनी सैलरी आपकी?
2: आज तो 9,300 रुपए मिलता है, और कभी मिलता है, मतलब दिन की 311 रुपए हमको,
17: 311 रुपए दिन के।
3: रहमत जान की कहानी तो और भी दर्दनाक है। इनके पति डेली वेजर, साल भर पहले उनका निधन हो गया, जिसके बाद रहमत अपने पति की जगह काम करती है, लेकिन साल भर बाद भी उन्हें तनख्वाह का इंतजार है।
18: जी, 1 साल होगी मेरे खानदार को उसकी डेथ हुई, तब से मुझे कोई तनख्वाह नहीं, कुछ नहीं। मैं अपना काम घर का भी करती हूँ और पानी भी छोड़ती हूँ, बंद भी करती हूँ, पूरा घर चलाती हूँ ऐसे।
3: जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने 2024 के विधानसभा चुनाव में इन डेली वेजर्स की नौकरी तय सीमा में पक्की करने का वादा किया था। डेली वेजर्स का दुर्भाग्य देखिए कि उनके वोट से सरकार बनाने वाले उमर अब्दुल्ला अब अपने ही वादे से मुकर गए हैं।
19: इन लोगों के रेगुलराइजेशन का सिलसिला एक लीगल फाइनेंशियली वायबल तरीके से इंशाल्लाह हम इस फाइनेंशियल ईयर में शुरू करेंगे। फिर इनको आपत्ति होती है, एतराज होता है कि आप फेज्ड मैनर में क्यों कह रहे हो, रातों रात हम कर नहीं सकते ना, जो आप लोग 3.5 साल में अपनी हुकूमत में नहीं कर सके, आपको क्या लगता है कि हम 6 महीने में कर लेंगे? और मैं इन मुलाजमों को धोखे में रखने के लिए तैयार नहीं हूं कि बस जी हमने बस एक ही कलम के दस्तखत से जो है हम आपका रेगुलराइजेशन कर लेंगे। हमने ये कहा है ना आपके जितनी भी इनकी तैदाद है, 60,000, 70,000, 80,000, 1,00,000 जितना भी है, इसको हम एक टाइम टेबल के तहत वर्कआउट करके इसी साल हम शुरू करके इनका रेगुलराइजेशन का प्रोसेस जो है वो हम चला लेंगे।
3: जम्मू कश्मीर में एक तरफ विधायक खुद के लिए भारी वेतन वृद्धि और भत्तों की मांग में जुटे हैं, लेकिन जिन 60,000 डेली वेजर्स ने उन्हें जिताया, उन्हें लेकर अब सरकार नियम और शर्तें सुना रही है। इसी नाइंसाफी के खिलाफ अब डेली वेजर्स खबरदार कर रहे हैं।
21: जो कमेटी का छुट्टी गई थी, उस कमेटी का रिपोर्ट नहीं आ रहा है, सरकार वादा खिलाफी कर रही है। चीफ मिनिस्टर साहब का बयान है कि हमने कोई टाइम फ्रेम नहीं देना है और कोई मुकर्रर मुदत नहीं है, तो हमने फैसला कर लिया है इस ज्यादती और नाइंसाफी के खिलाफ जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम के बैनर तले सारे मुलाजमीन एहतजाज करेंगे। असेंबली में मुख्तलिफ मामलात उठाए गए, मुख्तलिफ मौजूआत को बहस की गई, लेकिन जिस असेंबली के अंदर हमारी कमेटी का शूट की गई, जिस असेंबली के अंदर हमें आश्वासन दिया गया, उस आश्वासन से आज सरकार मुकर गई है, उस वादे से सरकार मुकर गई है। ये उस ऐवान की तजलील है, उन लोगों की तजलील है, और हमारे जख्मों पर नमक पाशी के बराबर है।
25: पार्टियों की तरफ से दबाव आया।
3: उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि वो रातों रात डेली वेजर्स की नौकरी पक्की नहीं कर सकते, लेकिन सवाल ये है कि ये बात उमर अब्दुल्ला ने अपने घोषणा पत्र में क्यों नहीं लिखा? वोट लेकर अब वो मुकर क्यों रहे हैं? मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।
9: हम उम्मीद करते हैं कि उनकी मांगों को माना जाए। इस बीच प्रदर्शनकारी सांसद जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति भवन के रास्ते में विजय चौक के पास नारेबाजी कर रहे हैं, और 10 जो नेता हैं वो पहुंचे हैं राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए। क्या निकलता है उस मुलाकात में, उस पर हमारी नजर रहेगी। अभी के लिए इतना ही, आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ, और हरदम रहिए खबरदार।

0: जाके से खड़ी की,
1: पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है
0: और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है, तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी?
1: क्या
2: बिस्किट? पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।
1: तेरी पार्किंग यार कहीं भी लगा ले।
3: यार ड्रिल करना पड़ेगा।
4: ड्रिल? नहीं नहीं, ओनर से पूछना पड़ेगा।
5: इसका नाम क्या रखेंगे?
6: ये भी ओनर से ही पूछ लेते हैं।
7: अरे भाई साहब, कब तक ओनर के डर में रहेंगे? शान से अपने घर में रहिए ना, विद कैनरा होम लोन।
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
10: इस फेस्टिव सीजन हंडे सुपर डिलाइट डे सबके लिए लाए हैं डिलाइट। हंडे शोरूम आओ, अमेजिंग कार्स पे 1 लाख तक की अमेजिंग डील्स पाओ।

0: जाके से खड़ी की,
1: पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है
0: और सारा शहर जानता है पार्किंग ना बंटी की है, तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी?
1: क्या
2: पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।
1: तेरी पार्किंग यार कहीं भी लगा ले।
3: यार ड्रिल करना पड़ेगा।
4: ड्रिल? नहीं नहीं, ओनर से पूछना पड़ेगा।
5: इसका नाम क्या रखेंगे?
6: ये भी ओनर से ही पूछ लेते हैं।
7: अरे भाई साहब, कब तक ओनर के डर में रहेंगे? शान से अपने घर में रहिए ना, विद कैनरा होम लोन।
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
10: इस फेस्टिव सीजन हंडे सुपर डिलाइट डेज सबके लिए लाए हैं डिलाइट। हंडे शोरूम आओ, अमेजिंग कार्स पे 1,00,000 तक की अमेजिंग डील्स पाओ।
11: यार लोन भूल गया। मैरी
12: सजेस्ट अ गुड बैंक ना।
13: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
11: स्मॉल फाइनेंस बैंक,
13: स्मॉल working capital loan, home loan, loan against property, micro mortgage loan, gold loan, pre-owned car loan, two-wheeler loan.
14: There's nothing small about
11: it. Oh, Jeevan, nothing small about us.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।
2: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार दो तीन ठुमका लगाने बस।
3: मेरे पास एक आइडिया है।
2: क्या?
3: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा टीएमटी बार से जो बना है।
4: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिलाता है, पर स्टेज नहीं हिलता,
5: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा टीएमटी से बना है।
6: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही टीएमटी बार से बना है।
4: कौन सी बनानी है?
7: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
8: गैसो फास्ट 27%, इनो 9.2%।
9: गड़बड़ है।
10: आहा, गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
11: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
12: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
11: असली शहद, असली स्वाद।
13: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
14: तो स्विच टू भीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
15: इट्स अ माय वे।
16: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है।
17: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
16: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायफ्री जूस।
18: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbagh Group.

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: खासकर राहुल गांधी जी, ममता जी और बाकी के पूरे हमारे नेता लोग प्रेसिडेंट से मिले और प्रेसिडेंट को हमारा मेमोरेंडम दे और मेमोरेंडम में क्या लिखा है वो बाद में आपको सर्कुलेट किया जाएगा और खास करके पिछले चार दिनों में जो हमने एजिटेशन शुरू किया है वोट चोरी का, उस वोट चोरी के बारे में ही हम मैडम को बताने के लिए सभी लोग गए थे और हमने पूरी अपनी बात को रखी. राहुल जी रखे, ममता जी रखे और हमारे कम्युनिस्ट नेता और उमर अब्दुल्ला जी और सभी लोग अपनी अपनी बात रखे और बोले कि आप ये वोट चोरी के बारे में और जो आनंद कुमार आज इतनी बड़ी गलती किए हैं कि उनके ऑफिस से ही सब चीजें चोरी हो रही है, इसीलिए हमने डिमांड किया है कि फिर से एक बार ईवीएम को निकाल दो और बैलेट पेपर पे इलेक्शन कराया जाए और दूसरा कि ये वोट चोरी जहाँ जहाँ हो गए वो सबूत उन्होंने मांगा है, वो सबूत हम लोग तैयार कर रहे हैं और सबूत हम दे देंगे. उसके अलावा जो कुछ उनको देना है वो सभी इन्फॉर्मेशन हम देंगे और उसके अलावा खास करके जो मोदी जी और शाह जी जो इस देश के डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं और उसी तरफ उनका कदम भी उठ रहा है, तो इसीलिए हम सब गए थे, उन्होंने ध्यान से सुने हैं और आगे उसके बारे में पूरा छानबीन करके संबंधित लोगों से बात करके उसको क्या करना कैसा करना ये आगे के कदम हम उठाएंगे ऐसा उन्होंने कहा है, इसीलिए हम लोग इसके बारे में गए थे और हमको संतुष्ट होकर आना पड़ा क्योंकि वो पहली बार अपने आवाज़ हमारे साथ मिला है और जनता के आवाज़ को उन्होंने सुना है. अब आपके सामने राहुल जी बात करेंगे, ममता जी बात करेंगे.
3: पहले राहुल जी बोलो ना.
2: चलिए आप बोलिए.
3: खड़गे जी ने जो कहा है सच है कि हम लोगों ने मेमोरेंडम सबमिट किया है लेकिन उन्होंने इतना नेगेटिव नहीं है, हमने तो पॉजिटिव आउटलुक से देखा है कि उन्होंने जो दो चार बात कहा कि आई विल इन्वेस्टिगेट, आई विल गो थ्रू द डिटेल्स एंड हमको सबूत चाहिए, यू प्लीज सेंड अस द डिटेल्स एविडेंस. वी सेड यस, राहुल जी ऑल्सो सेड यस, वी विल सेंड यू द डिटेल्स एविडेंस एंड नॉट ओनली वी द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो दे सेड नाउ दे आर इनर पीपल ऑल्सो एक्सप्रेस्ड ऑल दिस कंसर्न, सो कंट्री इज कंसर्न वेरी मच. And you as a custodian of the constitution, please take proper care so that the democracy should remain and its republic India must continue. This is we are together India alliance and we are very strong. It is not that only Congress party is saying. It is the India alliance is speaking. More than 60% the voice of the people we are speaking. And I think he sees very much positive. And she responded that I will investigate, number one. Number two, she said that, yes, sir, you send the evidence. Without evidence, how do I get this? But that time I also said that, please, see that you can ask the report from the government, you can ask the report from the CEC, you can ask the report from other sources also. But you ask us, and Rahul ji has taken the charge, that we will send all the details to him, so he can send all the sabut. Evidence, sabut jo chahiye, unko bhejne ke.
4: I just sat in a quite a unbelievable meeting. Mamta ji is saying it mildly. Let me say it as it happened. The first thing is we took a memorandum to the President of India. On that memorandum, we clearly said that the Prime Minister, Mr. Amit Shah, Gyanesh Kumar, have conspired to destroy Indian democracy. The President in no way denied what we said, in no way questioned what we said, in no way argued what we said. She accepted our statement, and then she said to us that we need to bring her proof of election chori. I said that the proof of election chori is known to the whole country. State after state has been stolen. 24 election, as you know, has been stolen. And yet the President wants us to take saboot proof to her. This same group of people will very happily take the proof of election chori that we have collected to the President of India when she is ready to accept it. Main thing to say is that I actually expected the President of India to deny that vote chori is taking place. I expected the President of India to say that no, actually, India has a free and fair election system. And I was shocked and I was stunned that the President of India accepted what we said. I'd like to repeat what I said in Hindi. Abhi President ke saath hamari meeting hui. एक प्रकार से मैं आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि जब हमने राष्ट्रपति को इलेक्शन चोरी वोट चोरी के बारे में बताया तो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने डिनाई नहीं किया. हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने यह नहीं कहा कि हिंदुस्तान में चुनाव चोरी नहीं हो रहे हैं. हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने उल्टा हमसे कहा कि आप सबूत हमारे पास लाइए. और यही ग्रुप खुशी से जो पूरा का पूरा सबूत हमने कलेक्ट किया है राष्ट्रपति के पास ले जाएगा. ले जाने के लिए तैयार है. पूरा देश जानता है, स्टूडेंट्स जानते हैं कि देश में वोट चोरी हो रही है. नरेंद्र मोदी इसके आर्किटेक्ट हैं. अमित शाह, ज्ञानेश कुमार इसके इम्प्लीमेंटर्स हैं. और इस बात को राष्ट्रपति ने, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने आज डिनाई नहीं किया. उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में सोचेंगी और एक्शन लेंगी. मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ. थैंक यू. अच्छा, ये देखिए, ये सबसे पहले हिंदुस्तान के सारे ऑपोजिशन MPs चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने गए. वहाँ पे हमें डिटेन किया गया, पीटा गया, धकेला गया, बसों में बंद करके पुलिस स्टेशन गए. उस दिन हमें कहा कि आप यहाँ पे प्रोटेस्ट मत कीजिए. उसके बाद हम जंतर मंतर गए. हमने कहा जंतर मंतर इज ए प्लेस ऑफ पब्लिक प्रोटेस्ट, हम वहाँ जाएंगे. वहाँ जाने से रोका. अब हम प्रेसिडेंट के पास आए हैं और मंडे को हम सुप्रीम कोर्ट, यही पूरा का पूरा ग्रुप मेमोरेंडम लेकर, चीफ जस्टिस के लिए मेमोरेंडम लेकर हम सुप्रीम को खोलने की कोशिश कर रहे हैं. हम कोई भी रास्ता नहीं छोड़.
3: थैंक यू.
5: तो नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट. आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप. आप सुन रहे थे विपक्ष के उन तमाम नेताओं और सांसदों को जिन्होंने अपना ज्ञापन मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग के खिलाफ सीधा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया है. बाहर आकर इसे राहुल गांधी ने एक अविश्वसनीय मुलाकात बताया। राहुल गांधी का यह कहना था कि जो ज्ञापन उन्होंने सौंपा उसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकारा और साथ ही उनका यह भी दावा था कि राष्ट्रपति ने इन आरोपों को जिसमें वो कह रहे थे कि लोकतंत्र को बंधक बना लिया गया है, वोट चोरी कर रही है, उसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नकारा नहीं, लेकिन उन्होंने सबूत मांगे हैं कि आपके पास अगर इसका कोई प्रमाण है तो आप जरूर लेइए। उन्होंने ये भी कहा कि यही ग्रुप, यही सांसदों का ग्रुप अगर चाहेगा तो फिर ये प्रमाण लेकर जाएगा। इस बीच उन्होंने कहा है सोमवार को हमारा प्रतिनिधिमंडल सुप्रीम कोर्ट जाएगा, पूरा देश जानता है वोट चोरी हो रही है। एक बार फिर से ये तमाम दावे करते हुए राहुल गांधी, इसी के साथ ममता बनर्जी ने भी वहां पर बोला, उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मौसमी हमारी सहयोगी इस खबर पर जुड़ गई है। मौसमी, अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है सोमवार को राहुल गांधी की, अभी तो कल परसों देखिए क्या स्थिति दिल्ली में रहती है, कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन है और जबरदस्त सख्त इंतजाम, एक तरह से इंटरनेट बंद, मेट्रो स्टेशन, रेलवे सब बंद दिल्ली पुलिस ने किया है, लेकिन अब ये तो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी सोमवार को।
6: बिल्कुल, देखिए अंजना, ये तो होना ही था क्योंकि रास्ते क्या हैं विपक्ष के पास, एक है इम्पीचमेंट का जो कि बहुत ही लंबा जटिल और कारगर रास्ता नहीं है, दूसरा है कि ज्ञानेश कुमार खुद इस्तीफा दे, अगर वो चाह रहे इस्तीफा, मांग रहे इस्तीफा, तो वो होने वाला नहीं है, तीसरा रास्ता था कि राष्ट्रपति के पास जाएं, और राहुल गांधी के मुताबिक वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ने उनसे सबूत मांगा है तो वो अब आगे बात यहां पे बढ़ेगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी चौखट है जो जो चुनाव आयोग के कामकाज का इंस्पेक्शन भी कर सकती है और अगर उसमें आपत्ति कुछ मिलती है तो उस पर कुछ ऑर्डर भी दे सकती है, और यही वजह लगता है कि राहुल गांधी को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा दरवाजा है जो सबसे कारगर होगा।
5: धन्यवाद आपका मौसमी इस तमाम जानकारी के लिए, ये बहुत बड़ी खबर है, इसके मायने बहुत दूर तक जाएंगे और जो परिस्थितियां सोमवार को बनती हैं उस पर भी हमारी नजर रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी ने ये कहा है कि अब सोमवार को विपक्ष के सांसद वही विरोध प्रदर्शन जो आपने राष्ट्रपति भवन तक देखा, आपने राजघाट में जाते हुए देखा, आपने आकाशवाणी भवन जा रहे थे, चुनाव आयोग आकाशवाणी भवन में रुके वहां तक जाते देखा, अब ठीक उसी तरह का सांसदों का एक पूरा प्रतिनिधिमंडल सुप्रीम कोर्ट जाएगा और वहां पर अपना विरोध दर्ज कराएगा। तो ये कुल मिलाकर जो हाई एक्शन इस वक्त हम देख रहे हैं, हाई वोल्टेज एक्शन, वो सोमवार को भी इसी तरह से कायम रहेगा, लेकिन बात कल की भी होगी क्योंकि कल सीजेपी का प्रोटेस्ट दिल्ली में है। आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक जाने वाले सभी रास्ते अब पूरी तरह बंद हो चुके हैं। कल यानी 10 अक्टूबर को होने वाले कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने पूरी राजधानी को एक अभेद्य किले में बदल दिया है। सुरक्षा इतनी सख्त है कि दिल्ली के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। यह बड़ी खबर है और इसके मायने समझिए, 57 मेट्रो स्टेशंस, 57 मेट्रो स्टेशंस पर ताले लग गए हैं और कई ट्रेनों में तलाशी चल रही है, पूरी दिल्ली एक तरह से थम जाएगी। इस पूरे घमासान के बीच एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि ज्ञानेश कुमार कॉकरोचों की इस हिट लिस्ट पर आ गए।

0: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है, जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल 2-in-1 बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।
1: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं, गोल्डी हिंग कण कण में जान।

जब कांग्रेस चुनाव आयोग पर फिक्सिंग के आरोप लगा रही है, तब 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों में कांग्रेस उन सीटों पर भी हार गई जो उसके खाते में होती थी। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी जीत मिली। पुडुचेरी में भी एनडीए जीती। तमिलनाडु की दोनों विधानसभा सीटों पर मुख्यमंत्री थलपति विजय की टीवीके पार्टी जीती। लोकसभा में असम की नौगांव सीट भी बीजेपी ने कांग्रेस से छीन ली और कांग्रेस इस सीट पर तीसरे स्थान पर खिसक गई। इस जीत के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के झूठ, भ्रम, दुष्प्रचार के बावजूद जनता अब भी बीजेपी को ही जिता रही है। और अगली खबर होगी अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि सऊदी अरब के रियाद में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए मिसाइल हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई है। इसको बहुत बड़ा एस्केलेशन माना जा रहा है। इस हमले के बाद सुरक्षा संकट को देखते हुए एयर इंडिया समेत कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने रियाद के लिए अपनी उड़ानों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है। और इसके बाद आपको बताएंगे कि एलॉन मस्क भारत में स्टारलिंक की एंट्री के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। उन पर आरोप लगा रहा है लग रहा है कि उन्होंने मुकेश अंबानी का नाम लेकर एक माइंड गेम खेला है ताकि भारत सरकार पर उनके सैटेलाइट इंटरनेट को हरी झंडी देने का दबाव बनाया जा सके। और अगली खबर, पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के लिए उनके समर्थकों का लॉन्ग मार्च अब पेशावर पहुंच चुका है। सड़कों पर उमड़े इस भारी जन सैलाब को देखकर अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या बैकडोर से सेना प्रमुख असीम मुनीर और इमरान खान के बीच कोई सीक्रेट डील होगी।

0: इधर वर्ल्ड बैंक की एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मिडिल ईस्ट में जितने भी गरीब रहते हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, उनमें से अकेले 48% यानी लगभग आधे गरीब पाकिस्तान में है। इसका सीधा मतलब यह है कि इस पूरे इलाके के तमाम देशों के मुकाबले पाकिस्तान में गरीबी की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। और ऐसे हालात पर पाकिस्तान के लोग मजाक में कह रहे हैं कि अब उनके यहाँ चिकन बिरयानी सिर्फ किताबों में पाई जाती है, लोग लोन को अपनी राष्ट्रभाषा समझने लगे। और अगली खबर, पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुई भीषण हिंसा के मामले में पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। जांच में पता चला है कि गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा के कथित गैंग रेप और खुदकुशी की जो बात रेडिट पर लिखी गई थी, उसके पीछे फर्स्ट ईयर की एक छात्रा थी। इस छात्रा ने कबूल किया कि उसने ये सब सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर लिख दिया था और उसका इरादा केवल सोशल मीडिया पर अपनी राय रखना था। अगली खबर, राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर देखते रह गए। इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका की मशहूर कानूनविद नावी पिल्लई को मिल गया। भारतीय मूल की नावी पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार प्रमुख रह चुकी हैं। गाजा के मामले में उन्होंने एक यूएन जांच आयोग की अगुवाई की थी, जिसने अपनी जांच रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला था कि इसराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नीतियों पर तीखे सवाल खड़े किए। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन के लिए उनकी सरकार को पूरी दुनिया के सामने इन्होंने जिम्मेदार ठहराया। अगली खबर, आज हम ये सवाल भी पूछेंगे कि क्या मुख्यमंत्री के चॉपर के लिए चैंपियन खिलाड़ियों को स्टेडियम से बाहर करना सही हो सकता है। गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सरकारी हेलीकॉप्टर लगातार 4 दिनों तक खड़ा रहा और प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ी इंतजार करते रहे, धाव ट्रैक से दूर रहे। फिर हम पूछते हैं कि ओलंपिक और एशियन गेम्स में भारत चाइना जितने मेडल क्यों नहीं जीतता है। और आखिरी खबर आज की उन 55 लाख बच्चों के बारे में है जिन्हें इस सर्दी भी फर्श पर भी पढ़ना पड़ेगा। पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड जैसे राज्यों में बजट होने के बावजूद इन बच्चों के लिए फर्नीचर नहीं खरीदा गया। ये स्कूल अब तक दरी पर चलते रहे और अब इसी दरी पर ठिठुरते हुए इन 55 लाख बच्चों को पूरी सर्दी फर्श पर, ठंडे जमीन पर पढ़ाई करनी होगी। 55 लाख का मतलब है न्यूजीलैंड जैसे एक देश की पूरी आबादी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले आज शाम को विपक्ष के तमाम सांसद संसद भवन परिसर में इकट्ठा हुए। वहां से उन्होंने हाथों में सेव डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र बचाओ के पोस्टर लेकर वो राष्ट्रपति भवन की ओर पैदल मार्च करते दिखे। हालांकि इस दौरान रायसीना हिल्स पर दिल्ली पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग की थी। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच पुलिस ने सभी सांसदों को आगे बढ़ने से विजय चौक पर ही रोक दिया, जिसके बाद विपक्ष के बाकी सांसद और कार्यकर्ता विजय चौक पर ही सड़क पर बैठ गए, सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जिन 10 नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करनी थी वो अंदर गए। बाहर आकर उन नेताओं ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संविधान को बचाने की अपील की है। यहां तक कहा राहुल गांधी ने कि यह मुलाकात एक अविश्वसनीय मुलाकात थी और उन्होंने जो वोट चोरी के आरोप लगाए वो सभी राष्ट्रपति ने सुने और इसी के साथ उन्होंने सबूत देने को कहा है। देखिए,
1: प्रेसिडेंट के साथ हमारी मीटिंग हुई। एक प्रकार से मैं आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि जब हमने राष्ट्रपति को इलेक्शन चोरी वोट चोरी के बारे में बताया तो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने डिनाई नहीं किया। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने यह नहीं कहा कि हिंदुस्तान में चुनाव चोरी नहीं हो रहे हैं। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने उल्टा हमसे कहा कि आप सबूत हमारे पास लाइए, और यही ग्रुप खुशी से जो पूरा का पूरा सबूत हमने कलेक्ट किया है राष्ट्रपति के पास ले जाएगा, ले जाने के लिए तैयार है। पूरा देश जानता है, स्टूडेंट्स जानते हैं कि देश में वोट चोरी हो रही है। नरेंद्र मोदी इसके आर्किटेक्ट हैं, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार इसके इम्प्लीमेंटर्स हैं, और इस बात को राष्ट्रपति ने, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने आज डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में सोचेंगी और एक्शन लेंगी।
0: और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल यानी 10 अक्टूबर को दिल्ली में क्या होगा। तो एक एक कर हम पूरी जानकारी आपको देंगे, और जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनके लिए तो सीधा असर है, लेकिन पूरे देश में लोग ये समझेंगे कि एक तरफ नेता विपक्ष कई सांसदों के साथ आज राष्ट्रपति के पास पहुंच गए, वो अंदर बैठक में इंडिया गठबंधन के कहते हैं कि सरकार का इस्तीफा लेकर रहेंगे। आखिर ये कड़ियां कैसे जुड़ रही है? और वही कल सबसे बड़ा जो कॉकरोच जनता पार्टी का आह्वान है, जिसने ये ऐलान किया है कि उसका प्रदर्शन स्थगित नहीं होगा दिल्ली पुलिस की सख्ती के बावजूद, तो कॉकरोच जनता पार्टी के मुताबिक उसके सभी नेता और 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता कल सुबह लगभग बताया जा रहा है 12 बजे के आसपास जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश करेंगे, और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर यह आंदोलन होकर रहेगा। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इस आंदोलन को अब तक उनकी अनुमति नहीं मिली है, अगर फिर भी कोई नियमों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन को रोकने के लिए कुल 15 बड़े कदम उठाए हैं। इनमें भी सबसे पहले दिल्ली आने वाली ट्रेनों में युवाओं और छात्रों से पूछताछ की जा रही है कि वो कहां और आखिर क्यों जा रहे हैं। तस्वीर आपके सामने, उदाहरण के लिए बेंगलुरु से दिल्ली जा रहे सीजेपी के कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतारा गया। जनरल डिब्बे में सवार दिल्ली के इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए ये लोग निकले थे। कई शहरों में रेलवे स्टेशन पर पुलिस द्वारा तलाशी अभियान भी चलाया गया, और जो लोग सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली जाना चाहते थे उन्हें यह कहा गया कि इस प्रदर्शन को अब तक पुलिस की अनुमति नहीं मिली है और यह आंदोलन कानूनी रूप से अवैध है, इलीगल है। दूसरा, भारतीय रेलवे ने एक बड़ा फैसला लेते हुए शनिवार सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली सभी प्रमुख मेल, सभी प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेन को उनके शुरुआती स्टेशन से ही रद्द कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि आज रात से जो ट्रेनें दूसरे शहरों से दिल्ली के बड़े रेलवे स्टेशन पर आ सकती थी वो अब नहीं आएंगी। तीसरा, दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर दिल्ली मेट्रो ने आज रात 9 बजे से ही 57 संवेदनशील मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि प्रदर्शनकारी नई दिल्ली के इलाकों में घुस ना सके। इसके अलावा अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि इन मेट्रो स्टेशन को कल या आगे कब खोला जाएगा। चौथा, दिल्ली में सुरक्षा के लिए 20,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं, जिनमें 6,000 जवान दिल्ली पुलिस के हैं। 20,000 जवान तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के हैं, यानी सीएपीएफ के। इनमें भी सीआरपीएफ की करीब 70 कंपनियां, यानी लगभग 7,000 जवानों को छत्तीसगढ़ के पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों से हवाई मार्ग और अन्य रास्तों से बहुत कम समय में दिल्ली ले आया गया है। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर उसके जवानों की संख्या 6,000 से बढ़ाकर 15,000 भी की जा सकती है। यहां हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि 2020 के दिल्ली दंगों के बाद से यह पहली बार है जब सुरक्षा बल की इतनी भारी तैनाती की गई है, और इन जवानों को दंगों, हिंसा या बेकाबू भीड़ को रोकने वाले खास हथियारों और सुरक्षा सामानों से भी लैस किया गया है। पांचवा, नई दिल्ली जिले और जंतर मंतर के जो पूरा इलाका है उसमें धारा 163 लागू है। 4 किलोमीटर के दायरे में जनपद के इंटरनेट भी बंद रहेगा अभी रात 10 बजे से। अभी 9:15 बज रहे हैं, अब 9 बज गए हैं, तो जो मेट्रो स्टेशन से उसको बंद करने की बात थी, 10 बजे से इंटरनेट 4 किलोमीटर रेडियस जनपद का, तो 163 की धारा लगी है जिसके तहत 4 या उससे ज्यादा लोगों के एक जगह पर जुटने पर पाबंदी है, पूरी तरह से पाबंदी। छठा, सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा दावा यह किया गया कि दिल्ली पुलिस अलग अलग छात्र हॉस्टल्स में पीजीज में जाकर छात्रों से पूछताछ कर रही है, उन्हें प्रदर्शन में न जाने की हिदायत दे रही है। क्या हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि दिल्ली में 335 कॉलेज हैं, 30 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज, 12,34,000 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, 12,34,000 छात्र छात्राएं। और अभी सीजेपी का समर्थन करने वाले नेता यह आरोप लगा रहे हैं कि इनमें कई छात्रों को दिल्ली पुलिस प्रदर्शन में हिस्सा लेने से रोक रही है। इसके अलावा पुलिस ने इस बार अपनी सख्ती का दायरा पहले से बढ़ाया है। इस बार दिल्ली पुलिस होटल्स, लॉज, ओयो रूम्स की बुकिंग की जांच कर रही है ताकि बाहर से आने वाले प्रदर्शनकारियों के रुकने के ठिकानों को खत्म किया जा सके। यानी जो होटल, जो गेस्ट हाउस, उनकी बुकिंग की दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम निगरानी कर रही है और यह कार्रवाई यही खत्म नहीं होती। दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिए जाने वाले जो प्रदर्शनकारी हैं उनको रखने के लिए कई जिलों में स्पेशल डिटेंशन सेंटर्स यानी अस्थायी जेलें तैयार की हैं। इसके अलावा सीजेपी और लेफ्ट छात्र संगठनों का ऐसा दावा है कि प्रदर्शन को रोकने के लिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल से दिल्ली आ रहे हजारों वॉलंटियर्स को उनके राज्यों में ही हिरासत में लिया जा रहा है, नजरबंद किया जा रहा है। यही नहीं, दिल्ली से लगे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के सभी 37 बॉर्डर्स या एंट्री पॉइंट्स पर भारी बैरिकेडिंग की गई है, हर गाड़ी की चेकिंग हो रही है, सड़कों पर भारी जाम की स्थिति है। दिल्ली के आबकारी विभाग ने भी शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 9 और 10 अक्टूबर को दिल्ली में शराब की सभी दुकानों को बंद कर दिया है। ये भी आरोप है कि जंतर मंतर और रायसीना रोड के 4 किलोमीटर के दायरे में चुनिंदा तौर पर इंटरनेट सेवाओं को नियंत्रित किया गया है ताकि प्रदर्शनकारी आपस में एक दूसरे से संपर्क करके जंतर मंतर पर ना पहुंच सके। इसी के साथ दिल्ली पुलिस और उसके आईटी सेल द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को छात्रों और आम लोगों को उकसाने वाले संदेशों, मैसेजेस या वीडियो पर तुरंत एक्शन लेने को कहा गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर भी आई है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच संदिग्धों और जुलाई आंदोलन के दौरान हिंसा में शामिल रहे लोगों के जो डेटा बेस है उन कैमरों से ट्रैक कर सकती है, जो फेस को स्कैन कर सकते हैं और ऐसे लोगों को भीड़ में शामिल होने से मुमकिन है कि रोका जाए। सबसे बड़ी बात, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर के बदले रामलीला मैदान या बुराड़ी जैसे किसी भी वैकल्पिक खुले स्थान में इकट्ठा होने की इजाजत देने से भी साफ मना कर दिया है। और अभी दिल्ली पुलिस की दिल्ली की कैसे किलेबंदी की गई है उसके लिए इन तस्वीरों को देखिए।

0: थाने।
1: दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के ठीक बाहर जो पिछले कई दिनों से जंग का अखाड़ा बना हुआ है, और इस थाने के बाहर की आप तैनाती देखिए, जैसे किले की बाहर पूरी सुरक्षा होती है उस तरीके से इस थाने की भी सुरक्षा के लिए बाहर बैरिकेड है। अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस गेट पर तैनात मिलेगी, दिल्ली पुलिस आपको तैनात मिलेगी, और यहाँ पर चेतावनी भी लगाई गई है। ठीक आप देखिए, बैरिकेड पर चेतावनी लगाई गई है कि BNSS की धारा 163 लागू है, अगर लोग जुटेंगे तो उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी।
2: इस पूरी कार्रवाई के बीच सोशल मीडिया पर कई लोग इस मुद्दे को भी हवा दे रहे हैं कि पुलिस केवल मस्जिदों से यह ऐलान क्यों करवा रही है कि मुस्लिम लड़के इस प्रदर्शन में शामिल ना हो। हमारे पास ऐसे कई वीडियोस मौजूद हैं जिनमें पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक और उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार इलाके की मस्जिदों से बाकायदा पुलिसकर्मियों और स्थानीय मौलानाओं द्वारा लाउडस्पीकर पर ऐलान कराया गया है, और ये कहा गया है कि लोग अपने बच्चों, अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों को समझाएं कि वो किसी भी भीड़ या अवैध प्रदर्शन का हिस्सा ना बने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। सुनिए।
3: पर भरोसा ना करें और ना ही उन पर ध्यान दें। किसी भी भड़काऊ संदेश या उकसावे में नहीं आए, जिम्मेदार नागरिक बने और कानून का पालन करें। अपने क्षेत्र की सुरक्षा में पुलिस और प्रशासन का साथ दें और अपने परिवार वाले और अपने बच्चों को इस बारे में समझाएं कि इस तरह की अननेसेसरी भीड़ में या ऐसे कोई प्रोटेस्ट में किसी में हिस्सा ना लें, क्योंकि इसमें प्रशासन अपना काम कर रहा है, उसमें अननेसेसरी किसी कारणवश हमारे बच्चे को या हमें कोई किसी तरह का नुकसान ना हो। आप लोगों का धन्यवाद।
4: इस ऐलान को गौर समाज फरमाए कि जो जंतर मंतर पर 8-9-10 तारीख को जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो इलीगल है, वहां पर कोई व्यक्ति ना जाए, इसलिए कि सरकार ने वहां पर धारा 173 लगाई हुई है। कृपया आप प्रशासन का साथ दें, कोई वहां ना जाए। एक मरतबा फिर लीजिएगा, जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पर 8, 9 और 10 तारीख को कोई भी व्यक्ति वहां पर ना जाए, इसलिए कि सरकार ने वहां पर धारा 163 लगाई हुई है। अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसकी सरकार कोई जिम्मेदार नहीं होगी, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो कृपया करके 8-9-10 तारीख को कोई भी इजरात जंतर मंतर पर ना जाए, वहां पर सरकार ने धारा 163 लगाई हुई है। बराए करम आप इजरात वहां जाने से बचें और प्रशासन का साथ दें, इसी में आपका फायदा है।
2: इधर ऑल इंडिया इमाम संगठन के प्रमुख इमाम डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वो ऐसे किसी भी प्रदर्शन, धरने या सभा में शामिल ना हो जिससे देश में तनाव या आपसी सौहार्द बिगड़ने की आशंका हो। उन्होंने देश में शांति सद्भाव बनाए रखने पर जोर दिया है। सुनिए।
5: आपको मालूम है कि दिल्ली के अंदर दफा 144 लागू हो चुकी है। आपको मालूम है कि जो भी गिरफ्तार होगा इस प्रोटेस्ट में उसके ऊपर इतनी दफाएं लगेंगी, जमानत नहीं होगी। आप तो फंसेंगे, आप तो बर्बाद होंगे, आप अपने परिवार को भी बर्बाद कर देंगे। मैं तमाम सबसे गुजारिश करना चाहता हूं इमामों से कि अपनी मस्जिदों से आज ऐलान करें और तमाम मुसलमानों को रोकें कि किसी तरह के किसी प्रोटेस्ट में हमें शामिल नहीं होना है। आप इस देश में अमन और शांति के प्रतीक हैं, तो इसलिए आपको किसी तरह से भी कोई प्रोटेस्ट में आपको बहकाता है, आपके बच्चों को बहकाए, तो बिल्कुल नहीं जाना है।
2: केवल मस्जिदों में ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे रिहायशी इलाके हैं, खासकर छात्रों के रहने वाले इलाके हैं, वहां भी अलग तरह से घेराबंदी की गई है। दिल्ली पुलिस की टीम्स लक्ष्मी नगर, मुखर्जी नगर, बड़े पैमाने पर यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं, छात्र रहते हैं, GTP नगर, मुनिरका जैसे उन रिहायशी इलाकों में भी जा रही है जहां बहुत बड़ी संख्या में छात्र हॉस्टल्स हैं, PG हैं, और इन इलाकों में पुलिस द्वारा PG और हॉस्टल के मालिकों को लिखित और मौखिक तौर पर धारा 163 की पाबंदियों की जानकारी दी जा रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, इनमें पढ़ने वाले जो छात्र हैं इस प्रदर्शन में शामिल ना हो। देखिए, अब इस सवाल पर आते हैं कि दिल्ली पुलिस क्या कहते हुए कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है उस प्रदर्शन को करने से रोक रही है उन्हें, और इस बार इतनी सख्ती आखिर क्यों की जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी ने पहली बार 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के मौके पर यह ऐलान किया था कि अगर ज्ञानेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया तो वो 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके बाद औपचारिक रूप से 3 अक्टूबर को यही बात कॉकरोच जनता पार्टी के सभी नेताओं ने दोहराई और ये कहा कि देश भर से उसके कार्यकर्ता एक बार फिर से जंतर मंतर पर 10 अक्टूबर को इकट्ठा होने के लिए आएंगे। अब पेच यहां फंसता है कि ऐलान आंदोलन से सिर्फ 7 दिन पहले हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर बना जो दिल्ली पुलिस का अपना नियम है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वो ये कहता है कि जंतर मंतर पर कोई भी प्रदर्शन करने के लिए कम से कम 10 दिन पहले पुलिस से उसकी अनुमति लेना जरूरी है। यानी पूरा विवाद अनुमति का है और दिल्ली पुलिस ये आरोप लगाती है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन की अनुमति सिर्फ 3 दिन पहले यानी 7 अक्टूबर को मांगी, जो नियमों के तहत स्वीकार हो ही नहीं सकती। अब दूसरा, सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने संसद मार्ग पुलिस थाने में प्रदर्शन के लिए जो सूचना पत्र जमा कराया उसमें यह लिखा था कि इस विरोध प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हो सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी गाइडलाइंस इसकी भी इजाजत नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट की बनी गाइडलाइंस में साफ लिखा है कि जंतर मंतर पर 1000 या उससे कम लोग एक बार में प्रदर्शन कर सकते हैं और अगर प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती है तो उन्हें रामलीला मैदान में भेजा जा सकता है जहां ज्यादा से ज्यादा 50,000 लोग प्रदर्शन कर सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस ने आज यही दलील सामने रखी और उन्होंने अपनी बात कही, और अगर प्रदर्शनकारियों की संख्या इससे भी ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में पुलिस बॉर्डर के पास बुराड़ी ग्राउंड है, उसमें प्रदर्शन करने की इजाजत दे सकती है। लेकिन यहां इस मामले में दावा है कि सीजेपी के कार्यकर्ता जंतर मंतर पर ही प्रदर्शन करना चाहते हैं और पुलिस अनुमति नहीं दे रही है। और अब आइए आपको दिखाते हैं राष्ट्रपति भवन में जब राहुल गांधी तमाम सांसदों के साथ पहुंचे थे वहां की तस्वीरें आ गई हैं। ये तस्वीर है जिसमें राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को ये ज्ञापन सौंपते हुए दिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और उनकी दाईं तरफ हैं राहुल गांधी, राजीव राय, मनोज झा और उमर अब्दुल्ला। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ममता बनर्जी, डी राजा और सुप्रिया सुले और कुछ अन्य नेता आपको दिखाई दे रहे हैं। इन सभी नेताओं ने आज ये ज्ञापन सौंपा है जिसमें उन्होंने मांग की है चुनाव आयोग को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त पर कार्रवाई की, और इसी के साथ कहा है कि अब बैलेट बॉक्स से वोटिंग हो ना कि ईवीएम से। और इसी मीटिंग से निकलने के बाद, यह ज्ञापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपने के बाद, राहुल गांधी ने बाहर आकर बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि अब समझिए कि शायद सबसे बड़ा आप हाई वोल्टेज एक्शन सोमवार को भी देखेंगे जब यही तमाम सांसद सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने शुरुआत की थी जब वो चुनाव आयोग जा रहे थे, आकाशवाणी भवन में रुके, राजघाट गए, राष्ट्रपति भवन गए, और अब सुप्रीम कोर्ट का रुख विपक्षी सांसद सोमवार को करेंगे। खैर, उस पर नजर हमारी रहेगी, लेकिन हम कल की बात कर रहे हैं क्योंकि कल को लेकर बड़ी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। पुलिस इतने कड़े इंतजाम यही कहते हुए कर रही है कि जब अनुमति नहीं दी गई तो ये प्रदर्शन भी कानून व्यवस्था का सम्मान करते हुए नहीं होना चाहिए, और अगर फिर भी कुछ लोग उसकी बात नहीं मानते हैं तो उसकी तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए मैं आपको अब बड़ी स्क्रीन पर लिए चलती हूं और इस स्क्रीन पे आपको दिखाती हूं कि किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि 57 मेट्रो स्टेशंस की जब बात हो रही है, एक सेकंड, ये देखिए 57 मेट्रो स्टेशंस की बात हो रही है, तो यहां पर अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं कि कौन कौन से वो तमाम इलाके हैं जिनको लेकर इस बार चर्चा हो रही है। ताकि सबसे पहले ये वाला देखिए, मजेंटा लाइन के 4 स्टेशंस, ठीक है, यहां से शुरू करते हैं, मजेंटा लाइन के 4 स्टेशंस, ये वाला जो देख रहे हैं मजेंटा लाइन के 4 स्टेशंस, ये बंद कर दिए गए, ठीक है। तो ये मजेंटा लाइन के जो 4 स्टेशंस है वो आपको दिख रहा है, कृष्णा पार्क दिख रहा है, ठीक है, यहां पर बोटानिकल गार्डन नोएडा को जो जोड़ती है, तो चलिए नोएडा वाले खुश थे कि हम तो दूर है इस सबसे, तो नोएडा तक भी मामला पहुंच रहा है, ये भी बंद रहेगा, ठीक है। अब वायलेट लाइन के 7 स्टेशंस बंद हो रहे हैं जी, ये बल्लभगढ़ आपको दिख रहा है, ये आपको यहां पर कश्मीरी गेट का दिख रहा है, ये सारे स्टेशंस जो रास्ते में पड़ेंगे कौन कौन से हैं। पिंक लाइन के 8 स्टेशन बंद हो रहे हैं, ठीक है। शिव विहार के देखिए, लोनी बॉर्डर को जोड़ती है, इसकी भी ये स्टेशन भी ब्लॉक होगा। शहीद स्थल गाजियाबाद को जोड़ती है, ये भी बंद हो रहा है, ये वाला स्टेशन। वैशाली ये है, इधर आपको हमने दिखाई दिया है, गुरुग्राम को जो येलो लाइन जोड़ती है, तो गुरुग्राम वाले भी प्रभावित होंगे, ठीक है, गुरुग्राम को ये जोड़ती है येलो लाइन, 20 स्टेशन इसमें आते हैं इस पूरे रास्ते में, इसका एंड देखिए यहां पर होता है मिलेनियम सिटी सेंटर पर, ये भी देखिए। तो एक तरफ से आप समझिए कि पूरा जो दिल्ली NCR है ना, इस पूरे इलाके में यहां से अगर आप देखिए तो, और ये देखिए ना रेड लाइन जो है उसके 9 स्टेशन बंद है, तो पूरा मतलब आप समझिए कि इधर से लेकर उधर और ऊपर से लेकर नीचे तक जितने हैं, जिसमें यहां पे गुरुग्राम हो, यहां पे नोएडा हो, ये सब आसपास से जितने ही कनेक्ट होते हैं यहां पर जंतर मंतर को पहुंचते हैं। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जंतर मंतर यहां से ये सब आते हैं, इधर से गुजरते हुए उधर जाते हैं ब्लू लाइन, जिसके 8 स्टेशन बंद है। देखिए फिर यहां गुरुग्राम से आते हुए स्टेशन होते हुए ये भी जंतर मंतर के पास पहुंचते हुए समयपुर बादली में जाता है ये, तो वो भी बंद हो रहा है। अब ऑरेंज लाइन 1 स्टेशन है, उसको भी बंद कर दिया, वो भी जंतर मंतर के पास है। ये वाला समयपुर बादली वाला जो येलो लाइन है वो तो बंद है ही। तो ये पूरा मिलाकर जंतर मंतर के आसपास से जो गुजर रहे हैं उन सबको बंद किया गया है। और कोशिश यही है कि जो सवाल उठ रहा था कि आसपास से लोग पहुंचे थे पिछली बार बड़ी तादाद में आए थे, उन सबको रोकने का एक तरीका ऐसे समझिए, क्योंकि कल बड़ा क्रूशियल डे इसे माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने ऐसी योजना बनाई है जिससे CJP के कार्यकर्ता नई दिल्ली जो जिला है न्यू दिल्ली में वहां ना पहुंच सके, जंतर मंतर पर बिना अनुमति के कोई आंदोलन ना हो। अब दिल्ली पुलिस ने लोगों के नाम एक खुला पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने लोगों से एक अपील की है, और ये बहुत ही मार्मिक अपील उन्होंने अपनी तरफ से की है कि वर्दी के पीछे भी एक इंसान है जिसका अपना परिवार है, अपने लोग हैं। यहां पुलिस कह रही है कि फर्क सिर्फ वर्दी का है, इंसानियत का नहीं, और इसीलिए दिल्ली पुलिस को भी समझे, कानून का पालन करें। देखिए
0: प्रोटेस्ट में ये भी नोटिस किया है कि काफी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है।
6: भाई लेडी पुलिस को ये कह रहा है कि के सामने कपड़े उतार देगी, ये कह रहा भाई ये बंदा।
7: कुछ प्रोटेस्टर हैं, एक दिन वो एज ए जर्नलिस्ट बन के आते हैं और
8: इफ यू डिटेन मी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ जर्नलिस्ट, यस आई हैव अ कार्ड।
7: दूसरे दिन एज ए वो प्रोटेस्टर आते हैं, डिटेन होके जाते हैं।
8: मुझे याद करना सभी
9: उसको जवाब दो, समझ आए हमें, हमारा माथा खोल रहा है।
0: पुलिस वालों को इंसाइट करते हैं, उनसे कोई रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं, एंड देयर इज अ क्लियर विजिबिलिटी जहां वो पुलिस के काम को ऑब्स्ट्रक्ट करने की भी कोशिश करते हैं।

0: दिल्ली पुलिस की सख्ती के बावजूद कॉकरोच जनता पार्टी अपने 10 अक्टूबर के आंदोलन पर इस वक्त स्थिर है और पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते तो देशभर से उसके नेता और कार्यकर्ता 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर तक मार्च करेंगे। अगर दिल्ली पुलिस ने रास्ते में कहीं भी उन्हें रोका तो वो उसी जगह को जंतर मंतर बनाकर प्रदर्शन शुरू करेंगे। यानी कॉकरोच जनता पार्टी ये चेतावनी दे रही है कि उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं को जहां भी रोका जाएगा वहीं पर उसी जगह को वो जंतर मंतर बना देंगे। कॉकरोच चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को 4 वजहों से जरूरी बता रही है। पहले वो एसआईआर की प्रक्रिया को वोट चोरी का हिस्सा बताती है और यह आरोप लगाती है कि चुनाव आयोग ने इसकी आड़ में बड़ी संख्या में लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया। दूसरा, सीजेपी ज्ञानेश कुमार पर चुनाव आयोग में मनमानी करने का आरोप लगाती है और ये कहती है कि अगर वो 2029 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे तो देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। तीसरा, सीजेपी की मांग है साल 2023 में बनाए गए उस कानून को निरस्त किया जाए जिसके तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सरकार का पलड़ा भारी रहता है। उनकी मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सिविल सोसाइटी और निष्पक्ष कलेजियम के जरिए हो, यानी सीजेपी जैसे संगठनों को भी इसका हिस्सा बनाया जाए। हालांकि सरकार और बीजेपी इस आंदोलन के पीछे एक साजिश देख रही है। सरकार और चुनाव आयोग के समर्थकों का तर्क है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसे सोशल मीडिया आंदोलन या सड़कों पर दबाव बनाकर झुकाया नहीं जा सकता। आरोपों को निराधार बताते हुए चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट का रिविजन एक सामान्य है और कानूनी प्रक्रिया है और आयोग में आंतरिक मतभेद होना लोकतांत्रिक चर्चा का हिस्सा है। हालांकि पहले विपक्ष ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और अब विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे इसी मुद्दे पर सीजेपी ने भी कल बड़े आंदोलन की बात कही है।
1: जब जनता जागती है तो कोई भी स्टेशन बंद कर दीजिए, जनता सड़कों पर आएगी।
2: डरे हुए हैं और जो आदमी डरता है आज नहीं कल मरता है।
3: तो मैं तो सलाम करता हूँ वे सारे देशभक्तों का जो आज आए हैं, सड़कों पर आए हैं, और इसी प्रकार से हम दोबारा देश में लोकतंत्र को कायम रख पाएंगे।
4: बहुत ही मुझे हंसी आ रही कि सरकार इतनी डर गई, लोग परेशान हो गए। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ब्लैंकेट बैन क्यों लगा रहे, सब क्यों बंद कर रहे, सारे मेट्रो ट्रेन बंद, सारी ट्रेनें बंद, सारे बसेस बंद, दिल्ली में घुस नहीं सकते, इतना डर।
5: हम जंतर मंतर नहीं जा सकते, हमारे बच्चे उन तक नहीं पहुंच सकते, हम मेट्रो बंद कर देंगे, हम किसी का सुनावा नहीं करेंगे, हम ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाएंगे, मेंबर पार्लियामेंट राष्ट्रपति तक नहीं जा सकते हैं। क्या है ये लोकतंत्र है?
0: जब कॉकरोच जनता पार्टी ने नीच पेपरली के खिलाफ जंतर मंतर पर आंदोलन किया तब वो मुद्दा इस देश के करोड़ों युवाओं और बच्चों से जुड़ा मुद्दा था, लेकिन इस बार सीजेपी ने ज्ञानेश कुमार और स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी एसआईआर का मुद्दा उठाया है। उसे बीजेपी उसके समर्थक एक राजनीतिक मुद्दा बता रहे हैं जिसे अब तक विपक्षी दल कांग्रेस आम आदमी पार्टी उठा रही है। यहां यह भी समझना जरूरी है कि जब इस मुद्दे पर इतना ज्यादा तनाव है तब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहां है। 7 और 8 अक्टूबर को उन्हें छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाना था जहां वो दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर और बस्तर में चित्रकूट के जलप्रपात और कबीरधाम के भोरमदेव मंदिर जाने वाले थे, लेकिन इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन के बीच उनका ये दौरा रद्द हुआ और अभी ज्ञानेश कुमार दिल्ली में मौजूद है, नियमित रूप से चुनाव आयोग के दफ्तर में है जा रहे हैं। हालांकि ज्ञानेश कुमार के बारे में एक अहम बात यह है कि जब से उनके इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग ने जोर पकड़ा है तब से उन्होंने मीडिया में कोई मौखिक बयान नहीं दिया है।

और अब आइए आपको बताते हैं, जो बाय इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है उसको लेकर आज न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है, बल्कि इसी के साथ साथ गृहमंत्री अमित शाह ने भी एक पोस्ट के जरिए ये लिखा है कि राहुल गांधी देश में भ्रम फैला रहे थे, इसके बावजूद जनता ने उनका साथ दिया है। तो आज गृहमंत्री अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, असम से लेकर पश्चिम बंगाल में जो बाय इलेक्शंस में जीत मिली है उसको लेकर उन्होंने विपक्ष पर यह आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग और उसकी प्रक्रिया को लेकर वो लाख भ्रम फैलाते रहे, बावजूद इसके चुनावों में जनता ने उनका साथ दिया। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि अखिलेश यादव अयोध्या जाएंगे, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। हालांकि संकेत इसके आज सुबह से मिल रहे थे, अलग अलग जगहों पर उन्होंने कहा था कि हम अपने नेता पवन पांडे को कहते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि सभी विपक्षी सांसदों के साथ अखिलेश यादव जाएंगे राम मंदिर। अखिलेश यादव अयोध्या जाएंगे और अभी तक बीजेपी यही आरोप लगा रही थी कि भाई तमाम वक्त गुजर गया है ना, आपको जब न्योता दिया गया था जब राम मंदिर की शुरुआत हो रही थी तब नहीं आए और तब से लेकर अब तक नहीं आए। तो अब खबर आ रही है कि अखिलेश यादव अयोध्या जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं राम मंदिर जरूर जाऊंगा, दर्शन करने जाऊंगा। इससे पहले उन्होंने कहा था कि मेरे नेता पवन पांडे से मैं कहूंगा कि वो हमें बताएं और हम लोग राम मंदिर अब चलेंगे सांसदों के साथ। अब वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कि वो राम मंदिर जरूर जाए। राम मंदिर की इस देश में एक अपनी ही राजनीति रही है, उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं और ऐसे में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अपने सांसदों के साथ अब चुनाव के पहले और राम मंदिर के इनॉग्रेशन के इतने दिन बाद वो राम मंदिर जाएंगे, बड़ी खबर तो बनेगी ही। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आप।

0: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है। कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
1: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: हमारे निबर मिस्टर कुमार बात बात पे कार मांगते रहते हैं।
3: वो इन लॉज को लाना है, कार मिल जाएगी।
4: अरे यार कुमार, अब तो अपनी कार ले लो यार।
5: कैनरा व्हीकल लोन से
3: अप टू 90% फाइनेंसिंग,
4: क्विक प्रोसेसिंग
6: एंड नो प्री क्लोजर पेनल्टी।
7: कैनरा व्हीकल लोन, अपनी वाली गाड़ी के लिए।

0: विश्राम।
1: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
2: एक हिंट तो देते।
3: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: इस फेस्टिव सीजन हंडे सुपर डिलाइट डेज सबके लिए लाए हैं डिलाइट। हंडे शोरूम आओ, अमेजिंग कार्स पे 1,00,000 तक की अमेजिंग डील्स पाओ।
3: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
7: यहाँ ड्रिल करना पड़ेगा।
8: ड्रिल? नहीं नहीं, ओनर से पूछना पड़ेगा।
9: इसका नाम क्या रखेंगे?
10: ये भी ओनर से ही पूछ लेते हैं।
11: अरे भाई साहब, कब तक ओनर के डर में रहेंगे? शान से अपने घर में रहिए ना, विद कैनरा होम लोन।
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हमारे निबर मिस्टर कुमार बात बात पे कार मांगते रहते हैं।
3: वो इन लॉस को लाना है, कार मिल जाएगी।
4: अरे यार कुमार, अब तो अपनी कार ले लो यार।
5: कैनरा व्हीकल लोन से
3: अप टू 90% फाइनेंसिंग,
4: क्विक प्रोसेसिंग
6: एंड नो प्री क्लोजर पेनल्टी।
7: कैनरा व्हीकल लोन, अपनी वाली गाड़ी के लिए।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbagh Group.
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: इस फेस्टिव सीजन हंडे सुपर डिलाइट डे सबके लिए लाए हैं डिलाइट। हंडे शोरूम आओ, अमेजिंग कार्स पे 1,00,000 तक की अमेजिंग डील्स पाओ।
2: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
6: यह ड्रिल करना पड़ेगा।
7: ड्रिल? नहीं, ओनर से पूछना पड़ेगा।
8: इसका नाम क्या रखेंगे?
9: ये भी ओनर से ही पूछ लेते हैं।
10: अरे भाई साहब, कब तक ओनर के डर में रहेंगे? शान से अपने घर में रहिए ना, विद कैनरा होम लोन।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही. अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे. तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए. और वक्त इतना बदल चुका है कि लोग दुआ में याद रखें ना रखें, चुगलियों में जरूर याद रखते हैं. नमस्कार. प्रेजेंटेड

0: विश्राम।
1: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
2: एक हिंट तो देते।
3: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
4: इस फेस्टिव सीजन हंडे सुपर डिलाइट डे सबके लिए लाए हैं डिलाइट। हंडे शोरूम आओ, अमेजिंग कार्स पे 1,00,000 तक की अमेजिंग डील्स पाओ।
5: आ गया सोमवार और आ गए
6: चकमक चाचा।
5: एक कचौड़ी, दो समोसा, चकमक तेरा क्या भरोसा।
7: चकमक चाचा से सीधे चकमक है।
5: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रहे, गूंज रहा ना।
7: लेकिन भैया नारा रे फालतू में सब बेकार, एकदम बेकार। अरे होते थे हमारे टाइम।
5: अच्छा
7: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
5: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी, इन नेताओं की खत्म कहानी।
7: अरे जमीन की चकबंदी में, जमीन की चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में।
5: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
7: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
5: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा लेके जाएंगे।
7: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
5: अरे लाल फूल, नीला फूल, जंजी नंगे ब्यूटीफुल।
7: अरे बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी।
5: चाय गरम, दूध गरम, चकमक चाचा भी शर्म
7: है।
5: हाँ,
7: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
5: अरे मेरे सिर में दर्द है, जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
8: हम जैसे, इधर आओ।
9: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
10: आपका प्रोटेस्ट कल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा?
11: मुझे लगता है कि अब बात थोड़ी उसके आगे चली गई है। एक ज्ञानेश कुमार को, जिसको हम एक ब्यूरोक्रेट कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेट ही है वो, कोई मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, एक ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए अपने जम्मू कश्मीर से फोर्स बुला ली, अपने नक्सल एरिया से फोर्स बुला ली, आपसे आपको वो भी कम लगा, आपने सारे रास्ते बंद कर दिए, आपको वो भी कम लगा, आपने मेट्रोज बंद कर दिए, आपको वो भी कम लगा, आपने रेलवेज बंद कर दी। देश ही बंद कर दो ना, इलेक्शन बंद कर दो, देश ही बंद कर दो, हर हर मोदी, घर घर मोदी वैसे ही डिक्लेयर कर दो, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन इलेक्शन भी क्यों, वन नेशन वन पार्टी डिक्लेयर कर दो ना। क्या चल रहा है ये? आर्टिकल 19 गिव्स अस द राइट टू प्रोटेस्ट एंड जंतर मंतर इज अ डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट। अगर हम मुंबई में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अगर हम बेंगलोर में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो हम दिल्ली में क्यों नहीं कर सकते? क्या दिल्ली किसी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर चल रही है? मुंबई में पुलिस ने पूरा कोऑपरेट किया, बेंगलुरु में पूरा कोऑपरेट किया, दिल्ली में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, दिल्ली में कौन सा लॉ चल रहा है अलग से?

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: मैं मायावती सत्य निष्ठा के प्रतिज्ञान करती हूँ।
1: मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ।
2: मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ।
3: ये भूमि उत्तर प्रदेश है, ये भूमि उत्तर प्रदेश है।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद विपक्ष ने सरकार पर और सख्त किया अपना घेरा। बोले राहुल, वोट चोरी के हमारे आरोप पर महामहिम भी सहमत। सोमवार को चीफ जस्टिस को सौंपेंगे ज्ञापन। जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को नहीं मिली अनुमति। मेट्रो के 57 स्टेशन बंद। दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें हुई रद्द। कुछ इलाकों में इंटरनेट हुआ ठप। दिल्ली की किलेबंदी पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत। कहा, मक्खी मारने के लिए हथौड़ा नहीं चला सकते आप। सब कुछ ठप होने से आम लोग न हो परेशान। रामलला के दर्शन करने जाएंगे एसपी अध्यक्ष अखिलेश। देवरिया में बोले, सांसदों के साथ जाऊंगा अयोध्या। सही मुहूर्त का इंतजार। उपचुनाव में बीजेपी एनडीए के शानदार प्रदर्शन पर पीएम का पोस्ट। कहा, इस जनादेश से मिलेगी और मजबूती। अमित शाह बोले, राहुल के झूठ और दुष्प्रचार के बावजूद बड़ी जीत।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक, पर आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक में बात राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक के मार्च की। जी हां, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगातार चौथे दिन राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आज इंडिया गठबंधन के 10 नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मिले और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा। हम आपको ये भी बता दें कि जब इंडिया गठबंधन के ये 10 नेता राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो बाहर विपक्ष के नेताओं ने पोस्टरों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया। और जब इंडिया गठबंधन के ये नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ज्ञापन सौंपने के बाद बाहर निकले तो सीधे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी ने तब कहा कि अब सोमवार को हमारा पूरा डेलीगेशन ज्ञापन लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। राहुल गांधी ने ज्ञापन सौंपने के बाद जो बड़ी बातें कही वो बातें हम आपको जल्दी से बता देते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमने इलेक्शन चोरी, वोट चोरी के बारे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बताया, इसका खंडन उन्होंने नहीं किया। राष्ट्रपति ने हमसे सबूत मांगे, हमने जो सारे सबूत इकट्ठा किए हैं हम उन्हें लेकर राष्ट्रपति के पास दोबारा जाएंगे। 12 अक्टूबर यानी कि सोमवार को ज्ञापन लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, चीफ जस्टिस के पास। ये सभी बातें राहुल गांधी ने कही। तीन बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से बता दें, 12 अक्टूबर को जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाएंगे और ज्ञापन उन्हें सौंपेंगे। और इलेक्शन चोरी, वोट चोरी के बारे में राष्ट्रपति ने खंडन नहीं किया है, सबूत मांगे हैं तो सबूत हमारे पास हैं, हमने इकट्ठा किए, वो हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को देंगे। सुनिए राहुल।

0: अभी प्रेसिडेंट के साथ हमारी मीटिंग हुई, एक प्रकार से मैं आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि जब हमने राष्ट्रपति को इलेक्शन चोरी वोट चोरी के बारे में बताया, राष्ट्रपति ने डिनाई नहीं किया। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने यह नहीं कहा कि हिंदुस्तान में चुनाव चोरी नहीं हो रहे हैं। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने उल्टा हमसे कहा कि आप सबूत हमारे पास लाइए, और यही ग्रुप खुशी से जो पूरा का पूरा सबूत हमने कलेक्ट किया है राष्ट्रपति के पास ले जाएगा, ले जाने के लिए तैयार है। पूरा देश जानता है, स्टूडेंट्स जानते हैं कि देश में वोट चोरी हो रही है। नरेंद्र मोदी इसके आर्किटेक्ट हैं, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार इसके इम्प्लीमेंटर्स हैं, और इस बात को राष्ट्रपति ने, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने आज डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में सोचेंगी। मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू। अच्छा, ये देखिए, ये सबसे पहले हिंदुस्तान के सारे ऑपोजिशन एमपीज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने गए, वहां पे हमें डिटेन किया गया, पीटा गया, धकेला गया, बसों में बंद करके पुलिस स्टेशन गए। कहा कि आप यहां पे प्रोटेस्ट मत कीजिए। उसके बाद हम जंतर मंतर गए, हमने कहा जंतर मंतर इज ए प्लेस ऑफ पब्लिक प्रोटेस्ट, हम वहां जाएंगे। वहां जाने से रोका। अब हम प्रेसिडेंट के पास आए हैं और मंडे को हम सुप्रीम कोर्ट, यही पूरा का पूरा ग्रुप मेमोरेंडम ले, चीफ जस्टिस के लिए मेमोरेंडम लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम सारे के सारे रास्तों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोई भी रास्ता नहीं छोड़ेंगे।
1: देश के सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान महामहिम राष्ट्रपति एक व्यक्ति नहीं है, वो देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है। उसको लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो न सिर्फ विचित्र लगता है बल्कि उसमें सच से ज्यादा सियासत की गंध आ रही है। उनका यह कहना कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने उनके आरोपों को स्वीकार कर लिया है, यह दर्शाता है कि जो अभी तक राहुल गांधी देश की हर संस्था के बारे में, हर संवैधानिक संस्था को अपनी राजनीति का शिकार बनाने का दुष्चक्र रच रहे हैं, उन्होंने अब आज ऐसा प्रतीत होता है कि सारी सीमाएं पार कर दी।
2: 12 अक्टूबर यानी कि सोमवार को इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन सुप्रीम कोर्ट जाएगा। हम आपको ये बता दें कि राष्ट्रपति से मिलने से पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद के सेंट्रल हॉल में एक बैठक की और इस बैठक में राहुल गांधी ने भाषण दिया, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जैसे परिणाम रिजल्ट आए हैं, विशेषकर गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र में, मैं अभी तक विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूं कि ऐसा हुआ है। हमारे देश के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे तब पता चला जब मेरे हाथ में सबूत आए। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आज ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल गांधी के मार्च में इंडिया गठबंधन के नेता शामिल हुए और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। तो कल कांग्रेस जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर रखा है, जिसके चलते दिल्ली को जैसे मानो किले में तब्दील कर दिया गया।
3: 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है। कोई भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा।
4: ज्ञानेश कुमार पर संग्राम, आज विपक्ष, कल सीजेपी। 4 दिन से लगातार राहुल गांधी का ज्ञानेश कुमार पर वार।
0: मंडे को हम सुप्रीम कोर्ट, यही पूरा का पूरा ग्रुप मेमोरेंडम ले, चीफ जस्टिस के लिए मेमोरेंडम लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
4: अब ज्ञानेश कुमार पर लड़ाई राष्ट्रपति के दर तक आई। सीईसी के इस्तीफे की मांग, राष्ट्रपति को इंडिया का ज्ञापन।
5: हमने तो पॉजिटिव आउटलुक से देखा है कि उन्होंने जो दो चार बात कहा कि आई विल इन्वेस्टिगेट, आई विल गो थ्रू द एंड आम को सबूत चाहिए।
4: 10 अक्टूबर को सीजेपी का जंतर मंतर प्लान, किले में तब्दील दिल्ली।
6: डरे हुए हैं और जो आदमी डरता है आज नहीं कल मरता है।
7: भारत जैसे लोकतंत्र में प्रदर्शन की पूरी संभावनाएं हैं और आप जरूर करें प्रदर्शन, बट प्रदर्शन से समाधान नहीं निकलेगा, समाधान संवाद से निकलेगा।
4: एक तरफ दिल्ली किले में तब्दील हो चुकी है, दिल्ली पुलिस से लेकर बीएसएफ भी दिल्ली की सीमाओं पर तैनात है, तो दूसरी तरफ लगातार चौथे दिन राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए उतरे और चौथे दिन अपनी मांग को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दर पर पहुंचते हैं।
8: यहां पे आप देखिए कि संसद भवन से बाहर मार्च करते हुए ये तमाम नेता नजर आ रहे हैं और कुछ इस तरीके से लोकतंत्र बचाओ अभियान छेड़ दिया है यहाँ पे इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने। और बैठक के बाद, 5 बजे की बैठक के बाद इस तरीके से नारेबाजी और घेराबंदी यहाँ पे विजय चौक पर हम लोग पहुँच गए हैं। ये विजय चौक है, पीछे आप देखें कि नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है।
9: मांग तो पूरे देश की जो मांग है कि पूरा जो संरचना है बेईमानी का उसको खत्म किया जाए, और ज्ञानेश जी प्रतीक पुरुष है जो शील्ड बन के खड़े हैं मोदी जी और अमित शाह जी, वो चले जाए।
10: देखिए, मुझे लगता है कि जो सारे देशभक्त हैं वो देश में लोकतंत्र को बचाने में लगे हैं, वो चाहे किसी राजनीतिक दल के सदस्य हो या न हो। और जो आज जो वोटर लिस्ट में पूरे चुनाव प्रक्रिया में जो धूल मिलाने का जो काम हो रहा है वो आज के तारीख में सबसे बड़े देशद्रोही का काम है।
11: मुझे हंसी आ रही कि सरकार इतनी डर गई, लोग परेशान हो गए, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ब्लैंकेट बैन क्यों लगा रहे, सब क्यों बंद कर रहे, सारे मेट्रो ट्रेन बंद, सारी ट्रेनें बंद, सारे बसेस बंद, दिल्ली में घुस नहीं सकते, इतना डर।
4: इसके दो मकसद हैं, एक तो इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाना, दूसरा ये बताना कि सारे विपक्षी दल ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा चाहते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने वालों में बड़े नाम थे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, सीपीएम के एमए बेबी, सीपीआई के डी राजा, समाजवादी पार्टी के राजीव राय, सुप्रिया सुले, उमर अब्दुल्ला, मनोज झा और वीसीके के टी तिरुमावलन। जब इंडिया गठबंधन के ये 10 नेता राष्ट्रपति द्रौपदी से मिलने राष्ट्रपति भवन के अंदर पहुंचे, तो बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हुई।
12: एक प्रकार से मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि जब हमने राष्ट्रपति को इलेक्शन चोरी वोट चोरी के बारे में बताया तो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने डिनाई नहीं किया। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने यह नहीं कहा कि हिंदुस्तान में चुनाव चोरी नहीं हो रहे हैं। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने उल्टा हमसे कहा कि आप सबूत हमारे पास लाइए, और यही ग्रुप खुशी से जो पूरा का पूरा सबूत हमने कलेक्ट किया है राष्ट्रपति के पास ले जाएगा, ले जाने के लिए तैयार है। पूरा देश जानता है, स्टूडेंट्स जानते हैं कि देश में वोट चोरी हो रही है। नरेंद्र मोदी इसके आर्किटेक्ट हैं, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार इसके इम्प्लीमेंटर्स हैं, और इस बात को राष्ट्रपति ने, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने आज डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में सोचेंगी और एक्शन लेंगी।
5: हमने तो पॉजिटिव आउटलुक से देखा है कि उन्होंने जो दो चार बात कहा कि आई विल इन्वेस्टिगेट, आई विल गो थ्रू द डिटेल्स एंड आम को सबूत चाहिए, यू प्लीज सेंड अस द डिटेल्स एविडेंस।
6: हमने डिमांड किया है कि फिर से एक बार ईवीएम को निकाल दो और बैलेट पेपर पे इलेक्शन कराया जाए, और दूसरा कि ये वोट चोरी जहाँ जहाँ हो गए वो सबूत उन्होंने मांगा है, वो सबूत हम लोग तैयार कर रहे हैं और सबूत हम दे देंगे।
4: ये लगातार चौथा दिन है जब ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने विपक्ष उतरा है। 6 अक्टूबर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च किया, पुलिस ने बैरिकेडिंग करके विपक्षी सांसदों को रोका और कुछ को हिरासत में लिया, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पुलिस को चकमा देकर आकाशवाणी भवन परिसर में धरना दे दिया और पूरे 8 घंटे तक धरना देने के बाद पुलिस ने राहुल और प्रियंका को जबरन हिरासत में लेकर उठाया। 7 अक्टूबर कांग्रेस ने पहले इंडिया गठबंधन के सांसदों को लंच दिया और फिर जंतर बंतर के लिए कूच किया। दिल्ली पुलिस ने दूसरे दिन भी विपक्षी सांसदों की बस को रोका तो राहुल और प्रियंका ने सड़क पर ही ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और आखिर में 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने राहुल और प्रियंका को फिर से हिरासत में लेकर धरना खत्म करवाया। 8 अक्टूबर तीसरे दिन इंडिया गठबंधन के सांसदों ने कनॉट प्लेस में लंच किया और बसों से सीधे राजघाट यानी गांधी समाधि के लिए कूच किया। यहां भी भारी फोर्स की तैनाती की गई, लेकिन राहुल प्रियंका समेत सभी विपक्षी सांसद गांधी स्थल पर बैठकर वापस आ गए। 9 अक्टूबर चौथे दिन ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलते हैं और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपते हैं।
13: हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम जनता की अदालत में तो है ही, हम सड़कों पर हैं और वोट चोरी इस देश में नहीं चल सकती है।
2: और अब हम आपको ये बता दें कि 10 अक्टूबर को ही राहुल गांधी चेन्नई में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। 10 अक्टूबर को ही कॉकरोच जनता पार्टी ने चेतावनी दे रखी है कि भले ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति या परमिशन नहीं दी, लेकिन वो फिर भी जंतर मंतर के लिए कूच करेंगे। सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रस्तावित प्रोटेस्ट के चलते दिल्ली को एहतियातन किले में तब्दील कर दिया गया। दिल्ली के सारे बॉर्डर्स पर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात हैं, तगड़ी चेकिंग चल रही है, 57 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, कई सारी ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं, दिल्ली किले में तब्दील।
4: इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ छिड़े संग्राम में एकजुटता दिखाई तो 10 अक्टूबर को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर कूच का ऐलान करके टेंशन बढ़ा रखी है।
14: इट इज आर डेमोक्रेटिक राइट कि अगर हम सरकार से किसी बात पे इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो हम अपनी बात को डेमोक्रेटिक और पीसफुल तरीके से रख सकते हैं। आज इस देश में हालात ये हो गए हैं कि एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट पर प्रोटेस्ट करने के लिए हमको प्रोटेस्ट करनी पड़ रही है। मतलब इतना तो ब्रिटिश राज में भी नहीं होता था। अभी मुद्दा तो सेकेंडरी हो गया है, अभी तो ये हो गया कि इनको जंतर मंतर पर पहुंचने ही मत दो। और जो पूरी लड़ाई है वो इसी बात पे थी कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है। हमारी लड़ाई, हमारे जो सवाल हैं, हमारी जो मांगे हैं वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। और जिस तरह से बीजेपी ज्ञानेश कुमार के बचाव में आई है, जिस तरह से तमाम राज्यों में जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर हमारे लोगों को डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, उससे हमारी लड़ाई और क्लियर हो रही है कि यस, बीजेपी एंड द इलेक्शन कमीशन आर वर्किंग टुगेदर, और इसी बात की तो सारी लड़ाई है हमारी।
4: जुलाई में हुए जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन पर दूध की जली दिल्ली पुलिस अक्टूबर में छाछ फूंक कर पी रही है। दिल्ली पुलिस बार बार कह रही है कि 10 अक्टूबर वाले इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है और उसके 3 कारण भी गिना रही है।
3: 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है, कोई भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा।
4: पहला, परमिशन 10 दिन पहले मांगनी होती है, जबकि सीजेपी ने 7 अक्टूबर को सिर्फ इंटीमेशन यानी सूचना दी है। दूसरा, पिछली बार परमिशन लेकर सीजेपी ने वादा खिलाफी की। तीसरा, मौजूदा लॉ एंड ऑर्डर के हालात को देखते हुए परमिशन नहीं दी जा सकती।
15: साहिल, मैं तो क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि मैं परमिशन मांगने नहीं गया था,
16: इन्फॉर्म करने,
15: मैं इन्फॉर्मेशन देने गया था, इंटीमेशन देने गया था फॉर्मल वे में। हम लोगों ने जब अनाउंस किया था, पुलिसिंग का पॉलिसी है कि दे वुड मॉनिटर व्हाट द सिचुएशन इज इन द कंट्री एंड इन दिल्ली, दिल्ली पुलिस वुड डू इट। तो उनको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन था कि क्या होने वाला है। 7 तारीख को फिर मैं गया, वहां पे मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन जो हम लोगों ने लेटर दिया उसमें हमने एसर्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज अस द राइट टू प्रोटेस्ट, लेकिन पुलिस के तरफ से रवैया बहुत खराब था. दे डिड नॉट से एनीथिंग. उन्होंने ये नहीं बोला कि देंगे नहीं देंगे. उन्होंने एक्नॉलेज किया लेटर को एंड एक स्टैंप डाल के हमें दे दिया. नन ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ दिल्ली पुलिस मेट मी. जबकि लास्ट टाइम उन्होंने 5 राउंड सीनियर ऑफिसर से हमें मिलवाया था. मैंने किया था लास्ट टाइम भी प्रोसेस, लेकिन इस बार बिल्कुल भी कोई सीनियर ऑफिसर मिलना नहीं चाह रहा था. And this is a new tactic that they have adopted.
16: What is the tactic you think that...
15: The tactic is to not allow any democratic dissent in the country.
4: लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि उन्हें परमिशन की कोई जरूरत नहीं है.
17: तो जब ज्ञानेश कुमार बिना किसी को बताए, बिना किसी से पूछे 13 करोड़ वोट डिलीट करता है, तो उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 19, क्या जरूरत है परमिशन की?
4: सीजेपी की चेतावनी को देखते हुए दिल्ली में जैसे किलेबंदी कर दी गई है. दिल्ली के सभी बॉर्डर पर फोर्स तैनात हैं, चेकिंग चल रही है, तो जंतर मंतर के आसपास कई स्तर की बैरिकेडिंग की गई है. दंगा रोधी वाहन भी तैनात किए गए हैं. 300 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. जगह जगह माइक लगाए गए हैं. 57 मेट्रो स्टेशन बंद हैं. दिल्ली निजामुद्दीन की 165 में से 38 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं.
18: मुझे लगता है कि अब बात थोड़ी उसके आगे चली गई है. एक ज्ञानेश कुमार को, जिसको हम एक ब्यूरोक्रेट कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेट ही वो, कोई मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, एक ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए अपने जम्मू कश्मीर से फोर्स बुला ली, अपने नक्सल एरिया से फोर्स बुला ली, आपसे आपको वो भी कम लगा, आपने सारे रास्ते बंद कर दिए, आपको वो भी कम लगा, आपने मेट्रोज बंद कर दिए, आपको वो भी कम लगा, आपने रेलवेज बंद कर दी. देश ही बंद कर दो ना, इलेक्शन बंद कर दो, देश ही बंद कर दो. आर्टिकल 19 गिव्स अस द राइट टू प्रोटेस्ट एंड जंतर मंतर इज अ डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट. अगर हम मुंबई में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अगर हम बेंगलोर में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो हम दिल्ली में क्यों नहीं कर सकते? क्या दिल्ली किसी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर चल रही है? मुंबई में पुलिस ने पूरा कोऑपरेट किया, बेंगलुरु में पूरा कोऑपरेट किया, दिल्ली में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, दिल्ली में कौन सा लॉ चल रहा है अलग से? तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि दिल्ली का लॉ बुक कोई और है क्या जो इंडिया से अलग है?
4: दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीजेपी के प्रदर्शन वाले अल्टीमेटम के चलते पुलिस सतर्क है, लेकिन दिल्ली में किलेबंदी और इतनी सख्ती को लेकर बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है. जी हां, सीजेपी के प्रदर्शन से पहले मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और कई ट्रेनों को रद्द करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, और ये याचिका सीपीएम के महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद एमए बेबी ने दाखिल की, और सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस भी हुई. साथ ही सीजीआई की तरफ से टिप्पणी भी की गई. चीफ जस्टिस की बेंच में कपिल सिब्बल ने कहा, दिल्ली में ट्रेनें रद्द, मेट्रो बंद, होटल बंद हैं. प्रशांत भूषण ने कहा, पूरी दिल्ली बंद कर दी है. गोपाल शंकर नारायणन ने कहा, 57 मेट्रो स्टेशन भी बंद किए हैं. इस पर सीजीआई ने कहा, सुबह तो ऐसा कुछ नहीं था. फिर जस्टिस बागची ने कहा कि प्रदर्शन का हक है, लेकिन कानून के हिसाब से इजाजत मांगिए, नहीं देते तो कोर्ट आइए. गोपाल शंकर नारायणन ने कहा, इसमें समय लगेगा, प्रोटेस्ट कल है. सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, आपको कुछ चीजों को रोकना ही होगा, उन्हें रोकने के लिए सिर्फ उतनी ही कार्रवाई करें जितनी जरूरी हो. सुप्रीम अदालत ने आयोजकों को बुलाया और कपिल सिब्बल आयोजकों को नहीं ला पाए. अदालत में पुलिस प्रशासन के एहतियाती कदमों को लेकर भी चर्चा हुई, और सरकार ने अनुपातिक तैयारियों का वादा किया, और कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की बात कही. एहतियातन दिल्ली पुलिस अब भी दिल्ली में आने जाने वालों पर नजर रख रही है. दिल्ली के बॉर्डर पर वाहनों की तलाशी जारी है. दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो.
2: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे किले में तब्दील हुई दिल्ली से आपकी जिंदगी पर क्या पड़ेगा असर. एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप देखते रहिए दस्तक.
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी. लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो. इन एसोसिएशन विद
20: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: माँ के पैरों की धूल माथे पर लगा, परदेश की गलियों में अपने वतन के गीत सुनो।
3: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
4: AU सोच बदलो और बैंक भी।
5: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
6: यार लोन भूल गया। मैरी
7: इट्स
6: जस्ट अ गुड बैंक ना।
8: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक।
6: स्मॉल फाइनेंस बैंक
8: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, माइक्रो मॉर्गेज लोन, गोल्ड लोन, प्री ओन्ड कार लोन, टू व्हीलर लोन।
9: देयर्स नथिंग स्मॉल अबाउट
6: अस। उज्जीवन, नथिंग स्मॉल अबाउट अस।
10: सर गैसो फास्ट की ग्रोथ तो चेक कीजिए।
11: गैसो फास्ट 27%,
10: इनो 9.2%।
12: गड़बड़ है।
13: गैसो फास्ट वाले जीरे का जादू चला रहे, इसीलिए इनके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गैसो फास्ट, इंडिया की एसिडिटी का असली इंडियन सॉल्यूशन।
14: आगे आगे,
15: अरे उधर
14: उधर,
15: करेक्ट करेक्ट।
16: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
17: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार। सर एक बार तुम ठुमका लगाने पर
18: मेरे पास एक आइडिया है।
17: क्या?
18: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है,
19: एक रॉकस्टार होता है, अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता,
20: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
21: मेरा ना सिंपल है, एक लड़की है, उसका भाई जेल में है, लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
19: कौन सी बनानी है?
22: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
23: इतने पेमेंट ऐप्स पर सेफ कौन सा?
24: तो स्विच टू भीम, एकदम सेफ और भरोसेमंद, रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं। पाओ 40 रुपए का कैशबैक 40 रुपए से ज्यादा की पहली पेमेंट पर। भीम ऐप से करो पे।
25: इट्स अ माय वे।
26: और वही कहाँ गए थे घूमने?
27: जीके मैक्स।
28: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
27: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
28: जेके वॉल मैक्स
27: बेस्ट पेंट,
28: जेके मैक्स।
27: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
29: ये डायबिटीज मुझे बार बार थका देता है,
30: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
29: अब मुझे जल्दी थकान नहीं होती। कपीवा डायफ्री जूस।
31: लव एंड केयर, द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट रेंज ऑफ रबर पेट टॉयज।
32: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर, तरक्की का ऑलराउंडर।
33: वक्त के साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले।
34: जिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड,
35: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
36: एक परिवार अटूट भरोसा।
37: इन एसोसिएशन विद
38: सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
39: कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन।
40: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
41: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो, उसकी परते हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक YouTube पर और बचिए हर क्राइम से।

0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दो दिन सड़कों पर संग्राम के बाद राहुल गांधी ने कल राजघाट का रुख कर लिया। तस्वीरें देखिए, बापू की समाधि की परिक्रमा करती प्रियंका गांधी वाड्रा और सामने बापू को श्रद्धांजलि देते राहुल गांधी। करीब दो घंटे तक राहुल, प्रियंका, खड़गे और इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद राजघाट पर ध्यान मुद्रा में बैठे रहे। राहुल गांधी के मुताबिक दिल्ली में सरकार विपक्ष को धरना प्रदर्शन करने नहीं दे रही है।
1: राज्यसभा और लोकसभा के 300 MPs पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। दो दिन से हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है, हमारे लोगों को मारा। रियलिटी ये है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार, मोहन भगवत ने क्रिमिनल कंस्पिरेसी करके हिंदुस्तान को हाईजैक किया है।
0: ये लगातार तीसरा दिन था जब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के सांसदों के साथ सड़कों पर उतरे थे। 6 अक्टूबर को राहुल और प्रियंका ने 8 घंटे आकाशवाणी भवन में धरना दिया, फिर पुलिस ने हिरासत में लेकर उन्हें उठाया। 7 अक्टूबर राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने जनपद पर लंच कर जंतर मंतर पर प्रदर्शन का प्लान बनाया। पुलिस ने रास्ते में बस रोकी तो राहुल और प्रियंका ने सड़क पर ही धरना दे दिया। पुलिस ने फिर राहुल और प्रियंका को हिरासत में लेकर धरने से उठाया। 8 अक्टूबर जब राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के सांसद ने पहले कनॉट प्लेस पर खाना खाया और फिर राजघाट पर गांधीगिरी दिखाई। कल के राजघाट वाले धरने में शिवसेना UBT और NCP शरद पवार गुट का कोई भी नुमाइंदा नहीं था, लेकिन TMC ममता गुट के सांसद राहुल के साथ मौजूद थे।
2: महात्मा गांधी हैज ऑलवेज स्पोकन अबाउट सत्याग्रह। सत्याग्रह टीचेस अस टू थिंग्स, दैट इफ यू हैव टू फॉलो दैट पाथ यू हैव टू शेड टू फियर्स इन लाइफ। वन इज द फियर ऑफ गोइंग टू प्रिजन, टू इज द फियर ऑफ डाइंग। सो इफ वी हैव टू टेक दैट पाथ ऑफ सत्याग्रह, एवरी पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट दिस टू फियर्स नीड्स टू बी शेड। BJP can only bully you by showing their might with regard to the agencies and all the institutions they have successfully homogenized.
3: चिराग जी, आपने सभी दलों को, यानी कि समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, सभी को बुला रहे हैं और 2027 में चुनाव भी है, क्या कुछ कनेक्शन?
4: मैं कतई आज के दिन को या आज के इस मंच को, आज के इस कार्यक्रम को राजनीतिक दृष्टि से जोड़ के नहीं दे सकता।
3: अगर इन केस NDA के साथ आप हैं यहाँ या 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हालांकि ये समय नहीं पूछने का, लेकिन फिर भी क्योंकि बड़ा उत्तर प्रदेश के लिहाज से है ये सवाल।
4: देखिए, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस कि अलायंस का क्या रूप होगा, क्या स्वरूप होगा, होगा कि भी नहीं होगा। गठबंधन की राजनीति में मैं, मेरी पार्टी, लंबे समय से हम लोग रहे हैं। VP सिंह जी की सरकार में भी गठबंधन की सरकार थी, वो देवेगौड़ा जी की सरकार हो, गुजराल साहब की हो, अटल जी की सरकार हो, मनमोहन जी की सरकार हो, या मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार हो, गठबंधन राजनीति का हिस्सा लंबे समय से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास रही है। ऐसे में हम लोग की सोच हमेशा रही है कि जहाँ पे गठबंधन हो अच्छी बात है, बट जहाँ पे गठबंधन अगर नहीं भी होता है तो पार्टी की तैयारी हर सीट पर हम लोग की रहनी चाहिए, ताकि पार्टी का विस्तार उस दृष्टि से हम लोग कर सकें। ऐसे में मुझे नहीं पता गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, नहीं होगा, बट 403 सीटों पे हमारी पार्टी तैयारी जरूर कर रही है, ये तय है, और चुनाव हम लोग जरूर लड़ेंगे।
3: दूसरे दलों के साथ भी जा सकते हैं जहाँ पर यूपी में?
4: देखिए, हमारा केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का NDA के साथ गठबंधन है। कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि अगर लोकसभा के चुनाव हो तो गठबंधन के बारे में कोई वैकल्पिक सोच रखी जाए। झारखंड में हम लोगों ने गठबंधन में लड़ा, दिल्ली में हम लोगों ने लड़ा, बट नागालैंड में मैंने अकेले चुनाव लड़ा, मेरे दो विधायक आज की तारीख में नागालैंड में भी हैं। तो ऐसे में जहाँ पे गठबंधन का स्वरूप, उत्तर प्रदेश में जैसे ये स्वरूप अभी तक तैयार नहीं हुआ है, तो ऐसे में जरूर हम लोग विकल्प पे भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं।
3: लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी। कल यानी 10 अक्टूबर को दिल्ली में सीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रदर्शन की अनुमति नहीं है, लेकिन सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दिपके प्रदर्शन करने पर अड़े हुए हैं और इसी प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट है। दिल्ली में कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से जबरदस्त पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि दिल्ली में कल क्या होगा। सेंट्रल दिल्ली पूरी तरह से बंद रहेगी। 57 मेट्रो स्टेशंस को बंद कर दिया गया है, कई सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली की सीमाओं पर जबरदस्त चौकसी।
8: बाजारों से लेकर बॉर्डर तक हाई अलर्ट पर पुलिस, जगह जगह दिल्ली पुलिस की बुनियादी।
9: नई दिल्ली में और सभी जगह धारा 163 BNSS लागू है।
8: 10 अक्टूबर यानी कल जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली किसी छावनी में तब्दील हो चुकी है। दावा यही है कि प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, लिहाजा भीड़ जुटी तो एक्शन होगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से लोगों को सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली अफवाहों से बचने की सलाह दी जा रही है।
10: किसी भी भड़काऊ संदेश या उकसावे में नहीं आए, जिम्मेदार नागरिक बने और कानून का पालन करें। अपने क्षेत्र की सुरक्षा में पुलिस और प्रशासन का साथ दें और अपने परिवार वाले और अपने बच्चों को इस बारे में समझाएं कि इस तरह की अननेसेसरी भीड़ में या ऐसे कोई प्रोटेस्ट में किसी में हिस्सा न लें।
8: ये वीडियो दिल्ली के चांदनी चौक का है। मस्जिद के केयर टेकर की माने तो बीते दिन स्थानीय पुलिस ने लोगों से जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट से दूर रहने की अपील की थी।
11: पुलिस अफसर जो यहाँ के बीट अफसर है ना, वो आए थे शाम के 5 बजे और उन्होंने ऐलान किया था कि प्रोटेक्शन जो हो रहा है जंतर मंतर पे, उसमें आदमी को नहीं जाना चाहिए और नहीं अपने बच्चों को जाने देना चाहिए। जी हाँ, यही उन्होंने ऐलान किया था। इस बात पे अमल करना चाहिए हर आदमी को।
12: कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक पुलिसकर्मी एक मस्जिद के अंदर जाकर के मोबाइल से पढ़ के एक अनाउंसमेंट कर रहा है, जिसमें वो लोगों को माइक पे बता रहा है कि किस तरीके से इस प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है और वो अपने बच्चों को भी समझाएं कि वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा ना बने। इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी मस्जिद के बाहर है। अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो ये चांदनी चौक में स्थित शाही मस्जिद है जिसके अंदर का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। यहीं पर दिल्ली पुलिस आई और यहां पर आकर के दिल्ली पुलिस ने अनाउंसमेंट की है और लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि जो कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है उसके लिए परमिशन नहीं मिली है और अपने बच्चों को भी वो समझाएं कि वो आगे जाकर के इस प्रोटेस्ट का हिस्सा ना बने क्योंकि लीगल एक्शन हो सकता है।
8: दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में भी दिल्ली पुलिस लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को बता रही है कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है, धारा 163 लागू है, लिहाजा प्रोटेस्ट में शामिल ना हो।
9: 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है। नई दिल्ली में और सभी जगह धारा 163 BNSS लागू है, जो कि कोई भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा। आप सभी को कोशिश कर दें, बता दें अपने बच्चे जो भी आस पड़ोसी उन सबको बता करके ब्रीफ कर दें कि वहां पर कोई भी परमिशन नहीं है।
8: तो दिल्ली की कुछ मस्जिदों से ऐलान किया गया है कि 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल ना हो।
13: इस ऐलान को गौर समाज फरमाए कि जो जंतर मंतर पर 8-9-10 तारीख को जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो इल्लीगल है, वहां पर कोई व्यक्ति ना जाए, इसलिए कि सरकार ने वहां पर धारा 173 लगाई हुई है। कृपया आप अजरात प्रशासन का साथ दें, कोई वहां ना जाए।
8: दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। बिना परमिशन सीजेपी को प्रदर्शन या धरना करने की इजाजत नहीं है।
14: क्या परमिशन मांगी गई, कब मांगी गई?
15: 7 तारीख को कांग्रेस जनता पार्टी ने एक परमिशन एप्लीकेशन दी थी, इंटीमेशन करके, जिसमें ये बताया गया कि वो सीईसी की अकाउंटेबिलिटी के रिगार्डिंग 10 तारीख को जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन जो इंटीमेशन की है उस पर गौर किया गया और ये पाया गया कि ये एप्लीकेशन इस्टेब्लिश्ड जो गाइडलाइन है उसके तहत हमारे पास नहीं आई है, बहुत ही कम समय में आई है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने उनका जो प्रीवियस कंडक्ट था उन्होंने जो हमारी लॉफुल डायरेक्शंस को नहीं फॉलो किया या उनकी जो अंडरटेकिंग दी गई थी उनके द्वारा उसको भी नहीं कंप्लाई किया। और प्रेजेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और पब्लिक सेफ्टी के मद्देनजर इस एप्लीकेशन जो थी उसको रिजेक्ट किया जाता है।
8: पुलिस की दलील है कि पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल सीजेपी की तरफ से नहीं रखा गया, हिंसा हुई, कई पुलिस वाले जख्मी हुए, लिहाजा अब की बार प्रदर्शन के नाम पर दिल्ली की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होगा।
16: 2 अक्टूबर से लेकर अब तक 27 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। पुलिस को अंदेशा है कि प्रदर्शन के नाम पर कुछ लोग दिल्ली के कानून और व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ सकते हैं। बीते दिनों मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस पर कई बार हमले हुए हैं और इसीलिए किसी अनहोनी या हिंसा को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से कई सारे कदम उठाए गए हैं। दर्जनों मेट्रो स्टेशंस बंद रहेंगे, ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, रूट डाइवर्ट्स कर दिए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली पुलिस के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी दिल्ली में तैनात कर दिया गया है। पूरी दिल्ली किले में तब्दील हो चुकी है।
8: सीजेपी का ऐलान यही है कि जंतर मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए 7 अक्टूबर को सीजेपी की तरफ से परमिशन मांगी गई थी लेकिन पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं दी गई। इसके बावजूद सीजेपी ने जंतर मंतर पहुंचने का ऐलान किया है। ऐसे में सीजेपी से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। जंतर मंतर को बैरिकेड से घेरा गया है, मतलब सीजेपी के समर्थकों को जंतर मंतर जाने से रोकने की प्लानिंग है। इसी कड़ी में नए सीसीटीवी और लाउड स्पीकर तक लगाए गए हैं।
17: जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली पुलिस की कोशिश ऐसी है कि कहीं कोई जमावड़ा एक जगह पर ज्यादा ना होने पाए ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो। कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिसमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के तहत जो कैमरे आते हैं जो जुड़े हुए हैं उन कैमरों को भी लगाया गया है। हालांकि कई ऐसे कैमरे हैं जो इस इलाके में पहले लगे हुए थे लेकिन आप देखिए इस खंभे पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको जो कैमरा नीचे लगा हुआ दिख रहा है ये अभी इंस्टॉल किया गया है। इसके ऊपर लाउड स्पीकर लगाया गया है जिससे लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप यहाँ पर इकट्ठे ना हो, ये गैर कानूनी है। तो पुलिस ने जगह जगह कंट्रोल रूम बना रखे हैं, एरियो को डिवाइड कर रखा है और हर एरिया की जिम्मेदारी एक आईपीएस स्तर के अधिकारी की है।
8: ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है। थाने के बाहर दिल्ली पुलिस की तरफ से पोस्टर पर चेतावनी लिखी हुई है। थाने के बाहर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं।
17: इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के ठीक बाहर जो पिछले कई दिनों से जंग का अखाड़ा बना हुआ है और इस थाने के बाहर की आप तैनाती देखिए, जैसे किले की बाहर पूरी सुरक्षा होती है उस तरीके से इस थाने की भी सुरक्षा के लिए बाहर बैरिकेड है। अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस गेट पर तैनात मिलेगी, दिल्ली पुलिस आपको तैनात मिलेगी और यहाँ पर चेतावनी भी लगाई गई है। ठीक आप देखिए बैरिकेड पर चेतावनी लगाई गई है कि BNSS की धारा 163 लागू है, अगर लोग जुटेंगे तो उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी।
8: जंतर मंतर की तरफ जाने वाले रास्ते की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है।
12: इस वक्त मैं जनपद रोड पर हूं और मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये जो सड़क है ये सीधा जंतर मंतर की तरफ जाती है। यहां से करीब 500 मीटर आगे ही वो धरना स्थल है जहां अमूमन लोग जाके बैठते हैं और धरना देते हैं। अगर आप यहां तैयारियां देखें तो इस पूरी सड़क को ट्रैफिक के लिए और पैदल मूवमेंट के लिए भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात भी कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, अगर आप देखें यहां आसपास करीब हर खंभे पर कैमरे लगा दिए गए हैं और ऐसे बड़े लाउड स्पीकर लगा दिए गए हैं। इन लाउड स्पीकर्स का ये काम है कि ये लगातार अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा होना इस वक्त गैरकानूनी है। इस पूरे इलाके में 163 BNSS की धारा लगी हुई है जो किसी भी तरह के प्रदर्शन को वर्जित करती है और अगर यहाँ पर कोई पहुंचता है या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोशिश करता है, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करता है या पुलिस वालों पर हमला करने की कोशिश करता है तो उनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
8: संसद मार्ग की तस्वीरें देखिए, यहां पर बैरिकेड को दूसरे बैरिकेड से जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने जंजीर और ताले का इस्तेमाल किया है।
17: इस वक्त हम संसद मार्ग पर मौजूद है, जहां पर सीजेपी की प्रस्तावित प्रोटेस्ट से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। और ये आप देखिए, ये जो बैरिकेड रखे गए हैं, यहां इन बैरिकेड में ये चेन्स लगाई जा रही है मोटी मोटी। इन चेन्स को पेच के जरिए अगर आप देखेंगे तो इनको पेच के जरिए इससे जोड़ दिया गया है बैरिकेड से, और नीचे की तरफ ऐसे लॉक सिस्टम लगाए गए हैं ताकि इस लॉक को दूसरा जो ये लॉक सिस्टम है, जो इस अगर हम कहें दूसरा बैरिकेड है, इस बैरिकेड में जो लॉक सिस्टम है इस चेन को इससे जोड़ा जा सके। यानी कि इन बैरिकेड को हटाना इतना आसान नहीं होगा। आप दरअसल पुलिस ने तैयारी की है जो इस पूरे प्रोटेस्ट से निपटने के लिए, क्योंकि परमिशन तो दी नहीं है और उसके कारण पुलिस ने बताया कि एक तो सिर्फ 3 दिन पहले एप्लीकेशन दी गई और दूसरा जो पिछला आचरण था परमिशन लेने के बाद प्रोटेस्ट का, उसको देखते हुए परमिशन डिनाई की जा रही है।
7: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर कल दिल्ली में जबरदस्त प्रदर्शन का ऐलान कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से किया गया। पिछले 4 दिनों से लगातार राहुल गांधी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें बाद में रिहा किया जा रहा है। यानी कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल गांधी के साथ साथ 19 विपक्षी दल भी सड़क पर उतरे हुए हैं, राष्ट्रपति से भी आज मिले। तो आखिर दिल्ली पुलिस को नाकेबंदी दिल्ली में करने की जरूरत क्यों पड़ी, इस रिपोर्ट में आइए हम आपको दिखाते हैं।
8: पुलिस की तरफ से दिल्ली वालों के नाम एक खत भी जारी किया गया है। खत में दिल्ली पुलिस ने जनता के हक और अपने फर्ज का अंतर समझाया है। यही नहीं, दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की आड़ में हिंसा वाली साजिश से जुड़े वीडियो जारी किए हैं।
18: प्रोटेस्ट में ये भी नोटिस किया है कि काफी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है।
19: भाई लेडी पुलिस को ये कह रहा है कि सामने कपड़े उतार देगी, ये कह रहा है भाई ये बंदा।
18: फीमेल पुलिस पर्सनल के खिलाफ भी इनडिसेंट लैंग्वेज और एक्शन का यूज हो रहा है। ये पुलिस को इंस्टिगेट करने के लिए, उनकी इमेज टार्निश करने के लिए किया जा रहा है। पर दिल्ली पुलिस फिर भी प्रोफेशनली अपने लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए अपनी ड्यूटी निभा रही है ग्राउंड पे, और हम लोग प्रोफेशनली सिटीजन की सेफ्टी के लिए आगे भी काम करते रहेंगे।
20: कुछ प्रोटेस्टर हैं, एक दिन वो एज ए जर्नलिस्ट बन के आते हैं और
21: इफ यू डिटेन मी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ जर्नलिस्ट, यस आई हैव अ कार्ड।
20: दूसरे दिन एज ए प्रोटेस्टर आते हैं, डिटेन होके जाते हैं,
21: मुझे याद करना आपसे भी।
20: हम ये बार बार उनको अपील भी करते रहते हैं कि आप अपना थोड़ा सा दूरी बना के रखें प्रोटेस्टर से, आप दूर से कवर करें, मगर फिर भी वो बीच बीच में आते हैं और हमारे कार्य में बाधा डालते हैं।
8: बीते दिन हुए प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भी मारपीट के इस वीडियो से सवालों के घेरे में हैं, जिसमें कांस्टेबल भूपेंद्र और कांस्टेबल देवेंद्र के साथ मारपीट हुई। आरोप है कि मारपीट करने वाले कांग्रेस वर्कर हैं। इस वीडियो में एक प्रदर्शनकारी दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल को लात मारता हुआ देखा जा सकता है। आज तक से बातचीत में दोनों पुलिस कर्मियों ने बताया कि उन्हें प्रदर्शन कर रहे लोग जानबूझकर टारगेट कर रहे थे। ये तस्वीर भी बीते दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। नेहा बोरा ने प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया था। आखिर क्या हुआ था, दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल ने पूरी कहानी सुनाई।
22: तो फ्रंट में हम थे, तो मैं ऊपर जाके उनको रोकने की जस्ट कोशिश कर रही थी, उन्होंने मेरे यहाँ से कंधा भी खींचा था। फिर मैंने जस्ट उनका कंधा हटाया तो वो मीडिया में गलत तरीके से पोस्ट कर दिया कि मतलब कुछ लोग गलत कमेंट भी कर रहे हैं। और उसके बाद वहाँ जो उनके साथ के लोग थे उन्होंने मेरा हाथ भी मोड़ा, पैर में चोट है, हाथ में चोट है, और मेरी वर्दी भी फाड़ दी गई वहाँ पे। और फिर उसके बाद मैंने अपने आप को बचाते हुए वहाँ से बैरिकेड से नीचे कूद गई थी मैं।
8: बीते दिनों हुए प्रदर्शनों से सबक लेते हुए अब दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है। ये तैयारी प्रदर्शन की आड़ में कानून को हाथ में लेने वालों से निपटने की है।
7: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: तेरा प्यार प्यार प्यार उनका बार सर एक बार रोटी थमका लगाने बस।
6: मेरे पास एक आइडिया है।
5: क्या?
6: एक डॉन के घर को 12 मुल्कों की पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है लेकिन वो घर को तोड़ नहीं पाए। रुंगटा TMT बार से जो बना है
7: एक रॉकस्टार होता है अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है दुनिया हिला पर स्टेज नहीं हिलता
8: क्योंकि वो मजबूत रुंगटा TMT से बना है।
9: मेरा ना सिंपल है एक लड़की है उसका भाई जेल में है। लड़की जेल तोड़ नहीं पा रही क्योंकि जेल ही TMT बार से बना है।
10: कौन सी बनानी है?
11: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
12: आ गया सोमवार और आ गए
13: चकमक चाचा।
12: एक कचौड़ी दो समोसा चकमक तेरा क्या भरोसा।
14: चकमक चाचा से सीधे चकमक है?
12: अरे नारा है दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है महिला लोग एकदम नारा आ रहा है जारी गूंज रहा ना।
14: लेकिन भैया नारे अरे फालतू में सब बेकार एकदम बेकार नारे होते थे हमारे टाइम।
12: अच्छा
14: सुनाए जेल के ताले टूटेंगे जेल के ताले टूटेंगे JP भाई छूटेंगे।
12: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए दो कुलचा एक बिरयानी इन नेताओं की खत्म कहानी।
14: अरे जमीन के चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में
12: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा शर्म करो।
14: अरे राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर।
12: अरे लाठी गोली खाएंगे इस्तीफा दे के जाएंगे।
14: अरे सुनो इस दीपक में तेल नहीं सरकार चलाना खेल नहीं।
12: अरे लाल फूल नीला फूल जंजी नंगे ब्यूटीफुल।
14: अरे बारी बारी सबकी बारी अब की बारी अटल बिहारी।
12: चाय गरम दूध गरम चकमक चाचा भी शरम
14: है।
12: हाँ
14: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
12: अरे मेरे सिर में दर्द है जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
15: हम जैसे इधर आओ।
16: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड। हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
17: दिनांक 7/10/2026 को श्री सौरभ दास को कन्वीनर कांग्रेस जनता पार्टी का एक एप्लीकेशन न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में रिसीव हुआ जिसके अनुसार ये इंटीमेशन दी गई कि 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट करेंगे रिगार्डिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और पाया गया कि उप सूचना अत्यंत ही अल्प समय में प्राप्त हुई है जबकि वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार जंतर मंतर पर कार्यक्रम आयोजित करने हेतु आवेदन कार्यक्रम की निर्धारित तिथि से कम 10 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ये उल्लेख करना भी इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस जनता पार्टी के पूर्व आचरण के अनुसार एक अलग अवसर पर पूर्व में दिए गए उनके द्वारा अंडरटेकिंग्स तथा लॉफुल डायरेक्शंस को भी नहीं फॉलो किया गया था। निर्धारित प्रक्रिया का पालन न किए जाने पर पूर्व में दिए गए कानूनी दिशा निर्देशों को नहीं पालन करने तथा वर्तमान में पब्लिक सेफ्टी लॉ एंड ऑर्डर एवं ट्रैफिक रेगुलेशन की स्थिति को देखते हुए जंतर मंतर पर प्रस्तावित धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है।

अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: मायावती सत्य निष्ठा के प्रतिज्ञा करती हूँ।
1: मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ।
2: मैं आदित्यनाथ योगी

0: राष्ट्रपति से मिलने के बाद विपक्ष ने सरकार पर और सख्त किया घेरा। बोले राहुल, वोट चोरी के हमारे आरोप पर महामहिम भी सहमत। सोमवार को चीफ जस्टिस को सौंपेंगे ज्ञापन। बीजेपी बोली, राहुल ने लांघी संवैधानिक सीमा। जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को नहीं मिली इजाजत। मेट्रो के 57 स्टेशन बंद। दिल्ली आने वाली कई सारी ट्रेनें हुई रद्द। कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा भी बंद। दिल्ली की किलेबंदी पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत। कहा, मक्खी मारने के लिए हथौड़ा आप नहीं चला सकते। सब कुछ ठप कर देने से आम लोग ना हो परेशान। रामलला के दर्शन करने जाएंगे एसपी अध्यक्ष अखिलेश। देवरिया में बोले, सांसदों के साथ जाऊंगा अयोध्या। सही मुहूर्त का इंतजार। और उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत पर पीएम मोदी का पोस्ट। कहा, इस जनादेश से मिलेगी हमें और मजबूती। अमित शाह बोले, राहुल के झूठ और दुष्प्रचार के बावजूद मिली हमें बड़ी जीत।
1: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक डॉक्टर को एक परफेक्ट मर्डर करना था। मर्डर, वो भी अपनी डॉक्टर पत्नी का। काफी प्लान करने के बाद आखिरकार उसने अपनी बीवी को मार डाला। उसने सचमुच कत्ल ऐसे किया था कि घर वाले तो छोड़िए, खुद पुलिस को भी शक नहीं हुआ। अब 6 महीने बीत जाते हैं, इसके साथ ही लोग इस कत्ल को भी भूलते जाते हैं। पर तभी 6 महीने बाद 6 महीने पुरानी एक ऐसी रिपोर्ट सामने आती है जिसकी वजह से यह परफेक्ट मर्डर अधूरा रह जाता है।

0: उनकी शादी को अभी महज 11 महीने ही हुए थे। दोनों पेशे से डॉक्टर थे और अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से। लेकिन इस नई नई शादी को साल भर का वक्त पूरा होने से पहले ही दोनों में से एक यानी डॉक्टर महेंद्र रेड्डी की नई नवेली दुल्हन डॉक्टर कृतिका रेड्डी की रहस्यमयी हालात में अपने ही घर में मौत हो गई। शुरू में तो घर वालों से लेकर पुलिस तक को ये मामला सामान्य मौत का लगा, लेकिन जब इस केस में पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो डॉक्टर कृतिका की मौत को लेकर वो सच्चाई सामने आई जिसने सिर्फ इस दंपति के घर वालों को ही नहीं बल्कि पूरे बेंगलुरु शहर को चौंका कर रख दिया। डॉक्टर कृतिका की मौत कोई नेचुरल डेथ नहीं थी बल्कि एक सोची समझी साजिश का नतीजा थी, यानी उनका कत्ल किया गया था और ये कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि खुद उनके पति ने किया था, शहर के जाने माने नौजवान गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने। डॉक्टर महेंद्र ने अपनी पत्नी को एनिस्थीसिया के हेवी डोज से ऐसी साइलेंट डेथ दी थी कि अगर इस केस की सही तरीके से जांच नहीं होती तो शायद ये सच्चाई कभी सामने ही नहीं आती। इस कत्ल की पूरी साजिश और उसके पीछे की वजह तो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर इस वारदात के एक साल बाद अब इस केस से जुड़ा ऐसा क्या सामने आया है जिसने इस मामले को लेकर पुलिस की तफ्तीश का दायरा ही बदल दिया है। असल में ये वो तथ्य है जिसने न सिर्फ डॉक्टर कृतिका के कत्ल में डॉक्टर महेंद्र रेड्डी का हाथ होने की खतरनाक बात को एक बार फिर से साबित किया है बल्कि ये भी बता दिया है कि डॉक्टर रेड्डी ने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए कैसी और कितनी खतरनाक प्लानिंग की और कत्ल के बाद सबूत मिटाने के लिए क्या क्या किया।
1: अब मुझे कोई कॉल और मैसेज बिल्कुल मत करना, कोई पूछे तो बता देना कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। रही बात हमारे कॉल रिकॉर्ड की तो इसके बारे में कोई पूछे तो कहना कि तुमने कुछ मदद के लिए मुझसे बात की थी।
0: ये वो सीक्रेट मैसेज है जो डॉक्टर महेंद्र की ओर से अपनी पत्नी की हत्या के कुछ ही देर बाद अपनी गर्लफ्रेंड को भेजा गया और अब यही मैसेज उसकी ताबूत में अंतिम कील साबित होने वाला है। ये कोई पहला और आखिरी मैसेज नहीं है बल्कि बीवी के कत्ल के बाद अपना जुर्म छुपाने के लिए डॉक्टर महेंद्र ने अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे कई मैसेजेस किए थे जो अब पुलिस के हाथ लग चुके हैं। असल में पुलिस ने इस मामले की गहराई में उतरने के लिए कुल 10,34,000 से भी ज्यादा डिजिटल फाइल्स की जांच की जो डॉक्टर महेंद्र रेड्डी के मोबाइल फोन, फोन में मौजूद एप्स और उसके दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में दर्ज थी। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी इतना शातिर था कि वो फोन पे ऐप से ही अपनी गर्लफ्रेंड से चैट किया करता था। अकेले इसी ऐप से कत्ल के बाद डॉक्टर महेंद्र रेड्डी और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच 485 से ज्यादा चैट पुलिस के हाथ लगे हैं। इनमें कुछ में प्यार मोहब्बत की बातें हैं तो कुछ में कत्ल के बाद सबूत मिटाने की साजिश। इस मामले की जांच करते हुए बेंगलुरु पुलिस ने डॉक्टर महेंद्र रेड्डी के तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो बरामद किए ही थे, इंटरनेट की दुनिया में मौजूद उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स की भी जांच की थी जिसमें ऐसे ऐसे सबूत सामने आए जिन्हें देखकर जांच करने वाले पुलिस अधिकारी भी चकरा गए। इन इलेक्ट्रॉनिक सबूतों ने केस की पूरी तस्वीर बदल के रख दी। अपनी बीवी के कत्ल के बाद एक मैसेज में डॉक्टर रेड्डी ने अपनी गर्लफ्रेंड को लिखा कि अब उससे कोई उनके रिलेशनशिप को लेकर पूछताछ करे तो वो ये बता दे कि वो सिर्फ दोस्त हैं। असल में डॉक्टर महेंद्र रेड्डी खुद पर से शक की सुई हटाने के लिए दुनिया को ये बताना चाहता था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं, इसीलिए वो खास तौर पर अपनी लेटेस्ट गर्लफ्रेंड को फोन कर ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वो किसी के पूछताछ करने पर अपनी रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी न बताए ताकि कोई उसकी बीवी के कत्ल के मोटिव का पता ही न लगा सके। लेकिन पुलिस की तफ्तीश में अब उसकी ये शातिर चाल बेनकाब हो चुकी है। वैसे बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, एक मैसेज में तो डॉक्टर रेड्डी ने ऐसी बात लिख दी है जो इस केस में उसका कबूलनामा साबित हो सकता है, कानून की भाषा में कहें तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन।
1: मैंने कृतिका को मार दिया है और मुझे पता है कि अब मुझे जेल जाना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि कातिल कभी खुश नहीं रह सकता और अब मैं ऐसे ही जीऊंगा।
0: किसी कत्ल के बाद कातिल का अपने मोबाइल फोन से अपनी गर्लफ्रेंड को भेजे गए ऐसे किसी मैसेज से ज्यादा कंक्रीट एविडेंस और क्या हो सकता है। फिलहाल चैट की सूरत में ये सबूत पुलिस के हाथ लग चुके हैं। पुलिस ने इन चैट को रिट्रीव करने के लिए साइबर फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स की मदद ली। लेकिन ये तो रही चैट की सूरत में सामने आए सबूतों की बात। पुलिस को छानबीन में पता चला है कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद उसने अपने घर वालों के साथ साथ ससुराल वालों को गुमराह करने की भरपूर कोशिश तो की ही, इस केस के कई गवाहों को भी प्रभावित करने की कोशिश की। पुलिस सूत्रों की माने तो डॉक्टर रेड्डी की एक नहीं बल्कि कई गर्लफ्रेंड्स थी और उसने तकरीबन सभी की सभी गर्लफ्रेंड्स को किसी न किसी तरीके से बड़े चुपके से ये कहा था कि उसने सिर्फ उसी के साथ रहने के लिए अपनी पत्नी डॉक्टर कृतिका को मार दिया। यानी उसने एक कत्ल की वारदात से अपनी कई गर्लफ्रेंड्स को इम्प्रेस करने की कोशिश की। अब डॉक्टर महेंद्र के जुर्म की पोल तो खुल चुकी है, लेकिन इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई आइए आपको बताते हैं।

0: दोनों की शादी के ठीक पहले की है, जब कश्मीर की वादियों में एक जोड़े ने अपनी शादी से पहले कुछ इसी अंदाज में अपना प्री वेडिंग शूट करवाया। ये दो लोगों की जिंदगी की एक यादगार शुरुआत थी। लेकिन अभी साल भर का वक्त भी नहीं गुजरा था कि इस जोड़े में से एक की मौत हो चुकी है और दूसरा कुछ इस हाल में अपना चेहरा छुपाए पुलिस की गाड़ी में बैठा है। लेकिन ऊपर से बेहद खुशगवार दिखने वाली इस कहानी की ऐसी हॉरर एंडिंग आखिर कैसे हुई? शादी के महज चंद महीनों के अंदर लड़की की जान कैसे चली गई, ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि तस्वीरों में दिखने वाला ये कपल आखिर है कौन, उनकी पहचान क्या है। तो सुनिए, इस नौजवान का नाम है डॉक्टर महेंद्र रेड्डी, जो पेशे से एक जनरल सर्जन है, जबकि तस्वीरों में दिख रही डॉक्टर महेंद्र रेड्डी की पत्नी का नाम है डॉक्टर कृतिका, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट यानी त्वचा रोग विशेषज्ञ थी। कहानी बेंगलुरु की है, जहां के इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी साइंसेज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट में डॉक्टर महेंद्र रेड्डी सर्जन के तौर पर जुड़ा हुआ था, जबकि डॉक्टर कृतिका प्राइवेट प्रैक्टिस किया करती थी। 24 मई 2024 बेंगलुरु, यही वो तारीख थी जब घरवालों की रजामंदी से दो डॉक्टरों ने हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे को अपना लिया। चूंकि दोनों ही परिवार आर्थिक रूप से काफी सक्षम था, घरवालों ने अपने बच्चों की शादी में भी पैसा जमकर खर्चा और इस मोमेंट को यादगार बना दिया। और तो और, लड़की के पिता ने अपनी बेटी और दामाद को रहने के लिए बेंगलुरु के इस पॉश इलाके में 3 करोड़ का ये घर भी गिफ्ट कर दिया। लेकिन ठीक 11 महीने बाद 24 अप्रैल 2025, इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने इन दोनों परिवारों के साथ साथ उन्हें जानने वाले तमाम लोगों को दहला कर रख दिया। क्योंकि यही वो तारीख थी जब महज 28 साल की कृतिका की एकाएक जान चली गई। एक रात पहले वो अपने घर के बिस्तर पर ऐसी सोई कि अगली सुबह उनकी नींद ही नहीं खुली। ये डॉक्टर महेंद्र ही था जिसने 24 अप्रैल की सुबह अपने ससुराल वालों से लेकर कुछ करीबी रिश्तेदारों को फोन कर ये बताया कि डॉक्टर कृतिका बेहोश हो चुकी है और वो उसे लेकर अस्पताल जा रहा है। एक डॉक्टर के घर में ऐसी मेडिकल इमरजेंसी यकीनन थोड़ी हैरान करती थी, लेकिन फिर लोगों ने सोचा कि चलो, तबीयत तो किसी की भी खराब हो सकती है। सारे लोग आनन फानन में अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल में कृतिका के घर वालों को वो खबर सुनने को मिली जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। डॉक्टरों ने बताया कि कृतिका की जान जा चुकी है। वैसे तो कृतिका की अपने आप में एक मेडिकल हिस्ट्री थी जिसके मुताबिक उन्हें गैस्ट्रो से रिलेटेड कई परेशानियों के साथ साथ ब्लड प्रेशर और दूसरे कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस थे। लेकिन चूंकि उनकी मौत महज चंद घंटों में बेहद रहस्यमय हालात में हुई, अस्पताल वालों ने नियम के मुताबिक इसकी जानकारी लोकल पुलिस को दी और पुलिस ने इस सिलसिले में एक मेडिको लीगल केस रजिस्टर कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। वैसे तो डॉक्टर कृतिका के पति से लेकर घर के तमाम लोग ये बता रहे थे कि कृतिका को अक्सर पेट से जुड़ी परेशानियां रहा करती थी और खुद डॉक्टर महेंद्र ही उनका इलाज भी कर दिया करता था। लेकिन फिर जिस तरह से इस छोटी सी उम्र में अचानक कृतिका की जान चली गई, उसे एक सामान्य मौत मान लेना हर किसी के लिए मुश्किल था। लिहाजा कृतिका की मौत का सच जानना जरूरी था। लेकिन इस छानबीन में एक अड़चन थी। अड़चन ये कि खुद कृतिका का पति मौत का सच पता करने के लिए करवाए जाने वाले पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं था। वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी की मौत के बाद फॉरेंसिक मेडिसिन के एक्सपर्ट्स उसके शव के साथ चीड़फाड़ करें। लिहाजा वो बार बार पुलिस से लेकर अस्पताल के डॉक्टरों को इस बात के लिए राजी करने की कोशिश कर रहा था कि कृतिका का पोस्टमार्टम करवाना जरूरी नहीं है। वो खुद एक जनरल सर्जन है और उसे कृतिका के हेल्थ कंडीशंस की अच्छी जानकारी है और वो खुद मौत की वजहों को लेकर पूरी तरह निश्चित है। ऐसे में पोस्टमार्टम गैर जरूरी है। और तो और, डॉक्टर कृतिका के पिता अपने दामाद यानी महेंद्र की इस जज्बाती ख्वाहिश को देखकर इस बात के लिए राजी हो गए कि उनकी बेटी के शव का अब पोस्टमार्टम करवाने की जरूरत नहीं। मगर वो तो कृतिका की बड़ी बहन थी जो मौत की वजहों की तह तक जाने के लिए पोस्टमार्टम करवाने पर अड़ गई और उसकी जिद के आगे उनके बाकी के घर वालों को भी झुकना पड़ गया। पुलिस और अस्पताल के डॉक्टर तो खैर पहले से ही पोस्टमार्टम करवाने के हक में थे, लिहाजा डॉक्टर महेंद्र की मर्जी न होते हुए भी बेंगलुरु के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कृतिका के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। चंद दिनों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन तमाम शको शुभा के उलट रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे डॉक्टर कृतिका की मौत में किसी साजिश की बात पता चलती। असल में शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कॉज ऑफ डेथ पूरी तरह साफ नहीं हो सकी। ऐसे में डॉक्टरों ने कृतिका का विसरा सुरक्षित रख लिया। विसरा यानी शरीर के अंदर के वो अंदरूनी अंग जिनकी रासायनिक जांच से मरने वाले शख्स के शरीर में किसी जहर, दवाई या ऐसी ही किसी चीज का पता चलता है जिससे उसकी मौत हुई हो। हमारे देश में आमतौर पर विसरा रिपोर्ट सामने आने में औसतन महीने भर का वक्त तो लगता ही है, और अगर मामला ऐसा हो जिसमें शक से ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटी हो तो फिर विसरा की रिपोर्ट आने में और भी देर हो जाती है। इत्तेफाक से कृतिका का मामला भी कुछ ऐसा ही था। विसरा सुरक्षित रखा गया और बात आई गई हो गई, लेकिन कृतिका की मौत के करीब 6 महीने के बाद जैसे ही इस मामले में विसरा रिपोर्ट सामने आई, मामला एकाएक सिर के बल पलट गया। कृतिका की विसरा रिपोर्ट में उसे एक ऐसा जहर दिए जाने की बात सामने आई जिसका शरीर पर ऊपरी तौर पर अक्सर कोई असर नहीं दिखता। ये जहर कुछ और नहीं बल्कि ऑपरेशन से पहले मरीजों को दी जाने वाली बेहोशी की वो दवाई थी जिसे एनिस्थीसिया कहते हैं। पुलिस की माने तो डॉक्टर कृतिका के शरीर में प्रोपोफोल नाम का तत्व अच्छी खासी मात्रा में मिला जो एनिस्थीसिया में होता है, और ये बात इसका सबूत था कि मौत से पहले उन्हें एनिस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया। क्योंकि मरने के पहले से लेकर मौत के समय तक डॉक्टर कृतिका के साथ उसका पति डॉक्टर महेंद्र लगातार मौजूद था, इस मामले में शक उसी पर गया। इस बीच डॉक्टर कृतिका के घर वालों ने डॉक्टर महेंद्र के खिलाफ थाने में कृतिका के कत्ल की रिपोर्ट भी लिखवा दी और पुलिस ने FIR और विसरा रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। बेंगलुरु से सगय राज के साथ आज तक ब्यूरो।
1: वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: जेके मैक्स वाइप इजी,
1: दीवारों के दाग का जवाब सिर्फ जेके मैक्स वाइप इजी।
2: वक्त के साथ कदम मिलाकर सेनको ने नए टेक्नोलॉजीज भी अपनाए, पर बिना अपने रूट्स को भूले।
3: टिन रूट्स की बुनियाद है 100% प्योर गोल्ड, ऑनेस्ट प्राइसिंग, कस्टमर फर्स्ट एटीट्यूड,
4: एंड सेनको सपोर्ट्स एनवायरमेंट केयर और वुमेन एम्पावरमेंट।
5: एक परिवार, अटूट भरोसा।

0: मोबाइल पर वीडियो देखते देखते अचानक कोई प्रोडक्ट दिख जाए और कुछ ही मिनट में उसकी खरीदारी भी हो जाए। भारत में विज्ञापन की दुनिया तेजी से इसी दिशा में बढ़ रही है। कंपनियां टीवी, अखबार और होर्डिंग्स के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्यादा दांव लगा रही हैं। इसकी वजह ग्राहकों की बदलती आदतें हैं। खासकर युवा पीढ़ी खरीदारी का फैसला लेने से पहले सोशल मीडिया, वीडियो प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन रिव्यू का सहारा ले रही है। यही वजह है कि विज्ञापन की रणनीति भी तेजी से बदल रही है। आंकड़ों के मुताबिक कुल विज्ञापन बाजार में डिजिटल की हिस्सेदारी 60% से ज्यादा है। डिजिटल विज्ञापन राजस्व में 2025 में करीब 26% बढ़ोतरी हुई थी। कनेक्टेड टीवी और सोशल मीडिया पर फोकस बढ़ने का ये असर है। इस बदलाव के पीछे देश की बड़ी युवा आबादी भी है। BCG और स्नैप के एक अध्ययन के मुताबिक भारत में जेंजी की आबादी करीब 37.7 करोड़ है और देश के कंजम्पशन पर इसका बड़ा प्रभाव है। दरअसल भारत में जेंजी की आबादी करीब 37.7 करोड़ है, वहीं देश के कंजम्पशन खर्च का 43% हिस्सा जेंजी से प्रभावित है, यानी जेंजी से प्रभावित कंजम्पशन करीब 860 अरब डॉलर है। युवा ग्राहक पहले सोशल मीडिया पर प्रोडक्ट खोजते हैं, फिर उसके रिव्यू देखते हैं और उसके बाद खरीदारी का फैसला लेते हैं। ऐसे में कंपनियों का मकसद केवल विज्ञापन दिखाना नहीं, ग्राहक को प्रोडक्ट की खोज से खरीदारी तक के पूरे सफर में साथ रखना है। यही वजह है कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी D2C मॉडल भी तेजी से बढ़ा है। कई ब्रांड पारंपरिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनलों की जगह सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए ग्राहकों तक पहुंच रहे हैं। इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक इस बाजार का आकार 2020 में 5 अरब डॉलर से कम था, जो 2025 में बढ़कर 12 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इसमें सोशल मीडिया D2C ब्रांड्स की खोज और खरीदारी का अहम जरिया बन गया है। साफ है कि विज्ञापन की दुनिया में केवल ज्यादा दिखाई देना काफी नहीं है। कंपनियों के लिए जरूरी है कि वो वहीं मौजूद रहे जहां ग्राहक अपना सबसे ज्यादा समय बिताता है। मोबाइल स्क्रीन पर बढ़ती मौजूदगी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ताकत बता रही है कि आने वाले वर्षों में विज्ञापन की ये दौर और तेज हो सकती है। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ये जगह जहां पर मैं खड़ा हूं, ये जगह है शहीद पथ से जुड़ी हुई और इसको प्लासियो मॉल के सामने की, जहां पर देख सकते हैं कि जो पानी है उसका स्तर बढ़ गया है लगातार। और वजह ये है कि यहां पर पास में ही गोमती नदी है, यानी जो इकाना स्टेडियम, ये जो प्लासियो मॉल आप देख रहे होंगे, इस प्लासियो मॉल के पास में ही इकाना स्टेडियम है और उसके पास गोमती नदी है, जहां पर जलस्तर बढ़ा चुकी। गोमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे पहले भी हमने देखा गोमती का जलस्तर बढ़ने के बाद फैजुल्लागंज एरिया में भी बाढ़ जैसे हालात बने। और अब इसके बाद ये जो एरिया है जहां पर प्लासियो मॉल है, यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो सड़कों पर है वो पानी आ गया है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतें भी निकलने में हो रही हैं। आप देखेंगे दूर तक जो गाड़ियां जा रही हैं, ये सभी भी इसी पानी से होकर जा रही हैं। हालांकि इसके जो दूसरी तरफ है, अगर वो हम आपको एरिया दिखाएंगे, इस तरीके से जो गाड़ियां निकल रही हैं वो भी आप देखेंगे, तो इसी बारिश यानी कि जो पानी है नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद यहां से निकल कर गुजर कर जा रही हैं। और ये ठीक प्लासियो मॉल के सामने की स्थिति है।

0: गोमती नदी की बाढ़ में डूबा लखनऊ का फैजुल्लागंज इलाका। पानी लोगों के घरों में अड्डा जमा चुका है, कई लोगों ने छतों पर आसरा ले रखा है। चारों तरफ पानी ही पानी और बाढ़ की आपदा से हैरान परेशान है।
1: राजधानी लखनऊ और फैजुल्लागंज का ये एरिया जहां मैं इस समय मौजूद हूं, वहां पर आप देख सकते हैं पानी अभी इससे ज्यादा भी आगे है। अभी हम शुरुआत में है और वहां पर पानी का स्तर ये है कि हमारे घुटनों तक पानी आ गया है।
0: फैजुल्लागंज के लोग मुश्किल में हैं, जिनके आसपास रिश्तेदार हैं वो वहां शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन घरों की रखवाली के लिए कई लोग अभी भी बस्ती में हैं। नगर निगम और प्रशासन की टीमें इलाके में मुस्तैद नजर आ रही हैं। लोगों को चिकित्सा सहायता देने के लिए एक शिविर बनाया गया है, तो पल पल की जानकारी के लिए एक अस्थायी कॉल सेंटर भी यहां काम कर रहा है।
2: यहाँ जो कंट्रोल रूम बना हुआ है, यहाँ पे हमारे अमीनों लगे हुए हैं, 6 नंबर्स हैं जिसपे जिनको भी शिकायतें होती हैं वो उस नंबर पे कॉल करके यहाँ शिकायतें दर्ज कराते हैं। शिकायतें ये लोग दर्ज करने के पश्चात जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में इसको डाला जाता है, उनके लोकेशन, उनके क्या डिमांड है, उनके नाम पते के साथ। फिर हमारे जो लेखपाल लगे हैं वो उसको ट्रैक करके संबंधित लेखपालों को उस बोर्ड के माध्यम से भेजा जाता है, उनको राहत सामग्री जो भी चाहिए होता है।
1: वैसे में प्रशासन 24/7 काम कर रहा है। इस बाढ़ में कब तक पानी कम होगा ये तो नहीं पता है, लेकिन जिस स्तर पर पानी बढ़ा हुआ, ऐसे में लोगों के लिए अभी मुश्किलें थमती नजर नहीं आ रही हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन संदीप दुबे के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: भूमि उत्तर प्रदेश है, ये भूमि उत्तर प्रदेश है।
5: मैं मायावती सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ।
6: मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ।
7: मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ।

0: अयोध्या के रसूलाबाद में भगवत भक्ति का मंच सजा है, जहां हजारों हजार की तादाद में भक्त हैं, मंच पर महंत हैं। समाजवादी रंग के गुब्बारों से सजे पंडाल हैं, श्री राधे कृष्ण की भक्ति है, नेता हैं, समर्थक हैं। ये चुनावी सियासत की शक्ति है। अयोध्या में रामलला के मंदिर से महज 10 से 12 किलोमीटर दूर ये भक्ति कथा का पंडाल पिछले हफ्ते भर से सजा है। यहाँ इलाके के समाजवादी पार्टी उम्मीदवार तेज नारायण और पवन पांडे रोज कथा सुन रहे हैं, आरती भजन पूजन कर रहे हैं। और अब इसी मंच पर अखिलेश यादव का इंतजार है, क्योंकि भक्ति कथा की शुरुआत से पहले ही पवन पांडे ने अखिलेश और डिंपल को इस पुण्य आयोजन का निमंत्रण सार्वजनिक तौर पर दे रखा था।
1: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आगमन हो रहा है, वो कथा का श्रवण करेंगे, व्यासपीठ से आशीर्वाद लेंगे और देवकुल क्षेत्रवासियों का मान भी करेंगे।
0: अखिलेश यादव अयोध्या में जिस जगह पर भागवत कथा सुनने पहुंच रहे हैं, वहां से श्रीराम जन्मभूमि मंदिर बमुश्किल 12 किलोमीटर दूर है, लेकिन खबर है कि अखिलेश रामलला के दर्शन करने नहीं जाएंगे। हालांकि चर्चा है कि अखिलेश यादव अपने अयोध्या दौरे पर राम जन्मभूमि मंदिर तो नहीं, लेकिन हनुमानगढ़ी मंदिर दर्शन करने जा सकते हैं। इससे पहले 2022 के चुनाव के दौरान 25 फरवरी को अखिलेश यादव हनुमानगढ़ी गए थे और गदा हाथ में लेकर संतों का आशीर्वाद भी लिया था। अखिलेश रामलला के दर्शन करने जाएं या ना जाएं, उनकी सहयोगी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय एक दिन पहले ही अयोध्या दौरे से लौटे हैं और उन्होंने रामलला के दर्शन भी किए हैं। अजय राय सलाह देते हैं कि अयोध्या की पावन भूमि पर आने वालों को भगवान राम के दर्शन जरूर कर लेने चाहिए।
2: अब तो उनकी अपनी इच्छा है, पर अयोध्या धार्मिक नगरी है, ये धर्म की नगरी है, सभी के लिए भगवान का आशीर्वाद है, सबको आशीर्वाद मिलता है।
3: चुनाव तो लेकिन राम जी के नाम पे एक बार लड़ रहे हैं, तो राम जी का दर्शन भी नहीं करने
2: जा रहे। भगवान राम तो कणकण में विराजमान है, हम सबके दिल में भगवान राम है और भगवान का स्मरण करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए।
0: दरअसल 2027 के चुनाव करीब आते ही सियासी दलों और नेताओं का धर्म प्रेम सार्वजनिक रूप से दिखने लगा है और इसके पीछे कहीं न कहीं वोट जोड़ने का लक्ष्य नजर आता है। चाहे वो अयोध्या से 100-125 किलोमीटर दूर रायबरेली के ऊंचा हार में यूपी के मंत्री मनोज पांडे की ओर से कराई गई शिव महापुराण कथा हो या फिर समाजवादी पार्टी नेता पवन पांडे की ओर से कराई जा रही भागवत कथा। प्रखर हिंदुत्व बनाम सॉफ्ट हिंदुत्व की इस सियासी पेशगी में हर दल की नजर वोटर पर है। दरअसल जिस मनोज पांडे की ओर से आयोजित कथा के मंच पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए थे, वो मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के ही नेता थे, लेकिन पाला बदलने के बाद रायबरेली के इलाके में बीजेपी के पास एक मजबूत ब्राह्मण चेहरा था, जिसके पास समाजवादी पार्टी का पारंपरिक गैर यादव वोट बैंक भी था। अब अखिलेश ने उसी का मुकाबला करते हुए ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पवन पांडे को यूपी चुनाव का सबसे पहला उम्मीदवार अयोध्या सीट से घोषित कर रखा है। मयंक शुक्ला के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक। भूमि उत्तर प्रदेश है, ये भूमि उत्तर प्रदेश है।
4: मैं मायावती सत्यनिष्ठा के प्रतिज्ञा करती हूँ।
5: मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ।
6: मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ।
7: ये भूमि उत्तर प्रदेश है, ये भूमि उत्तर प्रदेश है।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: राष्ट्रपति से मिलने के बाद विपक्ष ने सरकार पर और सख्त किया घेरा। बोले राहुल, वोट चोरी के हमारे आरोप पर महामहिम भी सहमत, सोमवार को चीफ जस्टिस को सौंपेंगे ज्ञापन। बीजेपी बोली, राहुल ने लांघी संवैधानिक सीमा। जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को नहीं मिली इजाजत, मेट्रो के 57 स्टेशन बंद, दिल्ली आने वाली कई सारी ट्रेनें हुई रद्द, कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा भी बंद। दिल्ली की किलेबंदी पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, कहा मक्खी मारने के लिए हथौड़ा आप नहीं चला सकते, सब कुछ ठप कर देने से आम लोग ना हो परेशान। रामलला के दर्शन करने जाएंगे एसपी अध्यक्ष अखिलेश, देवरिया में बोले सांसदों के साथ जाऊंगा अयोध्या, सही मुहूर्त का इंतजार। और उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत पर पीएम मोदी का पोस्ट, कहा इस जनादेश से मिलेगी हमें और मजबूती। अमित शाह बोले, राहुल के झूठ और दुष्प्रचार के बावजूद मिली हमें बड़ी जीत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। कल यानी कि 10 अक्टूबर को राहुल गांधी चेन्नई में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, तो कल ही कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली में चेतावनी दे चुकी है। भले ही दिल्ली पुलिस उन्हें जंतर मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दे, लेकिन फिर भी वो जंतर मंतर के लिए कूच जरूर करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रस्तावित प्रदर्शन के चलते दिल्ली को किले में बदल दिया गया है और ये एहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस ने किया है। दिल्ली की सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल सीमाओं पर तैनात हैं। दिल्ली के 45 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली आने वाली बहुत सारी ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं और दिल्ली रेलवे स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर 4 बजे तक की सभी ट्रेनें कैंसिल कर दी गईं।
2: इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ छिड़े संग्राम में एकजुटता दिखाई, तो 10 अक्टूबर को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर कूच का ऐलान करके टेंशन बढ़ा रखी है।
3: इट इज आवर डेमोक्रेटिक राइट कि अगर हम सरकार से किसी बात पे इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो हम अपनी बात को डेमोक्रेटिक और पीसफुल तरीके से रख सकते हैं। आज इस देश में हालात ये हो गए हैं कि एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट पर प्रोटेस्ट करने के लिए हमको प्रोटेस्ट करनी पड़ रही है। मतलब इतना तो ब्रिटिश राज में भी नहीं होता था। अभी मुद्दा तो सेकेंडरी हो गया है, अभी तो ये हो गया है कि इनको जंतर मंतर पर पहुंचने ही मत दो। और जो पूरी लड़ाई है वो इसी बात पे थी कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है। हमारी लड़ाई, हमारे जो सवाल हैं, हमारी जो मांगे हैं, वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। और जिस तरह से बीजेपी ज्ञानेश कुमार के बचाव में आई है, जिस तरह से तमाम राज्यों में जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पे हमारे लोगों को डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, उससे हमारी लड़ाई और क्लियर हो रही है कि यस, बीजेपी एंड द इलेक्शन कमीशन आर वर्किंग टुगेदर, और इसी बात की तो सारी लड़ाई है हमारी।
2: जुलाई में हुए जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन पर दूध की जली दिल्ली पुलिस अक्टूबर में छाछ फूंक कर पी रही है। दिल्ली पुलिस बार बार कह रही है कि 10 अक्टूबर वाले इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है और उसके 3 कारण भी गिना रही है।
4: 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है, कोई भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा।
2: पहला, परमिशन 10 दिन पहले मांगनी होती है, जबकि सीजेपी ने 7 अक्टूबर को सिर्फ इंटीमेशन यानी सूचना दी है। दूसरा, पिछली बार परमिशन लेकर सीजेपी ने वादा खिलाफी की। तीसरा, मौजूदा लॉ एंड ऑर्डर के हालात को देखते हुए परमिशन नहीं दी जा सकती।
5: साहिल, मैं तो क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि मैं परमिशन मांगने नहीं गया था,
6: इन्फॉर्म करने,
5: मैं इन्फॉर्मेशन देने गया था, इंटीमेशन देने गया था फॉर्मल वे में। हम लोगों ने जब अनाउंस किया था, पुलिसिंग का पॉलिसी है कि दे वुड मॉनिटर व्हाट द सिचुएशन इज इन द कंट्री एंड इन दिल्ली, दिल्ली पुलिस वुड डू इट, तो उनको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन था कि क्या होने वाला है। 7 तारीख को फिर मैं गया, वहां पे मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन जो हम लोगों ने लेटर दिया उसमें हमने एसर्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज अस द राइट टू प्रोटेस्ट, लेकिन पुलिस के तरफ से रवैया बहुत खराब था. दे डिड नॉट से एनीथिंग. उन्होंने ये नहीं बोला कि देंगे नहीं देंगे. उन्होंने एक्नॉलेज किया लेटर को एंड एक स्टैंप डाल के हमें दे दिया. नन ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ दिल्ली पुलिस मेट मी. जबकि लास्ट टाइम उन्होंने 5 राउंड सीनियर ऑफिसर से हमें मिलवाया था. मैंने किया था लास्ट टाइम भी प्रोसेस, लेकिन इस बार बिल्कुल भी कोई सीनियर ऑफिसर मिलना नहीं चाह रहा था. एंड दिस इज अ न्यू टैक्टिक दैट दे हैव अडॉप्टेड.
6: व्हाट इज द टैक्टिक यू थिंक दैट
5: द टैक्टिक इज टू नॉट अलाउ एनी डेमोक्रेटिक डिसेंट इन द कंट्री.
2: लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि उन्हें परमिशन की कोई जरूरत नहीं है.
7: तो जब ज्ञानेश कुमार बिना किसी को बताए बिना किसी से पूछे 13 करोड़ वोट डिलीट करता है, तो उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 19, क्या जरूरत है परमिशन की.
2: सीजेपी की चेतावनी को देखते हुए दिल्ली में जैसे किलेबंदी कर दी गई है. दिल्ली के सभी बॉर्डर पर फोर्स तैनात हैं, चेकिंग चल रही है. तो जंतर मंतर के आसपास कई स्तर की बैरिकेडिंग की गई है. दंगा रोधी वाहन भी तैनात किए गए हैं. 300 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. जगह जगह माइक लगाए गए हैं. 57 मेट्रो स्टेशन बंद हैं. दिल्ली निजामुद्दीन की 165 में से 38 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं.
8: मुझे लगता है कि अब बात थोड़ी उसके आगे चली गई है. एक ज्ञानेश कुमार को, जिसको हम एक ब्यूरोक्रेट कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेट ही है वो, कोई मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है. एक ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए अपने जम्मू कश्मीर से फोर्स बुला ली, अपने नक्सल एरिया से फोर्स बुला ली. आपसे आपको वो भी कम लगा, आपने सारे रास्ते बंद कर दिए. आपको वो भी कम लगा, आपने मेट्रोज बंद कर दिए. आपको वो भी कम लगा, आपने रेलवेज बंद कर दी. देश ही बंद कर दो ना, इलेक्शन बंद कर दो, देश ही बंद कर दो. आर्टिकल 19 गिव्स अस द राइट टू प्रोटेस्ट एंड जंतर मंतर इज अ डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट. अगर हम मुंबई में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अगर हम बेंगलोर में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो हम दिल्ली में क्यों नहीं कर सकते. क्या दिल्ली किसी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर चल रही है? मुंबई में पुलिस ने पूरा कोऑपरेट किया, बेंगलुरु में पूरा कोऑपरेट किया. दिल्ली में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, दिल्ली में कौन सा लॉ चल रहा है अलग से? तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि दिल्ली का लॉ बुक कोई और है क्या जो इंडिया से अलग है.
2: दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीजेपी के प्रदर्शन वाले अल्टीमेटम के चलते पुलिस सतर्क है. लेकिन दिल्ली में किलेबंदी और इतनी सख्ती को लेकर बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है. जी हां, सीजेपी के प्रदर्शन से पहले मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और कई ट्रेनों को रद्द करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई. और ये याचिका सीपीएम के महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद एमए बेबी ने दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस भी हुई. साथ ही सीजीआई की तरफ से टिप्पणी भी की गई. चीफ जस्टिस की बेंच में कपिल सिब्बल ने कहा दिल्ली में ट्रेनें रद्द, मेट्रो बंद, होटल बंद हैं. प्रशांत भूषण ने कहा पूरी दिल्ली बंद कर दी है. गोपाल शंकर नारायणन ने कहा 57 मेट्रो स्टेशन भी बंद किए हैं. इस पर सीजीआई ने कहा सुबह तो ऐसा कुछ नहीं था. फिर जस्टिस बागची ने कहा कि प्रदर्शन का हक है, लेकिन कानून के हिसाब से इजाजत मांगिए, नहीं देते तो कोर्ट आइए. गोपाल शंकर नारायणन ने कहा इसमें समय लगेगा, प्रोटेस्ट कल है. सीजीआई सूर्यकांत ने कहा आपको कुछ चीजों को रोकना ही होगा, उन्हें रोकने के लिए सिर्फ उतनी ही कार्रवाई करें जितनी जरूरी हो. सुप्रीम अदालत ने आयोजकों को बुलाया और कपिल सिब्बल आयोजकों को नहीं ला पाए. अदालत में पुलिस प्रशासन के एहतियाती कदमों को लेकर भी चर्चा हुई और सरकार ने अनुपातिक तैयारियों का वादा किया और कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की बात कही. एहतियातन दिल्ली पुलिस अब भी दिल्ली में आने जाने वालों पर नजर रख रही है. दिल्ली के बॉर्डर पर वाहनों की तलाशी जारी है. दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो.
0: मुंबई के मलाड में नवरात्रि गरबा कार्यक्रम में आधार कार्ड देखने के साथ तिलक और कलावा बांधकर ही अब आपको एंट्री मिलेगी. इस कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी के विधायक अतुल भातखलकर कर रहे हैं. कार्यक्रम में एंट्री को लेकर जागरूकता वाले पोस्टर्स और होर्डिंग्स चर्चा का विषय बने हुए हैं. बीजेपी नेता भातखलकर ने कहा कि गरबा के नाम पर हिंदू लड़कियों के खिलाफ जो साजिशें चल रही हैं उसे हम सफल नहीं होने देंगे.
9: आने वाली नवरात्रि में मलाड पूर्व में जो बीजेपी एमएलए अतुल भातखलकर द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया पंडाल है, उसमें इस वक्त हम लोग मौजूद हैं. और ये पंडाल इस साल काफी चर्चा में है। चर्चा इसीलिए उठ रही है क्योंकि वीएचपी की पहले गाइडलाइन रहती है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ हम ये पहला मंडल मुंबई में देख रहे हैं जहां पर पासिस जो दिए जा रहे हैं वो आधार कार्ड चेक कर दिए जा रहे हैं। तिलक जो है वो लगाया जाएगा जब आप एंट्री करते हैं इस पंडाल में। इस वक्त बीजेपी कॉरपोरेटर सिद्धार्थ शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि ये क्या क्या मेजर्स आप लोगों ने लगाए हैं और वो क्यों लगाए हैं, इस बारे में विस्तार से बता दें।
10: तो क्यों लगाया है, सबसे पहले उसके बारे में आपको बताता हूं कि लव जिहाद ये हमने देखा है किस प्रकार से षड्यंत्र करके हमारे देश की डेमोग्राफी चेंज करने का काम किया जा रहा है। लव जिहाद के ऊपर दो पिक्चरें भी बनाई गई है, केरला स्टोरी एंड केरला स्टोरी 2। हमने ये भी देखा है कि जब न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी बनते हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा मूल रूप से उद्देश्य था वो यही था कि हम इस मुंबई सिटी की डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देंगे, हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। और उसके लिए लव जिहाद इज द बेसिक स्टेप जहां से डेमोग्राफी चेंज चालू करने का एक षड्यंत्र या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बनाने वाले या रचने वाले ऐसे विकृत मानसिकता जो आरोपी मानसिकता के लोग हैं उनके विरुद्ध ये लव जिहाद के बैनर्स हमने यहां पे लगाए हैं। हमारी हिंदू बहन बेटियों को हमको ये बताना है कि आपकी बात सुनने के लिए हम तैयार खड़े हैं। अगर कोई कुधर्मी, कोई लव जिहाद का आरोपी अगर आपके साथ में कुछ गलत व्यवहार करता है तो हम आपको बचाने के लिए हैं। आप उनके सामने प्रति उत्तर जिस प्रकार से कानून में देने का अधिकार दिया गया है सेल्फ डिफेंस में, आप सेल्फ डिफेंस में हर वो चीज कर सकते हो जो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लगता है और वो आपको इम्यूनिटी लॉ ने दी हुई है और उसके लिए हम आपके साथ में लीगली भी खड़े हैं, ये हमने मैसेज देने का काम किया है।
9: क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया इवेंट है, आपका ये भी लक्ष्य होगा कि जो प्राइवेट इवेंट्स हो रहे हैं उसमें भी ये गाइडलाइंस ये फॉलो होनी चाहिए, तो क्या मलाड में और आसपास जगहों पर ये इम्प्लीमेंटेशन ऐसे रूल्स बने, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं?
10: ऐसा है कि मलाड पूरा हिंदू मय हो चुका है, हिंदू जाग उठा है मलाड का और हर जगह अब ये चेक करके कि क्या वो विकृत मानसिकता का व्यक्ति है, क्या वो गलत मानसिकता से हमारे पंडाल में आ रहा है, इसके लिए ये चेकिंग करने के लिए हर जगह हमने विनंती की है कि आप तिलक लगाइए और कलावा बांध के ही उनको अंदर आ दीजिए। देखिए बेसिकली क्या है ना, हम हमारे देवी की आराधना यहाँ करते हैं और हमारे हिंदू धर्म में जब देवी की आराधना की जाती है तो उसके पहले हम स्वाभाविकता से एक तिलक लगाते हैं और कलावा बांधते हैं। जब भी हम खुद भी पूजा करने बैठते हैं तो पंडित जी हमको पहले तिलक लगाते हैं फिर कलावा बांधते हैं एंड देर आफ्टर अपनी पूजा चालू होती है। तो वही हम वहां पे कर रहे हैं कि भाई आप देवी की आराधना करने के लिए अगर आप इस स्थल पे आ रहे हो तो देवी की आराधना करने के लिए पहले जो तिलक लगाना चाहिए और कलावा बांधना चाहिए यह आपको करना पड़ेगा।
0: इस बार मॉनसून में काफी कम बारिश हुई जिससे मुंबई को पानी की सप्लाई करने वाली 7 झीलों में भी हर वर्ष से काफी कम पानी जमा हुआ, जहां विपक्ष इस बात की आशंका व्यक्त कर रहा है कि मुंबई में पीने के पानी की कमी हो सकती है। तो बीएमसी के मेयर ऋतु तावड़े ने साफ कर दिया कि मुंबई के पास मई 2027 तक का पानी सुरक्षित है, लेकिन मेयर ऋतु तावड़े ने मुंबई वालों से पानी बचाने की साथ ही अपील भी की है। क्यों?

0: कम बारिश की वजह से महाराष्ट्र का 75% से ज्यादा हिस्सा सूखे की चपेट में है। ऐसे में मुंबई वालों की प्यास बुझाने वाला मोडक सागर डैम इस साल 70% ही भर पाया है। फिर भी गनीमत है कि इस साल मुंबई को पानी की किल्लत नहीं झेलनी पड़ी, क्योंकि मई 2027 तक का पानी बीएमसी के पास सुरक्षित है। मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने बीएमसी में विपक्ष के नेता किशोरी पेडणेकर के साथ पानी की सप्लाई करने वाली 7 झीलों में से 2 झीलों मोडक सागर और तानसा का दौरा किया।
1: मुंबई में पानी की पूर्ति करने वाली जो 7 झीलें हैं उसमें से 1 झील है मोडक सागर, और मोडक सागर के ही डैम पर इस समय हम मौजूद हैं। तस्वीरों में देखें किस तरीके से इस डैम को बनाया गया है, और वाकई में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण डैम है इस वजह से क्योंकि मुंबई में बसे लाखों लोगों की प्यास जो है ये डैम बुझाता है, ये पानी बुझाता है। आपको बताया कि मुंबई के वेस्टर्न घाट पर इस डैम को बकायदा बनाया गया है, और इस समय जायजा लेने के लिए हम भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। जहां तक भी आपकी नजरें जाएं, बहुत ही खूबसूरत नजारा तो साथ ही साथ दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा चिंता का विषय भी है क्योंकि जिस तरीके से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने ये बताया कि इस बार मौसम ने सिर्फ और सिर्फ 95% ही बरसात की है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत कमी इस बार मुंबई में हो सकती है पानी को लेकर के। कटौती अभी करेंगे या नहीं, जो 10% की बात हो रही थी इस पर भी अभी विचार विमर्श करना बाकी है। मई महीने तक का पानी जो है बकायदा सेविंग रखा गया है, अगर फिर भी कम पड़ता है तो महाराष्ट्र के दूसरे झीलों से उधार लिया जाएगा, बीएमसी उधार लेगी पानी और उसके बाद पूर्ति करेगी। लेकिन अगर इस तरह का माहौल अगले साल भी रहा, बरसात बहुत ज्यादा नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है मुंबई करो को।
0: पानी बचाने के मकसद से बीएमसी ने तय किया है कि स्विमिंग पूल कंस्ट्रक्शन और मनोरंजन क्लबों को सप्लाई होने वाली पानी पर काफी हद तक रोक लगाई जाएगी। पानी की किल्लत को देखते हुए मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने कहा है कि मुंबई में चल रहे 10% पानी कटौती को आगे बढ़ाना है या रोकना है, इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की जाएगी। साथ ही मेयर ने मुंबई करों से पानी बचाने की अपील भी की है।
1: एक सबसे अहम सवाल ये है जो हम सभी को सताया जा रहा है, मुंबई करों को भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या उन्हें डरने की आवश्यकता है, पानी की कमी होने वाली है? आपने जायजा लिया, क्या देखा, क्या कहेंगे?
2: मुंबई कर को डरने की जरूरत नहीं है, ऐसी परिस्थिति तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ के जो कैचमेंट है वो अच्छी तरह से फुलफिल है, लेकिन एल निनो का जो प्रभाव है वो प्रभाव 2027 तक दिखाई दे रहा है। अगर ऐसी परिस्थिति है तो आज के तारीख में पानी है, लेकिन हम वो गारंटी नहीं दे सकते कि आने वाले फरवरी मार्च में पानी उतना मिलेगा मुंबईकर को, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसीलिए जो हमने मई महीने में जो 15 तारीख को पानी खपत जो हमने जाहिर किया था, उसी को हम उस डिसीजन को हमने स्टेग्नेंट रखा है, उसका डिसीजन हमको अभी स्टेग्नेंट रखना है या उठाना है, उसके बारे में हम महाराष्ट्र सरकार से बातचीत करने वाले। लेकिन अगर आज की तारीख को अगर हम देखने को जाए तो मुंबईकर को पानी मिलेगा, लेकिन वो पानी मुंबईकर को बहुत संभाल के यूज करना पड़ेगा।
0: मॉनसून में कम बारिश की वजह से महाराष्ट्र सरकार को आधिकारिक रूप से सूखे का ऐलान करना पड़ा था।
1: मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने ये कहा है कि इस समय मुंबई को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मई तक का पानी इस समय सेव करके रखा गया है। मैं तानसा झील पर मौजूद हूं, ये वो झील है जो मुंबई को पानी सप्लाई करती है, 7 झीलों में से एक है, और देखिए किस तरीके से पानी लबालब भरा हुआ है। लेकिन बारिश बहुत ज्यादा कम हुई है इस साल, इसलिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है, और अगर अगले साल बारिश नहीं हुई तो बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है मुंबईकर को। आपको तानसा के बारे में बताएं तो लगभग 145 अरब लीटर पानी इसमें होता है हमेशा ही, और तानसा जो है वो जंगलों के बीच एक ऐसा झील है जिसे सालों पहले बनाया गया था, मुख्य झील है, और मुंबई को पानी सप्लाई करने में बहुत ही ज्यादा अहम योगदान यहां पर किया जाता है। आपको बता दें कि मुंबई की मेयर साथ ही साथ बीएमसी कुछ पत्रकारों को लेकर के झीलों का और डैम का जायजा करने के लिए पहुंचे हुए हैं।
0: इधर पानी की किल्लत की सबसे बड़ी वजह पानी की चोरी भी है। आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में 34% पानी की चोरी होती है, जिनमें अवैध तरीके से टैंकर सप्लाई और मीटर में खपले जैसे मामले हैं।
3: हमने जायजा लिया है ये सब पानी के जो झीले, वहाँ एक ध्यान में बात आ गई है कि 96.8 ये था जो हमारे मराठी में कहते हैं बाष्पीकरण हो रहा है, वो अभी 94 हो गए। इसका मतलब है आस्ते आस्ते पानी कम हो रहा है, तो पानी अच्छी तरह रहने के लिए सबको स्ट्रिक्ट करना चाहिए, जो कमर्शियल एक्टिविटीज है वो सब बंद होना चाहिए। बिल्डिंग का काम जनवरी से शायद बंद करना पड़ेगा। जो चोरी हो रही है, जो पानी लीकेज हो रहा है या टैंकर माफिया ये करे, उनके ऊपर कंट्रोल लाना चाहिए, तो ही सर्व सामान्य जो हमारे मुंबई करे उनको पानी मई एंड तक अच्छी तरह मिलेगा।
0: सूखे के संकट के बीच बीएमसी के एक ऐसे प्रस्ताव पर भी हंगामा हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए 8 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके मुंबई की सड़कों और पेड़ों की धुलाई की जाएगी। वहीं जालना जिले में सूखे की स्थिति गंभीर होती जा रही है, ऐसे में अब जल स्रोतों की सुरक्षा के लिए प्रशासन को पुलिस का पहरा लगाना पड़ रहा है। धामना बांध के पानी पर इन दिनों पुलिस की निगरानी है। उधर महाराष्ट्र के लातूर में सूखे और फसल बर्बाद होने से हताश 60 साल के किसान ने अपने ही खेत में पेड़ से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घर वाले बता रहे हैं कि बैंक लोन और खेत में सूख रही खरीफ की फसल के चलते उन्होंने मौत को गले लगा लिया। लातूर में 15 दिन में चौथे किसान की आत्महत्या से सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ में भी सूखे का संकट लगातार गहराता जा रहा है। अकोला में खरीफ की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो रही हैं। अब सबसे बड़ा संकट खेती के बाद पीने के पानी का खड़ा हो गया है, इसीलिए अकोला शहर में महानगर पालिका ने पानी की सप्लाई 10 दिन में एक बार करने का फैसला लिया है। लेकिन इसी जल संकट के बीच शहर में चल रहे सड़क निर्माण के दौरान महानगर पालिका की पाइपलाइन टूट गई, जिससे हजारों लीटर पानी बह गया।
4: विदर्भ में सबसे कम बारिश और सूखे की मार झेल रहे अकोला में जो है दिन ब दिन पानी के क्राइसिस बढ़ती जा रही है, जल किल्लत की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसको लेकर कल जिलाधिकारी ने विशेष SOP यहां पर जारी की है, जिसमें पानी ना जाया जाए, ये सबसे बड़ी हिदायत दी है।
0: सूखे के संकट से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार दावा कर रही है कि वो किसानों की सुविधा के लिए हर तरह से उनकी मदद कर रही है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, अकोला से धनंजय साबले, जालना से गौरवशाली के साथ अनिकेत जाधव, लातूर आज तक।
5: मुंबई के पवई में IIT बॉम्बे कैंपस में गुरुवार रात निर्माणाधीन साइट के लेबर कैंप में गैस सिलेंडर लीकेज होने से आग लग गई। इस हादसे में 2 बच्चों समेत कुछ 5 लोग झुलस गए। मजदूरों के बच्चे लीकेज देखने गए थे, तभी सिलेंडर में तेजी से आग फैल गई और आग की लपटें दूर तक फैल गई, जिसके बाद चीख पुकार मच गई और ये बच्चे झुलस गए।
6: बीती रात मुंबई के पवई स्थित IIT बॉम्बे के अंदर गैस सिलेंडर में लीकेज के बाद आग लग गई थी। इस हादसे में 5 लोगों के झुलसने की खबर है। इस वक्त हम मौजूद है IIT बॉम्बे के पास, जहां पर देख सकते हैं ये IIT बॉम्बे का अंदर जाने का रास्ता है। जो राजावाड़ी अस्पताल से जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक रात करीब 10:30 के करीब जो है सिलेंडर में लीकेज के बाद आग लगी थी। इस हादसे में कुल जो है 5 लोग जो है झुलस गए थे। सभी लोगों को यहां से राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उन सभी 5 में से 4 को बेहतर इलाज के लिए कस्तूरबा अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
5: मुंबई मेट्रो में एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: और आ गए
9: चकमक चाचा,
8: एक कचौड़ी, 2 समोसा, चकमक तेरा क्या भरोसा।
10: चकमक चाचा से सीधे चकमक है?
8: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रही, गूंज रहा नारा।
10: लेकिन भैया नारा अरे फालतू में सब बेकार, एकदम बेकार। अरे होते थे हमारे टाइम।
8: अच्छा
10: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, JP भाई
8: छूटेंगे। दो कुलचा, 1 बिरयानी, इन नेताओं की खत्म कहानी।
10: अरे जमीन की चकबंदी में, जमीन की चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में?
8: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
10: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
8: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा दे के जाएंगे।
10: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
9: अरे लाल फूल, नीला फूल, जंजी नंग है ब्यूटी फूल।
10: अरे बारी बारी, सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी।
9: चाय गरम दूध।

0: गया सोमवार और आ गए
1: चकमक चाचा।
0: एक कचौड़ी, दो समोसा, चकमक तेरा क्या भरोसा।
2: चकमक चाचा से सीधे चकमक है।
0: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगा गूंज रहा ना।
2: लेकिन भैया नारा अरे फालतू में सब बेकार एकदम बेकार नारे होते थे हमारे टाइम।
0: अच्छा
2: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
0: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी, इन नेताओं की खत्म कहानी।
2: अरे जमीन के चकबंदी में, जमीन के चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में।
0: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
2: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
0: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा लेके जाएंगे।
2: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
0: अरे लाल फूल, नीला फूल, जंजी नंगे ब्यूटीफुल।
2: अरे बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी।
0: चाय गरम, दूध गरम, चकमक चाचा भी शरम। हाँ
2: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
0: अरे मेरे सिर में दर्द है जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
3: हम जैसे, इधर आओ।
4: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
5: आपका प्रोटेस्ट कल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा?
6: मुझे लगता है कि अब बात थोड़ी उसके आगे चली गई है। एक ज्ञानेश कुमार को, जिसको हम एक ब्यूरोक्रेट कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेट ही वो, कोई मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, एक ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए अपने जम्मू कश्मीर से फोर्स बुला ली, अपने नक्सल एरिया से फोर्स बुला ली, आपसे आपको वो भी कम लगा, आपने सारे रास्ते बंद कर दिए, आपको वो भी कम लगा, आपने मेट्रोज बंद कर दिए, आपको वो भी कम लगा, आपने रेलवेज बंद कर दी। देश ही बंद कर दो ना, इलेक्शन बंद कर दो, देश ही बंद कर दो, हर हर मोदी, घर घर मोदी वैसे ही डिक्लेयर कर दो, वन नेशन वन पार्टी, वन नेशन वन इलेक्शन भी क्यों, वन नेशन वन पार्टी डिक्लेयर कर दो ना। क्या चल रहा है ये? आर्टिकल 19 गिव्स अस द राइट टू प्रोटेस्ट एंड जंतर मंतर इज अ डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट। अगर हम मुंबई में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अगर हम बेंगलोर में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो हम दिल्ली में क्यों नहीं कर सकते? क्या दिल्ली किसी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर चल रही है? मुंबई में पुलिस ने पूरा कोऑपरेट किया, बेंगलुरु में पूरा कोऑपरेट किया, दिल्ली में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, दिल्ली में कौन सा लॉ चल रहा है अलग से?

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: मुंबई मेट्रो में एक बार फिर से आपका। नवरात्र में माँ दुर्गा की आराधना के लिए गरबा और डांडिया खेला जाता है, लेकिन अकोला में इस बार गरबा का अंदाज कुछ अलग है। डांडिया की जगह यहाँ हाथों में तलवार लेकर गरबा खेलने की प्रैक्टिस लड़कियों से करवाई जा रही है। विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी की ओर से महिलाओं और लड़कियों को गरबे के साथ तलवारबाजी के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। उद्देश्य है भक्ति के साथ शक्ति, आत्मबल और आत्मरक्षा का संदेश देना। गुजरात के नवसारी में गरबा करने वाला रोबोट सुर्खियों में है। ये रोबोट कैसे रंग बिरंगी स्टाइलिश ड्रेस में गरबे के स्टेप कर रहा है, लोग इसके साथ सेल्फी लेते हैं। ढोल के थाप पर गरबा करने वाला ये रोबोट इंटरनेट पर वायरल है। आप भी देखिए गरबे के रंग बिरंगे इस रोबोट को।

0: मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
1: एक कचौड़ी, दो समोसा, चकमक, तेरा क्या भरोसा?
2: चकमक चाचा से सीधे चकमक है?
1: अरे नारा है, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, महिला लोग एकदम नारा लगाए जा रहे, बुझ रहा ना।
2: लेकिन भैया नारा अरे फालतू सब बेकार, एकदम बेकार। अरे होते थे हमारे टाइम।
1: अच्छा
2: सुनाए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेपी भाई छूटेंगे।
1: अच्छा तो हमारे टाइम वाले सुनिए, दो कुलचा एक बिरयानी, इन नेताओं की खत्म कहानी।
2: अरे जमीन के चकबंदी में, जमीन के चकबंदी में क्या फाइनेंस बंदी में?
1: ठंडी चाय गरम करो चकमक चाचा, शर्म करो।
2: अरे राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर।
1: अरे लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा दे के जाएंगे।
2: अरे सुनो, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं।
1: अरे लाल फूल, नीला फूल, जंजी नंगे ब्यूटीफुल।
2: अरे बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी अटल बिहारी।
1: चाय गरम, दूध गरम, चकमक चाचा भी शरम
2: है।
1: हाँ,
2: जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है।
1: अरे मेरे सिर में दर्द है, जिसका कारण मर्द है आप जैसा।
3: हम जैसे? इधर आओ।
4: हम जैसे मर्द नहीं होते किसी नारे से ऑफेंड, हम तो भैया करते हैं हर सही मुद्दे को डिफेंड।
1: आई चाचा, खेल रहा।

0: 해. 붐이 우탈프라데시 해. 예, 붐이 우탈프라데시 해.
1: मैं मायावती सत्यनिष्ठा के प्रति यांग करती हूँ।
2: मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ।
3: मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ।

0: जंतर मंतर पर प्रस्तावित धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है।
1: तो अब जब साफ है कि सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीजेपी के प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस की इजाजत नहीं है, कानून व्यवस्था का हवाला देकर पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है, तो ऐसे में सवाल है कि जब कांग्रेस जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन पर अड़ी हुई है तो क्या दिल्ली की सड़कों पर शनिवार को एक बार फिर संग्राम दिखेगा? क्या एक बार फिर सीजेपी कार्यकर्ताओं और दिल्ली पुलिस के बीच टकराव दिखेगा? दरअसल दिल्ली पुलिस पहले ही साफ कर चुकी है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए कम से कम 10 दिन पहले अनुमति लेना अनिवार्य है। साथ ही यहां 1000 से ज्यादा लोगों के प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है, लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी दिल्ली पुलिस की इन दलीलों को मानने को तैयार नहीं दिख रही है। यही वजह है कि सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में किलेबंदी की गई है। सीजेपी के 10 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त है। दिल्ली की सीमाओं पर निगरानी बढ़ाई गई है। यूपी, हरियाणा और राजस्थान से लगने वाले बॉर्डर पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस के मुताबिक इलाके में धारा 163 लागू है, जिसके तहत किसी भी तरह के जुटाव को अवैध माना जाएगा। दरअसल जुलाई महीने में हुए प्रदर्शन और बवाल से भी दिल्ली पुलिस ने सबक लिया है। पुलिस ने लोगों से प्रदर्शन में शामिल न होने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है। एहतियातन 10 अक्टूबर को दिल्ली में शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। ये तस्वीरें पुरानी दिल्ली की एक मस्जिद की हैं, जहां पुलिसकर्मी लोगों से अपील करता नजर आ रहा है कि किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन में शामिल ना हो। दिल्ली पुलिस की कोशिश यही है कि सीजेपी के आंदोलन के ऐलान के बीच किसी भी तरह का टकराव ना हो, दिल्ली में हालात बिगड़ ना सके, एक बार फिर सड़कों पर हिंसा जैसे हालात ना हो। दिल्ली से अंशुल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

राष्ट्रपति से मिलने के बाद विपक्ष ने सरकार पर और तेज किए हमले, बोले राहुल, वोट चोरी के हमारे आरोप पर महामहिम भी सहमत। बीजेपी बोली, नेता विपक्ष राहुल ने लांघी संवैधानिक सीमा। आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को नहीं मिली अनुमति, मेट्रो के 45 स्टेशन बंद, दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें रद्द, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली की किलेबंदी पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, कहा, मक्खी मारने के लिए हथौड़ा आप नहीं चला सकते, सब कुछ ठप होने से आम लोग न हो परेशान। उपचुनाव में बीजेपी एनडीए के शानदार प्रदर्शन पर पीएम का पोस्ट, लिखा, इस जनादेश से मिलेगी और मजबूती। अमित शाह बोले, राहुल के झूठ और दुष्प्रचार के बाद भी हमारी बड़ी जीत। जेवर एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी हवाई अड्डा करने पर राजनीतिक युद्ध, अखिलेश बोले, नाम बदलने वालों को बदलेगी जनता, पहले यूपी कैबिनेट के निर्णय पर लगी मुहर।

जंतर मंतर पर सीजीपी के प्रदर्शन को नहीं मिली अनुमति, मेट्रो के 45 स्टेशन बंद, दिल्ली आने जाने वाली कई सारी ट्रेनें रद्द, कई इलाकों में इंटरनेट भी बंद। खड़गे के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, वोट चोरी के आरोप पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग। राष्ट्रपति से मिलने के बाद विपक्ष ने सरकार पर सख्त किया घेरा, बोले राहुल वोट चोरी के हमारे आरोप पर महामहिम भी सहमत। राहुल बोले ज्ञानेश के खिलाफ सोमवार को हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। राहुल का बीजेपी पर हमला, बीजेपी ने कहा पलटवार करते हुए कि राहुल ने लांघी है संवैधानिक सीमा। दिल्ली में बीती रात से 45 मेट्रो स्टेशन बंद हो गए हैं, अगले आदेश तक ये बंद ही रहेंगे। 45 स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों के फेरे घटाने और गेट बंद करने का भी ऐलान, डीएमआरसी ने स्टाफों की छुट्टियां रद्द की। रेलवे का निर्णय, आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन पहुंचने वाली सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई। रेलवे ने ट्रैफिक जाम का हवाला दिया, सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली सभी ट्रेनें रद्द हैं। दिल्ली पहुंचने वाले यात्रियों को मुश्किलें हो सकती हैं, रास्तों में ट्रैफिक जाम हो सकता है, उनको बचाने मुश्किलों से बचाने के लिए यह सब किया गया है, सरकार ने कहा। दिल्ली की खलेबंदी पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, का मक्खी मारने के लिए आपको हथौड़ा चलाने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठप कर देने से आम आदमी परेशान होता है। दिल्ली में पुलिस अलर्ट है, 12 डिटेंशन सेंटर बना दिए गए हैं, जवानों को संयम बरतने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में प्रदर्शन से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, यात्रियों को लेकर चिंता है, सड़कों पर जाम लग सकता है। दिल्ली में प्रदर्शन से पहले हाई अलर्ट है, सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है, बीएसएफ के जवान मौजूद हैं, हर वाहन की हो रही है चेकिंग। दिल्ली पुलिस ने अपील की है जिम्मेदारी से आप घर से बाहर निकलें, जिम्मेदार भाषा सम्मान को जरूरी बताया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का केंद्र पर हमला, बोले देश में अघोषित आपातकाल लागू कर दिया गया है, प्रदर्शन रोकने के लिए जनता को परेशान किया जा रहा है। उपचुनाव में बीजेपी एनडीए के शानदार प्रदर्शन पर पीएम का पोस्ट, जनता का आभार व्यक्त किया, कहा हम और होंगे मजबूत। अब नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल हवाई अड्डा होगा, नोएडा का जेवर एयरपोर्ट, यूपी कैबिनेट ने लगाई मुहर। जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलने पर अखिलेश का कटाक्ष, बोले नाम बदलने वाले मुख्यमंत्री को जनता बदलने जा रही है। अखिलेश का ऐलान, शुभ मुहूर्त निकलते ही अयोध्या जाकर दर्शन करूंगा, अयोध्या जरूर जाऊंगा। देहरादून के अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चापड़ लेकर घुसा युवक, मच गई अफरातफरी, सीसीटीवी में कैद। बिजनौर में बैंक मैनेजर ने असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर को मारी लात, नियमों के खिलाफ काम करने से मना करने पर चेन्नई ट्रांसफर करने की दी धमकी। जोधपुर के सलून में महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल में मिले अन्य वीडियोस की जांच। डांग की घाटीदार सड़कों पर बाइक स्टंट, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेरठ में बीडी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर फायरिंग का आरोप, पुलिस ने कहा पुराने विवाद के चलते फायरिंग। मेरठ में स्कूली छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, बेल्ट चेन से हमला, वीडियो वायरल। लखनऊ में होमगार्ड की पत्नी बेटी की गला घोटकर हत्या, दोनों की मौत, बाद में डायल 112 पर दी सूचना, थाने पहुंचकर खुद कर दिया सरेंडर। बागपत में 14 सेकंड की सीसीटीवी में कैद हुआ मौत का मंजर, सिलेंडर ब्लास्ट, सड़क पर आग और भागती भीड़, 3 की मौत। ललितपुर में किसान से 15,000 रुपए की रिश्वत लेते एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कानपुर में भरे बाजार, तेज रफ्तार ऑटो बेकाबू, 2 सेकंड की देरी से बगल में खड़ा दुकानदार बचा। अलवर में कार से आए चोर घर के बाहर खड़ी कार चोरी करके फरार। मोगा में सिख युवक के अपहरण, बेरहमी से पिटाई का आरोप, संगरूर पुलिसकर्मी पर गंभीर आरोप। इंदौर में क्राइम ब्रांच का एक्शन, ऑनलाइन सट्टेबाजी, क्रिकेट और कैसीनो सट्टेबाजी नेटवर्क का खुलासा, 3 को गिरफ्तार किया, 9 मोबाइल लैपटॉप कैश जब्त। असम के बोंगाई गांव में झपट मारों का आतंक, जैन मंदिर के बाहर महिला के गले से सोने की चेन छीनकर फरार। इंदौर में मोबाइल की दुकान में तोड़फोड़, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पुलिस ने कार्रवाई की। जामनगर में बेकाबू कार ने रिक्शा, 2 बाइक, बिजली के खंभे, मकान को मारी टक्कर, मची अफरातफरी। कच्छ में भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर डंपर की टक्कर में 7 मजदूरों की मौत, 20 घायल। तरन तारण में आप सरपंच अश्विनी की हत्या, बाइक सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की।
भोपाल में प्रेमी जोड़ी की मौत से सनसनी, पहले चूहा मारने की दवाई खाई फिर फंदे पर लटक गए दोनों। फरीदाबाद में साथ पढ़ने वाली लड़की के घर फंदे से लटका मिला 10वीं की छात्र का शव, जमकर हंगामा, हत्या के आरोप। ओडिशा के जगत सिंहपुर में घर में पटाखे बनाते समय जबरदस्त ब्लास्ट, पिता पुत्र की मौत। उधम सिंह नगर में ओवरटेक के दौरान भिड़े डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली, हाईवे की दूसरी ओर कार की चपेट में आई, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बस्ती में रास्ते के विवाद में दो पक्षों में पथराव, छत से पत्थरों की बरसात का वीडियो वायरल, एक गिरफ्तार। पूरे मारपीट और पथराव की चपेट में आने से चार लोग घायल, पत्थर लगने से एक छोटी बच्ची भी गंभीर रूप से घायल। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में जमकर बर्फबारी, सफेद बर्फ की चादर। 10 अक्टूबर को बंद होंगे कपाट, बर्फबारी से हेमकुंड साहिब की बड़ी सुंदरता। राजौरी में फ्लैश फ्लड के बाद स्थिति सामान्य, नहरों की मरम्मत शुरू, रुकावटें हटाई जा रही हैं। बिजनौर में बारिश के साथ गिरे ओले, आकाशीय बिजली गिरी, भवन की दीवार ध्वस्त, कंप्यूटर रूम को नुकसान। लोकपाल हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के बीच कपाट बंद करने की तैयारी में, मंदिर के कपाट भी आज होंगे बंद। उधम सिंह नगर के बाजपुर में भीषण ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान, मुख्यमंत्री धामी ने किया निरीक्षण। मनाली के सोलंग में इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप शुरू, 6 देशों के पायलट लेंगे हिस्सा। भारतीय सेना आईटीबीपी की टीमें दिखाएंगी दम, 12 अक्टूबर तक सटीक लैंडिंग का मुकाबला। दिवंगत आत्माओं को मुक्ति दिलाने के मिशन में जुटी दिल्ली की देवोत्थान सेवा समिति, अंतिम संस्कार के बाद लावारिस अस्थियों का विसर्जन। नवरात्र गरबा आयोजनों में कलावा, माथे पर तिलक के बिना ना हो प्रवेश, वीएचपी ने जारी की सुरक्षा संस्कार अनुशासन की रूपरेखा। देश भर में अंतिम चरण में शक्ति उत्सव की तैयारियां, मां की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार, मां के विभिन्न रूपों का सुंदर श्रृंगार। राजकोट में नवरात्र की तैयारियां, खिलैयाओं ने नए नए स्टेप्स और कॉस्ट्यूम्स के साथ तैयारी की, हिंदू संगठनों ने गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर मांग उठाई। 11 अक्टूबर से नवरात्र पर पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारियां, अमेरिका के अक्षरधाम मंदिर की तरह सजराए पंडाल, 59वें वर्ष में दिखेगी भव्यता। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी दुर्गा पूजा की भव्य तैयारियां, बड़े बड़े पंडालों का निर्माण। रविंद्र संघ पूजा समिति के पंडाल में माँ पिता के अलग होने पर बच्चों के असर को दिखाया गया। प्रयागराज के अलोप शंकरी मंदिर में श्रद्धालुओं की विशेष आस्था, देवी माँ की नहीं कोई मूर्ति, यहाँ माँ के दिव्य पालने की होती है पूजा। जूनागढ़ के सासण गिर जंगल में सफारी का आगाज, पर्यटकों को हुआ शेरों का दीदार। शेरनी और उसके शावकों के साथ शेर भी आया नजर, पर्यटक हुए रोमांचित। फ्लाई दुबई के कैप्टन स्मिथ मच्छार को प्रेसिडेंशियल अवार्ड से सम्मानित करेगा इसराइल, राष्ट्रपति ने किया आला। नागरिक वीरता के लिए दिया जाता है राष्ट्रपति पुरस्कार, स्मिथ मच्छार ने पायलट के मंसूबों को नहीं होने दिया था पूरा, 174 यात्रियों की बचाई थी जान। लद्दाख में शुरू हुई देश की पहली हाई एल्टीट्यूड सफारी, स्नो लेपर्ड के दीदार का अवसर, 6 गाड़ियों को एलजी ने दिखाई हरी झंडी। रांची T20 में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराया, सबसे बड़ा रन चेज। वेस्टइंडीज ने 18 ओवर 3 गेंद में 250 का लक्ष्य हासिल किया, कप्तान शाई होप का शतक। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अंडर 19 एशिया कप का शेड्यूल जारी किया, 5 नवंबर से ओमान में शुरू होगा टूर्नामेंट, 14 को खेला जाएगा फाइनल। टूर्नामेंट में 8 नवंबर को पाकिस्तान से भारत का मुकाबला, ग्रुप ए में है दोनों टीमें। 50 ओवर के फॉर्मेट में इस टूर्नामेंट के सभी मैच मस्कट के ग्राउंड में होंगे, टूर्नामेंट में शामिल है 8 टीमें। 15 अक्टूबर को एशियन गेम्स के मेडलिस्ट से मिलेंगे पीएम मोदी, पीएम के घर पर होगी मुलाकात। एसआईपी रिटर्न देने के मामले में भारत दुनिया के टॉप 2 देशों में शामिल, एसआईपी का औसत रिटर्न 8.5% रहने से निवेशकों को फायदा। यूएस ने इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनियों की ग्रीन कार्ड प्रक्रिया रोकी, इससे कर्मचारियों को अमेरिका में नौकरी पाने में मुश्किल होगी। जीएसटी काउंसिल ने छोटे व्यापारियों के लिए रजिस्ट्रेशन रिफंड आसान करने का प्रस्ताव रखा, इससे व्यापार में पैसा फंसने, टैक्स की प्रक्रिया से जुड़ी परेशानी घटने का भरोसा। इस वर्ष ऑनलाइन फेस्टिव सेल में लैपटॉप, स्मार्टफोन, एसी पर कम डिस्काउंट, खरीदारी से पहले अलग अलग वेबसाइट्स पर आप दाम देख लें। इंडिगो के बाद एयर इंडिया और आकाशा ने टिकटों पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया, फेस्टिव सीजन में हवाई यात्रा महंगी।
घर पर शाकाहारी थाली बनाने में लागत सितंबर से सालाना आधार पर 10% बढ़ गई है। त्योहारी सीजन में आम परिवारों की रसोई का बजट बिगड़ गया है। आरबीआई के अनुसार कई सामान सेवाएं महंगी हो गई हैं, 4% के पार निकल चुकी है। इससे घरेलू खर्च बढ़ रहा है, परिवारों का बजट बिगड़ रहा है। कई एयरलाइंस ने सुरक्षा कारणों से रियाद की उड़ानें रद्द कर दी हैं, रिफंड दे रहे हैं। एक सर्वे में 34.5% भारतीय डिजिटल धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। ऑनलाइन पेमेंट करते समय फर्जी लिंक अनजान रिक्वेस्ट से सावधान रहिए। एसबीआई के चेयरमैन के अनुसार अगले 2-3 महीने तक डिपॉजिट रेट बढ़ने की संभावना कम है। एफडी सेविंग्स पर ज्यादा ब्याज चाहने वाले इंतजार करें। दृश्यम 3 ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई धूम, 7 दिन में 400 करोड़ रुपए कमाए। अनुष्का शर्मा ने वर्सोवा में खरीदे 3 नए अपार्टमेंट, 44 करोड़ रुपए निवेश किए। आयुष्मान खुराना सारा अली की फिल्म उड़ता तीर सिनेमाघरों में रिलीज, दर्शकों में उत्साह। परिणीति चोपड़ा की फिल्म रिपोर्टिंग लाइव नेटफ्लिक्स पर रिलीज, फिल्म में एक पत्रकार के किरदार में है परिणीति। क्राइम थ्रिलर सीरीज हीट सिटी का ट्रेलर रिलीज, मुंबई के अंडरवर्ल्ड व्यापार अपराध की दुनिया पर आधारित कहानी। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का ऐलान, हॉर्मुज के बाहर नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों को मिलेगी सजा, एक जहाज पर किया हमला। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी का बयान, कहा ईरान कभी भी बंद नहीं करेगा यूरेनियम संवर्धन, ईरान कभी भी किसी दूसरे देश को नहीं सौंपेगा। हूतियों ने सऊदी अरब के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सऊदी एयरलाइंस के एक विमान को निशाना बनाकर हमला किया, 3 की मौत। रूसी सेना ने यूक्रेन के शहर ज़ापोरिज़्या पर हमला किया, इमारत पर हमले में 1 की मौत, 2 घायल, इमारतों को नुकसान। सीआईएस देशों के नेताओं की बैठक में रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान, व्यापार आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए मौजूदा बाधाएं हटाने पर जोर। सरकार की बजट कटौती, बढ़ती महंगाई के विरोध में बेल्जियम में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प। फ्रांस में छात्र आंदोलन को शांत करने के लिए 3,000 शिक्षकों को तैनात करने का निर्णय, संगठनों के विरोध प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान। अमेरिका में यौन हिंसा खत्म करने की मांग को लेकर देश भर में प्रदर्शन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में यौन उत्पीड़न के बाद भड़का है ये प्रदर्शन। मेक्सिको के उत्तर पश्चिमी राज्य सिनालुआ की जेल में दंगा, 10 की मौत, 6 घायल, सुबह परिवार से मुलाकात के दौरान भड़क गई हिंसा। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीका महिला नवी पिल्लई को नोबेल शांति पुरस्कार, शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने के लिए नोबेल।

सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक जाने वाले सभी रास्ते अब पूरी तरह बंद हो चुके हैं। कल यानी 10 अक्टूबर को होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने पूरी राजधानी को एक अभेद्य किले में बदल दिया है। सुरक्षा इतनी सख्त है कि दिल्ली के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर है और इसके मायने समझिए। 57 मेट्रो स्टेशंस, 57 मेट्रो स्टेशंस पर ताले लग गए हैं और कई ट्रेनों में तलाशी चल रही है। पूरी दिल्ली एक तरह से थम जाएगी। इस पूरे घमासान के बीच एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि ज्ञानेश कुमार कॉकरोचों की इस हिट लिस्ट पर आ गए।

जब कांग्रेस चुनाव आयोग पर फिक्सिंग के आरोप लगा रही है, तब 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों में कांग्रेस उन सीटों पर भी हार गई जो उसके खाते में होती थी। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर बीजेपी को अब तक की सबसे बड़ी जीत मिली। पुडुचेरी में भी एनडीए जीती। तमिलनाडु की दोनों विधानसभा सीटों पर मुख्यमंत्री थलपति विजय की टीवीके पार्टी जीती। लोकसभा में असम की नौगांव सीट भी बीजेपी ने कांग्रेस से छीन ली और कांग्रेस इस सीट पर तीसरे स्थान पर खिसक गई। इस जीत के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के झूठ, भ्रम, दुष्प्रचार के बावजूद जनता अब भी बीजेपी को ही जिता रही है। और अगली खबर होगी अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि सऊदी अरब के रियाद में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए मिसाइल हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई है। इसको बहुत बड़ा एस्केलेशन माना जा रहा है। इस हमले के बाद सुरक्षा संकट को देखते हुए एयर इंडिया समेत कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने रियाद के लिए अपनी उड़ानों को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है। और इसके बाद आपको बताएंगे कि एलॉन मस्क भारत में स्टारलिंक की एंट्री के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। उन पर आरोप लगा रहा है लग रहा है कि उन्होंने मुकेश अंबानी का नाम लेकर एक माइंड गेम खेला है ताकि भारत सरकार पर उनके सैटेलाइट इंटरनेट को हरी झंडी देने का दबाव बनाया जा सके। और अगली खबर, पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के लिए उनके समर्थकों का लॉन्ग मार्च अब पेशावर पहुंच चुका है। सड़कों पर उमड़े इस भारी जन सैलाब को देखकर अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या बैकडोर से सेना प्रमुख असीम मुनीर और इमरान खान के बीच कोई सीक्रेट डील होगी।

0: इधर वर्ल्ड बैंक की एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मिडिल ईस्ट में जितने भी गरीब रहते हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, उनमें से अकेले 48% यानी लगभग आधे गरीब पाकिस्तान में है। इसका सीधा मतलब यह है कि इस पूरे इलाके के तमाम देशों के मुकाबले पाकिस्तान में गरीबी की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। और ऐसे हालात पर पाकिस्तान के लोग मजाक में कह रहे हैं कि अब उनके यहाँ चिकन बिरयानी सिर्फ किताबों में पाई जाती है, लोग लोन को अपनी राष्ट्रभाषा समझने लगे। और अगली खबर, पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुई भीषण हिंसा के मामले में पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। जांच में पता चला है कि गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा के कथित गैंग रेप और खुदकुशी की जो बात रेडिट पर लिखी गई थी, उसके पीछे फर्स्ट ईयर की एक छात्रा थी। इस छात्रा ने कबूल किया कि उसने ये सब सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर लिख दिया था और उसका इरादा केवल सोशल मीडिया पर अपनी राय रखना था। अगली खबर, राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर देखते रह गए। इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका की मशहूर कानूनविद नावी पिल्लई को मिल गया। भारतीय मूल की नावी पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार प्रमुख रह चुकी हैं। गाजा के मामले में उन्होंने एक यूएन जांच आयोग की अगुवाई की थी, जिसने अपनी जांच रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला था कि इसराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नीतियों पर तीखे सवाल खड़े किए। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन के लिए उनकी सरकार को पूरी दुनिया के सामने इन्होंने जिम्मेदार ठहराया। अगली खबर, आज हम ये सवाल भी पूछेंगे कि क्या मुख्यमंत्री के चॉपर के लिए चैंपियन खिलाड़ियों को स्टेडियम से बाहर करना सही हो सकता है। गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सरकारी हेलीकॉप्टर लगातार 4 दिनों तक खड़ा रहा और प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ी इंतजार करते रहे, धाव ट्रैक से दूर रहे। फिर हम पूछते हैं कि ओलंपिक और एशियन गेम्स में भारत चाइना जितने मेडल क्यों नहीं जीतता है। और आखिरी खबर आज की, उन 55 लाख बच्चों के बारे में है जिन्हें इस सर्दी भी फर्श पर भी पढ़ना पड़ेगा। पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड जैसे राज्यों में बजट होने के बावजूद इन बच्चों के लिए फर्नीचर नहीं खरीदा गया। ये स्कूल अब तक दरी पर चलते रहे और अब इसी दरी पर ठिठुरते हुए इन 55 लाख बच्चों को पूरी सर्दी फर्श पर, ठंडी जमीन पर पढ़ाई करनी होगी। 55 लाख का मतलब है न्यूजीलैंड जैसे एक देश की पूरी आबादी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले आज शाम को विपक्ष के तमाम सांसद संसद भवन परिसर में इकट्ठा हुए। वहां से उन्होंने हाथों में सेव डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र बचाओ के पोस्टर लेकर वो राष्ट्रपति भवन की ओर पैदल मार्च करते दिखे। हालांकि इस दौरान रायसीना हिल्स पर दिल्ली पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग की थी। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच पुलिस ने सभी सांसदों को आगे बढ़ने से विजय चौक पर ही रोक दिया, जिसके बाद विपक्ष के बाकी सांसद और कार्यकर्ता विजय चौक पर ही सड़क पर बैठ गए, सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जिन 10 नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करनी थी वो अंदर गए। बाहर आकर उन नेताओं ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संविधान को बचाने की अपील की है। यहां तक कहा राहुल गांधी ने कि ये मुलाकात एक अविश्वसनीय मुलाकात थी और उन्होंने जो वोट चोरी के आरोप लगाए वो सभी राष्ट्रपति ने सुने और इसी के साथ उन्होंने सबूत देने को कहा है। देखिए,
1: प्रेसिडेंट के साथ हमारी मीटिंग हुई। एक प्रकार से मैं आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि जब हमने राष्ट्रपति को इलेक्शन चोरी वोट चोरी के बारे में बताया तो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने डिनाई नहीं किया। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने यह नहीं कहा कि हिंदुस्तान में चुनाव चोरी नहीं हो रहे हैं। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने उल्टा हमसे कहा कि आप सबूत हमारे पास लाइए, और यही ग्रुप खुशी से जो पूरा का पूरा सबूत हमने कलेक्ट किया है राष्ट्रपति के पास ले जाएगा, ले जाने के लिए तैयार है। पूरा देश जानता है, स्टूडेंट्स जानते हैं कि देश में वोट चोरी हो रही है। नरेंद्र मोदी इसके आर्किटेक्ट हैं, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार इसके इम्प्लीमेंटर्स हैं, और इस बात को राष्ट्रपति ने, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने आज डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में सोचेंगी और एक्शन लेंगी।
0: और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल यानी 10 अक्टूबर को दिल्ली में क्या होगा, तो एक एक कर हम पूरी जानकारी आपको देंगे। और जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनके लिए तो सीधा असर है, लेकिन पूरे देश में लोग ये समझेंगे कि एक तरफ नेता विपक्ष कई सांसदों के साथ आज राष्ट्रपति के पास पहुंच गए, वो अंदर बैठक में इंडिया गठबंधन के कहते हैं कि सरकार का इस्तीफा लेकर रहेंगे। आखिर ये कड़ियां कैसे जुड़ रही है? और वही कल सबसे बड़ा जो कॉकरोच जनता पार्टी का आह्वान है, जिसने ये ऐलान किया है कि उसका प्रदर्शन स्थगित नहीं होगा दिल्ली पुलिस की सख्ती के बावजूद, तो कॉकरोच जनता पार्टी के मुताबिक उसके सभी नेता और 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता कल सुबह लगभग बताया जा रहा है 12 बजे के आसपास जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश करेंगे, और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर यह आंदोलन होकर रहेगा। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इस आंदोलन को अब तक उनकी अनुमति नहीं मिली है, अगर फिर भी कोई नियमों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन को रोकने के लिए कुल 15 बड़े कदम उठाए हैं। इनमें भी सबसे पहले दिल्ली आने वाली ट्रेनों में युवाओं और छात्रों से पूछताछ की जा रही है कि वो कहां और आखिर क्यों जा रहे हैं। तस्वीर आपके सामने है। उदाहरण के लिए बेंगलुरु से दिल्ली जा रहे सीजेपी के कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतारा गया। जनरल डिब्बे में सवार दिल्ली के इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए ये लोग निकले थे। कई शहरों में रेलवे स्टेशन पर पुलिस द्वारा तलाशी अभियान भी चलाया गया, और जो लोग सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली जाना चाहते थे उन्हें यह कहा गया कि इस प्रदर्शन को अब तक पुलिस की अनुमति नहीं मिली है और यह आंदोलन कानूनी रूप से अवैध है, इलीगल है। दूसरा, भारतीय रेलवे ने एक बड़ा फैसला लेते हुए शनिवार सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली सभी प्रमुख मेल, सभी प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेन्स को उनके शुरुआती स्टेशन से ही रद्द कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि आज रात से जो ट्रेनें दूसरे शहरों से दिल्ली के बड़े रेलवे स्टेशन पर आ सकती थी वो अब नहीं आएंगी। तीसरा, दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर दिल्ली मेट्रो ने आज रात 9 बजे से ही 57 संवेदनशील मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि प्रदर्शनकारी नई दिल्ली के इलाकों में घुस ना सके। इसके अलावा अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि इन मेट्रो स्टेशन को कल या आगे कब खोला जाएगा। चौथा, दिल्ली में सुरक्षा के लिए 20,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं, जिनमें 6,000 जवान दिल्ली पुलिस के हैं। 20,000 जवान तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के हैं, यानी सीएपीएफ के। इनमें भी सीआरपीएफ की करीब 70 कंपनियां, यानी लगभग 7,000 जवानों को छत्तीसगढ़ के पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों से हवाई मार्ग और अन्य रास्तों से बहुत कम समय में दिल्ली ले आया गया है। दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर उसके जवानों की संख्या 6,000 से बढ़ाकर 15,000 भी की जा सकती है। यहां हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि 2020 के दिल्ली दंगों के बाद से यह पहली बार है जब सुरक्षा बल की इतनी भारी तैनाती की गई है, और इन जवानों को दंगों, हिंसा या बेकाबू भीड़ को रोकने वाले खास हथियारों और सुरक्षा सामानों से भी लैस किया गया है। पांचवा, नई दिल्ली जिले और जंतर मंतर के जो पूरा इलाका है उसमें धारा 163 लागू है। 4 किलोमीटर के दायरे में जनपद के इंटरनेट भी बंद रहेगा अभी रात 10 बजे से। अभी 9:15 बज रहे हैं, अब 9 बज गए हैं, तो जो मेट्रो स्टेशन से उसको बंद करने की बात थी, 10 बजे से इंटरनेट 4 किलोमीटर रेडियस जनपद का, तो 163 की धारा लगी है जिसके तहत 4 या उससे ज्यादा लोगों के एक जगह पर जुटने पर पाबंदी है, पूरी तरह से पाबंदी। छठा, सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा दावा यह किया गया कि दिल्ली पुलिस अलग अलग छात्र हॉस्टल्स में पीजीज में जाकर छात्रों से पूछताछ कर रही है, उन्हें प्रदर्शन में न जाने की हिदायत दे रही है। यहां हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि दिल्ली में 335 कॉलेज हैं, 30 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज, 12,34,000 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, 12,34,000 छात्र छात्राएं। और अभी सीजेपी का समर्थन करने वाले नेता यह आरोप लगा रहे हैं कि इनमें कई छात्रों को दिल्ली पुलिस प्रदर्शन में हिस्सा लेने से रोक रही है। इसके अलावा पुलिस ने इस बार अपनी सख्ती का दायरा पहले से बढ़ाया है। इस बार दिल्ली पुलिस होटल्स, लॉज, ओयो रूम्स की बुकिंग की जांच कर रही है ताकि बाहर से आने वाले प्रदर्शनकारियों के रुकने के ठिकानों को खत्म किया जा सके। यानी जो होटल, जो गेस्ट हाउस, उनकी बुकिंग की दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम निगरानी कर रही है और यह कार्रवाई यहीं खत्म नहीं होती। दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिए जाने वाले जो प्रदर्शनकारी हैं उनको रखने के लिए कई जिलों में स्पेशल डिटेंशन सेंटर्स यानी अस्थायी जेलें तैयार की हैं। इसके अलावा सीजेपी और लेफ्ट छात्र संगठनों का ऐसा दावा है कि प्रदर्शन को रोकने के लिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल से दिल्ली आ रहे हजारों वॉलंटियर्स को उनके राज्यों में ही हिरासत में लिया जा रहा है, नजरबंद किया जा रहा है। यही नहीं, दिल्ली से लगे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के सभी 37 बॉर्डर्स या एंट्री पॉइंट्स पर भारी बैरिकेडिंग की गई है, हर गाड़ी की चेकिंग हो रही है, सड़कों पर भारी जाम की स्थिति है। दिल्ली के आबकारी विभाग ने भी शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 9 और 10 अक्टूबर को दिल्ली में शराब की सभी दुकानों को बंद कर दिया है। ये भी आरोप है कि जंतर मंतर और रायसीना रोड के 4 किलोमीटर के दायरे में चुनिंदा तौर पर इंटरनेट सेवाओं को नियंत्रित किया गया है ताकि प्रदर्शनकारी आपस में एक दूसरे से संपर्क करके जंतर मंतर पर ना पहुंच सके। इसी के साथ दिल्ली पुलिस और उसके आईटी सेल द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को छात्रों और आम लोगों को उकसाने वाले संदेशों, मैसेजेस या वीडियो पर तुरंत एक्शन लेने को कहा गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर भी आई है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच संदिग्धों और जुलाई आंदोलन के दौरान हिंसा में शामिल रहे लोगों के जो डेटा बेस है उन कैमरों से ट्रैक कर सकती है, जो फेस को स्कैन कर सकते हैं और ऐसे लोगों को भीड़ में शामिल होने से मुमकिन है कि रोका जाए। सबसे बड़ी बात, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर के बदले रामलीला मैदान या बुराड़ी जैसे किसी भी वैकल्पिक खुले स्थान में इकट्ठा होने की इजाजत देने से भी साफ मना कर दिया है। और अभी दिल्ली पुलिस की दिल्ली की कैसे किलेबंदी की गई है उसके लिए इन तस्वीरों को देखिए।

0: डालें।
1: दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के ठीक बाहर जो पिछले कई दिनों से जंग का अखाड़ा बना हुआ है, और इस थाने के बाहर की आप तैनाती देखिए, जैसे किले की बाहर पूरी सुरक्षा होती है, उस तरीके से इस थाने की भी सुरक्षा के लिए बाहर बैरिकेड है। अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस गेट पर तैनात मिलेगी, दिल्ली पुलिस आपको तैनात मिलेगी, और यहाँ पर चेतावनी भी लगाई गई है। ठीक आप देखिए, बैरिकेड पर चेतावनी लगाई गई है कि BNSS की धारा 163 लागू है, अगर लोग जुटेंगे तो उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी।
2: इस पूरी कार्रवाई के बीच सोशल मीडिया पर कई लोग इस मुद्दे को भी हवा दे रहे हैं कि पुलिस केवल मस्जिदों से यह ऐलान क्यों करवा रही है कि मुस्लिम लड़के इस प्रदर्शन में शामिल ना हो। हमारे पास ऐसे कई वीडियोस मौजूद हैं जिनमें पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक और उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार इलाके की मस्जिदों से बाकायदा पुलिसकर्मियों और स्थानीय मौलानाओं द्वारा लाउडस्पीकर पर ऐलान कराया गया है, और ये कहा गया है कि लोग अपने बच्चों, अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों को समझाएं कि वो किसी भी भीड़ या अवैध प्रदर्शन का हिस्सा ना बने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। सुनिए।
3: पर भरोसा ना करें और ना ही उन पर ध्यान दें। किसी भी भड़काऊ संदेश या उकसावे में नहीं आए, जिम्मेदार नागरिक बने और कानून का पालन करें। अपने क्षेत्र की सुरक्षा में पुलिस और प्रशासन का साथ दें और अपने परिवार वाले और अपने बच्चों को इस बारे में समझाएं कि इस तरह की अननेसेसरी भीड़ में या ऐसे कोई प्रोटेस्ट में किसी में हिस्सा ना लें, क्योंकि इसमें प्रशासन अपना काम कर रहा है। उसमें अननेसेसरी किसी कारणवश हमारे बच्चे को या हमें कोई किसी तरह का नुकसान ना हो। आप लोगों का धन्यवाद।
4: इस ऐलान को गौर समाज फरमाए कि जो जंतर मंतर पर 8-9-10 तारीख को जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो इलीगल है, वहां पर कोई व्यक्ति ना जाए, इसलिए कि सरकार ने वहां पर धारा 173 लगाई हुई है। कृपया आप प्रशासन का साथ दें, कोई वहां ना जाए। एक मरतबा फिर सुनिएगा, जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पर 8, 9 और 10 तारीख को कोई भी व्यक्ति वहां पर ना जाए, इसलिए कि सरकार ने वहां पर धारा 163 लगाई हुई है। अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसकी सरकार कोई जिम्मेदार नहीं होगी, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो कृपया करके 8-9-10 तारीख को कोई भी इजरात जंतर मंतर पर ना जाए, वहां पर सरकार ने धारा 163 लगाई हुई है। बराए करम आप इजरात वहां जाने से बचें और प्रशासन का साथ दें, इसी में आपका फायदा है।
2: इधर ऑल इंडिया इमाम संगठन के प्रमुख इमाम डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वो ऐसे किसी भी प्रदर्शन, धरने या सभा में शामिल ना हो जिससे देश में तनाव या आपसी सौहार्द बिगड़ने की आशंका हो। उन्होंने देश में शांति सद्भाव बनाए रखने पर जोर दिया है। सुनिए।
5: आपको मालूम है कि दिल्ली के अंदर दफा 144 लागू हो चुकी है। आपको मालूम है कि जो भी गिरफ्तार होगा इस प्रोटेस्ट में उसके ऊपर इतनी दफाएं लगेंगी, जमानत नहीं होगी। आप तो फंसेंगे, आप तो बर्बाद होंगे, आप अपने परिवार को भी बर्बाद कर देंगे। मैं तमाम सबसे गुजारिश करना चाहता हूं इमामों से कि अपनी मस्जिदों से आज ऐलान करें और तमाम मुसलमानों को रोकें कि किसी तरह के किसी प्रोटेस्ट में हमें शामिल नहीं होना है। आप इस देश में अमन और शांति के प्रतीक हैं, तो इसलिए आपको किसी तरह से भी कोई प्रोटेस्ट में आपको बहकाता है, आपके बच्चों को बहकाए, तो बिल्कुल नहीं जाना है।
2: केवल मस्जिदों में ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे रिहायशी इलाके हैं, खासकर छात्रों के रहने वाले इलाके हैं, वहां भी अलग तरह से घेराबंदी की गई है। दिल्ली पुलिस की टीम्स लक्ष्मी नगर, मुखर्जी नगर, बड़े पैमाने पर यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं, छात्र रहते हैं, GTP नगर, मुनिरका जैसे उन रिहायशी इलाकों में भी जा रही है जहां बहुत बड़ी संख्या में छात्र हॉस्टल्स हैं, PG हैं, और इन इलाकों में पुलिस द्वारा PG और हॉस्टल के मालिकों को लिखित और मौखिक तौर पर धारा 163 की पाबंदियों की जानकारी दी जा रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, इनमें पढ़ने वाले जो छात्र हैं इस प्रदर्शन में शामिल ना हो। देखिए, और अब इस सवाल पर आते हैं कि दिल्ली पुलिस क्या कहते हुए कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है उस प्रदर्शन को करने से रोक रही है उन्हें, और इस बार इतनी सख्ती आखिर क्यों की जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी ने पहली बार 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के मौके पर यह ऐलान किया था कि अगर ज्ञानेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया तो वो 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके बाद औपचारिक रूप से 3 अक्टूबर को यही बात कॉकरोच जनता पार्टी के सभी नेताओं ने दोहराई और ये कहा कि देश भर से उसके कार्यकर्ता एक बार फिर से जंतर मंतर पर 10 अक्टूबर को इकट्ठा होने के लिए आएंगे। अब पेच यहां फंसता है कि ऐलान आंदोलन से सिर्फ 7 दिन पहले हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर बना जो दिल्ली पुलिस का अपना नियम है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वो ये कहता है कि जंतर मंतर पर कोई भी प्रदर्शन करने के लिए कम से कम 10 दिन पहले पुलिस से उसकी अनुमति लेना जरूरी है। यानी पूरा विवाद अनुमति का है और दिल्ली पुलिस ये आरोप लगाती है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन की अनुमति सिर्फ 3 दिन पहले यानी 7 अक्टूबर को मांगी, जो नियमों के तहत स्वीकार हो ही नहीं सकती। अब दूसरा, सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने संसद मार्ग पुलिस थाने में प्रदर्शन के लिए जो सूचना पत्र जमा कराया उसमें यह लिखा था कि इस विरोध प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हो सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी गाइडलाइंस इसकी भी इजाजत नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट की बनी गाइडलाइंस में साफ लिखा है कि जंतर मंतर पर 1000 या उससे कम लोग एक बार में प्रदर्शन कर सकते हैं और अगर प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती है तो उन्हें रामलीला मैदान में भेजा जा सकता है जहां ज्यादा से ज्यादा 50,000 लोग प्रदर्शन कर सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस ने आज यही दलील सामने रखी और उन्होंने अपनी बात कही और अगर प्रदर्शनकारियों की संख्या इससे भी ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में पुलिस बॉर्डर के पास बुराड़ी ग्राउंड है, उसमें प्रदर्शन करने की इजाजत दे सकती है। लेकिन यहां इस मामले में दावा है कि सीजेपी के कार्यकर्ता जंतर मंतर पर ही प्रदर्शन करना चाहते हैं और पुलिस अनुमति नहीं दे रही है। और अब आइए आपको दिखाते हैं राष्ट्रपति भवन में जब राहुल गांधी तमाम सांसदों के साथ पहुंचे थे वहां की तस्वीरें आ गई हैं। ये तस्वीर है जिसमें राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को ये ज्ञापन सौंपते हुए दिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी दाईं तरफ हैं राहुल गांधी, राजीव राय, मनोज झा और उमर अब्दुल्ला। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ममता बनर्जी, डी राजा और सुप्रिया सुले और कुछ अन्य नेता आपको दिखाई दे रहे हैं। इन सभी नेताओं ने आज ये ज्ञापन सौंपा है जिसमें वो उन्होंने मांग की है चुनाव आयोग को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त पर कार्रवाई की और इसी के साथ कहा है कि अब बैलेट बॉक्स से वोटिंग हो ना कि ईवीएम से। और इसी मीटिंग से निकलने के बाद यह ज्ञापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपने के बाद राहुल गांधी ने बाहर आकर बहुत बड़ी बात कही है क्योंकि अब समझिए कि शायद सबसे बड़ा आप हाई वोल्टेज एक्शन सोमवार को भी देखेंगे जब यही तमाम सांसद सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने शुरुआत की थी जब वो चुनाव आयोग जा रहे थे, आकाशवाणी भवन में रुके, राजघाट गए, राष्ट्रपति भवन गए और अब सुप्रीम कोर्ट का रुख विपक्षी सांसद सोमवार को करेंगे। खैर, उस पर नजर हमारी रहेगी लेकिन हम कल की बात कर रहे हैं क्योंकि कल को लेकर बड़ी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। पुलिस इतने कड़े इंतजाम यही कहते हुए कर रही है कि जब अनुमति नहीं दी गई तो ये प्रदर्शन भी कानून व्यवस्था का सम्मान करते हुए नहीं होना चाहिए और अगर फिर भी कुछ लोग उसकी बात नहीं मानते हैं तो उसकी तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए मैं आपको अब बड़ी स्क्रीन पर लिए चलती हूं और इस स्क्रीन पे आपको दिखाती हूं कि किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि 57 मेट्रो स्टेशंस की जब बात हो रही है, एक सेकंड, ये देखिए 57 मेट्रो स्टेशंस की बात हो रही है, तो यहां पर अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहते हैं कि कौन कौन से वो तमाम इलाके हैं जिनको लेकर इस बार चर्चा हो रही है। ताकि सबसे पहले ये वाला देखिए, मजेंटा लाइन के 4 स्टेशंस, ठीक है, यहां से शुरू करते हैं, मजेंटा लाइन के 4 स्टेशंस, ये वाला जो देख रहे हैं मजेंटा लाइन के 4 स्टेशंस, ये बंद कर दिए गए, ठीक है। तो ये मजेंटा लाइन के जो 4 स्टेशंस है वो आपको दिख रहा है, कृष्णा पार्क दिख रहा है, ठीक है, यहां पर बोटानिकल गार्डन नोएडा को जो जोड़ती है, तो चलिए नोएडा वाले खुश थे कि हम तो दूर है इन सबसे, तो नोएडा तक भी मामला पहुंच रहा है, ये भी बंद रहेगा, ठीक है। अब वायलेट लाइन के 7 स्टेशंस बंद हो रहे हैं जी, ये बल्लभगढ़ आपको दिख रहा है, ये आपको यहां पर कश्मीरी गेट का दिख रहा है, ये सारे स्टेशंस जो रास्ते में पड़ेंगे कौन कौन से हैं। पिंक लाइन के 8 स्टेशन बंद हो रहे हैं, ठीक है। शिव विहार के देखिए, लोनी बॉर्डर को जोड़ती है, इसकी भी ये स्टेशन भी ब्लॉक होगा। शहीद स्थल गाजियाबाद को जोड़ती है, ये भी बंद हो रहा है, ये वाला स्टेशन। वैशाली ये है, इधर आपको हमने दिखाई दिया है, गुरुग्राम को जो येलो लाइन जोड़ती है, तो गुरुग्राम वाले भी प्रभावित होंगे, ठीक है, गुरुग्राम को ये जोड़ती है येलो लाइन, 20 स्टेशन इसमें आते हैं इस पूरे रास्ते में। इसका एंड देखिए यहां पर होता है मिलेनियम सिटी सेंटर पर, ये भी देखिए। तो एक तरफ से आप समझिए कि पूरा जो दिल्ली NCR है ना, इस पूरे इलाके में यहां से अगर आप देखिए तो, और ये देखिए ना रेड लाइन जो है उसके 9 स्टेशन बंद है, तो पूरा मतलब आप समझिए कि इधर से लेकर उधर और ऊपर से लेकर नीचे तक जितने हैं, जिसमें यहां पे गुरुग्राम हो, यहां पे नोएडा हो, ये सब आसपास से जितने ही कनेक्ट होते हैं यहां पर जंतर मंतर को पहुंचते हैं। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जंतर मंतर यहां से ये सब आते हैं, इधर से गुजरते हुए उधर जाते हैं, ब्लू लाइन जिसके 8 स्टेशन बंद है। देखिए फिर यहां गुरुग्राम से आते हुए स्टेशन होते हुए ये भी जंतर मंतर के पास पहुंचते हुए समयपुर बादली में जाता है ये, तो वो भी बंद हो रहा है। अब ऑरेंज लाइन 1 स्टेशन है, उसको भी बंद कर दिया, वो भी जंतर मंतर के पास है। ये वाला समयपुर बादली वाला जो येलो लाइन है वो तो बंद है ही। तो ये पूरा मिलाकर जंतर मंतर के आसपास से जो गुजर रहे हैं उन सबको बंद किया गया है। और कोशिश यही है कि जो सवाल उठ रहा था कि आसपास से लोग पहुंचे थे पिछली बार बड़ी तादाद में आए थे, उन सबको रोकने का एक तरीका ऐसे समझिए, क्योंकि कल बड़ा क्रूशियल डे इसे माना जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने ऐसी योजना बनाई है जिससे CJP के कार्यकर्ता नई दिल्ली जो जिला है न्यू दिल्ली में वहां ना पहुंच सके, जंतर मंतर पर बिना अनुमति के कोई आंदोलन ना हो। अब दिल्ली पुलिस ने लोगों के नाम एक खुला पत्र भी लिखा है जिसमें उन्होंने लोगों से एक अपील की है, और ये बहुत ही मार्मिक अपील उन्होंने अपनी तरफ से की है कि वर्दी के पीछे भी एक इंसान है जिसका अपना परिवार है, अपने लोग हैं। यहां पुलिस कह रही है कि फर्क सिर्फ वर्दी का है, इंसानियत का नहीं, और इसीलिए दिल्ली पुलिस को भी समझे, कानून का पालन करें। देखिए
0: प्रोटेस्ट में ये भी नोटिस किया है कि काफी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है।
6: भाई लेडी पुलिस को ये कह रहा है कि के सामने कपड़े उतार देगी, ये कह रहा भाई ये बंदा।
7: कुछ प्रोटेस्टर हैं, एक दिन वो एज ए जर्नलिस्ट बन के आते हैं और दूसरे दिन एज ए प्रोटेस्टर आते हैं, डिटेन होके जाते हैं।
8: मुझे याद करना सभी,
9: उसको जवाब दो, समझ आए हमें, हमारा माथा खोल रहा है।
0: पुलिस वालों को इंसाइट करते हैं, उनसे कोई रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं, एंड देर इज अ क्लियर विजिबिलिटी जहां वो पुलिस के काम को ऑब्स्ट्रक्ट करने की भी कोशिश करते हैं।

दिल्ली पुलिस की सख्ती के बावजूद कॉकरोच जनता पार्टी अपने 10 अक्टूबर के आंदोलन पर इस वक्त स्थिर है और पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते तो देशभर से उसके नेता और कार्यकर्ता 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर तक मार्च करेंगे। अगर दिल्ली पुलिस ने रास्ते में कहीं भी उन्हें रोका तो वो उसी जगह को जंतर मंतर बनाकर प्रदर्शन शुरू करेंगे। यानी कॉकरोच जनता पार्टी ये चेतावनी दे रही है कि उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं को जहां भी रोका जाएगा वहीं पर उसी जगह को वो जंतर मंतर बना देंगे। कॉकरोच चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को 4 वजहों से जरूरी बता रही है। पहले वो एसआईआर की प्रक्रिया को वोट चोरी का हिस्सा बताती है और यह आरोप लगाती है कि चुनाव आयोग ने इसकी आड़ में बड़ी संख्या में लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया। दूसरा, सीजेपी ज्ञानेश कुमार पर चुनाव आयोग में मनमानी करने का आरोप लगाती है और ये कहती है कि अगर वो 2029 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे तो देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। तीसरा, सीजेपी की मांग है साल 2023 में बनाए गए उस कानून को निरस्त किया जाए जिसके तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सरकार का पलड़ा

0: दिल्ली में घुस नहीं सकता, इतना डर।
1: हम जंतर मंतर नहीं जा सकते, हमारे बच्चे उन तक नहीं पहुंच सकते, हम मेट्रो बंद कर देंगे, हम किसी का सुनावा नहीं करेंगे, हम ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाएंगे, मेंबर पार्लियामेंट राष्ट्रपति तक नहीं जा सकते हैं। क्या है ये लोकतंत्र है?
2: जब कांग्रेस जनता पार्टी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर आंदोलन किया, तब वो मुद्दा इस देश के करोड़ों युवाओं और बच्चों से जुड़ा मुद्दा था। लेकिन इस बार सीजेपी ने ज्ञानेश कुमार और स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी एसआईआर का मुद्दा उठाया है। उसे बीजेपी, उसके समर्थक एक राजनीतिक मुद्दा बता रहे हैं, जिसे अब तक विपक्षी दल कांग्रेस आम आदमी पार्टी उठा रही है। यहां यह भी समझना जरूरी है कि जब इस मुद्दे पर इतना ज्यादा तनाव है, तब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहां है? 7 और 8 अक्टूबर को उन्हें छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाना था, जहां वो दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर और बस्तर में चित्रकूट के जलप्रपात और कबीरधाम के भोरमदेव मंदिर जाने वाले थे। लेकिन इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन के बीच उनका ये दौरा रद्द हुआ और अभी ज्ञानेश कुमार दिल्ली में मौजूद है, नियमित रूप से चुनाव आयोग के दफ्तर में है जा रहे हैं। हालांकि ज्ञानेश कुमार के बारे में एक अहम बात यह है कि जब से उनके इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग ने जोर पकड़ा है, तब से उन्होंने मीडिया में कोई मौखिक बयान नहीं दिया है।

और अब आइए आपको बताते हैं, जो बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है उसको लेकर आज न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है, बल्कि इसी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक पोस्ट के जरिए ये लिखा है कि राहुल गांधी देश में भ्रम फैला रहे थे, इसके बावजूद जनता ने उनका साथ दिया है। तो आज गृहमंत्री अमित शाह हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, असम से लेकर पश्चिम बंगाल में जो बाई इलेक्शंस में जीत मिली है उसको लेकर उन्होंने विपक्ष पर यह आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग और उसकी प्रक्रिया को लेकर वो लाख भ्रम फैलाते रहे, बावजूद इसके चुनावों में जनता ने उनका साथ दिया। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और वक्त इतना बदल चुका है कि लोग दुआ में याद रखें ना रखें, चुगलियों में जरूर याद रखते हैं। नमस्कार।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल गांधी मोर्चा खोले हुए हैं। इस बीच शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ राहुल ने राष्ट्रपति से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन सौंपा। सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में किलेबंदी इधर कर दी गई है।
1: 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है। कोई भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा।
2: ज्ञानेश कुमार पर संग्राम, आज विपक्ष कल सीजेपी। 4 दिन से लगातार राहुल गांधी का ज्ञानेश कुमार पर वार।
3: मंडे को हम सुप्रीम कोर्ट, यही पूरा का पूरा ग्रुप मेमोरेंडम ले, इफ जस्टिस के लिए मेमोरेंडम लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
2: अब ज्ञानेश कुमार पर लड़ाई राष्ट्रपति के दर तक आई।

0: सीईसी के इस्तीफे की मांग, राष्ट्रपति को इंडिया का ज्ञापन।
1: हमने तो पॉजिटिव आउटलुक से देखा है कि उन्होंने जो दो चार बात कहा कि आई विल इन्वेस्टिगेट, आई विल गो थ्रू द एंड आम को सबूत चाहिए।
0: 10 अक्टूबर को सीजेपी का जंतर मंतर प्लान, किले में तब्दील दिल्ली।
2: डरे हुए हैं और जो आदमी डरता है आज नहीं कल मरता है।
3: भारत जैसे लोकतंत्र में प्रदर्शन की पूरी संभावनाएं हैं और आप जरूर करें प्रदर्शन, बट प्रदर्शन से समाधान नहीं निकलेगा, समाधान संवाद से निकलेगा।
0: एक तरफ दिल्ली किले में तब्दील हो चुकी है, दिल्ली पुलिस से लेकर बीएसएफ भी दिल्ली की सीमाओं पर तैनात है, तो दूसरी तरफ लगातार चौथे दिन राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए उतरे और चौथे दिन अपनी मांग को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दर पर पहुंचते हैं।
4: यहां पर आप देखिए कि संसद भवन से बाहर मार्च करते हुए ये तमाम नेता नजर आ रहे हैं और कुछ इस तरीके से लोकतंत्र बचाओ अभियान छेड़ दिया है यहाँ पे इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने। और बैठक के बाद, 5 बजे की बैठक के बाद इस तरीके से नारेबाजी और घेराबंदी यहाँ पे विजय चौक पर हम लोग पहुँच गए हैं। ये विजय चौक है, पीछे आप देखें कि नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है।
5: मांग तो पूरे देश की जो मांग है कि पूरा जो संरचना है बेईमानी का उसको खत्म किया जाए, और ज्ञानेश जी प्रतीक पुरुष है जो शील्ड बन के खड़े हैं मोदी जी और अमित शाह जी, वो चले जाए।
6: देखिए, मुझे लगता है कि जो सारे देशभक्त हैं वो देश में लोकतंत्र को बचाने में लगे हैं, वो चाहे किसी राजनीतिक दल के सदस्य हो या न हो। और जो आज जो वोटर लिस्ट में पूरे चुनाव प्रक्रिया में जो धूल मिलाने का जो काम हो रहा है वो आज के तारीख में सबसे बड़े देशद्रोही का काम है।
7: मुझे हंसी आ रही कि सरकार इतनी डर गई, लोग परेशान हो गए, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ब्लैंकेट बैन क्यों लगा रहे, सब क्यों बंद कर रहे, सारे मेट्रो ट्रेन बंद, सारी ट्रेनें बंद, सारे बसेस बंद,
8: दिल्ली में घुस नहीं सकते, इतना

राष्ट्रपति संभलने के बाद विपक्ष ने सरकार पर और तेज किए हमले, बोले राहुल, वोट चोरी के हमारे आरोप पर महामहिम भी सहमत। बीजेपी बोली, नेता विपक्ष राहुल ने लांघी संवैधानिक सीमा। आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को नहीं मिली अनुमति, मेट्रो के 45 स्टेशन बंद, दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें रद्द, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली की किलेबंदी पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, कहा, मक्खी मारने के लिए हथौड़ा आप नहीं चला सकते, सब कुछ ठप होने से आम लोग न हो परेशान। उपचुनाव में बीजेपी एनडीए के शानदार प्रदर्शन पर पीएम का पोस्ट, लिखा, इस जनादेश से मिलेगी और मजबूती। अमित शाह बोले, राहुल के झूठ और दुष्प्रचार के बाद भी हमारी बड़ी जीत। जेवर एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी हवाई अड्डा करने पर राजनीतिक युद्ध, अखिलेश बोले, नाम बदलने वालों को बदलेगी जनता, पहले यूपी कैबिनेट के निर्णय पर लगी मुहर। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल गांधी मोर्चा खोले हुए हैं। इस बीच शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ राहुल ने राष्ट्रपति से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन सौंपा। सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली

0: में किलेबंदी इधर कर दी गई है।
1: 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है। कोई भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा।
2: ज्ञानेश कुमार पर संग्राम, आज विपक्ष कल सीजेपी। 4 दिन से लगातार राहुल गांधी का ज्ञानेश कुमार पर वार।
3: मंडे को हम सुप्रीम कोर्ट, यही पूरा का पूरा ग्रुप मेमोरेंडम ले, चीफ जस्टिस के लिए मेमोरेंडम लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
2: अब ज्ञानेश कुमार पर लड़ाई राष्ट्रपति के दर तक आई। सीईसी के इस्तीफे की मांग, राष्ट्रपति को इंडिया का ज्ञापन।
4: हमने तो पॉजिटिव आउटलुक से देखा है कि उन्होंने जो 2-4 बार कहा कि आई विल इन्वेस्टिगेट, आई विल गो थ्रू द एंड आम को सबूत चाहिए।
2: 10 अक्टूबर को सीजेपी का जंतर मंतर प्लान, किले में तब्दील दिल्ली।
5: डरे हुए हैं और जो आदमी डरता है आज नहीं कल मरता है।
6: भारत जैसे लोकतंत्र में प्रदर्शन की पूरी संभावनाएं हैं और आप जरूर करें प्रदर्शन, बट प्रदर्शन से समाधान नहीं निकलेगा, समाधान संवाद से निकलेगा।
2: एक तरफ दिल्ली किले में तब्दील हो चुकी है, दिल्ली पुलिस से लेकर बीएसएफ भी दिल्ली की सीमाओं पर तैनात है, तो दूसरी तरफ लगातार 4th दिन राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए उतरे और 4th दिन अपनी मांग को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दर पर पहुंचते हैं।
7: यहाँ पे आप देखिए कि संसद भवन से बाहर मार्च करते हुए ये तमाम नेता नजर आ रहे हैं और कुछ इस तरीके से लोकतंत्र बचाओ अभियान छेड़ दिया है यहाँ पे इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने। और बैठक के बाद, 5 बजे की बैठक के बाद इस तरीके से नारेबाजी और घेराबंदी यहाँ पे विजय चौक पर हम लोग पहुँच गए हैं। ये विजय चौक है, पीछे आप देखें कि नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है।
8: मांग तो पूरे देश की जो मांग है कि पूरा जो संरचना है बेईमानी का उसको खत्म किया जाए और ज्ञानेश जी प्रतीक पुरुष हैं, जो शील्ड बन के खड़े हैं मोदी जी और अमित शाह जी, वो चले जाए।
9: देखिए, मुझे लगता है कि जो सारे देशभक्त हैं वो देश में लोकतंत्र को बचाने में लगे हैं, वो चाहे किसी राजनीतिक दल के सदस्य हो या न हो। और जो आज जो वोटर लिस्ट में पूरे चुनाव प्रक्रिया में जो धूल मिलाने का जो काम हो रहा है वो आज के तारीख में सबसे बड़े देशद्रोही का काम है।
10: मुझे हंसी आ रही कि सरकार इतनी डर गई, लोग परेशान हो गए, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ब्लैंकेट बैन क्यों लगा रहे, सब क्यों बंद कर रहे, सारे मेट्रो ट्रेन बंद, सारी ट्रेनें बंद, सारे बसेस बंद, दिल्ली में घुस नहीं सकते, इतना डर।
2: इसके 2 मकसद हैं, एक तो इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाना, दूसरा ये बताना कि सारे विपक्षी दल ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा चाहते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने वालों में बड़े नाम थे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, सीपीएम के एमए बेबी, सीपीआई के डी राजा, समाजवादी पार्टी के राजीव राय, सुप्रिया सुले, उमर अब्दुल्ला, मनोज झा और वीसीके के टी तिरुमावलन। जब इंडिया गठबंधन के ये 10 नेता राष्ट्रपति द्रौपदी से मिलने राष्ट्रपति भवन के अंदर पहुंचे तो बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हुई।
3: एक प्रकार से मैं आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि जब हमने राष्ट्रपति को इलेक्शन चोरी वोट चोरी के बारे में बताया तो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने डिनाई नहीं किया। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने यह नहीं कहा कि हिंदुस्तान में चुनाव चोरी नहीं हो रहे हैं। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने उल्टा हमसे कहा कि आप सबूत हमारे पास लाइए। और यही ग्रुप खुशी से जो पूरा का पूरा सबूत हमने कलेक्ट किया है राष्ट्रपति के पास ले जाएगा, ले जाने के लिए तैयार है। पूरा देश जानता है

0: स्टूडेंट्स जानते हैं कि देश में वोट चोरी हो रही है। नरेंद्र मोदी इसके आर्किटेक्ट हैं, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार इसके इम्प्लीमेंटर्स हैं, और इस बात को राष्ट्रपति ने, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने आज डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में सोचेंगी और एक्शन लेंगी।
1: हमने तो पॉजिटिव आउटलुक से देखा है कि उन्होंने जो दो चार बात कहा कि आई विल इन्वेस्टिगेट, आई विल गो थ्रू द डिटेल्स एंड हमको सबूत चाहिए, यू प्लीज सेंड अस द डिटेल्स एविडेंस।
2: हमने डिमांड किया है कि फिर से एक बार ईवीएम को निकाल दो और बैलेट पेपर पे इलेक्शन कराया जाए, और दूसरा कि ये वोट चोरी जहाँ जहाँ हो गए वो सबूत उन्होंने मांगा है, वो सबूत हम लोग तैयार कर रहे हैं और सबूत हम दे देंगे।
3: ये लगातार चौथा दिन है जब ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने विपक्ष उतरा है। 6 अक्टूबर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च किया, पुलिस ने बैरिकेडिंग करके विपक्षी सांसदों को रोका और कुछ को हिरासत में लिया, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पुलिस को चकमा देकर आकाशवाणी भवन परिसर में धरना दे दिया, और पूरे 8 घंटे तक धरना देने के बाद पुलिस ने राहुल और प्रियंका को जबरन हिरासत में लेकर उठाया। 7 अक्टूबर कांग्रेस ने पहले इंडिया गठबंधन के सांसदों को लंच दिया और फिर जंतर बंतर के लिए कूच किया। दिल्ली पुलिस ने दूसरे दिन भी विपक्षी सांसदों की बस को रोका तो राहुल और प्रियंका ने सड़क पर ही ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, और आखिर में 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने राहुल और प्रियंका को फिर से हिरासत में लेकर धरना खत्म करवाया। 8 अक्टूबर तीसरे दिन इंडिया गठबंधन के सांसदों ने कनॉट प्लेस में लंच किया और बसों से सीधे राजघाट यानी गांधी समाधि के लिए कूच किया। यहां भी भारी फोर्स की तैनाती की गई, लेकिन राहुल प्रियंका समेत सभी विपक्षी सांसद गांधी स्थल पर बैठकर वापस आ गए। 9 अक्टूबर चौथे दिन ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलते हैं और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपते हैं।
4: हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम जनता की अदालत पे तो है ही, हम सड़कों पर हैं, और वोट चोरी इस देश में नहीं चल सकती है।
5: दैट इज मंडे द इंडिया ब्लॉक पार्टी लीडर्स विल गो टू सुप्रीम कोर्ट।
6: इस बीच बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने संवैधानिक सीमाएं लांघ दी हैं।
7: संवैधानिक संस्थान महामहिम राष्ट्रपति एक व्यक्ति नहीं है, वो देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है। उसको लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो न सिर्फ विचित्र लगता है बल्कि उसमें सच से ज्यादा सियासत की गंध आ रही है। उनका यह कहना कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने उनके आरोपों को स्वीकार कर लिया है, यह दर्शाता है कि जो अभी तक राहुल गांधी देश की हर संस्था के बारे में, हर संवैधानिक संस्था को अपनी राजनीति का शिकार बनाने का दुष्चक्र रच रहे हैं, उन्होंने अब आज ऐसा प्रतीत होता है कि सारी सीमाएं पार कर दी।
6: आज राहुल गांधी चेन्नई में रहेंगे, छात्रों के साथ कार्यक्रम करेंगे, और दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी ने चेतावनी दे रखी है कि भले ही दिल्ली पुलिस उन्हें जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति न दे, लेकिन फिर भी वो जंतर मंतर के लिए कूच जरूर करेंगे।
3: इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ छिड़े संग्राम में एकजुटता दिखाई, तो 10 अक्टूबर को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर कूच का ऐलान करके टेंशन बढ़ा रखी है।
8: इट इज आवर डेमोक्रेटिक राइट कि अगर हम सरकार से किसी बात पे इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो हम अपनी बात को डेमोक्रेटिक और पीसफुल तरीके से रख सकते हैं। आज इस देश में हालात ये हो गए हैं कि एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट पर प्रोटेस्ट करने के लिए हमको प्रोटेस्ट करनी पड़ रही है। इतना तो ब्रिटिश राज में भी नहीं होता था। अभी मुद्दा तो सेकेंडरी हो गया है, अभी तो ये हो गया है कि इनको जंतर मंतर पर पहुंचने ही मत दो। और जो पूरी लड़ाई है वो इसी बात पे थी कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है। हमारी लड़ाई, हमारे जो सवाल हैं, हमारी जो मांगे हैं, वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। और जिस तरह से बीजेपी ज्ञानेश कुमार के बचाव में आई है, जिस तरह से तमाम राज्यों में जहां पर भाजपा

0: की सरकार है, वहां पे हमारे लोगों को डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, उससे हमारी लड़ाई और क्लियर हो रही है कि यस बीजेपी एंड द इलेक्शन कमीशन आर वर्किंग टुगेदर, और इसी बात की तो सारी लड़ाई है हमारी।
1: जुलाई में हुए जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन पर दूध की जली दिल्ली पुलिस अक्टूबर में छाछ फूंक कर पी रही है। दिल्ली पुलिस बार बार कह रही है कि 10 अक्टूबर वाले इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है और उसके 3 कारण भी गिना रही है।
2: 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है, कोई भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा।
1: पहला, परमिशन 10 दिन पहले मांगनी होती है, जबकि सीजेपी ने 7 अक्टूबर को सिर्फ इंटीमेशन यानी सूचना दी है। दूसरा, पिछली बार परमिशन लेकर सीजेपी ने वादा खिलाफी की। तीसरा, मौजूदा लॉ एंड ऑर्डर के हालात को देखते हुए परमिशन नहीं दी जा सकती।
3: साहिल, मैं तो क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि मैं परमिशन मांगने नहीं गया था,
4: इन्फॉर्म करने,
3: मैं इन्फॉर्मेशन देने गया था, इंटीमेशन देने गया था फॉर्मल वे में। Okay. हम लोगों ने जब अनाउंस किया था, पुलिसिंग का पॉलिसी है कि दे वुड मॉनिटर व्हाट द सिचुएशन इज इन द कंट्री एंड इन दिल्ली, दिल्ली पुलिस वुड डू इट, तो उनको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन था कि क्या होने वाला है। 7 तारीख को फिर मैं गया, वहां पे मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन जो हम लोगों ने लेटर दिया उसमें हमने एसर्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज अस द राइट टू प्रोटेस्ट, लेकिन पुलिस के तरफ से रवैया बहुत खराब था। दे डिड नॉट से एनीथिंग, उन्होंने ये नहीं बोला कि देंगे नहीं देंगे, उन्होंने एक्नॉलेज किया लेटर को एंड एक स्टैम्प डाल के हमें दे दिया। नन ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ दिल्ली पुलिस मेट मी, जबकि लास्ट टाइम उन्होंने 5 राउंड सीनियर ऑफिसर से हमें मिलवाया था, मैंने किया था लास्ट टाइम भी प्रोसेस, लेकिन इस बार बिल्कुल भी कोई सीनियर ऑफिसर मिलना नहीं चाह रहा था। And this is a new tactic that they have adopted.
4: What is the tactic you think that
3: the tactic is to not allow any democratic dissent in the country. Delhi also, the last time there were peaceful protests, it happened for such a long time. And इस बार वो चाहते हैं कि बिल्कुल भी देश का युवा रोड पे ना निकले. And वही tactic इसमें भी दिख रहा है कि कुछ भी information उनके तरफ से भी हमें ना आए, हमारे से वो सारे इन्फॉर्मेशन ले ले जो हम कोऑपरेट करना भी चाहते हैं। हमने उनको जब मैं मिला था, जो भी अधिकारी था, मैंने बोला था कि वी विल फुली कोऑपरेट विद देम इन द एक्सपेक्टेशन दैट द पुलिस वुड आल्सो कोऑपरेट विद अस, बिकॉज द पुलिस इज नॉट, दे आर नॉट द वंस हु विल गिव परमिशन वेदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और नॉट। कितना स्ट्रेंज और एब्सर्ड कॉन्सेप्ट है कि सोचिए गांधी जी जब दांडी मार्च निकाल देंगे, वो ब्रिटिशर्स को जाके बोलेंगे साहेब 2 घंटे का टाइम दीजिए, मैं डांडी मार्च करके आता हूं। इज दिस हाउ द कंट्री विल फंक्शन? एंड ये गुलामी वाला जो मानसिकता है हमारे जो इंडिपेंडेंस के बाद 80 साल में हमारे अंदर घुसाया गया कि आप परमिशन लीजिए स्टेट से कि उनके खिलाफ ही प्रोटेस्ट करने, तो उनसे परमिशन लीजिए। हाउ एब्सर्ड कि अभी भी हम लोग वही लैंग्वेज यूज कर रहे हैं 80 साल बाद।
1: लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि उन्हें परमिशन की कोई जरूरत नहीं है।
5: ज्ञानेश कुमार ने परमिशन लिया था, 13 करोड़ वोट डिलीट करने से पहले ज्ञानेश कुमार ने परमिशन लिया था। सुप्रीम कोर्ट तो बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल भी नहीं दिया था फॉर्म 6 के मॉडिफिकेशन का। तो जब ज्ञानेश कुमार बिना किसी को बताए, बिना किसी से पूछे 13 करोड़ वोट डिलीट करता है, तो उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 19, क्या जरूरत है परमिशन?
1: बीजेपी की चेतावनी को देखते हुए दिल्ली में जैसे किलेबंदी कर दी गई है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर फोर्स तैनात हैं, चेकिंग चल रही है, तो जंतर मंतर के आसपास कई स्तर की बैरिकेडिंग की गई है, दंगा रोधी वाहन भी तैनात किए गए हैं, 300 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जगह जगह माइक लगाए गए हैं, 57 मेट्रो स्टेशन बंद हैं, दिल्ली निजामुद्दीन की 165 में से 38 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं।
6: मुझे लगता है कि अब बात थोड़ी उसके आगे चली गई है। एक ज्ञानेश कुमार को, जिसको हम एक ब्यूरोक्रेट कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेट ही वो, कोई मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, एक ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए अपने जम्मू कश्मीर से फोर्स बुला ली, अपने नक्सल एरिया से फोर्स बुला ली, आपसे आपको वो भी कम लगा, आपने सारे रास्ते बंद कर दिए, आपको वो भी कम लगा, आपने मेट्रोज बंद कर दिए, आपको वो भी कम लगा, आपने रेलवेज बंद कर दी, देश ही बंद कर दो ना, इलेक्शन बंद कर दो, देश ही बंद कर दो। आर्टिकल 19 गिव्स अस द राइट टू प्रोटेस्ट एंड जंतर मंतर इज अ डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट। अगर हम मुंबई में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अगर हम बेंगलोर में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो हम दिल्ली में क्यों नहीं कर सकते? क्या दिल्ली किसी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर चल रही है? मुंबई में पुलिस ने पूरा कोऑपरेट किया, बेंगलुरु में पूरा कोऑपरेट किया, दिल्ली में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, दिल्ली में कौन सा लॉ चल रहा है अलग से? तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि दिल्ली का लॉ बुक कोई और है क्या जो इंडिया से अलग है।
1: दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन वाले अल्टीमेटम के चलते पुलिस सतर्क है, लेकिन दिल्ली में किलेबंदी और इतनी सख्ती को लेकर बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। जी हाँ, सीजेपी के प्रदर्शन से पहले मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और कई ट्रेनों को रद्द करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और ये याचिका सीपीएम के महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद एमए बेबी ने दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस भी हुई। साथ ही सीजीआई की तरफ से टिप्पणी भी की गई। चीफ जस्टिस की बेंच में कपिल सिब्बल ने कहा, दिल्ली में ट्रेनें रद्द, मेट्रो बंद, होटल बंद हैं। प्रशांत भूषण ने कहा, पूरी दिल्ली बंद कर दी है। गोपाल शंकर नारायणन ने कहा, 57 मेट्रो स्टेशन भी बंद किए हैं। इस पर सीजीआई ने कहा, सुबह तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर जस्टिस बागची ने कहा कि प्रदर्शन का हक है, लेकिन कानून के हिसाब से इजाजत मांगिए, नहीं देते तो कोर्ट आइए। गोपाल शंकर नारायणन ने कहा, इसमें समय लगेगा, प्रोटेस्ट कल है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, आपको कुछ चीजों को रोकना ही होगा, उन्हें रोकने के लिए सिर्फ उतनी ही कार्रवाई करें जितनी जरूरी हो। सुप्रीम अदालत ने आयोजकों को बुलाया और कपिल सिब्बल आयोजकों को नहीं ला पाए। अदालत में पुलिस प्रशासन के एहतियाती कदमों को लेकर भी चर्चा हुई और सरकार ने अनुपातिक तैयारियों का वादा किया और कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की बात कही। एहतियातन दिल्ली पुलिस अब भी दिल्ली में आने जाने वालों पर नजर रख रही है। दिल्ली के बॉर्डर पर वाहनों की तलाशी जारी है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
7: सीजेपी के प्रमुख अभिजीत देबके प्रदर्शन करने पर अड़े हुए हैं और इसी प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट है। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से पुख्ता जबरदस्त इंतजाम किए गए।
1: बाजारों से लेकर बॉर्डर तक हाई अलर्ट पर पुलिस, जगह जगह दिल्ली पुलिस की बुनादी।
2: नई दिल्ली में और सभी जगह धारा 163 BNSS लागू है।
1: 10 अक्टूबर यानी कल जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली किसी छावनी में तब्दील हो चुकी है। दावा यही है कि प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, लिहाजा भीड़ जुटी तो एक्शन होगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से लोगों को सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली अफवाहों से बचने की सलाह दी जा रही है।
8: किसी भी भड़काऊ संदेश या उकसावे में नहीं आए, जिम्मेदार नागरिक बने और कानून का पालन करें। अपने क्षेत्र की सुरक्षा में पुलिस और प्रशासन का साथ दें और अपने परिवार वाले और अपने बच्चों को इस बारे में समझाएं कि इस तरह की अननेसेसरी भीड़ में या ऐसे कोई प्रोटेस्ट में किसी में हिस्सा ना लें।
1: ये वीडियो दिल्ली के चांदनी चौक का है। मस्जिद के केयर टेकर की माने तो बीते दिन स्थानीय पुलिस ने लोगों से जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट से दूर रहने की अपील की थी।
9: पुलिस अफसर जो यहाँ के बीट अफसर है ना, वो आए थे शाम के 5 बजे और उन्होंने ऐलान किया था कि प्रोटेक्शन जो हो रहा है जंतर मंतर पे, उसमें आदमी को नहीं जाना चाहिए और नहीं अपने बच्चों को जाने देना चाहिए। जी हाँ, यही उन्होंने ऐलान किया था, इस बात पे अमल करना चाहिए हर आदमी को।
10: कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक पुलिसकर्मी एक मस्जिद के अंदर जाकर के मोबाइल से पढ़ के एक अनाउंसमेंट कर रहा है, जिसमें वो लोगों को माइक पे बता रहा है कि किस तरीके से इस प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है और वो अपने बच्चों को भी समझाएं कि वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा ना बने। इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी मस्जिद के बाहर है। अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो ये चांदनी चौक में स्थित शाही मस्जिद है जिसके अंदर का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। यहीं पर दिल्ली पुलिस आई और यहां पर आकर के दिल्ली पुलिस ने अनाउंसमेंट की है और लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है उसके लिए परमिशन नहीं मिली है और अपने बच्चों को भी वो समझाएं कि वो आगे जाकर के इस प्रोटेस्ट का हिस्सा ना बने क्योंकि लीगल एक्शन हो सकता है।
1: दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में भी दिल्ली पुलिस लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को बता रही है कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है, धारा 163 लागू है, लिहाजा प्रोटेस्ट में शामिल ना हो।
2: 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है। नई दिल्ली में और सभी जगह धारा 163 BNSS लागू है, जो कि

0: कोई भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा। आप सभी को कोशिश कर दें, बता दें, अपने बच्चे जो भी आस पड़ोसी उन सबको बता करके ब्रीफ कर दें कि वहां पर कोई भी परमिशन नहीं है।
1: तो दिल्ली की कुछ मस्जिदों से ऐलान किया गया है कि 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल ना हो।
2: इस ऐलान को गौर समाज फरमाए कि जो जंतर मंतर पर 8-9-10 तारीख को जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो इल्लीगल है, वहां पर कोई व्यक्ति ना जाए। इसलिए कि सरकार ने वहां पर धारा 173 लगाई हुई है। कृपया आप प्रशासन का साथ दें, कोई वहां ना जाए।
1: दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। बिना परमिशन सीजेपी को प्रदर्शन या धरना करने की इजाजत नहीं है।
3: क्या परमिशन मांगी गई, कब मांगी गई?
4: 7 तारीख को कांग्रेस जनता पार्टी ने एक परमिशन एप्लीकेशन दी थी, इंटीमेशन करके, जिसमें ये बताया गया कि वो सीईसी की अकाउंटेबिलिटी के रिगार्डिंग 10 तारीख को जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन जो इंटीमेशन की है उस पर गौर किया गया और ये पाया गया कि ये एप्लीकेशन इस्टेब्लिश्ड जो गाइडलाइन है उसके तहत हमारे पास नहीं आई है, बहुत ही कम समय में आई है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने उनका जो प्रीवियस कंडक्ट था, उन्होंने जो हमारे लॉफुल डायरेक्शंस को नहीं फॉलो किया या उनकी जो अंडरटेकिंग दी गई थी उनके द्वारा उसको भी नहीं कंप्लाई किया। और प्रेजेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और पब्लिक सेफ्टी के मद्देनज़र इस एप्लीकेशन जो थी उसको रिजेक्ट किया जाता है।
1: पुलिस की दलील है कि पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल सीजेपी की तरफ से नहीं रखा गया, हिंसा हुई, कई पुलिस वाले जख्मी हुए, लिहाजा अब की बार प्रदर्शन के नाम पर दिल्ली की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होगा।
5: 2 अक्टूबर से लेकर अब तक 27 FIR दर्ज हो चुकी हैं। पुलिस को अंदेशा है कि प्रदर्शन के नाम पर कुछ लोग दिल्ली की कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं, इसीलिए सख्ती दिल्ली पुलिस ने की है।
1: सीजेपी का ऐलान यही है कि जंतर मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए 7 अक्टूबर को सीजेपी की तरफ से परमिशन मांगी गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं दी गई। इसके बावजूद सीजेपी ने जंतर मंतर पहुंचने का ऐलान किया है। ऐसे में सीजेपी से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। जंतर मंतर को बैरिकेड से घेरा गया है, मतलब सीजेपी के समर्थकों को जंतर मंतर जाने से रोकने की प्लानिंग है। इसी कड़ी में नए CCTV और लाउडस्पीकर तक लगाए गए हैं।
6: जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली पुलिस की कोशिश ऐसी है कि कहीं कोई जमावड़ा एक जगह पर ज्यादा ना होने पाए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो। कई जगहों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के तहत जो कैमरे आते हैं, जो जुड़े हुए हैं, उन कैमरों को भी लगाया गया है। हालांकि कई ऐसे कैमरे हैं जो इस इलाके में पहले लगे हुए थे, लेकिन आप देखिए इस खंभे पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको जो कैमरा नीचे लगा हुआ दिख रहा है ये अभी इंस्टॉल किया गया है। इसके ऊपर लाउडस्पीकर लगाया गया है, जिससे लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप यहाँ पर इकट्ठे ना हो, ये गैर कानूनी है। तो पुलिस ने जगह जगह कंट्रोल रूम बना रखे हैं, एरियो को डिवाइड कर रखा है और हर एरिया की जिम्मेदारी एक IPS स्तर के अधिकारी की है।
1: ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है। थाने के बाहर दिल्ली पुलिस की तरफ से पोस्टर पर चेतावनी लिखी हुई है। थाने के बाहर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं।
6: इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के ठीक बाहर, जो पिछले कई दिनों से जंग का अखाड़ा बना हुआ है। और इस थाने के बाहर की आप तैनाती देखिए, जैसे किले की बाहर पूरी सुरक्षा होती है, उस तरीके से इस थाने की भी सुरक्षा के लिए बाहर बैरिकेड है। अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस गेट पर तैनात मिलेगी, दिल्ली पुलिस आपको तैनात मिलेगी और यहाँ पर चेतावनी भी लगाई गई है। ठीक आप देखिए, बैरिकेड पर चेतावनी लगाई गई है कि BNSS की धारा 163 लागू है, अगर लोग जुटेंगे तो उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी।
1: जंतर मंतर की तरफ जाने वाले रास्ते की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है।
7: इस वक्त मैं जनपथ रोड पर हूं और मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये जो सड़क है ये सीधा जंतर मंतर की तरफ जाती है। यहां से करीब 500 मीटर आगे ही वो धरना स्थल है जहां अमूमन लोग जाके

0: बैठते हैं और धरना देते हैं। अगर आप यहाँ तैयारियां देखें तो इस पूरी सड़क को ट्रैफिक के लिए और पैदल मूवमेंट के लिए भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात भी कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, अगर आप देखें यहाँ आसपास करीब हर खंभे पर कैमरे लगा दिए गए हैं और ऐसे बड़े लाउड स्पीकर लगा दिए गए हैं। इन लाउड स्पीकर्स का ये काम है कि ये लगातार अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा होना इस वक्त गैरकानूनी है। इस पूरे इलाके में 163 बीएनएसएस की धारा लगी हुई है जो किसी भी तरह के प्रदर्शन को वर्जित करती है, और अगर यहाँ पर कोई पहुंचता है या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोशिश करता है, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करता है या पुलिस वालों पर हमला करने की कोशिश करता है तो उनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
1: संसद मार्ग की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर बैरिकेड को दूसरे बैरिकेड से जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने जंजीर और ताले का इस्तेमाल किया है।
2: इस वक्त हम संसद मार्ग पर मौजूद है जहाँ पर सीजेपी की प्रस्तावित प्रोटेस्ट से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। और ये आप देखिए, ये जो बैरिकेड रखे गए हैं यहाँ, इन बैरिकेड में ये चेन्स लगाई जा रही है मोटी मोटी। इन चेन्स को पेच के जरिए अगर आप देखेंगे तो इनको पेच के जरिए इससे जोड़ दिया गया है बैरिकेड से, और नीचे की तरफ ऐसे लॉक सिस्टम लगाए गए हैं ताकि इस लॉक को दूसरा जो ये लॉक सिस्टम है, जो इस अगर हम कहें दूसरा बैरिकेड है, इस बैरिकेड में जो लॉक सिस्टम है इस चेन को इससे जोड़ा जा सके। यानी कि इन बैरिकेड को हटाना इतना आसान नहीं होगा। आप दरअसल पुलिस ने तैयारी की है जो इस पूरे प्रोटेस्ट से निपटने के लिए, क्योंकि परमिशन तो दी नहीं है और उसके कारण पुलिस ने बताया कि एक तो सिर्फ 3 दिन पहले एप्लीकेशन दी गई और दूसरा जो पिछला आचरण था परमिशन लेने के बाद प्रोटेस्ट का, उसको देखते हुए परमिशन डिनाई की जा रही है।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: राष्ट्रपति संभलने के बाद विपक्ष ने सरकार पर और तेज किए हमले, बोले राहुल, वोट चोरी के हमारे आरोप पर महामहिम भी सहमत। बीजेपी बोली, नेता विपक्ष राहुल ने लांघी संवैधानिक सीमा। आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को नहीं मिली अनुमति, मेट्रो के 45 स्टेशन बंद, दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें रद्द, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली की किलेबंदी पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, कहा मक्खी मारने के लिए हथौड़ा आप नहीं चला सकते, सब कुछ ठप होने से आम लोग न हो परेशान। उपचुनाव में बीजेपी एनडीए के शानदार प्रदर्शन पर पीएम का पोस्ट, लिखा इस जनादेश से मिलेगी और मजबूती। अमित शाह बोले, राहुल के झूठ और दुष्प्रचार के बाद भी हमारी बड़ी जीत। जेवर एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी हवाई अड्डा करने पर राजनीतिक युद्ध, अखिलेश बोले नाम बदलने वालों को बदलेगी जनता, पहले यूपी कैबिनेट के निर्णय पर लगी मुहर। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल गांधी मोर्चा खोले हुए हैं। इस बीच शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ राहुल ने राष्ट्रपति से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन सौंपा। सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में किलेबंदी इधर कर दी गई है।
1: 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है, कोई भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा।

0: ज्ञानेश कुमार पर संग्राम, आज विपक्ष कल सीजेपी। चार दिन से लगातार राहुल गांधी का ज्ञानेश कुमार पर वार।
1: मंडे को हम सुप्रीम कोर्ट, यही पूरा का पूरा ग्रुप मेमोरेंडम ले, इफ जस्टिस के लिए मेमोरेंडम लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
0: अब ज्ञानेश कुमार पर लड़ाई राष्ट्रपति के दर तक आई। सीईसी के इस्तीफे की मांग, राष्ट्रपति को इंडिया का ज्ञापन।
2: हमने तो पॉजिटिव आउटलुक से देखा है कि उन्होंने जो दो चार बात कहा कि आई विल इन्वेस्टिगेट, आई विल गो थ्रू द एंड आम को सबूत चाहिए।
0: 10 अक्टूबर को सीजेपी का जंतर मंतर प्लान, किले में तब्दील दिल्ली।
3: डरे हुए हैं और जो आदमी डरता है आज नहीं कल मरता है।
4: भारत जैसे लोकतंत्र में प्रदर्शन की पूरी संभावनाएं हैं और आप जरूर करें प्रदर्शन, बट प्रदर्शन से समाधान नहीं निकलेगा, समाधान संवाद से निकलेगा।
0: एक तरफ दिल्ली किले में तब्दील हो चुकी है, दिल्ली पुलिस से लेकर बीएसएफ भी दिल्ली की सीमाओं पर तैनात है, तो दूसरी तरफ लगातार चौथे दिन राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए उतरे और चौथे दिन अपनी मांग को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दर पर पहुंचते हैं।
5: यहाँ पे आप देखिए कि संसद भवन से बाहर मार्च करते हुए ये तमाम नेता नजर आ रहे हैं और कुछ इस तरीके से लोकतंत्र बचाओ अभियान छेड़ दिया है यहाँ पे इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने। और बैठक के बाद, 5 बजे की बैठक के बाद इस तरीके से नारेबाजी और घेराबंदी यहाँ पे विजय चौक पर हम लोग पहुँच गए हैं। ये विजय चौक है, पीछे आप देखें कि नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है।
6: मांग तो पूरे देश की जो मांग है कि पूरा जो संरचना है बेईमानी का, उसको खत्म किया जाए। और ज्ञानेश जी प्रतीक पुरुष हैं, जो शील्ड बन के खड़े हैं मोदी जी और अमित शाह जी, वो चले जाए।
7: देखिए, मुझे लगता है कि जो सारे देशभक्त हैं वो देश में लोकतंत्र को बचाने में लगे हैं, वो चाहे किसी राजनीतिक दल के सदस्य हो या न हो। और जो आज जो वोटर लिस्ट में पूरे चुनाव प्रक्रिया में जो धूल मिलाने का जो काम हो रहा है, वो आज के तारीख में सबसे बड़े देशद्रोही का काम है।
8: मुझे हंसी आ रही कि सरकार इतनी डर गई, लोग परेशान हो गए। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ब्लैंकेट बैन क्यों लगा रहे, सब क्यों बंद कर रहे, सारे मेट्रो ट्रेन बंद, सारी ट्रेनें बंद, सारे बसेस बंद, दिल्ली में घुस नहीं सकता, इतना डर।
0: इसके दो मकसद हैं, एक तो इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाना, दूसरा ये बताना कि सारे विपक्षी दल ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा चाहते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने वालों में बड़े नाम थे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, सीपीएम के एमए बेबी, सीपीआई के डी राजा, समाजवादी पार्टी के राजीव राय, सुप्रिया सुले, उमर अब्दुल्ला, मनोज झा और वीसीके के टी तिरुमावलन। जब इंडिया गठबंधन के ये 10 नेता राष्ट्रपति द्रौपदी से मिलने राष्ट्रपति भवन के अंदर पहुंचे, तो बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हुई।
1: एक प्रकार से मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि जब हमने राष्ट्रपति को इलेक्शन चोरी वोट चोरी के बारे में बताया तो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने डिनाई नहीं किया। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने यह नहीं कहा कि हिंदुस्तान में चुनाव चोरी नहीं हो रहे हैं। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने उल्टा हमसे कहा कि आप सबूत हमारे पास लाइए, और यही ग्रुप खुशी से जो पूरा का पूरा सबूत हमने कलेक्ट किया है राष्ट्रपति के पास ले जाएगा, ले जाने के लिए तैयार है। पूरा देश जानता है, स्टूडेंट्स जानते हैं कि देश में वोट चोरी हो रही है। नरेंद्र मोदी इसके आर्किटेक्ट हैं, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार इसके इम्प्लीमेंटर्स हैं, और इस बात को राष्ट्रपति ने, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने आज डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में सोचेंगी और एक्शन लेंगी।
2: हमने तो पॉजिटिव आउटलुक से देखा है कि उन्होंने जो दो चार बात कहा कि आई विल इन्वेस्टिगेट, आई विल गो थ्रू द डिटेल्स एंड हमको सबूत चाहिए, यू प्लीज सेंड अस द डिटेल्स एविडेंस।
3: हमने डिमांड किया है कि फिर से एक बार ईवीएम को निकाल दो और बैलेट पेपर पे इलेक्शन कराया जाए, और दूसरा कि ये वोट चोरी जहाँ जहाँ हो गए वो सबूत उन्होंने मांगा है, वो सबूत हम लोग तैयार कर रहे हैं और सबूत हम दे देंगे।
0: ये लगातार चौथा दिन है जब ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने विपक्ष उतरा है। 6 अक्टूबर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च किया, पुलिस ने बैरिकेडिंग करके विपक्षी सांसदों को रोका और कुछ को हिरासत में लिया, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पुलिस को चकमा देकर आकाशवाणी भवन परिसर में धरना दे दिया और पूरे 8 घंटे तक धरना देने के बाद पुलिस ने राहुल और प्रियंका को जबरन हिरासत में लेकर उठाया। 7 अक्टूबर कांग्रेस ने पहले इंडिया गठबंधन के सांसदों को लंच दिया और फिर जंतर बंतर के लिए कूच किया। दिल्ली पुलिस ने दूसरे दिन भी विपक्षी सांसदों की बस को रोका तो राहुल और प्रियंका ने सड़क पर ही ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और आखिर में 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने राहुल और प्रियंका को फिर से हिरासत में लेकर धरना खत्म करवाया। 8 अक्टूबर तीसरे दिन इंडिया गठबंधन के सांसदों ने कनॉट प्लेस में लंच किया और बसों से सीधे राजघाट यानी गांधी समाधि के लिए कूच किया। यहां भी भारी फोर्स की तैनाती की गई, लेकिन राहुल प्रियंका समेत सभी विपक्षी सांसद गांधी स्थल पर बैठकर वापस आ गए। 9 अक्टूबर चौथे दिन ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलते हैं और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपते हैं।
9: हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम जनता की अदालत पे तो है ही, हम सड़कों पर हैं और वोट चोरी इस देश में नहीं चल सकती है।
10: दैट इज मंडे द इंडिया ब्लॉक पार्टी लीडर्स विल गो टू सुप्रीम कोर्ट।
11: इस बीच बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने संवैधानिक सीमाएं लांघ दी हैं।
12: संवैधानिक संस्थान महामहिम राष्ट्रपति एक व्यक्ति नहीं है, वो देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है। उसको लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो न सिर्फ विचित्र लगता है बल्कि उसमें सच से ज्यादा सियासत की गंध आ रही है। उनका यह कहना कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने उनके आरोपों को स्वीकार कर लिया है, यह दर्शाता है कि जो अभी तक राहुल गांधी देश की हर संस्था के बारे में, हर संवैधानिक संस्था को अपनी राजनीति का शिकार बनाने का दुष्चक्र रच रहे हैं, उन्होंने अब आज ऐसा प्रतीत होता है कि सारी सीमाएं पार कर दी।
11: आज राहुल गांधी चेन्नई में रहेंगे, छात्रों के साथ कार्यक्रम करेंगे और दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी ने चेतावनी दे रखी है कि भले ही दिल्ली पुलिस उन्हें जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति न दे, लेकिन फिर भी वो जंतर मंतर के लिए कूच जरूर करेंगे।
0: इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ छिड़े संग्राम में एकजुटता दिखाई तो 10 अक्टूबर को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर कूच का ऐलान करके टेंशन बढ़ा रखी है।
13: इट इज आवर डेमोक्रेटिक राइट कि अगर हम सरकार से किसी बात पे इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो हम अपनी बात को डेमोक्रेटिक और पीसफुल तरीके से रख सकते हैं। आज इस देश में हालात ये हो गए हैं कि एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट पर प्रोटेस्ट करने के लिए हमको प्रोटेस्ट करनी पड़ रही है। इतना तो ब्रिटिश राज में भी नहीं होता था। अभी मुद्दा तो सेकेंडरी हो गया है, अभी तो ये हो गया है कि इनको जंतर मंतर पर पहुंचने ही मत दो। और जो पूरी लड़ाई है वो इसी बात पे थी कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है। हमारी लड़ाई, हमारे जो सवाल हैं, हमारी जो मांगे हैं वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। और जिस तरह से बीजेपी ज्ञानेश कुमार के बचाव में आई है, जिस तरह से तमाम राज्यों में जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पे हमारे लोगों को डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, उससे हमारी लड़ाई और क्लियर हो रही है कि यस, बीजेपी एंड द इलेक्शन कमीशन आर वर्किंग टुगेदर, और इसी बात की तो सारी लड़ाई है हमारी।
0: जुलाई में हुए जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन पर दूध की जली दिल्ली पुलिस अक्टूबर में छाछ फूंक कर पी रही है। दिल्ली पुलिस बार बार कह रही है कि 10 अक्टूबर वाले इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है और उसके 3 कारण भी गिना रही है।
14: 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है, कोई भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा।
0: पहला, परमिशन 10 दिन पहले मांगनी होती है, जबकि सीजेपी ने 7 अक्टूबर को सिर्फ इंटीमेशन यानी सूचना दी है। दूसरा, पिछली बार परमिशन लेकर सीजेपी ने वादा खिलाफी की। तीसरा, मौजूदा लॉ एंड ऑर्डर के हालात को देखते हुए परमिशन नहीं दी जा सकती।
15: साहिल, मैं तो क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि मैं परमिशन मांगने नहीं गया था,
16: इन्फॉर्म करने,
15: मैं इन्फॉर्मेशन देने गया था, इंटीमेशन देने गया था फॉर्मल वे में। हम लोगों ने जब अनाउंस किया था, पुलिसिंग का पॉलिसी है कि दे वुड मॉनिटर व्हाट द सिचुएशन इज इन द कंट्री एंड इन दिल्ली, दिल्ली पुलिस वुड डू इट। तो उनको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन था कि क्या होने वाला है। 7 तारीख को फिर मैं गया, वहां पे मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन जो हम लोगों ने लेटर दिया उसमें हमने एसर्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज अस द राइट टू प्रोटेस्ट, लेकिन पुलिस के तरफ से रवैया बहुत खराब था। दे डिड नॉट से एनीथिंग, उन्होंने ये नहीं बोला कि देंगे नहीं देंगे, उन्होंने एक्नॉलेज किया लेटर को एंड एक स्टैम्प डाल के हमें दे दिया। नन ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ दिल्ली पुलिस मेट मी, जबकि लास्ट टाइम उन्होंने 5 राउंड सीनियर ऑफिसर से हमें मिलवाया था, मैंने किया था लास्ट टाइम भी प्रोसेस, लेकिन इस बार बिल्कुल भी कोई सीनियर ऑफिसर मिलना नहीं चाह रहा था। And this is a new tactic that they have adopted.
16: What is the tactic you think that...
15: The tactic is to not allow any democratic dissent in the country. Delhi, also the last time there were peaceful protests, it happened for such a long time. And is bar wo chahte hai ki bilkul bhi desh ka yuva road pe na nikle. And wahi tactic isme bhi dikh raha hai ki kuch bhi information unke taraf se bhi hame na aaye. हमारे से वो सारे इन्फॉर्मेशन ले ले जो हम कोऑपरेट करना भी चाहते हैं। हमने उनको जब मैं मिला था, जो भी अधिकारी था, मैंने बोला था कि वी विल फुली कोऑपरेट विद देम इन द एक्सपेक्टेशन दैट द पुलिस वुड आल्सो कोऑपरेट विद अस, बिकॉज द पुलिस इज नॉट, दे आर नॉट द वंस हु विल गिव परमिशन वेदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और नॉट। कितना स्ट्रेंज और एब्सर्ड कॉन्सेप्ट है कि सोचिए गांधी जी जब दांडी मार्च निकाल देंगे, वो ब्रिटिशर्स को जाके बोलेंगे साहेब 2 घंटे का टाइम दीजिए, मैं डांडी मार्च करके आता हूं। इज दिस हाउ द कंट्री विल फंक्शन? एंड ये गुलामी वाला जो मानसिकता है हमारे जो इंडिपेंडेंस के बाद 80 साल में हमारे अंदर घुसाया गया कि आप परमिशन लीजिए स्टेट से कि उनके खिलाफ ही प्रोटेस्ट करने, तो उनसे परमिशन लीजिए। हाउ एब्सर्ड कि अभी भी हम लोग वही लैंग्वेज यूज कर रहे हैं 80 साल बाद।
0: लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि उन्हें परमिशन की कोई जरूरत नहीं है।
17: ज्ञानेश कुमार ने परमिशन लिया था, 13 करोड़ वोट डिलीट करने से पहले ज्ञानेश कुमार ने परमिशन लिया था। सुप्रीम कोर्ट तो बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल भी नहीं दिया था फॉर्म 60 मॉडिफिकेशन का। तो जब ज्ञानेश कुमार बिना किसी को बताए, बिना किसी से पूछे 13 करोड़ वोट डिलीट करता है, तो उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 19, क्या जरूरत है परमिशन?
0: बीजेपी की चेतावनी को देखते हुए दिल्ली में जैसे किलेबंदी कर दी गई है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर फोर्स तैनात हैं, चेकिंग चल रही है, तो जंतर मंतर के आसपास कई स्तर की बैरिकेडिंग की गई है, दंगा रोधी वाहन भी तैनात किए गए हैं, 300 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जगह जगह माइक लगाए गए हैं, 57 मेट्रो स्टेशन बंद हैं, दिल्ली निजामुद्दीन की 165 में से 38 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं।
18: मुझे लगता है कि अब बात थोड़ी उसके आगे चली गई है। एक ज्ञानेश कुमार को, जिसको हम एक ब्यूरोक्रेट कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेट ही है वो, कोई मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, एक ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए अपने जम्मू कश्मीर से फोर्स बुला ली, अपने नक्सल एरिया से फोर्स बुला ली, आपसे आपको वो भी कम लगा, आपने सारे रास्ते बंद कर दिए, आपको वो भी कम लगा, आपने मेट्रोज बंद कर दिए, आपको वो भी कम लगा, आपने रेलवेज बंद कर दी, देश ही बंद कर दो ना, इलेक्शन बंद कर दो, देश ही बंद कर दो। आर्टिकल 19 गिव्स अस द राइट टू प्रोटेस्ट एंड जंतर मंतर इज अ डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट। अगर हम मुंबई में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अगर हम बेंगलोर में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो हम दिल्ली में क्यों नहीं कर सकते? क्या दिल्ली किसी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर चल रही है? मुंबई में पुलिस ने पूरा कोऑपरेट किया, बेंगलुरु में पूरा कोऑपरेट किया, दिल्ली में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, दिल्ली में कौन सा लॉ चल रहा है अलग से? तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि दिल्ली का लॉ बुक कोई और है क्या जो इंडिया से अलग है?
0: दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीजेपी के प्रदर्शन वाले अल्टीमेटम के चलते पुलिस सतर्क है, लेकिन दिल्ली में किलेबंदी और इतनी सख्ती को लेकर बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है।

0: जी हां, सीजेपी के प्रदर्शन से पहले मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और कई ट्रेनों को रद्द करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और ये याचिका सीपीएम के महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद एमए बेबी ने दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस भी हुई। साथ ही सीजीआई की तरफ से टिप्पणी भी की गई। चीफ जस्टिस की बेंच में कपिल सिब्बल ने कहा, दिल्ली में ट्रेनें रद्द, मेट्रो बंद, होटल बंद हैं। प्रशांत भूषण ने कहा, पूरी दिल्ली बंद कर दी है। गोपाल शंकर नारायणन ने कहा, 57 मेट्रो स्टेशन भी बंद किए हैं। इस पर सीजीआई ने कहा, सुबह तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर जस्टिस बागची ने कहा कि प्रदर्शन का हक है, लेकिन कानून के हिसाब से इजाजत मांगिए, नहीं देते तो कोर्ट आइए। गोपाल शंकर नारायणन ने कहा, इसमें समय लगेगा, प्रोटेस्ट कल है। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, आपको कुछ चीजों को रोकना ही होगा, उन्हें रोकने के लिए सिर्फ उतनी ही कार्रवाई करें जितनी जरूरी हो। सुप्रीम अदालत ने आयोजकों को बुलाया और कपिल सिब्बल आयोजकों को नहीं ला पाए। अदालत में पुलिस प्रशासन के एहतियाती कदमों को लेकर भी चर्चा हुई और सरकार ने अनुपातिक तैयारियों का वादा किया और कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की बात कही। एहतियातन दिल्ली पुलिस अब भी दिल्ली में आने जाने वालों पर नजर रख रही है। दिल्ली के बॉर्डर पर वाहनों की तलाशी जारी है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दीप के प्रदर्शन करने पर अड़े हुए हैं और इसी प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट है। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से पुख्ता जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं।
0: बाजारों से लेकर बॉर्डर तक हाई अलर्ट पर पुलिस, जगह जगह दिल्ली पुलिस की बुनादी।
2: नई दिल्ली में और सभी जगह धारा 163 BNSS लागू है।
0: 10 अक्टूबर यानी कल जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली किसी छावनी में तब्दील हो चुकी है। दावा यही है कि प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, लिहाजा भीड़ जुटी तो एक्शन होगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से लोगों को सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली अफवाहों से बचने की सलाह दी जा रही है।
3: किसी भी भड़काऊ संदेश या उकसावे में नहीं आए, जिम्मेदार नागरिक बने और कानून का पालन करें। अपने क्षेत्र की सुरक्षा में पुलिस और प्रशासन का साथ दें और अपने परिवार वाले और अपने बच्चों को इस बारे में समझाएं कि इस तरह की अननेसेसरी भीड़ में या ऐसे कोई प्रोटेस्ट में किसी में हिस्सा न लें।
0: ये वीडियो दिल्ली के चांदनी चौक का है। मस्जिद के केयर टेकर की माने तो बीते दिन स्थानीय पुलिस ने लोगों से जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट से दूर रहने की अपील की थी।
4: पुलिस अफसर जो यहाँ के बीट अफसर है ना, वो आए थे शाम के 5 बजे और उन्होंने ऐलान किया था कि प्रोटेक्शन जो हो रहा है जंतर मंतर पे, उसमें आदमी को नहीं जाना चाहिए और नहीं अपने बच्चों को जाने देना चाहिए। जी हाँ, यही उन्होंने ऐलान किया था, इस बात पे अमल करना चाहिए हर आदमी को।
5: कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक पुलिसकर्मी एक मस्जिद के अंदर जाकर के मोबाइल से पढ़ के एक अनाउंसमेंट कर रहा है, जिसमें वो लोगों को माइक पे बता रहा है कि किस तरीके से इस प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है और वो अपने बच्चों को भी समझाएं कि वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा ना बने। इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी मस्जिद के बाहर है। अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो ये चांदनी चौक में स्थित शाही मस्जिद है जिसके अंदर का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। यहीं पर दिल्ली पुलिस आई और यहां पर आकर के दिल्ली पुलिस ने अनाउंसमेंट की है और लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है उसके लिए परमिशन नहीं मिली है और अपने बच्चों को भी वो समझाएं कि वो आगे जाकर के इस प्रोटेस्ट का हिस्सा ना बने क्योंकि लीगल एक्शन हो सकता है।
0: दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में भी दिल्ली पुलिस लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को बता रही है कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है, धारा 163 लागू है, लिहाजा प्रोटेस्ट में शामिल ना हो।
2: 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है। नई दिल्ली में और सभी जगह धारा 163 BNSS लागू है, जो कि कोई भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा। आप सभी को सूचित कर दें, बता दें, अपने बच्चे जो भी आस पड़ोसी उन सबको बता करके ब्रीफ कर दें कि वहां पर कोई भी परमिशन नहीं है।
0: तो दिल्ली की कुछ मस्जिदों से ऐलान किया गया है कि 10 अक्टूबर को जंतर मंतर

0: स्तर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल न हो।
1: इस ऐलान को गौर सवाल फरमाए कि जो जंतर मंतर पर 8-9-10 तारीख को जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो इलीगल है, वहां पर कोई व्यक्ति ना जाए, इसलिए कि सरकार ने वहां पर

0: धारा 173 से लगाई हुई है। कृपया आप अपराध प्रशासन का साथ दें, कोई वहां ना जाए।
1: दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। बिना परमिशन सीजेपी को प्रदर्शन या धरना करने की इजाजत नहीं है।
2: क्या परमिशन मांगी गई, कब मांगी गई?
3: 7 तारीख को कांग्रेस जनता पार्टी ने एक परमिशन एप्लीकेशन दी थी, इंटीमेशन करके, जिसमें ये बताया गया कि वो सीईसी की अकाउंटेबिलिटी के रिगार्डिंग 10 तारीख को जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन जो इंटीमेशन की है उस पर गौर किया गया और ये पाया गया कि ये एप्लीकेशन इस्टेब्लिश्ड जो गाइडलाइन है उसके तहत हमारे पास नहीं आई है, बहुत ही कम समय में आई है। और दूसरी बात ये है कि उनका जो प्रीवियस कंडक्ट था, उन्होंने जो हमारे लॉफुल डायरेक्शंस को नहीं फॉलो किया या उनकी जो अंडरटेकिंग दी गई थी उनके द्वारा उसको भी नहीं कंप्लाई किया, और प्रेजेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और पब्लिक सेफ्टी के मद्देनज़र इस एप्लीकेशन जो थी उसको रिजेक्ट किया जाता है।
1: पुलिस की दलील है कि पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल सीजेपी की तरफ से नहीं रखा गया, हिंसा हुई, कई पुलिस वाले जख्मी हुए, लिहाजा अब की बार प्रदर्शन के नाम पर दिल्ली की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होगा।
4: 2 अक्टूबर से लेकर अब तक 27 FIR दर्ज हो चुकी हैं। पुलिस को अंदेशा है कि प्रदर्शन के नाम पर कुछ लोग दिल्ली की कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं, इसीलिए सख्ती दिल्ली पुलिस ने की है।
1: सीजेपी का ऐलान यही है कि जंतर मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए 7 अक्टूबर को सीजेपी की तरफ से परमिशन मांगी गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं दी गई। इसके बावजूद सीजेपी ने जंतर मंतर पहुंचने का ऐलान किया है। ऐसे में सीजेपी से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। जंतर मंतर को बैरिकेड से घेरा गया है, मतलब सीजेपी के समर्थकों को जंतर मंतर जाने से रोकने की प्लानिंग है। इसी कड़ी में नए CCTV और लाउड स्पीकर तक लगाए गए हैं।
5: जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली पुलिस की कोशिश ऐसी है कि कहीं कोई जमावड़ा एक जगह पर ज्यादा ना होने पाए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो। कई जगहों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के तहत जो कैमरे आते हैं, जो जुड़े हुए हैं, उन कैमरों को भी लगाया गया है। हालांकि कई ऐसे कैमरे हैं जो इस इलाके में पहले लगे हुए थे, लेकिन आप देखिए इस खंभे पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको जो कैमरा नीचे लगा हुआ दिख रहा है, ये अभी इंस्टॉल किया गया है। इसके ऊपर लाउड स्पीकर लगाया गया है, जिससे लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप यहाँ पर इकट्ठे ना हो, ये गैर कानूनी है। तो पुलिस ने जगह जगह कंट्रोल रूम बना रखे हैं, एरियो को डिवाइड कर रखा है, और हर एरिया की जिम्मेदारी एक IPS स्तर के अधिकारी की है।
1: ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है। थाने के बाहर दिल्ली पुलिस की तरफ से पोस्टर पर चेतावनी लिखी हुई है। थाने के बाहर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं।
5: इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के ठीक बाहर, जो पिछले कई दिनों से जंग का अखाड़ा बना हुआ है। और इस थाने के बाहर की आप तैनाती देखिए, जैसे किले की बाहर पूरी सुरक्षा होती है, उस तरीके से इस थाने की भी सुरक्षा के लिए बाहर बैरिकेड है। अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस गेट पर तैनात मिलेगी, दिल्ली पुलिस आपको तैनात मिलेगी, और यहाँ पर चेतावनी भी लगाई गई है। ठीक आप देखिए, बैरिकेड पर चेतावनी लगाई गई है कि BNSS की धारा 163 लागू है, अगर लोग जुटेंगे तो उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी।
1: जंतर मंतर की तरफ जाने वाले रास्ते की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है।
6: इस वक्त मैं जनपद रोड पर हूं और मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये जो सड़क है ये सीधा जंतर मंतर की तरफ जाती है। यहां से करीब 500 मीटर आगे ही वो धरना स्थल है, जहां अमूमन लोग जाके बैठते हैं और धरना देते हैं। अगर आप यहां तैयारियां देखें तो इस पूरी सड़क को ट्रैफिक के लिए और पैदल मूवमेंट के लिए भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात भी कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, अगर आप देखें यहाँ आसपास करीब हर खंभे पर कैमरे लगा दिए गए हैं और ऐसे बड़े लाउड स्पीकर लगा दिए गए हैं। इन लाउड स्पीकर्स का ये काम है कि ये लगातार अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा होना इस वक्त गैरकानूनी है। इस पूरे इलाके में 163 BNSS की धारा लगी हुई है, जो किसी भी तरह के प्रदर्शन को वर्जित करती है, और अगर यहाँ पर कोई पहुंचता है या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोशिश करता है, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करता है या पुलिस वालों पर हमला करने की कोशिश करता है, तो उनके ऊपर जो है सख्त से सख्त

0: कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
1: संसद बाग की तस्वीरें देखिए, यहां पर बैरिकेड को दूसरे बैरिकेड से जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने जंजीर और ताले का इस्तेमाल किया है।
2: इस वक्त हम संसद मार्ग पर मौजूद है, जहां पर सीजेपी की प्रस्तावित प्रोटेस्ट से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। और ये आप देखिए, ये जो बैरिकेड रखे गए हैं, यहां इन बैरिकेड में ये चेन्स लगाई जा रही है मोटी मोटी। इन चेन्स को पेच के जरिए अगर आप देखेंगे तो इनको पेच के जरिए इससे जोड़ दिया गया है बैरिकेड से, और नीचे की तरफ ऐसे लॉक सिस्टम लगाए गए हैं ताकि इस लॉक को दूसरा जो ये लॉक सिस्टम है, जो इस अगर हम कहें दूसरा बैरिकेड है, इस बैरिकेड में जो लॉक सिस्टम है इस चेन को इससे जोड़ा जा सके। यानी कि इन बैरिकेड को हटाना इतना आसान नहीं होगा। आप दरअसल पुलिस ने तैयारी की है जो इस पूरे प्रोटेस्ट से निपटने के लिए, क्योंकि परमिशन तो दी नहीं है और उसके कारण पुलिस ने बताया कि एक तो सिर्फ 3 दिन पहले एप्लीकेशन दी गई और दूसरा जो पिछला आचरण था परमिशन लेने के बाद प्रोटेस्ट का, उसको देखते हुए परमिशन डिनाई की जा रही है।
3: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: राष्ट्रपति से मिलने के बाद विपक्ष ने सरकार पर और तेज किए हमले, बोले राहुल, वोट चोरी के हमारे आरोप पर महामहिम भी सहमत। बीजेपी बोली, नेता विपक्ष राहुल ने लांघी संवैधानिक सीमा। आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को नहीं मिली अनुमति, मेट्रो के 45 स्टेशन बंद, दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें रद्द, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली की किलेबंदी पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, कहा, मक्खी मारने के लिए हथौड़ा आप नहीं चला सकते, सब कुछ ठप होने से आम लोग न हो परेशान। उपचुनाव में बीजेपी एनडीए के शानदार प्रदर्शन पर पीएम का पोस्ट, लिखा, इस जनादेश से मिलेगी और मजबूती। अमित शाह बोले, राहुल के झूठ और दुष्प्रचार के बाद भी हमारी बड़ी जीत। जेवर एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी हवाई अड्डा करने पर राजनीतिक युद्ध, अखिलेश बोले, नाम बदलने वालों को बदलेगी जनता, पहले यूपी कैबिनेट के निर्णय पर लगी मुहर। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल गांधी मोर्चा खोले हुए हैं। इस बीच शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ राहुल ने राष्ट्रपति से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन सौंपा। सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में किलेबंदी इधर कर दी गई है।
1: 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है, कोई भी प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा।
2: ज्ञानेश कुमार पर संग्राम, आज विपक्ष कल सीजेपी। चार दिन से लगातार राहुल गांधी का ज्ञानेश कुमार पर वार।
3: मंडे को हम सुप्रीम कोर्ट, यही पूरा का पूरा ग्रुप मेमोरेंडम ले, इफ जस्टिस के लिए मेमोरेंडम लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
2: अब ज्ञानेश कुमार पर लड़ाई राष्ट्रपति के दर तक आई। सीईसी के इस्तीफे की मांग, राष्ट्रपति को इंडिया का ज्ञापन।
4: हमने तो पॉजिटिव आउटलुक से देखा है कि उन्होंने जो दो चार बात कहा कि आई विल इन्वेस्टिगेट, आई विल गो थ्रू द डिटेल्स एंड आर्म को सबूत चाहिए।
2: 10 अक्टूबर को सीजेपी का जंतर मंतर प्लान, किले में तब्दील दिल्ली।
5: डरे हुए हैं और जो आदमी डरता है आज नहीं कल मरता है।
6: भारत जैसे लोकतंत्र में प्रदर्शन की पूरी संभावनाएं हैं और आप जरूर करें प्रदर्शन, बट प्रदर्शन से समाधान नहीं निकलेगा, समाधान संवाद से निकलेगा।
2: एक तरफ दिल्ली किले में तब्दील हो चुकी है, दिल्ली पुलिस से लेकर बीएसएफ भी दिल्ली की सीमाओं पर तैनात है, तो दूसरी तरफ लगातार चौथे दिन राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए उतरे और चौथे दिन अपनी मांग को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दर पर पहुंचते हैं।
7: यहां पर आप देखिए कि संसद भवन से बाहर मार्च करते हुए ये तमाम नेता नजर आ रहे हैं और कुछ इस तरीके से लोकतंत्र बचाओ अभियान छेड़ दिया है यहाँ पे इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने। और बैठक के बाद, 5 बजे की बैठक के बाद इस तरीके से नारेबाजी और घेराबंदी यहाँ पे विजय चौक पर हम लोग पहुँच गए हैं। ये विजय चौक है, पीछे आप देखें कि नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है।
8: मांग तो पूरे देश की जो मांग है कि पूरा जो संरचना है बेईमानी का उसको खत्म किया जाए और ज्ञानेश जी प्रतीक पुरुष हैं जो शील्ड बन के खड़े हैं, मोदी जी और अमित शाह जी, वो चले जाए।
9: देखिए, मुझे लगता है कि जो सारे देशभक्त हैं वो देश में लोकतंत्र को बचाने में लगे हैं, वो चाहे किसी राजनीतिक दल के सदस्य हो या न हो। और जो आज जो वोटर लिस्ट में पूरे चुनाव प्रक्रिया में जो धूल मिलाने का जो काम हो रहा है वो आज के तारीख में सबसे बड़े देशद्रोही का काम है।
10: थी, मुझे हंसी आ रही कि सरकार इतनी डर गई, लोग परेशान हो गए। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ब्लैंकेट बैन क्यों लगा रहे, सब क्यों बंद कर रहे, सारे मेट्रो ट्रेन बंद, सारी ट्रेनें बंद, सारे बसेस बंद, दिल्ली में घुस नहीं सकते, इतना डर।
2: इसके दो मकसद हैं, एक तो इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाना, दूसरा ये बताना कि सारे विपक्षी दल ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा चाहते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने वालों में बड़े नाम थे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, सीपीएम के एमए बेबी, सीपीआई के डी राजा, समाजवादी पार्टी के राजीव राय, सुप्रिया सुले, उमर अब्दुल्ला, मनोज झा और वीसीके के टी तिरुमावलन। जब इंडिया गठबंधन के ये 10 नेता राष्ट्रपति द्रौपदी से मिलने राष्ट्रपति भवन के अंदर पहुंचे, तो बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हुई।
3: एक प्रकार से मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि जब हमने राष्ट्रपति को इलेक्शन चोरी वोट चोरी के बारे में बताया तो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने डिनाई नहीं किया। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने यह नहीं कहा कि हिंदुस्तान में चुनाव चोरी नहीं हो रहे हैं। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने उल्टा हमसे कहा कि आप सबूत हमारे पास लाइए, और यही ग्रुप खुशी से जो पूरा का पूरा सबूत हमने कलेक्ट किया है राष्ट्रपति के पास ले जाएगा, ले जाने के लिए तैयार है। पूरा देश जानता है, स्टूडेंट्स जानते हैं कि देश में वोट चोरी हो रही है। नरेंद्र मोदी इसके आर्किटेक्ट हैं, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार इसके इंप्लीमेंटर्स हैं, और इस बात को राष्ट्रपति ने, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने आज डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में सोचेंगी और एक्शन लेंगी।
4: हमने तो पॉजिटिव आउटलुक से देखा है कि उन्होंने जो दो चार बात कहा कि आई विल इन्वेस्टिगेट, आई विल गो थ्रू द डिटेल्स एंड हमको सबूत चाहिए, यू प्लीज सेंड अस द डिटेल्स एविडेंस।
5: हमने डिमांड किया है कि फिर से एक बार ईवीएम को निकाल दो और बैलेट पेपर पे इलेक्शन कराया जाए, और दूसरा कि ये वोट चोरी जहाँ जहाँ हो गए वो सबूत उन्होंने मांगा है, वो सबूत हम लोग तैयार कर रहे हैं और सबूत हम दे देंगे।
2: ये लगातार चौथा दिन है जब ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने विपक्ष उतरा है। 6 अक्टूबर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च किया, पुलिस ने बैरिकेडिंग करके विपक्षी सांसदों को रोका और कुछ को हिरासत में लिया, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पुलिस को चकमा देकर आकाशवाणी भवन परिसर में धरना दे दिया, और पूरे 8 घंटे तक धरना देने के बाद पुलिस ने राहुल और प्रियंका को जबरन हिरासत में लेकर उठाया। 7 अक्टूबर कांग्रेस ने पहले इंडिया गठबंधन के सांसदों को लंच दिया और फिर जंतर बंतर के लिए कूच किया। दिल्ली पुलिस ने दूसरे दिन भी विपक्षी सांसदों की बस को रोका, तो राहुल और प्रियंका ने सड़क पर ही ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, और आखिर में 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने राहुल और प्रियंका को फिर से हिरासत में लेकर धरना खत्म करवाया। 8 अक्टूबर तीसरे दिन इंडिया गठबंधन के सांसदों ने कनॉट प्लेस में लंच किया और बसों से सीधे राजघाट यानी गांधी समाधि के लिए कूच किया। यहां भी भारी फोर्स की तैनाती की गई, लेकिन राहुल प्रियंका समेत सभी विपक्षी सांसद गांधी स्थल पर बैठकर वापस आ गए। 9 अक्टूबर चौथे दिन ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलते हैं और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपते हैं।
11: हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम जनता की अदालत में तो है ही, हम सड़कों पर हैं, और वोट चोरी इस देश में नहीं चल सकती है।
12: दैट इज मंडे द इंडिया ब्लॉक पार्टी लीडर्स विल गो टू सुप्रीम कोर्ट।
0: इस बीच बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने संवैधानिक सीमाएं लांघ दी हैं।
13: संवैधानिक संस्थान महामहिम राष्ट्रपति एक व्यक्ति नहीं है, वो देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है, उसको लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो न सिर्फ विचित्र लगता है बल्कि उसमें सच से ज्यादा सियासत की गंध आ रही है। उनका यह कहना कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने उनके आरोपों को स्वीकार कर लिया है, यह दर्शाता है कि जो अभी तक राहुल गांधी देश की हर संस्था के बारे में, हर संवैधानिक संस्था को अपनी राजनीति का शिकार बनाने का दुष्चक्र रच रहे हैं, उन्होंने अब आज ऐसा प्रतीत होता है कि सारी सीमाएं पार कर दी।
0: आज राहुल गांधी चेन्नई में रहेंगे, छात्रों के साथ कार्यक्रम करेंगे और दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी ने चेतावनी दे रखी है कि भले ही दिल्ली पुलिस उन्हें जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति न दे, लेकिन फिर भी वो जंतर मंतर के लिए कूच जरूर करेंगे।
2: इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ छिड़े संग्राम में एकजुटता दिखाई, तो 10 अक्टूबर को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर कूच का ऐलान करके टेंशन बढ़ा रखी है।
14: इट इज आवर डेमोक्रेटिक राइट कि अगर हम सरकार से किसी बात पे इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो हम अपनी बात को डेमोक्रेटिक और पीसफुल तरीके से रख सकते हैं। आज इस देश में हालात ये हो गए हैं कि एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट पर प्रोटेस्ट करने के लिए हमको प्रोटेस्ट करनी पड़ रही है। मतलब इतना तो ब्रिटिश राज में भी नहीं होता था। अभी मुद्दा तो सेकेंडरी हो गया है, अभी तो ये हो गया कि इनको जंतर मंतर पर पहुंचने ही मत दो। और जो पूरी लड़ाई है वो इसी बात पे थी कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है। हमारी लड़ाई, हमारे जो सवाल हैं, हमारी जो मांगे हैं वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। और जिस तरह से बीजेपी ज्ञानेश कुमार के बचाव में आई है, जिस तरह से तमाम राज्यों में जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पे हमारे लोगों को डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, उससे हमारी लड़ाई और क्लियर हो रही है कि यस, बीजेपी एंड द इलेक्शन कमीशन आर वर्किंग टुगेदर, और इसी बात की तो सारी लड़ाई है हमारी।
2: जुलाई में हुए जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन पर दूध की जली दिल्ली पुलिस अक्टूबर में छाछ फूंक कर पी रही है। दिल्ली पुलिस बार बार कह रही है कि 10 अक्टूबर वाले इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है और उसके 3 कारण भी गिना रही है।
1: 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है, कोई भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा।
2: पहला, परमिशन 10 दिन पहले मांगनी होती है, जबकि सीजेपी ने 7 अक्टूबर को सिर्फ इंटीमेशन यानी सूचना दी है। दूसरा, पिछली बार परमिशन लेकर सीजेपी ने वादा खिलाफी की। तीसरा, मौजूदा लॉ एंड ऑर्डर के हालात को देखते हुए परमिशन नहीं दी जा सकती।
15: साहिल, मैं तो क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि मैं परमिशन मांगने नहीं गया था, इन्फॉर्मेशन देने गया था, इंटीमेशन देने गया था फॉर्मल वे में। हम लोगों ने जब अनाउंस किया था, पुलिसिंग का पॉलिसी है कि दे वुड मॉनिटर व्हाट द सिचुएशन इज इन द कंट्री एंड इन दिल्ली, दिल्ली पुलिस वुड डू इट। तो उनको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन था कि क्या होने वाला है। 7 तारीख को फिर मैं गया, वहां पे मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन जो हम लोगों ने लेटर दिया उसमें हमने एसर्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज अस द राइट टू प्रोटेस्ट, लेकिन पुलिस के तरफ से रवैया बहुत खराब था। दे डिड नॉट से एनीथिंग, उन्होंने ये नहीं बोला कि देंगे नहीं देंगे, उन्होंने एक्नॉलेज किया लेटर को एंड एक स्टैम्प डाल के हमें दे दिया। नन ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ दिल्ली पुलिस मेट मी, जबकि लास्ट टाइम उन्होंने 5 राउंड सीनियर ऑफिसर से हमें मिलवाया था, मैंने किया था लास्ट टाइम भी प्रोसेस, लेकिन इस बार बिल्कुल भी कोई सीनियर ऑफिसर मिलना नहीं चाह रहा था। एंड दिस इज अ न्यू टैक्टिक दैट दे हैव अडॉप्टेड।
16: व्हाट इज द टैक्टिक यू थिंक दैट
15: द टैक्टिक इज टू नॉट अलाउ एनी डेमोक्रेटिक डिसेंट इन द कंट्री। दिल्ली Also, the last time there were peaceful protests, it happened for such a long time. And इस बार वो चाहते हैं कि बिल्कुल भी देश का युवा रोड पे ना निकले। And वही tactic इसमें भी दिख रहा है कि कुछ भी information उनके तरफ से भी हमें ना आए, हमारे से वो सारे information ले ले जो हम cooperate करना भी चाहते हैं। हमने उनको जब मैं मिला था, जो भी अधिकारी था, मैंने बोला था कि we will fully cooperate with them in the expectation that the police would also cooperate with us. Because the police is not... they are not the ones who will give permission whether to protest against the government or not. कि ना strange और absurd concept है कि सोचिए गांधी जी जब डांडी मार्च निकाल देंगे, वो ब्रिटिशर्स को जाके बोलेंगे साहेब 2 घंटे का टाइम दीजिए, मैं डांडी मार्च करके आता हूँ। Is this how the country will function? And ये गुलामी वाला जो मानसिकता है हमारे जो इंडिपेंडेंस के बाद 80 साल में हमारे अंदर घुसाया गया कि आप परमिशन लीजिए स्टेट से कि उनके खिलाफ ही प्रोटेस्ट करने, तो उनसे परमिशन लीजिए। हाउ एब्सर्ड कि अभी भी हम लोग वही लैंग्वेज यूज कर रहे हैं 80 साल बाद।
2: लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि उन्हें परमिशन की कोई जरूरत नहीं है।
17: ज्ञानेश कुमार ने परमिशन लिया था, 13 करोड़ वोट डिलीट करने से पहले ज्ञानेश कुमार ने परमिशन लिया था। सुप्रीम कोर्ट तो बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल भी नहीं दिया था फॉर्म 6 के मॉडिफिकेशन का। तो जब ज्ञानेश कुमार बिना किसी को बताए, बिना किसी से पूछे 13 करोड़ वोट डिलीट करता है, तो उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 19, क्या जरूरत है परमिशन।
2: बीजेपी की चेतावनी को देखते हुए दिल्ली में जैसे किलेबंदी कर दी गई है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर फोर्स तैनात हैं, चेकिंग चल रही है, तो जंतर मंतर के आसपास कई स्तर की बैरिकेडिंग की गई है। दंगा रोधी वाहन भी तैनात किए गए हैं, 309 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जगह जगह माइक लगाए गए हैं, 57 मेट्रो स्टेशन बंद हैं, दिल्ली निजामुद्दीन की 165 में से 38 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं।
18: मुझे लगता है कि अब बात थोड़ी उसके आगे चली गई है। एक ज्ञानेश कुमार को, जिसको हम एक ब्यूरोक्रेट कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेट ही है वो, कोई मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, एक ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए अपने जम्मू कश्मीर से फोर्स बुला ली, अपने नक्सल एरिया से फोर्स बुला ली, आपसे आपको वो भी कम लगा, आपने सारे रास्ते बंद कर दिए, आपको वो भी कम लगा, आपने मेट्रोज बंद कर दिए, आपको वो भी कम लगा, आपने रेलवेज बंद कर दी। देश ही बंद कर दो ना, इलेक्शन बंद कर दो, देश ही बंद कर दो। आर्टिकल 19 गिव्स अस द राइट टू प्रोटेस्ट एंड जंतर मंतर इज अ डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट। अगर हम मुंबई में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अगर हम बेंगलोर में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो हम दिल्ली में क्यों नहीं कर सकते? क्या दिल्ली किसी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर चल रही है? मुंबई में पुलिस ने पूरा कोऑपरेट किया, बेंगलुरु में पूरा कोऑपरेट किया, दिल्ली में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, दिल्ली में कौन सा लॉ चल रहा है अलग से? तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि दिल्ली का लॉ बुक कोई और है क्या जो इंडिया से अलग है।
2: दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन वाले अल्टीमेटम के चलते पुलिस सतर्क है, लेकिन दिल्ली में किलेबंदी और इतनी सख्ती को लेकर बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। जी हां, बीजेपी के प्रदर्शन से पहले मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और कई ट्रेनों को रद्द करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, और ये याचिका सीपीएम के महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद एमए बेबी ने दाखिल की, और सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस भी हुई। साथ ही सीजीआई की तरफ से टिप्पणी भी की गई। चीफ जस्टिस की बेंच में कपिल सिब्बल ने कहा, दिल्ली में ट्रेनें रद्द, मेट्रो बंद, होटल बंद हैं। प्रशांत भूषण ने कहा, पूरी दिल्ली बंद कर दी है। गोपाल शंकर नारायणन ने कहा, 57 मेट्रो स्टेशन भी बंद किए हैं। इस पर सीजीआई ने कहा, सुबह तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर जस्टिस बागची ने कहा कि प्रदर्शन का हक है, लेकिन कानून के हिसाब से इजाजत मांगिए, नहीं देते तो कोर्ट आइए। गोपाल शंकर नारायणन ने कहा, इसमें समय लगेगा, प्रोटेस्ट कल है। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, आपको कुछ चीजों को रोकना ही होगा, उन्हें रोकने के लिए सिर्फ उतनी ही कार्रवाई करें जितनी जरूरी हो। सुप्रीम अदालत ने आयोजकों को बुलाया और कपिल सिब्बल आयोजकों को नहीं ला पाए। अदालत में पुलिस प्रशासन के एहतियाती कदमों को लेकर भी चर्चा हुई, और सरकार ने अनुपातिक तैयारियों का वादा किया, और कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की बात कही। एहतियातन दिल्ली पुलिस अब भी दिल्ली में आने जाने वालों पर नजर रख रही है। दिल्ली के बॉर्डर पर वाहनों की तलाशी जारी है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: सीजेपी के प्रमुख अभिजीत देव के प्रदर्शन करने पर अड़े हुए हैं, और इसी प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट है। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से पुख्ता जबरदस्त इंतजाम किए गए।
2: बाजारों से लेकर बॉर्डर तक हाई अलर्ट पर पुलिस, जगह जगह दिल्ली पुलिस की बुनादी।
1: नई दिल्ली में और सभी जगह धारा 163 BNSS लागू है।
2: 10 अक्टूबर यानी कल जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली किसी छावनी में तब्दील हो चुकी है। दावा यही है कि प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, लिहाजा भीड़ जुटी तो एक्शन होगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से लोगों को सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली अफवाहों से बचने की सलाह दी जा रही है।
19: किसी भी भड़काऊ संदेश या उकसावे में नहीं आए, जिम्मेदार नागरिक बने और कानून का पालन करें। अपने क्षेत्र की सुरक्षा में पुलिस और प्रशासन का साथ दें, और अपने परिवार वाले और अपने बच्चों को इस बारे में समझा
2: वीडियो दिल्ली के चांदनी चौक का है। मस्जिद के केयर टेकर की माने तो बीते दिन स्थानीय पुलिस ने लोगों से जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट से दूर रहने की अपील की थी।
20: पुलिस अफसर जो यहाँ के बीट अफसर है ना, वो आए थे शाम के 5 बजे और उन्होंने ऐलान किया था कि प्रोटेक्शन जो हो रहा है जंतर मंतर पे, उसमें आदमी को नहीं जाना चाहिए और नहीं अपने बच्चों को जाने देना चाहिए। जी हाँ, यही उन्होंने ऐलान किया था, इस बात पे अमल करना चाहिए हर आदमी को।
21: कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक पुलिसकर्मी एक मस्जिद के अंदर जाकर के मोबाइल से पढ़ के एक अनाउंसमेंट कर रहा है, जिसमें वो लोगों को माइक पे बता रहा है कि किस तरीके से इस प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है और वो अपने बच्चों को भी समझाएं कि वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा ना बने। इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी मस्जिद के बाहर है। अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो ये चांदनी चौक में स्थित शाही मस्जिद है जिसके अंदर का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। यहीं पर दिल्ली पुलिस आई और यहां पर आकर के दिल्ली पुलिस ने अनाउंसमेंट की है और लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि जो कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है उसके लिए परमिशन नहीं मिली है और अपने बच्चों को भी वो समझाएं कि वो आगे जाकर के इस प्रोटेस्ट का हिस्सा ना बने क्योंकि लीगल एक्शन हो सकता है।
2: दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में भी दिल्ली पुलिस लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को बता रही है कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है, धारा 163 लागू है, लिहाजा प्रोटेस्ट में शामिल ना हो।
1: 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है। नई दिल्ली में और सभी जगह धारा 163 BNSS लागू है, जो कि कोई भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा। आप सभी को सूचित कर दें, बता दें, अपने बच्चे जो भी आस पड़ोसी उन सबको बता करके ब्रीफ कर दें कि वहां पर कोई भी परमिशन नहीं है।
2: तो दिल्ली की कुछ मस्जिदों से ऐलान किया गया है कि 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल न हो।
22: इस ऐलान को गौर समाज फरमाए कि जो जंतर मंतर पर 8-9-10 तारीख को जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो इलीगल है, वहां पर कोई व्यक्ति ना जाए, इसलिए कि सरकार ने वहां पर धारा 173 लगाई हुई है। कृपया आप अपना प्रशासन का साथ दें, कोई वहां ना जाए।
2: दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, बिना परमिशन सीजेपी को प्रदर्शन या धरना करने की इजाजत नहीं है।
23: क्या परमिशन मांगी गई, कब मांगी गई?
24: 7 तारीख को कांग्रेस जनता पार्टी ने एक परमिशन एप्लीकेशन दी थी, इंटीमेशन करके, जिसमें ये बताया गया कि वो सीईसी की अकाउंटेबिलिटी के रिगार्डिंग 10 तारीख को जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन जो इंटीमेशन की है उस पर गौर किया गया और ये पाया गया कि ये एप्लीकेशन इस्टेब्लिश्ड जो गाइडलाइन है उसके तहत हमारे पास नहीं आई है, बहुत ही कम समय में आई है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने उनका जो प्रीवियस कंडक्ट था, उन्होंने जो हमारे लॉफुल डायरेक्शंस को नहीं फॉलो किया या उनकी जो अंडरटेकिंग दी गई थी उनके द्वारा उसको भी नहीं कंप्लाई किया, और प्रेजेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और पब्लिक सेफ्टी के मद्देनज़र इस एप्लीकेशन जो थी उसको रिजेक्ट किया जाता है।
2: पुलिस की दलील है कि पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल सीजेपी की तरफ से नहीं रखा गया, हिंसा हुई, कई पुलिस वाले जख्मी हुए, लिहाजा अब की बार प्रदर्शन के नाम पर दिल्ली की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होगा।
0: 2 अक्टूबर से लेकर अब तक 27 FIR दर्ज हो चुकी हैं। पुलिस को अंदेशा है कि प्रदर्शन के नाम पर कुछ लोग दिल्ली की कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं, इसीलिए सख्ती दिल्ली पुलिस ने की है।
2: सीजेपी का ऐलान यही है कि जंतर मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए 7 अक्टूबर को सीजेपी की तरफ से परमिशन मांगी गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं दी गई। इसके बावजूद सीजेपी ने जंतर मंतर पहुंचने का ऐलान किया है। ऐसे में सीजेपी से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। जंतर मंतर को बैरिकेड से घेरा गया है, मतलब सीजेपी के समर्थकों को जंतर मंतर जाने से रोकने की प्लानिंग है। इसी कड़ी में नए CCTV और लाउड स्पीकर तक लगाए गए हैं।
25: जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली पुलिस की कोशिश ऐसी है कि कहीं कोई जमावड़ा एक जगह पर ज्यादा ना होने पाए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो। कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के तहत जो कैमरे आते हैं, जो जुड़े हुए हैं, उन कैमरों को भी लगाया गया है। हालांकि कई ऐसे कैमरे हैं जो इस इलाके में पहले लगे हुए थे, लेकिन आप देखिए इस खंभे पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको जो कैमरा नीचे लगा हुआ दिख रहा है, ये अभी इंस्टॉल किया गया है। इसके ऊपर लाउडस्पीकर लगाया गया है, जिससे लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप यहाँ पर इकट्ठे ना हो, ये गैर कानूनी है। तो पुलिस ने जगह जगह कंट्रोल रूम बना रखे हैं, एरियो को डिवाइड कर रखा है और हर एरिया की जिम्मेदारी एक आईपीएस स्तर के अधिकारी की है।
2: ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है। थाने के बाहर दिल्ली पुलिस की तरफ से पोस्टर पर चेतावनी लिखी हुई है। थाने के बाहर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं।
25: इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के ठीक बाहर, जो पिछले कई दिनों से जंग का अखाड़ा बना हुआ है। और इस थाने के बाहर की आप तैनाती देखिए, जैसे किले की बाहर पूरी सुरक्षा होती है, उस तरीके से इस थाने की भी सुरक्षा के लिए बाहर बैरिकेड है। अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस गेट पर तैनात मिलेगी, दिल्ली पुलिस आपको तैनात मिलेगी और यहाँ पर चेतावनी भी लगाई गई है। ठीक आप देखिए, बैरिकेड पर चेतावनी लगाई गई है कि BNSS की धारा 163 लागू है, अगर लोग जुटेंगे तो उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी।
2: जंतर मंतर की तरफ जाने वाले रास्ते की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है।
21: इस वक्त मैं जनपद रोड पर हूं और मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये जो सड़क है ये सीधा जंतर मंतर की तरफ जाती है। यहां से करीब 500 मीटर आगे ही वो धरना स्थल है जहां अमूमन लोग जाके बैठते हैं और धरना देते हैं। अगर आप यहां तैयारियां देखें तो इस पूरी सड़क को ट्रैफिक के लिए और पैदल मूवमेंट के लिए भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात भी कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, अगर आप देखें यहाँ आसपास करीब हर खंभे पर कैमरे लगा दिए गए हैं और ऐसे बड़े लाउड स्पीकर लगा दिए गए हैं। इन लाउड स्पीकर्स का ये काम है कि ये लगातार अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा होना इस वक्त गैरकानूनी है। इस पूरे इलाके में 163 BNSS की धारा लगी हुई है जो किसी भी तरह के प्रदर्शन को वर्जित करती है, और अगर यहाँ पर कोई पहुंचता है या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोशिश करता है, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करता है या पुलिस वालों पर हमला करने की कोशिश करता है तो उनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
2: संसद मार्ग की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर बैरिकेड को दूसरे बैरिकेड से जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने जंजीर और ताले का इस्तेमाल किया है।
25: इस वक्त हम संसद मार्ग पर मौजूद है जहाँ पर CJP की प्रस्तावित प्रोटेस्ट से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। और ये आप देखिए, ये जो बैरिकेड रखे गए हैं यहाँ, इन बैरिकेड में ये चेन्स लगाई जा रही है मोटी मोटी। इन चेन्स को पेच के जरिए अगर आप देखेंगे तो इनको पेंच के जरिए इससे जोड़ दिया गया है बैरिकेड से, और नीचे की तरफ ऐसे लॉक सिस्टम लगाए गए हैं ताकि इस लॉक को दूसरा जो ये लॉक सिस्टम है, जो इस अगर हम कहें दूसरा बैरिकेड है, इस बैरिकेड में जो लॉक सिस्टम है इस चेन को इससे जोड़ा जा सके। यानी कि इन बैरिकेड को हटाना इतना आसान नहीं होगा। आप दरअसल पुलिस ने तैयारी की है जो इस पूरे प्रोटेस्ट से निपटने के लिए, क्योंकि परमिशन तो दी नहीं है और उसके कारण पुलिस ने बताया कि एक तो सिर्फ 3 दिन पहले एप्लीकेशन दी गई और दूसरा जो पिछला आचरण था परमिशन लेने के बाद प्रोटेस्ट का, उसको देखते हुए परमिशन डिनाई की जा रही है।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: राष्ट्रपति से मिलने के बाद विपक्ष ने सरकार पर और तेज किए हमले, बोले राहुल, वोट चोरी के हमारे आरोप पर महामहिम भी सहमत। बीजेपी बोली, नेता विपक्ष राहुल ने लांघी संवैधानिक सीमा। आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को नहीं मिली अनुमति, मेट्रो के 45 स्टेशन बंद, दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें रद्द, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली की किलेबंदी पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, कहा, मक्खी मारने के लिए हथौड़ा आप नहीं चला सकते, सब कुछ ठप होने से आम लोग न हो परेशान। उपचुनाव में बीजेपी एनडीए के शानदार प्रदर्शन पर पीएम का पोस्ट, लिखा, इस जनादेश से मिलेगी और मजबूती। अमित शाह बोले, राहुल के झूठ और दुष्प्रचार के बाद भी हमारी बड़ी जीत। जेवर एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी हवाई अड्डा करने पर राजनीतिक युद्ध, अखिलेश बोले, नाम बदलने वालों को बदलेगी जनता, पहले यूपी कैबिनेट के निर्णय पर लगी मुहर। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल गांधी मोर्चा खोले हुए हैं। इस बीच शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ राहुल ने राष्ट्रपति से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन सौंपा। सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में किलेबंदी इधर कर दी गई है।
1: 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है, कोई भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा।
2: ज्ञानेश कुमार पर संग्राम, आज विपक्ष कल सीजेपी। चार दिन से लगातार राहुल गांधी का ज्ञानेश कुमार पर वार।
3: मंडे को हम सुप्रीम कोर्ट, यही पूरा का पूरा ग्रुप मेमोरेंडम ले, इफ जस्टिस के लिए मेमोरेंडम लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
2: अब ज्ञानेश कुमार पर लड़ाई राष्ट्रपति के दर तक आई। सीईसी के इस्तीफे की मांग, राष्ट्रपति को इंडिया का ज्ञापन।
4: हमने तो पॉजिटिव आउटलुक से देखा है कि उन्होंने जो दो चार बात कहा कि आई विल इन्वेस्टिगेट, आई विल गो थ्रू द डिटेल्स एंड आम को सबूत चाहिए।
2: 10 अक्टूबर को सीजेपी का जंतर मंतर प्लान, किले में तब्दील दिल्ली।
5: डरे हुए हैं और जो आदमी डरता है आज नहीं कल मरता है।
6: भारत जैसे लोकतंत्र में प्रदर्शन की पूरी संभावनाएं हैं और आप जरूर करें प्रदर्शन, बट प्रदर्शन से समाधान नहीं निकलेगा, समाधान संवाद से निकलेगा।
2: एक तरफ दिल्ली किले में तब्दील हो चुकी है, दिल्ली पुलिस से लेकर बीएसएफ भी दिल्ली की सीमाओं पर तैनात है, तो दूसरी तरफ लगातार चौथे दिन राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए उतरे और चौथे दिन अपनी मांग को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दर पर पहुंचते हैं।
7: यहाँ पे आप देखिए कि संसद भवन से बाहर मार्च करते हुए ये तमाम नेता नजर आ रहे हैं और कुछ इस तरीके से लोकतंत्र बचाओ अभियान छेड़ दिया है यहाँ पे इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने। और बैठक के बाद, 5 बजे की बैठक के बाद इस तरीके से नारेबाजी और घेराबंदी यहाँ पे विजय चौक पर हम लोग पहुँच गए हैं। ये विजय चौक है, पीछे आप देखें कि नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है।
8: मांग तो पूरे देश की जो मांग है कि पूरा जो संरचना है बेईमानी का उसको खत्म किया जाए, और ज्ञानेश जी प्रतीक पुरुष हैं जो शील्ड बन के खड़े हैं, मोदी जी और अमित शाह जी, वो चले जाए।
9: देखिए, मुझे लगता है कि जो सारे देशभक्त हैं वो देश में लोकतंत्र को बचाने में लगे हैं, वो चाहे किसी राजनीतिक दल के सदस्य हो या न हो। और जो आज जो वोटर लिस्ट में पूरे चुनाव प्रक्रिया में जो धूल मिलाने का जो काम हो रहा है वो आज के तारीख में सबसे बड़े देशद्रोही का काम है।
10: थी, मुझे हंसी आ रही कि सरकार इतनी डर गई, लोग परेशान हो गए। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ब्लैंकेट बैन क्यों लगा रहे, सब क्यों बंद कर रहे, सारे मेट्रो ट्रेन बंद, सारी ट्रेनें बंद, सारे बसेस बंद, दिल्ली में घुस नहीं सकते, इतना डर।
2: इसके दो मकसद हैं, एक तो इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाना, दूसरा ये बताना कि सारे विपक्षी दल ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा चाहते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने वालों में बड़े नाम थे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, सीपीएम के एमए बेबी, सीपीआई के डी राजा, समाजवादी पार्टी के राजीव राय, सुप्रिया सुले, उमर अब्दुल्ला, मनोज झा और वीसीके के टी तिरुमावलन। जब इंडिया गठबंधन के ये 10 नेता राष्ट्रपति द्रौपदी से मिलने राष्ट्रपति भवन के अंदर पहुंचे, तो बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हुई।
3: एक प्रकार से मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि जब हमने राष्ट्रपति को इलेक्शन चोरी वोट चोरी के बारे में बताया तो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने डिनाई नहीं किया। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने यह नहीं कहा कि हिंदुस्तान में चुनाव चोरी नहीं हो रहे हैं। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने उल्टा हमसे कहा कि आप सबूत हमारे पास लाइए, और यही ग्रुप खुशी से जो पूरा का पूरा सबूत हमने कलेक्ट किया है राष्ट्रपति के पास ले जाएगा, ले जाने के लिए तैयार है। पूरा देश जानता है, स्टूडेंट्स जानते हैं कि देश में वोट चोरी हो रही है। नरेंद्र मोदी इसके आर्किटेक्ट हैं, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार इसके इंप्लीमेंटर्स हैं, और इस बात को राष्ट्रपति ने, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने आज डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में सोचेंगी और एक्शन लेंगी।
4: हमने तो पॉजिटिव आउटलुक से देखा है कि उन्होंने जो दो चार बात कहा कि आई विल इन्वेस्टिगेट, आई विल गो थ्रू द डिटेल्स एंड हमको सबूत चाहिए, यू प्लीज सेंड अस द डिटेल्स एविडेंस।
5: हमने डिमांड किया है कि फिर से एक बार ईवीएम को निकाल दो और बैलेट पेपर पे इलेक्शन कराया जाए, और दूसरा कि ये वोट चोरी जहाँ जहाँ हो गए वो सबूत उन्होंने मांगा है, वो सबूत हम लोग तैयार कर रहे हैं और सबूत हम दे देंगे।
2: ये लगातार चौथा दिन है जब ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने विपक्ष उतरा है। 6 अक्टूबर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च किया, पुलिस ने बैरिकेडिंग करके विपक्षी सांसदों को रोका और कुछ को हिरासत में लिया, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पुलिस को चकमा देकर आकाशवाणी भवन परिसर में धरना दे दिया, और पूरे 8 घंटे तक धरना देने के बाद पुलिस ने राहुल और प्रियंका को जबरन हिरासत में लेकर उठाया। 7 अक्टूबर कांग्रेस ने पहले इंडिया गठबंधन के सांसदों को लंच दिया और फिर जंतर बंतर के लिए कूच किया। दिल्ली पुलिस ने दूसरे दिन भी विपक्षी सांसदों की बस को रोका, तो राहुल और प्रियंका ने सड़क पर ही ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, और आखिर में 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने राहुल और प्रियंका को फिर से हिरासत में लेकर धरना खत्म करवाया। 8 अक्टूबर तीसरे दिन इंडिया गठबंधन के सांसदों ने कनॉट प्लेस में लंच किया और बसों से सीधे राजघाट यानी गांधी समाधि के लिए कूच किया। यहां भी भारी फोर्स की तैनाती की गई, लेकिन राहुल प्रियंका समेत सभी विपक्षी सांसद गांधी स्थल पर बैठकर वापस आ गए। 9 अक्टूबर चौथे दिन ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलते हैं और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपते हैं।
11: हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम जनता की अदालत में तो है ही, हम सड़कों पर हैं, और वोट चोरी इस देश में नहीं चल सकती है।
12: दैट इज मंडे द इंडिया ब्लॉक पार्टी लीडर्स विल गो टू सुप्रीम कोर्ट।
0: इस बीच बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने संवैधानिक सीमाएं लांघ दी हैं।
13: संवैधानिक संस्थान महामहिम राष्ट्रपति एक व्यक्ति नहीं है, वो देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है। उसको लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो न सिर्फ विचित्र लगता है बल्कि उसमें सच से ज्यादा सियासत की गंध आ रही है। उनका यह कहना कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने उनके आरोपों को स्वीकार कर लिया है, यह दर्शाता है कि जो अभी तक राहुल गांधी देश की हर संस्था के बारे में, हर संवैधानिक संस्था को अपनी राजनीति का शिकार बनाने का दुष्चक्र रच रहे हैं, उन्होंने अब आज ऐसा प्रतीत होता है कि सारी सीमाएं पार कर दी।
0: आज राहुल गांधी चेन्नई में रहेंगे, छात्रों के साथ कार्यक्रम करेंगे और दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी ने चेतावनी दे रखी है कि भले ही दिल्ली पुलिस उन्हें जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति न दे, लेकिन फिर भी वो जंतर मंतर के लिए कूच जरूर करेंगे।
2: इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ छिड़े संग्राम में एकजुटता दिखाई, तो 10 अक्टूबर को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर कूच का ऐलान करके टेंशन बढ़ा रखी है।
14: इट इज आवर डेमोक्रेटिक राइट कि अगर हम सरकार से किसी बात पे इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो हम अपनी बात को डेमोक्रेटिक और पीसफुल तरीके से रख सकते हैं। आज इस देश में हालात ये हो गए हैं कि एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट पर प्रोटेस्ट करने के लिए हमको प्रोटेस्ट करनी पड़ रही है। मतलब इतना तो ब्रिटिश राज में भी नहीं होता था। अभी मुद्दा तो सेकेंडरी हो गया है, अभी तो ये हो गया कि इनको जंतर मंतर पर पहुंचने ही मत दो। और जो पूरी लड़ाई है वो इसी बात पे थी कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है। हमारी लड़ाई, हमारे जो सवाल हैं, हमारी जो मांगे हैं, वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। और जिस तरह से बीजेपी ज्ञानेश कुमार के बचाव में आई है, जिस तरह से तमाम राज्यों में जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पे हमारे लोगों को डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, उससे हमारी लड़ाई और क्लियर हो रही है कि यस, बीजेपी एंड द इलेक्शन कमीशन आर वर्किंग टुगेदर, और इसी बात की तो सारी लड़ाई है हमारी।
2: जुलाई में हुए जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन पर दूध की जली दिल्ली पुलिस अक्टूबर में छाछ फूंक कर पी रही है। दिल्ली पुलिस बार बार कह रही है कि 10 अक्टूबर वाले इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है और उसके 3 कारण भी गिना रही है।
1: 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है, कोई भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा।
2: पहला, परमिशन 10 दिन पहले मांगनी होती है, जबकि सीजेपी ने 7 अक्टूबर को सिर्फ इंटीमेशन यानी सूचना दी है। दूसरा, पिछली बार परमिशन लेकर सीजेपी ने वादा खिलाफी की। तीसरा, मौजूदा लॉ एंड ऑर्डर के हालात को देखते हुए परमिशन नहीं दी जा सकती।
15: साहिल, मैं तो क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि मैं परमिशन मांगने नहीं गया था, इन्फॉर्मेशन देने गया था, इंटीमेशन देने गया था फॉर्मल वे में। हम लोगों ने जब अनाउंस किया था, पुलिसिंग का पॉलिसी है कि दे वुड मॉनिटर व्हाट द सिचुएशन इज इन द कंट्री एंड इन दिल्ली, दिल्ली पुलिस वुड डू इट। तो उनको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन था कि क्या होने वाला है। 7 तारीख को फिर मैं गया, वहां पे मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन जो हम लोगों ने लेटर दिया उसमें हमने एसर्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज अस द राइट टू प्रोटेस्ट, लेकिन पुलिस के तरफ से रवैया बहुत खराब था। दे डिड नॉट से एनीथिंग, उन्होंने ये नहीं बोला कि देंगे नहीं देंगे, उन्होंने एक्नॉलेज किया लेटर को एंड एक स्टैम्प डाल के हमें दे दिया। नन ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ दिल्ली पुलिस मेट मी, जबकि लास्ट टाइम उन्होंने 5 राउंड सीनियर ऑफिसर से हमें मिलवाया था, मैंने किया था लास्ट टाइम भी प्रोसेस, लेकिन इस बार बिल्कुल भी कोई सीनियर ऑफिसर मिलना नहीं चाह रहा था। एंड दिस इज अ न्यू टैक्टिक दैट दे हैव अडॉप्टेड।
16: व्हाट इज द टैक्टिक यू थिंक दैट
15: द टैक्टिक इज टू नॉट अलाउ एनी डेमोक्रेटिक डिसेंट इन द कंट्री। दिल्ली Also, the last time there were peaceful protests, it happened for such a long time. And इस बार वो चाहते हैं कि बिल्कुल भी देश का युवा रोड पे ना निकले। And वही tactic इसमें भी दिख रहा है कि कुछ भी information उनके तरफ से भी हमें ना आए, हमारे से वो सारे information ले ले जो हम cooperate करना भी चाहते हैं। हमने उनको जब मैं मिला था, जो भी अधिकारी था, मैंने बोला था कि we will fully cooperate with them in the expectation that the police would also cooperate with us. Because the police is not... they are not the ones who will give permission whether to protest against the government or not. कि ना strange और absurd concept है कि सोचिए गांधी जी जब डांडी मार्च निकाल देंगे, वो ब्रिटिशर्स को जाके बोलेंगे साहेब 2 घंटे का टाइम दीजिए, मैं डांडी मार्च करके आता हूँ। इज दिस हाउ द कंट्री विल फंक्शन? एंड ये गुलामी वाला जो मानसिकता है हमारे जो इंडिपेंडेंस के बाद 80 साल में हमारे अंदर घुसाया गया कि आप परमिशन लीजिए स्टेट से कि उनके खिलाफ ही प्रोटेस्ट करने, तो उनसे परमिशन लीजिए। हाउ एब्सर्ड कि अभी भी हम लोग वही लैंग्वेज यूज कर रहे हैं 80 साल बाद।
2: लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि उन्हें परमिशन की कोई जरूरत नहीं है।
17: ज्ञानेश कुमार ने परमिशन लिया था, 13 करोड़ वोट डिलीट करने से पहले ज्ञानेश कुमार ने परमिशन लिया था। सुप्रीम कोर्ट तो बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल भी नहीं दिया था फॉर्म 6 के मॉडिफिकेशन का। तो जब ज्ञानेश कुमार बिना किसी को बताए, बिना किसी से पूछे 13 करोड़ वोट डिलीट करता है, तो उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 19, क्या जरूरत है परमिशन।
2: बीजेपी की चेतावनी को देखते हुए दिल्ली में जैसे किलेबंदी कर दी गई है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर फोर्स तैनात हैं, चेकिंग चल रही है, तो जंतर मंतर के आसपास कई स्तर की बैरिकेडिंग की गई है। दंगा रोधी वाहन भी तैनात किए गए हैं, 300 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जगह जगह माइक लगाए गए हैं, 57 मेट्रो स्टेशन बंद हैं, दिल्ली निजामुद्दीन की 165 में से 38 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं।
18: मुझे लगता है कि अब बात थोड़ी उसके आगे चली गई है। एक ज्ञानेश कुमार को, जिसको हम एक ब्यूरोक्रेट कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेट ही है वो, कोई मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, एक ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए अपने जम्मू कश्मीर से फोर्स बुला ली, अपने नक्सल एरिया से फोर्स बुला ली, आपसे आपको वो भी कम लगा, आपने सारे रास्ते बंद कर दिए, आपको वो भी कम लगा, आपने मेट्रोज बंद कर दिए, आपको वो भी कम लगा, आपने रेलवेज बंद कर दी। देश ही बंद कर दो ना, इलेक्शन बंद कर दो, देश ही बंद कर दो। आर्टिकल 19 गिव्स अस द राइट टू प्रोटेस्ट एंड जंतर मंतर इज अ डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट। अगर हम मुंबई में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अगर हम बेंगलोर में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो हम दिल्ली में क्यों नहीं कर सकते? क्या दिल्ली किसी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर चल रही है? मुंबई में पुलिस ने पूरा कोऑपरेट किया, बेंगलुरु में पूरा कोऑपरेट किया, दिल्ली में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, दिल्ली में कौन सा लॉ चल रहा है अलग से? तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि दिल्ली का लॉ बुक कोई और है क्या जो इंडिया से अलग है।
2: दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन वाले अल्टीमेटम के चलते पुलिस सतर्क है, लेकिन दिल्ली में किलेबंदी और इतनी सख्ती को लेकर बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। जी हां, बीजेपी के प्रदर्शन से पहले मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और कई ट्रेनों को रद्द करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, और ये याचिका सीपीएम के महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद एमए बेबी ने दाखिल की, और सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस भी हुई। साथ ही सीजीआई की तरफ से टिप्पणी भी की गई। चीफ जस्टिस की बेंच में कपिल सिब्बल ने कहा, दिल्ली में ट्रेनें रद्द, मेट्रो बंद, होटल बंद हैं। प्रशांत भूषण ने कहा, पूरी दिल्ली बंद कर दी है। गोपाल शंकर नारायणन ने कहा, 57 मेट्रो स्टेशन भी बंद किए हैं। इस पर सीजीआई ने कहा, सुबह तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर जस्टिस बागची ने कहा कि प्रदर्शन का हक है, लेकिन कानून के हिसाब से इजाजत मांगिए, नहीं देते तो कोर्ट आइए। गोपाल शंकर नारायणन ने कहा, इसमें समय लगेगा, प्रोटेस्ट कल है। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, आपको कुछ चीजों को रोकना ही होगा, उन्हें रोकने के लिए सिर्फ उतनी ही कार्रवाई करें जितनी जरूरी हो। सुप्रीम अदालत ने आयोजकों को बुलाया और कपिल सिब्बल आयोजकों को नहीं ला पाए। अदालत में पुलिस प्रशासन के एहतियाती कदमों को लेकर भी चर्चा हुई, और सरकार ने अनुपातिक तैयारियों का वादा किया, और कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की बात कही। एहतियातन दिल्ली पुलिस अब भी दिल्ली में आने जाने वालों पर नजर रख रही है। दिल्ली के बॉर्डर पर वाहनों की तलाशी जारी है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: सीजेपी के प्रमुख अभिजीत देव के प्रदर्शन करने पर अड़े हुए हैं, और इसी प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट है। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से पुख्ता जबरदस्त इंतजाम किए गए।
2: बाजारों से लेकर बॉर्डर तक हाई अलर्ट पर पुलिस, जगह जगह दिल्ली पुलिस की बुनादी।
1: नई दिल्ली में और सभी जगह धारा 163 BNSS लागू है।
2: 10 अक्टूबर यानी कल जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली किसी छावनी में तब्दील हो चुकी है। दावा यही है कि प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, लिहाजा भीड़ जुटी तो एक्शन होगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से लोगों को सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली अफवाहों से बचने की सलाह दी जा रही है।
19: किसी भी भड़काऊ संदेश या उकसावे में नहीं आए, जिम्मेदार नागरिक बने और कानून का पालन करें। अपने क्षेत्र की सुरक्षा में पुलिस और प्रशासन का साथ दें, और अपने परिवार वाले और अपने बच्चों को इस बारे में समझा
2: वीडियो दिल्ली के चांदनी चौक का है। मस्जिद के केयर टेकर की माने तो बीते दिन स्थानीय पुलिस ने लोगों से जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट से दूर रहने की अपील की थी।
20: पुलिस अफसर जो यहाँ के बीट अफसर है ना, वो आए थे शाम के 5 बजे और उन्होंने ऐलान किया था कि प्रोटेक्शन जो हो रहा है जंतर मंतर पे, उसमें आदमी को नहीं जाना चाहिए और नहीं अपने बच्चों को जाने देना चाहिए। जी हाँ, यही उन्होंने ऐलान किया था, इस बात पे अमल करना चाहिए हर आदमी को।
21: कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक पुलिसकर्मी एक मस्जिद के अंदर जाकर के मोबाइल से पढ़ के एक अनाउंसमेंट कर रहा है, जिसमें वो लोगों को माइक पे बता रहा है कि किस तरीके से इस प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है और वो अपने बच्चों को भी समझाएं कि वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा ना बने। इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी मस्जिद के बाहर है। अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो ये चांदनी चौक में स्थित शाही मस्जिद है जिसके अंदर का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। यहीं पर दिल्ली पुलिस आई और यहां पर आकर के दिल्ली पुलिस ने अनाउंसमेंट की है और लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि जो कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है उसके लिए परमिशन नहीं मिली है और अपने बच्चों को भी वो समझाएं कि वो आगे जाकर के इस प्रोटेस्ट का हिस्सा ना बने क्योंकि लीगल एक्शन हो सकता है।
2: दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में भी दिल्ली पुलिस लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को बता रही है कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है, धारा 163 लागू है, लिहाजा प्रोटेस्ट में शामिल ना हो।
1: 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है। नई दिल्ली में और सभी जगह धारा 163 BNSS लागू है, जो कि कोई भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा। आप सभी को सूचित कर दें, बता दें, अपने बच्चे जो भी आस पड़ोसी उन सबको बता करके ब्रीफ कर दें कि वहां पर कोई भी परमिशन नहीं है।
2: तो दिल्ली की कुछ मस्जिदों से ऐलान किया गया है कि 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल न हो।
22: इस ऐलान को गौर समाज फरमाएं कि जो जंतर मंतर पर 8-9-10 तारीख को जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो इल्लीगल है, वहां पर कोई व्यक्ति ना जाए, इसलिए कि सरकार ने वहां पर धारा 173 से लगाई हुई है। कृपया आप असरा प्रशासन का साथ दें, कोई वहां ना जाए।
2: दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, बिना परमिशन सीजेपी को प्रदर्शन या धरना करने की इजाजत नहीं है।

0: जिसमें ये बताया गया कि वो सीईसी की अकाउंटेबिलिटी के रिगार्डिंग 10 तारीख को जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन जो इंटीमेशन की है उस पर गौर किया गया और ये पाया गया कि ये एप्लीकेशन इस्टेब्लिश्ड जो गाइडलाइन है उसके तहत हमारे पास नहीं आई है, बहुत ही कम समय में आई है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने उनका जो प्रीवियस कंडक्ट था, उन्होंने जो हमारी लॉफुल डायरेक्शंस को नहीं फॉलो किया या उनकी जो अंडरटेकिंग दी गई थी उनके द्वारा उसको भी नहीं कंप्लाई किया। और प्रेजेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और पब्लिक सेफ्टी के मद्देनजर इस एप्लीकेशन जो थी उसको रिजेक्ट किया जाता है।
1: पुलिस की दलील है कि पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल सीजेपी की तरफ से नहीं रखा गया, हिंसा हुई, कई पुलिस वाले जख्मी हुए, लिहाजा अब की बार प्रदर्शन के नाम पर दिल्ली की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होगा।
2: 2 अक्टूबर से लेकर अब तक 27 FIR दर्ज हो चुकी है। पुलिस को अंदेशा है कि प्रदर्शन के नाम पर कुछ लोग दिल्ली की कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं, इसीलिए सख्ती दिल्ली पुलिस ने की है।
1: सीजेपी का ऐलान यही है कि जंतर मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए 7 अक्टूबर को सीजेपी की तरफ से परमिशन मांगी गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं दी गई। इसके बावजूद सीजेपी ने जंतर मंतर पहुंचने का ऐलान किया है। ऐसे में सीजेपी से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। जंतर मंतर को बैरिकेड से घेरा गया है, मतलब सीजेपी के समर्थकों को जंतर मंतर जाने से रोकने की प्लानिंग है। इसी कड़ी में नए CCTV और लाउड स्पीकर तक लगाए गए हैं।
3: जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली पुलिस की कोशिश ऐसी है कि कहीं कोई जमावड़ा एक जगह पर ज्यादा ना होने पाए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो। कई जगहों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के तहत जो कैमरे आते हैं, जो जुड़े हुए हैं, उन कैमरों को भी लगाया गया है। हालांकि कई ऐसे कैमरे हैं जो इस इलाके में पहले लगे हुए थे, लेकिन आप देखिए इस खंभे पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको जो कैमरा नीचे लगा हुआ दिख रहा है, ये अभी इंस्टॉल किया गया है। इसके ऊपर लाउड स्पीकर लगाया गया है, जिससे लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप यहाँ पर इकट्ठे ना हो, ये गैर कानूनी है। तो पुलिस ने जगह जगह कंट्रोल रूम बना रखे हैं, एरियो को डिवाइड कर रखा है और हर एरिए की जिम्मेदारी एक IPS स्तर के अधिकारी की है।
1: ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है। थाने के बाहर दिल्ली पुलिस की तरफ से पोस्टर पर चेतावनी लिखी हुई है। थाने के बाहर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं।
3: इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के ठीक बाहर, जो पिछले कई दिनों से जंग का अखाड़ा बना हुआ है। और इस थाने के बाहर की आप तैनाती देखिए, जैसे किले की बाहर पूरी सुरक्षा होती है, उस तरीके से इस थाने की भी सुरक्षा के लिए बाहर बैरिकेड है। अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस गेट पर तैनात मिलेगी, दिल्ली पुलिस आपको तैनात मिलेगी और यहाँ पर चेतावनी भी लगाई गई है। ठीक आप देखिए, बैरिकेड पर चेतावनी लगाई गई है कि BNSS की धारा 163 लागू है, अगर लोग जुटेंगे तो उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी।
1: जंतर मंतर की तरफ जाने वाले रास्ते की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है।
4: इस वक्त मैं जनपथ रोड पर हूं और मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये जो सड़क है ये सीधा जंतर मंतर की तरफ जाती है। यहां से करीब 500 मीटर आगे ही वो धरना स्थल है, जहां अमूमन लोग जाके बैठते हैं और धरना देते हैं। अगर आप यहां तैयारियां देखें तो इस पूरी सड़क को ट्रैफिक के लिए और पैदल मूवमेंट के लिए भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात भी कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, अगर आप देखें यहां आसपास करीब हर खंभे पर कैमरे लगा दिए गए हैं और ऐसे बड़े लाउड स्पीकर लगा दिए गए हैं। इन लाउड स्पीकर्स का ये काम है कि ये लगातार अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा होना इस वक्त गैरकानूनी है। इस पूरे इलाके में 163 BNSS की धारा लगी हुई है, जो किसी भी तरह के प्रदर्शन को वर्जित करती है। और अगर यहाँ पर कोई पहुंचता है या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोशिश करता है, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करता है या पुलिस वालों पर हमला करने की कोशिश करता है, तो उनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
1: संसद मार्ग की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर बैरिकेड को दूसरे बैरिकेड से जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने जंजीर और ताले का इस्तेमाल किया है।
3: इस वक्त हम संसद मार्ग पर मौजूद है, जहाँ पर सीजेपी की प्रस्तावित प्रोटेस्ट से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। और ये आप देखिए, ये जो बैरिकेड रखे गए हैं यहाँ, इन बैरिकेड में ये चेन्स लगाई जा रही है मोटी मोटी। इन चेन्स को पेच के जरिए अगर आप देखेंगे तो इनको पेच के जरिए

0: इससे जोड़ दिया गया है बैरिकेड से और नीचे की तरफ ऐसे लॉक सिस्टम लगाए गए हैं ताकि इस लॉक को दूसरा जो ये लॉक सिस्टम है जो इस अगर हम कहें दूसरा बैरिकेड है इस बैरिकेड में जो लॉक सिस्टम है इस चेन को इससे जोड़ा जा सके यानी कि इन बैरिकेड को हटाना इतना आसान नहीं होगा। आप दरअसल पुलिस ने तैयारी की है जो इस पूरे प्रोटेस्ट से निपटने के लिए क्योंकि परमिशन तो दी नहीं है और उसके कारण पुलिस ने बताया कि एक तो सिर्फ 3 दिन पहले एप्लीकेशन दी गई और दूसरा जो पिछला आचरण था परमिशन लेने के बाद प्रोटेस्ट का उसको देखते हुए परमिशन डिनाई की जा रही है।
1: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: राष्ट्रपति संभलने के बाद विपक्ष ने सरकार पर और तेज किए हमले, बोले राहुल, वोट चोरी के हमारे आरोप पर महामहिम भी सहमत। बीजेपी बोली, नेता विपक्ष राहुल ने लांघी संवैधानिक सीमा। आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को नहीं मिली अनुमति, मेट्रो के 45 स्टेशन बंद, दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें रद्द, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली की किलेबंदी पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, कहा, मक्खी मारने के लिए हथौड़ा आप नहीं चला सकते, सब कुछ ठप होने से आम लोग न हो परेशान। उपचुनाव में बीजेपी एनडीए के शानदार प्रदर्शन पर पीएम का पोस्ट, लिखा, इस जनादेश से मिलेगी और मजबूती। अमित शाह बोले, राहुल के झूठ और दुष्प्रचार के बाद भी हमारी बड़ी जीत। जेवर एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी हवाई अड्डा करने पर राजनीतिक युद्ध, अखिलेश बोले, नाम बदलने वालों को बदलेगी जनता, पहले यूपी कैबिनेट के निर्णय पर लगी मुहर। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल गांधी मोर्चा खोले हुए हैं। इस बीच शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ राहुल ने राष्ट्रपति से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन सौंपा। सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में किलेबंदी इधर कर दी गई है।
1: 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है, कोई भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा।
2: ज्ञानेश कुमार पर संग्राम, आज विपक्ष कल सीजेपी। चार दिन से लगातार राहुल गांधी का ज्ञानेश कुमार पर वार।
3: मंडे को हम सुप्रीम कोर्ट, ये ही पूरा का पूरा ग्रुप मेमोरेंडम ले, इफ जस्टिस के लिए मेमोरेंडम लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
2: अब ज्ञानेश कुमार पर लड़ाई राष्ट्रपति के दर तक आई। सीईसी के इस्तीफे की मांग, राष्ट्रपति को इंडिया का ज्ञापन।
4: हमने तो पॉजिटिव आउटलुक से देखा है कि उन्होंने जो दो चार बात कहा कि आई विल इन्वेस्टिगेट, आई विल गो थ्रू द डिटेल्स एंड आम को सबूत चाहिए।
2: 10 अक्टूबर को सीजेपी का जंतर मंतर प्लान, किले में तब्दील दिल्ली।
5: डरे हुए हैं और जो आदमी डरता है आज नहीं कल मरता है।
6: भारत जैसे लोकतंत्र में प्रदर्शन की पूरी संभावनाएं हैं और आप जरूर करें प्रदर्शन, बट प्रदर्शन से समाधान नहीं निकलेगा, समाधान संवाद से निकलेगा।
2: एक तरफ दिल्ली किले में तब्दील हो चुकी है, दिल्ली पुलिस से लेकर बीएसएफ भी दिल्ली की सीमाओं पर तैनात है, तो दूसरी तरफ लगातार चौथे दिन राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए उतरे और चौथे दिन अपनी मांग को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दर पर पहुंचते हैं।
7: यहाँ पे आप देखिए कि संसद भवन से बाहर मार्च करते हुए ये तमाम नेता नजर आ रहे हैं और कुछ इस तरीके से लोकतंत्र बचाओ अभियान छेड़ दिया है यहाँ पे इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने। और बैठक के बाद, 5 बजे की बैठक के बाद इस तरीके से नारेबाजी और घेराबंदी यहाँ पे विजय चौक पर हम लोग पहुँच गए हैं। ये विजय चौक है, पीछे आप देखें कि नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है।
8: मांग तो पूरे देश की जो मांग है कि पूरा जो संरचना है बेईमानी का उसको खत्म किया जाए, और ज्ञानेश जी प्रतीक पुरुष हैं जो शील्ड बन के खड़े हैं मोदी जी और अमित शाह जी, वो चले जाए।
9: देखिए, मुझे लगता है कि जो सारे देशभक्त हैं वो देश में लोकतंत्र को बचाने में लगे हैं, वो चाहे किसी राजनीतिक दल के सदस्य हो या न हो। और जो आज जो वोटर लिस्ट में पूरे चुनाव प्रक्रिया में जो धूल मिलाने का जो काम हो रहा है वो आज के तारीख में सबसे बड़े देशद्रोही का काम है।
10: थी, मुझे हंसी आ रही कि सरकार इतनी डर गई, लोग परेशान हो गए। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ब्लैंकेट बैन क्यों लगा रहे, सब क्यों बंद कर रहे, सारे मेट्रो ट्रेन बंद, सारी ट्रेनें बंद, सारे बसेस बंद, दिल्ली में घुस नहीं सकता, इतना डर।
2: इसके दो मकसद हैं, एक तो इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाना, दूसरा ये बताना कि सारे विपक्षी दल ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा चाहते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने वालों में बड़े नाम थे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, सीपीएम के एम ए बेबी, सीपीआई के डी राजा, समाजवादी पार्टी के राजीव राय, सुप्रिया सुले, उमर अब्दुल्ला, मनोज झा और वीसीके के टी तिरुमावलन। जब इंडिया गठबंधन के ये 10 नेता राष्ट्रपति द्रौपदी से मिलने राष्ट्रपति भवन के अंदर पहुंचे, तो बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हुई।
3: एक प्रकार से मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि जब हमने राष्ट्रपति को इलेक्शन चोरी वोट चोरी के बारे में बताया तो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने डिनाई नहीं किया। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने यह नहीं कहा कि हिंदुस्तान में चुनाव चोरी नहीं हो रहे हैं। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने उल्टा हमसे कहा कि आप सबूत हमारे पास लाइए, और यही ग्रुप खुशी से जो पूरा का पूरा सबूत हमने कलेक्ट किया है राष्ट्रपति के पास ले जाएगा, ले जाने के लिए तैयार है। पूरा देश जानता है, स्टूडेंट्स जानते हैं कि देश में वोट चोरी हो रही है। नरेंद्र मोदी इसके आर्किटेक्ट हैं, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार इसके इम्प्लीमेंटर्स हैं, और इस बात को राष्ट्रपति ने, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने आज डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में सोचेंगी और एक्शन लेंगी।
4: हमने तो पॉजिटिव आउटलुक से देखा है कि उन्होंने जो दो चार बात कहा कि आई विल इन्वेस्टिगेट, आई विल गो थ्रू द डिटेल्स एंड हमको सबूत चाहिए, यू प्लीज सेंड अस द डिटेल्स एविडेंस।
11: हमने डिमांड किया है कि फिर से एक बार ईवीएम को निकाल दो और बैलेट पेपर पे इलेक्शन कराया जाए, और दूसरा कि ये वोट चोरी जहाँ हो गए वो सबूत उन्होंने मांगा है, वो सबूत हम लोग तैयार कर रहे हैं और सबूत हम दे देंगे।
2: ये लगातार चौथा दिन है जब ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने विपक्ष उतरा है। 6 अक्टूबर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च किया, पुलिस ने बैरिकेडिंग करके विपक्षी सांसदों को रोका और कुछ को हिरासत में लिया, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पुलिस को चकमा देकर आकाशवाणी भवन परिसर में धरना दे दिया, और पूरे 8 घंटे तक धरना देने के बाद पुलिस ने राहुल और प्रियंका को जबरन हिरासत में लेकर उठाया। 7 अक्टूबर कांग्रेस ने पहले इंडिया गठबंधन के सांसदों को लंच दिया और फिर जंतर बंतर के लिए कूच किया। दिल्ली पुलिस ने दूसरे दिन भी विपक्षी सांसदों की बस को रोका, तो राहुल और प्रियंका ने सड़क पर ही ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, और आखिर में 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने राहुल और प्रियंका को फिर से हिरासत में लेकर धरना खत्म करवाया। 8 अक्टूबर तीसरे दिन इंडिया गठबंधन के सांसदों ने कनॉट प्लेस में लंच किया और बसों से सीधे राजघाट यानी गांधी समाधि के लिए कूच किया। यहां भी भारी फोर्स की तैनाती की गई, लेकिन राहुल प्रियंका समेत सभी विपक्षी सांसद गांधी स्थल पर बैठकर वापस आ गए। 9 अक्टूबर चौथे दिन ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलते हैं और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपते हैं।
12: हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम जनता की अदालत में तो है ही, हम सड़कों पर हैं, और वोट चोरी इस देश में नहीं चल सकती है।
13: दैट इज मंडे द इंडिया ब्लॉक पार्टी लीडर्स विल गो टू सुप्रीम कोर्ट।
0: इस बीच बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने संवैधानिक सीमाएं लांघ दी हैं।
14: संवैधानिक संस्थान महामहिम राष्ट्रपति एक व्यक्ति नहीं है, वो देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है। उसको लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो न सिर्फ विचित्र लगता है बल्कि उसमें सच से ज्यादा सियासत की गंध आ रही है। उनका यह कहना कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने उनके आरोपों को स्वीकार कर लिया है, यह दर्शाता है कि जो अभी तक राहुल गांधी देश की हर संस्था के बारे में, हर संवैधानिक संस्था को अपनी राजनीति का शिकार बनाने का दुष्चक्र रच रहे हैं, उन्होंने अब आज ऐसा प्रतीत होता है कि सारी सीमाएं पार कर दी।
0: आज राहुल गांधी चेन्नई में रहेंगे, छात्रों के साथ कार्यक्रम करेंगे और दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी ने चेतावनी दे रखी है कि भले ही दिल्ली पुलिस उन्हें जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति न दे, लेकिन फिर भी वो जंतर मंतर के लिए कूच जरूर करेंगे।
2: इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ छिड़े संग्राम में एकजुटता दिखाई तो 10 अक्टूबर को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर कूच का ऐलान करके टेंशन बढ़ा रखी है।
15: इट इज आवर डेमोक्रेटिक राइट कि अगर हम सरकार से किसी बात पे इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो हम अपनी बात को डेमोक्रेटिक और पीसफुल तरीके से रख सकते हैं। आज इस देश में हालात ये हो गए हैं कि एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट पर प्रोटेस्ट करने के लिए हमको प्रोटेस्ट करनी पड़ रही है। मतलब इतना तो ब्रिटिश राज में भी नहीं होता था। अभी मुद्दा तो सेकेंडरी हो गया है, अभी तो ये हो गया कि इनको जंतर मंतर पर पहुंचने ही मत दो। और जो पूरी लड़ाई है वो इसी बात पे थी कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है। हमारी लड़ाई, हमारे जो सवाल हैं, हमारी जो मांगे हैं वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। और जिस तरह से बीजेपी ज्ञानेश कुमार के बचाव में आई है, जिस तरह से तमाम राज्यों में जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर हमारे लोगों को डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, उससे हमारी लड़ाई और क्लियर हो रही है कि यस, बीजेपी एंड द इलेक्शन कमीशन आर वर्किंग टुगेदर। और इसी बात की तो सारी लड़ाई है हमारी।
2: जुलाई में हुए जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन पर दूध की जली दिल्ली पुलिस अक्टूबर में छाछ फूंक कर पी रही है। दिल्ली पुलिस बार बार कह रही है कि 10 अक्टूबर वाले इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है और उसके 3 कारण भी गिना रही है।
1: 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है, कोई भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा।
2: पहला, परमिशन 10 दिन पहले मांगनी होती है, जबकि सीजेपी ने 7 अक्टूबर को सिर्फ इंटीमेशन यानी सूचना दी है। दूसरा, पिछली बार परमिशन लेकर सीजेपी ने वादा खिलाफी की। तीसरा, मौजूदा लॉ एंड ऑर्डर के हालात को देखते हुए परमिशन नहीं दी जा सकती।
16: साहिल, मैं तो क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि मैं परमिशन मांगने नहीं गया था,
17: इन्फॉर्म करने,
16: मैं इन्फॉर्मेशन देने गया था, इंटीमेशन देने गया था फॉर्मल वे में। Okay. हम लोगों ने जब अनाउंस किया था, पुलिसिंग का पॉलिसी है कि दे वुड मॉनिटर व्हाट द सिचुएशन इज इन द कंट्री एंड इन दिल्ली, दिल्ली पुलिस वुड डू इट, तो उनको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन था कि क्या होने वाला है। 7 तारीख को फिर मैं गया, वहां पे मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन जो हम लोगों ने लेटर दिया उसमें हमने एसर्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज अस द राइट टू प्रोटेस्ट, लेकिन पुलिस के तरफ से रवैया बहुत खराब था। दे डिड नॉट से एनीथिंग, उन्होंने ये नहीं बोला कि देंगे नहीं देंगे, उन्होंने एक्नॉलेज किया लेटर को एंड एक स्टैंप डाल के हमें दे दिया। नन ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ दिल्ली पुलिस मेट मी, जबकि लास्ट टाइम उन्होंने 5 राउंड सीनियर ऑफिसर से हमें मिलवाया था, मैंने ही किया था लास्ट टाइम भी प्रोसेस, लेकिन इस बार बिल्कुल भी कोई सीनियर ऑफिसर मिलना नहीं चाह रहा था। And this is a new tactic that they have adopted.
17: What is the tactic you think that...
16: The tactic is to not allow any democratic dissent in the country. Delhi, also the last time there were peaceful protests, it happened for such a long time. And is bar wo chahte hai ki bilkul bhi desh ka yuva road pe na nikle. And wahi tactic isme bhi dikh raha hai ki kuch bhi information unke taraf se bhi hame na aaye. हमारे से वो सारे इन्फॉर्मेशन ले ले जो हम कोऑपरेट करना भी चाहते हैं। हमने उनको जब मैं मिला था, जो भी अधिकारी था, मैंने बोला था कि वी विल फुली कोऑपरेट विद देम इन द एक्सपेक्टेशन दैट द पुलिस वुड आल्सो कोऑपरेट विद अस, बिकॉज द पुलिस इज नॉट, दे आर नॉट द वंस हु विल गिव परमिशन वेदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और नॉट। कितना स्ट्रेंज और एब्जर्ड कॉन्सेप्ट है कि सोचिए गांधी जी जब दांडी मार्च निकाल देंगे, वो ब्रिटिशर्स को जाके बोलेंगे साहेब 2 घंटे का टाइम दीजिए, मैं डांडी मार्च करके आता हूं। इज दिस हाउ द कंट्री विल फंक्शन? एंड ये गुलामी वाला जो मानसिकता है हमारे जो इंडिपेंडेंस के बाद 80 साल में हमारे अंदर घुसाया गया कि आप परमिशन लीजिए स्टेट से कि उनके खिलाफ ही प्रोटेस्ट करने, तो उनसे परमिशन लीजिए। हाउ एब्जर्ड कि अभी भी हम लोग वही लैंग्वेज यूज कर रहे हैं 80 साल बाद।
2: लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि उन्हें परमिशन की कोई जरूरत नहीं है।
18: ज्ञानेश कुमार ने परमिशन लिया था, 13 करोड़ वोट डिलीट करने से पहले ज्ञानेश कुमार ने परमिशन लिया था। सुप्रीम कोर्ट तो बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल भी नहीं दिया था फॉर्म 6 के मॉडिफिकेशन का। तो जब ज्ञानेश कुमार बिना किसी को बताए, बिना किसी से पूछे 13 करोड़ वोट डिलीट करता है, तो उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 19, क्या जरूरत है परमिशन।
2: बीजेपी की चेतावनी को देखते हुए दिल्ली में जैसे किलेबंदी कर दी गई है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर फोर्स तैनात हैं, चेकिंग चल रही है, तो जंतर मंतर के आसपास कई स्तर की बैरिकेडिंग की गई है। दंगा रोधी वाहन भी तैनात किए गए हैं, 300 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जगह जगह माइक लगाए गए हैं, 57 मेट्रो स्टेशन बंद हैं, दिल्ली निजामुद्दीन की 165 में से 38 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं।
19: मुझे लगता है कि अब बात थोड़ी उसके आगे चली गई है। एक ज्ञानेश कुमार को, जिसको हम एक ब्यूरोक्रेट कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेट है वो, कोई मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, एक ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए अपने जम्मू कश्मीर से फोर्स बुला ली, अपने नक्सल एरिया से फोर्स बुला ली, आपसे आपको वो भी कम लगा, आपने सारे रास्ते बंद कर दिए, आपको वो भी कम लगा, आपने मेट्रोज बंद कर दिए, आपको वो भी कम लगा, आपने रेलवेज बंद कर दी। देश ही बंद कर दो ना, इलेक्शन बंद कर दो, देश ही बंद कर दो। आर्टिकल 19 गिव्स अस द राइट टू प्रोटेस्ट एंड जंतर मंतर इज अ डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट। अगर हम मुंबई में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अगर हम बेंगलोर में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो हम दिल्ली में क्यों नहीं कर सकते? क्या दिल्ली किसी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर चल रही है? मुंबई में पुलिस ने पूरा कोऑपरेट किया, बेंगलुरु में पूरा कोऑपरेट किया, दिल्ली में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, दिल्ली में कौन सा लॉ चल रहा है अलग से? तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि दिल्ली का लॉ बुक कोई और है क्या जो इंडिया से अलग है।
2: दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन वाले अल्टीमेटम के चलते पुलिस सतर्क है, लेकिन दिल्ली में किलेबंदी और इतनी सख्ती को लेकर बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। जी हां, बीजेपी के प्रदर्शन से पहले मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और कई ट्रेनों को रद्द करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, और ये याचिका सीपीएम के महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद एमए बेबी ने दाखिल की, और सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस भी हुई। साथ ही सीजीआई की तरफ से टिप्पणी भी की गई। चीफ जस्टिस की बेंच में कपिल सिब्बल ने कहा, दिल्ली में ट्रेनें रद्द, मेट्रो बंद, होटल बंद हैं। प्रशांत भूषण ने कहा, पूरी दिल्ली बंद कर दी है। गोपाल शंकर नारायणन ने कहा, 57 मेट्रो स्टेशन भी बंद किए हैं। इस पर सीजीआई ने कहा, सुबह तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर जस्टिस बागची ने कहा कि प्रदर्शन का हक है, लेकिन कानून के हिसाब से इजाजत मांगिए, नहीं देते तो कोर्ट आइए। गोपाल शंकर नारायणन ने कहा, इसमें समय लगेगा, प्रोटेस्ट कल है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, आपको कुछ चीजों को रोकना ही होगा, उन्हें रोकने के लिए सिर्फ उतनी ही कार्रवाई करें जितनी जरूरी हो। सुप्रीम अदालत ने आयोजकों को बुलाया और कपिल सिब्बल आयोजकों को नहीं ला पाए। अदालत में पुलिस प्रशासन के एहतियाती कदमों को लेकर भी चर्चा हुई, और सरकार ने अनुपातिक तैयारियों का वादा किया, और कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की बात कही। एहतियातन दिल्ली पुलिस अब भी दिल्ली में आने जाने वालों पर नजर रख रही है। दिल्ली के बॉर्डर पर वाहनों की तलाशी जारी है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दीप के प्रदर्शन करने पर अड़े हुए हैं, और इसी प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट है। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से पुख्ता जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं।
2: बाजारों से लेकर बॉर्डर तक हाई अलर्ट पर पुलिस, जगह जगह दिल्ली पुलिस की बुनादी।
1: नई दिल्ली में और सभी जगह धारा 163 BNSS लागू है।
2: 10 अक्टूबर यानी कल जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली किसी छावनी में तब्दील हो चुकी है। दावा यही है कि प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, लिहाजा भीड़ जुटी तो एक्शन होगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से लोगों को सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली अफवाहों से बचने की सलाह दी जा रही है।
20: किसी भी भड़काऊ संदेश या उकसावे में नहीं आए, जिम्मेदार नागरिक बने और कानून का पालन करें। अपने क्षेत्र की सुरक्षा में पुलिस और प्रशासन का साथ दें, और अपने परिवार वाले और अपने बच्चों को इस बारे में समझें।
2: वीडियो दिल्ली के चांदनी चौक का है। मस्जिद के केयर टेकर की माने तो बीते दिन स्थानीय पुलिस ने लोगों से जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट से दूर रहने की अपील की थी।
5: पुलिस अफसर जो यहाँ के बीट अफसर है ना, वो आए थे शाम के 5 बजे और उन्होंने ऐलान किया था कि प्रोटेक्शन जो हो रहा है जंतर मंतर पे, उसमें आदमी को नहीं जाना चाहिए और नहीं अपने बच्चों को जाने देना चाहिए। जी हाँ, यही उन्होंने ऐलान किया था, इस बात पे अमल करना चाहिए हर आदमी को।
21: कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक पुलिसकर्मी एक मस्जिद के अंदर जाकर के मोबाइल से पढ़ के एक अनाउंसमेंट कर रहा है, जिसमें वो लोगों को माइक पे बता रहा है कि किस तरीके से इस प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है और वो अपने बच्चों को भी समझाएं कि वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा ना बने। इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी मस्जिद के बाहर है। अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो ये चांदनी चौक में स्थित शाही मस्जिद है जिसके अंदर का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। यहीं पर दिल्ली पुलिस आई और यहां पर आकर के दिल्ली पुलिस ने अनाउंसमेंट की है और लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि जो कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है उसके लिए परमिशन नहीं मिली है और अपने बच्चों को भी वो समझाएं कि वो आगे जाकर के इस प्रोटेस्ट का हिस्सा ना बने क्योंकि लीगल एक्शन हो सकता है।
2: दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में भी दिल्ली पुलिस लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को बता रही है कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है, धारा 163 लागू है, लिहाजा प्रोटेस्ट में शामिल ना हो।
1: 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है। नई दिल्ली में और सभी जगह धारा 163 BNSS लागू है, जो कि कोई भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा। आप सभी को कोशिश कर दें, बता दें अपने बच्चे जो भी आस पड़ोसी उन सबको बता करके ब्रीफ कर दें कि वहां पर कोई भी परमिशन नहीं है।
2: तो दिल्ली की कुछ मस्जिदों से ऐलान किया गया है कि 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल ना हो।
22: इस ऐलान को गौर समाज फरमाए कि जो जंतर मंतर पर 8-9-10 तारीख को जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो इलीगल है, वहां पर कोई व्यक्ति ना जाए, इसलिए कि सरकार ने वहां पर धारा 173 लगाई हुई है। कृपया आप असरा प्रशासन का साथ दें, कोई वहां ना जाए।
2: दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, बिना परमिशन सीजेपी को प्रदर्शन या धरना करने की इजाजत नहीं है।
23: क्या परमिशन मांगी गई, कब मांगी गई?
24: 7 तारीख को कांग्रेस जनता पार्टी ने एक परमिशन एप्लीकेशन दी थी इंटीमेशन करके, जिसमें ये बताया गया कि वो सीईसी की अकाउंटेबिलिटी के रिगार्डिंग 10 तारीख को जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन जो इंटीमेशन की है उस पर गौर किया गया और ये पाया गया कि ये एप्लीकेशन इस्टेब्लिश्ड जो गाइडलाइन है उसके तहत हमारे पास नहीं आई है, बहुत ही कम समय में आई है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने उनका जो प्रीवियस कंडक्ट था, उन्होंने जो हमारी लॉफुल डायरेक्शंस को नहीं फॉलो किया या उनकी जो अंडरटेकिंग दी गई थी उनके द्वारा उसको भी नहीं कंप्लाई किया, और प्रेजेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और पब्लिक सेफ्टी के मद्देनज़र इस एप्लीकेशन जो थी उसको रिजेक्ट किया जाता है।
2: पुलिस की दलील है कि पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल सीजेपी की तरफ से नहीं रखा गया, हिंसा हुई, कई पुलिस वाले जख्मी हुए, लिहाजा अब की बार प्रदर्शन के नाम पर दिल्ली की कानून व्यवस्था से खेलवाड़ नहीं होगा।
0: 2 अक्टूबर से लेकर अब तक 27 FIR दर्ज हो चुकी हैं। पुलिस को अंदेशा है कि प्रदर्शन के नाम पर कुछ लोग दिल्ली की कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं, इसीलिए सख्ती दिल्ली पुलिस ने की है।
2: सीजेपी का ऐलान यही है कि जंतर मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए 7 अक्टूबर को सीजेपी की तरफ से परमिशन मांगी गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं दी गई। इसके बावजूद सीजेपी ने जंतर मंतर पहुंचने का ऐलान किया है। ऐसे में सीजेपी से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। जंतर मंतर को बैरिकेड से घेरा गया है, मतलब सीजेपी के समर्थकों को जंतर मंतर जाने से रोकने की प्लानिंग है। इसी कड़ी में नए CCTV और लाउड स्पीकर तक लगाए गए हैं।
25: जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली पुलिस की कोशिश ऐसी है कि कहीं कोई जमावड़ा एक जगह पर ज्यादा ना होने पाए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो। कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिसमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के तहत जो कैमरे आते हैं जो जुड़े हुए हैं उन कैमरों को भी लगाया गया है। हालांकि कई ऐसे कैमरे हैं जो इस इलाके में पहले लगे हुए थे, लेकिन आप देखिए इस खंभे पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको जो कैमरा नीचे लगा हुआ दिख रहा है ये अभी इंस्टॉल किया गया है। इसके ऊपर लाउड स्पीकर लगाया गया है जिससे लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप यहाँ पर इकट्ठे ना हो, ये गैर कानूनी है। तो पुलिस ने जगह जगह कंट्रोल रूम बना रखे हैं, एरियो को डिवाइड कर रखा है और हर एरिया की जिम्मेदारी एक आईपीएस स्तर के अधिकारी की है।
2: ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है। थाने के बाहर दिल्ली पुलिस की तरफ से पोस्टर पर चेतावनी लिखी हुई है। थाने के बाहर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं।
25: इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के ठीक बाहर, जो पिछले कई दिनों से जंग का अखाड़ा बना हुआ है। और इस थाने के बाहर की आप तैनाती देखिए, जैसे किले की बाहर पूरी सुरक्षा होती है उस तरीके से इस थाने की भी सुरक्षा के लिए बाहर बैरिकेड है। अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस गेट पर तैनात मिलेगी, दिल्ली पुलिस आपको तैनात मिलेगी और यहाँ पर चेतावनी भी लगाई गई है। ठीक आप देखिए बैरिकेड पर चेतावनी लगाई गई है कि BNSS की धारा 163 लागू है, अगर लोग जुटेंगे तो उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी।
2: जंतर मंतर की तरफ जाने वाले रास्ते की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है।
21: इस वक्त मैं जनपथ रोड पर हूं और मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये जो सड़क है ये सीधा जंतर मंतर की तरफ जाती है। यहां से करीब 500 मीटर आगे ही वो धरना स्थल है जहां अमूमन लोग जाके बैठते हैं और धरना देते हैं। अगर आप यहां तैयारियां देखें तो इस पूरी सड़क को ट्रैफिक के लिए और पैदल मूवमेंट के लिए भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात भी कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, अगर आप देखें यहां आसपास करीब हर खंभे पर कैमरे लगा दिए गए हैं और ऐसे बड़े लाउड स्पीकर लगा दिए गए हैं। इन लाउड स्पीकर्स का ये काम है कि ये लगातार अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा होना इस वक्त गैरकानूनी है। इस पूरे इलाके में 163 BNSS की धारा लगी हुई है जो किसी भी तरह के प्रदर्शन को वर्जित करती है और अगर यहाँ पर कोई पहुंचता है या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोशिश करता है, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करता है या पुलिस वालों पर हमला करने की कोशिश करता है तो उनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
2: संसद मार्ग की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर बैरिकेड को दूसरे बैरिकेड से जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने जंजीर और ताले का इस्तेमाल किया है।
25: इस वक्त हम संसद मार्ग पर मौजूद हैं, जहाँ पर CJP की प्रस्तावित प्रोटेस्ट से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। और ये आप देखिए ये जो बैरिकेड रखे गए हैं, यहाँ इन बैरिकेड में ये चेन्स लगाई जा रही है मोटी मोटी। इन चेन्स को पेच के जरिए अगर आप देखेंगे तो इनको पेच के जरिए इससे जोड़ दिया गया। इन चेन्स को पेच के जरिए अगर आप देखेंगे तो

0: बताएं कि एक तो सिर्फ 3 दिन पहले एप्लीकेशन दी गई और दूसरा जो पिछला आचरण था परमिशन लेने के बाद प्रोटेस्ट का, उसको देखते हुए परमिशन डिनाई की जा रही है।
1: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: राष्ट्रपति संभलने के बाद विपक्ष ने सरकार पर और तेज किए हमले, बोले राहुल, वोट चोरी के हमारे आरोप पर महामहिम भी सहमत। बीजेपी बोली, नेता विपक्ष राहुल ने लांघी संवैधानिक सीमा। आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को नहीं मिली अनुमति, मेट्रो के 45 स्टेशन बंद, दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें रद्द, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली की किलेबंदी पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, कहा, मक्खी मारने के लिए हथौड़ा आप नहीं चला सकते, सब कुछ ठप होने से आम लोग न हो परेशान। उपचुनाव में बीजेपी एनडीए के शानदार प्रदर्शन पर पीएम का पोस्ट, लिखा, इस जनादेश से मिलेगी और मजबूती। अमित शाह बोले, राहुल के झूठ और दुष्प्रचार के बाद भी हमारी बड़ी जीत। देवर एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी हवाई अड्डा करने पर राजनीतिक युद्ध, अखिलेश बोले, नाम बदलने वालों को बदलेगी जनता, पहले यूपी कैबिनेट के निर्णय पर लगी मुहर। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल गांधी मोर्चा खोले हुए हैं। इस बीच शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ राहुल ने राष्ट्रपति से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन सौंपा। सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में किलेबंदी इधर कर दी गई है।
1: 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है, कोई भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा।
2: ज्ञानेश कुमार पर संग्राम, आज विपक्ष कल सीजेपी। चार दिन से लगातार राहुल गांधी का ज्ञानेश कुमार पर वार।
3: मंडे को हम सुप्रीम कोर्ट, यही पूरा का पूरा ग्रुप मेमोरेंडम ले, इफ जस्टिस के लिए मेमोरेंडम लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
2: अब ज्ञानेश कुमार पर लड़ाई राष्ट्रपति के दर तक आई। सीईसी के इस्तीफे की मांग, राष्ट्रपति को इंडिया का ज्ञापन।
4: हमने तो पॉजिटिव आउटलुक से देखा है कि उन्होंने जो दो चार बात कहा कि आई विल इन्वेस्टिगेट, आई विल गो थ्रू द एंड आम को सबूत चाहिए।
2: 10 अक्टूबर को सीजेपी का जंतर मंतर प्लान, किले में तब्दील दिल्ली।
5: डरे हुए हैं और जो आदमी डरता है आज नहीं कल मरता है।
6: भारत जैसे लोकतंत्र में प्रदर्शन की पूरी संभावनाएं हैं और आप जरूर करें प्रदर्शन, बट प्रदर्शन से समाधान नहीं निकलेगा, समाधान संवाद से निकलेगा।
2: एक तरफ दिल्ली किले में तब्दील हो चुकी है, दिल्ली पुलिस से लेकर बीएसएफ भी दिल्ली की सीमाओं पर तैनात है, तो दूसरी तरफ लगातार चौथे दिन राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए उतरे और चौथे दिन अपनी मांग को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दर पर पहुंचते हैं।
7: यहाँ पे आप देखिए कि संसद भवन से बाहर मार्च करते हुए ये तमाम नेता नजर आ रहे हैं और कुछ इस तरीके से लोकतंत्र बचाओ अभियान छेड़ दिया है यहाँ पे इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने। और बैठक के बाद, 5 बजे की बैठक के बाद इस तरीके से नारेबाजी और घेराबंदी यहाँ पे विजय चौक पर हम लोग पहुँच गए हैं। ये विजय चौक है, पीछे आप देखें कि नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है।
8: मांग तो पूरे देश की जो मांग है कि पूरा जो संरचना है बेईमानी का उसको खत्म किया जाए, और ज्ञानेश जी प्रतीक पुरुष हैं जो शील्ड बन के खड़े हैं मोदी जी और अमित शाह जी, वो चले जाए।
9: देखिए, मुझे लगता है कि जो सारे देशभक्त हैं वो देश में लोकतंत्र को बचाने में लगे हैं, वो चाहे किसी राजनीतिक दल के सदस्य हो या न हो। और जो आज जो वोटर लिस्ट में पूरे चुनाव प्रक्रिया में जो धूल मिलाने का जो काम हो रहा है वो आज के तारीख में सबसे बड़े देशद्रोही का काम है।
10: मुझे हंसी आ रही कि सरकार इतनी डर गई लोग परेशान हो गए। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ब्लैंकेट बैन क्यों लगा रहे, सब क्यों बंद कर रहे, सारे मेट्रो ट्रेन बंद, सारी ट्रेनें बंद, सारे बसेस बंद, दिल्ली में घुस नहीं सकते, इतना डर।
2: इसके दो मकसद हैं, एक तो इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाना, दूसरा ये बताना कि सारे विपक्षी दल ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा चाहते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने वालों में बड़े नाम थे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, सीपीएम के एमए बेबी, सीपीआई के डी राजा, समाजवादी पार्टी के राजीव राय, सुप्रिया सुले, उमर अब्दुल्ला, मनोज झा और वीसीके के टी तिरुमावलन। जब इंडिया गठबंधन के ये 10 नेता राष्ट्रपति द्रौपदी से मिलने राष्ट्रपति भवन के अंदर पहुंचे, तो बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हुई।
3: एक प्रकार से मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि जब हमने राष्ट्रपति को इलेक्शन चोरी वोट चोरी के बारे में बताया तो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने डिनाई नहीं किया। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने यह नहीं कहा कि हिंदुस्तान में चुनाव चोरी नहीं हो रहे हैं। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने उल्टा हमसे कहा कि आप सबूत हमारे पास लाइए, और यही ग्रुप खुशी से जो पूरा का पूरा सबूत हमने कलेक्ट किया है राष्ट्रपति के पास ले जाएगा, ले जाने के लिए तैयार है। पूरा देश जानता है, स्टूडेंट्स जानते हैं कि देश में वोट चोरी हो रही है। नरेंद्र मोदी इसके आर्किटेक्ट हैं, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार इसके इम्प्लीमेंटर्स हैं, और इस बात को राष्ट्रपति ने, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने आज डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में सोचेंगी और एक्शन लेंगी।
4: हमने तो पॉजिटिव आउटलुक से देखा है कि उन्होंने जो दो चार बात कहा कि आई विल इन्वेस्टिगेट, आई विल गो थ्रू द डिटेल्स एंड हमको सबूत चाहिए, यू प्लीज सेंड अस द डिटेल्स एविडेंस।
11: हमने डिमांड किया है कि फिर से एक बार ईवीएम को निकाल दो और बैलेट पेपर पे इलेक्शन कराया जाए, और दूसरा कि ये वोट चोरी जहाँ जहाँ हो गए वो सबूत उन्होंने मांगा है, वो सबूत हम लोग तैयार कर रहे हैं और सबूत हम दे देंगे।
2: ये लगातार चौथा दिन है जब ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने विपक्ष उतरा है। 6 अक्टूबर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च किया, पुलिस ने बैरिकेडिंग करके विपक्षी सांसदों को रोका और कुछ को हिरासत में लिया, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पुलिस को चकमा देकर आकाशवाणी भवन परिसर में धरना दे दिया, और पूरे 8 घंटे तक धरना देने के बाद पुलिस ने राहुल और प्रियंका को जबरन हिरासत में लेकर उठाया। 7 अक्टूबर कांग्रेस ने पहले इंडिया गठबंधन के सांसदों को लंच दिया और फिर जंतर बंतर के लिए कूच किया। दिल्ली पुलिस ने दूसरे दिन भी विपक्षी सांसदों की बस को रोका, तो राहुल और प्रियंका ने सड़क पर ही ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, और आखिर में 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने राहुल और प्रियंका को फिर से हिरासत में लेकर धरना खत्म करवाया। 8 अक्टूबर तीसरे दिन इंडिया गठबंधन के सांसदों ने कनॉट प्लेस में लंच किया और बसों से सीधे राजघाट यानी गांधी समाधि के लिए कूच किया। यहां भी भारी फोर्स की तैनाती की गई, लेकिन राहुल प्रियंका समेत सभी विपक्षी सांसद गांधी स्थल पर बैठकर वापस आ गए। 9 अक्टूबर चौथे दिन ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलते हैं और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपते हैं।
12: हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम जनता की अदालत पे तो है ही, हम सड़कों पर हैं, और वोट चोरी इस देश में नहीं चल सकती है।
13: दैट इज मंडे द इंडिया ब्लॉक पार्टी लीडर्स विल गो टू सुप्रीम कोर्ट।
0: इस बीच बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने संवैधानिक सीमाएं लांघ दी हैं।
14: संवैधानिक संस्थान महामहिम राष्ट्रपति एक व्यक्ति नहीं है, वो देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है। उसको लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो न सिर्फ विचित्र लगता है बल्कि उसमें सच से ज्यादा सियासत की गंध आ रही है। उनका यह कहना कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने उनके आरोपों को स्वीकार कर लिया है, यह दर्शाता है कि जो अभी तक राहुल गांधी देश की हर संस्था के बारे में, हर संवैधानिक संस्था को अपनी राजनीति का शिकार बनाने का दुष्चक्र रच रहे हैं, उन्होंने अब आज ऐसा प्रतीत होता है कि सारी सीमाएं पार कर दी।
0: आज राहुल गांधी चेन्नई में रहेंगे, छात्रों के साथ कार्यक्रम करेंगे और दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी ने चेतावनी दे रखी है कि भले ही दिल्ली पुलिस उन्हें जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति न दे, लेकिन फिर भी वो जंतर मंतर के लिए कूच जरूर करेंगे।
2: इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ छिड़े संग्राम में एकजुटता दिखाई तो 10 अक्टूबर को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर कूच का ऐलान करके टेंशन बढ़ा रखी है।
15: इट इज आवर डेमोक्रेटिक राइट कि अगर हम सरकार से किसी बात पे इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो हम अपनी बात को डेमोक्रेटिक और पीसफुल तरीके से रख सकते हैं। आज इस देश में हालात ये हो गए हैं कि एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट पर प्रोटेस्ट करने के लिए हमको प्रोटेस्ट करनी पड़ रही है। मतलब इतना तो ब्रिटिश राज में भी नहीं होता था। अभी मुद्दा तो सेकेंडरी हो गया है, अभी तो ये हो गया है कि इनको जंतर मंतर पर पहुंचने ही मत दो। और जो पूरी लड़ाई है वो इसी बात पे थी कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है। हमारी लड़ाई, हमारे जो सवाल हैं, हमारी जो मांगे हैं वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। और जिस तरह से बीजेपी ज्ञानेश कुमार के बचाव में आई है, जिस तरह से तमाम राज्यों में जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर हमारे लोगों को डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, उससे हमारी लड़ाई और क्लियर हो रही है कि यस बीजेपी एंड द इलेक्शन कमीशन आर वर्किंग टुगेदर। और इसी बात की तो सारी लड़ाई है हमारी।
2: जुलाई में हुए जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन पर दूध की जली दिल्ली पुलिस अक्टूबर में छाछ फूंक कर पी रही है। दिल्ली पुलिस बार बार कह रही है कि 10 अक्टूबर वाले इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है और उसके 3 कारण भी गिना रही है।
1: 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है, कोई भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा।
2: पहला, परमिशन 10 दिन पहले मांगनी होती है, जबकि सीजेपी ने 7 अक्टूबर को सिर्फ इंटीमेशन यानी सूचना दी है। दूसरा, पिछली बार परमिशन लेकर सीजेपी ने वादा खिलाफी की। तीसरा, मौजूदा लॉ एंड ऑर्डर के हालात को देखते हुए परमिशन नहीं दी जा सकती।
16: साहिल, मैं तो क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि मैं परमिशन मांगने नहीं गया था,
17: इन्फॉर्म करने,
16: मैं इन्फॉर्मेशन देने गया था, इंटीमेशन देने गया था फॉर्मल वे में। हम लोगों ने जब अनाउंस किया था, पुलिसिंग का पॉलिसी है कि दे वुड मॉनिटर व्हाट द सिचुएशन इज इन द कंट्री एंड इन दिल्ली, दिल्ली पुलिस वुड डू इट। तो उनको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन था कि क्या होने वाला है। 7 तारीख को फिर मैं गया, वहां पे मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन जो हम लोगों ने लेटर दिया उसमें हमने एसर्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज अस द राइट टू प्रोटेस्ट, लेकिन पुलिस के तरफ से रवैया बहुत खराब था। दे डिड नॉट से एनीथिंग, उन्होंने ये नहीं बोला कि देंगे नहीं देंगे, उन्होंने एक्नॉलेज किया लेटर को एंड एक स्टैम्प डाल के हमें दे दिया। नन ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ दिल्ली पुलिस मेट मी, जबकि लास्ट टाइम उन्होंने 5 राउंड सीनियर ऑफिसर से हमें मिलवाया था, मैंने किया था लास्ट टाइम भी प्रोसेस, लेकिन इस बार बिल्कुल भी कोई सीनियर ऑफिसर मिलना नहीं चाह रहा था। And this is a new tactic that they have adopted.
17: What is the tactic you think that...
16: The tactic is to not allow any democratic dissent in the country. Delhi, also the last time there were peaceful protests, it happened for such a long time. And is bar wo chahte hai ki bilkul bhi desh ka yuva road pe na nikle. And wahi tactic isme bhi dikh raha hai ki kuch bhi information unke taraf se bhi hame na aaye. हमारे से वो सारे इन्फॉर्मेशन ले ले जो हम कोऑपरेट करना भी चाहते हैं। हमने उनको जब मैं मिला था, जो भी अधिकारी था, मैंने बोला था कि वी विल फुली कोऑपरेट विद देम इन द एक्सपेक्टेशन दैट द पुलिस वुड आल्सो कोऑपरेट विद अस, बिकॉज द पुलिस इज नॉट, दे आर नॉट द वंस हु विल गिव परमिशन वेदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और नॉट। कितना स्ट्रेंज और एब्सर्ड कॉन्सेप्ट है कि सोचिए गांधी जी जब दांडी मार्च निकाल देंगे, वो ब्रिटिशर्स को जाके बोलेंगे साहेब 2 घंटे का टाइम दीजिए, मैं डांडी मार्च करके आता हूं। इज दिस हाउ द कंट्री विल फंक्शन? एंड ये गुलामी वाला जो मानसिकता है हमारे जो इंडिपेंडेंस के बाद 80 साल में हमारे अंदर घुसाया गया कि आप परमिशन लीजिए स्टेट से कि उनके खिलाफ ही प्रोटेस्ट करने, तो उनसे परमिशन लीजिए। हाउ एब्सर्ड कि अभी भी हम लोग वही लैंग्वेज यूज कर रहे हैं 80 साल बाद।
2: लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि उन्हें परमिशन की कोई जरूरत नहीं है।
18: ज्ञानेश कुमार ने परमिशन लिया था 13 करोड़ वोट डिलीट करने से पहले ज्ञानेश कुमार ने परमिशन लिया था। सुप्रीम कोर्ट तो बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल भी नहीं दिया था फॉर्म 6 के मॉडिफिकेशन का। तो जब ज्ञानेश कुमार बिना किसी को बताए बिना किसी से पूछे 13 करोड़ वोट डिलीट करता है तो उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 19 क्या जरूरत है परमिशन।
2: बीजेपी की चेतावनी को देखते हुए दिल्ली में जैसे किले बंदी कर दी गई है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर फोर्स तैनात हैं, चेकिंग चल रही है तो जंतर मंतर के आसपास कई स्तर की बैरिकेडिंग की गई है। दंगा रोधी वाहन भी तैनात किए गए हैं। 300 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जगह जगह माइक लगाए गए हैं। 57 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। दिल्ली निजामुद्दीन की 165 में से 38 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं।
19: मुझे लगता है कि अब बात थोड़ी उसके आगे चली गई है। एक ज्ञानेश कुमार को जिसको हम एक ब्यूरोक्रेट कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेट ही है वो, कोई मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है। एक ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए अपने जम्मू कश्मीर से फोर्स बुला ली, अपने नक्सल एरिया से फोर्स बुला ली, आपसे आपको वो भी कम लगा, आपने सारे रास्ते बंद कर दिए, आपको वो भी कम लगा, आपने मेट्रोज बंद कर दिए, आपको वो भी कम लगा, आपने रेलवेज बंद कर दी। देश ही बंद कर दो ना, इलेक्शन बंद कर दो, देश ही बंद कर दो। आर्टिकल 19 गिव्स अस द राइट टू प्रोटेस्ट एंड जंतर मंतर इज अ डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट। अगर हम मुंबई में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अगर हम बेंगलोर में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो हम दिल्ली में क्यों नहीं कर सकते? क्या दिल्ली किसी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर चल रही है? मुंबई में पुलिस ने पूरा कोऑपरेट किया, बेंगलुरु में पूरा कोऑपरेट किया, दिल्ली में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, दिल्ली में कौन सा लॉ चल रहा है अलग से? तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि दिल्ली का लॉ बुक कोई और है क्या जो इंडिया से अलग है।
2: दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन वाले अल्टीमेटम के चलते पुलिस सतर्क है, लेकिन दिल्ली में किलेबंदी और इतनी सख्ती को लेकर बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। जी हां, बीजेपी के प्रदर्शन से पहले मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और कई ट्रेनों को रद्द करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और ये याचिका सीपीएम के महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद एमए बेबी ने दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस भी हुई। साथ ही सीजीआई की तरफ से टिप्पणी भी की गई। चीफ जस्टिस की बेंच में कपिल सिब्बल ने कहा दिल्ली में ट्रेनें रद्द, मेट्रो बंद, होटल बंद हैं। प्रशांत भूषण ने कहा पूरी दिल्ली बंद कर दी है। गोपाल शंकर नारायणन ने कहा 57 मेट्रो स्टेशन भी बंद किए हैं। इस पर सीजीआई ने कहा सुबह तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर जस्टिस बागची ने कहा कि प्रदर्शन का हक है लेकिन कानून के हिसाब से इजाजत मांगिए, नहीं देते तो कोर्ट आइए। गोपाल शंकर नारायणन ने कहा इसमें समय लगेगा, प्रोटेस्ट कल है। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा आपको कुछ चीजों को रोकना ही होगा, उन्हें रोकने के लिए सिर्फ उतनी ही कार्रवाई करें जितनी जरूरी हो। सुप्रीम अदालत ने आयोजकों को बुलाया और कपिल सिब्बल आयोजकों को नहीं ला पाए। अदालत में पुलिस प्रशासन के एहतियाती कदमों को लेकर भी चर्चा हुई और सरकार ने अनुपातिक तैयारियों का वादा किया और कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की बात कही। एहतियातन दिल्ली पुलिस अब भी दिल्ली में आने जाने वालों पर नजर रख रही है। दिल्ली के बॉर्डर पर वाहनों की तलाशी जारी है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: सीजेपी के प्रमुख अभिजीत देब के प्रदर्शन करने पर अड़े हुए हैं और इसी प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट है। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से पुख्ता जबरदस्त इंतजाम किए गए।
2: बाजारों से लेकर बॉर्डर तक हाई अलर्ट पर पुलिस, जगह जगह दिल्ली पुलिस की बुनादी।
1: नई दिल्ली में और सभी जगह धारा 163 BNSS लागू है।
2: 10 अक्टूबर यानी कल जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली किसी छावनी में तब्दील हो चुकी है। दावा यही है कि प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, लिहाजा भीड़ जुटी तो एक्शन होगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से लोगों को सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली अफवाहों से बचने की सलाह दी जा रही है।
20: किसी भी भड़काऊ संदेश या उकसावे में नहीं आए, जिम्मेदार नागरिक बने और कानून का पालन करें। अपने क्षेत्र की सुरक्षा में पुलिस और प्रशासन का साथ दें और अपने परिवार वाले और अपने बच्चों को इस बारे में समझाएं कि इस तरह की अन्य स्तर की भीड़ में या ऐसे कोई प्रोटेस्ट में
2: वीडियो दिल्ली के चांदनी चौक का है। मस्जिद के केयर टेकर की माने तो बीते दिन स्थानीय पुलिस ने लोगों से जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट से दूर रहने की अपील की थी।
5: पुलिस अफसर जो यहाँ के बीट अफसर है ना, वो आए थे शाम के 5 बजे और उन्होंने ऐलान किया था कि प्रोटेक्शन जो हो रहा है जंतर मंतर पे, उसमें आदमी को नहीं जाना चाहिए और नहीं अपने बच्चों को जाने देना चाहिए। जी हाँ, यही उन्होंने ऐलान किया था, इस बात पे अमल करना चाहिए हर आदमी को।
21: कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक पुलिसकर्मी एक मस्जिद के अंदर जाकर के मोबाइल से पढ़ के एक अनाउंसमेंट कर रहा है, जिसमें वो लोगों को माइक पे बता रहा है कि किस तरीके से इस प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है और वो अपने बच्चों को भी समझाएं कि वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा ना बने। इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी मस्जिद के बाहर है। अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो ये चांदनी चौक में स्थित शाही मस्जिद है जिसके अंदर का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। यहीं पर दिल्ली पुलिस आई और यहां पर आकर के दिल्ली पुलिस ने अनाउंसमेंट की है और लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि जो कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है उसके लिए परमिशन नहीं मिली है और अपने बच्चों को भी वो समझाएं कि वो आगे जाकर के इस प्रोटेस्ट का हिस्सा ना बने क्योंकि लीगल एक्शन हो सकता है।
2: दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में भी दिल्ली पुलिस लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को बता रही है कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है, धारा 163 लागू है, लिहाजा प्रोटेस्ट में शामिल ना हो।
1: 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है। नई दिल्ली में और सभी जगह धारा 163 BNSS लागू है, जो कि कोई भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा। आप सभी को कोशिश कर दें, बता दें अपने बच्चे जो भी आस पड़ोसी उन सबको बता करके ब्रीफ कर दें कि वहां पर कोई भी परमिशन नहीं है।
2: तो दिल्ली की कुछ मस्जिदों से ऐलान किया गया है कि 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल ना हो।
22: इस ऐलान को गौर समाज फरमाए कि जो जंतर मंतर पर 8-9-10 तारीख को जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो इल्लीगल है, वहां पर कोई व्यक्ति ना जाए, इसलिए कि सरकार ने वहां पर धारा 173 लगाई हुई है। कृपया आप असरा प्रशासन का साथ दें, कोई वहां ना जाए।
2: दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, बिना परमिशन सीजेपी को प्रदर्शन या धरना करने की इजाजत नहीं है।

0: इस एप्लीकेशन जो इंटीमेशन की है उस पर गौर किया गया और ये पाया गया कि ये एप्लीकेशन इस्टेब्लिश्ड जो गाइडलाइन है उसके तहत हमारे पास नहीं आई है, बहुत ही कम समय में आई है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने उनका जो प्रीवियस कंडक्ट था, उन्होंने जो हमारी लॉफुल डायरेक्शंस को नहीं फॉलो किया या उनकी जो अंडरटेकिंग दी गई थी उनके द्वारा उसको भी नहीं कंप्लाई किया। और प्रेजेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और पब्लिक सेफ्टी के मद्देनज़र इस एप्लीकेशन जो थी उसको रिजेक्ट किया जाता है।
1: पुलिस की दलील है कि पेपर लीक को लेकर जंतर बंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल सीजेपी की तरफ से नहीं रखा गया, हिंसा हुई, कई पुलिस वाले जख्मी हुए, लिहाजा अब की बार प्रदर्शन के नाम पर दिल्ली की कानून व्यवस्था से खेलवाड़ नहीं होगा।
2: 2 अक्टूबर से लेकर अब तक 27 FIR दर्ज हो चुकी है। पुलिस को अंदेशा है कि प्रदर्शन के नाम पर कुछ लोग दिल्ली की कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं, इसीलिए सख्ती दिल्ली पुलिस ने की है।
1: सीजेपी का ऐलान यही है कि जंतर मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए 7 अक्टूबर को सीजेपी की तरफ से परमिशन मांगी गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं दी गई। इसके बावजूद सीजेपी ने जंतर मंतर पहुंचने का ऐलान किया है। ऐसे में सीजेपी से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। जंतर मंतर को बैरिकेड से घेरा गया है, मतलब सीजेपी के समर्थकों को जंतर मंतर जाने से रोकने की प्लानिंग है। इसी कड़ी में नए CCTV और लाउड स्पीकर तक लगाए गए हैं।
3: जगह जगह बैरिकेटिंग की गई है। दिल्ली पुलिस की कोशिश ऐसी है कि कहीं कोई जमावड़ा एक जगह पर ज्यादा ना होने पाए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो। कई जगहों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के तहत जो कैमरे आते हैं, जो जुड़े हुए हैं, उन कैमरों को भी लगाया गया है। हालांकि कई ऐसे कैमरे हैं जो इस इलाके में पहले लगे हुए थे, लेकिन आप देखिए इस खंभे पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको जो कैमरा नीचे लगा हुआ दिख रहा है, ये अभी इंस्टॉल किया गया है। इसके ऊपर लाउड स्पीकर लगाया गया है, जिससे लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप यहाँ पर इकट्ठे ना हो, ये गैर कानूनी है। तो पुलिस ने जगह जगह कंट्रोल रूम बना रखे हैं, एरियो को डिवाइड कर रखा है और हर एरिया की जिम्मेदारी एक IPS स्तर के अधिकारी की है।
1: ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है। थाने के बाहर दिल्ली पुलिस की तरफ से पोस्टर पर चेतावनी लिखी हुई है। थाने के बाहर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं।
3: इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के ठीक बाहर, जो पिछले कई दिनों से जंग का अखाड़ा बना हुआ है। और इस थाने के बाहर की आप तैनाती देखिए, जैसे किले की बाहर पूरी सुरक्षा होती है, उस तरीके से इस थाने की भी सुरक्षा के लिए बाहर बैरिकेड है। अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस गेट पर तैनात मिलेगी, दिल्ली पुलिस आपको तैनात मिलेगी और यहाँ पर चेतावनी भी लगाई गई है। ठीक आप देखिए, बैरिकेड पर चेतावनी लगाई गई है कि BNSS की धारा 163 लागू है, अगर लोग जुटेंगे तो उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी।
1: जंतर मंतर की तरफ जाने वाले रास्ते की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है।
4: इस वक्त मैं जनपद रोड पर हूं और मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये जो सड़क है ये सीधा जंतर मंतर की तरफ जाती है। यहां से करीब 500 मीटर आगे ही वो धरना स्थल है, जहां अमूमन लोग जाके बैठते हैं और धरना देते हैं। अगर आप यहां तैयारियां देखें तो इस पूरी सड़क को ट्रैफिक के लिए और पैदल मूवमेंट के लिए भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात भी कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, अगर आप देखें यहाँ आसपास करीब हर खंभे पर कैमरे लगा दिए गए हैं और ऐसे बड़े लाउड स्पीकर लगा दिए गए हैं। इन लाउड स्पीकर्स का ये काम है कि ये लगातार अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा होना इस वक्त गैरकानूनी है। इस पूरे इलाके में 163 BNSS की धारा लगी हुई है, जो किसी भी तरह के प्रदर्शन को वर्जित करती है। और अगर यहाँ पर कोई पहुंचता है या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोशिश करता है, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करता है या पुलिस वालों पर हमला करने की कोशिश करता है, तो उनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
1: संसद मार्ग की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर बैरिकेड को दूसरे बैरिकेड से जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने जंजीर और ताले का इस्तेमाल किया है।
3: इस वक्त हम संसद मार्ग पर मौजूद है जहां पर सीजेपी की प्रस्तावित प्रोटेस्ट से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। और ये आप देखिए, ये जो बैरिकेड रखे गए हैं यहां, इन बैरिकेड में ये चेन्स लगाई जा रही है मोटी मोटी। इन चेन्स को पेच के जरिए अगर आप देखेंगे तो इनको पेच के जरिए इससे जोड़ दिया गया है बैरिकेड से, और नीचे की तरफ ऐसे लॉक सिस्टम लगाए गए हैं।

0: ताकि इस लॉक को दूसरा जो ये लॉक सिस्टम है जो इस अगर हम कहें दूसरा बैरिकेट है इस बैरिकेट में जो लॉक सिस्टम है इस चेन को इससे जोड़ा जा सके, यानी कि इन बैरिकेड को हटाना इतना आसान नहीं होगा। आप दरअसल पुलिस ने तैयारी की है जो इस पूरे प्रोटेस्ट से निपटने के लिए, क्योंकि परमिशन तो दी नहीं है और उसके कारण पुलिस ने बताया कि एक तो सिर्फ 3 दिन पहले एप्लीकेशन दी गई और दूसरा जो पिछला आचरण था परमिशन लेने के बाद प्रोटेस्ट का उसको देखते हुए परमिशन डिनाई की जा रही है।
1: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: राष्ट्रपति संभलने के बाद विपक्ष ने सरकार पर और तेज किए हमले, बोले राहुल, वोट चोरी के हमारे आरोप पर महामहिम भी सहमत। बीजेपी बोली, नेता विपक्ष राहुल ने लांघी संवैधानिक सीमा। आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को नहीं मिली अनुमति, मेट्रो के 45 स्टेशन बंद, दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें रद्द, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली की किलेबंदी पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, कहा मक्खी मारने के लिए हथौड़ा आप नहीं चला सकते, सब कुछ ठप होने से आम लोग न हो परेशान। उपचुनाव में बीजेपी एनडीए के शानदार प्रदर्शन पर पीएम का पोस्ट, लिखा इस जनादेश से मिलेगी और मजबूती। अमित शाह बोले, राहुल के झूठ और दुष्प्रचार के बाद भी हमारी बड़ी जीत। जेवर एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी हवाई अड्डा करने पर राजनीतिक युद्ध, अखिलेश बोले नाम बदलने वालों को बदलेगी जनता, पहले यूपी कैबिनेट के निर्णय पर लगी मुहर। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल गांधी मोर्चा खोले हुए हैं। इस बीच शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ राहुल ने राष्ट्रपति से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन सौंपा। सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में किलेबंदी इधर कर दी गई है।
1: 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है, कोई भी प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा।
2: ज्ञानेश कुमार पर संग्राम, आज विपक्ष कल सीजेपी। चार दिन से लगातार राहुल गांधी का ज्ञानेश कुमार पर वार।
3: मंडे को हम सुप्रीम कोर्ट, ये ही पूरा का पूरा ग्रुप मेमोरेंडम ले, चीफ जस्टिस के लिए मेमोरेंडम लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
2: अब ज्ञानेश कुमार पर लड़ाई राष्ट्रपति के दर तक आई। सीईसी के इस्तीफे की मांग, राष्ट्रपति को इंडिया का ज्ञापन।
4: हमने तो पॉजिटिव आउटलुक से देखा है कि उन्होंने जो दो चार बात कहा कि आई विल इन्वेस्टिगेट, आई विल गो थ्रू द एंड आम को सबूत चाहिए।
2: 10 अक्टूबर को सीजेपी का जंतर मंतर प्लान, किले में तब्दील दिल्ली।
5: डरे हुए हैं और जो आदमी डरता है आज नहीं कल मरता है।
6: भारत जैसे लोकतंत्र में प्रदर्शन की पूरी संभावनाएं हैं और आप जरूर करें प्रदर्शन, बट प्रदर्शन से समाधान नहीं निकलेगा, समाधान संवाद से निकलेगा।
2: एक तरफ दिल्ली किले में तब्दील हो चुकी है, दिल्ली पुलिस से लेकर बीएसएफ भी दिल्ली की सीमाओं पर तैनात है, तो दूसरी तरफ लगातार चौथे दिन राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए उतरे और चौथे दिन अपनी मांग को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दर पर पहुंचते हैं।
7: यहाँ पे आप देखिए कि संसद भवन से बाहर मार्च करते हुए ये तमाम नेता नजर आ रहे हैं और कुछ इस तरीके से लोकतंत्र बचाओ अभियान छेड़ दिया है यहाँ पे इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने। और बैठक के बाद, 5 बजे की बैठक के बाद इस तरीके से नारेबाजी और घेराबंदी यहाँ पे विजय चौक पर हम लोग पहुँच गए हैं। ये विजय चौक है, पीछे आप देखे कि नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है।
8: मांग तो पूरे देश की जो मांग है कि पूरा जो संरचना है बेईमानी का उसको खत्म किया जाए, और ज्ञानेश जी प्रतीक पुरुष हैं जो शील्ड बन के खड़े हैं मोदी जी और अमित शाह जी, वो चले जाए।
9: देखिए, मुझे लगता है कि जो सारे देशभक्त हैं वो देश में लोकतंत्र को बचाने में लगे हैं, वो चाहे किसी राजनीतिक दल के सदस्य हो या न हो। और जो आज जो वोटर लिस्ट में पूरे चुनाव प्रक्रिया में जो धूल मिलाने का जो काम हो रहा है वो आज के तारीख में सबसे बड़े देशद्रोही का काम है।
10: थी, मुझे हंसी आ रही कि सरकार इतनी डर गई, लोग परेशान हो गए। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ब्लैंकेट बैन क्यों लगा रहे, सब क्यों बंद कर रहे, सारे मेट्रो ट्रेन बंद, सारी ट्रेनें बंद, सारे बसेस बंद, दिल्ली में घुस नहीं सकता, इतना डर।
2: इसके दो मकसद हैं, एक तो इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाना, दूसरा ये बताना कि सारे विपक्षी दल ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा चाहते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने वालों में बड़े नाम थे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, सीपीएम के एमए बेबी, सीपीआई के डी राजा, समाजवादी पार्टी के राजीव राय, सुप्रिया सुले, उमर अब्दुल्ला, मनोज झा और वीसीके के टी तिरुमावलन। जब इंडिया गठबंधन के ये 10 नेता राष्ट्रपति द्रौपदी से मिलने राष्ट्रपति भवन के अंदर पहुंचे, तो बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हुई।
3: एक प्रकार से मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि जब हमने राष्ट्रपति को इलेक्शन चोरी वोट चोरी के बारे में बताया तो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने डिनाई नहीं किया। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने यह नहीं कहा कि हिंदुस्तान में चुनाव चोरी नहीं हो रहे हैं। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने उल्टा हमसे कहा कि आप सबूत हमारे पास लाइए, और यही ग्रुप खुशी से जो पूरा का पूरा सबूत हमने कलेक्ट किया है राष्ट्रपति के पास ले जाएगा, ले जाने के लिए तैयार है। पूरा देश जानता है, स्टूडेंट्स जानते हैं कि देश में वोट चोरी हो रही है। नरेंद्र मोदी इसके आर्किटेक्ट हैं, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार इसके इम्प्लीमेंटर्स हैं, और इस बात को राष्ट्रपति ने, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने आज डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में सोचेंगी और एक्शन लेंगी।
4: हमने तो पॉजिटिव आउटलुक से देखा है कि उन्होंने जो दो चार बात कहा कि आई विल इन्वेस्टिगेट, आई विल गो थ्रू द डिटेल्स एंड हमको सबूत चाहिए, यू प्लीज सेंड अस द डिटेल्स एविडेंस।
5: हमने डिमांड किया है कि फिर से एक बार ईवीएम को निकाल दो और बैलेट पेपर पे इलेक्शन कराया जाए, और दूसरा कि ये वोट चोरी जहाँ जहाँ हो गए वो सबूत उन्होंने मांगा है, वो सबूत हम लोग तैयार कर रहे हैं और सबूत हम दे देंगे।
2: ये लगातार चौथा दिन है जब ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने विपक्ष उतरा है। 6 अक्टूबर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च किया, पुलिस ने बैरिकेडिंग करके विपक्षी सांसदों को रोका और कुछ को हिरासत में लिया, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पुलिस को चकमा देकर आकाशवाणी भवन परिसर में धरना दे दिया, और पूरे 8 घंटे तक धरना देने के बाद पुलिस ने राहुल और प्रियंका को जबरन हिरासत में लेकर उठाया। 7 अक्टूबर कांग्रेस ने पहले इंडिया गठबंधन के सांसदों को लंच दिया और फिर जंतर बंतर के लिए कूच किया। दिल्ली पुलिस ने दूसरे दिन भी विपक्षी सांसदों की बस को रोका तो राहुल और प्रियंका ने सड़क पर ही ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, और आखिर में 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने राहुल और प्रियंका को फिर से हिरासत में लेकर धरना खत्म करवाया। 8 अक्टूबर तीसरे दिन इंडिया गठबंधन के सांसदों ने कनॉट प्लेस में लंच किया और बसों से सीधे राजघाट यानी गांधी समाधि के लिए कूच किया। यहां भी भारी फोर्स की तैनाती की गई, लेकिन राहुल प्रियंका समेत सभी विपक्षी सांसद गांधी स्थल पर बैठकर वापस आ गए। 9 अक्टूबर चौथे दिन ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलते हैं और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपते हैं।
11: हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम जनता की अदालत में तो है ही, हम सड़कों पर हैं, और वोट चोरी इस देश में नहीं चल सकती है।
12: दैट इज मंडे द इंडिया ब्लॉक पार्टी लीडर्स विल गो टू सुप्रीम कोर्ट।
0: इस बीच बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने संवैधानिक सीमाएं लांघ दी हैं।
13: संवैधानिक संस्थान महामहिम राष्ट्रपति एक व्यक्ति नहीं है, वो देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है। उसको लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो न सिर्फ विचित्र लगता है बल्कि उसमें सच से ज्यादा सियासत की गंध आ रही है। उनका यह कहना कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने उनके आरोपों को स्वीकार कर लिया है, यह दर्शाता है कि जो अभी तक राहुल गांधी देश की हर संस्था के बारे में, हर संवैधानिक संस्था को अपनी राजनीति का शिकार बनाने का दुष्चक्र रच रहे हैं, उन्होंने अब आज ऐसा प्रतीत होता है कि सारी सीमाएं पार कर दी।
0: आज राहुल गांधी चेन्नई में रहेंगे, छात्रों के साथ कार्यक्रम करेंगे और दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी ने चेतावनी दे रखी है कि भले ही दिल्ली पुलिस उन्हें जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति ना दे, लेकिन फिर भी वो जंतर मंतर के लिए कूच जरूर करेंगे।
2: इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ छिड़े संग्राम में एकजुटता दिखाई तो 10 अक्टूबर को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर कूच का ऐलान करके टेंशन बढ़ा रखी है।
14: इट इज आवर डेमोक्रेटिक राइट कि अगर हम सरकार से किसी बात पे इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो हम अपनी बात को डेमोक्रेटिक और पीसफुल तरीके से रख सकते हैं। आज इस देश में हालात ये हो गए हैं कि एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट पर प्रोटेस्ट करने के लिए हमको प्रोटेस्ट करनी पड़ रही है। मतलब इतना तो ब्रिटिश राज में भी नहीं होता था। अभी मुद्दा तो सेकेंडरी हो गया है, अभी तो ये हो गया कि इनको जंतर मंतर पर पहुंचने ही मत दो। और जो पूरी लड़ाई है वो इसी बात पे थी कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है। हमारी लड़ाई, हमारे जो सवाल हैं, हमारी जो मांगे हैं वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। और जिस तरह से बीजेपी ज्ञानेश कुमार के बचाव में आई है, जिस तरह से तमाम राज्यों में जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर हमारे लोगों को डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, उससे हमारी लड़ाई और क्लियर हो रही है कि यस, बीजेपी एंड द इलेक्शन कमीशन आर वर्किंग टुगेदर, और इसी बात की तो सारी लड़ाई है हमारी।
2: जुलाई में हुए जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन पर दूध की जली दिल्ली पुलिस अक्टूबर में छाछ फूंक कर पी रही है। दिल्ली पुलिस बार बार कह रही है कि 10 अक्टूबर वाले इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है और उसके 3 कारण भी गिना रही है।
1: 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है, कोई भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा।
2: पहला, परमिशन 10 दिन पहले मांगनी होती है, जबकि सीजेपी ने 7 अक्टूबर को सिर्फ इंटीमेशन यानी सूचना दी है। दूसरा, पिछली बार परमिशन लेकर सीजेपी ने वादा खिलाफी की। तीसरा, मौजूदा लॉ एंड ऑर्डर के हालात को देखते हुए परमिशन नहीं दी जा सकती।
15: साहिल, मैं तो क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि मैं परमिशन मांगने नहीं गया था,
16: इन्फॉर्म करने,
15: मैं इन्फॉर्मेशन देने गया था, इंटीमेशन देने गया था फॉर्मल वे में। हम लोगों ने जब अनाउंस किया था, पुलिसिंग का पॉलिसी है कि दे वुड मॉनिटर व्हाट द सिचुएशन इज इन द कंट्री एंड इन दिल्ली, दिल्ली पुलिस वुड डू इट, तो उनको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन था कि क्या होने वाला है। 7 तारीख को फिर मैं गया, वहां पे मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन जो हम लोगों ने लेटर दिया उसमें हमने एसर्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज अस द राइट टू प्रोटेस्ट, लेकिन पुलिस के तरफ से रवैया बहुत खराब था। दे डिड नॉट से एनीथिंग, उन्होंने ये नहीं बोला कि देंगे नहीं देंगे, उन्होंने एक्नॉलेज किया लेटर को एंड एक स्टैम्प डाल के हमें दे दिया। नन ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ दिल्ली पुलिस मेट मी, जबकि लास्ट टाइम उन्होंने 5 राउंड सीनियर ऑफिसर से हमें मिलवाया था, मैंने किया था लास्ट टाइम भी प्रोसेस, लेकिन इस बार बिल्कुल भी कोई सीनियर ऑफिसर मिलना नहीं चाह रहा था। And this is a new tactic that they have adopted.
16: What is the tactic you think that
15: tactic is to not allow any democratic dissent in the country. Delhi also, the last time there were peaceful protests, it happened for such a long time. And इस बार वो चाहते हैं कि बिल्कुल भी देश का युवा रोड पे ना निकले। And वही tactic इसमें भी दिख रहा है कि कुछ भी information उनके तरफ से भी हमें ना आए, हमारे से वो सारे इन्फॉर्मेशन ले ले जो हम कोऑपरेट करना भी चाहते हैं। हमने उनको, जब मैं मिला था जो भी अधिकारी था, मैंने बोला था कि वी विल फुली कोऑपरेट विद देम इन द एक्सपेक्टेशन दैट द पुलिस वुड आल्सो कोऑपरेट विद अस, बिकॉज द पुलिस इज नॉट, दे आर नॉट द वंस हु विल गिव परमिशन वेदर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और नॉट। कितना स्ट्रेंज और एब्जर्ड कॉन्सेप्ट है कि सोचिए गांधी जी जब दांडी मार्च निकाल देंगे, वो ब्रिटिशर्स को जाके बोलेंगे साहेब 2 घंटे का टाइम दीजिए, मैं डांडी मार्च करके आता हूं। इज दिस हाउ द कंट्री विल फंक्शन? एंड ये गुलामी वाला जो मानसिकता है हमारे, जो इंडिपेंडेंस के बाद 80 साल में हमारे अंदर घुसाया गया कि आप परमिशन लीजिए स्टेट से कि उनके खिलाफ ही प्रोटेस्ट करने, तो उनसे परमिशन लीजिए। हाउ एब्सर्ड कि अभी भी हम लोग वही लैंग्वेज यूज कर रहे हैं 80 साल बाद।
2: लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि उन्हें परमिशन की कोई जरूरत नहीं है।
17: ज्ञानेश कुमार ने परमिशन लिया था, 13 करोड़ वोट डिलीट करने से पहले ज्ञानेश कुमार ने परमिशन लिया था। सुप्रीम कोर्ट तो बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल भी नहीं दिया था फॉर्म 6 के मॉडिफिकेशन का। तो जब ज्ञानेश कुमार बिना किसी को बताए, बिना किसी से पूछे 13 करोड़ वोट डिलीट करता है, तो उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 19, क्या जरूरत है परमिशन।
2: बीजेपी की चेतावनी को देखते हुए दिल्ली में जैसे किलेबंदी कर दी गई है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर फोर्स तैनात हैं, चेकिंग चल रही है, तो जंतर मंतर के आसपास कई स्तर की बैरिकेडिंग की गई है। दंगा रोधी वाहन भी तैनात किए गए हैं, 300 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जगह जगह माइक लगाए गए हैं, 57 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। दिल्ली निजामुद्दीन की 165 में से 38 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं।
18: मुझे लगता है कि अब बात थोड़ी उसके आगे चली गई है। एक ज्ञानेश कुमार को, जिसको हम एक ब्यूरोक्रेट कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेट ही है वो, कोई मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, एक ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए अपने जम्मू कश्मीर से फोर्स बुला ली, अपने नक्सल एरिया से फोर्स बुला ली, आपसे आपको वो भी कम लगा, आपने सारे रास्ते बंद कर दिए, आपको वो भी कम लगा, आपने मेट्रोज बंद कर दिए, आपको वो भी कम लगा, आपने रेलवेज बंद कर दी। देश ही बंद कर दो ना, इलेक्शन बंद कर दो, देश ही बंद कर दो। आर्टिकल 19 गिव्स अस द राइट टू प्रोटेस्ट एंड जंतर मंतर इज अ डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट। अगर हम मुंबई में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अगर हम बेंगलोर में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो हम दिल्ली में क्यों नहीं कर सकते? क्या दिल्ली किसी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर चल रही है? मुंबई में पुलिस ने पूरा कोऑपरेट किया, बेंगलुरु में पूरा कोऑपरेट किया, दिल्ली में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, दिल्ली में कौन सा लॉ चल रहा है अलग से? तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि दिल्ली का लॉ बुक कोई और है क्या जो इंडिया से अलग है।
2: दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन वाले अल्टीमेटम के चलते पुलिस सतर्क है, लेकिन दिल्ली में किलेबंदी और इतनी सख्ती को लेकर बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। जी हां, बीजेपी के प्रदर्शन से पहले मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और कई ट्रेनों को रद्द करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, और ये याचिका सीपीएम के महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद एमए बेबी ने दाखिल की, और सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस भी हुई। साथ ही सीजीआई की तरफ से टिप्पणी भी की गई। चीफ जस्टिस की बेंच में कपिल सिब्बल ने कहा, दिल्ली में ट्रेनें रद्द, मेट्रो बंद, होटल बंद हैं। प्रशांत भूषण ने कहा, पूरी दिल्ली बंद कर दी है। गोपाल शंकर नारायणन ने कहा, 57 मेट्रो स्टेशन भी बंद किए हैं। इस पर सीजीआई ने कहा, सुबह तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर जस्टिस बागची ने कहा कि प्रदर्शन का हक है, लेकिन कानून के हिसाब से इजाजत मांगिए, नहीं देते तो कोर्ट आइए। गोपाल शंकर नारायणन ने कहा, इसमें समय लगेगा, प्रोटेस्ट कल है। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, आपको कुछ चीजों को रोकना ही होगा, उन्हें रोकने के लिए सिर्फ उतनी ही कार्रवाई करें जितनी जरूरी हो। सुप्रीम अदालत ने आयोजकों को बुलाया और कपिल सिब्बल आयोजकों को नहीं ला पाए। अदालत में पुलिस प्रशासन के एहतियाती कदमों को लेकर भी चर्चा हुई, और सरकार ने अनुपातिक तैयारियों का वादा किया, और कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की बात कही। एहतियातन दिल्ली पुलिस अब भी दिल्ली में आने जाने वालों पर नजर रख रही है। दिल्ली के बॉर्डर पर वाहनों की तलाशी जारी है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दीप के प्रदर्शन करने पर अड़े हुए हैं, और इसी प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट है। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से पुख्ता जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं।
2: बाजारों से लेकर बॉर्डर तक हाई अलर्ट पर पुलिस, जगह जगह दिल्ली पुलिस की बुनादी।
1: नई दिल्ली में और सभी जगह धारा 163 BNSS लागू है।
2: 10 अक्टूबर यानी कल जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली किसी छावनी में तब्दील हो चुकी है। दावा यही है कि प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, लिहाजा भीड़ जुटी तो एक्शन होगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से लोगों को सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली अफवाहों से बचने की सलाह दी जा रही है।
19: किसी भी भड़काऊ संदेश या उकसावे में नहीं आए, जिम्मेदार नागरिक बने और कानून का पालन करें। अपने क्षेत्र की सुरक्षा में पुलिस और प्रशासन का साथ दें और अपने परिवार वाले और अपने बच्चों को इस बारे में समझ।
2: ये वीडियो दिल्ली के चांदनी चौक का है। मस्जिद के केयर टेकर की माने तो बीते दिन स्थानीय पुलिस ने लोगों से जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट से दूर रहने की अपील की थी।
20: पुलिस अफसर जो यहाँ के बीट अफसर है ना, वो आए थे शाम के 5 बजे और उन्होंने ऐलान किया था कि प्रोटेक्शन जो हो रहा है जंतर मंतर पे, उसमें आदमी को नहीं जाना चाहिए और नहीं अपने बच्चों को जाने देना चाहिए। जी हाँ, यही उन्होंने ऐलान किया था, इस बात पे अमल करना चाहिए हर आदमी को।
21: कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक पुलिसकर्मी एक मस्जिद के अंदर जाकर के मोबाइल से पढ़ के एक अनाउंसमेंट कर रहा है, जिसमें वो लोगों को माइक पे बता रहा है कि किस तरीके से इस प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है और वो अपने बच्चों को भी समझाएं कि वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा ना बने। इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी मस्जिद के बाहर है। अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो ये चांदनी चौक में स्थित शाही मस्जिद है जिसके अंदर का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। यहीं पर दिल्ली पुलिस आई और यहां पर आकर के दिल्ली पुलिस ने अनाउंसमेंट की है और लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है उसके लिए परमिशन नहीं मिली है और अपने बच्चों को भी वो समझाएं कि वो आगे जाकर के इस प्रोटेस्ट का हिस्सा ना बने क्योंकि लीगल एक्शन हो सकता है।
2: दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में भी दिल्ली पुलिस लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को बता रही है कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है, धारा 163 लागू है, लिहाजा प्रोटेस्ट में शामिल ना हो।
1: 10 तारीख को जो CJP प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है। नई दिल्ली में और सभी जगह धारा 163 BNSS लागू है, जो कि कोई भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा। आप सभी को सूचित कर दें, बता दें, अपने बच्चे जो भी आस पड़ोसी उन सबको बता करके ब्रीफ कर दें कि वहां पर कोई भी परमिशन नहीं है।
2: तो दिल्ली की कुछ मस्जिदों से ऐलान किया गया है कि 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल ना हो।
22: इस ऐलान को गौर समाज फरमाए कि जो जंतर मंतर पर 8-9-10 तारीख को जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो इल्लीगल है, वहां पर कोई व्यक्ति ना जाए, इसलिए कि सरकार ने वहां पर धारा 173 लगाई हुई है। कृपया आप असरा प्रशासन का साथ दें, कोई वहां ना जाए।
2: दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, बिना परमिशन CJP को प्रदर्शन या धरना करने की इजाजत नहीं है।
23: क्या परमिशन मांगी गई, कब मांगी गई?
24: 7 तारीख को कांग्रेस जनता पार्टी ने एक परमिशन एप्लीकेशन दी थी, इंटीमेशन करके, जिसमें ये बताया गया कि वो CEC की अकाउंटेबिलिटी के रिगार्डिंग 10 तारीख को जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन जो इंटीमेशन की है उस पर गौर किया गया और ये पाया गया कि ये एप्लीकेशन इस्टेब्लिश्ड जो गाइडलाइन है उसके तहत हमारे पास नहीं आई है, बहुत ही कम समय में आई है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने उनका जो प्रीवियस कंडक्ट था, उन्होंने जो हमारी लॉफुल डायरेक्शंस को नहीं फॉलो किया या उनकी जो अंडरटेकिंग दी गई थी उनके द्वारा उसको भी नहीं कंप्लाई किया, और प्रेजेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और पब्लिक सेफ्टी के मद्देनज़र इस एप्लीकेशन जो थी उसको रिजेक्ट किया जाता है।
2: पुलिस की दलील है कि पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल CJP की तरफ से नहीं रखा गया, हिंसा हुई, कई पुलिस वाले जख्मी हुए, लिहाजा अब की बार प्रदर्शन के नाम पर दिल्ली की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होगा।
0: 2 अक्टूबर से लेकर अब तक 27 FIR दर्ज हो चुकी हैं। पुलिस को अंदेशा है कि प्रदर्शन के नाम पर कुछ लोग दिल्ली की कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं, इसीलिए सख्ती दिल्ली पुलिस ने की है।
2: CJP का ऐलान यही है कि जंतर मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए 7 अक्टूबर को CJP की तरफ से परमिशन मांगी गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं दी गई। इसके बावजूद CJP ने जंतर मंतर पहुंचने का ऐलान किया है। ऐसे में CJP से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। जंतर मंतर को बैरिकेड से घेरा गया है, मतलब CJP के समर्थकों को जंतर मंतर जाने से रोकने की प्लानिंग है। इसी कड़ी में नए CCTV और लाउड स्पीकर तक लगाए गए हैं।
25: जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली पुलिस की कोशिश ऐसी है कि कहीं कोई जमावड़ा एक जगह पर ज्यादा ना होने पाए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो। कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिसमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के तहत जो कैमरे आते हैं जो जुड़े हुए हैं उन कैमरों को भी लगाया गया है। हालांकि कई ऐसे कैमरे हैं जो इस इलाके में पहले लगे हुए थे, लेकिन आप देखिए इस खंभे पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको जो कैमरा नीचे लगा हुआ दिख रहा है ये अभी इंस्टॉल किया गया है। इसके ऊपर लाउड स्पीकर लगाया गया है जिससे लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप यहाँ पर इकट्ठे ना हो, ये गैर कानूनी है। तो पुलिस ने जगह जगह कंट्रोल रूम बना रखे हैं, एरियो को डिवाइड कर रखा है और हर एरिए की जिम्मेदारी एक आईपीएस स्तर के अधिकारी की है।
2: ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है। थाने के बाहर दिल्ली पुलिस की तरफ से पोस्टर पर चेतावनी लिखी हुई है। थाने के बाहर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं।
25: इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के ठीक बाहर, जो पिछले कई दिनों से जंग का अखाड़ा बना हुआ है। और इस थाने के बाहर की आप तैनाती देखिए, जैसे किले की बाहर पूरी सुरक्षा होती है उस तरीके से इस थाने की भी सुरक्षा के लिए बाहर बैरिकेड है। अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस गेट पर तैनात मिलेगी, दिल्ली पुलिस आपको तैनात मिलेगी और यहाँ पर चेतावनी भी लगाई गई है। ठीक आप देखिए बैरिकेड पर चेतावनी लगाई गई है कि BNSS की धारा 163 लागू है, अगर लोग जुटेंगे तो उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी।
2: जंतर मंतर की तरफ जाने वाले रास्ते की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है।
21: इस वक्त मैं जनपथ रोड पर हूं और मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये जो सड़क है ये सीधा जंतर मंतर की तरफ जाती है। यहां से करीब 500 मीटर आगे ही वो धरना स्थल है जहां अमूमन लोग जाके बैठते हैं और धरना देते हैं। अगर आप यहां तैयारियां देखें तो इस पूरी सड़क को ट्रैफिक के लिए और पैदल मूवमेंट के लिए भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात भी कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, अगर आप देखें यहां आसपास करीब हर खंभे पर कैमरे लगा दिए गए हैं और ऐसे बड़े लाउड स्पीकर लगा दिए गए हैं। इन लाउड स्पीकर्स का ये काम है कि ये लगातार अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा होना इस वक्त गैरकानूनी है। इस पूरे इलाके में 163 BNSS की धारा लगी हुई है जो किसी भी तरह के प्रदर्शन को वर्जित करती है और अगर यहाँ पर कोई पहुंचता है या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोशिश करता है, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करता है या पुलिस वालों पर हमला करने की कोशिश करता है तो उनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
2: संसद बार की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर बैरिकेड को दूसरे बैरिकेड से जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने जंजीर और ताले का इस्तेमाल किया है।
25: इस वक्त हम संसद मार्ग पर मौजूद है जहां पर CJP की प्रस्तावित प्रोटेस्ट से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। और ये आप देखिए ये जो बैरिकेड रखे गए हैं यहां, इन बैरिकेड में ये चेन्स लगाई जा रही है मोटी मोटी। इन चेन्स को पेच के जरिए अगर आप देखेंगे तो इनको पेच के जरिए इससे जोड़ दिया गया है बैरिकेड से और नीचे की तरफ ऐसे लॉक सिस्टम लगाए गए हैं ताकि इस लॉक को दूसरा जो ये लॉक सिस्टम है जो इस अगर हम कहें दूसरा बैरिकेड है इस बैरिकेड में जो लॉक सिस्टम है इस चेन को इससे जोड़ा जा सके। यानी कि इन बैरिकेड को हटाना इतना आसान नहीं होगा। आप दरअसल पुलिस ने तैयारी की है जो इस पूरे प्रोटेस्ट से निपटने के लिए, क्योंकि परमिशन तो दी नहीं है और उसके कारण पुलिस ने बताया कि एक तो सिर्फ 3 दिन पहले एप्लीकेशन दी गई और दूसरा जो पिछला आचरण था परमिशन लेने के बाद प्रोटेस्ट का उसको देखते हुए परमिशन डिनाई की जा रही है।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: राष्ट्रपति संभलने के बाद विपक्ष ने सरकार पर और तेज किए हमले, बोले राहुल, वोट चोरी के हमारे आरोप पर महामहिम भी सहमत। बीजेपी बोली, नेता विपक्ष राहुल ने लांघी संवैधानिक सीमा। आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को नहीं मिली अनुमति, मेट्रो के 45 स्टेशन बंद, दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें रद्द, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली की किलेबंदी पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, कहा मक्खी मारने के लिए हथौड़ा आप नहीं चला सकते, सब कुछ ठप होने से आम लोग न हो परेशान। उपचुनाव में बीजेपी एनडीए के शानदार प्रदर्शन पर पीएम का पोस्ट, लिखा इस जनादेश से मिलेगी और मजबूती। अमित शाह बोले, राहुल के झूठ और दुष्प्रचार के बाद भी हमारी बड़ी जीत। जेवर एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी हवाई अड्डा करने पर राजनीतिक युद्ध, अखिलेश बोले नाम बदलने वालों को बदलेगी जनता, पहले यूपी कैबिनेट के निर्णय पर लगी मुहर। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल गांधी मोर्चा खोले हुए हैं। इस बीच शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ राहुल ने राष्ट्रपति से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन सौंपा। सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में किलेबंदी इधर कर दी गई है।
1: 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है, कोई भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा।
2: ज्ञानेश कुमार पर संग्राम, आज विपक्ष कल सीजेपी। चार दिन से लगातार राहुल गांधी का ज्ञानेश कुमार पर वार।
3: मंडे को हम सुप्रीम कोर्ट, ये ही पूरा का पूरा ग्रुप मेमोरेंडम ले, चीफ जस्टिस के लिए मेमोरेंडम लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
2: अब ज्ञानेश कुमार पर लड़ाई राष्ट्रपति के दर तक आई। सीईसी के इस्तीफे की मांग, राष्ट्रपति को इंडिया का ज्ञापन।
4: हमने तो पॉजिटिव आउटलुक से देखा है कि उन्होंने जो दो चार बात कहा कि आई विल इन्वेस्टिगेट, आई विल गो थ्रू द डिटेल्स एंड आर्म को सबूत चाहिए।
2: 10 अक्टूबर को सीजेपी का जंतर मंतर प्लान, किले में तब्दील दिल्ली।
5: डरे हुए हैं और जो आदमी डरता है आज नहीं कल मरता है।
6: भारत जैसे लोकतंत्र में प्रदर्शन की पूरी संभावनाएं हैं और आप जरूर करें प्रदर्शन, बट प्रदर्शन से समाधान नहीं निकलेगा, समाधान संवाद से निकलेगा।
2: एक तरफ दिल्ली किले में तब्दील हो चुकी है, दिल्ली पुलिस से लेकर बीएसएफ भी दिल्ली की सीमाओं पर तैनात है, तो दूसरी तरफ लगातार चौथे दिन राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए उतरे और चौथे दिन अपनी मांग को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दर पर पहुंचते हैं।
7: यहाँ पे आप देखिए कि संसद भवन से बाहर मार्च करते हुए ये तमाम नेता नजर आ रहे हैं और कुछ इस तरीके से लोकतंत्र बचाओ अभियान छेड़ दिया है यहाँ पे इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने। और बैठक के बाद, 5 बजे की बैठक के बाद इस तरीके से नारेबाजी और घेराबंदी यहाँ पे विजय चौक पर हम लोग पहुँच गए हैं। ये विजय चौक है, पीछे आप देखे कि नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है।
8: मांग तो पूरे देश की जो मांग है कि पूरा जो संरचना है बेईमानी का उसको खत्म किया जाए, और ज्ञानेश जी प्रतीक पुरुष हैं जो शील्ड बन के खड़े हैं मोदी जी और अमित शाह जी, वो चले जाए।
9: देखिए, मुझे लगता है कि जो सारे देशभक्त हैं वो देश में लोकतंत्र को बचाने में लगे हैं, वो चाहे किसी राजनीतिक दल के सदस्य हो या न हो। और जो आज जो वोटर लिस्ट में पूरे चुनाव प्रक्रिया में जो धूल मिलाने का जो काम हो रहा है वो आज के तारीख में सबसे बड़े देशद्रोही का काम है।
10: थी, मुझे हंसी आ रही कि सरकार इतनी डर गई, लोग परेशान हो गए, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ब्लैंकेट बैन क्यों लगा रहे, सब क्यों बंद कर रहे, सारे मेट्रो ट्रेन बंद, सारी ट्रेनें बंद, सारे बसेस बंद, दिल्ली में घुस नहीं सकता, इतना डर।
2: इसके दो मकसद हैं, एक तो इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाना, दूसरा ये बताना कि सारे विपक्षी दल ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा चाहते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने वालों में बड़े नाम थे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, सीपीएम के एमए बेबी, सीपीआई के डी राजा, समाजवादी पार्टी के राजीव राय, सुप्रिया सुले, उमर अब्दुल्ला, मनोज झा और वीसीके के टी तिरुमावलन। जब इंडिया गठबंधन के ये 10 नेता राष्ट्रपति द्रौपदी से मिलने राष्ट्रपति भवन के अंदर पहुंचे, तो बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हुईं।
3: एक प्रकार से मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि जब हमने राष्ट्रपति को इलेक्शन चोरी वोट चोरी के बारे में बताया तो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने डिनाई नहीं किया। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने यह नहीं कहा कि हिंदुस्तान में चुनाव चोरी नहीं हो रहे हैं। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने उल्टा हमसे कहा कि आप सबूत हमारे पास लाइए, और यही ग्रुप खुशी से जो पूरा का पूरा सबूत हमने कलेक्ट किया है राष्ट्रपति के पास ले जाएगा, ले जाने के लिए तैयार है। पूरा देश जानता है, स्टूडेंट्स जानते हैं कि देश में वोट चोरी हो रही है। नरेंद्र मोदी इसके आर्किटेक्ट हैं, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार इसके इंप्लीमेंटर्स हैं, और इस बात को राष्ट्रपति ने, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने आज डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में सोचेंगी और एक्शन लेंगी।
4: हमने तो पॉजिटिव आउटलुक से देखा है कि उन्होंने जो दो चार बात कहा कि आई विल इन्वेस्टिगेट, आई विल गो थ्रू द डिटेल्स एंड हमको सबूत चाहिए, यू प्लीज सेंड अस द डिटेल्स एविडेंस।
5: हमने डिमांड किया है कि फिर से एक बार ईवीएम को निकाल दो और बैलेट पेपर पे इलेक्शन कराया जाए, और दूसरा कि ये वोट चोरी जहाँ जहाँ हो गए वो सबूत उन्होंने मांगा है, वो सबूत हम लोग तैयार कर रहे हैं और सबूत हम दे देंगे।
2: ये लगातार चौथा दिन है जब ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने विपक्ष उतरा है। 6 अक्टूबर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च किया, पुलिस ने बैरिकेडिंग करके विपक्षी सांसदों को रोका और कुछ को हिरासत में लिया, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पुलिस को चकमा देकर आकाशवाणी भवन परिसर में धरना दे दिया, और पूरे 8 घंटे तक धरना देने के बाद पुलिस ने राहुल और प्रियंका को जबरन हिरासत में लेकर उठाया। 7 अक्टूबर कांग्रेस ने पहले इंडिया गठबंधन के सांसदों को लंच दिया और फिर जंतर बंतर के लिए कूच किया। दिल्ली पुलिस ने दूसरे दिन भी विपक्षी सांसदों की बस को रोका, तो राहुल और प्रियंका ने सड़क पर ही ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, और आखिर में 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने राहुल और प्रियंका को फिर से हिरासत में लेकर धरना खत्म करवाया। 8 अक्टूबर तीसरे दिन इंडिया गठबंधन के सांसदों ने कनॉट प्लेस में लंच किया और बसों से सीधे राजघाट यानी गांधी समाधि के लिए कूच किया। यहां भी भारी फोर्स की तैनाती की गई, लेकिन राहुल प्रियंका समेत सभी विपक्षी सांसद गांधी स्थल पर बैठकर वापस आ गए। 9 अक्टूबर चौथे दिन ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलते हैं और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपते हैं।
11: हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम जनता की अदालत में तो है ही, हम सड़कों पर हैं, और वोट चोरी इस देश में नहीं चल सकती है।
12: दैट इज मंडे द इंडिया ब्लॉक पार्टी लीडर्स विल गो टू सुप्रीम कोर्ट।
0: इस बीच बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने संवैधानिक सीमाएं लांघ दी हैं।
13: संवैधानिक संस्थान महामहिम राष्ट्रपति एक व्यक्ति नहीं है, वो देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है। उसको लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो न सिर्फ विचित्र लगता है बल्कि उसमें सच से ज्यादा सियासत की गंध आ रही है। उनका यह कहना कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने उनके आरोपों को स्वीकार कर लिया है, यह दर्शाता है कि जो अभी तक राहुल गांधी देश की हर संस्था के बारे में, हर संवैधानिक संस्था को अपनी राजनीति का शिकार बनाने का दुष्चक्र रच रहे हैं, उन्होंने अब आज ऐसा प्रतीत होता है कि सारी सीमाएं पार कर दी।
0: आज राहुल गांधी चेन्नई में रहेंगे, छात्रों के साथ कार्यक्रम करेंगे और दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी ने चेतावनी दे रखी है कि भले ही दिल्ली पुलिस उन्हें जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति ना दे, लेकिन फिर भी वो जंतर मंतर के लिए कूच जरूर करेंगे।
2: इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ छिड़े संग्राम में एकजुटता दिखाई तो 10 अक्टूबर को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर कूच का ऐलान करके टेंशन बढ़ा रखी है।
14: इट इज आवर डेमोक्रेटिक राइट कि अगर हम सरकार से किसी बात पे इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो हम अपनी बात को डेमोक्रेटिक और पीसफुल तरीके से रख सकते हैं। आज इस देश में हालात ये हो गए हैं कि एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट पर प्रोटेस्ट करने के लिए हमको प्रोटेस्ट करनी पड़ रही है। मतलब इतना तो ब्रिटिश राज में भी नहीं होता था। अभी मुद्दा तो सेकेंडरी हो गया है, अभी तो ये हो गया कि इनको जंतर मंतर पर पहुंचने ही मत दो। और जो पूरी लड़ाई है वो इसी बात पे थी कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है। हमारी लड़ाई, हमारे जो सवाल हैं, हमारी जो मांगे हैं वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। और जिस तरह से बीजेपी ज्ञानेश कुमार के बचाव में आई है, जिस तरह से तमाम राज्यों में जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर हमारे लोगों को डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, उससे हमारी लड़ाई और क्लियर हो रही है कि यस बीजेपी एंड द इलेक्शन कमीशन आर वर्किंग टुगेदर। और इसी बात की तो सारी लड़ाई है हमारी।
2: जुलाई में हुए जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन पर दूध की जली दिल्ली पुलिस अक्टूबर में छाछ फूंक कर पी रही है। दिल्ली पुलिस बार बार कह रही है कि 10 अक्टूबर वाले इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है और उसके 3 कारण भी गिना रही है।
1: 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है। कोई भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा।
2: पहला, परमिशन 10 दिन पहले मांगनी होती है, जबकि सीजेपी ने 7 अक्टूबर को सिर्फ इंटीमेशन यानी सूचना दी है। दूसरा, पिछली बार परमिशन लेकर सीजेपी ने वादा खिलाफी की। तीसरा, मौजूदा लॉ एंड ऑर्डर के हालात को देखते हुए परमिशन नहीं दी जा सकती।
15: साहिल, मैं तो क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि मैं परमिशन मांगने नहीं गया था,
16: इन्फॉर्म करने,
15: मैं इन्फॉर्मेशन देने गया था, इंटीमेशन देने गया था फॉर्मल वे में। हम लोगों ने जब अनाउंस किया था, पुलिसिंग का पॉलिसी है कि दे वुड मॉनिटर व्हाट द सिचुएशन इज इन द कंट्री एंड इन दिल्ली, दिल्ली पुलिस वुड डू इट। तो उनको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन था कि क्या होने वाला है। 7 तारीख को फिर मैं गया, वहां पे मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन जो हम लोगों ने लेटर दिया उसमें हमने एसर्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज अस द राइट टू प्रोटेस्ट, लेकिन पुलिस के तरफ से रवैया बहुत खराब था। दे डिड नॉट से एनीथिंग, उन्होंने ये नहीं बोला कि देंगे नहीं देंगे, उन्होंने एक्नॉलेज किया लेटर को एंड एक स्टैम्प डाल के हमें दे दिया। नन ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ दिल्ली पुलिस मेट मी, जबकि लास्ट टाइम उन्होंने 5 राउंड सीनियर ऑफिसर से हमें मिलवाया था। मैंने किया था लास्ट टाइम भी प्रोसेस, लेकिन इस बार बिल्कुल भी कोई सीनियर ऑफिसर मिलना नहीं चाह रहा था। एंड दिस इज अ न्यू टैक्टिक दैट दे हैव अडॉप्टेड।
16: व्हाट इज द टैक्टिक यू थिंक दैट
15: द टैक्टिक इज टू नॉट अलाउ एनी डेमोक्रेटिक डिसेंट इन द कंट्री। दिल्ली Also, the last time there were peaceful protests, it happened for such a long time. And इस बार वो चाहते हैं कि बिल्कुल भी देश का युवा रोड पे ना निकले। And वही tactic इसमें भी दिख रहा है कि कुछ भी information उनके तरफ से भी हमें ना आए, हमारे से वो सारे information ले ले जो हम cooperate करना भी चाहते हैं। हमने उनको जब मैं मिला था, जो भी अधिकारी था, मैंने बोला था कि we will fully cooperate with them in the expectation that the police would also cooperate with us. Because the police is not they are not the ones who will give permission whether to protest against the government or not. Kina strange or absurd concept hai ki sochiye Gandhi ji jab Dandi march nikal denge wo Britishers ko jaake bolenge sahib 2 ghante ka time dijiye main Dandi march karke aata hu. Is this how the country will function? And ye gulami wala jo mansikta hai hamare jo independence ke baad 80 saal mein hamare andar ghusaya gaya hai ki aap permission lijiye state se कि उनके खिलाफ ही प्रोटेस्ट करने तो उनसे परमिशन लीजिए। हाउ एब्सर्ड कि अभी भी हम लोग वही लैंग्वेज यूज कर रहे हैं 80 साल बाद।
2: लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि उन्हें परमिशन की कोई जरूरत नहीं है।
17: ज्ञानेश कुमार ने परमिशन लिया था 13 करोड़ वोट डिलीट करने से पहले ज्ञानेश कुमार ने परमिशन लिया था। सुप्रीम कोर्ट तो बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल भी नहीं दिया था फॉर्म 60 मॉडिफिकेशन का। तो जब ज्ञानेश कुमार बिना किसी को बताए बिना किसी से पूछे 13 करोड़ वोट डिलीट करता है तो उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 19 क्या जरूरत है परमिशन।
2: बीजेपी की चेतावनी को देखते हुए दिल्ली में जैसे किलेबंदी कर दी गई है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर फोर्स तैनात हैं, चेकिंग चल रही है तो जंतर मंतर के आसपास कई स्तर की बैरिकेडिंग की गई है। दंगा रोधी वाहन भी तैनात किए गए हैं। 300 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जगह जगह माइक लगाए गए हैं। 57 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। दिल्ली निजामुद्दीन की 165 में से 38 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं।
18: मुझे लगता है कि अब बात थोड़ी उसके आगे चली गई है। एक ज्ञानेश कुमार को जिसको हम एक ब्यूरोक्रेट कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेट ही वो, कोई मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है। एक ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए अपने जम्मू कश्मीर से फोर्स बुला ली, अपने नक्सल एरिया से फोर्स बुला ली, आपसे आपको वो भी कम लगा, आपने सारे रास्ते बंद कर दिए, आपको वो भी कम लगा, आपने मेट्रोज बंद कर दिए, आपको वो भी कम लगा, आपने रेलवेज बंद कर दी। देश ही बंद कर दो ना, इलेक्शन बंद कर दो, देश ही बंद कर दो। आर्टिकल 19 गिव्स अस द राइट टू प्रोटेस्ट एंड जंतर मंतर इज अ डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट। अगर हम मुंबई में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अगर हम बेंगलोर में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो हम दिल्ली में क्यों नहीं कर सकते? क्या दिल्ली किसी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर चल रही है? मुंबई में पुलिस ने पूरा कोऑपरेट किया, बेंगलुरु में पूरा कोऑपरेट किया, दिल्ली में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, दिल्ली में कौन सा लॉ चल रहा है अलग से? तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि दिल्ली का लॉ बुक कोई और है क्या जो इंडिया से अलग है।
2: दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन वाले अल्टीमेटम के चलते पुलिस सतर्क है, लेकिन दिल्ली में किलेबंदी और इतनी सख्ती को लेकर बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। जी हां, बीजेपी के प्रदर्शन से पहले मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और कई ट्रेनों को रद्द करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और ये याचिका सीपीएम के महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद एमए बेबी ने दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस भी हुई। साथ ही सीजीआई की तरफ से टिप्पणी भी की गई। चीफ जस्टिस की बेंच में कपिल सिब्बल ने कहा दिल्ली में ट्रेनें रद्द, मेट्रो बंद, होटल बंद हैं। प्रशांत भूषण ने कहा पूरी दिल्ली बंद कर दी है। गोपाल शंकर नारायणन ने कहा 57 मेट्रो स्टेशन भी बंद किए हैं। इस पर सीजीआई ने कहा सुबह तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर जस्टिस बागची ने कहा कि प्रदर्शन का हक है लेकिन कानून के हिसाब से इजाजत मांगिए, नहीं देते तो कोर्ट आइए। गोपाल शंकर नारायणन ने कहा इसमें समय लगेगा, प्रोटेस्ट कल है। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा आपको कुछ चीजों को रोकना ही होगा, उन्हें रोकने के लिए सिर्फ उतनी ही कार्रवाई करें जितनी जरूरी हो। सुप्रीम अदालत ने आयोजकों को बुलाया और कपिल सिब्बल आयोजकों को नहीं ला पाए। अदालत में पुलिस प्रशासन के एहतियाती कदमों को लेकर भी चर्चा हुई और सरकार ने अनुपातिक तैयारियों का वादा किया और कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की बात कही। एहतियातन दिल्ली पुलिस अब भी दिल्ली में आने जाने वालों पर नजर रख रही है। दिल्ली के बॉर्डर पर वाहनों की तलाशी जारी है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दीप के प्रदर्शन करने पर अड़े हुए हैं और इसी प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट है। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से पुख्ता जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं।
2: बाजारों से लेकर बॉर्डर तक हाई अलर्ट पर पुलिस, जगह जगह दिल्ली पुलिस की बुनादी।
1: नई दिल्ली में और सभी जगह धारा 163 BNSS लागू है।
2: 10 अक्टूबर यानी कल जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली किसी छावनी में तब्दील हो चुकी है। दावा यही है कि प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, लिहाजा भीड़ जुटी तो एक्शन होगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से लोगों को सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली अफवाहों से बचने की सलाह दी जा रही है।
19: किसी भी भड़काऊ संदेश या उकसावे में नहीं आए, जिम्मेदार नागरिक बने और कानून का पालन करें। अपने क्षेत्र की सुरक्षा में पुलिस और प्रशासन का साथ दें और अपने परिवार वाले और अपने बच्चों को इस बारे में समझा
2: वीडियो दिल्ली के चांदनी चौक का है। मस्जिद के केयर टेकर की माने तो बीते दिन स्थानीय पुलिस ने लोगों से जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट से दूर रहने की अपील की थी।
20: पुलिस अफसर जो यहाँ के बीट अफसर है ना, वो आए थे शाम के 5 बजे और उन्होंने ऐलान किया था कि प्रोटेक्शन जो हो रहा है जंतर मंतर पे, उसमें आदमी को नहीं जाना चाहिए और नहीं अपने बच्चों को जाने देना चाहिए। जी हाँ, यही उन्होंने ऐलान किया था, इस बात पे अमल करना चाहिए हर आदमी को।
21: कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक पुलिसकर्मी एक मस्जिद के अंदर जाकर के मोबाइल से पढ़ के एक अनाउंसमेंट कर रहा है, जिसमें वो लोगों को माइक पे बता रहा है कि किस तरीके से इस प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है और वो अपने बच्चों को भी समझाएं कि वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा ना बने। इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी मस्जिद के बाहर है। अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो ये चांदनी चौक में स्थित शाही मस्जिद है जिसके अंदर का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। यहीं पर दिल्ली पुलिस आई और यहां पर आकर के दिल्ली पुलिस ने अनाउंसमेंट की है और लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि जो कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है उसके लिए परमिशन नहीं मिली है और अपने बच्चों को भी वो समझाएं कि वो आगे जाकर के इस प्रोटेस्ट का हिस्सा ना बने क्योंकि लीगल एक्शन हो सकता है।
2: दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में भी दिल्ली पुलिस लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को बता रही है कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है, धारा 163 लागू है, लिहाजा प्रोटेस्ट में शामिल ना हो।
1: 10 तारीख को जो CJP प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है। नई दिल्ली में और सभी जगह धारा 163 BNSS लागू है, जो कि कोई भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा। आप सभी को सूचित कर दें, बता दें, अपने बच्चे जो भी आस पड़ोसी उन सबको बता करके ब्रीफ कर दें कि वहां पर कोई भी परमिशन नहीं है।
2: तो दिल्ली की कुछ मस्जिदों से ऐलान किया गया है कि 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल ना हो।
22: इस ऐलान को गौर समाज फरमाए कि जो जंतर मंतर पर 8, 9, 10 तारीख को जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो इल्लीगल है, वहाँ पर कोई व्यक्ति ना जाए, इसलिए कि सरकार ने वहाँ पर धारा 173 लगाई हुई है। कृपया आप असरा प्रशासन का साथ दें, कोई वहाँ ना जाए।
2: दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, बिना परमिशन CJP को प्रदर्शन या धरना करने की इजाजत नहीं है।
23: क्या परमिशन मांगी गई, कब मांगी गई?
24: 7 तारीख को कांग्रेस जनता पार्टी ने एक परमिशन एप्लीकेशन दी थी, इंटीमेशन करके, जिसमें ये बताया गया कि वो CEC की अकाउंटेबिलिटी के रिगार्डिंग 10 तारीख को जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन जो इंटीमेशन की है उस पर गौर किया गया और ये पाया गया कि ये एप्लीकेशन एस्टैब्लिश्ड जो गाइडलाइन है उसके तहत हमारे पास नहीं है।

0: नहीं फॉलो किया या उनकी जो अंडरटेकिंग दी गई थी उनके द्वारा उसको भी नहीं कंप्लाई किया और प्रेजेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और पब्लिक सेफ्टी के मद्देनजर इस एप्लीकेशन जो थी उसको रिजेक्ट किया जाता है।
1: पुलिस की दलील है कि पेपर लीक को लेकर जंतर बंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल सीजेपी की तरफ से नहीं रखा गया, हिंसा हुई, कई पुलिस वाले जख्मी हुए, लिहाजा अब की बार प्रदर्शन के नाम पर दिल्ली की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होगा।
2: 2 अक्टूबर से लेकर अब तक 27 FIR दर्ज हो चुकी हैं। पुलिस को अंदेशा है कि प्रदर्शन के नाम पर कुछ लोग दिल्ली की कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं, इसीलिए सख्ती दिल्ली पुलिस ने की है।
1: सीजेपी का ऐलान यही है कि जंतर मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए 7 अक्टूबर को सीजेपी की तरफ से परमिशन मांगी गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं दी गई। इसके बावजूद सीजेपी ने जंतर मंतर पहुंचने का ऐलान किया है। ऐसे में सीजेपी से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। जंतर मंतर को बैरिकेड से घेरा गया है, मतलब सीजेपी के समर्थकों को जंतर मंतर जाने से रोकने की प्लानिंग है। इसी कड़ी में नए CCTV और लाउड स्पीकर तक लगाए गए हैं।
3: जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली पुलिस की कोशिश ऐसी है कि कहीं कोई जमावड़ा एक जगह पर ज्यादा ना होने पाए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो। कई जगहों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के तहत जो कैमरे आते हैं, जो जुड़े हुए हैं, उन कैमरों को भी लगाया गया है। हालांकि कई ऐसे कैमरे हैं जो इस इलाके में पहले लगे हुए थे, लेकिन आप देखिए इस खंभे पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको जो कैमरा नीचे लगा हुआ दिख रहा है, ये अभी इंस्टॉल किया गया है। इसके ऊपर लाउड स्पीकर लगाया गया है, जिससे लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप यहाँ पर इकट्ठे ना हो, ये गैर कानूनी है। तो पुलिस ने जगह जगह कंट्रोल रूम बना रखे हैं, एरियो को डिवाइड कर रखा है और हर एरिया की जिम्मेदारी एक IPS स्तर के अधिकारी की है।
1: ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है। थाने के बाहर दिल्ली पुलिस की तरफ से पोस्टर पर चेतावनी लिखी हुई है। थाने के बाहर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं।
3: इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के ठीक बाहर, जो पिछले कई दिनों से जंग का अखाड़ा बना हुआ है। और इस थाने के बाहर की आप तैनाती देखिए, जैसे किले की बाहर पूरी सुरक्षा होती है, उस तरीके से इस थाने की भी सुरक्षा के लिए बाहर बैरिकेड है। अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस गेट पर तैनात मिलेगी, दिल्ली पुलिस आपको तैनात मिलेगी और यहाँ पर चेतावनी भी लगाई गई है। ठीक आप देखिए, बैरिकेड पर चेतावनी लगाई गई है कि BNSS की धारा 163 लागू है, अगर लोग जुटेंगे तो उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी।
1: जंतर मंतर की तरफ जाने वाले रास्ते की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है।
4: इस वक्त मैं जनपथ रोड पर हूं और मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये जो सड़क है ये सीधा जंतर मंतर की तरफ जाती है। यहां से करीब 500 मीटर आगे ही वो धरना स्थल है, जहां अमूमन लोग जाके बैठते हैं और धरना देते हैं। अगर आप यहां तैयारियां देखें तो इस पूरी सड़क को ट्रैफिक के लिए और पैदल मूवमेंट के लिए भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात भी कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, अगर आप देखें यहां आसपास करीब हर खंभे पर कैमरे लगा दिए गए हैं और ऐसे बड़े लाउड स्पीकर लगा दिए गए हैं। इन लाउड स्पीकर्स का ये काम है कि ये लगातार अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा होना इस वक्त गैरकानूनी है। इस पूरे इलाके में 163 BNSS की धारा लगी हुई है, जो किसी भी तरह के प्रदर्शन को वर्जित करती है। और अगर यहाँ पर कोई पहुंचता है या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोशिश करता है, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करता है या पुलिस वालों पर हमला करने की कोशिश करता है, तो उनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
1: संसद मार्ग की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर बैरिकेड को दूसरे बैरिकेड से जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने जंजीर और ताले का इस्तेमाल किया है।
3: इस वक्त हम संसद मार्ग पर मौजूद हैं, जहाँ पर सीजेपी की प्रस्तावित प्रोटेस्ट से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। और ये आप देखिए, ये जो बैरिकेड रखे गए हैं यहाँ, इन बैरिकेड में ये चेन्स लगाई जा रही है मोटी मोटी। इन चेन्स को पेच के जरिए अगर आप देखेंगे तो इनको पेंच के जरिए इससे जोड़ दिया गया है बैरिकेड से, और नीचे की तरफ ऐसे लॉक सिस्टम लगाए गए हैं, ताकि इस लॉक को दूसरा जो ये लॉक सिस्टम है, जो इस अगर हम कहें दूसरा बैरिकेड है, इस बैरिकेड में जो लॉक सिस्टम है इस चेन को, इससे जोड़ा जा सके। यानी कि इन बैरिकेड को हटाना इतना आसान नहीं होगा। आप दरअसल पुलिस ने तैयारी की है जो इस पूरे प्रोटेस्ट से निपटने के लिए, क्योंकि

0: परमिशन तो दी नहीं है, और उसके कारण पुलिस ने बताया कि एक तो सिर्फ 3 दिन पहले एप्लीकेशन दी गई, और दूसरा जो पिछला आचरण था परमिशन लेने के बाद प्रोटेस्ट का, उसको देखते हुए परमिशन डिनाई की जा रही है।
1: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: राष्ट्रपति से मिलने के बाद विपक्ष ने सरकार पर और तेज किए हमले, बोले राहुल, वोट चोरी के हमारे आरोप पर महामहिम भी सहमत। बीजेपी बोली, नेता विपक्ष राहुल ने लांघी संवैधानिक सीमा। आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को नहीं मिली अनुमति, मेट्रो के 45 स्टेशन बंद, दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें रद्द, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली की किलेबंदी पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, कहा, मक्खी मारने के लिए हथौड़ा आप नहीं चला सकते, सब कुछ ठप होने से आम लोग न हो परेशान। उपचुनाव में बीजेपी एनडीए के शानदार प्रदर्शन पर पीएम का पोस्ट, लिखा, इस जनादेश से मिलेगी और मजबूती। अमित शाह बोले, राहुल के झूठ और दुष्प्रचार के बाद भी हमारी बड़ी जीत। जेवर एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी हवाई अड्डा करने पर राजनीतिक युद्ध, अखिलेश बोले, नाम बदलने वालों को बदलेगी जनता, पहले यूपी कैबिनेट के निर्णय पर लगी मुहर। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल गांधी मोर्चा खोले हुए हैं। इस बीच शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ राहुल ने राष्ट्रपति से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन सौंपा। सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में किलेबंदी इधर कर दी गई है।
1: 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है, कोई भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा।
2: ज्ञानेश कुमार पर संग्राम, आज विपक्ष कल सीजेपी। चार दिन से लगातार राहुल गांधी का ज्ञानेश कुमार पर वार।
3: मंडे को हम सुप्रीम कोर्ट, ये ही पूरा का पूरा ग्रुप मेमोरेंडम ले, इफ जस्टिस के लिए मेमोरेंडम लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
2: अब ज्ञानेश कुमार पर लड़ाई राष्ट्रपति के दर तक आई। सीईसी के इस्तीफे की मांग, राष्ट्रपति को इंडिया का ज्ञापन।
4: हमने तो पॉजिटिव आउटलुक से देखा है कि उन्होंने जो दो चार बात कहा कि आई विल इन्वेस्टिगेट, आई विल गो थ्रू द डिटेल्स एंड आर्म को सबूत चाहिए।
2: 10 अक्टूबर को सीजेपी का जंतर मंतर प्लान, किले में तब्दील दिल्ली।
5: डरे हुए हैं और जो आदमी डरता है आज नहीं कल मरता है।
6: भारत जैसे लोकतंत्र में प्रदर्शन की पूरी संभावनाएं हैं और आप जरूर करें प्रदर्शन, बट प्रदर्शन से समाधान नहीं निकलेगा, समाधान संवाद से निकलेगा।
2: एक तरफ दिल्ली किले में तब्दील हो चुकी है, दिल्ली पुलिस से लेकर बीएसएफ भी दिल्ली की सीमाओं पर तैनात है, तो दूसरी तरफ लगातार चौथे दिन राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए उतरे और चौथे दिन अपनी मांग को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दर पर पहुंचते हैं।
7: यहाँ पे आप देखिए कि संसद भवन से बाहर मार्च करते हुए ये तमाम नेता नजर आ रहे हैं और कुछ इस तरीके से लोकतंत्र बचाओ अभियान छेड़ दिया है यहाँ पे इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने। और बैठक के बाद, 5 बजे की बैठक के बाद इस तरीके से नारेबाजी और घेराबंदी यहाँ पे विजय चौक पर हम लोग पहुँच गए हैं। ये विजय चौक है, पीछे आप देखें कि नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है।
8: मांग तो पूरे देश की जो मांग है कि पूरा जो संरचना है बेईमानी का उसको खत्म किया जाए, और ज्ञानेश जी प्रतीक पुरुष हैं जो शील्ड बन के खड़े हैं मोदी जी और अमित शाह जी, वो चले जाए।
9: देखिए, मुझे लगता है कि जो सारे देशभक्त हैं वो देश में लोकतंत्र को बचाने में लगे हैं, वो चाहे किसी राजनीतिक दल के सदस्य हो या न हो। और जो आज जो वोटर लिस्ट में पूरे चुनाव प्रक्रिया में जो धूल मिलाने का जो काम हो रहा है वो आज के तारीख में सबसे बड़े देशद्रोही का काम है।
10: मुझे हंसी आ रही कि सरकार इतनी डर गई, लोग परेशान हो गए। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ब्लैंकेट बैन क्यों लगा रहे, सब क्यों बंद कर रहे, सारे मेट्रो ट्रेन बंद, सारी ट्रेनें बंद, सारे बसेस बंद, दिल्ली में घुस नहीं सकता, इतना डर।
2: इसके दो मकसद हैं, एक तो इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाना, दूसरा ये बताना कि सारे विपक्षी दल ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा चाहते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने वालों में बड़े नाम थे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, सीपीएम के एमए बेबी, सीपीआई के डी राजा, समाजवादी पार्टी के राजीव राय, सुप्रिया सुले, उमर अब्दुल्ला, मनोज झा और वीसीके के टी तिरुमावलन। जब इंडिया गठबंधन के ये 10 नेता राष्ट्रपति द्रौपदी से मिलने राष्ट्रपति भवन के अंदर पहुंचे, तो बाहर बड़ी संख्या में कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हुई।
3: एक प्रकार से मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि जब हमने राष्ट्रपति को इलेक्शन चोरी वोट चोरी के बारे में बताया तो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने डिनाई नहीं किया। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने यह नहीं कहा कि हिंदुस्तान में चुनाव चोरी नहीं हो रहे हैं। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने उल्टा हमसे कहा कि आप सबूत हमारे पास लाइए, और यही ग्रुप खुशी से जो पूरा का पूरा सबूत हमने कलेक्ट किया है राष्ट्रपति के पास ले जाएगा, ले जाने के लिए तैयार है। पूरा देश जानता है, स्टूडेंट्स जानते हैं कि देश में वोट चोरी हो रही है। नरेंद्र मोदी इसके आर्किटेक्ट हैं, अमित शाह, ज्ञानेश कुमार इसके इंप्लीमेंटर्स हैं, और इस बात को राष्ट्रपति ने, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने आज डिनाई नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो इसके बारे में सोचेंगी और एक्शन लेंगी।
4: हमने तो पॉजिटिव आउटलुक से देखा है कि उन्होंने जो दो चार बात कहा कि आई विल इन्वेस्टिगेट, आई विल गो थ्रू द डिटेल्स एंड हमको सबूत चाहिए, यू प्लीज सेंड अस द डिटेल्स एविडेंस।
11: हमने डिमांड किया है कि फिर से एक बार ईवीएम को निकाल दो और बैलेट पेपर पे इलेक्शन कराया जाए, और दूसरा कि ये वोट चोरी जहाँ जहाँ हो गए वो सबूत उन्होंने मांगा है, वो सबूत हम लोग तैयार कर रहे हैं और सबूत हम दे देंगे।
2: ये लगातार चौथा दिन है जब ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने विपक्ष उतरा है। 6 अक्टूबर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च किया, पुलिस ने बैरिकेडिंग करके विपक्षी सांसदों को रोका और कुछ को हिरासत में लिया, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पुलिस को चकमा देकर आकाशवाणी भवन परिसर में धरना दे दिया, और पूरे 8 घंटे तक धरना देने के बाद पुलिस ने राहुल और प्रियंका को जबरन हिरासत में लेकर उठाया। 7 अक्टूबर कांग्रेस ने पहले इंडिया गठबंधन के सांसदों को लंच दिया और फिर जंतर बंतर के लिए कूच किया। दिल्ली पुलिस ने दूसरे दिन भी विपक्षी सांसदों की बस को रोका तो राहुल और प्रियंका ने सड़क पर ही ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, और आखिर में 2 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने राहुल और प्रियंका को फिर से हिरासत में लेकर धरना खत्म करवाया। 8 अक्टूबर तीसरे दिन इंडिया गठबंधन के सांसदों ने कनॉट प्लेस में लंच किया और बसों से सीधे राजघाट यानी गांधी समाधि के लिए कूच किया। यहां भी भारी फोर्स की तैनाती की गई, लेकिन राहुल प्रियंका समेत सभी विपक्षी सांसद गांधी स्थल पर बैठकर वापस आ गए। 9 अक्टूबर चौथे दिन ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलते हैं और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपते हैं।
12: हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम जनता की अदालत में तो है ही, हम सड़कों पर हैं, और वोट चोरी इस देश में नहीं चल सकती है।
13: दैट इज मंडे द इंडिया ब्लॉक पार्टी लीडर्स विल गो टू सुप्रीम कोर्ट।
0: इस बीच बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने संवैधानिक सीमाएं लांघ दी हैं।
14: संवैधानिक संस्थान महामहिम राष्ट्रपति एक व्यक्ति नहीं है, वो देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है। उसको लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो न सिर्फ विचित्र लगता है बल्कि उसमें सच से ज्यादा सियासत की गंध आ रही है। उनका यह कहना कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने उनके आरोपों को स्वीकार कर लिया है, यह दर्शाता है कि जो अभी तक राहुल गांधी देश की हर संस्था के बारे में, हर संवैधानिक संस्था को अपनी राजनीति का शिकार बनाने का दुष्चक्र रच रहे हैं, उन्होंने अब आज ऐसा प्रतीत होता है कि सारी सीमाएं पार कर दी।
0: आज राहुल गांधी चेन्नई में रहेंगे, छात्रों के साथ कार्यक्रम करेंगे और दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी ने चेतावनी दे रखी है कि भले ही दिल्ली पुलिस उन्हें जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति ना दे, लेकिन फिर भी वो जंतर मंतर के लिए कूच जरूर करेंगे।
2: इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ छिड़े संग्राम में एकजुटता दिखाई तो 10 अक्टूबर को दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर कूच का ऐलान करके टेंशन बढ़ा रखी है।
15: इट इज आवर डेमोक्रेटिक राइट कि अगर हम सरकार से किसी बात पे इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो हम अपनी बात को डेमोक्रेटिक और पीसफुल तरीके से रख सकते हैं। आज इस देश में हालात ये हो गए हैं कि एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट पर प्रोटेस्ट करने के लिए हमको प्रोटेस्ट करनी पड़ रही है। मतलब इतना तो ब्रिटिश राज में भी नहीं होता था। अभी मुद्दा तो सेकेंडरी हो गया है, अभी तो ये हो गया कि इनको जंतर मंतर पर पहुंचने ही मत दो। और जो पूरी लड़ाई है वो इसी बात पे थी कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है। हमारी लड़ाई, हमारे जो सवाल हैं, हमारी जो मांगे हैं वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। और जिस तरह से बीजेपी ज्ञानेश कुमार के बचाव में आई है, जिस तरह से तमाम राज्यों में जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर हमारे लोगों को डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, उससे हमारी लड़ाई और क्लियर हो रही है कि यस, बीजेपी एंड द इलेक्शन कमीशन आर वर्किंग टुगेदर। और इसी बात की तो सारी लड़ाई है हमारी।
2: जुलाई में हुए जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन पर दूध की जली दिल्ली पुलिस अक्टूबर में छाछ फूंक कर पी रही है। दिल्ली पुलिस बार बार कह रही है कि 10 अक्टूबर वाले इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है और उसके 3 कारण भी गिना रही है।
1: 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है, कोई भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा।
2: पहला, परमिशन 10 दिन पहले मांगनी होती है, जबकि सीजेपी ने 7 अक्टूबर को सिर्फ इंटीमेशन यानी सूचना दी है। दूसरा, पिछली बार परमिशन लेकर सीजेपी ने वादा खिलाफी की। तीसरा, मौजूदा लॉ एंड ऑर्डर के हालात को देखते हुए परमिशन नहीं दी जा सकती।
16: साहिल, मैं तो क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि मैं परमिशन मांगने नहीं गया था,
14: इन्फॉर्म करने,
16: मैं इन्फॉर्मेशन देने गया था, इंटीमेशन देने गया था फॉर्मल वे में। हम लोगों ने जब अनाउंस किया था, पुलिसिंग का पॉलिसी है कि दे वुड मॉनिटर व्हाट द सिचुएशन इज इन द कंट्री एंड इन दिल्ली, दिल्ली पुलिस वुड डू इट। तो उनको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन था कि क्या होने वाला है। 7 तारीख को फिर मैं गया, वहां पे मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन जो हम लोगों ने लेटर दिया उसमें हमने एसर्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज अस द राइट टू प्रोटेस्ट, लेकिन पुलिस के तरफ से रवैया बहुत खराब था। दे डिड नॉट से एनीथिंग, उन्होंने ये नहीं बोला कि देंगे नहीं देंगे, उन्होंने एक्नॉलेज किया लेटर को एंड एक स्टैम्प डाल के हमें दे दिया। नन ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ दिल्ली पुलिस मेट मी, जबकि लास्ट टाइम उन्होंने 5 राउंड सीनियर ऑफिसर्स से हमें मिलवाया था, मैंने किया था लास्ट टाइम भी प्रोसेस, लेकिन इस बार बिल्कुल भी कोई सीनियर ऑफिसर मिलना नहीं चाह रहा था। एंड दिस इज अ न्यू टैक्टिक दैट दे हैव अडॉप्टेड।
14: व्हाट इज द टैक्टिक यू थिंक दैट
16: द टैक्टिक इज टू नॉट अलाउ एनी डेमोक्रेटिक डिसेंट इन द कंट्री। दिल्ली Also, the last time there were peaceful protests, it happened for such a long time. And इस बार वो चाहते हैं कि बिल्कुल भी देश का युवा रोड पे ना निकले। And वही tactic इसमें भी दिख रहा है कि कुछ भी information उनके तरफ से भी हमें ना आए, हमारे से वो सारे information ले ले जो हम cooperate करना भी चाहते हैं। हमने उनको जब मैं मिला था, जो भी अधिकारी था, मैंने बोला था कि we will fully cooperate with them in the expectation that the police would also cooperate with us. Because the police is not they are not the ones who will give permission whether to protest against the government or not. Kina strange or absurd concept hai ki sochiye Gandhi ji jab Dandi march nikal denge wo Britishers ko jaake bolenge sahib 2 ghante ka time dijiye main Dandi march karke aata hu. Is this how the country will function? एंड ये गुलामी वाला जो मानसिकता है हमारे जो इंडिपेंडेंस के बाद 80 साल में हमारे अंदर घुसाया गया कि आप परमिशन लीजिए स्टेट से कि उनके खिलाफ ही प्रोटेस्ट करने, तो उनसे परमिशन लीजिए। हाउ एब्सर्ड कि अभी भी हम लोग वही लैंग्वेज यूज कर रहे हैं 80 साल बाद।
2: लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि उन्हें परमिशन की कोई जरूरत नहीं है।
17: ज्ञानेश कुमार ने परमिशन लिया था 13 करोड़ वोट डिलीट करने से पहले ज्ञानेश कुमार ने परमिशन लिया था? सुप्रीम कोर्ट तो बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूवल भी नहीं दिया था फॉर्म 60 मॉडिफिकेशन का। तो जब ज्ञानेश कुमार बिना किसी को बताए बिना किसी से पूछे 13 करोड़ वोट डिलीट करता है, तो उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 19 क्या जरूरत है परमिशन?
2: बीजेपी की चेतावनी को देखते हुए दिल्ली में जैसे किलेबंदी कर दी गई है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर फोर्स तैनात हैं, चेकिंग चल रही है, तो जंतर मंतर के आसपास कई स्तर की बैरिकेडिंग की गई है, दंगा रोधी वाहन भी तैनात किए गए हैं, 300 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जगह जगह माइक लगाए गए हैं, 57 मेट्रो स्टेशन बंद हैं, दिल्ली निजामुद्दीन की 165 में से 38 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं।
18: मुझे लगता है कि अब बात थोड़ी उसके आगे चली गई है। एक ज्ञानेश कुमार को, जिसको हम एक ब्यूरोक्रेट कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेट ही है वो, कोई मंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, एक ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए अपने जम्मू कश्मीर से फोर्स बुला ली, अपने नक्सल एरिया से फोर्स बुला ली, आपसे आपको वो भी कम लगा, आपने सारे रास्ते बंद कर दिए, आपको वो भी कम लगा, आपने मेट्रोज बंद कर दिए, आपको वो भी कम लगा, आपने रेलवेज बंद कर दी, देश ही बंद कर दो ना, इलेक्शन बंद कर दो, देश ही बंद कर दो। आर्टिकल 19 गिव्स अस द राइट टू प्रोटेस्ट एंड जंतर मंतर इज अ डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट। अगर हम मुंबई में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अगर हम बेंगलोर में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो हम दिल्ली में क्यों नहीं कर सकते? क्या दिल्ली किसी और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर चल रही है? मुंबई में पुलिस ने पूरा कोऑपरेट किया, बेंगलुरु में पूरा कोऑपरेट किया, दिल्ली में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, दिल्ली में कौन सा लॉ चल रहा है अलग से? तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि दिल्ली का लॉ बुक कोई और है क्या जो इंडिया से अलग है?
2: दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन वाले अल्टीमेटम के चलते पुलिस सतर्क है, लेकिन दिल्ली में किलेबंदी और इतनी सख्ती को लेकर बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। जी हां, बीजेपी के प्रदर्शन से पहले मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और कई ट्रेनों को रद्द करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, और ये याचिका सीपीएम के महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद एमए बेबी ने दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस भी हुई। साथ ही सीजीआई की तरफ से टिप्पणी भी की गई। चीफ जस्टिस की बेंच में कपिल सिब्बल ने कहा दिल्ली में ट्रेनें रद्द, मेट्रो बंद, होटल बंद हैं। प्रशांत भूषण ने कहा पूरी दिल्ली बंद कर दी है। गोपाल शंकर नारायणन ने कहा 57 मेट्रो स्टेशन भी बंद किए हैं। इस पर सीजीआई ने कहा सुबह तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर जस्टिस बागची ने कहा कि प्रदर्शन का हक है, लेकिन कानून के हिसाब से इजाजत मांगिए, नहीं देते तो कोर्ट आइए। गोपाल शंकर नारायणन ने कहा इसमें समय लगेगा, प्रोटेस्ट कल है। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा आपको कुछ चीजों को रोकना ही होगा, उन्हें रोकने के लिए सिर्फ उतनी ही कार्रवाई करें जितनी जरूरी हो। सुप्रीम अदालत ने आयोजकों को बुलाया और कपिल सिब्बल आयोजकों को नहीं ला पाए। अदालत में पुलिस प्रशासन के एहतियाती कदमों को लेकर भी चर्चा हुई और सरकार ने अनुपातिक तैयारियों का वादा किया और कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की बात कही। एहतियातन दिल्ली पुलिस अब भी दिल्ली में आने जाने वालों पर नजर रख रही है। दिल्ली के बॉर्डर पर वाहनों की तलाशी जारी है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दीप के प्रदर्शन करने पर अड़े हुए हैं और इसी प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट है। दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से पुख्ता जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं।
2: बाजारों से लेकर बॉर्डर तक हाई अलर्ट पर पुलिस, जगह जगह दिल्ली पुलिस की बुनादी।
1: नई दिल्ली में और सभी जगह धारा 163 BNSS लागू है।
2: 10 अक्टूबर यानी कल जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली किसी छावनी में तब्दील हो चुकी है। दावा यही है कि प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, लिहाजा भीड़ जुटी तो एक्शन होगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से लोगों को सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली अफवाहों से बचने की सलाह दी जा रही है।
19: किसी भी भड़काऊ संदेश या उकसावे में नहीं आए, जिम्मेदार नागरिक बने और कानून का पालन करें। अपने क्षेत्र की सुरक्षा में पुलिस और प्रशासन का साथ दें और अपने परिवार वाले और अपने बच्चों को इस बारे में समझाएं कि इस तरह की अन्य भीड़ में या ऐसे कोई प्रोटेस्ट में कि
2: वीडियो दिल्ली के चांदनी चौक का है। मस्जिद के केयर टेकर की माने तो बीते दिन स्थानीय पुलिस ने लोगों से जंतर मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट से दूर रहने की अपील की थी।
20: पुलिस अफसर जो यहाँ के बीट अफसर है ना, वो आए थे शाम के 5 बजे और उन्होंने ऐलान किया था कि प्रोटेक्शन जो हो रहा है जंतर मंतर पे, उसमें आदमी को नहीं जाना चाहिए और नहीं अपने बच्चों को जाने देना चाहिए। जी हाँ, यही उन्होंने ऐलान किया था, इस बात पे अमल करना चाहिए हर आदमी को।
21: कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां एक पुलिसकर्मी एक मस्जिद के अंदर जाकर के मोबाइल से पढ़ के एक अनाउंसमेंट कर रहा है, जिसमें वो लोगों को माइक पे बता रहा है कि किस तरीके से इस प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है और वो अपने बच्चों को भी समझाएं कि वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा ना बने। इस वक्त हमारी मौजूदगी उसी मस्जिद के बाहर है। अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो ये चांदनी चौक में स्थित शाही मस्जिद है जिसके अंदर का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। यहीं पर दिल्ली पुलिस आई और यहां पर आकर के दिल्ली पुलिस ने अनाउंसमेंट की है और लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है उसके लिए परमिशन नहीं मिली है और अपने बच्चों को भी वो समझाएं कि वो आगे जाकर के इस प्रोटेस्ट का हिस्सा ना बने क्योंकि लीगल एक्शन हो सकता है।
2: दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में भी दिल्ली पुलिस लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को बता रही है कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है, धारा 163 लागू है, लिहाजा प्रोटेस्ट में शामिल ना हो।
1: 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है। नई दिल्ली में और सभी जगह धारा 163 BNSS लागू है, जो कि कोई भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा। आप सभी को कोशिश कर दें, बता दें अपने बच्चे जो भी आस पड़ोसी उन सबको बता करके ब्रीफ कर दें कि वहां पर कोई भी परमिशन नहीं है।
2: तो दिल्ली की कुछ मस्जिदों से ऐलान किया गया है कि 10 अक्टूबर को जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल ना हो।
22: इस ऐलान को गौर समाज फरमाए कि जो जंतर मंतर पर 8-9-10 तारीख को जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो इल्लीगल है, वहां पर कोई व्यक्ति ना जाए, इसलिए कि सरकार ने वहां पर धारा 173 से लगाई हुई है। कृपया आप असरा प्रशासन का साथ दें, कोई वहां ना जाए।
2: दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, बिना परमिशन सीजेपी को प्रदर्शन या धरना करने की इजाजत नहीं है।
23: क्या परमिशन मांगी गई, कब मांगी गई?
24: 7 तारीख को कांग्रेस जनता पार्टी ने एक परमिशन एप्लीकेशन दी थी, इंटीमेशन करके, जिसमें ये बताया गया कि वो सीईसी की अकाउंटेबिलिटी के रिगार्डिंग 10 तारीख को जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन जो इंटीमेशन की है उस पर गौर किया गया और ये पाया गया कि ये एप्लीकेशन इस्टेब्लिश्ड जो गाइडलाइन है उसके तहत हमारे पास नहीं आई है, बहुत ही कम समय में आई है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने उनका जो प्रीवियस कंडक्ट था, उन्होंने जो हमारे लॉफुल डायरेक्शंस को नहीं फॉलो किया या उनकी जो अंडरटेकिंग दी गई थी उनके द्वारा उसको भी नहीं कंप्लाई किया, और प्रेजेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और पब्लिक सेफ्टी के मद्देनजर इस एप्लीकेशन जो थी उसको रिजेक्ट किया जाता है।
2: पुलिस की दलील है कि पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल सीजेपी की तरफ से नहीं रखा गया, हिंसा हुई, कई पुलिस वाले जख्मी हुए, लिहाजा अब की बार प्रदर्शन के नाम पर दिल्ली की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होगा।
0: 2 अक्टूबर से लेकर अब तक 27 FIR दर्ज हो चुकी हैं। पुलिस को अंदेशा है कि प्रदर्शन के नाम पर कुछ लोग दिल्ली की कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं, इसीलिए सख्ती दिल्ली पुलिस ने की है।
2: सीजेपी का ऐलान यही है कि जंतर मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए 7 अक्टूबर को सीजेपी की तरफ से परमिशन मांगी गई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं दी गई। इसके बावजूद सीजेपी ने जंतर मंतर पहुंचने का ऐलान किया है। ऐसे में सीजेपी से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। जंतर मंतर को बैरिकेड से घेरा गया है, मतलब सीजेपी के समर्थकों को जंतर मंतर जाने से रोकने की प्लानिंग है। इसी कड़ी में नए CCTV और लाउडस्पीकर तक लगाए गए हैं।
25: जगह जगह बैरिकेटिंग की गई है। दिल्ली पुलिस की कोशिश ऐसी है कि कहीं कोई जमावड़ा एक जगह पर ज्यादा ना होने पाए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो। कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिसमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के तहत जो कैमरे आते हैं जो जुड़े हुए हैं उन कैमरों को भी लगाया गया है। हालांकि कई ऐसे कैमरे हैं जो इस इलाके में पहले लगे हुए थे, लेकिन आप देखिए इस खंभे पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको जो कैमरा नीचे लगा हुआ दिख रहा है ये अभी इंस्टॉल किया गया है। इसके ऊपर लाउड स्पीकर लगाया गया है जिससे लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप यहाँ पर इकट्ठे ना हो, ये गैर कानूनी है। तो पुलिस ने जगह जगह कंट्रोल रूम बना रखे हैं, एरियो को डिवाइड कर रखा है और हर एरिए की जिम्मेदारी एक आईपीएस स्तर के अधिकारी की है।
2: ये पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है। थाने के बाहर दिल्ली पुलिस की तरफ से पोस्टर पर चेतावनी लिखी हुई है। थाने के बाहर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं।
25: इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के ठीक बाहर, जो पिछले कई दिनों से जंग का अखाड़ा बना हुआ है। और इस थाने के बाहर की आप तैनाती देखिए, जैसे किले की बाहर पूरी सुरक्षा होती है उस तरीके से इस थाने की भी सुरक्षा के लिए बाहर बैरिकेड है। अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस गेट पर तैनात मिलेगी, दिल्ली पुलिस आपको तैनात मिलेगी और यहाँ पर चेतावनी भी लगाई गई है। ठीक आप देखिए बैरिकेड पर चेतावनी लगाई गई है कि BNSS की धारा 163 लागू है, अगर लोग जुटेंगे तो उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी।
2: जंतर मंतर की तरफ जाने वाले रास्ते की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है।
21: इस वक्त मैं जनपद रोड पर हूं और मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये जो सड़क है ये सीधा जंतर मंतर की तरफ जाती है। यहां से करीब 500 मीटर आगे ही वो धरना स्थल है जहां अमूमन लोग जाके बैठते हैं और धरना देते हैं। अगर आप यहां तैयारियां देखें तो इस पूरी सड़क को ट्रैफिक के लिए और पैदल मूवमेंट के लिए भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात भी कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, अगर आप देखें यहां आसपास करीब हर खंभे पर कैमरे लगा दिए गए हैं और ऐसे बड़े लाउड स्पीकर लगा दिए गए हैं। इन लाउड स्पीकर्स का ये काम है कि ये लगातार अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा होना इस वक्त गैरकानूनी है। इस पूरे इलाके में 163 BNSS की धारा लगी हुई है जो किसी भी तरह के प्रदर्शन को वर्जित करती है और अगर यहाँ पर कोई पहुंचता है या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने की कोशिश करता है, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करता है या पुलिस वालों पर हमला करने की कोशिश करता है तो उनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
2: संसद बार की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर बैरिकेड को दूसरे बैरिकेड से जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने जंजीर और ताले का इस्तेमाल किया है।
25: इस वक्त हम संसद मार्ग पर मौजूद है जहां पर CJP की प्रस्तावित प्रोटेस्ट से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। और ये आप देखिए ये जो बैरिकेड रखे गए हैं, यहां इन बैरिकेड में ये चेन्स लगाई जा रही है मोटी मोटी। इन चेन्स को पेच के जरिए अगर आप देखेंगे तो इनको पेच के जरिए इससे जोड़ दिया गया है बैरिकेड से और नीचे की तरफ ऐसे लॉक सिस्टम लगाए गए हैं ताकि इस लॉक को दूसरा जो ये लॉक सिस्टम है जो इस अगर हम कहें दूसरा बैरिकेड है इस बैरिकेड में जो लॉक सिस्टम है इस चेन को इससे जोड़ा जा सके। यानी कि इन बैरिकेड को हटाना इतना आसान नहीं होगा। आप दरअसल पुलिस ने तैयारी की है जो इस पूरे प्रोटेस्ट से निपटने के लिए, क्योंकि परमिशन तो दी नहीं है और उसके कारण पुलिस ने बताया कि एक तो सिर्फ 3 दिन पहले एप्लीकेशन दी गई और दूसरा जो पिछला आचरण था परमिशन लेने के बाद प्रोटेस्ट का उसको देखते हुए परमिशन डिनाई की जा रही है।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

राष्ट्रपति संभलने के बाद विपक्ष ने सरकार पर और तेज किए हमले, बोले राहुल, वोट चोरी के हमारे आरोप पर महामहिम भी सहमत। बीजेपी बोली, नेता विपक्ष राहुल ने लांघी संवैधानिक सीमा। आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन को नहीं मिली अनुमति, मेट्रो के 45 स्टेशन बंद, दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें रद्द, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली की किलेबंदी पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, कहा, मक्खी मारने के लिए हथौड़ा आप नहीं चला सकते, सब कुछ ठप होने से आम लोग न हो परेशान। उपचुनाव में बीजेपी एनडीए के शानदार प्रदर्शन पर पीएम का पोस्ट, लिखा, इस जनादेश से मिलेगी और मजबूती। अमित शाह बोले, राहुल के झूठ और दुष्प्रचार के बाद भी हमारी बड़ी जीत। जेवर एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी हवाई अड्डा करने पर राजनीतिक युद्ध, अखिलेश बोले, नाम बदलने वालों को बदलेगी जनता, पहले यूपी कैबिनेट के निर्णय पर लगी मुहर।

0: गणेश कुमार के खिलाफ राहुल गांधी मोर्चा खोले हुए हैं। इस बीच शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ राहुल ने राष्ट्रपति से मुलाकात करके उन्हें ज्ञापन सौंपा। सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में किलेबंदी इधर कर दी गई है।
1: 10 तारीख को जो सीजेपी प्रोटेस्ट का कॉल है उसको परमिशन नहीं मिली है। कोई भी प्रोटेस्ट में शामिल होगा वो अवैध माना जाएगा।
2: ज्ञानेश कुमार पर संग्राम, आज विपक्ष कल सीजेपी। 4 दिन से लगातार राहुल गांधी का ज्ञानेश कुमार पर वार।
3: मंडे को हम सुप्रीम कोर्ट, यही पूरा का पूरा ग्रुप मेमोरेंडम ले, इफ जस्टिस के लिए मेमोरेंडम लेकर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
2: अब ज्ञानेश कुमार पर लड़ाई राष्ट्रपति के दर तक आई। सीईसी के इस्तीफे की मांग, राष्ट्रपति को इंडिया का ज्ञापन।
4: हमने तो पॉजिटिव आउटलुक से देखा है कि उन्होंने जो 2-4 बात कहा कि आई विल इन्वेस्टिगेट, आई विल गो थ्रू द डिटेल्स एंड हमको सबूत चाहिए।
2: 10 अक्टूबर को सीजेपी का जंतर बंतर प्लान, किले में तब्दील दिल्ली।
5: डरे हुए हैं और जो आदमी डरता है आज नहीं कल मरता है।
6: भारत जैसे लोकतंत्र में प्रदर्शन की पूरी संभावनाएं हैं और आप जरूर करें प्रदर्शन, बट प्रदर्शन से समाधान नहीं निकलेगा, समाधान संवाद से निकलेगा।
2: एक तरफ दिल्ली किले में तब्दील हो चुकी है, दिल्ली पुलिस से लेकर बीएसएफ भी दिल्ली की सीमाओं पर तैनात है, तो दूसरी तरफ लगातार 4th दिन राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के